0: भगवान की बहुत कृपा है आप लोगों पर और हम पर। इस भयंकर कलिकाल में भी भगवान ऐसी मति बनाए रखे हैं कि उनके प्रति आस्था और श्रद्धा इतने लोगों की बनी हुई है। इस भयंकर कलिकाल में, चिंता के युग में भगवान का चिंतन करने वाले बहुत कम लोग होंगे। वर्तमान का युग कलयुग नहीं, छल युग चल रहा है। कलयुग है पर छल युग भी है, और एक नाम और इस युग को दिया जाए तो बुरा ना कहा जाएगा। छल युग के साथ ये मतलब युग चल रहा है। लोगों का मतलब यदि मजार पे भी पूरा हो तो वो जाने को देर ना करेंगे। भगवान को गाली देने में यदि काम चलता हो तो आदमी आज के जमाने में संकोच नहीं खाता है, दे देता। इस छलयुग और मतलब के युग में ये परख पाना बड़ा मुश्किल है कि कौन झूठा है और कौन सच्चा है, क्योंकि आज के जमाने में झूठों ने भी सच्चाई का मुखौटा लगा लिया। और जब झूठे सच्चाई का मुखौटा लगाएं तो बड़ा मुश्किल होता है कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। जर्मनी में एक बड़ा क्रूर शासक हुआ, उसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, हिटलर। बड़ा क्रूर शासक हुआ, उसने लाखों लोगों को जलवा दिया, कई लाख लोगों को उसने जलवाया। उससे पता लगा कि लोग हमें मारने को तैयार हैं, तो उसने अपनी हम सकल के 12 लोग बनाए। हिटलर ने अपनी सकल के 12 लोग बनाए, पर उसे जिस व्यक्ति ने पकड़ा उसने बड़ी चालाकी के साथ पकड़ा, और वो पकड़ा एक चूक के कारण गया कि जब 12 उसके जैसे खड़े थे तो उसने बड़ी, जो पकड़ने वाला व्यक्ति है वो गया, उसने कहा कि ये 12 हम सकल बनाए तो बहुत अच्छे हैं पर इनमें एक चूक रह गई। तो जो असली हिटलर था वो बोला, क्या चूक रह गई? बोले, बस यही तो चूक रह गई, क्योंकि इन 12 लोगों में पहचान पाना हमें बड़ा मुश्किल है। तूने बड़े हूबहू बनाए, सब तेरे जैसे, तेरी कद काठी के लोग हैं, तेरे जैसे दिखने वाले लोग हैं। अब बड़ा कठिन हो रहा था, कई सालों से तू चकमा दे रहा था और पकड़ पाना मुश्किल था, तो उसने तरीका निकाला कि कैसे पकड़ा जाए। तो जब 12 हिटलर खड़े थे तो उसने बड़ी जोर से कहा कि हिटलर था तो बड़ा समझदार, बड़ा समझदार है, उसने हम सकल के 12 लोग बनाए, पर वो इन 12 लोगों को बनाते समय एक चूक कर गया। असली हिटलर तुरंत बोला, क्या चूक? बोले, यही तो चूक कर गया है, ये मैंपन की चूक जो है वो बड़ी खतरनाक। मैं और मेरा, यही तो आदमी तो निपटाता है। तुमने देखा नहीं बकरे की बलि क्यों दी जाती? क्योंकि बकरा मैं करता है, इसलिए कटता है। फिर तुम कहोगे कि फिर मुर्गा क्यों काटा जाता सबसे ज्यादा? क्योंकि वो लोगों को जगाता है, और जो आदमी जगाता है उसको तो काटा ही जाता है, क्योंकि लोगों को सोना पसंद है, जागना कहां पसंद है। तुमने देखा नहीं कितने लोग उन लोगों को गालियां देते हैं जो जगाने का काम करते। मेरे पागलों, इस मतलब के छल युग में तुम सब कुछ करना, पर किसी संत का अपराध मत कर देना। भगवान का अपराध करोगे तो संत माफ करवा देगा, पर किसी भक्त का अपराध करोगे तो भगवान भी तुम्हें माफ ना करेगा। अगर तुमसे भगवान की चूक हो गई तो भक्त लड़कर, लाड़ लड़ाकर, प्रार्थना करके, उपासना करके व्रत करके भगवान से तुम्हें माफी दिला देगा, पर यदि तुमसे भक्त की चूक हो गई, भक्त के प्रति अपराध हो गया, तो दुनिया में कोई तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता है मेरे पागल। इसलिए भूल करके भी किसी भक्त की निंदा मत करना, भूल करके भी किसी संत की निंदा मत करना, भूल करके भी संत का अपराध मत करना। आज की बात में हम इतनी सी प्रार्थना आप लोगों से करने के लिए बैठे हैं। बात बहुत सीधी सी, प्रार्थना भी बहुत सीधी सी है कि पहले तो आज के युग में तुम्हें सावधान रहना, ये कलयुग नहीं है, छल युग है, छला जाएगा तुम्हें। भगवान के नाम पर भी छला जा सकता है, राजनीति के नाम पर भी छला जा सकता है, कहीं भी छला जा सकता है, पर यदि तुम स्वयं जागृत हो तो शायद कोई कितना भी छली व्यक्ति हो तुम बच पाओगे। और हम तो सीधी सी बात बोलेंगे, तुम्हें भली लगे या बुरी लगे, अच्छी लगे तो स्वीकार करना, बुरी लगे तो मत करना, कौन सा हम तुम्हारे घर रोटी खाने आ रहे। बात बहुत सीधी सी है और हम सीधी ही बोलेंगे, या तो तुम भगवान को छोड़ो या भगवान पर छोड़ो, दो में से कोई एक रास्ता पकड़ो, तुम्हारा जीवन बदल सकता है। या तो तुम परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि को परमात्मा मानो, माता पिता और गुरु को भगवान मानो, या फिर अपने बनाए हुए पत्थरों को भगवान मानो, दो में से कोई एक रास्ता चुनो तो तुम्हारे जीवन में कोई चमत्कार हो सकता, वरना चमत्कार ना हो पाएगा। और मेरे पागलों, तुम्हें हम सीधी सी बात बताएं, परिक्रमा लगाने से, नारियल बांधने से, अर्जी लगाने से बालाजी खुश होंगे कि नहीं हमें नहीं पता, इतना हम कह सकते, इनके हो जाने से ये जरूर खुश हो जाएंगे। वरना आदमी तो तन से पूजा कर रहा, मनवा गया बाजार, और कैसे रीझे सांवरा, जुड़े ना दिल के तार। सब तन से पूजा कर रहे, मन तो बाजार गया, और तुम तन से पूजा करो मन बाजार जाए तो परमात्मा ना रीझेगा। परमात्मा तो मन की देखता है, परमात्मा तो मन को देखता है। तुम तन को चाहे जितना चमका लो, तुम्हारा मन ना चमका तो परमात्मा खुश ना हो पाएगा। और मेरे पागलो, बालाजी को तुम लड्डू चढ़ाकर खुश नहीं कर सकते, बालाजी को अपना सुंदर मन चढ़ा करके जरूर खुश कर सकते हो। और तुम बालाजी को मिठाई चढ़ा के सोचो, हमारे पास लोग ऑफर लेके आते हैं कि हमारा काम हो जाए हम 5 किलो मिठाई चढ़ाएंगे, ठठरी के भरे, भगवान तुम्हारी मिठाई के भूखे बैठे। क्या वो मिठाई के लिए बैठा है? पहले ये तो विचार करो, मिठाई बनी काय से? खोआ से। खोआ काय से बना? दूध से। दूध कहां से आया? गाय अथवा भैंस से। और उसे बनाया किसने? भगवान ने। तो तुम भगवान की बनाई हुई वस्तु पर भगवान को ही चढ़ा के सोच रहे कि हम पुण्य कमा रहे। ये तो वही वाली बात हो गई कि पिछले साल हमने अपने जन्मदिन पे कहा कि नो गिफ्ट, एक ईंट दीजिए अस्पताल के लिए, हमें गिफ्ट नहीं चाहिए। और ईंटें आनी शुरू हुई, लोग एक एक ईंट लेकर आए, पहले दिन लगभग 2-3 हजार ईंट आ गई। हमें बड़ी खुशी हुई कि चलो लोग जागृत हो रहे। दूसरे दिन भी लाखों लोग आए हमारे जन्मदिन पे और ले ईंट चले आए। हमने सोचा ये तो गजब का जलवा है, 4-5 कमरों की जुगाड़ हो गई गुरु। लेकिन बाद में पता लगा ईंटें 3 हजार की 3 हजार। तो हम बड़े चौंके, कि भाई ज्यो की त्यों ईंटें हैं और इतनी ईंटें हैं, तो बोले आप यहां से ईंटें लेके उधर धरवाते हैं, लोग आते हैं वहीं से ईंटें उठा करके आपको चढ़ा जाते। उनका वाह क्या अद्भुत लोग हैं, हमारी ईंटें हमको ही चढ़ा गए। और एक आदमी तो गजब कर गया, दीवाल तोड़ के ईंट ले गया। नहीं नहीं दीवाल बन रही थी और दीवाल तोड़ के लोग ईंट ले गए और हमको चढ़ा गए, सीमेंट हमारा बेकार गया। और हमसे कह रहे कि लोग ईंट लो, हम तो फूले ना समाए, लोग बड़े दयालु हैं, ईंट का दान कर रहे हैं। जब रात को हिसाब किताब जोड़ा गया तो पता लगा 3,000 की 3,000 है और एक दीवाल ऊपर से और टूट गई। पता लगा कि भजन कीर्तन को बैठे ढोलक फूट गई। अच्छे भजन कीर्तन कराएं कि हम ही कीर्तन कराएं, हम ही झींका मंजवाएं, हम ही मंजीरा मंगवाएं, हम ही ढोलक बुलवाएं और हम ही भंडारा करवाएं और हम ही ढोलकिया फुड़वाएं। वही हाल हो गया भैया, अच्छे दानी लोग हैं। हमने कहा ऐसे दान से तो बेहतर है गिफ्ट ही मंगा लेते, कम से कम फायदे में तो रहते। बात फायदे की या घाटे की नहीं है, बात व्यक्ति की ईमानदारी की है कि आदमी इतना ईमानदार है कि वो भगवान को भी धोखा देने से चूकता नहीं, गुरु को भी वो धोखा देने से चूकता नहीं। खैर अपने लोग हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है, तो फर्क हमें पड़ेगा भी क्या। और हम पढ़ने वाला है ही नहीं, इसलिए भी नहीं पढ़ने वाला कि जो है वो तेरा है, यहां मेरा है क्या जो हमें कोई फर्क पड़ेगा। आदमी को लगता होगा कि हमें कोई फर्क पड़े, हमें तो कोई फर्क ना पड़ता भैया। हम तुमसे भी कहेंगे यही मनोदशा मन में विचार करके रखो, कुछ भी लुट जाए तुम्हारे मन को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्या लुटेगा, वस्तुएं ही तो लुटेंगी, हम थोड़ी लुट जाएंगे। हम ना लुटें, दुनिया लुटती हो तो लुट जाए, सामग्री लुटती हो तो लुट जाए, तुम करोगे भी क्या, हमारे सामान को ही फेंकोगे, हमें थोड़ी फेंक पाओगे। और मान लो जो हमारे वाले हैं पूंछ वाले वो रूठ गए तो तुम्हें ऐसा फेंकेंगे कि तुम उठ ना पाओ। मेरे पागलो, हम तुम्हें बहुत सीधी सी बात कहना चाह रहे, परमात्मा वस्तु का भूखा नहीं है, परमात्मा तो प्रेम का भूखा है। बालाजी की कृपा पाने तुम आए हो, याद रखना बिना संघर्ष के कुछ प्राप्त होता भी नहीं। हमको भी कई रातें अंधेरे गुजारनी पड़ी, हमको भी कई दिनों तक भूखा रहना पड़ा, हमको भी दुत्कार सहनी पड़ी, धक्के खाए हमने भी धोखे खाए, धक्के खाए। आज भी हमारे ऐसे कई लोग हैं, आते हैं हमें गले लगाते हैं, भाई भाई भाई मित्र बताते, अब पीठ पीछे हमारी बुराई करते, और हम जानते भी हैं फिर भी हम कुछ ना कहते। जमाना ही ऐसा है, इस जमाने में हर चमकते हुए व्यक्ति के पीछे बड़ा अंधेरा रहा, पर दुनिया को सफलता दिखाई पड़ती है, मेहनत कभी नहीं दिखाई पड़ती। इसलिए मेरे पागलो तुम घबराओ मत, ये दिन तुम्हारे अंधेरे के हैं तो तुम्हारी जिंदगी में भी उजाला आएगा, तुम्हारी जिंदगी में भी सवेरा होगा, तुम्हारा जीवन में भी इतिहास लिखा जाएगा। और जो तुम पर हंस रहे हैं तुम घबराओ मत, पकड़ लो इनके चरण को, जो तुम पर हंस रहे हैं वो तुम्हारे लिए तालियां भी बजाएंगे। कभी होगी उनकी कभी मजबूरी, तुम डटे तो रहो, तुम अड़े तो रहो, भगवान के घर देर है, अंधेर कहां। एक दुनिया का बड़ा बहुत अमीर आदमी हुआ, कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, बिल गेट्स। बड़ा रईस आदमी हुआ, उससे पत्रकारों ने पूछा कि आप रातों रात अमीर बन गए, इसका रहस्य क्या है, इसका राज क्या है। बिल गेट्स ने बड़ी मजेदार बात बोली, वो तुम्हारे काम की है। बिल गेट्स ने टेबल पर हाथ ठोक कर कहा कि यस मैं रातों रात अमीर बन गया हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है, पर ये किसी को खबर नहीं है वो रात कितनी लंबी थी। कितनी बड़ी थी वो रात, ये किसको खबर? और ये किसको खबर हो भी सकती? तुम्हारी परेशानियां तुम्हारे अलावा कौन समझ सकता? बगल वाले की अपनी परेशानी है, तुम बैठे पेट दर्द के कारण, बगल वाले की तो कमर दर्द कर ले, उसे क्या लेना देना तुम्हारे पेट दर्द से?
1: क्या आपका बच्चा झूठ बोलने लगा है? क्या बच्चे को चोरी करने की आदत पड़ रही है? क्या बच्चे का आकर्षण गलत तरफ हो रहा है? क्या है बच्चे की इन समस्याओं का कारण और उसका निवारण? जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
7: आज भारतीय वायुसेना मना रही है अपना 94वां स्थापना दिवस। गाजियाबाद के इंडियन एयरबेस पर दिखेगा वायु वीरों का शौर्य और पराक्रम। शारदीय नवरात्र के लिए अमरावती में सज गया अंबाजी का दरबार, रंग बिरंगी लाइट से अद्भुत सजावट, सोने चांदी के आभूषणों से सजेगा माता का दरबार। वडोदरा में देखा गरबा का जबरदस्त क्रेज। वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने आयोजित किया विकसित भारत संकल्प गरबा। पारंपरिक परिधानों में झूमते नजर आए लाखों लोग। माँ दुर्गा के आगमन के लिए भक्त तैयार। देश के अलग अलग हिस्सों में माँ की हजारों मूर्तियों को गढ़ने और तराशने में व्यस्त मूर्तिकार मूर्तियों में भरे जा रहे हैं रंग। बद्रीनाथ में पहाड़ों ने किया सफेद श्रृंगार। देवताल में दूर दूर तक दिखी मखमली बर्फ की मोटी चादर। सतोपंत और चंबा में भारी बर्फबारी।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
7: अमरावती का अंबा माता मंदिर शारदीय नवरात्रि के लिए रंग बिरंगी रोशनी से सज गया। रात में रोशनी से नहाया मंदिर श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। नवरात्रि से पहले मंदिर में माता के सोने चांदी के आभूषणों को चमकाया गया। घट स्थापना से पहले सुबह 5 बजे माता का सहस्त्रधारा अभिषेक होगा। नवरात्रि में बड़ी भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर में विशेष व्यवस्था की गई। महिला और पुरुष श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग कतारें और पंडाल बनाए गए। अंबा माता की ऊटी भरने वाली महिलाओं के लिए भी किए गए हैं विशेष इंतजाम। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मंदिर परिसर में की गई है बैरिगेटिंग। अंबा माता के दरबार में अब आस्था और भक्ति का रंग दिखेगा। नवरात्रि तक मंदिर में धार्मिक कार्यक्रमों के साथ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद। पाली में गरबा को लेकर जोरदार तैयारी। बच्चों को दी जा रही है गरबा करने की ट्रेनिंग। बच्चों के साथ साथ महिलाएं भी सीख रही हैं गरबा। भक्ति गीतों पर किया गरबा डांस। अयोध्या में दीपोत्सव की भव्य तैयारी। रामनगरी के 56 घाटों पर करीब 30 लाख दिए जलाए जाएंगे। रामायण थीम पर सजेगी अयोध्या। 20 सेल्फी पॉइंट और भव्य द्वारों की श्रृंखला बढ़ाएंगे आकर्षण। अयोध्या में दिखेगा रामायण का भव्य संसार। पुष्पक विमान से फ्लोटर्स तक होंगे मुख्य आकर्षण। 18,000 फीट की ऊंचाई पर देवताल 4 से 5 फीट बर्फ से ढका है। पूरा इलाका सफेद चादर में बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। ताजा बर्फबारी के बाद देवताल का पवित्र सरोवर भी जम चुका है। चारों तरफ बर्फ का अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। बीआरओ के सड़क मार्ग खोलने के बाद बाइकर्स और पर्यटकों का दल देवताल पहुंचा। 18,000 फीट पर पहुंचकर पर्यटक रोमांचित नजर आए। देवताल के पास भारत चीन सीमा पर सेना और आईटीबीपी के जवान तैनात। बाइकर्स ने जवानों को हिम्मत मुश्किल हालात में ड्यूटी को सलाम किया। सीमा दर्शन योजना के तहत परमिट लेकर लोग देवताल पहुंच रहे हैं। बर्फ से ढकी झील और हिमालय का नजारा पर्यटकों को खूब भा रहा है। हेमकुंड साहिब बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है। कपाट बंद होने से पहले श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार। बद्रीनाथ धाम में दर्शन के लिए 2 से 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी। बारिश के बाद ठंड भी बढ़ गई। निचले इलाकों में मूसलाधार बारिश जारी है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो गई। कड़ाके की ठंड के बावजूद बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब में श्रद्धालुओं की आवाजाही जारी है। बड़ी संख्या में वाहन धामों की ओर जा रहे हैं। मौसम विभाग ने पहाड़ों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है। आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। चंबा के साच पास में ताजा बर्फबारी से पहाड़ सफेद चादर में ढक गए हैं। करीब 5 से 6 इंच बर्फ गिरने से ठंड भी बढ़ गई है। बर्फ जमने से बैरागढ़ साच पास केलाड़ मार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ। सड़क पर फिसलन बढ़ने से सफर करना मुश्किल हो गया है। साच पास में सीजन में अब तक तीसरी बार बर्फबारी हुई। लगातार हिमपात से ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान गिरा है। खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को सावधानी बरतने को कहा है। मौसम और सड़क की स्थिति सामान्य होने तक अनावश्यक यात्रा से बचें। ताजा हिमपात के बाद आसपास की चोटियां बर्फ से चमक उठी है। सफेद चादर में लिपटा हुआ पूरा इलाका बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। बारिश के बाद धर्मशाला का मौसम हो गया है कूल कूल। धौलाधार की चोटियां ताजा बर्फबारी से सफेद नजर आ रही हैं। बदले मौसम और बर्फ से ढकी धौलाधार की चोटियों ने पर्यटकों का दिल जीत लिया है। धर्मशाला मैक्लोडगंज में ठंडी हवाओं का असर दिखा। हिमाचल में 9 अक्टूबर तक मौसम खराब रहने का अलर्ट है। कई इलाकों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना। राजस्थान में 11 से 12 अक्टूबर से मौसम बदलेगा। उत्तर पश्चिमी हिस्सों में हल्की बारिश के आसार। अगले 5 से 5 दिन मौसम साफ रहने के अनुमान। माउंट आबू और सिरोही सबसे ठंडे, यहां रात का तापमान 16 डिग्री दर्ज हुआ। भारतीय वायुसेना 8 अक्टूबर को अपना 94वां स्थापना दिवस मनाएगी। हिंडन एयरबेस पर भव्य परेड और फ्लाईपास्ट होगा। राफेल, सुखोई 30 और तेजस जैसे लड़ाकू विमान अपनी ताकत और उड़ान कौशल दिखाएंगे। हेलीकॉप्टर्स भी फ्लाईपास्ट में शामिल होंगे। हिंडन एयरबेस की प्रदर्शनी में इस बार ब्रह्मोस मिसाइल भी रखी गई। साथ में तेजस, सुखोई और प्रचंड भी नजर आएंगे। हिंडन में जवानों ने परेड और बैंड के साथ जोरदार अभ्यास किया। तिरंगे के साथ हेलीकॉप्टर्स ने भी उड़ान भरी। इस साल की थीम है अचूक अभेद सटीक, यानी दुश्मन के सामने मजबूत, हर मिशन में सटीक और देश की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार। जोधपुर में तरंग शक्ति युद्धाभ्यास 2026 की गर्जना जारी। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी समेत कई देश ले रहे हैं हिस्सा। वायुसेना की तरंग शक्ति की रफ्तार आसमान में दिखा साझेदारी कदम। भारतीय वायुसेना की तरफ से राफेल, सुखोई, मिराज 2000, तेजस, जगुआर और मिग-29 जैसे लड़ाकू विमान आसमान में दिखाए। उन्होंने अपना दमखम। 12 अक्टूबर तक चलेगी एक्सरसाइज। 4 साल में पहली बार आरबीआई ने बढ़ा रेपो रेट 5.25 से 5.50 किया। होम से लेकर कार लोन तक होंगे महंगे, बढ़ेगी ईएमआई। पैरालंपिक चैंपियन प्रमोद भगत और भावीना पटेल एशियन पैरा गेम्स की ओपनिंग सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक होंगे। जापान के नागोया में 18 से 24 अक्टूबर तक एशियन पैरा गेम्स होंगे। भारत की नजर बड़े पदक अभियान पर रहेगी। पैरा बैडमिंटन स्टार प्रमोद भगत ने एशियन पैरा गेम्स में अब तक 6 पदक जीते, इनमें 2 गोल्ड और 4 ब्रॉन्ज शामिल हैं। पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी भावीना पटेल ने एशियन पैरा गेम्स में 2 पदक जीते हैं। उनके नाम 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज है। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया 8 अक्टूबर को टीम इंडिया का विदाई समारोह आयोजित करेगी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बी कागन और जापान के वैज्ञानिक केन्सो सोई को मिला नोबेल पुरस्कार। रसायन विज्ञान ऑटो कैटालिटिसिस की खोज के लिए सम्मानित। भारत और वेस्टइंडीज के बीच 9 अक्टूबर को होने वाले दूसरे T20 मुकाबले के लिए रांची पहुंची दोनों टीमें। बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों का स्वागत। ग्रेटर नोएडा में आज से गोल्फ की शुरू हुई कपिल देव इन्विटेशनल टूर चैंपियनशिप। 2 करोड़ रुपए की प्राइस मनी। धौलपुर के जंगलों में दुर्लभ एशियाटिक कैरकल यानी सियागोस के करीब 200 की संख्या कैमरा ट्रैप में सामने आई। वन्य जीव प्रेमियों के लिए राहत की खबर। कैरकल संरक्षण को लेकर धौलपुर में हुआ सेमिनार जिसमें विशेषज्ञों ने उसके संरक्षण पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी के लोक सेवा के 25 साल पूरे होने पर सेवा संकल्प अभियान की शुरुआत। लोगों ने उतारी मां गंगा की आरती। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मां गंगा का दूध से किया अभिषेक, घाटों पर की साफ सफाई। प्रधानमंत्री मोदी के लोकसेवा के 25 साल पूरे होने पर राजकोट में 1500 विद्यार्थियों ने बनाई भारत के नक्शे की मानव श्रृंखला। गुरुग्राम में विकसित भारत संकल्प सभा का केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन, सीएम सैनी भी रहे मौजूद। गाजियाबाद में सेवा संकल्प अभियान का आयोजन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हुए इसमें शामिल। फिल्म रामायण से राजा दशरथ का नया पोस्टर जारी, दशरथ के किरदार में नजर आएंगे अरुण गोविल। जैकी श्रॉफ और शरद केलकर की फिल्म काली केती की बदली रिलीज डेट, अब 20 नवंबर को फिल्म होगी रिलीज। फिल्म धूड़ का ट्रेलर हुआ रिलीज, साइकोलॉजिकल थ्रिलर कहानी लेकर आए यशपाल शर्मा, 23 अक्टूबर को फिल्म होगी रिलीज। दूसरी बार पेरेंट्स बनेंगे कियारा और सिद्धार्थ, सोशल मीडिया पर दी जानकारी, लिखा एक बार फिर हमें जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा मिलने वाला है। राजपाल यादव को एससी ने लगाई फटकार, तत्काल 1,15,00,000 का ड्राफ्ट जमा कराया, 7 चेक बाउंस मामलों में पेश हुए एक्टर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
8: क्या आपका बच्चा झूठ बोलने लगा है? क्या बच्चे को चोरी करने की आदत पड़ रही है? क्या बच्चे का आकर्षण गलत तरफ हो रहा है? क्या है बच्चे की इन समस्याओं का कारण और उसका निवारण, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
7: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
7: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही है। गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। व्यक्ति अगर अच्छे से बोले, उसकी वाणी मीठी हो, तो जीवन में बहुत सारे काम उसके बड़े आसानी से बन जाते हैं और बड़ी सारी मुश्किलें बड़ी आसानी से दूर हो जाती हैं। आखिर क्या करें ऐसा कि वाणी अच्छी हो, मधुर हो। आज बात करेंगे मीठी वाणी का वरदान कैसे मिले आपको। अब जान लेते हैं दिनांक 8 अक्टूबर 2026 दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य देव विद्यमान हैं कन्या राशि में, बुध और शुक्र तुला राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, मंगल और बृहस्पति कर्क राशि में तथा चंद्रमा और केतु फिलहाल विद्यमान हैं सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं आपकी वाणी के बारे में। वाणी का ज्योतिष में किन ग्रहों से संबंध है पहले ये जानते हैं। किसी कुंडली का दूसरा भाव और इसका स्वामी वाणी को नियंत्रित करता है, वाणी को कंट्रोल करता है। इसके अलावा तीसरा भाव और आठवां भाव भी वाणी से संबंध रखता है। इन्हीं भावों से व्यक्ति की आर्थिक और पारिवारिक स्थिति भी देखी जाती है। इसीलिए आपकी जो वाणी है ये आपकी आर्थिक स्थिति से और पारिवारिक स्थिति से जुड़ी हुई है। वृषभ राशि और बुध, इसका सीधा संबंध होता है आपकी वाणी के साथ। और बुध मुख्यतः व्यक्ति को अभिव्यक्ति की, बोलने की, समझने की अद्भुत क्षमता प्रदान करता है। बृहस्पति डायरेक्टली तो वाणी को प्रभावित नहीं करता, लेकिन वाणी में वजन लाना, वाणी में गंभीरता लाना, मजबूत बात, वजनदार बात बोलना ये बृहस्पति जीवन में ले आता है। वाणी पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब ये जानते हैं कि किसी आदमी के बोलने की आदतें, उसके वाणी की आदतें किन ग्रहों से प्रभावित होती हैं। पाप ग्रहों का अगर वाणी से संबंध हो, शनि का, राहु का, मंगल का, सूर्य का, केतु का, तो ये वाणी को खराब करता है। अगर बुध या बृहस्पति कुंडली में गड़बड़ हो तो ये भी वाणी को खराब करते हैं। वाणी को सबसे ज्यादा खराब करते हैं शनि और राहु। बुध और बृहस्पति का अच्छा होना
वाणी को अच्छा बना देता है, वाणी को अच्छा कर देता है। जो आपकी वाणी का ग्रह है, सेकंड हाउस का जो स्वामी है, अगर वो शुक्र की राशि में बैठे या शुक्र के साथ संबंध हो, तब भी व्यक्ति की वाणी सामान्यतः अच्छी हो जाती है। वाणी पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब अगर आप अपने बोलने को, अपनी वाणी को मधुर बनाना चाहते हैं, अपनी किस्मत को चमकाना चाहते हैं, किस्मत को बेहतर करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? सुबह और शाम दोनों समय गायत्री मंत्र का जप करिए, कम से कम 27 बार सुबह शाम या 108 बार। अपने खान पान को शुद्ध रखिए, मांस मदिरा का प्रयोग करने से बचिएगा। महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा का अगर आप उपवास रखें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। सलाह लेकर एक पीला पुखराज या एक पन्ना अगर आप धारण करें तो आपको लाभ होगा। और मान लिया मुंह से अपशब्द निकल गया, मुंह से खराब बात निकल गई, तो शिव शिव कृष्ण कृष्ण उसी समय कहें, ताकि उस वाणी का दुष्प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। देखिए, आपकी जो वाणी है वो जिस भाव से कुंडली से देखी जाती है, वही भाव आपके परिवार का भी है, वही भाव आपके धन का भी है। तो अगर आप अपशब्द बोलेंगे, खराब वाणी का प्रयोग करेंगे, तो आपको आर्थिक नुकसान होगा, आपके परिवार में दिक्कतें पैदा होंगी। दूसरा भाव आपकी आंखों का भी होता है, तो खराब वाणी का या गलत वाणी का प्रयोग करने से आपकी आंखों में भी समस्या आ सकती है। आप अगर अपनी वाणी को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो नियमित रूप से भगवान का नाम जपते रहिए। आपकी वाणी से अगर निरंतर भगवान का नाम चलता रहेगा, कोई मंत्र चलता रहेगा, तो उसकी पवित्रता आपकी वाणी पर रहेगी और उस पवित्रता की वजह से आपकी वाणी प्रभावशाली हो जाएगी। तो भगवान के नाम का जप, मंत्र का जप निरंतर करने से आपकी वाणी की समस्या दूर होगी, आपकी वाणी मधुर और प्रभावशाली बन जाएगी। अब वक्त हो गया है आपके भाग्य को बेहतर बनाने का, तो आइए जानते हैं कि भाग्य के लिए क्या है लकी टिप। पक्षियों को कभी भी पिंजड़े में कैद करके मत रखिएगा। अगर आप पक्षियों को पिंजरे में कैद करके रखेंगे तो कर्ज और बीमारियों की समस्या आपकी बढ़ जाएगी। अब जान लेते हैं दिनांक 8 अक्टूबर 2026
दिन बृहस्पतिवार का सक्सेस मंत्र क्या है? प्रातः काल भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा, घर से निकलते समय उसमें से एक फूल अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
3: आज भारतीय वायुसेना मना रही है अपना 94वां स्थापना दिवस। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर दिखेगा वायु वीरों का शौर्य और पराक्रम। शारदीय नवरात्र के लिए अमरावती में सज गया अंबाजी का दरबार, रंग बिरंगी लाइट से अद्भुत सजावट, सोने चांदी के आभूषणों से सजेगा माता का दरबार। वडोदरा में देखा गरबा का जबरदस्त क्रेज, वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने आयोजित किया विकसित भारत संकल्प गरबा, पारंपरिक परिधानों में झूमते नजर आए लाखों लोग। मां दुर्गा के आगमन के लिए भक्त तैयार, देश के अलग अलग हिस्सों में मां की हजारों मूर्तियों को गढ़ने और तराशने में व्यस्त मूर्तिकार, मूर्तियों में भरे जा रहे हैं रंग। बद्रीनाथ में पहाड़ों ने किया सफेद श्रृंगार, देवताल में दूर दूर तक दिखी मखमली बर्फ की मोटी चादर, सतोपंत और चंबा में भारी बर्फबारी।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका गुड लक टुडे में और मैं हूं आपके साथ गीतिका पंत और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका।
1: नमस्कार।
0: तो आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे बच्चों के अंदर बुरी आदतों के बारे में। अक्सर ऐसा होता है बच्चों के अंदर बुरी आदतें अपने आप आ जाती हैं, झूठ बोलना, चोरी करना। तो ये आदतें क्यों आ जाती हैं और इनको दूर करने के उपाय क्या हैं, इस पर विस्तार से करेंगे हम पंडित जी से चर्चा। लेकिन सबसे पहले हम देख लेते हैं आज का गुड लक मंत्र।

0: काल या शाम के समय विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर आप सप्ताह में एक दिन बुधवार को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करेंगे तो हर तरह की ग्रह की बाधा से सुरक्षित बने रहेंगे।
1: और चलिए अब जान लेते हैं 8 अक्टूबर 2026 यानी कि बृहस्पतिवार का पंचांग क्या है।
0: दिनांक 8 अक्टूबर 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, रात के 10:15 तक। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, रात के 9:20 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
1: तो आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं बच्चों के अंदर बुरी आदतों के बारे में। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से कि किसी बच्चे की आदतों से किन ग्रह का संबंध होता है।
0: जी देखिए, आज हम बात कर रहे हैं बच्चे की बुरी आदतों के बारे में। आपके बच्चे को बुरी आदतें किन ग्रहों की वजह से पड़ती हैं और उन आदतों को दूर करने के उपाय क्या हैं? देखिए, किसी बच्चे की आदत से कुछ विशेष ग्रहों का संबंध होता है। जैसे बच्चे के ऊपर सामान्यतः 8 तक चंद्रमा का प्रभाव होता है और कभी कभी चंद्रमा का प्रभाव 12 तक भी रहता है। 12 के बाद किशोरावस्था में बच्चे के ऊपर बुध का प्रभाव आना आरंभ होता है। तो कुल मिलाकर शुरुआत में चंद्रमा का और बाद में बुध का प्रभाव बच्चे पर होता है और चंद्र तथा बुध बच्चे की आदतों पर असर डालते हैं। अगर किसी बच्चे को बचपन में राहु केतु की या शुक्र की दशा मिल जाती है तो ये भी बच्चे की आदतों पर गहरा असर डालती है। तो किसी भी बच्चे की आदत के लिए चंद्रमा और बुध को देखना होगा, साथ ही साथ ये देखना होगा कि बचपन में बच्चे की महादशा क्या है, बच्चे की अंतरदशा क्या है और उसका कैसा प्रभाव जीवन पर पड़ रहा है।
1: और अब वक्त हो गया आज के राशिफल के बारे में जानने का, तो आइए जानते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि वालों का क्या कहता है राशिफल।
0: मेष राशि, करियर की तमाम समस्याएं हल होंगी, मन की चिंताएं दूर होंगी, आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा। भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए बैंगनी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, रिश्तों की समस्या पर ध्यान दें, अनावश्यक तनाव न पालें, वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण रखें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। मिथुन राशि, आर्थिक लाभ होने के योग बन रहे हैं, कोई शुभ सूचना मिल सकती है, परिवार में शुभ कार्य होने के योग बन रहे हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए अब जान लेते हैं कि अगर आपका बच्चा झूठ बोलता हो तो इसके पीछे कौन से ग्रह होते हैं जिनका प्रभाव होता है और इन्हें दूर करने के उपाय क्या हैं?
0: बच्चे के अंदर बहुत सारी आदतें बचपन से आनी शुरू हो जाती हैं। अगर आपका बच्चा झूठ बोलने लगा हो, उसके अंदर झूठ बोलने की आदत आ गई हो, तो किन ग्रहों की भूमिका होती है? देखिए, कुंडली का जो दूसरा भाव है, जो सेकंड हाउस है, इसके दूषित होने पर बच्चा झूठ बोलने लगता है। दूसरा भाव बोलने का या वाणी का होता है, इसके खराब होने पर बच्चा झूठ बोलता है। इस भाव से अगर शनि या राहु का संबंध हो जाए तो बच्चे को झूठ बोलने की आदत पड़ जाती है। और बुध अगर बच्चे का गड़बड़ हो तो बच्चा झूठ बोल करके दूसरों को बेवकूफ बनाता है, दूसरों से अपना काम निकालता है। अगर आपके बच्चे के अंदर झूठ बोलने की आदत आ रही हो तो क्या उपाय करेंगे? बच्चे को प्रातः तुलसी दल ग्रहण करवाइए, ब्रश करने के बाद 2 पत्ते तुलसी के बच्चे को खिलाइए। बच्चे को सुबह शाम कम से कम 3 बार या 9 बार गायत्री मंत्र बोलने का अभ्यास करवाइए और बच्चे को गले में चांदी का स्वस्तिक धारण करवाइए। बच्चे को तीखी चीजें मत खिलाइए, तीखे और मसालेदार भोजन से बच्चे को बचाइएगा। अगर इन बातों का ध्यान रखें तो आपके बच्चे की झूठ बोलने की आदत समाप्त हो जाएगी।
1: और अब वक्त हो गया है कर्क, सिंह और कन्या राशि वालों के राशिफल को जानने का।
0: कर्क राशि, करियर में लाभकारी बदलाव होता दिख रहा है, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, कोई बड़ी समस्या आपकी हल होगी, धन लाभ की स्थिति बनेगी, जीवन साथी को लाभ होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कन्या राशि, यात्राओं से बचाव करें, स्वास्थ्य के लिए वहम ना पालें, खान पान का ध्यान रखें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।
1: और गुडलक में अब वक्त हो गया आज के सवालों का और उनके जवाब देने का, तो चलिए जान लेते हैं पंडित जी से आज का पहला सवाल वो किसका लेने वाले हैं।
0: जी आज का पहला प्रश्न ज्योत्सना जी ने हमें लिखा है और ज्योत्सना जी पुणे महाराष्ट्र से हमें मेल लिखती हैं। 5 सितंबर 1980 का जन्म है, रात में 11:10 जन्म स्थान है पुणे महाराष्ट्र। ज्योत्सना कह रही हैं कि मैं काफी समय से विदेश जाने का प्रयास कर रही हूं लेकिन बार बार उसमें अड़चन आ जाती है, तो मैं विदेश कब जा पाऊंगी और आने वाले समय में मेरा करियर कैसा रहेगा। ज्योत्सना जी, आपकी कुंडली के हिसाब से थोड़े समय के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए, आप इस साल के अंत में और अगले साल के आरंभ में विदेश जा सकेंगी, लेकिन विदेश में सेटलमेंट की संभावना कुंडली में नहीं बनती है और करियर आपका आने वाले समय में कुल मिला जुलाकर अच्छा दिखाई दे रहा है। आप ऐसा करिए, एक पन्ना बनवा करके पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें और रोज सुबह सूर्य भगवान को अगर जल चढ़ाएं तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा।
1: अगर आपके मन में भी कोई सवाल है और आप चाहते हैं पंडित जी से उसका जवाब, तो आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं और हमें सवाल भेजने के लिए हमारी ईमेल आईडी आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। तो चलिए इसी के साथ वक्त हो गया हमारे दूसरे प्रश्न का, तो जानेंगे पंडित जी से आज का दूसरा प्रश्न वो किसका लेंगे।
0: जी अगला प्रश्न हमें जयवर्धन जी ने लिखा है और जयवर्धन जी हमें लखनऊ से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 13 जनवरी 1990। जन्म का समय दोपहर

है नई जगह पर जा करके आप काम शुरू करेंगे और उसमें आपको सफलता मिलेगी। कर्ज से छुटकारा मिलने में और जीवन को बेहतर करने में अभी भी लगभग एक वर्ष लग जाएंगे। आपका करियर बेहतर हो, आपको जीवन में सफलता मिले, इसके लिए एक मोती बनवा करके पहनिए। 8-10 रत्ती की मोती, चांदी में दाहिने हाथ की

0: करने से लाभ होगा।
1: अगर आपका बच्चा चोरी करता हो, लगातार आप उसे मना कर रहे हैं लेकिन फिर भी उसकी ये आदत बरकरार है, तो इसके पीछे कौन से ग्रह हैं जो जिम्मेदार हैं और इनके दूर होने के उपाय क्या हैं, आइए जानते हैं।
0: अगर आपके बच्चे के अंदर चोरी की आदत आ गई हो, पैसा चुराने लगा हो, थोड़ा ही सही लेकिन पैसा चोरी करता हो, तो कारण क्या है? अगर राहु का ज्यादा प्रभाव बचपन में बच्चे के ऊपर आ गया, राहु का ज्यादा प्रभाव पड़ गया, तो ये बच्चे के अंदर चोरी की आदत पैदा कर देता है। लग्नेश अगर गड़बड़ हो जाए या चंद्रमा अगर दूषित हो जाए, तो ये भी बच्चे से चोरी करवाता है। कुंडली में पृथ्वी तत्व गड़बड़ हो, वृषभ, कन्या या मकर राशि में स्थितियां ठीक ना हो, तो भी बच्चे के अंदर चोरी की आदत पैदा होती है। लेकिन ज्यादातर जो ग्रह चोरी करवाता है वो ग्रह होता है राहु। क्या उपाय करें अगर बच्चे के अंदर चोरी की आदत आ गई है? बच्चे को फास्ट फूड खाने से बचाइए। पिज्जा, बर्गर, मोमोज, ये जो फास्ट फूड हैं, इसको खाने से बच्चे को बचाइए। बच्चे को गाढ़े रंग के कपड़े, काले, नीले, भूरे, इस रंग के कपड़े कम से कम पहनाइए। अपने बच्चे को एक आदत डलवाइए कि आपका बच्चा रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाए या स्कूल जाने के पहले सूर्य देव को नमस्कार करके तब स्कूल जाए। और चंदन का एक छोटा सा टुकड़ा नीले धागे में बांध करके बच्चे के गले में पहनाइए। और बच्चे को सप्ताह में एक बार किसी धर्म स्थान पर, मंदिर में, आश्रम में, शिवालय में ले जाकर बच्चे से प्रार्थना करवाइए। अगर आप ये उपाय करेंगे तो बच्चे के ऊपर से राहु का प्रभाव कम होगा, बच्चे के अंदर चोरी करने की, बेईमानी करने की आदत नहीं आएगी।
1: और चलिए जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि वालों का क्या कहता है राशिफल।
0: तुला राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा, रिश्तों की समस्या दूर होगी, करियर में परिवर्तन की स्थिति बन रही है, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी,

0: और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, कोई मनोकामना पूरी होगी, परिवार में शुभ कार्य होंगे, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, चोट चपेट से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए जानते हैं कि अगर बच्चा गलत आकर्षण में पड़ गया हो, गलत संगत हो गई हो उसकी, तो इसके पीछे कौन से ग्रह होते हैं जो जिम्मेदार होते हैं और इनको दूर करने के उपाय क्या क्या है, आइए जान लेते हैं।
0: बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा गलत आकर्षण में पड़ जाता है, प्रेम का आकर्षण का चक्कर कम उम्र में शुरू हो जाता है। कब होता है ऐसा? चंद्रमा अगर कुंडली में खराब है तो कम उम्र से ही गलत आकर्षण की संभावना बन जाती है। कम उम्र से बच्चा गलत चीजों की तरफ या प्रेम आदि की तरफ आकर्षित हो जाता है। शुक्र अगर दूषित हो कुंडली में, शुक्र पर नकारात्मक प्रभाव हो, तो भी बच्चा गलत आकर्षण में पड़ जाता है। जिन बच्चों की कुंडली में गुरु चांडाल योग हो, ऐसे बच्चे भी गलत आकर्षण में पड़ जाते हैं या कम उम्र से गलत रास्ते पर गलत संगति में भटक जाते हैं। क्या करें अगर आपका बच्चा गलत आकर्षण में पड़ रहा हो या गलत आकर्षण में फंस रहा हो, तो क्या करेंगे? बच्चे को सुगंध और आभूषणों के प्रयोग से बचाइए। छोटी उम्र में कॉस्मेटिक्स और सुगंध का प्रयोग मत करवाइए। बच्चे को शौक में या फैशन में हीरा बिल्कुल धारण मत करवाइएगा। बच्चे को सुबह और शाम दोनों समय या तो हनुमान चालीसा के पाठ का प्रयास करवाइएगा या हनुमान चालीसा पढ़ करके बच्चे को सुनाइएगा। और जब भी आपका बच्चा नहाए, बच्चे के स्नान के जल में जरा सी हल्दी मिलाइएगा। बच्चे के हाथ से शुक्रवार को सफेद फूल भगवान को अर्पित करवाइएगा। अगर आप इन बातों का ध्यान रखें तो आपका बच्चा गलत आकर्षण में, गलत संगति में नहीं पड़ेगा।
1: और इसी के साथ वक्त हो गया आज के अंतिम राशिफल के बारे में जानने का। तो चलिए जान लेते हैं जिन लोगों की राशि है मकर, कुंभ और मीन, क्या कहता है उनका राशिफल।
0: मकर राशि, व्यर्थ का तनाव मत पालें, जल्दबाजी में काम करने से बचें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कुंभ राशि, नया काम कर सकते हैं, सेहत अच्छी होती जाएगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, काफी मेहनत करनी पड़ेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काम की प्रशंसा होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: और चलिए जान लेते हैं पंडित जी से कि आज का तीसरा प्रश्न उन्हें कहां से और किसने भेजा है।
0: जी, अगला प्रश्न दीपाली ने हमें लिखा है और दीपाली हमें मेल लिखती हैं इंदौर मध्य प्रदेश से। इनकी जन्म की तारीख है 23 दिसंबर सन 2000, जन्म का समय शाम के 7:35, जन्म स्थान है इंदौर। दीपाली कह रही हैं कि मैं गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रही हूं, क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी और मेरा भविष्य कैसा रहेगा। दीपाली, आपकी कुंडली के हिसाब से अगर आप प्रशासनिक सेवा की तैयारी करें, बैंकिंग, मैनेजमेंट या फाइनेंस की नौकरी की तैयारी करें तो इन क्षेत्रों में आपको सफलता मिलेगी और साल 2027 इस मामले में आपके लिए बेहतर दिखाई दे रहा है। फिलहाल आप ऐसा करिए, रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए और एक मूंगा लगभग 10-12 रत्ती का तांबे या सोने में दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में मंगलवार को प्रातः धारण करें तो आपको लाभ होगा।
1: और अब वक्त हो गया इसी के साथ आज के अंतिम प्रश्न का। तो चलिए जान लेते हैं पंडित जी से आज का अंतिम और चौथा प्रश्न वो किसका लेने वाले हैं।
0: जी,

0: जी ने कोलकाता से हमें लिखा है, जयदीप जी की जन्म की तारीख है 28 अक्टूबर 1975, जन्म का समय रात में 9:10, जन्म स्थान है कोलकाता पश्चिम बंगाल। जयदीप जी कह रहे हैं कि मैं नौकरी कर रहा हूं काफी समय से और अब मैं व्यापार करना चाहता हूं, क्या व्यापार में मेरा जाना बेहतर रहेगा? जयदीप जी, आपकी कुंडली के हिसाब से अभी हम आपको कोई व्यापार करने की सलाह नहीं देंगे, 2 साल इंतजार करिए, 2029 के मार्च के बाद अगर स्थितियां अनुकूल रहती हैं तो उस समय आपको व्यापार की सलाह दी जा सकती है। अभी आप नौकरी करें, जीवन आपका अच्छा चल रहा है, बेवजह उसमें रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें और रोज शाम को 108 बार शनि मंत्र का जप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। इस मंत्र का रोज शाम को 108 बार जप करना आपके लिए बेहतर होगा।
1: पंडित जी, आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं बच्चों के अंदर बुरी आदतों के बारे में, तो बचपन से ही उनके अंदर ये आदतें ना आए, कोई दोष ना आए, तो उसके लिए हमें
0: आपके बच्चे का लग्न कोई भी हो, याद रखिए कि अगर आप बचपन से 2 काम करने की आदत अपने बच्चे को डलवाते हैं या डलवाएंगे तो आपके बच्चे के बिगड़ने की, भटकने की, गलत रास्ते पर चलने की आदत नहीं आएगी। पहला, अपने बच्चे को बचपन से सूर्य देव को जल चढ़ाने की आदत डलवाइए। जब ज्यादा छोटा हो तो स्कूल जाने के पहले सूर्य भगवान को नमस्कार करके जाए और थोड़ा बड़ा हो जाए तो सूर्य देव को जल अर्पित करने के बाद तब वो विद्यालय जाए या दिन की शुरुआत करे। और दूसरा, बचपन से ही बच्चे की अच्छी शिक्षा और अच्छी एकाग्रता के लिए शुरुआत में 3 बार और बाद में 9-9 बार सुबह शाम गायत्री मंत्र आपका बच्चा बोले, ऐसा अभ्यास करवाइएगा। तो सूर्य देव की उपासना और गायत्री मंत्र का उच्चारण अगर कोई बच्चा या बच्ची बचपन से करे तो उसके बिगड़ने, भटकने की संभावना नहीं रहेगी।
1: जिनका जन्मदिन आने वाला है उन्हें हमारी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी बर्थडे टू यू। आइए जान लेते हैं कि आपका आने वाला वर्ष कैसा रहने वाला है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 8 अक्टूबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, करियर की स्थिति मध्यम रहेगी, धन की स्थिति में धीरे धीरे सुधार होगा। इस साल विवाह होने की और संतान प्राप्ति की संभावनाएं कमजोर हैं। क्या करेंगे? पूरे साल भर शनि देव की उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बेहतर होगा।
1: और चलिए, इसी के साथ वक्त हो गया आज की जिज्ञासा के बारे में जानने का, तो जानेंगे पंडित जी से कि आज की जिज्ञासा क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि अगर बुध की खराब दशा चले तो क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे स्नान करिए, सुगंध लगाइए, नियमित रूप से विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करिए, मांस मदिरा प्याज लहसुन का प्रयोग बंद कर दीजिए।
1: और आइए अब आपको बता देते हैं कि 8 अक्टूबर 2026 यानी कि बृहस्पतिवार का शुभ पहर कौन सा है।
0: दिनांक 8 अक्टूबर 2026 दिन बृहस्पतिवार। शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान को पीले फूल अर्पित करिएगा। ऐसा करने से आपका नाम और यश बढ़ेगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 8 अक्टूबर बृहस्पतिवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: और चलिए अब जान लेंगे आज की गुड लक राशि के बारे में। तो जानते हैं कि आज की गुड लक राशि कौन सी है।

0: कैसी रहती है। आज की गुड लक राशि है सिंह। इनकी शिक्षा में बार बार रुकावट जरूर आती है, शिक्षा के लिए संघर्ष करना पड़ता है। शिक्षा में सफलता के लिए इनको सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए।
1: और इसी के साथ हम पहुंच गए आज के अंतिम पड़ाव पर, जहां पंडित जी रोज हमें एक नया महा उपाय बताते हैं। तो चलिए जान लेते हैं पंडित जी से कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी, आज के महा उपाय में आपको बताते हैं कि अगर कोई महिला है, उसका बार बार मिसकैरेज होता है, बार बार गर्भपात हो जाता है, तो क्या करेंगे? गर्भ धारण करने के साथ भगवान कृष्ण की उपासना आरंभ कर दें। काले कपड़े पहनने से और सुगंध से परहेज करें। रोज सवेरे एक बार इंद्राक्षी स्तोत्र का पाठ करें, गर्भपात की समस्या से सुरक्षित रहेंगे।
1: पंडित जी, तमाम जानकारी के लिए और महा उपाय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: तो पंडित जी से महा उपाय तो आपने जान लिया। बाकी देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव और अच्छी खबरों के लिए आप बने रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती है। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर रात सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: क्या आपकी वाणी से आपके धन और परिवार का भी संबंध है? क्या आपकी वाणी का असर आपकी आंखों पर भी पड़ता है? मधुर वाणी कैसे आती है जीवन में और वाणी को मधुर बनाने के क्या हैं उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: और चलिए अब आपको उन वायरल वीडियोस के साथ छोड़े जाते हैं जिन्हें सोशल मीडिया पर बेहद पसंद किया जा रहा है, क्योंकि इनमें से कुछ आपको हंसाएंगे, कुछ आपको गुदगुदाएंगे तो कुछ आपको इमोशनल कर जाएंगे।
9: पढ़ाई के साथ साथ इस बच्ची की हैंडराइटिंग भी लोगों का ध्यान खींच रही है। कॉपी के पन्नों पर लिखे एक एक अक्षर को देखकर मेहनत और लगन साफ दिखाई देती है। बच्ची की सुंदर और साफ लिखावट देखकर हर कोई इसकी तारीफ कर रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि इतनी छोटी उम्र में पढ़ाई के साथ लिखावट पर इतनी अच्छी पकड़, वाकई काबिले तारीफ है। पिता के घर लौटने का इंतजार कर रहे थे बच्चे। इंतजार था उस पल का जब अपनी मेहनत से हासिल किया मेडल पापा के गले में पहनाएंगे। जैसे ही पिता घर पहुंचे, बच्चों ने खुशी से उन्हें मेडल पहना दिया। बच्चों की इस कामयाबी और पिता के चेहरे की खुशी ने इस पल को बेहद खास बना दिया। आखिर एक पिता इससे ज्यादा और क्या चाहेगा कि उसके बच्चे मेहनत करें, कामयाबी हासिल करें और अपनी जीत की खुशी सबसे पहले उसके साथ बांटे। एक पेड़ गिरा और उसी पेड़ ने करीब 10 बच्चों की दुनिया सजा ली। न महंगे खिलौने चाहिए, न किसी पार्क की जरूरत। बच्चों ने गिरे हुए पेड़ को ही अपना झूला बना लिया। 2 बच्चे झूला झूला रहे हैं, जबकि पीछे कई बच्चे बैठकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। बच्चों की ये मस्ती देखकर सोशल मीडिया यूजर्स को अपना बचपन याद आ गया। वीडियो देखकर लोग कह रहे हैं कि यही तो असली बचपन है, जहां छोटी छोटी चीजों में बड़ी खुशियां मिल जाती थी। अब जिम जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस शख्स ने ऐसा देसी जुगाड़ खोज निकाला है जिसे देखकर आपकी हंसी नहीं रुकेगी। फिसलन भरी मिट्टी में ये शख्स जिस तरह चल रहा है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे ट्रेडमिल पर वर्कआउट कर रहा हो। पैर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इंसान अपनी जगह से हिल ही नहीं रहा। वीडियो देखकर लोग जमकर मजे ले रहे हैं। सोशल मीडिया पर लोग इसे देसी ट्रेडमिल बता रहे हैं और इस अनोखे जुगाड़ की खूब चर्चा हो रही है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
10: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
1: क्या आपकी वाणी से आपके धन और परिवार का भी संबंध है? क्या आपकी वाणी का असर आपकी आंखों पर भी पड़ता है? मधुर वाणी कैसे आती है जीवन में और वाणी को मधुर बनाने के क्या हैं उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
11: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
12: आज भारतीय वायुसेना मना रही है अपना 94वां स्थापना दिवस, गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर वायुवीरों का शौर्य और पराक्रम।
13: गुजरात के जामनगर में नवरात्रि से पहले पारंपरिक अंगारा रास की तैयारियां जोरों पर, लोगों ने हाथों में जलती हुई मशालें लेकर किया पारंपरिक गरबा स्टेप्स, अंगारों पर नंगे पांव किया नृत्य का अभ्यास।
12: वडोदरा में दिखा गरबा का जबरदस्त क्रेज, वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने आयोजित किया विकसित भारत संकल्प गरबा, पारंपरिक परिधानों में झूमते नजर आए लाखों लोग।
13: देशभर में दुर्गा पूजा की जोरदार तैयारी, उड़ीसा के धर्मगढ़ में मां दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं बंगाली कारीगर, बड़ी संख्या में मिले मूर्तियों के ऑर्डर।
12: दशहरा, दिवाली और छठ पर घर जाने वालों के लिए गुड न्यूज, पुणे मुंबई अहमदाबाद और श्री गंगानगर के लिए चलेगी पूजा स्पेशल ट्रेन, कई अन्य जगहों के लिए भी चलेंगी ट्रेनें।
13: दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में हुआ निधन, तो वहीं गोवा में अंतिम सांस ली, बॉलीवुड समेत पूरा देश गमगीन।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
12: उम्मीदों भरे पहर की खुशियों भरी शुरुआत। सुप्रभात, मैं हूँ आपके साथ गीतिका पंत, नई सुबह नई आशा और गुड न्यूज का मॉर्निंग डोज लेकर।
13: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, मैं हूँ आपके साथ दीपाली सिन्हा। तो बिना रुके बिना थमे अगले एक घंटे में गुड न्यूज की मैराथन दौड़ होगी, लेकिन सबसे पहले नजर आज की 5 उन खबरों पर जिनमें है इंडिया के लिए शुभ समाचार।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
12: शुभ समाचार की शुरुआत नवरात्र के साथ होगी। 11 अक्टूबर से नवरात्र का आरंभ हो रहा है, इसलिए दुर्गा पूजा को लेकर पूरे देश में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। मूर्ति बनाने वाले कलाकार मां की भव्य प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं, तो ये तस्वीरें भी थोड़ी देर में होंगी आपके सामने।
13: और साथ ही आपको गरबा के रंग भी दिखाएंगे। इसके लिए आपको लिए चलेंगे गुजरात के वडोदरा, जहां पर निगम के नवरात्र से पहले विकसित भारत संकल्प गरबा का आयोजन किया गया और इस आयोजन में पारंपरिक परिधान में सजे धजे युवाओं का जोश देखते ही बना। इस दौरान गरबा को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग जुटे और गरबा का एक एक स्टेप आपको आगे दिखाएंगे।
12: तो वहीं गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस भी आपको लिए चलेंगे, जहां भारतीय वायुसेना का 94वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इसमें वायुवीरों के हवा में हैरतअंगेज करतब भी नजर आएंगे, क्या क्या है इसमें खास आगे आपको बताएंगे।
13: तो वहीं उधर पहाड़ों का सफेद श्रृंगार भी हुआ है। मध्य प्रदेश और उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने के बाद पहाड़ों पर सर्दी ने दस्तक दे दी है। चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में भी बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट महसूस की जा रही है। तो वहीं बद्रीनाथ धाम में भी ठंड के बीच श्रद्धालुओं की आवाजाही जारी है। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में और बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है, तो कहां कहां हो सकती है बारिश उसकी बात भी आगे करेंगे।
12: तो इसके अलावा आपको पूर्वी चीन के अनुही प्रांत में शियान्यू पहाड़ भी दिखाएंगे, जहां बादलों के बीच प्रकृति की सुंदरता की शानदार झलक सामने आई है। पेड़ों से ढकी ढलानों और लकड़ी के रास्तों के आसपास तैरते बादलों के नजारे ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया, लिहाजा सैलानी भी इस नजारे का गवाह बनने के लिए बड़ी संख्या में जुट रहे हैं। तो बादलों की ये सैर भी आपको करवाएंगे इसी बुलेटिन में, लेकिन फिलहाल वक्त हो गया है सुबह 9 बजे की नौ गुड न्यूज का।
13: नवरात्र से पहले गुजरात के जामनगर में नौजवान अंगारा रास की तैयारियों में जुट गए हैं। युवा हाथों में जलते हुए अंगारे लेकर प्रैक्टिस कर रहे हैं। गरबा और रास उत्सवों में किया जाने वाला ये साहसिक और अद्भुत नृत्य है। इसमें नृत्य करने वाले कलाकार अपने हाथों में जलते हुए अंगारे या जलते हुए अंगारों से भरे पात्र लेकर अब सधे हुए अंदाज में दांडिया या रास नृत्य प्रस्तुत करते हैं।
12: गरबा की ये तस्वीरें गुजरात के वडोदरा की है। वडोदरा नगर निगम ने नवरात्र से पहले विकसित भारत संकल्प गरबा का आयोजन किया है। इस आयोजन में पारंपरिक परिधान में सजे धजे युवाओं का जोश देखते ही बन रहा है। गरबा को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग यहां आए।
13: ओडिशा के धर्मगढ़ में 10 दिवसीय दुर्गा पूजा की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो चुकी हैं। यहां पर कोलकाता से आए कारीगर पारंपरिक बंगाली शिल्प कौशल का उपयोग करके मूर्तियां बना रहे हैं।
12: पश्चिम बंगाल के कोलकाता में दुर्गा पूजा को लेकर जबरदस्त उत्साह है। सैकड़ों सालों से यहां पहली बार क्रिसमस के लिए मशहूर पार्क स्ट्रीट कोलकाता के सबसे बड़े दुर्गा पूजा समारोह की मेजबानी करेगी।
13: केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा को सुरक्षित और व्यवस्थित बनाए रखने के लिए पुलिस और

0: मुल टास्क फोर्स ने घोड़े और खच्चरों के संचालन को लेकर निगरानी बढ़ा दी है। यात्रा मार्ग पर संचालित होने वाले घोड़े और खच्चर और उनके संचालकों की जांच की जा रही है ताकि यात्रियों की सुरक्षा को किसी तरह से समझौता ना हो।
1: त्योहारी सीजन में रेलवे ने गुड न्यूज दी है। पर्व त्योहारों के अवसर पर यात्रियों की ज्यादा भीड़ को देखते हुए रेलवे कई स्पेशल ट्रेन चला रहा है। पुणे, मुंबई, अहमदाबाद, वलसाड़, अजमेर, जोधपुर और कोटा से स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जा रहा है ताकि लोग आसानी से अपने घर पहुंच सके।
0: एशियन गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल जीतने वाली बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन का गुवाहाटी में अभिनंदन किया गया। असम सरकार, असम ओलंपिक संघ, बॉक्सिंग संघ और अन्य संगठनों ने उन्हें सम्मानित किया।
1: गुजरात के अमरेली जिले में एक ही दिन शेरनियों ने कुएं में गिरने की दो अलग अलग घटनाएं सामने आई हैं। जाफराबाद के बाबरकोट और धारी के वीरपुर गांव में वन विभाग ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर दोनों शेरनियों की जान बचाई।
0: पूर्वी चीन के अनहुई प्रांत में शियानयू पहाड़ पर बादलों के बीच प्रकृति की सुंदरता की शानदार झलक सामने आई है और पेड़ों से ढकी ढलानों और लकड़ी के रास्तों के आसपास तैरते बादलों के नजारों ने सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। सैलानी इस नजारे को कैमरे में कैद करते हुए नजर आए।

0: और शुभ समाचार की शुरुआत एफओजे के साथ आपको सीधे हिंडन एयरबेस लिए चलते हैं, जहां भारतीय वायुसेना का 94वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इंडियन एयरफोर्स की स्थापना आज ही के दिन साल 1932 में हुई थी। इस बार भारतीय वायुसेना दिवस की थीम है भारतीय वायुसेना अचूक अभेद सटीक। इस समारोह के दौरान भारतीय वायुसेना के फाइटर प्लेन्स और दूसरे सैन्य हथियारों को प्रदर्शन भी किया जा रहा है।
1: न हाथ एक अस्त्र हो न अन्य वीर वस्त्र हो, हटो नहीं डरो नहीं बढ़े चलो
0: रहे। देखिए इंडियन एयरफोर्स स्टेशन पर विमानों की प्रदर्शनी हो रही है। आप देखिए किस तरह से जवान जो हैं वो परेड करते हुए नजर आ रहे हैं और राफेल सुखोई तेजस इसमें शामिल हैं। वायु वीरों का शौर्य प्रदर्शन यहां लगातार जारी है। आज के दिन हिंडन एयरबेस पर एयर शो दिखाया जाता है। वायुसेना का 94वां स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है। तो इस बार भारतीय वायुसेना दिवस की थीम है भारतीय वायुसेना अचूक अभेद सटीक। इस समारोह के दौरान भारतीय वायुसेना के फाइटर प्लेन्स और दूसरे सैन्य हथियारों को भी प्रदर्शित किया जा रहा है। अब देखिए किस तरह से परेड लगातार जारी है और ये नजारा है हिंडन एयरबेस का, वायुसेना का 94वां स्थापना दिवस के भव्य झलके हम आपको दिखा रहे हैं।
2: तो चलिए अब वायुसेना का 94वां स्थापना दिवस है, इसकी भव्य झलक आपके सामने दिखाते हैं। हिंडन एयरबेस पर भव्य कार्यक्रम अभी जारी है, तो वहीं MI-17 4 हेलीकॉप्टर फ्लाईपास से शुभारंभ हुआ है। आपको बता दें राफेल और सुखोई 30 MKI तेजस के फ्लाईपास से अब आसमान गूंजने वाला है।
0: तो इस अवसर पर आकाश और ब्रह्मोस मिसाइल की झलक भी देखने को मिलेगी। वायुवीरों के इस शौर्य प्रदर्शन में भारतीय वायुसेना के रणनीतिक कौशल की झलक भी देखने को मिल रही है
2: और इस दौरान महिला एरोबेटिक टीम भी अपने स्किल्स का प्रदर्शन करेंगी और साथ ही IAF हेरिटेज फ्लाइट का एयर डिस्प्ले भी होने जा रहा है।
0: खास बात यह है कि इंडियन एयरफोर्स ड्रमर्स टीम का म्यूजिकल प्रेजेंटेशन भी इस कार्यक्रम का हिस्सा है। इस बार इंडियन एयरफोर्स डे की थीम है अचूक अभेद और सटीक।
2: और IAF की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 को हुई थी और आज भारत की वायुसेना अपना 94वां स्थापना दिवस मना रही है। आज भव्य प्रस्तुतियां देखने को मिलने वाली हैं, हेलीकॉप्टर्स हवा में करतब दिखाते हुए दिखाई देंगे और अपना शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं, जिस पर देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर की नजरें टिकी रहने वाली हैं। आज परेड से लेकर तमाम करतब तक दिखाई देने वाले हैं। आज आपको बता दें राफेल और सुखोई भी हवा में प्रदर्शन करते हुए नजर आने वाले हैं।
0: तुम्हारी संवाददाता शिवानी शर्मा हमारे साथ इंडियन एयरफोर्स से जुड़ रही हैं। किस तरह का माहौल है, सुबह 8 बजे से कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है शिवानी, आज की जो थीम है वो भी बेहद अलग है और जो थीम सॉन्ग है वो भी बेहद अलग है, जरा उसके बारे में बताइए।
3: देखिए भारतीय वायुसेना अपने स्थापना के 94 साल का ये समारोह मना रहा है और हिंडन एयरवेज में ये जश्न शुरू हो चुका है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरह से एक भव्य परेड का आयोजन किया गया है। और बता दूं कि यहां पर दो हिस्सों में ये समारोह है। पहला जो आप परेड देख रहे हैं, जिसमें पहली बार जो शक्ति टीम है भारतीय वायुसेना की महिला वॉरियर्स की, वो यहाँ पर खास ड्रिल करती हुई दिखाई दे रही है। उसके अलावा जो ड्रमर्स ड्रिल है उसे भी शामिल किया गया है। और जो दूसरा हिस्सा है वो जो स्टैटिक डिस्प्ले होता है, यानी कि बहुत सारे वायुसेना के फाइटर्स, चाहे वो ब्रह्मोस मिसाइल हो, चाहे वो रफाल जेट्स हो, Su-30 MKI हो, तेजस हो, जो भारत में बनने वाला अपना स्वदेशी फाइटर है, उन सबको स्टैटिक डिस्प्ले पे रखा गया है। यानी कि जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं वो देख सकेंगे कि भारतीय वायुसेना का शौर्य और पराक्रम और ऑपरेशन सिंदूर जैसे जो कठिन ऑपरेशंस होते हैं, जो कॉम्प्लेक्स मिशंस होते हैं, उनमें किस तरह से फाइटर जेट, कौन कौन से फाइटर जेट्स इस्तेमाल होते हैं, उनको नजदीक से देखने का ये मौका होता है। और वाकई में जो पराक्रम है और जो शौर्य है उसके 94 साल पूरे हुए हैं। अलग अलग जो लड़ाइयां रही, चाहे वो 1971 की लड़ाई हो, कारगिल की लड़ाई हो, या फिर हमने सबसे रिसेंट एग्जाम्पल ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि किस तरह से भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस के जरिए आतंक के अड्डों को तबाह किया, तो उन सब की वानगी यहाँ पर दिखाई देगी। साथ ही भविष्य के लिए कैसे तैयारी की जा रही है, जो लॉयटरिंग मिनिशन है उनको यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है, जो भविष्य में किस तरह से इस्तेमाल हो रहे हैं, कामिकाजी ड्रोन है और तमाम दूसरे एयर फाइटर्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। साथ हेलीकॉप्टर का यहाँ पर फ्लाईपास्ट होगा, जो अलग से एक फ्लाईपास्ट होता था
4: अब
3: वाराणसी के अंत में, जहाँ पर सारे फाइटर्स आसमान में अलग अलग फॉर्मेशन में दिखाई देंगे।
2: जी बिल्कुल शिवानी, आज का दिन बेहद खास है और आज भारत अपना 94वां स्थापना वायुसेना का स्थापना दिवस मना रहा है। ऐसे में इसकी थीम जो है वो इसे कैसे खास बनाती है, कैसे हर बार से इसे अलग बनाती है?
3: देखिए, इस बार की जो थीम है वो है भारतीय वायुसेना अभेद्य, अचूक और सटीक। तो हम देखते हैं कि किस तरह से जो अलग अलग ऑपरेशंस होते हैं वहां पर किसी भी तरह की किसी गलती, किसी चूक की कोई गुंजाइश नहीं होती है। और हाल ही में हमने देखा जो प्रेसिशन स्ट्राइक्स हुए, वो प्रेसिशन स्ट्राइक्स कैसे सटीकता दिखाते हैं कि किसी भी सिविलियन को किसी भी तरह के कोलैटरल डैमेज को किए बिना अपने टारगेट्स को हासिल कर सकती है भारतीय वायुसेना। और यही वो प्रेसिशन है, यही वो अचूक और सटीक की थीम है जिसमें हम देख रहे हैं कि भारतीय वायुसेना आगे बढ़ रही है, किस तरह से अपनी क्षमताओं को बढ़ा रही है, किस तरह से अलग अलग रेंज की जो मिसाइल सिस्टम्स हैं वो अपनी फाइटर फ्लीट में शामिल कर रही है। और साथ ही साथ स्किल बेहद अहम है, कौशल बहुत अहम है, मैन बिहाइंड मशीन बेहद अहम है। तो किस तरह से ये ट्रेनिंग होती है, कैसे पायलट्स लगातार ट्रेन करते हैं, चाहे कोई लड़ाई की सिचुएशन ना भी हो लेकिन खुद को हर वक्त तैयार रखते हैं किसी भी तरह की परिस्थिति के लिए। और यही थीम है अचूक अभेद्य, यानी आपने देखा कि जब ड्रोन जा रहे थे पाकिस्तान की तरफ से तो कैसे एक अभेद्य आकाशीय डिफेंस सिस्टम में तब्दील हो गया भारतीय वायुसेना की आकाश मिसाइल जो डिफेंस सिस्टम है, उसने कैसे एक एक ड्रोन को वहां पर काउंटर किया, किसी भी खतरे को भारत की तरफ आने नहीं दिया। तो ये अभेद्य है, अचूक है और जिस तरह से हम देख रहे हैं प्रिसिशन स्ट्राइक्स होती हैं, ये सटीक भी है। तो अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करता हुआ ये थीम वाक्य है जो इस बार भारतीय वायुसेना ने चुना है।
0: शिवानी, इस बार ये जो दिवस है अपने आप में खास इसलिए भी हो जाता है कि ड्रमर्स की भी एक अलग से जो टीम है वो आई है और महिला एरोबेटिक्स की जैसे आपने बात की वो भी इस बार शामिल है, तो उसके बारे में भी जरा जानकारी दें।
3: जी, तो पहली बार ये जो एक ड्रमर्स का ड्रिल है उसको शामिल किया जा रहा है भारतीय वायुसेना के इस भव्य समारोह में। ये पहला मौका है जब इस तरह की एक ड्रमर्स ड्रिल है और जो महिलाओं की शक्ति यूनिट है वो दिखा रहा है कि कैसे भारतीय वायुसेना में हर भूमिका में महिलाओं को बराबर का जो हिस्सा है वो दिया जा रहा है। और ये जो राइफल ड्रिल होती है ये दिखाती है कि आपके अंदर किस तरह से डिसिप्लिन है, अनुशासन है, आप कैसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। और ये जो परेड ग्राउंड पर आपको दिखाई देता है कोऑर्डिनेशन, इसी तरह का कोऑर्डिनेशन

0: जमीन से मीलों पर आसमान में भी दिखाई देता है। तो आपको दिखाया जाता है कि किस तरह से अनुशासन के जरिए, कौशल के जरिए, ट्रेनिंग के जरिए और अथक मेहनत के जरिए इस तरह की जो स्किल है इसको प्राप्त करते हैं भारतीय वायुसेना के जो वायुवीर हैं और इसमें महिलाएं भी अब पीछे नहीं हैं।
1: जी शिवानी, आज का जो समारोह है उस पे देश की नहीं बल्कि दुनिया की निगाहें टिकी रहने वाली हैं। आज कौन से प्रमुख

0: खास तौर पे हमारे जो पड़ोसी हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो और या फिर चीन हो, उनकी खास नजर रहती है भारतीय वायुसेना के इस भव्य समारोह पर, क्योंकि वो एक शक्ति प्रदर्शन का भी मौका होता है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि ब्रह्मोस मिसाइल, जो भारत का गौरव है, उसको तो प्रदर्शित किया ही गया है बहुत ही प्रोमिनेंटली। उसके अलावा जो रफाल है, जो सबसे रीसेंट एडिशन है भारतीय वायुसेना के बेड़े में, उनको यहाँ पर रखा गया है। तेजस, जो भारत में बनने वाला अपना होम ग्रोन फाइटर जेट है, वो यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम, वो यहाँ पर रखा गया है। इसके अलावा आप देखिए कि शॉर्ट रेंज लॉयटरिंग मिनिशन, जो कामिकाजी ड्रोन जिसे हम कहते हैं, जिसका लगातार प्रोक्योरमेंट भी हो रहा है, वो यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। इसके अलावा 230 MKI, जो भारत की जो फाइटर स्क्वाड्रन फ्लीट जो है उसका सबसे बड़ा हिस्सा है, 272 ये विमान थे जो भारत ने प्रोक्योर किए थे। हालांकि इसमें से कुछ एक्सीडेंट में खत्म हुए हैं, लेकिन 12 दूसरे 230 MKI को शामिल किया जा रहा है। तो सबसे बड़ा जो हिस्सा है हमारी फाइटर फ्लीट का फिलहाल, वो 230 MKI है, उसे भी यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। उसके अलावा रफाल हैं और जैगुआर जो फाइटर जेट्स हैं हमारे, जो 4 दशक से ज्यादा से हम भारतीय वायुसेना इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको यहाँ पर रखा गया है। तो तमाम फाइटर और तमाम मिसाइल सिस्टम, हथियार, वो सब यहाँ पर प्रदर्शित किए गए हैं। तो भारतीय जो वायुसेना है, उसका कौशल और किस तरह से भविष्य के लिए वो तैयार कर रही है अपने आप को, वो सब कुछ यहाँ पर दिखाई
1: दे रहा है। शिवानी, डिफेंस की अगर बात करें, का खास फोकस इस बार रखा गया है, क्या क्या नई टेक्नोलॉजीज है जो इस बार इंक्लूड की गई है?
0: देखिए, बहुत तेजी से काम हो रहा है तकनीक के ऊपर। अगर हम भारतीय वायुसेना की बात करते हैं या फिर फोर्सेस की ही बात कर ले, तो चाहे वो ड्रोन हो, हमने देखा कि रूस और यूक्रेन में किस तरह से ड्रोन का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ। हाल ही में हमने देखा कि ईरान और इजराइल की लड़ाई में किस तरह से काउंटर मिसाइल सिस्टम जो है उनको इस्तेमाल किया गया, और अभी अमेरिका और ईरान के बीच में भी जो लड़ाई हुई, तो उसमें भी कैसे मिसाइल और काउंटर मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम खासतौर पर, उनकी तैनाती हुई। तो आप देखिए, आकाश एयर मिसाइल सिस्टम जो है, जो भारत में बनाई गई है, और अब पूरी दुनिया उसकी तरफ देख रही है, क्योंकि जिस तरह से हमने ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया है कि भारत में बनने वाली तकनीक, भारत में बनने वाले मिसाइल सिस्टम कितने सटीक बैठे, उन्होंने जो चीन के हथियार थे, चीन के डिफेंस सिस्टम थे, उनको किस तरह से नष्ट किया पाकिस्तान के भीतर, वो सब कुछ दुनिया ने देखा। तो जाहिर तौर पर अब भारत इन क्षमताओं पर और ज्यादा ध्यान दे रहा है, ड्रोन टेक्नोलॉजी हो, एयर डिफेंस सिस्टम हो। सुदर्शन चक्र के बारे में आप सभी ने सुना होगा कि किस तरह से इसे डेवलप किया जा रहा है। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को इसका ऐलान किया था कि भारत का अपना एयर डिफेंस शील्ड होगा, जिसको सुदर्शन चक्र नाम दिया जाएगा, तो इन सभी तकनीकों पर लगातार भारतीय वायुसेना काम कर रही है।
2: जी शिवानी, इसी के साथ ये भी जानकारी है कि 24 अक्टूबर से एयर शो आयोजित किया जा रहा है वाराणसी में, इससे जुड़ी क्या कुछ जानकारी, क्या जो ड्रोन आज प्रदर्शित किए जाएंगे वो उस वक्त भी देखने को मिलने वाले हैं?
0: तो याद होगा कि पिछले कुछ सालों में एक नए तरह से समारोह मनाया जा रहा है। पहले क्या होता था कि हिंडन में ही परेड होती थी और वहीं पर फ्लाई पास होता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में ये निश्चित किया गया कि देश के अलग अलग हिस्सों में इसे बढ़ाया जाए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस समारोह का हिस्सा बन सके। तो इसी कड़ी में फ्लाई पास अलग होने लगा पिछले कुछ सालों में। तो इस साल का जो फ्लाई पास होगा, जिसमें हम हवाई करतब देखते हैं, फॉर्मेशन देखते हैं अपने फाइटर जेट्स के, वो इस साल काशी में हो रहा है। तो पहली बार इस तरह का वहां पर एयर शो होगा, जिसमें अलग अलग फाइटर जेट फॉर्मेशन में आपको दिखाई देंगे, और ये जो होगा 24 और 25 अक्टूबर को होने वाला है। 22 तारीख को इसका फुल ड्रेस रिहर्सल होगा वहां पर, और 25 को एक बार फिर फ्लाई पास्ट होने वाला है। तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भारतीय वायुसेना पहुंचना चाहती है, और ये जो फ्लाई पास्ट जो हवा में फाइटर दिखेंगे।
2: जी बिल्कुल शिवानी, आप बने रहिए हमारे साथ। इसी बीच दर्शकों को एक अपडेट देते हैं, इससे जुड़ी हुई 94वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और उसकी भव्य झलक आपके सामने है। हिंडन एयरबेस पर भव्य कार्यक्रम जारी है। आपको बता दें, MI-17 हेलीकॉप्टर फ्लाई पास्ट से शुभारंभ हुआ।
3: तो रिहर्सल और परेड के दौरान हेलीकॉप्टर से तिरंगा फहराया जाएगा। महिला अधिकारियों ने भी विशेष ड्रिल का नेतृत्व किया है। इसके अलावा वाराणसी में भी 24 से 26 अक्टूबर के बीच गंगा के ऊपर एयर शो का आयोजन किया जाएगा। तो इस बार परेड और प्रदर्शनी में राफेल, सुखोई, तेजस और जगुआर जैसे फाइटर जेट्स के साथ साथ ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश मिसाइल सिस्टम को भी विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया है। तो ये तस्वीरें आप देखिए हिंडन एयरबेस से,
1: किस तरह

0: से आकाश ब्रह्मोस मिसाइल का प्रदर्शन होगा। इंडियन एयरफोर्स के रणनीतिक कौशल की झलक लगातार आप देख रहे हैं, किस तरह से जो वायु वीर हैं वो परेड करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। महिला एरोबेटिक टीम का भी आज प्रदर्शन होगा, तो वायु वीरों का शौर्य आप देख सकते हैं कि किस तरह से हिंडन एयरबेस में हेरिटेज फ्लाइट का एयर डिस्प्ले इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर। तो आज 94वां स्थापना दिवस इंडियन एयरफोर्स अपना मना रहा है, और साथ ही साथ आप देखिए ड्रमर्स टीम का म्यूजिकल प्रेजेंटेशन भी इसको खास बना रहा है। पहली बार है जब ड्रमर्स टीम का म्यूजिकल प्रेजेंटेशन पेश हो रहा है। तो हमारे साथ हमारी संवाददाता शिवानी लगातार जुड़ी हुई है। शिवानी, आपको बता नहीं सकते कितना इमोशनल मोमेंट है इस वक्त, क्योंकि मैं खुद एयरफोर्स इंडियन की स्टूडेंट रही हूं और हर साल हमने परेड देखी है लगातार 12 साल। और जैसे कि आपने बताया कि पहले सिर्फ और सिर्फ इंडियन एयरफोर्स में ही परेड होती थी, लेकिन अब जो है बहुत अलग हो गया है और साल भर साल जो है वो नई चीज एड ऑन होती रहती है। तो आज का टाइम टेबल आपसे समझना चाहती हूँ, 8 बजे से इसकी शुरुआत हुई है और क्या टाइम टेबल रहने वाला है आगे?
1: कैप्टन गुरविंदर, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, बहुत ही भावुक कर देने वाले पल होते हैं, क्योंकि जब हम किसी ऑपरेशन के बारे में जानते हैं तो उतना नजदीक से अपने एयर वॉरियर्स को नहीं देख पाते। जो भी कुछ खबरें आती हैं समाचारों में उससे ही समझ पाते हैं, लेकिन एयरफोर्स डे एक ऐसा मौका होता है न सिर्फ उनके तरफ अपना आभार व्यक्त करने का, उन्हें नजदीक से देखने का, अपने एयर असेट्स को देखने और पहचानने का, और उनसे इंस्पायर होने का भी। बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे युवा होंगे जो इस वक्त एयरफोर्स परेड को देख रहे होंगे, और वो उनका लक्ष्य होगा कि वो भी एक दिन देश की सेवा भारतीय वायुसेना का हिस्सा बनकर करें, तो उनके लिए भी बहुत ही खास होता है। जहां तक पूरे टाइम टेबल की बात आप कर रही हैं, इसकी शुरुआत 8 बजे के आसपास हो गई थी जब डिग्निटरीज ने आना शुरू किया। एक एक करके जो सर्विस चीफ थे वो यहाँ पर आए, सबको अलग अलग सलामी दी गई, एयर चीफ ने परेड का निरीक्षण किया, ध्वज फॉर्मेशन में हेलीकॉप्टर्स ने भारतीय वायुसेना का लोगो यहाँ पर उड़ाया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि अलग अलग परेड हो रही है वहां पर, और जो ड्रमर्स टीम है वो यहाँ पर परफॉर्म करने वाली है। इसके अलावा जो शक्ति ड्रिल होगी, जो हम राइफल ड्रिल जैसे कहते हैं, वो यहाँ पर हो रही है, और साथ ही जो हमारे ट्रेडिशनल बहुत ही विंटेज एयरक्राफ्ट होते हैं, टाइगर मॉथ जिसे कहा जाता है, अब ये रेयर हो गया है। लगभग 8 दशक से ज्यादा ये हिस्सा रहा भारतीय वायुसेना का, शुरुआत में इसी से ट्रेनिंग ली जाती थी, तो उसको भी यहाँ पर फ्लाई पास्ट में शामिल किया गया है ताकि अपनी धरोहर को सम्मान दिया जा सके और ये दिखाया जा सके कि कितना सहेज कर इस एयरक्राफ्ट को रखा गया है कि आज भी ये उड़ान भर रहा है। तो ये अपनी जो धरोहर है, अपनी विरासत है, उसकी उसको वैल्यू करने का भी एक पल है जिसको यहाँ पर दिखाया जा रहा है।
2: बिल्कुल शिवानी, और आज तमाम भारतवासियों के लिए गर्व का दिन है, लेकिन अगर सामरिक दृष्टि से देखा जाए तो दुनिया भर को क्या संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है?
1: देखिए, पूरी दुनिया को यही संदेश देने का प्रयास किया जा रहा है कि अब तक भारत हमेशा, चाहे कोई भी युद्ध हो, उसने शुरुआत कभी नहीं की, हमेशा उसको अपनी रक्षा करने के लिए आगे बढ़ना पड़ा, और इसी कड़ी में हमेशा शांति प्रिय रहा भारत। अब पूरी तरह से तैयार है, अगर किसी भी तरह से कोई हमला हमारे देश पर होता है, चाहे वो पहलगाम का हमला हो, जहां पर आप देखिए कि पूरी तरह से एक अलग हमारी थियोरी हो गई कि अगर हमारे ऊपर कोई भी नजर डालेगा तो उसको इस तरह का जवाब दिया जाएगा कि हम आपको घर में घुसकर तबाह करेंगे, तो अब भारत इस तरह की फोर्सेस के साथ है जो ऑफेंसिव हैं, डिफेंसिव हैं, लेकिन ऑफेंसिव पोस्चर के साथ हैं कि अगर आपने हमारे किसी भी नागरिक को नुकसान पहुंचाया तो हम चुप नहीं बैठेंगे, इंतजार नहीं करेंगे, और हम तैयार हैं किसी भी तरह की चुनौती और भविष्य की किसी भी लड़ाई के लिए।
0: जूनियर वारंट ऑफिसर शिवानी, अगर गेस्ट लिस्ट की बात करें तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी पहुंचने वाले हैं, तो क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है जरा उसके बारे में बताएं।
1: देखिए, यहाँ पर जो सर्विस चीफ हैं वो मौजूद हैं, आप देख सकते हैं कि इस जो एयरफोर्स डे की परेड होती है उसकी जो मेजबानी होती है वो चीफ ऑफ एयर स्टाफ करते हैं, एयर चीफ मार्शल एपी सिंह जो वहाँ पर मौजूद है, उन्होंने परेड का निरीक्षण भी कर लिया है। उसके साथ आप देखिए जो तीनों सेनाएं हैं, चाहे वो भारतीय थल सेना हो जिसके चीफ जनरल धीरज सेठ वहां पर हैं, नौसेना के चीफ जो हैं वो यहां पर हैं, और आप तमाम फॉर्मर चीफ्स को यहाँ पर देखेंगी, बहुत सारे जो एयर चीफ्स हैं जो रिटायर हो गए हैं, सेवानिवृत्त हो गए हैं, वो यहाँ पर हिस्सा लेने आए हैं। तो ये सम्मान है उन सभी वेटरन्स का भी, और सर्विंग फैमिलीज भी यहाँ पर मौजूद हैं, ये सब यहाँ पर आई हैं, तो इन सबको इनवाइट किया जाता है और इसकी अध्यक्षता जो है चीफ ऑफ एयर स्टाफ करते हैं, वो यहाँ पर मौजूद है।
2: बिल्कुल शिवानी, आज गौरव का दिन है, शक्ति प्रदर्शन का दिन है और दिन भर इसी समारोह पर हमारी निगाहें टिकी रहने वाली हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए।
3: कृष्णन मास्टर वारंट ऑफिसर प्रदीप प्रसाद।
0: और इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको करवाते हैं पहाड़ों का श्रृंगार और आपको दिखाएंगे भी।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आ रही है।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
4: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
13: क्या आपकी वाणी से आपके धन और परिवार का भी संबंध है? क्या आपकी वाणी का असर आपकी आंखों पर भी पड़ता है? मधुर वाणी कैसे आती है जीवन में और वाणी को मधुर बनाने के क्या हैं उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
4: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
14: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
0: आज भारतीय वायुसेना मना रही है अपना 94वां स्थापना दिवस। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर वायुवीरों का शौर्य और पराक्रम, जवानों को किया गया सम्मानित।
2: गुजरात के जामनगर में नवरात्रि से पहले पारंपरिक अंगारा रास की तैयारियां जोरों पर, लोगों ने हाथों में जलती हुई मशाले लेकर किया पारंपरिक गरबा स्टेप्स, अंगारों पर नंगे पांव किया नृत्य का अभ्यास।
0: देशभर में दुर्गा पूजा की जोरदार तैयारी, ओडिशा के धर्मगढ़ में मां दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं बंगाली कारीगर, बड़ी संख्या में मिले मूर्तियों के ऑर्डर।
2: दशहरा, दिवाली और छठ पर घर जाने वालों के लिए गुड न्यूज आई, पुणे मुंबई अहमदाबाद और श्री गंगानगर के लिए चलेगी पूजा स्पेशल ट्रेन, कई अन्य जगहों के लिए चलेगी ट्रेन।
0: चीन के शियानलू पहाड़ का दिखा अद्भुत नजारा, बादलों के बीच बसा जन्नत, मनमोहक दृश्य देख मंत्रमुग्ध हुए सैलानी।
2: दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में निधन हुआ, गोवा में अंतिम सांस ली बॉलीवुड समेत पूरा देश गमगीन।

ब्रेक के बाद शुभ समाचार में आपका एक बार फिर से बहुत स्वागत है। और अब बात करते हैं शक्ति उत्सव की। देश भर में नवरात्र पर्व की तैयारी तेज हो चुकी है। दिल्ली से लेकर वैष्णो धाम तक माँ का दरबार सजने लगा है। अमरावती में माँ अंबा के दरबार को भव्य रूप से सजाया गया है, जहाँ पर नवरात्रि के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुँचने की उम्मीद है। वहीं गुजरात के अंबाजी में 68 भक्तों की अनोखी यात्रा आस्था और भक्ति का संदेश दे रही है। श्रद्धालु पूरे उत्साह के साथ माँ के दरबार की ओर बढ़ रहे हैं और प्रयागराज में रामलीला मंचन से पहले विधि विधान के साथ मुकुट पूजन किया गया। वहीं शक्ति उत्सव को लेकर भी मंदिरों और पूजा पंडालों में तैयारियां तेज हो गई हैं। इसके अलावा नवरात्रि से पहले वडोदरा में भी उत्सव का माहौल देखने को मिल रहा है। यहाँ पर लोगों ने धार्मिक और सांस्कृतिक उत्साह के साथ पर्व की तैयारियों का आगाज किया। आपको बता दें, गरबा राज के साथ प्री गरबा इवेंट में भक्तों ने मां की आराधना की। वहीं मुंबई के बाजार पारंपरिक परिधानों से सज गए हैं। चनिया चोली, साड़ियां, कुर्तों और पारंपरिक आभूषणों की खरीदारी के लिए बाजारों में लोगों की भीड़ लगती हुई दिखाई दे रही है।

0: देश भर में शक्ति उत्सव की तैयारियां जोरों पर है। मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा गढ़ी जा रही है। मां की कोई मूर्ति तैयार होने के बेहद करीब है तो किसी को अभी आकार दिया जा रहा है। कुछ मूर्तियों में रंग भरे जा रहे हैं। मूर्तिकार छोटी बड़ी हजारों मूर्तियों को गढ़ने और तराशने में व्यस्त हैं, ताकि वक्त पर मूर्तियों की डिलीवरी की जा सके। देश के अलग अलग हिस्सों में मूर्तिकार दिन रात लगकर प्रतिमाओं को तैयार करने में जुटे हुए हैं। कुछ परिवार और मूर्तिकार ऐसे भी हैं जो सालों से माँ दुर्गा की प्रतिमाएं तैयार कर रहे हैं।
1: मूर्ति का काम करते करते हमारा 65 साल हो गया। यही काम में छोटा उम्र से ही काम शुरू किया और प्रभार यहाँ पर 50 साल है। और मूर्ति काम में मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट और क्या है, ये पैसा अपन ज़्यादा कमाया नहीं इसमें, हमारा रोजी रोटी चल गया, लेकिन मन को बहुत शांति मिला, वो और कोई काम में नहीं मिला मेरे को।
0: इन प्रतिमाओं का पारंपरिक स्वरूप ही इनकी खास पहचान है। शुरुआती दौर में बड़ी संख्या में कारीगर प्रतिमाओं का ढांचा बनाने और मिट्टी लगाने का काम करते हैं। इसके बाद प्रतिमाओं की फिनिशिंग, रंगाई और श्रृंगार का काम शुरू होता है। रायपुर की इस कार्यशाला में माँ की हर प्रतिमा में कला, पारंपरिक शैली की एक अनूठी और गहरी छाप दिखती है। ऑर्डर के हिसाब से ही माँ का स्वरूप तैयार किया जा रहा है, जिसमें मूर्तिकार की कल्पना और कार्यकुशलता की छाप भी देखने को मिल रही है।
2: यहाँ करीबन 2 साल से मूर्ति बना रहा हूँ और यहाँ की मूर्ति उड़ीसा, मुंगेली, छत्तीसगढ़ के अन्य जिले में भी जाती है। बार खास ये है कि कस्टमर के चॉइस के हिसाब से बना है। कुछ कुछ हम लोग भी अपना क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, कुछ कुछ अपना भी डाल रहे हैं और कस्टमर भी ले के आ रहे हैं मूर्ति, इस टाइप का बनाओ, इस टाइप का वो करो, ऐसे टाइप का हो रहा है।
0: दुर्गा पूजा के आरंभ होने में अब बहुत कम समय रह गया है, इसीलिए कारीगर तेजी से काम पूरा करने में जुटे हुए हैं। मूर्ति निर्माण के पीछे की उनकी महीनों की मेहनत बस इस बात पर टिकी है कि भक्तों को उनकी बनाई मूर्ति पसंद आए, माँ का स्वरूप जो उन्होंने गढ़ा है वो श्रद्धालु के मन में बस जाए।
3: तो मेहनत का फल ही होता है कि कोई हमको बोल दे कि आपका मूर्ति बहुत सुंदर हुई है, तो हम लोगों का दिल गदगद हो जाता है, ताकि हाँ हमारा मेहनत रंग लाया। हम लोग मूर्ति कई रेट से कम ज़्यादा होता है तो हम लोग उसमें उतना फोकस नहीं करते, लेकिन जितना कोई बोल दे कि आपका मूर्ति बहुत सुंदर है तो हमारा मन बहुत ज़्यादा उत्साहित होता है कि और कुछ राय में हम करेंगे।
0: कलाकारों और मूर्तिकारों की इस अथक मेहनत ने उत्सव के माहौल को और भी खास बना दिया है। यही कारण है कि देश के कोने कोने में दुर्गा पूजा का उत्सव चरम पर पहुँच चुका है। आने वाले दिनों में इसमें और इजाफा होने की उम्मीद है। महेंद्रगढ़ से धीरेंद्र विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: नवरात्रि का इंतजार अब खत्म होने वाला है। शहर शहर मां का दरबार सजने वाला है। अमरावती में अंबा माता के दरबार को इस खास पर्व के लिए भव्य तरीके से तैयार किया गया है। 9 दिनों तक यहां धार्मिक अनुष्ठानों के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। मंदिर परिसर से लेकर आसपास के बाजार तक नवरात्रि की रौनक आपको दिखाई देगी।

0: रंग बिरंगी रोशनी से माता का भवन जगमगा रहा है। मंदिर का कोना कोना फूलों की खुशबू से महक उठा है। पूरा दरबार शारदीय नवरात्रि के रंग में रंग चुका है। अमरावती में ये विदर्भ की कुल स्वामिनी अंबा माता का दरबार है, जहां शारदीय नवरात्र को लेकर तैयारियां अब अंतिम दौर में हैं। मंदिर को खास तौर से सजाया गया है और माता के दर्शन के लिए भक्तों के स्वागत की तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं।
1: शारदीय नवरात्र उत्सव के चलते जो है हर देवी के मंदिर में जो है अब तैयारियां शुरू हुई है। हम फिलहाल है विदर्भ की कुल स्वामिनी अमरावती की माँ अम्बे के इस मंदिर में, जहाँ पर आप देख सकते हो कि मंदिर को जो है पूरी तरीके से लाइटिंग से सजाया है। यहाँ पर पूरी तरीके से रोशनाई शुरू कर दी है।
0: मंदिर की साफ सफाई और रंग रोगन के साथ माता के सोने चांदी के आभूषणों को भी चमकाया गया है। माता के श्रृंगार और आरती की तैयारियों के साथ मंदिर के बाहर भी नवरात्रि का रंग नजर आने लगा है। प्रसाद और पूजा सामग्री की दुकानें सज गई हैं। नवरात्र के पहले दिन सुबह होते ही माता के दरबार में अनुष्ठान का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सबसे पहले विधि विधान से माता का भव्य अभिषेक होगा। इसके बाद सोने चांदी के आभूषणों से माता का दिव्य श्रृंगार किया जाएगा और फिर आरती के साथ माँ के जयकारों के साथ पूरा मंदिर गूंज उठेगा।
2: 11 तारीख रविवार सुबह 4:30 बजे से श्री अम्बा देवी का सहस्त्र धारा महाअभिषेक प्रारंभ होगा। धर्म ध्वजारोहण जो साल में 2 बार होता है, दोनों प्रतिपदाओं को होता है, वो उस दिन होगा।
0: विदर्भ ही नहीं, महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु अमरावती पहुंचते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में यहां भक्तों की भीड़ बढ़ती है और माता का दरबार जयकारों से गूंज उठता है।
2: भक्तों के लिए दर्शन के लिए मंदिर रोज सुबह 6 बजे से तो रात को 11:30 तक खुला रहेगा। पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए एक विस्तीर्ण मंडप का हमने प्रावधान किया, मंडप वहां पर हमने खड़ा किया है और सभी भक्तों को, महिला एवं पुरुष भक्तों को, मंदिर की जो पूर्व दिशा है उस तरफ से प्रवेश मिलने वाला है।
0: 9 दिनों तक अम्बा माता का ये दरबार भक्ति और आस्था का केंद्र बना रहेगा। हर तरफ एक ही आस होगी, माँ के दर्शन हो, आशीर्वाद मिले और घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। अमरावती से धनंजय सावले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: नवरात्र यानी शक्ति की आराधना और माँ दुर्गा की भक्ति का पर्व, और गुजरात में इस भक्ति का रंग गरबा और दांडिया के जरिए दिखाई दे रहा है, जहाँ पर गरबा के हर कदम में माँ की आराधना है और हर ताल में शक्ति की उपासना है। वडोदरा में विकसित भारत संकल्प गरबा की थीम पर भव्य प्री गरबा इवेंट का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। पारंपरिक गरबा की धुन पर घूमते हुए कदमों के बीच माँ शक्ति की आराधना भी हुई और विकसित भारत के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने का संदेश भी दिया गया। तो ये दो तस्वीरों के जरिए मैं आपको दिखा रहे हैं किस तरह से रंग बिरंगे परिधानों में गरबा इवेंट यहाँ पर जारी है। दूसरी ओर गरबा रास में माँ दुर्गा की यहाँ पर पूजा अर्चना के साथ विकसित भारत के संकल्प के साथ इस समारोह का आयोजन किया जा रहा है। तो कुछ इस तरह से शक्ति उत्सव को मनाने की तैयारी की जा रही है, उसकी एक झलक देश भर के अलग अलग हिस्सों से हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग उमड़ रहे हैं गरबा इवेंट में हिस्सा लेने के लिए। रंग बिरंगे परिधान पहने हुए लोग दांडिया करते हुए, गरबा करते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ एक तरफ माँ की भक्ति में डूबा गरबा रास है, तो वहीं दूसरी तरफ देश के विकास का संकल्प, गरबा की सुरीली तान, पारंपरिक परिधानों और उत्साह से भरे कदमों के बीच आस्था, संस्कृति और राष्ट्र निर्माण का संदेश एक साथ नजर आया। तो देखिए कैसे शहर शहर शारदीय नवरात्रि को लेकर जोरदार तैयारियां चल रही हैं। गरबा रास यहाँ किया जा रहा है, डांडिया करते हुए पारंपरिक वेशभूषा में आप देखिए कलाकार कितने मस्त होकर यहाँ नृत्य पेश कर रहे हैं। और ये नज़ारा है गरबा डांस का वडोदरा का, जहाँ लोग अभी से गरबा का रास करते हुए नजर आ रहे हैं। बस इंतज़ार जो है वो 2 से 3 दिनों का है, जब गरबा की शुरुआत हो जाएगी, डांडिया खेला जाएगा और शारदीय नवरात्र के वो पावन 9 दिन आ जाएंगे।

तो वहीं वडोदरा का ये आयोजन नवरात्र के उल्लास के साथ मां की आराधना और विकसित भारत के संकल्प का खूबसूरत संगम बन गया। देखिए किस कदर बड़ी संख्या में लोग यहां पर गरबा इवेंट में शामिल होने के लिए पहुंचे और इसका यहां पर जो थीम था वो रखा गया था विकसित भारत। इसके संकल्प का खूबसूरत संगम यहाँ पर देखने को मिला है। एक ओर शक्ति उत्सव मनाया जा रहा है, दूसरी ओर विकसित भारत के संकल्प के साथ लोग इसमें शामिल होते हुए नजर आ रहे हैं। मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं।

0: तो गुजरात के जामनगर में नवरात्रि से पहले पारंपरिक अंगारा रास की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। इस अनोखी परंपरा के तहत युवा जलते हुए अंगारों के बीच रास का अभ्यास कर रहे हैं। अंगारों से उठती गर्मी के बीच युवाओं की शक्ति आराधना ही है। नवरात्रि के दौरान होने वाले इस पारंपरिक रास को लेकर युवाओं में खासा उत्साह है और पूरी तैयारी के साथ वो अभ्यास में जुटे हुए हैं।
1: और चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ आवाजें वक्त के साथ खामोश हो जाती हैं, लेकिन उनकी गूंज हमेशा हमारे साथ रहती है। नाना पाटेकर हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन वो बेमिसाल अदाकारी की ऐसी विरासत पीछे छोड़ गए हैं जो अभिनय की दुनिया को खामोश अब हमेशा के लिए रोशन कर देगी। बॉलीवुड का ये महान अभिनेता महज किरदार नहीं निभाता था, उसे जीता था, महसूस करता था। और शायद यही वजह है कि उनके किरदार उनकी शख्सियत की तरह ही दर्शकों के दिलों पर हमेशा राज करेंगे, अमर रहेंगे।

0: सिनेमा के पर्दे पर जब कोई किरदार बोलता है तो सिर्फ संवाद नहीं होता बल्कि उस किरदार और उसकी आवाज को महसूस किया जाता है। उन्हीं चुनिंदा कलाकारों में से एक है नाना पाटेकर, जिनके निभाए किरदार ही उनकी पहचान बन गए। फिर चाहे परिंदा का खौफ हो, क्रांतिवीर का आक्रोश, अब तक छप्पन का रॉब, वेलकम का उदय शेट्टी, हर किरदार में नाना ने अपनी ऐसी छाप छोड़ी जो पर्दे पर कहानी खत्म होने के बाद भी दर्शकों के जहन में जिंदा है। जब गुस्सा दिखाना होता था तो नाना पाटेकर की आंखें ही काफी थी, जब दर्द दिखाना होता था तो उनकी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती थी, और जब हंसाना होता था तो वही नाना पाटेकर उदय शेट्टी बनकर दर्शकों को हंसने पर मजबूर कर देते थे। 75 साल की उम्र में नाना पाटेकर हमें अलविदा तक कह गए, लेकिन वो हमेशा हमारी यादों में साथ रहेंगे। उनके करियर को आगे आपको विस्तार से बताएं तो नाना पाटेकर का पूरा नाम विश्वनाथ पाटेकर है। फिल्मी दुनिया में उन्हें लोग प्यार से नाना पाटेकर के नाम से पुकारते हैं।
1: नाना पाटेकर का जन्म महाराष्ट्र में 1951 में हुआ था और बड़े होते होते उन्होंने अपनी कला को पहचाना और थिएटर में हिस्सा लिया।
0: इसके बाद 1978 में गमन फिल्म से फिल्मी करियर की शुरुआत उन्होंने की। हालांकि इसके बाद उन्होंने शुरुआती दौर में हिंदी के साथ साथ कई मराठी फिल्मों में भी काम किया।
1: तो वहीं 1980 के दशक में अंकुश, प्रतिघात, अंधा युद्ध, मोहरे और सलाम बॉम्बे फिल्मों में उन्होंने गंभीर और दमदार अभिनेता के रूप में फिल्मी दुनिया में अपनी पहचान बनाई।
0: इसके बाद 1989 में परिंदा उनके करियर का बड़ा मोड़ साबित हुई। फिल्म में गैंगस्टर की भूमिका के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कार से नवाजा गया। फिर क्रांतिवीर 1994 में प्रताप नारायण तिलक का किरदार उनके करियर की सबसे यादगार भूमिकाओं में शामिल हुआ,
1: और इस भूमिका के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और फिल्म फेयर सहित कई सम्मानों से नवाजा गया।
0: और करीब 5 दशक के फिल्मी सफर में नाना पाटेकर ने हिंदी, मराठी और अन्य भाषाओं में 60 से ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया।
1: जाहिर है नाना पाटेकर का सफर यही खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उनके जैसे कलाकार भले ही जिंदगी के रंगमंच से विदा हो जाएं, मगर अपने किरदारों में हमेशा जिंदा रहते हैं, दर्शकों के दिलों में हमेशा धड़कते रहते हैं।

0: क्या आपकी वाणी से आपके धन और परिवार का भी संबंध है? क्या आपकी वाणी का असर आपकी आंखों पर भी पड़ता है? मधुर वाणी कैसे आती है जीवन में और वाणी को मधुर बनाने के क्या हैं उपाय, जानिए मेरे साथ सिर्फ किस्मत कनेक्शन में।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है।
8: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
9: आज भारतीय वायुसेना मना रही है अपना 94वां स्थापना दिवस। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर वायुवीरों का शौर्य और पराक्रम, जवानों को किया गया सम्मानित। गुजरात के जामनगर में नवरात्रि से पहले पारंपरिक अंगारा रास की तैयारियां जोरों पर, लोगों ने हाथों में जलती हुई मशाले लेकर पारंपरिक गरबा स्टेप्स किए, अंगारों पर नंगे पांव किया नृत्य का अभ्यास। देश भर में दुर्गा पूजा की जोरदार तैयारी, ओडिशा के धर्मगढ़ में मां दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दे रहे हैं बंगाली कारीगर, बड़ी संख्या में मिले मूर्तियों के ऑर्डर। दशहरा, दिवाली और छठ पर घर जाने वालों के लिए आई गुड न्यूज। पुणे, मुंबई, अहमदाबाद और श्रीगंगानगर के लिए चलेगी पूजा स्पेशल ट्रेन, कई अन्य जगहों के लिए चलेगी ट्रेन। चाइना के शियांडू पहाड़ का दिखा अद्भुत नजारा, बादलों के बीच बसा जन्नत, मनमोहक दृश्य देख मंत्रमुग्ध हुए सैलानी। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में हुआ निधन, गोवा में अंतिम सांस ली बॉलीवुड समेत पूरा देश गमगीन।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
0: नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। व्यक्ति अगर अच्छे से बोले, उसकी वाणी मीठी हो, तो जीवन में बहुत सारे काम उसके बड़े आसानी से बन जाते हैं और बड़ी सारी मुश्किलें बड़ी आसानी से दूर हो जाती हैं। आखिर क्या करें ऐसा कि वाणी अच्छी हो, मधुर हो। आज बात करेंगे मीठी वाणी का वरदान कैसे मिले आपको। इसके अलावा बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 8 अक्टूबर 2026 दिन बृहस्पतिवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि, रात के 10:15 तक। नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, रात के 9:20 तक। चंद्रमा सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी पीली सरसों खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 8 अक्टूबर 2026 दिन बृहस्पतिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य देव विद्यमान हैं कन्या राशि में, बुध और शुक्र तुला राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में, मंगल और बृहस्पति कर्क राशि में तथा चंद्रमा और केतु फिलहाल विद्यमान हैं सिंह राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशि फल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं आपकी वाणी के बारे में। वाणी का ज्योतिष में किन ग्रहों से संबंध है पहले ये जानते हैं। किसी कुंडली का दूसरा भाव और इसका स्वामी वाणी को नियंत्रित करता है, वाणी को कंट्रोल करता है। इसके अलावा तीसरा भाव और आठवां भाव भी वाणी से संबंध रखता है। इन्हीं भावों से व्यक्ति की आर्थिक और पारिवारिक स्थिति भी देखी जाती है। इसीलिए आपकी जो वाणी है ये आपकी आर्थिक स्थिति से और पारिवारिक स्थिति से जुड़ी हुई है। वृषभ राशि और बुध, इसका सीधा संबंध होता है आपकी वाणी के साथ। और बुध मुख्यतः व्यक्ति को अभिव्यक्ति की, बोलने की, समझने की अद्भुत क्षमता प्रदान करता है। बृहस्पति डायरेक्टली तो वाणी को प्रभावित नहीं करता, लेकिन वाणी में वजन लाना, वाणी में गंभीरता लाना, मजबूत बात, वजनदार बात बोलना, ये बृहस्पति जीवन में ले आता है। वाणी पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन कर्क राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर की समस्या हल होगी, मन की चिंताएं दूर होंगी, आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, रिश्तों की समस्या पर ध्यान दें, अनावश्यक तनाव न पालें, वाणी और स्वभाव पर नियंत्रण रखें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मिथुन राशि, आर्थिक लाभ होने के योग हैं, कोई शुभ सूचना मिल सकती है, परिवार में शुभ कार्य होने के योग हैं, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, करियर में लाभकारी बदलाव होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पद प्रतिष्ठा का लाभ होगा, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि किसी आदमी के बोलने की आदतें, उसके वाणी की आदतें किन ग्रहों से प्रभावित होती हैं। पाप ग्रहों का अगर वाणी से संबंध हो, शनि का, राहु का, मंगल का, सूर्य का, केतु का, तो ये वाणी को खराब करता है। अगर बुध या बृहस्पति कुंडली में गड़बड़ हो तो ये भी वाणी को खराब करते हैं। वाणी को सबसे ज्यादा खराब करते हैं शनि और राहु। बुध और बृहस्पति का अच्छा होना वाणी को अच्छा बना देता है, वाणी को अच्छा कर देता है। जो आपकी वाणी का ग्रह है, सेकंड हाउस का जो स्वामी है, अगर वो शुक्र की राशि में बैठे या शुक्र के साथ संबंध हो, तब भी व्यक्ति की वाणी सामान्यतः अच्छी हो जाती है। वाणी पर हमारी चर्चा जारी है, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, कोई बड़ी समस्या हल होगी, धन लाभ की स्थिति बनेगी, आपके ग्रहों से आपके जीवन साथी को लाभ होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, यात्राओं से बचाव करें, स्वास्थ्य के लिए वहम ना पालें, खान पान का ध्यान रखें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। तुला राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, रिश्तों की समस्या दूर होगी, करियर में परिवर्तन की स्थिति बन रही है, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, कोई मनोकामना आपकी पूरी होगी, परिवार में शुभ कार्य होंगे, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब अगर आप अपने बोलने को, अपनी वाणी को मधुर बनाना चाहते हैं, अपनी किस्मत को चमकाना चाहते हैं, किस्मत को बेहतर करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? सुबह और शाम दोनों समय गायत्री मंत्र का जप करिए, कम से कम 27 बार सुबह शाम या 108 बार। अपने खान पान को शुद्ध रखिए, मांस मदिरा का प्रयोग करने से बचिएगा। महीने में एक बार पूर्णिमा आती है, पूर्णिमा का अगर आप उपवास रखें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। सलाह लेकर एक पीला पुखराज या एक पन्ना अगर आप धारण करें तो आपको लाभ होगा। और मान लिया मुंह से अपशब्द निकल गया, मुंह से खराब बात निकल गई, तो शिव शिव कृष्ण कृष्ण उसी समय कहें, ताकि उस वाणी का दुष्प्रभाव आपके ऊपर ना पड़े। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में सफलता मिलेगी, रुके हुए काम पूरे होंगे, चोट चपेट से बचाव करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, व्यर्थ का तनाव मत पालिए, जल्दबाजी में काम करने से बचें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कुंभ राशि, नया काम कर सकते हैं, सेहत अच्छी होती जाएगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, काफी मेहनत करनी पड़ेगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, आपके काम की प्रशंसा होगी, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। देखिए आपकी जो वाणी है वो जिस भाव से कुंडली से देखी जाती है वही भाव आपके परिवार का भी है, वही भाव आपके धन का भी है। तो अगर आप अपशब्द बोलेंगे, खराब वाणी का प्रयोग करेंगे तो आपको आर्थिक नुकसान होगा, आपके परिवार में दिक्कतें पैदा होंगी। दूसरा भाव आपकी आंखों का भी होता है, तो खराब वाणी का या गलत वाणी का प्रयोग करने से आपकी आंखों में भी समस्या आ सकती है। आप अगर अपनी वाणी को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो नियमित रूप से भगवान का नाम जपते रहिए। आपकी वाणी से अगर निरंतर भगवान का नाम चलता रहेगा, कोई मंत्र चलता रहेगा, तो उसकी पवित्रता आपकी वाणी पर रहेगी और उस पवित्रता की वजह से आपकी वाणी प्रभावशाली हो जाएगी। तो भगवान के नाम का जप, मंत्र का जप निरंतर करने से आपकी वाणी की समस्या दूर होगी, आपकी वाणी मधुर और प्रभावशाली बन जाएगी। अब वक्त हो गया है आपके भाग्य को बेहतर बनाने का, तो आइए जानते हैं कि भाग्य के लिए क्या है लकी टिप। पक्षियों को कभी भी पिंजड़े में कैद करके मत रखिएगा। अगर आप पक्षियों को पिंजरे में कैद करके

वार का सक्सेस मंत्र क्या है? प्रातः काल भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा, घर से निकलते समय उसमें से एक फूल अपने पास रख लीजिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।

0: पर और हम पर।
1: इस भयंकर कलिकाल में भी भगवान ऐसी मति बनाए रखे हैं कि उनके प्रति आस्था और श्रद्धा इतने लोगों की बनी हुई है। इस भयंकर कलिकाल में, चिंता के युग में भगवान का चिंतन करने वाले बहुत कम लोग होंगे। वर्तमान का युग कलयुग नहीं, छल युग चल रहा है। कलयुग है पर छल युग भी है, और एक नाम और इस युग को दिया जाए तो बुरा ना कहा जाएगा। छल युग के साथ ये मतलब युग चल रहा है। लोगों का मतलब यदि मजार पे भी पूरा हो तो वो जाने को देर ना करेंगे। भगवान को गाली देने में यदि काम चलता हो तो आदमी आज के जमाने में संकोच नहीं खाता है, दे देता। इस छलयुग और मतलब के युग में ये परख पाना बड़ा मुश्किल है कि कौन झूठा है और कौन सच्चा है, क्योंकि आज के जमाने में झूठों ने भी सच्चाई का मुखौटा लगा लिया। और जब झूठे सच्चाई का मुखौटा लगाएं तो बड़ा मुश्किल होता है कि सच्चा कौन है और झूठा कौन है। जर्मनी में एक बड़ा क्रूर शासक हुआ, उसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा, हिटलर। बड़ा क्रूर शासक हुआ, उसने लाखों लोगों को जलवा दिया, कई लाख लोगों को उसने जलवाया। उससे पता लगा कि लोग हमें मारने को तैयार हैं, तो उसने अपनी हम सकल के 12 लोग बनाए। हिटलर ने अपनी सकल के 12 लोग बनाए, पर उसे जिस व्यक्ति ने पकड़ा उसने बड़ी चालाकी के साथ पकड़ा, और वो पकड़ा एक चूक के कारण गया कि जब 12 उसके जैसे खड़े थे तो उसने बड़ी, जो पकड़ने वाला व्यक्ति है वो गया, उसने कहा कि ये 12 हम सकल बनाए तो बहुत अच्छे हैं पर इनमें एक चूक रह गई। तो जो असली हिटलर था वो बोला, क्या चूक रह गई? बोले, बस यही तो चूक रह गई, क्योंकि इन 12 लोगों में पहचान पाना हमें बड़ा मुश्किल है। तूने बड़े हूब हू बनाए, सब तेरे जैसे, तेरी कद काठी के लोग हैं, तेरे जैसे दिखने वाले लोग हैं। अब बड़ा कठिन हो रहा था, कई सालों से तू चकमा दे रहा था और पकड़ पाना मुश्किल था। तो उसने तरीका निकाला कि कैसे पकड़ा जाए। तो जब 12 हिटलर खड़े थे तो उसने बड़ी जोर से कहा कि हिटलर था तो बड़ा समझदार है, उसने हम सकल के 12 लोग बनाए, पर वो इन 12 लोगों को बनाते समय एक चूक कर गया। असली हिटलर तुरंत बोला, क्या चूक? बोले, यही तो चूक कर गया है, ये मैंपन की चूक जो है वो बड़ी खतरनाक। मैं और मेरा, यही तो आदमी तो निपटाता है। तुमने देखा नहीं बकरे की बलि क्यों दी जाती? क्योंकि बकरा मैं करता है, इसलिए कटता है। फिर तुम कहोगे कि फिर मुर्गा क्यों काटा जाता सबसे ज्यादा? क्योंकि वो लोगों को जगाता है, और जो आदमी जगाता है उसको तो काटा ही जाता है, क्योंकि लोगों को सोना पसंद है, जागना कहां पसंद है। तुमने देखा नहीं कितने लोग उन लोगों को गालियां देते हैं जो जगाने का काम करते। मेरे पागलों, इस मतलब के छल युग में तुम सब कुछ करना पर किसी संत का अपराध मत कर देना। भगवान का अपराध करोगे तो संत माफ करवा देगा, पर किसी भक्त का अपराध करोगे तो भगवान भी तुम्हें माफ ना करेगा। अगर तुमसे भगवान की चूक हो गई तो भक्त लड़कर, लाड़ लड़ाकर, प्रार्थना करके, उपासना करके, व्रत करके भगवान से तुम्हें माफी दिला देगा। पर यदि तुमसे भक्त की चूक हो गई, भक्त के प्रति अपराध हो गया, तो दुनिया में कोई तुम्हें क्षमा नहीं कर सकता है। मेरे पागलों, इसलिए भूल करके भी किसी भक्त की निंदा मत करना, भूल करके भी किसी संत की निंदा मत करना, भूल करके भी संत का अपराध मत करना। आज की बात में हम इतनी सी प्रार्थना आप लोगों से करने के लिए बैठे हैं। बात बहुत सीधी सी, प्रार्थना भी बहुत सीधी सी है कि पहले तो आज के युग में तुम्हें सावधान रहना, ये कलयुग नहीं है, छल युग है, छला जाएगा तुम्हें। भगवान के नाम पर भी छला जा सकता है, राजनीति के नाम पर भी छला जा सकता है, कहीं भी छला जा सकता है। पर यदि तुम स्वयं जागृत हो तो शायद कोई कितना भी छली व्यक्ति हो तुम बच पाओगे। और हम तो सीधी सी बात बोलेंगे, तुम्हें भरी लगे या बुरी लगे, अच्छी लगे तो स्वीकार करना, बुरी लगे तो मत करना, कौन सा हम तुम्हारे घर रोटी खाने आ रहे। बात बहुत सीधी सी है और हम सीधी ही बोलेंगे, या तो तुम भगवान को छोड़ो या भगवान पर छोड़ो, दो में से कोई एक रास्ता पकड़ो, तुम्हारा जीवन बदल सकता है। या तो तुम परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि को परमात्मा मानो, माता पिता और गुरु को भगवान मानो, या फिर अपने बनाए हुए पत्थरों को भगवान मानो, दो में से कोई एक रास्ता चुनो तो तुम्हारे जीवन में कोई चमत्कार हो सकता, वरना चमत्कार ना हो पाएगा। और मेरे पागलो, तुम्हें हम सीधी सी बात बताएं, परिक्रमा लगाने से, नारियल बांधने से, अर्जी लगाने से बालाजी खुश होंगे कि नहीं हमें नहीं पता, इतना हम कह सकते, इनके हो जाने से ये जरूर खुश हो जाएंगे। वरना आदमी तो तन से पूजा कर रहा, मनवा गया बाजार, और कैसे रीझे सांवरा, जुड़े न दिल के तार। सब तन से पूजा कर रहे, मन तो बाजार गया, और तुम तन से पूजा करो मन बाजार जाए तो परमात्मा ना रीझेगा। परमात्मा तो मन की देखता है, परमात्मा तो मन को देखता है। तुम तन को चाहे जितना चमका लो, तुम्हारा मन ना चमका तो परमात्मा खुश ना हो पाएगा। और मेरे पागलो, बालाजी को तुम लड्डू चढ़ाकर खुश नहीं कर सकते, बालाजी को अपना सुंदर मन चढ़ा करके जरूर खुश कर सकते हो। और तुम बालाजी को मिठाई चढ़ा के सोचो, हमारे पास लोग ऑफर लेके आते हैं कि हमारा काम हो जाए हम 5 किलो मिठाई चढ़ाएंगे, ठठरी के भरे, भगवान तुम्हारी मिठाई के भूखे बैठे। क्या वो मिठाई के लिए बैठा है? पहले ये तो विचार करो, मिठाई बनी काय से? खोआ से। खोआ काय से बना? दूध से। दूध कहां से आया? गाय अथवा भैंस से। और उसे बनाया किसने? भगवान ने। तो तुम भगवान की बनाई हुई वस्तु पर भगवान को ही चढ़ा के सोच रहे कि हम पुण्य कमा रहे। ये तो वही वाली बात हो गई कि पिछले साल हमने अपने जन्मदिन पे कहा कि नो गिफ्ट, एक ईंट दीजिए अस्पताल के लिए, हमें गिफ्ट नहीं चाहिए। और ईंटें आनी शुरू हुई, लोग एक एक ईंट लेकर आए, पहले दिन लगभग 2-3 हजार ईंट आ गई। हमें बड़ी खुशी हुई कि चलो लोग जागृत हो रहे। दूसरे दिन भी लाखों लोग आए हमारे जन्मदिन पे और ले ईंट चले आए। हमने सोचा ये तो गजब का जलवा है, 4-5 कमरों की जुगाड़ हो गई गुरु। लेकिन बाद में पता लगा ईंटें 3 हजार की 3 हजार। तो हम बड़े चौंके कि भाई ज्यों की त्यों ईंटें हैं और इतनी ईंटें। तो बोले आप यहां से ईंटें लेके उधर धरवाते हैं, लोग आते हैं वहीं से ईंटें उठा करके आपको चढ़ा जाते हैं। हमका वाह, क्या अद्भुत, क्या अद्भुत लोग हैं, हमारी ईंटें हम कोई चढ़ा गए। और एक आदमी तो गजब कर गया, दीवाल तोड़ के ईंट ले गया। नहीं नहीं, दीवाल बन रही थी और दीवाल तोड़ के लोग ईंट ले गए और हमको चढ़ा गए, सीमेंट हमारा बेकार गया। और हमसे कह रहे कि लोग ईंट लो, हम तो फूले ना समाए, लोग बड़े दयालु हैं, ईंट का दान कर रहे हैं। जब रात को हिसाब किताब जोड़ा गया तो पता लगा 3,000 की 3,000 और एक दीवाल ऊपर से और टूट गई। पता लगा कि भजन कीर्तन को बैठे ढोलक फूट गई। अच्छे भजन कीर्तन कराएं कि हम ही कीर्तन कराएं, हम ही झींका मंजवाएं, हम ही मंजीरा मंगवाएं, हम ही ढोलक बुलवाएं और हम ही भंडारा करवाएं और हम ही ढोलकिया फोड़वाएं। वही हाल हो गया भैया, अच्छे दानी लोग। हमने कहा ऐसे दान से तो बेहतर है गिफ्ट ही मंगा लेते, कम से कम फायदे में तो रहते। बात फायदे की या घाटे की नहीं है, बात व्यक्ति की ईमानदारी की है कि आदमी इतना ईमानदार है कि वो भगवान को भी धोखा देने से चूकता नहीं, गुरु को भी वो धोखा देने से चूकता नहीं। खैर, अपने लोग हैं, हमें क्या फर्क पड़ता है, तो फर्क हमें पड़ेगा भी क्या। और हम पढ़ने वाला है ही नहीं, इसलिए भी नहीं पढ़ने वाला कि जो है वो तेरा है या मेरा है क्या, जो हमें कोई फर्क पड़ेगा। आदमी को लगता होगा कि हमें कोई फर्क पड़े, हमें तो कोई फर्क ना पड़ता भैया। हम तुमसे भी कहेंगे यही मनोदशा मन में विचार करके रखो, कुछ भी लुट जाए तुम्हारे मन को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। क्या लुटेगा, वस्तुएं ही तो लुटेंगी, हम थोड़ी लुट जाएंगे। हम ना लुटें, दुनिया लुटती हो तो लुट जाए, सामग्री लुटती हो तो लुट जाए, तुम करोगे भी क्या, हमारे सामान को ही फेंकोगे, हमें थोड़ी फेंक पाओगे। और मान लो जो हमारे वाले हैं पूंछ वाले, वो रूठ गए तो तुम्हें ऐसा फेंकेंगे कि तुम उठ ना पाओ। मेरे पागलो, हम तुम्हें बहुत सीधी सी बात कहना चाह रहे हैं, परमात्मा वस्तु का भूखा नहीं है, परमात्मा तो प्रेम का भूखा है। बालाजी की कृपा पाने तुम आए हो, याद रखना बिना संघर्ष के कुछ प्राप्त होता भी नहीं। हमको भी कई रातें अंधेरे गुजारनी पड़ी, हमको भी कई दिनों तक भूखा रहना पड़ा, हमको भी दुत्कार सहनी पड़ी, धक्के खाए हमने भी, हमने भी धोखे खाए, धक्के खाए। आज भी हमारे ऐसे कई लोग हैं, आते हैं हमें गले लगाते हैं, भाई भाई भाई मित्र बताते, अब पीठ पीछे हमारी बुराई करते, और हम जानते भी हैं फिर भी हम कुछ ना कहते। जमाना ही ऐसा है, इस जमाने में हर चमकते हुए व्यक्ति के पीछे बड़ा अंधेरा रहा, पर दुनिया को सफलता दिखाई पड़ती है, मेहनत कभी नहीं दिखाई पड़ती। इसलिए मेरे पागलो, तुम घबराओ मत, ये दिन तुम्हारे अंधेरे के हैं तो तुम्हारी जिंदगी में भी उजाला आएगा, तुम्हारी जिंदगी में भी सवेरा होगा, तुम्हारा जीवन में भी इतिहास लिखा जाएगा। और जो तुम पर हंस रहे हैं तुम घबराओ मत, पकड़ लो इनके चरण को, जो तुम पर हंस रहे हैं वो तुम्हारे लिए तालियां भी बजाएंगे। कभी होगी उनकी कभी मजबूरी, तुम डटे तो रहो, तुम अड़े तो रहो, भगवान के घर देर है, अंधेर कहां। एक दुनिया का बड़ा बहुत अमीर आदमी हुआ, कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, बिल गेट्स। बड़ा रईस आदमी हुआ। उससे पत्रकारों ने पूछा कि आप रातों रात अमीर बन गए, इसका रहस्य क्या है, इसका राज क्या है। बिल गेट्स ने बड़ी मजेदार बात बोली, वो तुम्हारे काम की है। बिल गेट्स ने टेबल पर हाथ ठोक कर कहा कि यस, मैं रातों रात अमीर बन गया हूं, इसमें कोई संदेह नहीं है। पर ये किसी को खबर नहीं है वो रात कितनी लंबी थी, कितनी बड़ी थी वो रात, ये किसको खबर। और ये किसको खबर हो भी सकती, तुम्हारी परेशानियां तुम्हारे अलावा कौन समझ सकता। बगल वाले की अपनी परेशानी है, तुम बैठे पेट दर्द के कारण, बगल वाले की तो कमर दर्द कर रही, उसे क्या लेना देना तुम्हारे पेट दर्द से। और तुम देखो दरबार में ही मनोदशा को यदि हम पढ़ें तो हम कई बार बड़ा हंसते हैं लोगों की मनोदशा को कि आगे वाले का नंबर ना आए हमारे भरा जाए। कई लोगों की मनोदशा हमने ऐसी पढ़ी कि हमारा भर पर्चा बन जाए, बाद में गुरुजी दरबार बंद कर दे। हाँ वो तो लोगों का बस नहीं चलता, वरना ये भी करते कि गुरुजी हमारा भर पर्चा बना दो, बाद में निपट भी जाओ नो प्रॉब्लम। शायद ऐसा नहीं सोचते, थोड़ा मोड़ा प्यार करते होंगे, थोड़ी इज्जत देते होंगे गुरु के नाते के भाई ऐसा सोचना ठीक नहीं। पर हमने देखा है ऐसे लोगों को, दोपहर में हम निकले यही कोई 3 बजे 3:30 बजे, नीचे आए 4 बजे के लगभग,

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी जोड़ों का दर्द है, यानी घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे का दर्द, तो ये शो आपकी जिंदगी बदल सकता है, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाएंगे जिनकी उम्र 70 साल से 100 साल तक है, और इस उम्र में भी इन लोगों को जरा भी जोड़ों का दर्द नहीं है। यानी ये लोग इस उम्र में भी कहीं जाने के लिए, उठने बैठने के लिए किसी पर भी निर्भर नहीं है। एक लाइन में कहें तो ये लोग इस उम्र में पूरी तरह आत्मनिर्भर है।
7: मैं पिछले 1 साल से आयुर्वेदिक महाशक्तिशाली फॉर्मूला ले रहा हूँ, फौजी 360 इसका नाम है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने कमर कहीं भी जरा भी दर्द नहीं, और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
5: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो कहीं चलना हो बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
8: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है मैनू जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
6: फौजी 360 को अब तक जितने भी लोगों ने इस्तेमाल किया है उन सभी लोगों को जोड़ों के पुराने से पुराने दर्द जैसे घुटने का दर्द, कमर दर्द, कंधे के दर्द से पूरी तरह आजादी मिली है। और ये दावा हम नहीं, वो लोग खुद कर रहे हैं जो फौजी 360 इस्तेमाल कर चुके हैं।
9: इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं है और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
10: और सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि इसे हर बंदा ले सकता है, डायबिटीज वाला मरीज ले सकता है, ब्लड प्रेशर वाला मरीज ले सकता है, और मेरा खुद का दर्द खत्म हुआ है यार। इसीलिए मैं खुल के बताता हूँ कि ये फौजी गजब की चीज है।
6: फौजी 360 के सिर्फ एक कोर्स के बाद 80-90 साल के बुजुर्ग भी जवानों की तरह सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं, पोते पोतियों को गोदी में लिए घंटों उनके साथ खेल रहे हैं।
11: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने।
6: ये बात सुनने में बड़ी हैरान करने वाली है, पर इन बुजुर्गों ने इंटरनेट पर प्रूफ के साथ वीडियोस भी अपलोड करे हैं, जिसे देखकर पूरी दुनिया हैरान है। और जोड़ों के दर्द के तेल और स्प्रे बेचने वाले दुकानदार परेशान है, क्योंकि फौजी 360 लेने के बाद कोई भी व्यक्ति कभी भी इन जोड़ों के दर्द को ठीक करने वाली दवाएं जैसे तेल, गोली और स्प्रे के चक्कर में दोबारा कभी नहीं फंसेगा।
12: 3 साल से आंटी जी के घुटनों में इतना दर्द था कि इनका घुटना मुड़ता भी नहीं था, जरा भी नहीं मुड़ता था। और आज की स्थिति देखते हैं आप, ये देखिए इनका पूरा घुटना मुड़ रहा है, हॉस्पिटल खुद चल के आई हैं, और ये सब कमाल हुआ है फौजी 360 से। हम रिपोर्ट से समझते हैं, देखिए इनके पुरानी रिपोर्ट है, पूरी घुटने जकड़ चुके थे, जाम हो चुके थे, जिसके कारण घुटनों में पूरी तरीके से मूवमेंट खत्म हो गया था। और आज की डेट है जब से इन्होंने फौजी 360 यूज करना शुरू किया है, उसके बाद उनके घुटनों में एक तरीके से नई जान आई है। और हमें इतना अच्छा लगता है जब हम देखते हैं कि लोगों के पैसे बच रहे हैं और लोगों को फौजी 360 जैसे नेचुरल प्रोडक्ट से आराम मिल रहा है, तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम यही कहना चाहते हैं कि जिन भी लोगों को जोड़ों से संबंधित कोई भी समस्या है, एक बार फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
6: फौजी 360 के इफेक्ट्स और रिजल्ट्स को जानने के लिए हमने बहुत से एक्सपर्ट से बात करी, और लगभग सभी का यही कहना था कि फौजी 360 जोड़ों के दर्द जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे के दर्द के लिए राम बाण की तरह काम करता है।
13: किट में मिलने वाले जो दूसरे प्रोडक्ट होते हैं जैसे तेल, स्प्रे, ये सिर्फ ऊपरी और टेम्पररी राहत देते हैं, और वहीं फौजी 360 शरीर के अंदर जाकर जोड़ों को, हड्डियों को, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
14: ये साहिल जी हैं, 2 महीने पहले आए थे, कह रहे थे मेरे दोनों घुटने बदल दो क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी इन्हें चलने फिरने में। मैंने कहा हम पैसे बर्बाद नहीं करेंगे, आप फौजी 360 का एक कोर्स लेके देखिए, फिर मिलते हैं। आज आए हैं, बताइए सर कैसे रिजल्ट मिले आपको, क्या स्थिति है अभी?
13: पहले तो जितना धन्यवाद आपको दूं उतना कम है डॉक्टर साहब, क्योंकि पूरा चल लेता हूं मैं मोटरसाइकिल चलाने लगा हूं वापस से अपनी, अब बिल्कुल भी बुरी स्थिति नहीं है, एकदम बिल्कुल दर्द खत्म हो चुका है। अब तो आप मुझे बोलो 5 किलोमीटर चले जाओ, मैं बिल्कुल चले जाऊंगा, अभी भी सीढ़ी चढ़ के आया हूं हॉस्पिटल में।
6: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं, फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
11: 2 साल से घुटने और कमर के कारण पलंग पकड़ लिया था, सब पलंग पे ही हो रहा था, अग्ना मुतना भी पलंग पे हो रहा था, जरा भी नहीं चल पाता था। 3 महीने से ये फौजी 360 पाउडर ले रहा हूँ, अब खुद से उठ जाता हूँ, बाथरूम हो जाता हूँ, चल फिर लेता हूँ, बहुत आराम है, बहुत राहत है।
6: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है, और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
9: रोज 150 सीढ़ी चढ़कर मैं मेरे भोले बाबा के मंदिर जाती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है मेरे घुटनों में। और ये कमाल किसी तेल या स्प्रे से नहीं हुआ है, क्योंकि उनसे कुछ होता ही नहीं है। मुझे तो फायदा हुआ है फौजी 360 से। अरे कमाल का ट्रीटमेंट है। इस आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट को लेने के बाद किसी भी जोड़ में दर्द नहीं और पूरे दिन कमाल की चुस्ती बनी रहती है।
6: दुनिया के किसी भी तेल या स्प्रे के साथ कभी भी कोई गारंटी नहीं मिलती, यानी दर्द खत्म होगा या नहीं इस बात की कोई गारंटी नहीं। लेकिन फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट्स नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
15: 15 साल पहले चिकनगुनिया हुआ था, तब से शरीर के हर कोने में दर्द बना रहता था। होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी, ये तेल, वो स्प्रे, सब ट्राई कर लिया मगर आराम मिला 3 महीने पहले इस फौजी 360 से। अब कसम खा के बता रहा हूँ, जरा भी दर्द नहीं है शरीर में।
9: घुटने के दर्द के कारण मैं चल भी नहीं पाती थी, पर ये जब से फौजी 360 लिया है ना, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। अब आप देखो, मैं घर का पूरा काम खुद कर लेती हूँ, जरा भी दर्द नहीं है।
16: 5 साल से तो मैंने नमाज भी अदा नहीं की थी क्योंकि घुटना मेरा मुड़ता ही नहीं था। अब घुटने बदलवाने के लिए जितने पैसे भी नहीं थे कि घुटने बदलवाने, इस उम्र में फिर ये फौजी 360 जब से लेना शुरू किया है, अब मैं खुद चल लेता हूँ, खुद का काम पूरी तरीके से कर लेता हूँ। और जो मैंने पलंग पकड़ लिया था ना, वो वहाँ से बच गया हूँ मैं। अब ये तो ताकत है फौजी 360 की, ये अल्लाह की दुआ से कम नहीं है फौजी 360। अब खुद का काम मैं खुद से करता हूँ बिल्कुल।
17: हमारे नेपाल में पहाड़ी इलाका है तो चलना फिरना बहुत होता है, जोड़ों में बहुत दर्द का प्रॉब्लम शाप को रहता है, पर हमने कभी तेल या स्प्रे नहीं लगाते, कुछ नहीं होता उससे। सारे लोग मेरी उम्र के यहाँ फौजी 360 लेते हैं, बहुत कमाल का दवाई है, बिल्कुल भी जोड़ों में दर्द नहीं है इसको लेने से।
6: अगर आप चाहते हैं कि आपके जोड़ों का दर्द अंदर से पूरी तरह ठीक हो सके और आपको पूरी तरह आराम मिल सके, तो सिर्फ एक कॉल करके इस कमाल के आयुर्वेदिक फॉर्मूले फौजी 360 को अपने घर मंगा सकते हैं और जोड़ों के दर्द से पूरी तरह आजादी पा सकते हैं।
18: बॉलीवुड का एक गाना है ना, लंदन देखा, पेरिस देखा और देखा जापान। तो मेरी कहानी भी ऐसी है कि मैं दुनिया के लगभग बहुत से बड़े बड़े देशों में रहा हूँ और मैंने सब जगह ये जोड़ों के दर्द, स्पेशली घुटने के दर्द का इलाज कराया, बट कहीं भी वैसा रिजल्ट नहीं मिला। 2 years back when we shifted to India, तब ये फौजी 360 के बारे में पता पड़ा, we started using it। मुझे और मेरी वाइफ दोनों को इतना कमाल का रिलीफ मिला कि ऐसा रिलीफ किसी भी ट्रीटमेंट से आज तक नहीं हुआ था।
6: फौजी 360 के बारे में और डिटेल में जानने के लिए हमारी टीम उस आयुर्वेदिक आश्रम तक पहुंची जहां फौजी 360 बनाया जाता है और उन एक्सपर्ट से बात करी और वो सीक्रेट जानने की कोशिश करी कि कैसे सिर्फ एक फॉर्मूले से लोगों के जोड़ों का दर्द, जैसे घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कंधे का दर्द, पूरी तरह ठीक हो रहा है।
19: इसमें कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी बोन्स को मजबूत बनाता है, जो आपके लिगामेंट में जो फ्लूइड की कमी हो गई है, ये उसे दोबारा रिस्टोर करने में मदद करता है। और साथ ही दूसरी दवाओं से ये बेहतर इसीलिए है कि इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसे डायबिटिक पेशेंट ले सकता है, इसे ब्लड प्रेशर का मरीज ले सकता है, क्योंकि ये पूरी तरह सुरक्षित है और आपको पहले दिन से फायदा दिखने लगेगा। ये ताकत है फौजी 360 की। बस यही कारण था कि हमने सोचा कि अब समय आ चुका है लोगों की, जनता की सेवा करने का और घर घर इसे भिजवाने का। तो जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं, आप इस पर फोन कर सकते हैं, हमारे केंद्र पर डायरेक्ट फोन होगा, आप अपनी समस्या बताइए। अगर आपको बात सही लगती है, फौजी 360 आपको लगता है कि हाँ अब समय है कि जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक करना है, तो आप इसे मंगा सकते हैं। और साथ ही इसमें कुछ ऐसी औषधियां भी हैं जो आपको पूरे समय आपके शरीर में चुस्ती बनाए रखता है।
6: फौजी 360 के साथ 15 दिनों की मनी बैक गारंटी आती है, यानी अगर आपने फौजी 360 इस्तेमाल किया और किसी भी कारण से आपको रिजल्ट नहीं मिले तो आप सिर्फ एक फोन करके अपने पूरे पैसे वापस ले सकते हैं।
12: फौजी 360 मार्केट में मिलने वाले दूसरे जो पेन किलर ऑयल्स होते हैं, स्प्रे होते हैं, उनसे कैसे अलग है, मैं आपको साइंटिफिकली समझाता हूँ कि ऐसा क्या है इस ट्रीटमेंट में जो इसके रिजल्ट्स बहुत ही शानदार है। देखिए, कोई भी तेल या स्प्रे कैसे काम करता है, सबसे पहले मैं आपको वो बताता हूँ। आपके दर्द वाले हिस्से पे जब आप तेल लगाते हैं तो ये बाहर से आपके उस पर्टिकुलर एरिया को सुन्न कर देता है, मतलब आपके बॉडी के अंदर दर्द तो रहता है, उस जोड़ के अंदर दर्द तो है, और वहीं फौजी 360 जो है ये अंदर से काम करता है, क्योंकि जब आप इसे कंज्यूम करते हैं बॉडी को वो सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है जो जोड़ों को मजबूत बनाता है अंदर से, जो जोड़ों की चिकनाहट कम हो गई है ना, ये उसको दोबारा लौटाता है। तो ये एक अंदर से काम करने वाली चीज है, यानी ये पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से ठीक ठीक करता है और वहीं तेल और स्प्रे सिर्फ टेम्परेरी राहत देते हैं। तो आप अगर अभी भी जोड़ों के दर्द के लिए तेल या स्प्रे यूज कर रहे हैं तो आप आज से ही वो सब बंद कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ पैसे बर्बाद करने की बात है और टेम्परेरी रिलीफ की बात है। अगर आप पूरी तरह से जोड़ों को अंदर से मजबूत बनाना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, तो आप एक बार ये फौजी 360 जरूर ट्राई करें।
20: पिछले महीने मैं बाथरूम में स्लिप हो गई थी तो बहुत दर्द रहता था पेट में। डॉक्टर ने कहा कुछ L1 L2 का कुछ तो बताया था, पर इन्होंने फौजी 360 लाके दिया और उससे इतना आराम हुआ है कि अब जरा भी दर्द नहीं है। मम्मी पापा जी ने भी लेना शुरू किया है और उनको भी जो घुटनों में दर्द था उन्हें भी राहत मिली है। तो हर घर में मुझे लगता है ये फौजी 360 होना ही चाहिए।
21: मैं तो 12 महीने ही केदारनाथ बाबा के चरणों में ही रहता हूँ और यहाँ इतनी ठंड पड़ती है कि ठंड के चक्कर में पूरे समय शरीर अकड़ा हुआ रहता है, सारे जोड़ में बड़ा दर्द बना रहता था। पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता। बर्फ में भी चल लेता हूँ, बिल्कुल भी दर्द नहीं है। ये ताकत है इस आयुर्वेदिक फौजी 360 की।
6: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
22: टीवी पे फौजी के बारे में देखा तो मैंने फोन करके फौजी 360 को सीधा घर मंगा लिया, क्योंकि 3 साल से कमर में इतना भयंकर दर्द था कि घर के सारे कामों के लिए मैं पूरी तरीके से बाइयों पे निर्भर हो चुकी थी। सिर्फ 15 दिन हुए हैं और अब बिल्कुल भी दर्द नहीं है, कमर में जरा भी दर्द नहीं है। इतना शक्तिशाली है ये फौजी 360।
23: बिना सहारे के मैं 2 कदम भी नहीं चल पाती थी, पूरे समय बहू और बेटे की मदद ही लेनी पड़ती थी। पर जब से ये फौजी 360 लिया है, कमर में घुटने में जरा भी दर्द नहीं है। अब सीढ़ियां चढ़ जाती हूँ, उतर जाती हूँ, चल लेती हूँ आराम से, इधर का सारा काम कर लेती हूँ। अब दर्द में पूरी तरीके से राहत है।
24: मेरी उम्र 88 साल है, रोज 5 किलोमीटर पैदल चलता हूँ, लेकिन फिर भी जरा भी दर्द नहीं है। ये शक्ति है फौजी 360 की।
6: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
25: 1 साल पहले दोनों घुटने बदलने के लिए बोल दिया था, मगर मैंने घर बैठे आयुर्वेद के एक फॉर्मूले से अपने घुटने और जोड़ों के दर्द को पूरी तरह ठीक किया है और अब मैं वो सब कर सकता हूँ जो जवान आदमी भी नहीं कर सकता। आप में दम हो, आप करके बताओ। जोड़ों के दर्द के लिए जो भी लोग तेल या स्प्रे लगाते हैं ना, उन्हें आज से ही ये सब बकवास चीजें बंद करना चाहिए। इससे कुछ नहीं होता है, क्योंकि जोड़ों के दर्द का इलाज अंदर से होता है। फौजी 360 लेने के बाद मेरे जोड़ों में यानी घुटने कमर कहीं भी जरा भी दर्द नहीं और अब पूरे शरीर में चुस्ती फुर्ती गजब की बनी रहती है।
6: फौजी 360 के इस दुर्लभ फॉर्मूले को सिर्फ सुबह और शाम पानी के साथ लेना होता है और पहले डोज से ही फौजी 360 के रिजल्ट्स दिखने लगते हैं। फौजी 360 जोड़ों के बीच में खत्म हो चुकी चिकनाहट को रिस्टोर करने में मदद करता है, जॉइंट्स को अंदर से मजबूत बनाता है और फिर दर्द को पूरी तरह खत्म कर देता है।
21: पर जब से ये फौजी 360 किया है ना, शरीर में जरा भी दर्द नहीं है। अब घुटने में भी दर्द नहीं है, कभी पहाड़ पे जाना हो, कहीं चलना हो, बिल्कुल सोचना नहीं पड़ता।
8: मैंने जब से ये फौजी 360 लिया है, मैंने जरा भी घुटनों में दर्द नहीं है। अब मैं जिम करती हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ।
6: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 सीधा इस आश्रम से अपने घर मंगा सकते हैं। कॉल करने पे आप हेल्थ एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, अपनी समस्या उन्हें समझा सकते हैं। फिर चाहे आपको घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो, या कंधे का दर्द हो, या किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, आप अपनी समस्या हेल्थ एक्सपर्ट के साथ शेयर करें और फौजी 360 इस आयुर्वेदिक केंद्र से सीधे आपके घर तक भेजा जाएगा।
26: करीब 8 महीने पहले फौजी 360 का सिर्फ एक कोर्स लिया था, उसके बाद कभी भी जोड़ों में दर्द ही नहीं हुआ, कभी भी कोई तेल स्प्रे की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये इससे सस्ता और इससे असरदार और कोई भी दूसरा तरीका ही नहीं है जोड़ों के दर्द को ठीक करने का।
6: नीचे दिख रहे फोन नंबर पर कॉल करके आप फौजी 360 अपने घर मंगा सकते हैं।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
1: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
1: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही ला।
2: आज भारतीय वायुसेना मना रही अपना 94वां स्थापना दिवस। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर वायु वीरों का शौर्य और पराक्रम, आसमान में दिखी सेना की ताकत। नवरात्र से पहले भक्ति के रंग में रंगी झांसी नगरी, ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी से मां दुर्गा का भव्य स्वागत। मां के आगमन पर श्रद्धालु ने लगाए जयकारे। औरैया में रामलीला से पहले निकली भव्य शिव बारात, विभिन्न देवी देवताओं की मनमोहक झांकियां का लोगों ने पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। भक्ति गीतों पर जमकर झूमे श्रद्धालु। गुजरात के जामनगर में नवरात्र से पहले पारंपरिक अंगारा रास की तैयारियां जोरों पर। लोगों ने हाथों में जलती हुई मशालें लेकर किया पारंपरिक गरबा स्टेप्स, अंगारों पर नंगे पांव किया नृत्य का अभ्यास। चीन के शियांडू पहाड़ का दिखा अद्भुत नजारा, बादलों के बीच बसा जन्नत, मनमोहक दृश्य देखकर मंत्रमुग्ध हुए सैलानी। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का 75 की उम्र में निधन, गोवा में ली अंतिम सांस, बॉलीवुड समेत पूरा देश गमगीन।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: आज भारतीय वायुसेना का 94वां स्थापना दिवस। गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर मुख्य समारोह का आयोजन। वायुसेना दिवस परेड में आईएएफ की ऑपरेशनल क्षमता, अनुशासन और शानदार विरासत का प्रदर्शन, जवानों को किया गया सम्मानित। हिंडन एयरबेस पर भव्य एयर शो, आसमान में वायुसेना के विमानों का दिखा पराक्रम। वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने दिखाई जाबाजी, फ्लाईपास्ट में हेलीकॉप्टर भी हुए शामिल। वायुसेना दिवस की इस साल की थीम है भारतीय वायुसेना अचूक अभेद सटीक। साल 1932 में आज ही के दिन हुई थी वायुसेना की स्थापना। नवरात्र से पहले गुजरात के जामनगर में नौजवान अंगारा रास की तैयारियों में जुटे, हाथों में जलते हुए अंगारे लेकर प्रैक्टिस करते दिखे। अंगारा रास गरबा और रास उत्सवों में किया जाने वाला साहसिक नृत्य है। कलाकार हाथों में जलते हुए अंगारे या जलते हुए अंगारों से भरे पात्र लेकर करते हैं नृत्य। गुजरात में वडोदरा नगर निगम ने नवरात्र से पहले किया विकसित भारत संकल्प गरबा का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। पारंपरिक गरबा की धुन पर घूमते कदमों के बीच मां शक्ति की आराधना हुई, विकसित भारत के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने का दिया गया संदेश। ओडिशा के धर्मगढ़ में दुर्गा पूजा की तैयारी, कोलकाता से आए कारीगर पारंपरिक बंगाली शिल्प कौशल का उपयोग करके बना रहे हैं मूर्तियां। कोलकाता में दुर्गा पूजा को लेकर उत्साह, सैकड़ों सालों में पहली बार क्रिसमस के लिए मशहूर पार्क स्ट्रीट कोलकाता के सबसे बड़े दुर्गा पूजा समारोह की मेजबानी करेगी। केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा को और सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की तैयारी, यात्रा मार्ग पर संचालित होने वाले घोड़े खच्चर और उनके संचालकों की हो रही है जांच। श्रद्धालुओं से अभद्रता करने वाले संचालकों के खिलाफ लिया जा रहा है एक्शन, बिना लाइसेंस और अनफिट पशुओं पर भी कार्रवाई। त्योहारी सीजन में रेलवे ने गुड न्यूज दी, यात्रियों की ज्यादा भीड़ को देखते हुए चलाई जा रही है कई स्पेशल ट्रेन। मुंबई पुणे अहमदाबाद वलसाड अजमेर जोधपुर और कोटा से स्पेशल ट्रेनों का परिचालन, लोगों को त्योहार में अपने घर पहुंचने में होगी आसानी। अमरावती का अंबा माता मंदिर शारदीय नवरात्रि के लिए रंग बिरंगी रोशनी से सज गया है, रात में रोशनी से नहाया मंदिर, श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना। नवरात्रि से पहले मंदिर में माता के सोने चांदी के आभूषणों को चमकाया गया। घट स्थापना से पहले सुबह 5 बजे माता का सहस्त्र धारा अभिषेक होगा। नवरात्र में बड़ी भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर में विशेष व्यवस्था की गई, महिला और पुरुष श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग कतारें और पंडाल बनाए गए। अम्बा माता की ओटी भरने के लिए महिलाओं के लिए भी किए गए हैं विशेष इंतजाम। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मंदिर परिसर में की गई है बैरिगेटिंग। अम्बा माता के दरबार में अब आस्था और भक्ति का रंग दिखेगा। नवरात्र तक मंदिर में धार्मिक कार्यक्रमों के साथ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद। नैनीताल के विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम में लगातार बढ़ रही है श्रद्धालुओं की भीड़। एक दिन में पहुंच रहे हैं 50,000 से ज्यादा लोग। भीड़ को संभालने के लिए प्रशासन ने की खास तैयारी। कैंची धाम में बाबा नीम करोली महाराज के दर्शन के लिए देशभर से आते हैं श्रद्धालु। कैप्टन स्मिथ मजार की सेहत में हो रहा है सुधार, विदेश मंत्रालय ने दी जानकारी। फ्लाई दुबई के एक विमान में अपने ही को पायलट के हमले में घायल हुए थे पायलट कैप्टन स्मिथ। अबू धाबी के अस्पताल में चल रहा है उनका इलाज। एशियन गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल जीतने वाली बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन का गुवाहाटी में अभिनंदन। असम सरकार, असम ओलंपिक संघ और बॉक्सिंग संघ ने किया सम्मानित। 18,000 फीट की ऊंचाई पर देवताल 4 से 5 फीट बर्फ से ढका है। पूरा इलाका सफेद चादर में बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। ताजा बर्फबारी के बाद देवताल का पवित्र सरोवर भी जम चुका है। चारों तरफ बर्फ का अद्भुत नजारा देखने को मिला। बीआरओ के सड़क मार्ग खोलने के बाद बाइकर्स और पर्यटकों का दल देवताल पहुंचा। 18,000 फीट पर पहुंचकर पर्यटक रोमांचित नजर आए। देवताल के पास भारत चीन सीमा पर सेना और आईटीबीपी के जवान तैनात। बाइकर्स ने जवानों की हिम्मत और मुश्किल हालात में ड्यूटी को सलाम किया। सीमा दर्शन योजना के तहत परमिट लेकर लोग देवताल पहुंच रहे हैं। बर्फ से ढकी झील और हिमालय का नजारा पर्यटकों को खूब भा रहा। हेमकुंड साहिब बर्फ की सफेद चादर से ढक गया। कपाट बंद होने से पहले श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार। बद्रीनाथ धाम में दर्शन के लिए 2 से 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी। बारिश के बाद ठंड भी बढ़ गई। निचले इलाकों में मूसलाधार बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी से गिरा तापमान। कड़ाके की ठंड के बावजूद बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब में श्रद्धालुओं की आवाजाही जारी है। बड़ी संख्या में वाहन धामों की ओर जा रहे। मौसम विभाग ने पहाड़ों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई। आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। चंबा के साचपास में ताजा बर्फबारी से पहाड़ सफेद चादर में ढक गए। करीब 5 से 6 इंच बर्फ गिरने से ठंड भी बढ़ गई। बर्फ जमने से बैरागढ़ साचपास किलार मार्ग पर यातायात प्रभावित हुआ। सड़क पर फिसलन बढ़ने की वजह से सफर करना मुश्किल हो गया। साचपास में इस सीजन में अब तक तीसरी बार बर्फबारी हुई। लगातार हिमपात से ऊंचाई वाले इलाकों में तापमान गिरा। खराब मौसम को देखते हुए प्रशासन ने लोगों से सावधानी बरतने को कहा। मौसम और सड़क की स्थिति सामान्य होने तक अनावश्यक यात्रा से बचें। ताजा हिमपात के बाद साचपास की चोटियां बर्फ से चमक उठी। सफेद चादर में लिपटा पूरा इलाका बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। बारिश के बाद धर्मशाला का मौसम हो गया है कूल कूल। धौलाधार की चोटियां ताजा बर्फबारी से सफेद चादर में ढक गई। बदले मौसम और बर्फ से ढकी धौलाधार की चोटियों ने पर्यटकों का दिल जीत लिया। धर्मशाला मैक्लोडगंज में ठंडी हवाओं का असर दिखा। हिमाचल में 9 अक्टूबर तक मौसम खराब रहने का अलर्ट। कई इलाकों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना। राजस्थान में 11 से 12 अक्टूबर से मौसम बदलेगा। उत्तर पश्चिमी हिस्सों में हल्की बारिश के आसार, बढ़ेगी ठंड। अगले 5 दिन मौसम साफ रहने का अनुमान। माउंट आबू और सिरोही सबसे ठंडे। यहां रात का तापमान 16 डिग्री दर्ज हुआ। पैरा ओलंपिक चैंपियन प्रमोद भगत और भवीना पटेल एशियन पैरा गेम्स के ओपनिंग सेरेमनी में भारत के ध्वजवाहक होंगे। जापान के नागोया में 18 से 24 अक्टूबर तक एशियन पैरा गेम्स होंगे। भारत की नजर बड़े पदक अभियान पर रहेगी। पैरा बैडमिंटन स्टार प्रमोद भगत ने एशियन पैरा गेम्स में अब तक 6 पदक जीते हैं। इनमें 2 गोल्ड और 4 ब्रॉन्ज शामिल। पैरा टेबल टेनिस खिलाड़ी भावीना पटेल ने एशियन पैरा गेम्स में 2 पदक जीते। उनके नाम 1 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज। पैरा ओलंपिक कमेटी ऑफ इंडिया आज टीम इंडिया का विदाई समारोह आयोजित करेगी। खेल मंत्री मनसुख मांडविया कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहेंगे। फ्रांस के वैज्ञानिक हेनरी बी कागन और साथ ही जापान के वैज्ञानिक केन्सो सोई को मिला नोबेल पुरस्कार। रसायन विज्ञान
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
3: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं है खुशियां तो कहीं ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
4: सभी भाइयों और बहनों को बाबा रवि गिरी का स्नेहिल आशीर्वाद। तो भाइयों और बहनों, मेरा नाम बाबा रवि गिरी है, मैं 78 साल का हूं और पिछले 50 वर्षों से सिर्फ एक ही कार्य कर रहा हूं, प्राकृतिक शुद्ध और गारंटेड इलाज देना। मैंने जीवन के पूरे 78 साल देखे हैं और उनमें से 50 साल केवल एक ही सेवा में लगे हैं, आयुर्वेद के माध्यम से रोगों का इलाज करना। आज हम एक ऐसी पीड़ा पर चर्चा करेंगे जो न बोले तो भीतर से जलाती है और बोले तो लोग हंसते हैं, और उसका नाम क्या है? बवासीर। अरे भाई और बहनों, ये कोई शर्म की बात नहीं है, ये शरीर का रोग है और जैसे सिर में दर्द होता है वैसे ही गुदा में भी रोग हो सकता है, और सबसे ज्यादा लोग मेरे पास में बवासीर की बीमारी के लिए ही आते हैं, क्योंकि ये रोग न तो उम्र देखता है, न पैसा देखता है, न पद या ओहदा देखता है, बस जब होता है तो इंसान को नाक में दम कर देता है। जलन, दर्द, खून आना, बैठ भी ना पाए, मैंने खुद देखा है लोगों को रोते हुए, और तभी मैंने ठान लिया था बवासीर का इलाज निकालूंगा, ऐसा इलाज जो बवासीर वापस ना हो। मैंने जड़ी बूटियों को परखा, हजारों नुस्खे आजमाए और फिर तैयार की एक ऐसी औषधि जो आज मैं गर्व से कहता हूं गारंटी से बवासीर को ठीक करती है। तो भाइयों और बहनों, आपने पाइल्स के बहुत सारे इलाज कराए होंगे, कई दवाइयां खाई होंगी, लेकिन आपकी बवासीर ठीक नहीं हुई होगी। मैं बाबा रवि गिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पुरानी से पुरानी पाइल्स ठीक होगी, और ये मेरी गारंटी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपको खूनी बवासीर है या बादी बवासीर, एक हफ्ते में आराम और 21 दिन में बीमारी जड़ से खत्म, ना ऑपरेशन ना साइड इफेक्ट। मैंने ये दवा उन्हीं जड़ी बूटियों से बनाई है जिन्हें हमारे ऋषि मुनियों ने आजमाया था, और आज देश भर से लोग फोन कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि बाबा जी आपने तो हमें एक नया जीवन दान दे दिया है। मैं सिर्फ एक बात कहता हूं, इलाज चाहिए तो आयुर्वेद अपनाओ, और अगर गारंटी इलाज चाहिए तो मेरे 50 वर्षों के अनुभव लो, नहीं फायदा हुआ तो पैसे वापिस, इतना भरोसा है मुझे अपने इलाज पर। तो भाई और बहनों, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि बवासीर क्या होती है और क्यों होती है। बवासीर क्या है? हमारे मल द्वार या एनस जिसको बोलते हैं, एनस के अंदर या फिर बाहर छोटे छोटे रक्त वाहिकाएं या ब्लड वेसल होती है जो कभी कभी सूज जाती है, फूल जाती है और धीरे धीरे मांस जैसा बाहर निकलने लगता है। इसी को हम आम भाषा में कहते हैं बवासीर या पाइल्स। अगर इन सूजी हुई नसों से खून निकलने लगे तो उसे कहते हैं खूनी बवासीर, और अगर सिर्फ मांस बाहर निकलता है, जलन, درد اور کھجلی ہوتی ہے تو وہ کہلاتی ہے بادی بواسیر. اب سوال آتا ہے کہ یہ ہوتی کیوں ہے؟ تو سنیے، اس کے مکھیہ کارن ہے قبض. اگر پیٹ صاف نہیں ہوتا، مل سخت آتا ہے اور روز زور لگانا پڑتا ہے تو دھیرے دھیرے نسیں پھول جاتی ہے. دوسرا، لمبے سمے تک بیٹھنا. جو لوگ گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں آفس میں گاڑی چلاتے ہوئے یا پھر موبائل پر، تو ان میں رکت سنچار گھٹتا ہے اور نسوں پر دباؤ پڑتا ہے. تیسرا کارن ہے تیکھا اور باری کھانا کھانا. بہت زیادہ لوگ کیا ہوتے ہیں کہ مرچی مسالے، تلی چیزیں اور کم پانی، یہ شریر کو گرم کرتے ہیں اور اندر جلن پیدا کرتے ہیں. چوتھا کارن ہوتا ہے ونشانوگت کارن، جس کو جینیٹکس بولتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں ماتا پتا کو بواسیر رہی ہے تو سمبھاونا بڑھ جاتی ہے کہ آپ کو بھی ہو سکتی ہے. یہ روگ صرف شریر کو نہیں، انسان کی آتما تک کو تھکا دیتا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی کئی کارن ہیں. میرے کہنے کا ارتھ یہ ہے کہ جس کا آہار سنتولت نہیں ہے، اس کا کچھ بھی سنتولت نہیں ہو سکتا. آیورید کے انوسار آہار ہی سبھی روگوں کی جڑ کا

जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया है बवासीर यानी पाइल्स के लिए। बवासीर के मेरे पास बहुत से मरीज आते हैं, कई तो दो तीन बार ऑपरेशन करवा चुके होते हैं फिर भी कोई आराम नहीं होता। वो इतनी आस लेकर आते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बवासीर का मेरे पास एक बहुत ही कारगर फार्मूला है जो मैंने अब कुडोस आयुर्वेदा से बनवाया है। बवासीर एक बहुत ही कॉमन आम समस्या बन गई है और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है पाइल्स होने के चांसेस भी एक व्यक्ति में बढ़ जाते हैं, क्योंकि हम अपना पूर्ण रूप से ध्यान नहीं रख पाते हैं। और एक बात याद रखो, तनाव भी इसका एक बहुत बड़ा कारण है। जैसे गुस्सा आना, काम का तनाव, नींद पूरी ना होना, ये सब पेट को खराब करते हैं और पेट की गड़बड़ी बवासीर को बुलाती है। मैंने देखा है लोग बवासीर से पीड़ित होते हैं पर डॉक्टर के पास जाने में डरते हैं। औरतें तकलीफ सहती है पर परिवार से भी नहीं कह पाती, और फिर जब हालात गंभीर हो जाते हैं तो ऑपरेशन कराना पड़ता है। पर संतों का ये कहना है, रोग को समझो, शरीर की पुकार सुनो और जीवन शैली सुधारो। इसलिए मैं कहता हूं कि मेरे बताए हुए नुस्खे अपनाओ और बवासीर को जड़ से खत्म करो। ये मेरी गारंटी है कि आपको जल्दी आराम मिलेगा, ये कोई मामूल। लेकिन उससे पहले इसका सही पहचानना जरूरी है। अगर ये लक्षण आपको दिखें, खून आना, सूजन होना, खुजली या जलन, मांस का टुकड़ा सा बाहर निकल आना, तो समझ लीजिए ये बवासीर की दस्तक है और घबराने की जरूरत नहीं है। मैं बाबा रविगिरी हूं ना, आयुर्वेद में ऐसे ऐसे नुस्खे हैं जिनसे बवासीर जड़ से ठीक हो जाती है। पर पहले रोग को जानो, स्वीकार करो, फिर उपचार करो। ये लाइलाज नहीं है और आयुर्वेद में इसका स्थायी समाधान है। मैंने खुद देखा है हजारों लोगों को इससे मुक्ति पाते हुए। तो भाइयों और बहनों, यहां मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं जिसे बहुत ध्यान से सुनना है। हर रोग का है समाधान जब हो मन में विश्वास का ध्यान। आयुर्वेद की राह पकड़ो, बिना डर के जीवन जियो। तो भाइयों और बहनों, मैं बाबा रविगिरी आपसे वादा करता हूं कि आपकी पाइल्स की दिक्कतों को मैं जड़ से खत्म कर सकता हूं। अगर मेरे बताए गए नुस्खे अपनाते हो तो खुद आप बदलाव महसूस करोगे। अब हम बात करेंगे इलाज की। मेरे ये योगों में हरड़, जीरा, काली मिर्च, पीपली, मूल, चित्रक, छव्य, सूरनकंद, अपामार्ग, अमलतास और बहुत कुछ है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं हरड़ के फायदे। ये हरड़ है, औषधीय गुणों से भरपूर है। हरड़ के आयुर्वेद में चमत्कारिक फायदे बताए गए हैं। सेलेनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, विटामिन, प्रोटीन, जीवाणु रोधी, एंटीबायोटिक गुणों से भरपूर है ये हरड़। बवासीर की बीमारी को दूर करने में बेहद असरदार साबित हुई है। जीरा जो छोंक में यूज करते हैं, ये वही जीरा है। ये कब्ज हो चाहे बवासीर हो, इन सब में बहुत कारगर है। बवासीर का असली कारण खाना अच्छी तरह से न पचना और कब्ज का हो जाना होता है। जीरा लीवर से एंजाइम्स बनाकर खाने को पचवाता है, अपच को दूर करता है और सख्त लैटिन को मुलायम करता है। अगला है काली मिर्च जो पाचन क्रिया को मजबूत करती है,
इसके बाद में है

0: पीपली मूल, ये आंतों में अगर कीड़े हैं तो उनको खत्म करता है, आंतों में सूजन को खत्म करता है। इसके बाद में है चित्रक। चित्रक की रेचिन प्रकृति मानी गई है, यह एक नेचुरल लेग्जेटिव है जो रेटिन को धक्का मारता है, आंतों में पड़ा नहीं रहने देता, रेचन करने वाला है। इसके बाद में है सूरनकंद। यह है सूरनकंद, ये एक प्रोबायोटिक है और पाचन शक्ति को मजबूत बनाता है। और यह है अपामार्ग, क्षार सूत्र की असली जड़ी बूटी है ये। इसमें सूजन घटाने वाले तत्व है जो बवासीर के मसों को शरीर से काट देते हैं। इसके बाद में है ये अमलतास। अमलतास पर बड़े शोध हुए हैं बड़ी बड़ी लेब में, और पता चला है कि इसमें प्रस्तुत है एंथ्राक्विनोनेज जो बवासीर पर काम करता है, पाचन शक्ति को मजबूत और जड़ पर काम करती है और बवासीर को जड़ से खत्म कर देती है। इसके बाद में है लज्जालू। लज्जालू पर जनरल ऑफ आयुर्वेद ने बताया है कि खूनी बवासीर पर चमत्कारित काम करता है, चाहे कोई भी डिग्री का बवासीर हो सब पर यह काम करता है। इसके बाद में है कचनार। कचनार की छाल काम दिया करती है, ये सूजन को घटाता है, बवासीर में कब्ज को काटता है, आंतों की सूजन को घटाता है, शरीर को विष हरण करता है और शुद्ध करता है। ये है निर्गुंडी, ये वातनाशक है। वात बढ़ने के कारण सूजन हो जाती है मसों में, ये निर्गुंडी जो है ये वात को शमन करके सूजन को घटाता है और मसों का नाश कर देता है। आखिर में यह है इंद्रायन। यह है इंद्रायन की जड़। इसके अंदर फ्लेवोनाइड्स, बेंजोइक एसिड, गैलिक एसिड, ये सारे गुण इसमें होते हैं जो बवासीर में आराम देते हैं। तो ये जितनी भी मैंने जड़ी बूटियां आप देख रहे हैं वो मैंने बताई है, ये सब मिलाकर मैंने बवासीर के लिए एक नुस्खा तैयार किया है और मैंने हजारों लोगों को इस पीड़ा से मुक्ति दिलाई है बिना ऑपरेशन, बिना किसी साइड इफेक्ट, सिर्फ शुद्ध और आयुर्वेदिक नुस्खों से। मेरे बताए नुस्खे अपनाओ, रोज नियम से इन्हें निभाओ, बवासीर को जड़ से मिटाओ, फिर लौट के कभी ना आए वो दर्द पुराना। और हाँ, खान पान में संयम जरूर रखिए, मिर्च मसाले कम, पानी ज्यादा। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आपने मेरे बताए हुए नुस्खे नियम से अपनाए तो बवासीर जड़ से खत्म हो जाएगी और फिर दोबारा लौट कर नहीं आएगी। तो अब ऑपरेशन नहीं, अपनाओ रविगिरी के नुस्खे और कहो बवासीर तुझे जड़ से अलविदा। अब देर मत करो, मुझे तुरंत संपर्क करो और ये आयुर्वेदिक दवाई मंगवाओ ताकि बवासीर को हमेशा के लिए अलविदा कह सको। अब मैं भी आपसे इजाजत चाहूंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: आज भारतीय वायुसेना मना रही है अपना 94वां स्थापना दिवस। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर वायु ब्यूरो का शौर्य और पराक्रम, आसमान में दिखी सेना की ताकत। नवरात्र से पहले भक्ति के रंग में रंगी झांसी नगरी, ढोल नगाड़े और आतिशबाजी से मां दुर्गा का भव्य स्वागत। मां के आगमन पर श्रद्धालु ने लगाए जयकारे। औरैया में रामलीला से पहले निकली भव्य शिव बारात, विभिन्न देवी देवताओं की मनमोहक झांकियां का लोगों ने पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। भक्ति गीतों पर जमकर झूमे लोग। गुजरात के जामनगर में नवरात्रि से पहले पारंपरिक अंगारा रास की तैयारियां जोरों पर, लोगों ने हाथों में जलती हुई मशाले लेकर किया पारंपरिक गरबा स्टेप्स, अंगारों पर नंगे पांव किया नृत्य का अभ्यास। पीएम मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस का किया उद्घाटन, कहा 10 साल में तकनीक ने देश को बदला, साइबर फ्रॉड रोकने के लिए बने ग्लोबल फ्रेमवर्क। चीन के श्यानडू पहाड़ का दिखा अद्भुत नजारा, बादलों के बीच बसा जन्नत, मनमोहक दृश्य देखकर मंत्रमुग्ध हुए सैलानी। दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में निधन, गोवा में ली अंतिम सांस, बॉलीवुड समेत पूरा देश गमगीन।

स्वागत है आप सभी का जीएनटी की खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। जीएनटी स्पेशल में आज बात गरबा रास से मां की आराधना की करेंगे। देश भर में गरबा रास को लेकर तैयारी तेज हो गई है। ऐसे में नवरात्र के महापर्व में अब महज 2 दिन बाकी है। कहीं गरबा की तैयारियां अंतिम दौर में है तो कहीं पर गरबा परिधानों और पारंपरिक आभूषणों की मांग ने बाजारों की रौनक बढ़ा दी है। मां की भक्ति में रंगने के लिए झांसी में गरबा क्लासेस चल रही है। युवा और महिलाएं गरबा के स्टेप सीखने के साथ नवरात्र की तैयारियों में जुटे हैं। तो वहीं वडोदरा में गरबा उत्सव का रंग अभी से चढ़ने लगा है। संगीत की धुन पर थिरकते कदम और मां की आराधना में डूबे भक्त पूरे माहौल को भक्तिमय बना रहे हैं। यानी नवरात्र के आने से पहले ही गुजरात से लेकर मुंबई और दिल्ली से झांसी तक गरबे की ताल सुनाई दे रही है। कहीं बाजार सजे हैं तो कहीं पर युवा रिहर्सल में जुटे हैं, क्योंकि गरबा यहां सिर्फ नृत्य नहीं है, मां शक्ति की आराधना है, आस्था है, परंपरा और नवरात्र के उत्सव का सबसे खूबसूरत रंग भी है। नवरात्रि यानी कि नवरात, मां दुर्गा की शक्ति भक्ति की आराधना का महापर्व। वो नवरात्रे जब देश का कोना कोना मां की भक्ति के रंग में रंग जाता है। मंदिरों में पूजा होती है, घरों में घट स्थापना होती है और गुजरात में यही भक्ति गरबा और रास की थाप पर अपना सबसे खूबसूरत रूप लेती है। गुजरात के लिए गरबा महज एक नृत्य नहीं है, मां अंबे की आराधना का एक पारंपरिक स्वरूप है। गरबा का केंद्र होती है मां शक्ति और उनके सामने रखा मिट्टी का दीप से जगमगाता पात्र, जिसे गर्भदीप कहा जाता है। ये पात्र गर्भ का प्रतीक है, जबकि उसके भीतर जलती ज्योति जीवन और सृजन की शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। वहीं डांडिया रास से हाथों में थामी गई रंग बिरंगी लकड़ियां सिर्फ नृत्य का हिस्सा नहीं है, परंपरा में उन्हें मां दुर्गा और महिषासुर के बीच इस युद्ध में देवी के हाथों की तलवारों का प्रतीक भी माना जाता है। देखिए, नवरात्र मां दुर्गा की भक्ति का पर्व और गुजरात में इस भक्ति का रंग गरबा और डांडिया के जरिए नजर आता है, जिसका जश्न गुजरात में शुरू हो गया। वडोदरा में विकसित भारत संकल्प गरबा की थीम पर भव्य प्री गरबा इवेंट का आयोजन किया गया, जिसमें कि हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। पारंपरिक गरबा की धुन पर घूमते कदमों के बीच मां शक्ति की आराधना भी हुई और विकसित भारत के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने का संदेश भी दिया गया।

एक तरफ मां की भक्ति में डूबा गरबा रास, तो दूसरी तरफ देश के विकास का संकल्प। गरबा की सुरीली तान, पारंपरिक परिधान और उत्साह से भरे कदमों के बीच आस्था, संस्कृति और राष्ट्र निर्माण का संदेश एक साथ नजर आया। वडोदरा का यह आयोजन नवरात्र के उल्लास के साथ मां की आराधना और विकसित भारत के संकल्प का एक खूबसूरत संगम भी बन गया है।

0: वैसे तो नवरात्रि के आगमन का उत्साह पूरे देश में है, लेकिन गुजरात जैसी रौनक कहीं और नहीं। नवरात्र के पावन 9 महीनों में हर घर, हर मैदान और हर दिल गरबा की धुन पर झूमता है। वडोदरा के इस विशाल पंडाल में गरबे का ये भव्य आयोजन हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ढोल नगाड़ों की थाप पर हजारों लोग माँ की आराधना में झूम रहे हैं। टोलियां बनाकर अलग अलग आकृतियों में गरबे की धुन पर नाचते झूमते इस जन सैलाब में महिलाओं और पुरुषों का उत्साह देखते बन रहा है। ये भव्य सांस्कृतिक जश्न है विकसित भारत संकल्प गरबा का, जिसे वडोदरा महानगर पालिका ने आयोजित किया है। इस विशेष आयोजन में वडोदरा की प्रसिद्ध गरबा संस्कृति को नागरिक भागीदारी, विकास और विकसित भारत की भावना के साथ जोड़ा गया है। ये कार्यक्रम वडोदरा की विरासत, स्वच्छता, नारी शक्ति और विकसित भारत 2047 के विजन पर आधारित है, जिसमें नागरिकों के लिए निःशुल्क एंट्री रखी गई है।
1: कार्यक्रम ये आज वडोदरा की ओल्कान कलानगरी संस्कारी नगरी को आगे ले जाने का एक प्रयत्न है। उस प्रयत्न के साथ साथ कलानगरी के ओपनिंग सेरेमनी में होगा, फिर नारी शक्ति को भी प्राधान्य देके नारी शक्ति भी वर्ल्ड में ले जाएंगे। तीसरा, हम इसको आज स्वच्छ भारत बनाने के, स्वच्छ वडोदरा बनाने का एक प्रयत्न भी है। और फोर्थ, विकसित भारत का संकल्प भी आज यहाँ वडोदरा से लिया जाएगा। और फाइनली एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड लार्जेस्ट गरबा ऑफ द वर्ल्ड करने का एक प्रयत्न है। आज यहाँ पे सामान्य व्यक्ति को भी इस ग्राउंड को एक्सेस देके इसको एक्सक्लूसिव से इंक्लूसिव करने का एक प्रयत्न भी हम कर रहे हैं।
0: कार्यक्रम में चमचमात और रंग बिरंगी चिनिया चोली और पारंपरिक केड़िया कुर्ता पहने लोग संगीत की धुन पर मस्ती से झूमते नजर आ रहे हैं। विशाल पंडाल में एक ताल एक लय पर जब गरबा प्रेमी सजे धजे पारंपरिक पोशाक में गरबा की धुनों पर थिरके तो नजारा देखते ही बन रहा था।
2: और यहाँ पे खूब ही अच्छे और सच्चे मन से हम लोग माता जी की श्रद्धा से गरबे खेलने आए हैं। और विकसित भारत थीम पे हमें बहुत ही गर्व है एंड थैंक यू सो मच वीएमसी कि आपने इस थीम पे हम सबको आगरा से निमंत्रित किया है।
3: बहुत ही मस्त विकसित भारत पे आज यहाँ पे देख सकते हो काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पे यूनाइटेड वे ऑफ वडोदरा जो वर्ल्ड प्रसिद्ध है गरबा, जो आज यहाँ पर काफी जनसंख्या में लोग आए हुए हैं। सो आप देख सकते हो इतना अच्छा मैनेजमेंट है, बहुत अच्छा। और अतुल दादा तो हमारे सबके फेवरेट है जो इतना वर्षों से सिंगिंग कर रहे थे। फ्री एंट्री था तो सभी दूसरे प्लेयर्स भी ज्वाइंट हुए, तो बस इसी तरह माता जी की आराधना करेंगे। हम लोग 9 दिन आने वाले दिनों में भी 9 दिन माता जी की आराधना हम लोग करेंगे।
4: हम लोग रात्रि बिफोर नवरात्रि अतुल पुरोहित के साथ विकसित भारत की थीम पे यहाँ पे यूनाइटेड वे के ग्राउंड पे आज खेलने आए थे। आज का हमारा ये जो एनर्जेटिक एक्सपीरियंस है, जैसे आप सुन सकते हो बैकग्राउंड में किस हिसाब से चल रहा है, पीछे सब स्टूडेंट्स और वो सब विकसित भारत पे डांस और गरबा परफॉर्म कर रहे हैं। माहौल बहुत ही अच्छा हो चुका है, अभी सब लोग एनर्जेटिक है, एवरीवन इज रेडी। और मेन तो वही चीज है कि हम लोग यहाँ पे विकसित भारत पे कर रहे हैं।
0: और इस आयोजन का विशेष आकर्षण रहा प्रसिद्ध अतुल पुरोहित की प्रस्तुतियाँ, जिन्होंने पारंपरिक धुनों पर लोगों को थिरकने पर मजबूर कर दिया।
5: कम से कम 1 लाख लोग यहाँ विजिट करेंगे और हमारा गुजरात का जो कल्चर है, बड़ौदा की जो सुगंध है, जो ग्लोबल है, उसको और आगे बढ़ाने के लिए ये प्रयास है। और इसमें हम लोग गुजराती परंपरागत कल्चरल गरबा ही गाते हैं। बस गरबा किसको बोलते हैं ये आज बड़ौदा से आप इसके माध्यम से आप देख सकेंगे।
0: जब गरबा का उत्साह शुरू होता है तो गुजरात की रौनक देखने लायक होती है। लोग अलग अलग थीम पर गरबा करते हैं। इस साल वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने विकसित भारत संकल्प गरबा की थीम के साथ लोगों का ध्यान बटोरने की कोशिश की है। गुजरात के उत्सव की धड़कनों में बसा है गरबा। इस प्री गरबा इवेंट से साफ है कि माँ अम्बे की आराधना का त्योहार पूरे उत्साह और उल्लास से मनाने के लिए गरबा प्रेमी कमर कस चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: देखिए, फेस्टिवल सीजन का ही एक और रंग है गरबे का। नवरात्र के दौरान देश भर में शहर शहर गरबा आयोजन होता है और पूरे 9 दिन गरबे का उत्साह नजर आता है। नवरात्र के समय हर कोई गरबा करने के लिए उत्सुक होता है। कभी जो गरबा केवल गुजरात की शान था, आज लगभग सभी छोटे बड़े शहरों में बेहद उत्साह के साथ खेला जाता है। रविवार से गरबा महोत्सव की भी शुरुआत हो रही है। चलिए आपको दिखाते हैं देश में कैसी चल रही है गरबा की तैयारी।

0: ये तैयारी है माँ दुर्गा के महापर्व पर गरबा खेलने की, और सबसे बढ़कर ये तैयारी है साल भर की बीती बातों, किस्सों और वाकयों को पीछे छोड़ त्योहार की खुशियों में डूब कर धूम मचाने की। माँ के आगमन का उत्सव है, सो देश भर में शहर शहर गरबा प्रेमी पूरे जोश और उत्साह के साथ तैयारियों में जुटे हैं। रंग बिरंगी परंपरागत पोशाकों से लेकर सजे धजे डांडिया तक हर तैयारी पूरे मन और लगन से की जा रही है। चनिया चोली केड़िया सब तैयार है। जरा सोचिए, जब तैयारी ऐसी जानदार है तो उत्सव कितना शानदार होगा। वैसे तो गरबा और डांडिया नृत्य मूल रूप से गुजरात की संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है, लेकिन अब नवरात्र के दौरान देश भर के शहरों पर गुजरात का ये रंग चढ़ा नजर आता है। शहर शहर अलग अलग क्लब्स और डांस ग्रुप्स विशेष गरबा नाइट्स का आयोजन करते हैं, जिसमें पूरी तैयारी और सज धज के साथ बड़ी संख्या में लोग शामिल होते हैं। अब की बार भी तैयारी जोरों पर है। चनिया चोली और केड़िया के पारंपरिक परिधानों से देश भर के बाजार सज चुके हैं। ये तस्वीरें मुंबई के बोरीवली की हैं, जहां गरबा डांडिया के लिए पोशाकों से बाजार सज गया है।
1: नवरात्रि में गरबा राज ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता, और जब बात मुंबई की हो तो बात ही अलग है। मुंबई के बोरीवली इलाके में मैं मौजूद हूँ, जहाँ पर 80% गुजराती समाज रहता है, और देखिए यहाँ का बाजार किस तरीके से चनिया चोली और केड़ी से सज चुका है। एक से बढ़कर एक ट्रेंडिंग डिमांडिंग चीजें देखने को मिल रही है। फिलहाल मैं फैशन हब के नाम के एक शॉप में एंट्री कर रहा हूँ, और खरीदारी बहुत ही ज्यादा जोरों पर है। महिलाएं और स्पेशली जो जेंजेस हैं और युवती हैं, वो देखिए अपने अपने पसंद के चनिया चोली और केरिया यहाँ पर खरीद रहे।
0: ट्रेडिशनल पोशाक भी खूब हैं, तो ट्रेंडिंग डिजाइन की भी कमी नहीं। जिसे जो भा रहा है वही ले जा रहा है। प्रैक्टिस अपनी जगह है, लेकिन गरबा खेलने के लिए लुक कम्प्लीट होना भी जरूरी है।
1: अमृता, मैं देख रहा हूँ आप काफी देर से यहाँ पर मौजूद हैं, और अभी तक आपको कुछ पसंद नहीं आया?
2: मतलब मैं देख रही हूँ बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, तो कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या लूँ और क्या नहीं।
1: क्या सोच करके आए थे, क्या लेना है?
2: मतलब मुझे पर्टिकुलर, मेरे पास ऑलरेडी बहुत मतलब घाघरास है जो लोअर पहनते हैं, और ब्लाउजेस की यहाँ पे वैरायटीज है, तो वो उसी से रिलेटेड कुछ सोच रही
1: हूं। अच्छा, ये 9 दिन अलग अलग थीम पर ही काम करने वाले हो ना?
2: मतलब कलर्स रहते हैं, और उसके हिसाब से हम लाइक एक्सचेंज कर लेते हैं फ्रेंड्स के साथ। और वैसे हम जनरली तो हम क्या कहते हैं, एवरी ईयर एक एक लेते हैं, और फिर वो कलेक्ट हो जाता है ना ओवर द टाइम।
1: अच्छा, ये बताइए कि इस बार क्या सोच कर आया है, क्या ट्रेंड में है, क्या डिमांड में, आपको क्या लगता है, या फिर ऑर्डर भी देते हैं?
2: हाँ, मतलब कस्टम मेड भी होता है, और अभी मार्केट में बहुत सारी हर एक नए नए डिजाइन भी आते हैं, तो वो भी हम देखते हैं कि कैसा है क्या।
0: और ये तस्वीरें आई हैं गुजरात के सुरेंद्र नगर से, जहां इन दिनों गरबा डांडिया से जुड़ी पोशाकों की डिमांड बढ़ गई है। यहां अलग अलग डिजाइन और अलग अलग रंगों की पारंपरिक चनिया चोली तैयार की जा रही हैं, जिनकी डिमांड यूपी एमपी दिल्ली से लेकर दक्षिण भारत के राज्यों तक है।
3: चनिया चोली में इस साल पोजीशन प्रिंट, डबल अम्ब्रेला, सिंगल अम्ब्रेला, कली वाली, केड़िया सेट, जिमी सेट सब हम यहाँ बनाते हैं। हमारी आइटम देश विदेश में भी चलती है, और हम बनाते हैं सब, बाहर गांव जाते हैं बॉम्बे साइड, उसमें कच्ची वर्क होता है, हैंड वर्क होता है, और आरी वर्क होता है, और एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है।
0: गुजरात में लोग पारंपरिक गरबा परिधानों की खरीदारी कर रहे हैं, तो राजस्थान के पाली में भी गरबा खेलने की तैयारियां जोरों पर हैं। माँ को प्रसन्न करने के लिए किए जाने वाले गरबा रास को लेकर जोरदार प्रैक्टिस चालू है। क्या बच्चे क्या बड़े, सभी दिल लगाकर गरबा सीखने में जुटे हैं।
4: नृत्य एक ऐसा फॉर्म है जिसमें लाइक हम सब कुछ भूल के सिर्फ डांस के थ्रू माँ से कनेक्ट हो सकते हैं।
5: गरबा में बेसिकली तो 2 ताली, 3 ताली, हीच, डोडिया, ये सारे स्टेप्स किए जाते हैं, बट आज के जमाने के हिसाब से, आज की जेंजी के हिसाब से, अगर हम लोग उसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफाई करके, थोड़ा सा बॉलीवुड स्टेप्स को मॉडिफाई करके डाल दे, तो उनको करने में भी मजा आता है, और उस तरीके से करते हैं तो सब लोग एंजॉय भी करते हैं।
0: वास्तव में गरबा नृत्य शक्ति स्वरूपा माँ अम्बे को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है, मातृ शक्ति की महिमा और जीवन के उत्सव को मनाने के लिए किया जाता है। मूल रूप से गुजरात से शुरू हुआ ये पारंपरिक लोक नृत्य अब पूरे देश में लोकप्रिय हो चुका है, और इसी लोकप्रियता के बीच पोशाक तैयार है और प्रैक्टिस भी जोरदार है। अब तो बस इंतजार है उस उत्सव का, जिसके शुभारंभ के साथ ही देश गरबा और डांडिया के रंग और उमंग में डूब जाएगा। मुंबई से धर्मेंद्र दुबे, झांसी से अजय झा और पाली से भारत भूषण जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: शारदीय नवरात्र शुरू होते ही गरबा और डांडिया नाइट से जुड़े आयोजन देश भर में शुरू हो जाते हैं। ऐसे में अभी से गरबा और डांडिया नाइट को लेकर लोगों ने प्रैक्टिस शुरू कर दी है, खासकर महिलाओं ने। गरबा और डांडिया नाइट्स के लिए बाजार सज गए हैं, बाजार में रंग बिरंगे ड्रेस बिकने शुरू हो गए हैं और महिलाओं के लिए नए नए डिजाइन की चनिया चोली, लहंगा, जबकि पुरुषों के लिए अलग अलग तरह के कुर्ते और पगड़ी बाजार में आ चुके हैं।

0: जगमगाती शाम, तेज संगीत और थिरकते कदम, ये तैयारी उस उत्सव को लेकर है जिसका लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। खासकर महिलाएं और युवतियां, जो गरबा और डांडिया नाइट्स के लिए प्रैक्टिस में जुट गई हैं। प्रैक्टिस की ये तस्वीर यूपी के झांसी से आई है, जहां शारदीय नवरात्रि के दौरान होने वाले गरबा और डांडिया को लेकर खासा उत्साह नजर आ रहा है। इसी उत्साह की झलक झांसी के विपिन रावत पार्क में हर तरफ देखने को मिली। ये सभी महिलाएं जोर शोर से गरबा और डांडिया के लिए तैयारी कर रही हैं।
1: बहुत अच्छा प्रैक्टिस करवाई है, एनर्जी भर दी सारी लेडीज में, यहाँ बहुत अच्छी गैदरिंग हुई है। नवरात्रि हर साल हम हिंदुओं का एक बहुत ही पावन पर्व है। हम अपनी देवी जी को 9 दिन पूजा करते हैं अलग अलग रूपों में, जो कि शुरुआत होने वाली है 11 अक्टूबर से। तो हमारा डांडिया 12 अक्टूबर को होने वाला है, जो कि रामेश्वरम में होगा, और हम लोग बहुत उत्साहित हैं।
2: जो डांस जुम्बा क्लासेस हुआ है, रितु मैम ने हम लोगों को जो डांस सिखाया है बहुत अच्छी है, डांसर सिखाती हैं हम लोगों को। और जो 12 अक्टूबर को हो रहा है डांडिया नाइट, हम लोग उसके लिए बहुत एक्साइटेड हैं कि हम लोग उसमें अलग अलग टाइप का ट्रेडिशन देखने को, इंडियन ट्रेडिशन है, अलग अलग आउटवेयर देखने को मिलेगा, कुछ वेस्टर्न होगा, कुछ ट्रेडिशन होगा, कुछ मिक्सअप होगा हर चीज़ का। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं उस नाइट को और जो रामेश्वरम में हो रहा है।
0: इन महिलाओं और युवतियों को प्रैक्टिस करा रही ऋतु जैन ने बताया कि डांडिया और गरबा को लेकर लोगों में किस तरह का उत्साह है। डांडिया केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं है, बल्कि ये माता रानी की भक्ति से भी जुड़ा लोक नृत्य है। इसी भावना के साथ ये महिलाएं पूरे उत्साह के साथ डांडिया सीख रही हैं।

0: आज यहाँ पे जलसा के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया बिपिन रावत पार्क में एक डांडिया सिखाया जा रहा है, जिसमें मैं एज अ इंस्ट्रक्टर आई हूँ और यहाँ पे काफी लोग हैं, मैं देख रही हूँ। मुझे लग रहा था पता नहीं कितने लोग हैं, बट लोगों का उत्साह देख के लग रहा है कि हाँ सब गरबा के लिए बहुत एक्साइटेड है, और इनको देख के मैं भी बहुत एक्साइटेड हो गई, क्योंकि जब पब्लिक आपकी जोश में होती है तो अपने आप अंदर से जोश आ जाता है। और डेफिनेटली ये माता रानी के लिए सभी की भक्ति है, और मैं भी बस इस भक्ति में झूमते हुए सबको नृत्य सिखा रही हूँ, डांडिया सिखा रही हूँ।
1: दुर्गोत्सव के दौरान हर शाम होने वाला ये आयोजन रंग बिरंगी और खूबसूरत ड्रेसेस के बगैर अधूरा है। गरबा और डांडिया नाइट्स के दौरान पहने जाने वाली ड्रेसेस बहुत अहम होती हैं, चाहे महिलाओं के लिए चनिया चोली और लहंगा हो या फिर पुरुषों के लिए कुर्ता और पगड़ी हो। बाजार एक से बढ़कर एक ऐसी खूबसूरत ड्रेसेस से सज चुके हैं। इस बार भी गरबा और डांडिया के लिए मार्केट में गुजराती ड्रेस की डिमांड शुरू हो गई है।
2: हम बरसों से चनिया चोली और जेंट्स वेयर का कपड़ा बनाते हैं। चनिया चोली में इस साल पोजीशन प्रिंट, डबल अम्ब्रेला, सिंगल अम्ब्रेला, कली वाली, केड़िया सेट, जिमी सेट सब हम यहाँ बनाते हैं। हमारी आइटम देश विदेश में भी चलती है और हम बनाते हैं, सब बाहर गांव जाते हैं, बॉम्बे साइड और जाते हैं, और उसकी रेट 2000 से लेके 15000 तक चनिया चोली का रहता है। कपल सेट भी हम बनाते हैं।
3: इसमें कौन सा कौन सा वर्क होता है?
2: उसमें कच्ची वर्क होता है, हैंड वर्क होता है, और आरी वर्क होता है, और एम्ब्रॉयडरी वर्क होता है।
1: बाजार में रंग बिरंगे पैटर्न्स, शानदार एम्ब्रॉयडरी और एक परफेक्ट मॉडर्न टच का ऐसा कॉम्बिनेशन मौजूद है जो देखने वालों को एक नजर में ही पसंद आ जाए।
4: कच्ची वर्क है या फिर चोली का कलेक्शन बहुत अच्छा होता है, फिर फ्रेंड्स भी यहाँ से ही लेने का प्रेफर करते हैं, और हमें यहाँ का काम बहुत पसंद है।
5: कितने साल से यहाँ पे खरीदी करते हो?
4: 10 साल से यहाँ से।
5: और कैसा लगा यहाँ का हैंड वर्क वगैरह?
4: बहुत अच्छा होता है, हर साल न्यू कलेक्शन मिल जाता है। इस साल हैंड वर्क, कच्ची वर्क, पोजीशन प्रिंट है, हर साल न्यू कलेक्शन मिल जाता है। बंडी, पाखड़ी, छतरी, नाकड़ी सब मिल जाता है।
1: हर साल की तरह इस साल भी गुजरात में बनी इन ड्रेसेस की डिमांड देश के दूसरे राज्यों में काफी है, लिहाजा नवरात्रि के नजदीक आते ही इस बार गुजरात से चनिया चोली, लहंगा, कुर्ता और पगड़ी की डिलीवरी शुरू हो गई है। झांसी से अजय झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
6: गुजरात के जामनगर में नवरात्रि से पहले पारंपरिक अंगारा रास की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस अनोखी परंपरा के तहत युवा जलते हुए अंगारों के बीच रास का अभ्यास कर रहे हैं। अंगारों से उठती गर्मी के बीच युवाओं की ये शक्ति आराधना ही है। नवरात्र के दौरान होने वाले इस पारंपरिक रास को लेकर युवाओं में काफी उत्साह है और वो पूरी तरह से इस अभ्यास में जुटे हुए हैं।
7: गरबा हमारा जामनगर में होता है और हमारा यहाँ का फेमस रास है वो है मसाल रास है, और हम मसाल रास खेलते खेलते जो हमारा स्वस्तिक है वो बनाते हैं, और माता जी का शस्त्र बोलते त्रिशूल वो भी बनाते हैं, और गरबा के अंत में हम अंगारों पे खेलते हैं और वो भी खुले पैर खेलते हैं, कोई लोशन या कुछ अप्लाई भी नहीं करते हैं, और ये हमारे ऊपर माता जी का आशीर्वाद है जो हमारे पैर में कुछ होता नहीं है, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और ये मसाला रास हम पिछले 25 सालों से खेल रहे हैं, और ये गरबा हमारा गरबा मंडल है जो ये पिछले 70 सालों से यहाँ पे कार्यरत है।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों
8: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं है खुशियाँ तो कहीं ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
3: आज भारतीय वायुसेना मना रही है अपना 94वां स्थापना दिवस। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर वायुवीरों का शौर्य और पराक्रम, आसमान में दिखी सेना की ताकत।
4: राजस्थान की धरती पर वायुवीरों का तरंग शक्ति युद्धाभ्यास जारी। सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने खास विमानों के साथ भरी उड़ान, आसमान में दिखाए हैरतअंगेज करतब।
3: नवरात्र से पहले भक्ति के रंग बिरंगी झांसी नगरी, ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी से मां दुर्गा का भव्य स्वागत। मां के आगमन पर श्रद्धालुओं ने लगाई जयकारे।
4: औरैया में रामलीला से पहले निकली भविष्य बारात, विभिन्न देवी देवताओं के मनमोहक झांकियों का लोगों ने पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। भक्ति गीतों पर जमकर झूमे श्रद्धालु।
3: पीएम मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया, कहा 10 साल में तकनीक ने देश को बदला है, साइबर फ्रॉड रोकने के लिए बने ग्लोबल फ्रेमवर्क।
4: चीन के शियांडू पहाड़ का दिखा अद्भुत नजारा, बादलों के बीच बसा जन्नत, मनमोहक दृश्य देख मंत्रमुग्ध हुए सैलानी।
3: दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में निधन हुआ, बॉलीवुड समेत पूरा देश गमगीन हुआ। पीएम ने कहा उन्हें पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम
3: सच गई है। खबरों की प्लेट तैयार है, गुड न्यूज का मेन्यू। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लंच टाइम में, मैं हूं आपके साथ दीपाली सिन्हा।
4: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। तो खबरों की रफ्तार वही है, बस परिभाषाएं नहीं है। हम आपको ट्रेंडिंग न्यूज से लेकर वायरल न्यूज तक हर अहम खबर दिखाने वाले हैं, लेकिन पहले शुरुआत करते हैं 5 मिनट में 25 अच्छी खबरों के साथ।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
3: आज भारतीय वायुसेना का 94वां स्थापना दिवस, गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर मुख्य समारोह का आयोजन। वायुसेना दिवस परेड में IAF की ऑपरेशनल क्षमता, अनुशासन और शानदार विरासत का प्रदर्शन, जवानों को किया गया सम्मानित। हिंडन एयरबेस पर भव्य एयर शो का आयोजन, आसमान में वायुसेना के विमानों का दिखा पराक्रम, फ्लाई पास्ट में हेलीकॉप्टर भी हुए शामिल। राजस्थान की धरती पर वायुवीरों का अभ्यास जारी, तरंग शक्ति 2026 के दूसरे चरण का दिखा रोमांच। जोधपुर एयरबेस पर भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने खास लाल रंग के विमानों के साथ भरी उड़ान, आसमान में दिखाई हैरतअंगेज कर।
5: By technology, innovation and
4: इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन, 10 अक्टूबर तक नई दिल्ली के यशो भूमि में चलेगा ये सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा मोबाइल फोन ने भारत में कंटेंट क्रिएशन में क्रांति ला दी है, लेकिन फोन और नेटवर्क की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। दुनिया भर की बड़ी टेक और टेलीकॉम कंपनियां, स्टार्टअप और इंडस्ट्री के बड़े नाम ले रहे हैं इसमें हिस्सा। इवेंट में टेलीकॉम को 5G से 6G तक कैसे लेकर जाया जाए, इस पर होगी चर्चा। कैप्टन स्मिथ मछार की सेहत में हो रहा सुधार, विदेश मंत्रालय ने दी इसके बारे में जानकारी, अबू धाबी के अस्पताल में चल रहा उनका इलाज। एशियन गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल जीतने वाली बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन का गुवाहाटी में अभिनंदन, असम सरकार, असम ओलंपिक संघ और बॉक्सिंग संघ ने किया उन्हें सम्मानित।
3: धर्मशाला का मौसम हुआ कूल कूल, तो वहीं धौलाधार की चोटियां ताजा बर्फबारी के सफेद चादर से ढकी। हिमाचल प्रदेश में 9 अक्टूबर तक मौसम खराब रहने का अलर्ट जारी, कई इलाकों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना। राजस्थान में 11 से 12 अक्टूबर से मौसम बदलेगा, उत्तर पश्चिमी हिस्सों में हल्की बारिश के आसार, बढ़ेगी ठंड। गुजरात के अमरेली जिले में शेरनियों के कुएं में गिरने की दो अलग अलग घटनाएं सामने आई, जाफराबाद और धारी में वन विभाग ने रेस्क्यू कर दोनों शेरनियों को बचाया। अमरावती का अंबा माता मंदिर शारदीय नवरात्रि के लिए रंग बिरंगी रोशनी से सज गया है, रात में रोशनी से नहाया मंदिर श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
4: नवरात्र से पहले गुजरात के जामनगर में नौजवान अंगारा रास की तैयारियों में जुटे, हाथों में जलते हुए अंगारे लेकर प्रैक्टिस करते हुए नजर आए। गुजरात में वडोदरा नगर निगम ने नवरात्र से पहले किया विकसित भारत संकल्प गरबा का आयोजन, बड़ी संख्या में इसमें लोग शामिल हुए। ओडिशा के धर्मगढ़ में दुर्गा पूजा की तैयारियां, कोलकाता से आए कारीगर पारंपरिक बंगाली शिल्प कौशल का उपयोग करके बना रहे हैं मूर्तियां। कोलकाता में दुर्गा पूजा को लेकर उत्साह, सैकड़ों सालों में पहली बार क्रिसमस के लिए मशहूर पार्क स्ट्रीट कोलकाता के सबसे बड़े दुर्गा पूजा समारोह की मेजबानी करेगा। नैनीताल के विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम में लगातार बढ़ रही श्रद्धालुओं की भीड़, एक दिन में पहुंच रहे हैं 50,000 से ज्यादा लोग।
3: नवंबर को रिलीज से पहले फिल्म रामायण का 4 नवंबर को पेड प्रीव्यू रखा जाएगा, दर्शकों को फिल्म रिलीज से एक दिन पहले ही बड़े पर्दे पर देखने का मौका मिलेगा। अजय देवगन की दृश्यम 3 ने बॉक्स ऑफिस पर बनाई शानदार रफ्तार, फिल्म ने 6 दिनों में भारत में करीब 232 करोड़ और दुनिया भर में 350 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया। आलिया भट्ट स्पेन में कर रही हैं वेकेशन एंजॉय, खूबसूरत तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर कर रही हैं। सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन के बाद महांडी अब ओटीटी पर दे चुकी है दस्तक, फिल्म आज से नेटफ्लिक्स पर कई भारतीय भाषाओं में स्ट्रीम होगी। हाइप का वीवर्स कॉन फेस्टिवल पहली बार होने जा रहा है भारत में, दिल्ली में 27 से 28 मार्च 2027 को होने वाले इस फेस्टिवल में के पॉप के साथ भारतीय कलाकार भी परफॉर्म करेंगे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
4: तो चलिए 25 अच्छी खबरों के बाद अब खबरें विस्तार से, आपके लिए खबरों की प्लेट बिल्कुल तैयार है,
3: तो चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेंडिंग न्यूज के साथ।
4: आज भारतीय वायुसेना मना रही अपना 94वां स्थापना दिवस, गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर वायु वीरों का शौर्य पराक्रम दिखा, आसमान में दिखी सेना की ताकत।
3: नवरात्र से पहले भक्ति के रंग में रंगी दिखी झांसी नगरी।
4: गुजरात के जामनगर में नवरात्रि से पहले पारंपरिक अंगारा रास की तैयारियां जोरों पर, लोगों ने हाथों में जलती हुई मशाले लेकर किया पारंपरिक गरबा स्टेप्स, अंगारों पर रंगे पांव किया नृत्य का अभ्यास।
3: चाइना के शियांडू पहाड़ का दिखा अद्भुत नजारा, बादलों के बीच बसा जन्नत, मनमोहक दृश्य देखकर मंत्रमुग्ध हुए सैलानी।
4: दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में निधन, गोवा में ली अंतिम सांस, बॉलीवुड समेत पूरा देश गमगीन।

0: तो लंच टाइम की शुरुआत करते हैं और लंच टाइम में आज सबसे पहले बात हिंद के शक्ति उत्सव की। भारतीय वायुसेना अपना 94वां स्थापना दिवस मना रही है। भारतीय वायुसेना की स्थापना आज ही के दिन यानी कि साल 1932 में हुई थी। गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर आज सुबह से ही उत्सव का माहौल जो है वो बन गया है। तस्वीरें जो है ये पल को बयां कर रही है जब एयरफोर्स डे का यहाँ पर आयोजन हुआ। भारतीय वायुसेना के स्थापना दिवस के अवसर पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया।
1: तो वहीं इस समारोह की शुरुआत मुख्य परेड से हुई जिसमें वायुसेना के जवानों ने बैंड की धुन पर जब कदमताल किया तो मानो शौर्य गाथा की गान ने लोगों में जोश भर दिया। परेड के दौरान दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाई और देश की रक्षा करने वाले जवानों के प्रति सम्मान का इजहार किया। इस खास अवसर पर वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह समारोह में शामिल हुए। वायुसेना प्रमुख ने परेड की सलामी ली और जवानों के पराक्रम और अनुशासन की सराहना की।
0: देखिए इस बार भारतीय वायुसेना दिवस की थीम है अचूक अभेद्य सटीक। परेड से लेकर विमानों की प्रदर्शनी और कर्तव्य इसमें शामिल है। एयरफोर्स के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। आपको बता दें कि जो महिला कमांडिंग ऑफिसर के नेतृत्व में महिला सैनिकों ने 303 राइफल के साथ हैरत अंगेज कर्तव्य दिखाए। इसके जरिए भारतीय वायुसेना में नारी शक्ति और महिला सशक्तिकरण का बेहतरीन संदेश दिया गया जिसके बारे में अक्सर हम बात करते हैं। इसके साथ ही वायुसेना दिवस के इतिहास में पहली बार ड्रमर्स ड्रिल का अनोखा प्रदर्शन भी मुख्य परेड समारोह का हिस्सा बना
1: और टीम ने अपनी शानदार ड्रमर्स ड्रिल और थाप से परेड मैदान में दर्शकों के बीच जबरदस्त जोश भर दिया। इसके अलावा फाइटर जेट्स और मेक इन इंडिया हथियारों ने भी वायुसेना की ताकत की नजीर पेश की। पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल को डिस्प्ले में रखा गया। ब्रह्मोस के साथ ही तेजस, सुखोई और प्रचंड भी प्रदर्शनी में शामिल किए गए।
0: देखिए आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज आपको बता दें इंडियन एयरफोर्स अपना 94वां एयरफोर्स डे मना रहा है जिसकी शानदार तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि इस बार नारी सशक्तिकरण जिसके बारे में अक्सर हम बात करते हैं उसका बेहतरीन संदेश दिया गया।
1: एयरबेस पर वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह समारोह में शामिल हुए। उन्होंने परेड की सलामी ली और उत्कृष्ट कार्य करने वाले जवानों को सम्मानित किया। इस दौरान वायुसेना के प्रमुख ने जवानों को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए वायु शक्ति सबसे अहम है और देश हर किस्म की चुनौती से निपटने के लिए तैयार है।
2: मैं आज इस दिन को स्मरण और आत्मचिंतन के करने के अवसर के रूप में देखता हूं। आज हमें याद करना होगा वो कसम जो हमने एयरफोर्स की वर्दी पहनते समय खाई थी। याद करें इस गौरवशाली सेना का सफर, हमने कहां से शुरुआत की और आज हम कहां खड़े हैं। याद कीजिए अपने पूर्वजों को जिनके कारण वायुसेना आज इतनी सुदृढ़ है और याद कीजिए उन सब वीरों और वीरांगनाओं को जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। ये स्मृतियां हमें राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को सही तरह से निर्वहन करने की प्रेरणा देंगे।
0: तो भारतीय वायुसेना के 94वें स्थापना दिवस के अवसर पर गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर आयोजित समारोह में इतिहास में पहली बार किसी महिला अधिकारी के नेतृत्व में 303 राइफल ड्रिल का प्रदर्शन किया गया। महिला कमांडिंग ऑफिसर के नेतृत्व में महिला सैनिकों ने 303 राइफल के साथ हैरत अंगेज कर्तव्य दिखाए। आप देख सकते हैं किस तरीके से उन्होंने ये कर्तव्य दिखाए जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। इस विशेष ड्रिल टीम का नाम शक्ति है जिसमें 28 महिला योद्धा शामिल थी। ये प्रदर्शन ड्रिल टू थ्रिल थीम पर आधारित था। इसके जरिए भारतीय वायुसेना में नारी शक्ति और महिला सशक्तिकरण का बेहतरीन संदेश दिया गया।

तो देखिए वायुसेना दिवस परेड के दौरान भारतीय वायुसेना की ड्रमर्स टीम ने अपने अनोखे म्यूजिकल कौशल का प्रदर्शन किया। इस विशेष ड्रमर्स टीम में 33 युवा पुरुष और महिला एयर वॉरियर शामिल हैं। बड़ी बात यह है कि पहली बार इस ड्रमर्स ड्रिल का नेतृत्व एक महिला वायु सैनिक कर्मी ने किया है। और ड्रमर्स ड्रिल भारतीय वायुसेना का एक बेहद ही अनोखा, अनुशासित और संगीतमय प्रदर्शन है, जिसे पहली बार वायुसेना दिवस समारोह के मुख्य आकर्षणों में शामिल किया गया है। ये ड्रिल बिना किसी वॉइस कमांड के सिर्फ ड्रम की थाप पर अपना प्रदर्शन करती है।

0: फ्लीट।
1: तो देखिए आपको बताएं कि ट्रिब्यूट टू ट्रेडिशन एंड ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट 90 सालों की ऐतिहासिक यात्रा का नजारा आप यहाँ पे दिखा रहे हैं। 1930 के दशक का एक प्रसिद्ध ब्रिटिश बाइप्लेन, दो पंखों वाला जिसे कहा जाता है, ये एक विमान है जिसे मुख्य रूप से एक बुनियादी प्रशिक्षण विमान यानी कि अंग्रेजी में अगर हम बताएं तो प्राइमरी ट्रेनर एयरक्राफ्ट के रूप में इसे खास तौर पर डिजाइन किया गया है।
0: द एयरक्राफ्ट टुडे इज बीरा एंड ग्रुप कैप्टन अमित धोपावकर। इट डिपिक्स द जर्नी of the Indian Air Force over the past 90 years. The end.
2: गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर समारोह का आकर्षण वायु वीरों की परेड और ड्रिल रही, तो वहीं जोधपुर का आसमान वायु वीरों के हैरतअंगेज प्रदर्शन का गवाह बना रहा। जोधपुर में वायुसेना दिवस पर एयर शो का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं भारतीय वायुसेना का नया योद्धा राफेल, वायुसेना की रीढ़ स्वदेशी सुखोई जैगवार जैसे लड़ाकू विमान हवा में जाबाजी का प्रदर्शन कर रहे हैं। स्वदेशी फाइटर जेट तेजस का कोबरा मैन्यूवर और राफेल और सुखोई 30 MKI की सोलो उड़ान भी आकर्षण का केंद्र है। वायुसेना का ग्लोब मास्टर विमान भी आसमान में अपनी ताकत की नुमाइश करता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं जोधपुर में अभी तरंग शक्ति युद्धाभ्यास जारी है। आपको बता दें इस युद्धाभ्यास के दौरान वायुसेना दिवस पर जोधपुर में सूर्य किरण एरोबैटिक टीम आसमान में जाबाजी का प्रदर्शन कर रही है, तो वहीं भारत की अगुवाई में हो रहे तरंग शक्ति युद्धाभ्यास में अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, यूएई, श्रीलंका, बांग्लादेश और जर्मनी की एयरफोर्स के जवान भी इस एयर शो को देखने के लिए पहुंचे हुए नजर आए।
1: देखिए इस एयर शो के खास आकर्षण में से एक ये दृश्य भी है जो इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, यानी सूर्य किरण एरोबैटिक टीम जिसका इंतजार हर साल सभी को होता है। सूर्य किरण टीम के 9 हॉक MK-132 विमानों ने एक साथ उड़ान भरी, वो आसमान में अलग अलग फॉर्मेशन बना रहे हैं। जोधपुर एयरबेस से ये विमान करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरते हुए आसमान में वर्टिकल क्लाइंब, इन्वर्टेड क्रॉसओवर, बैरल रोल जैसे फॉर्मेशन बना रहा है। सूर्य किरण टीम के हॉक विमानों ने अलग अलग तरह के सटीक फॉर्मेशंस और रोमांचक हवाई करतब दिखाए। विमानों ने केसरिया, सफेद और हरे रंग के धुएं से तिरंगा फॉर्मेशन बनाया जो कि काफी खूबसूरत नजर आया। यही नहीं, DNA फॉर्मेशन भी उन्होंने बनाए

0: संपन्न हुआ, लेकिन जनता के लिए बड़ा और मुख्य फ्लाईपास्ट एयर शो इस बार वाराणसी में आयोजित किया गया है।
1: बिल्कुल, देखिए इतिहास में ये पहली बार होगा जब वायुसेना दिवस का मेगा एयर शो वाराणसी में गंगा नदी के ऊपर किया जाएगा। ऐसे में आइए आपको यहाँ पे ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि वाराणसी में होने वाले मुख्य एयर शो के कार्यक्रम में कौन से मुख्य बिंदु हैं। तो आपको यहाँ पे बता दें कि 24 से 26 अक्टूबर के बीच वाराणसी में एयर शो और फ्लाई पास्ट का आयोजन किया जाएगा। 25 अक्टूबर को मुख्य एयर शो का आयोजन होगा।
0: तो वहीं आपको बता दें वाराणसी में 80 घाट से लेकर नमो घाट तक गंगा नदी के ऊपर एयरफोर्स के विमान करतब दिखाने वाले हैं। मेगा एयर शो में 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर शामिल होंगे। राफेल, तेजस और सूर्य किरण एरोबैटिक टीम आसमान में जाबाजी का प्रदर्शन करने जा रही है।
1: काशी की आध्यात्मिक पहचान को दर्शाने के लिए आसमान में विशेष त्रिशूल फॉर्मेशन भी बनाया जाएगा, जिसे सुखोई, राफेल और तेजस जैसे आधुनिक फाइटर जेट्स द्वारा आसमान में बनाया जाएगा। आपको बता दें कि ये जो हवाई प्रदर्शन है ये 24 से 26 अक्टूबर के बीच रोजाना 12 बजे के करीब जो है आयोजित किया जाएगा। ये हवाई प्रदर्शन लगभग 90 मिनट का होगा। नमो घाट से लेकर 80 घाट के बीच गंगा किनारे लाखों लोग इस नजारे को लाइव देख सकते हैं।
0: और चलिए अब बात करते हैं शक्ति उत्सव की।

0: तो देश भर में नवरात्र पर्व की तैयारी तेज हो गई है। दिल्ली से लेकर वैष्णो धाम तक मां का दरबार सजने लगा है। अमरावती में मां अंबा के दरबार को भव्य रूप से सजाया गया है।
1: बिल्कुल, जहां पे नवरात्रि के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की भी उम्मीद है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहां पर सुंदर तस्वीरें अलग अलग जगहों से आ रही हैं। वहीं आपको बता दें कि गुजरात के अंबाजी में 68 भक्तों की अनोखी यात्रा आस्था और भक्ति का संदेश दे रही है। श्रद्धालु पूरे उत्साह के साथ माँ के दरबार की ओर बढ़ रहे हैं और प्रयागराज में रामलीला मंचन से पहले विधि विधान के साथ मुकुट पूजन भी किया गया।
0: तो वहीं आपको बता दें, शक्ति उत्सव को लेकर भी मंदिरों और पूजा पंडालों में तैयारियां तेज हो चुकी हैं। इसके अलावा नवरात्रि से पहले वडोदरा में भी उत्सव का माहौल देखने को मिल रहा है। यहां पर लोगों ने धार्मिक और सांस्कृतिक उत्सव के साथ पर्व की तैयारियों का आगाज किया। गरबा रास के साथ प्री गरबा इवेंट में भक्तों ने माँ की आराधना की। वहीं मुंबई के बाजार पारंपरिक परिधानों से सजे हुए नजर आए। चनिया चोली, साड़ियों, कुर्तों और पारंपरिक आभूषणों की खरीदारी के लिए बाजारों में लोगों की भीड़ बढ़ने लगी है।

0: देश भर में शक्ति उत्सव की तैयारियां जोरों पर है। मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा गढ़ी जा रही है। मां की कोई मूर्ति तैयार होने के बेहद करीब है तो किसी को अभी आकार दिया जा रहा है। कुछ मूर्तियों में रंग भरे जा रहे हैं। मूर्तिकार छोटी बड़ी हजारों मूर्तियों को गढ़ने और तराशने में व्यस्त हैं ताकि वक्त पर मूर्तियों की डिलीवरी की जा सके। देश के अलग अलग हिस्सों में मूर्तिकार दिन रात लगकर प्रतिमाओं को तैयार करने में जुटे हुए हैं। कुछ परिवार और मूर्तिकार ऐसे भी हैं जो सालों से माँ दुर्गा की प्रतिमाएं तैयार कर रहे हैं।
1: मूर्ति का काम करते करते हमारा 65 साल हो गया। यही काम में छोटा उम्र से ही काम शुरू किया और प्रभार यहाँ पर 50 साल है। और मूर्ति काम में मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट और क्या है, ये पैसा अपन ज़्यादा कमाया नहीं इसमें, हमारा रोजी रोटी चल गया, लेकिन मन को बहुत शांति मिला और कोई काम में नहीं मिला मेरे को।
0: इन प्रतिमाओं का पारंपरिक स्वरूप ही इनकी खास पहचान है। शुरुआती दौर में बड़ी संख्या में कारीगर प्रतिमाओं का ढांचा बनाने और मिट्टी लगाने का काम करते हैं। इसके बाद प्रतिमाओं की फिनिशिंग, रंगाई और श्रृंगार का काम शुरू होता है। रायपुर की इस कार्यशाला में माँ की हर प्रतिमा में कला, पारंपरिक शैली की एक अनूठी और गहरी छाप दिखती है। ऑर्डर के हिसाब से ही माँ का स्वरूप तैयार किया जा रहा है, जिसमें मूर्तिकार की कल्पना और

0: कार्य कुशलता की छाप भी देखने को मिल रही है।
1: यहाँ करीबन 2 साल से मूर्ति बना रहा हूँ और यहाँ की मूर्ति उड़ीसा, मुंगेली, छत्तीसगढ़ के अन्य जिले में भी जाती है। बार खास ये है कि कस्टमर के चॉइस के हिसाब से बना है, कुछ कुछ हम लोग भी अपना क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, कुछ कुछ अपना भी डाल रहे हैं और कस्टमर भी लेके आ रहे हैं मूर्ति, इस टाइप का बनाओ, इस टाइप का वो करो, ऐसे टाइप का हो रहा है।
0: दुर्गा पूजा के आरंभ होने में अब बहुत कम समय रह गया है, इसीलिए कारीगर तेजी से काम पूरा करने में जुटे हुए हैं। मूर्ति निर्माण के पीछे की उनकी महीनों की मेहनत बस इस बात पर टिकी है कि भक्तों को उनकी बनाई मूर्ति पसंद आए, माँ का स्वरूप जो उन्होंने गढ़ा है वो श्रद्धालु के मन में बस जाए।
2: तो मेहनत का फल ही होता है कि कोई हमको बोल दे कि आपका मूर्ति बहुत सुंदर हुई है तो हम लोगों का दिल गदगद हो जाता है, ताकि हाँ हमारा मेहनत रंग लाया। हम लोग मूर्ति कई रेट से कम ज़्यादा होता है तो हम लोग उसमें उतना फोकस नहीं करते, लेकिन जितना कोई बोल दे कि आपका मूर्ति बहुत सुंदर है तो हमारा मन बहुत ज़्यादा उत्साहित होता है कि और कुछ राय में हम करेंगे।
0: कलाकारों और मूर्तिकारों की इस अथक मेहनत ने उत्सव के माहौल को और भी खास बना दिया है। यही कारण है कि देश के कोने कोने में दुर्गा पूजा का उत्सव चरम पर पहुंच चुका है। आने वाले दिनों में इसमें और इजाफा होने की उम्मीद है। महेंद्रगढ़ से धीरेन्द्र विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: तो नवरात्रि का इंतजार अब खत्म होने वाला है, शहर शहर मां का दरबार सजने वाला है। अमरावती में मां अंबा माता के दरबार को इस खास पर्व के लिए भव्य तरीके से तैयार किया गया है।
4: 9 दिनों तक यहां पर धार्मिक अनुष्ठानों के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। मंदिर परिसर से लेकर आसपास के बाजारों तक नवरात्रि की रौनक अभी से दिखाई देने लगी है।

0: रंग बिरंगी रोशनी से माता का भवन जगमगा रहा है। मंदिर का कोना कोना फूलों की खुशबू से महक उठा है। पूरा दरबार शारदीय नवरात्रि के रंग में रंग चुका है। अमरावती में ये विदर्भ की कुल स्वामिनी अंबा माता का दरबार है, जहां शारदीय नवरात्र को लेकर तैयारियां अब अंतिम दौर में हैं। मंदिर को खास तौर से सजाया गया है और माता के दर्शन के लिए भक्तों के स्वागत की तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं।
1: शारदीय नवरात्र उत्सव के चलते जो है हर देवी के मंदिर में जो है अब तैयारियां शुरू हुई है। हम फिलहाल है विदर्भ की कुल स्वामिनी अमरावती की माँ अम्बे के इस मंदिर में, जहाँ पर आप देख सकते हो कि मंदिर को जो है पूरी तरीके से लाइटिंग से सजाया है। यहाँ पर पूरी तरीके से रोशनाई शुरू कर दी है।
0: मंदिर की साफ सफाई और रंग रोगन के साथ माता के सोने चांदी के आभूषणों को भी चमकाया गया है। माता के श्रृंगार और आरती की तैयारियों के साथ मंदिर के बाहर भी नवरात्रि का रंग नजर आने लगा है। प्रसाद और पूजा सामग्री की दुकानें सज गई हैं। नवरात्र के पहले दिन सुबह होते ही माता के दरबार में अनुष्ठान का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सबसे पहले विधि विधान से माता का भव्य अभिषेक होगा। इसके बाद सोने चांदी के आभूषणों से माता का दिव्य श्रृंगार किया जाएगा और फिर आरती के साथ माँ के जयकारों के साथ पूरा मंदिर गूंज उठेगा।
2: 11 तारीख रविवार सुबह 4:30 बजे से श्री अम्बा देवी का सहस्त्र धारा महाअभिषेक प्रारंभ होगा। धर्म ध्वजारोहण जो साल में 2 बार होता है, दोनों प्रतिपदाओं को होता है, वो उस दिन होगा।
0: विदर्भ ही नहीं, महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु अमरावती पहुंचते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में यहां भक्तों की भीड़ बढ़ती है और माता का दरबार जयकारों से गूंज उठता है।
2: भक्तों के लिए दर्शन के लिए मंदिर रोज सुबह 6 बजे से तो रात को 11:30 तक खुला रहेगा। पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए एक विस्तीर्ण मंडप का हमने प्रावधान किया, मंडप वहां पर हमने खड़ा किया है और सभी भक्तों को, महिला एवं पुरुष भक्तों को, मंदिर की जो पूर्व दिशा है उस तरफ से प्रवेश मिलने वाला है।
0: 9 दिनों तक अम्बा माता का ये दरबार भक्ति और आस्था का केंद्र बना रहेगा। हर तरफ एक ही आस होगी, माँ के दर्शन हो, आशीर्वाद मिले और घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। अमरावती से धनंजय सावले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: नवरात्र यानी शक्ति की आराधना और माँ दुर्गा की भक्ति का पर्व, और गुजरात में इस भक्ति का रंग गरबा और डांडिया के जरिए दिखाई देता है। देखिए, जहाँ पे गरबा के हर कदम में माँ की आराधना है और हर ताल में शक्ति की उपासना, वडोदरा में विकसित भारत संकल्प गरबा की थीम पर भव्य प्री गरबा इवेंट का आयोजन किया गया। 2 तस्वीरें इस वक्त आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको बता दें कि इस आयोजन में हजारों की संख्या में लोगों ने यहाँ पर हिस्सा लिया और जमकर डांस किया। पारंपरिक गरबा की धुन पर झूमते कदमों के बीच माँ शक्ति की आराधना भी हुई और विकसित भारत के संकल्प को जन जन तक पहुँचाने का संदेश भी दिया गया।

0: वैसे तो नवरात्रि के आगमन का उत्साह पूरे देश में है, लेकिन गुजरात जैसी रौनक कहीं और नहीं। नवरात्र के पावन 9 महीनों में हर घर, हर मैदान और हर दिल गरबा की धुन पर झूमता है। वडोदरा के इस विशाल पंडाल में गरबे का ये भव्य आयोजन हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ढोल नगाड़ों की थाप पर हजारों लोग माँ की आराधना में झूम रहे हैं। टोलियां बनाकर अलग अलग आकृतियों में गरबे की धुन पर नाचते झूमते इस जन सैलाब में महिलाओं और पुरुषों का उत्साह देखते बन रहा है। ये भव्य सांस्कृतिक जश्न है विकसित भारत संकल्प गरबा का, जिसे वडोदरा महानगर पालिका ने आयोजित किया है। इस विशेष आयोजन में वडोदरा की प्रसिद्ध गरबा संस्कृति को नागरिक भागीदारी, विकास और विकसित भारत की भावना के साथ जोड़ा गया है। ये कार्यक्रम वडोदरा की विरासत, स्वच्छता, नारी शक्ति और विकसित भारत 2047 के विजन पर आधारित है, जिसमें नागरिकों के लिए निःशुल्क एंट्री रखी गई है।
1: कार्यक्रम ये आज वडोदरा की ओलकान कला नगरी संस्कारी नगरी को आगे ले जाने का एक प्रयत्न है। उस प्रयत्न के साथ साथ कला नगरी के ओपनिंग सेरेमनी में होगा, फिर नारी शक्ति को भी प्राधान्य देके नारी शक्ति को वर्ल्ड में ले जाएंगे। तीसरा, हम इसको आज स्वच्छ भारत बनाने के, स्वच्छ वडोदरा बनाने का एक प्रयत्न भी है। और फोर्थ, विकसित भारत का संकल्प भी आज यहाँ वडोदरा से लिया जाएगा। और फाइनली एक गिनीस वर्ल्ड रिकॉर्ड लार्जेस्ट गरबा ऑफ द वर्ल्ड करने का एक प्रयत्न है। आज यहाँ पे सामान्य व्यक्ति को भी इस ग्राउंड को एक्सेस देके इसको एक्सक्लूसिव से इंक्लूसिव करने का एक प्रयत्न भी हम कर रहे हैं।
0: कार्यक्रम में चमचमात और रंग बिरंगी चिनिया चोली और पारंपरिक केडिया कुर्ता पहने लोग संगीत की धुन पर मस्ती से झूमते नजर आ रहे हैं। विशाल पंडाल में एक ताल एक लय पर जब गरबा प्रेमी सजे धजे पारंपरिक पोशाक में गरबा की धुनों पर थिरके तो नजारा देखते ही बन रहा था।
2: और यहाँ पे खूब ही अच्छे और सच्चे मन से हम लोग माता जी की श्रद्धा से गरबे खेलने आए हैं और विकसित भारत थीम पे हमें बहुत ही गर्व है। एंड थैंक यू सो मच VMC कि आपने इस थीम पे हम सबको आगरा से निमंत्रित किया है।
3: बहुत ही मस्त विकसित भारत पे आज यहाँ पे देख सकते हो काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पे यूनाइटेड वे ऑफ वडोदरा जो वर्ल्ड प्रसिद्ध है गरबा, जो आज यहाँ पर काफी जनसंख्या में लोग आए हुए हैं। सो आप देख सकते हो इतना अच्छा मैनेजमेंट है, बहुत अच्छा। और अतुल दादा तो हमारे सबके फेवरेट है, जो इतना वर्षों से सिंगिंग कर रहे। फ्री एंट्री था तो सभी दूसरे प्लेयर्स भी ज्वाइन हुए, तो बस इसी तरह माता जी की आराधना करेंगे हम लोग। 9 दिन आने वाले दिनों में भी 9 दिन माता जी की आराधना हम लोग करेंगे।
4: हम लोग रात्रि बिफोर नवरात्रि अतुल पुरोहित के साथ विकसित भारत की थीम पे यहाँ पे यूनाइटेड वे के ग्राउंड पे आज खेलने आए थे। आज का हमारा ये जो एनर्जेटिक एक्सपीरियंस है, जैसे आप सुन सकते हो बैकग्राउंड में कि किस हिसाब से चल रहा है, पीछे सब स्टूडेंट्स और वो सब विकसित भारत पे डांस और गरबा परफॉर्म कर रहे हैं। माहौल बहुत ही अच्छा हो चुका है, अभी सब लोग एनर्जेटिक है, एवरीवन इज रेडी। और मेन तो वही चीज है कि हम लोग यहाँ पे विकसित भारत पे कर रहे हैं।
0: और इस आयोजन का विशेष आकर्षण रहा प्रसिद्ध अतुल पुरोहित की प्रस्तुतियाँ, जिन्होंने पारंपरिक धुनों पर लोगों को थिरकने पर मजबूर कर दिया।
5: कम से कम 1,00,000 लोग यहाँ विजिट करेंगे और हमारा गुजरात का जो कल्चर है, बड़ौदा की जो सुगंध है, जो ग्लोबल है, उसको और आगे बढ़ाने के लिए ये प्रयास है। और इसमें हम लोग गुजराती परंपरागत कल्चरल गरबा ही गाते हैं। बस गरबा किसको बोलते हैं ये आज बड़ौदा से आप इसके माध्यम से आप देख सकेंगे।
0: जब गरबा का उत्साह शुरू होता है तो गुजरात की रौनक देखने लायक होती है। लोग अलग अलग थीम पर गरबा करते हैं। इस साल वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने विकसित भारत संकल्प गरबा की थीम के साथ लोगों का ध्यान बटोरने की कोशिश की है। गुजरात के उत्सव की धड़कनों में बसा है गरबा। इस प्री गरबा इवेंट से साफ है कि माँ अम्बे की आराधना का त्योहार पूरे उत्साह और उल्लास से मनाने के लिए गरबा प्रेमी कमर कस चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: गुजरात के जामनगर में नवरात्रि से पहले पारंपरिक अंगारा रास की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इस अनोखी परंपरा के तहत युवा जलते हुए अंगारों के बीच रास का अभ्यास कर रहे हैं। अंगारों से उठती गर्मी के बीच युवाओं की ये शक्ति आराधना ही है। नवरात्रि के दौरान होने वाले इस पारंपरिक रास को लेकर युवाओं में खासा उत्साह है और वे पूरी तैयारी के साथ अभ्यास में जुटे हुए हैं।

0: तो चलिए बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बहुत याद आएंगे नाना।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोग
2: सास बहू और बेटियां में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं है खुशियां तो कहीं ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटियां में।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: आज भारतीय वायुसेना मना रही है अपना 94वां स्थापना दिवस। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर वायुसेना का शौर्य का और पराक्रम का प्रदर्शन, आसमान में दिखी सेना की ताकत।
3: राजस्थान की धरती पर वायुवीरों का तरंग शक्ति युद्धाभ्यास जारी। सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने खास विमानों के साथ भरी उड़ान, आसमान में दिखाए हैरत अंगेज करतब।
2: नवरात्र से पहले भक्ति के रंग में रंगी झांसी नगरी, ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी से मां दुर्गा का भव्य स्वागत। मां के आगमन पर श्रद्धालुओं ने लगाए जयकारे।
3: औरैया में रामलीला से पहले निकली भव्य शिव बारात, विभिन्न देवी देवताओं की मनमोहक झांकियों का लोगों ने पुष्प वर्षा कर किया स्वागत। भक्ति गीतों पर जमकर झूमे श्रद्धालु।
2: सवाई माधोपुर के रणथंभौर में तेंदुए के हमले को रोकने के लिए हाईटेक प्लान तैयार किया गया। लेपर्ड की मॉनिटरिंग के लिए लगाए जाएंगे साइलेंट डिवाइस और हाई ट्रैक सेंसर, जानवर आते ही बजेगा अलार्म।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस का किया उद्घाटन, कहा 10 साल में तकनीक ने देश को बदला, साइबर फ्रॉड रोकने के लिए बने ग्लोबल फ्रेमवर्क।
2: गोवा में दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में निधन हुआ, बॉलीवुड समेत पूरा देश गमगीन। पीएम ने कहा उन्हें पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: ब्रेक के बाद लंच टाइम में आपका बहुत स्वागत है। कुछ आवाजें वक्त के साथ खामोश हो जाती हैं, लेकिन उनकी गूंज हमेशा हमारे साथ रहती है। नाना पाटेकर हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन वो बेमिसाल अदाकारी की ऐसी विरासत पीछे छोड़ गए हैं जो अभिनय की दुनिया को हमेशा रोशन रखेगी।
3: बॉलीवुड का ये महान अभिनेता महज किरदार भर नहीं निभाता था, उसे जीता था, उसे महसूस करता था, और शायद यही वजह है कि उनके किरदार उनकी शख्सियत की ही तरह दर्शकों के दिलों पर हमेशा उनकी याद राज करेगी और वो हमेशा हमेशा के लिए सभी के दिलों में अमर रहेंगे।

0: बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार नाना पाटेकर का आज सुबह गोवा में निधन हो गया। नाना पाटेकर 75 वर्ष के थे और फिलहाल अपने परिवार के साथ पूना में रहते थे, लेकिन पूना शिफ्ट होने से पहले मुंबई के अंधेरी में नाना पाटेकर जहां रहते थे वो ये बिल्डिंग है जो फिलहाल डेवलपमेंट में गई है। और इसी बिल्डिंग में नाना पाटेकर के फ्लैट हैं जो अभी फिलहाल अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन जब ये बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन में नहीं थी इसके पहले नाना पाटेकर अपने परिवार के साथ यहाँ रहते थे और यहीं पे जो उत्सव है वो मनाते थे और अपने पूरे परिवार के साथ नाना पाटेकर यहाँ से उनकी माता जी के निधन के बाद शिफ्ट हुए थे, जिसके बाद ये बिल्डिंग रीडेवलपमेंट में गई और फिलहाल इस बिल्डिंग का डेवलपमेंट का काम चल रहा है। जो भी लोग यहाँ रहते थे वो सब अन्य जगहों पर शिफ्ट हो गए हैं। नाना पाटेकर के जाने से एक बड़ी क्षति पैदा हुई है जो कभी पूरी नहीं हो पाएगी, ना कि सिर्फ बॉलीवुड के लिए बल्कि समाज के लिए भी, क्योंकि नाना पाटेकर सिर्फ बॉलीवुड से नहीं बल्कि समाज के हर उस तबके से जुड़े थे जिस तबके को मदद की ज़रूरत थी, नज़र देने की ज़रूरत थी, ध्यान रखने की ज़रूरत थी, और इसीलिए हर उस तबके के दिल को नाना पाटेकर ने छूने का काम किया है। और इसीलिए नाना पाटेकर पर्दे पर जितना बड़ा किरदार थे, पर्दे पर जितने बड़े व्यक्ति थे, कलाकार थे, उससे कहीं ज़्यादा बड़े वो पर्दे के पीछे थे, क्योंकि उन्होंने कई जिंदगियों को छुआ था। कैमरामैन सिद्धेश के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई।
1: देखिए, सिनेमा के पर्दे पे जब कोई किरदार बोलता है तो उससे संवाद नहीं होता बल्कि उस किरदार और उसकी आवाज को महसूस किया जाता है। उन्हीं चुनिंदा कलाकारों में से एक थे नाना पाटेकर, जिनके निभाए किरदार ही उनकी पहचान बन गए। फिर चाहे परिंदा का खौफ हो, क्रांतिवीर का आक्रोश, अब तक 56 का रौप, वेलकम का उदय शेट्टी, हर किरदार में नाना ने अपनी ऐसी छाप छोड़ी जो पर्दे पर कहानी खत्म होने के बाद भी दर्शकों के जहन में हमेशा जिंदा है।
2: और जब गुस्सा दिखाना होता था तो नाना पाटेकर की आंखें ही काफी थीं, जब दर्द दिखाना होता था तो उनकी खामोशी भी बहुत कुछ कह जाती थी, और जब हंसाना होता था तो वही नाना पाटेकर उदय शेट्टी बनकर दर्शकों को हंसाने पर मजबूर कर देते थे। 75 साल की उम्र में नाना पाटेकर हमें अलविदा तक कह गए, लेकिन वो हमेशा हमारी यादों में हमारे साथ रहेंगे। और उनके करियर को आपके सामने विस्तार से अगर हम बताएं तो नाना पाटेकर का पूरा नाम विश्वनाथ पाटेकर है। फिल्मी दुनिया में उन्हें लोग प्यार से नाना पाटेकर के नाम से पुकारते थे।
1: नाना पाटेकर का जन्म महाराष्ट्र के रायगढ़ में 1951 को हुआ था। बड़े होते होते उन्होंने अपनी कला को पहचान और थिएटर में तब्दील कर दिया,
2: और इसके बाद 1978 में गमन फिल्म से फिल्मी करियर की उन्होंने शुरुआत की। हालांकि इसके बाद उन्होंने शुरुआती दौर में हिंदी के साथ साथ कई मराठी फिल्मों में भी काम किया।
1: 1980 के दशक में अंकुश, प्रतिघात, अंधा युद्ध, मोहरे और सलाम बॉम्बे फिल्मों ने उन्हें गंभीर और दमदार अभिनेता के रूप में फिल्मी दुनिया में एक अलग पहचान दिलाई। और इसके बाद 1989 में परिंदा उनके करियर का सबसे बड़ा मोड़ साबित हुई। फिल्म में गैंगस्टर की भूमिका के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्मफेयर पुरस्कार तक मिला था।
2: और फिर क्रांतिवीर 1994 में प्रताप नारायण तिलक का किरदार उनके करियर की सबसे यादगार भूमिकाओं में शामिल हुआ। इस भूमिका के लिए उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और फिल्मफेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया।
1: और करीब 5 दशक के फिल्मी सफर में नाना पाटेकर ने हिंदी, मराठी और अन्य भाषाओं में 60 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। तो देखिए, जाहिर सी बात है कि नाना पाटेकर का सफर जो है वो यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि उनके जैसे कलाकार भले ही जिंदगी के रंगमंच से विदा हो जाएं, हमें अलविदा कह जाएं, मगर अपने किरदारों के जरिए वो हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहते हैं। दर्शकों के दिलों में वो हमेशा ही यूं ही धड़कते रहेंगे।
2: उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने के साथ साथ पहाड़ों पर अब सर्दी ने दस्तक तेज कर दी है। आपको बता दें, चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट महसूस की जा रही है, तो वहीं बद्रीनाथ धाम में भी ठंड के बीच श्रद्धालुओं की आवाजाही जारी है।
1: वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान भी जता दिया है। देखिए पहाड़ों पर बदलते मौसम और बर्फ की खूबसूरत तस्वीरें।
3: मौसम ने करवट ली तो चमोली की ऊंची चोटियों का रंग भी बदल गया। हल्की बर्फबारी के बाद पहाड़ों पर सफेदी की खूबसूरत परत नजर आने लगी। हेमकुंड साहिब में बर्फबारी ने पूरे इलाके की तस्वीर बदल दी। छत से लेकर आसपास के रास्तों तक बर्फ की सफेदी नजर आ रही है। शांत पहाड़ों के बीच ये नजारा बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है।
4: चमोली में मौसम ने करवट बदल दी है। लगातार जोरदार बारिश इस समय पूरे जनपद में देखने को मिल रही है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, जोशीमठ और चमोली के तमाम जगहों पर इस समय बारिश और ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी का दौर देखने को मिल रहा है। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में बर्फबारी तो निचली जगहों पर बारिश के साथ ही ठंड हो रही है।
3: चमोली में मौसम के इस बदले मिजाज का असर अभी आगे भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि मौसम विभाग पहले ही वीकेंड पर बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर चुका है। यानी वीकेंड पर पहाड़ों में ठंड का असर और बढ़ सकता है। बद्रीनाथ धाम में भी बारिश के बाद ठंड का असर और बढ़ गया है। पहाड़ों पर बदलते मौसम का ये रंग श्रद्धालुओं को भी अलग एहसास दे रहा है।
4: इस समय जो बद्रीनाथ धाम की यात्रा है वो लगातार चरम पर चल रही है। गाड़ियों की कतार हर तरफ देखने को मिल रही है। ऐसे में यात्रा भी चल रही है, मौसम भी बदल रहा है, ठंड के बीच भी लगातार उत्साह जो है श्रद्धालुओं का बना हुआ है। ऐसे में मौसम विभाग का पूर्वानुमान जो है 10 अक्टूबर तक लगातार बारिश और बर्फबारी का दौर पहाड़ी ऊंची चोटियों पर देखने को मिलेगा।
3: वहीं हवाओं के बीच बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। दर्शन के लिए करीब 2 से 3 किलोमीटर लंबी कतार लग रही है, लेकिन ठंड भी भक्तों का उत्साह कम नहीं कर पा रही। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: बद्रीनाथ के पास है देवताल। मान्यता है कि यहाँ पर देवता स्नान करते हैं। देवताल में इन दिनों बर्फ से ढका एक ऐसा नजारा पेश कर रहा है जिसे देखकर हर कोई ठहर जाए। करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इस जगह को देखने के लिए सैलानी भी पहुंच रहे हैं। हर कोई बर्फ, पहाड़ और आसमान के इस अद्भुत मेले को देखकर हैरान है। देखिए देवताल की खूबसूरत तस्वीरें।
3: ये वो जगह है जहाँ देवता स्नान के लिए आते हैं। दुनिया इसे देवताल के नाम से जानती है। इन दिनों ये बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ है।
5: जैसा कि आप देख सकते हैं, देवताल 17,950 फीट की ऊंचाई पर देवताल, जहाँ देवता स्नान करने आते हैं, पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है।
3: ऊपर नीला आसमान और नीचे कुदरत का ये खूबसूरत करिश्मा, मानो पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली हो।
5: देवताओं का स्थान है यहाँ पे, हम देवताओं की कृपा से यहाँ पहुँचे हैं। 17,950 फीट की ऊंचाई पे ये भारत का चाइना का बॉर्डर क्षेत्र एरिया है। वो है मानापास एरिया, इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया है।
3: सर्दियों में जमी बर्फ के बीच शांत देवताल और आसपास की ऊंची चोटियां इस जगह की खूबसूरती को और खास बना रही हैं।
6: यहाँ पर लोगों को आना चाहिए और आके देखना चाहिए। जो आदमी बोलती है ना कि आर्मी क्या कर रही है, आर्मी ये कर रही है कि यहाँ पे -25 डिग्री में, -50 डिग्री में वो खड़े हैं क्योंकि हम घर पे, ताकि हम घर पे सो पाए।
3: बर्फ की सफेद चादर में लिपटा देवताल आसमान से जमीन तक कुदरत की खूबसूरती बयां कर रहा है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो लंच टाइम में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, फौरन हाजिर होंगे।
7: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
8: कि भाग्य कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है, जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
7: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे। अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
12: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: और चलिए बात करते हैं दिल्ली में एक ऐसे एक्सपो की जिसका उद्देश्य सड़क पर सुरक्षित और आसान यात्रा के लिए ट्रैफिक मैनेजमेंट को स्मार्ट बनाना है। दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे ट्रांसपोर्ट ट्रैफिक इंफ्राटेक एक्सपो में ट्रैफिक मैनेजमेंट से जुड़ी एक से बढ़कर एक टेक्नोलॉजीज को दुनिया के सामने रखा जा रहा है।
2: देखिए इस साल के एक्सपो में 55 से ज्यादा एग्जिबिटर्स हिस्सा ले रहे हैं, जबकि आयोजन में 9 देशों की भागीदारी है। इस मंच से ही मंत्र देने की कोशिश की जा रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बढ़ता इस्तेमाल हर सफर को सुरक्षित के साथ आसान भी बनाएगा।

0: देश के चाहे छोटे या बड़े शहर हो, वहाँ ट्रैफिक जाम एक गंभीर और आम समस्या हो चुकी है। सड़कों पर बढ़ता ट्रैफिक जाम लोगों के रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है। ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए सरकार और सरकारी एजेंसियों की तरफ से आधुनिक तकनीक आधारित कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। ऐसे में निजी कंपनियां भी शहरों में ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर नई नई तकनीक विकसित करने पर जोर दे रही हैं। दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित ये एक्सपो सिर्फ ऑटोमोबाइल या इंफ्रास्ट्रक्चर की नुमाइश नहीं है, बल्कि भारत के बदलते ट्रैफिक और मोबिलिटी इकोसिस्टम का ब्लूप्रिंट है। इस एक्सपो में सड़कों को जाम से मुक्ति दिलाने के लिए इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम पर खास जोर है। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम सड़कों पर लगे सीसीटीवी कैमरे, जीपीएस जैसी तकनीक के जरिए वाहनों की स्पीड और ट्रैफिक की स्थिति को रियल टाइम में मॉनिटर करने में मदद कर सकते हैं। वह इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कैमरों की मदद से रियल टाइम ट्रैफिक के हिसाब से लाइटों का समय बदल देते हैं। मौजूदा वक्त में AI संचालित यातायात प्रबंधन, मल्टी लेन फ्री फ्लो और बैरियर मुक्त टोलिंग जैसी एडवांस तकनीक हाईवे और एक्सप्रेसवे पर यातायात के तौर तरीकों को बदल रही है।
1: तो एक्सपो का मकसद ये है, हमारा अभी गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है कि लोगों को सेफ और फास्ट ट्रैवल दे देने का, यू नो, लाइक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के तरफ से उनको एक्सीडेंट बिना, हमारा जीरो विजन बोलता है, जीरो एक्सीडेंट फैटलिटी को कैसे कम्पीट करना है, हाईवे बनाना है, थ्री लेन फोर लेन, फोर लेन को हम लोग सिक्स लेन बनाते हैं, उनको कन्याकुमारी से कश्मीर तक स्मूथ ट्रैवल इनको देना है।
0: सर्दियों के मौसम में सफर के दौरान कोहरा एक बड़ी समस्या बन जाता है। एक्सपो में कमर्शियल ड्राइवरों की यात्रा को सुरक्षित और आसान बनाने के लिए नई तकनीकों को विकसित और उनको इस्तेमाल करने पर ध्यान दिया जा रहा है। कोहरे में कोई गाड़ी आगे रुकी है या नहीं, कैमरे आधारित ADAS यानी एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम 50 मीटर पहले ही अलर्ट दे देगा।
2: कुछ ही महीनों में ठंड आने वाली है और ठंड के साथ आती है धुंध, फॉग। ये फॉग आपको हाईवे पर, एक्सप्रेसवे पर बहुत ज़्यादा परेशान करता है। कई बार हम खबरें सुनते हैं कि लाइन से एक के बाद एक कई गाड़ियां आपस में टकरा गई धुंध की वजह से, क्योंकि वो एक दूसरे को दिखाई नहीं पड़ रही थी। इसी का एक सोल्यूशन यहां पर मिलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मेरे साथ AL नरसिम्हन जी हैं और उन्होंने कुछ ऐसे सिस्टम डेवलप किए हैं कैमरे में ही जो कि ड्राइवर को असिस्ट करने के लिए हैं, यानी कि एक ड्राइवर किस तरह से सेफ रहे, किस तरह से उसकी यात्रा अच्छी रहे, उसके असिस्टेंस के लिए कुछ कैमरे बनाए गए हैं। तो पहली जो हेल्प है वो ये है कि एक ऐसा कैमरा बनाया गया है जो फॉग में भी ये पहचान सकता है कि कहीं आगे कोई गाड़ी खड़ी तो नहीं है।
3: तो फॉग के कारण से जब ये होती है तो ड्राइवर कभी कभी जब थका हुआ रहता है तो आगे में उसकी गाड़ी जो रहती है वो दिखाई नहीं देती है, और बहुत ज़्यादा फॉग के कारण से बहुत सारी दिखाई नहीं देती। तो हमारे पास कुछ ऐसे कैमरास सॉल्यूशंस हैं जो आपको अलर्ट कर सकता है ड्राइवर को कि आगे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है या आगे कोई किसी तरह का गाड़ी ब्रेक डाउन हो गई है। इस कारण से उनको पहले से एक अलर्ट मिल जाता है सो दैट द ड्राइवर कैन इमीडिएटली टेक एक्शन ऑन दैट।
0: ये बात किसी से छिपी नहीं है कि ट्रैफिक पुलिस का काम बेहद चुनौतीपूर्ण होता है। चाहे झुलसती गर्मी हो या कड़कड़ाती ठंड, भारी ट्रैफिक के बीच उन्हें घंटों खड़े होकर ट्रैफिक मैनेजमेंट करना पड़ता है। स्पीड कैमरा और रेड लाइट वायलेशन डिटेक्शन कैमरे आधारित तकनीक ने निश्चित रूप से उनका काम आसान किया है, लेकिन फिर भी उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का बढ़ता इस्तेमाल ट्रैफिक पुलिस कर्मियों को यकीनन अधिक सक्षम और मजबूत बना रहा है। दिल्ली से मनीष चौरसिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: तो चलिए इसी के साथ लंच टाइम में आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मारधाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं है खुशियाँ तो कहीं ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: संभव मुझ में ही है।
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं,
3: अविश्वास में विश्वास बसता है।
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे। अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है
2: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
3: आज भारतीय वायुसेना मना रही है अपना 94वां स्थापना दिवस। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर वायुवीरों का शौर्य और पराक्रम दिखा, आसमान में दिखी सेना की ताकत। राजस्थान की धरती पर वायुवीरों का तरंग शक्ति युद्धाभ्यास जारी, सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने खास विमानों के साथ भरी उड़ान, आसमान में दिखाई हैरतअंगेज करतब। नवरात्र से पहले भक्ति के रंग में रंगी झांसी नगरी, ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी से मां दुर्गा का भव्य स्वागत, मां के आगमन पर श्रद्धालुओं ने लगाई जयकारे। औरैया में रामलीला से पहले निकली भव्य शिव बारात, अलग अलग देवी देवताओं की मनमोहक झांकियों का लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया, भक्ति गीतों पर जमकर झूमे श्रद्धालु। छत्तीसगढ़ के भिलाई में छात्रों की अनोखी पहल, चित्रों के जरिए वन्य जीव और पर्यावरण बचाने का संदेश दिया, 700 बच्चों ने चुड़िया घर में जानवरों को करीब से समझा। सवाई माधोपुर के रणथंभौर में तेंदुए के हमले को रोकने का हाईटेक प्लान, लेपर्ड की मॉनिटरिंग के लिए लगाए जाएंगे साइलेंट डिवाइस और हाई ट्रैक सेंसर, जानवर आते ही बजेगा अलार्म। गोवा में दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में हुआ निधन, बॉलीवुड समेत पूरा देश गमगीन हुआ, पीएम ने कहा उन्हें पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
3: आज भारतीय वायुसेना का 94वां स्थापना दिवस, गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर मुख्य समारोह का आयोजन।

वायुसेना दिवस परेड में आईएएफ की ऑपरेशनल क्षमता, अनुशासन और शानदार विरासत का प्रदर्शन, जवानों को किया गया सम्मानित। हिंडन एयरबेस पर भव्य एयर शो, आसमान में वायुसेना के विमानों का दिखा पराक्रम। वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने दिखाई जाबाजी, फ्लाईपास में हेलीकॉप्टर भी शामिल हुए। वायुसेना दिवस की इस साल की थीम है भारतीय वायुसेना अचूक अभेद्य सटीक। साल 1932 में आज ही के दिन हुई थी वायुसेना की स्थापना। राजस्थान की धरती पर वायुवीरों का अभ्यास जारी, तरंग शक्ति 2026 के दूसरे चरण का दिखा रोमांच। जोधपुर एयरबेस पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने भरी उड़ान, आसमान में दिखाई है रतंगेज करतब। एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों का भी शौर्य प्रदर्शन, सारंग हेलीकॉप्टर ने अभ्यास में हिस्सा लिया। यूपी के भदोही में संपन्न हुआ चार दिवसीय कारपेट एक्सपो, सस्ते कालीन की रही डिमांड, 500 करोड़ के कारोबार का दावा। कालीनों के महाकुंभ में 65 देशों के 447 फॉरेन बायर्स और उनके प्रतिनिधि शामिल हुए, निर्यात के कई ऑर्डर मिले। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 का पीएम मोदी ने उद्घाटन किया, 10 अक्टूबर तक नई दिल्ली के यश भूमि में चलेगा सम्मेलन। प्रधानमंत्री ने कहा, मोबाइल फोन ने भारत में कंटेंट क्रिएशन में क्रांति ला दी है, लेकिन फोन और नेटवर्क की सुरक्षा अभी हमारी प्राथमिकता है। दुनिया भर की बड़ी टेक और टेलीकॉम कंपनियां, स्टार्टअप और इंडस्ट्री के बड़े नाम ले रहे हैं हिस्सा। इवेंट में टेलीकॉम को 5G से 6G तक कैसे लेकर जाएं, इस पर चर्चा होगी। आईएमसी की थीम स्केल विदाउट बाउंड्रीज है, 5G, 6G, AI, IoT, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और दूसरी नई टेक्नोलॉजीज का किया जा रहा है प्रदर्शन। आईएमसी 2026 के इवेंट में जाकर नई टेक्नोलॉजी को समझने और डेमोंस्ट्रेशन देखने के लिए लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, स्टूडेंट्स और विजिटर्स के लिए फ्री एंट्री। नवरात्र से पहले गुजरात के जामनगर में नौजवान अंगारा रास की तैयारियों में जुटे, तो वहीं हाथों में जलते हुए अंगारे लेकर प्रैक्टिस करते दिखे। अंगारा रास गरबा और रास उत्सवों में किया जाने वाला साहसिक नृत्य है। कलाकार हाथों में जलते हुए अंगारे या जलते हुए अंगारों से भरे पात्र लेकर करते हैं नृत्य। गुजरात में वडोदरा नगर निगम ने नवरात्र से पहले किया विकसित भारत संकल्प गरबा का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। पारंपरिक गरबा की धुन पर घूमते हुए कदमों के बीच मां शक्ति की आराधना हुई, विकसित भारत के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने का दिया गया संदेश। उड़ीसा के धर्मगढ़ में दुर्गा पूजा की तैयारी, कोलकाता से आए कारीगर पारंपरिक बंगाली शिल्प कौशल का उपयोग करके बना रहे हैं मूर्तियां। कोलकाता में दुर्गा पूजा को लेकर उत्साह, सैकड़ों सालों में पहली बार क्रिसमस के लिए मशहूर पार्क स्ट्रीट कोलकाता को ये सबसे बड़े दुर्गा पूजा समारोह की मेजबानी करेगी। केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा को और सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की तैयारी, यात्रा मार्ग पर संचालित होने वाले घोड़े खच्चर और उनके संचालकों की हो रही है जांच। श्रद्धालुओं से अभद्रता करने वाले संचालकों के खिलाफ किया जा रहा है एक्शन, बिना लाइसेंस और अनफिट पशुओं पर भी कार्रवाई। त्योहारी सीजन में रेलवे ने गुड न्यूज दी, यात्रियों की ज्यादा भीड़ को देखते हुए चलाई जा रही है स्पेशल ट्रेन्स। पुणे, मुंबई, अहमदाबाद, वलसाड़, अजमेर, जोधपुर और कोटा से स्पेशल ट्रेन्स का परिचालन, लोगों को त्योहार में अपने घर पहुंचने में आसानी होगी। अमरावती में अंबा माता मंदिर में शारदीय नवरात्रि के लिए रंग बिरंगी रोशनी से सज गया है मंदिर, रात में रोशनी से नहाया मंदिर श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
नवरात्रि से पहले मंदिर में माता के सोने चांदी के आभूषणों को चमकाया गया है। घट स्थापना से पहले सुबह 5 बजे माता का सहस्त्र धारा अभिषेक होगा। नवरात्रि में बड़ी भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर में विशेष व्यवस्था की गई है। महिला और पुरुष श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग कतारें और पंडाल बनाए गए हैं। अंबा माता की ओटी भरने वाली महिलाओं के लिए भी किए गए हैं विशेष इंतजाम। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मंदिर परिसर में की गई है बैरिकेडिंग। अंबा माता के दरबार में अब आस्था और भक्ति का रंग दिखेगा। नवरात्रि तक मंदिर में धार्मिक कार्यक्रमों के साथ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। नैनीताल के विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम में लगातार बढ़ रही है श्रद्धालुओं की भीड़। एक दिन में पहुंच रहे हैं 50,000 से ज्यादा लोग। भीड़ को संभालने के लिए प्रशासन ने खास तैयारी की। कैंची धाम में बाबा नीम करौली महाराज के दर्शन के लिए देश भर से आते हैं श्रद्धालु। कैप्टन स्मित मझार की सेहत में हो रहा है सुधार, विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी। फ्लाई दुबई के एक विमान में अपने ही को पायलट के हमले में घायल हुए थे पायलट कैप्टन स्मित मझार। अबू धाबी के अस्पताल में चल रहा है इलाज। एशियन गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल जीतने वाली बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन का गुवाहाटी में अभिनंदन किया गया। असम सरकार, असम ओलंपिक संघ और बॉक्सिंग संघ ने किया सम्मानित। गुजरात के अमरेली में शेरनियों के कुएं में गिरने की दो अलग अलग घटनाएं सामने आई। जाफराबाद और धारी में वन विभाग ने रेस्क्यू कर दोनों शेरनियों को बचाया। लेपर्ड की मॉनिटरिंग के लिए रणथंभौर टाइगर रिजर्व में लगाए जाएंगे साइलेंट डिवाइस और हाई ट्रैक सेंसर। बाघ के साथ लेपर्ड की भी की जाएगी मॉनिटरिंग। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में 170 से ज्यादा लेपर्ड्स हैं। आए दिन तेंदुआ रिजर्व से निकलकर आबादी वाले इलाके में देखे जाते हैं। यूपी के मुरादाबाद में 26वां तेंदुआ पिंजरे में कैद, 46 पिंजरों से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। 3 अगस्त से चलाया जा रहा है रेस्क्यू ऑपरेशन। छत्तीसगढ़ में भिलाई के मैत्री बाग में मनाया जा रहा है वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह। स्कूली बच्चों के लिए चिड़ियाघर भ्रमण और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन। 18,000 फीट की ऊंचाई पर देवताल 4 से 5 फीट बर्फ से ढका हुआ है। पूरा इलाका सफेद चादर में बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है। ताजा बर्फबारी के बाद देवताल का पवित्र सरोवर भी जम चुका है। चारों तरफ बर्फ की अद्भुत नजारा देखने को मिल रहा है। बीआरओ के सड़क मार्ग खोलने के बाद बाइकर्स और पर्यटकों का दल देवताल पहुंचा। 18,000 फीट पर पहुंचकर पर्यटक रोमांचित नजर आए। सीमा दर्शन योजना के तहत परमिट लेकर लोग देवताल पहुंच रहे हैं। बर्फ से ढकी झील और हिमालय का नजारा पर्यटकों को खूब लुभा रहा है।

0: पर्यटकों के लिए आकर्षण बना देवताल, आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, खूबसूरत नजारा लोगों को मोहित कर रहा है। हेमकुंड साहिब बर्फ की सफेद चादर से ढक गया है, कपाट बंद होने से पहले श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार। बद्रीनाथ धाम में दर्शन के लिए 2 से 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी, बारिश के बाद ठंड भी बढ़ गई है। निचले इलाकों में मूसलाधार बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी से गिरा तापमान। कड़ाके की ठंड के बावजूद बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब में श्रद्धालुओं की आवाजाही जारी है, बड़ी संख्या में वाहन धामों की ओर जा रहे हैं। मौसम विभाग ने पहाड़ों में बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है, आने वाले दिनों में ठंड और बढ़ सकती है। बारिश के बाद धर्मशाला का मौसम कूल हो गया है, धौलधार की चोटियां ताजा बर्फबारी सफेद चादर में ढकी हुई नजर आई। बदले मौसम और बर्फ से ढकी धौलाधार की चोटियों ने पर्यटकों का दिल जीत लिया है, धर्मशाला मैक्लोडगंज में ठंडी हवाओं का असर दिखा। हिमाचल प्रदेश में 9 अक्टूबर तक मौसम खराब रहने का अलर्ट जारी, कई इलाकों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना। राजस्थान में 11 से 12 अक्टूबर से मौसम बदलेगा, उत्तर पश्चिमी हिस्सों में हल्की बारिश के आसार, बढ़ेगी ठंड। अगले 5 दिन मौसम साफ रहने का अनुमान, माउंट आबू और सिरोही सबसे ठंडे, यहां रात का तापमान 16 डिग्री दर्ज हुआ।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम।
2: सास बहू और बेटिया में आज देखिए सीरियल्स की दुनिया में, कहीं है खुशियां तो कहीं ड्रामा। दोपहर 1:28 से 3 बजे तक सिर्फ सास बहू और बेटिया में।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: और चलिए अब आपको दिखाते हैं चाइना का एक खूबसूरत नजारा। पूर्वी चाइना के अनहुई प्रांत में शियानयू पहाड़ पर बादलों की एक मोटी परत के बीच प्रकृति की सुंदरता की शानदार झलक दिखाई दी। पेड़ों से ढकी हुई ढलानों और लकड़ी के रास्तों के आसपास तैरते बादलों ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। सैलानी इस धुंध भरे नजारे को कैमरे में कैद करते दिखाई दिए और ऐसा लग रहा था कि बादलों की नदी के बीच से घुमावदार पहाड़ी रास्ते और सीढ़ीदार खेत निकल रहे हैं। बादलों से ढकी इस पर्वत श्रृंखला को देखने के लिए हर साल लाखों सैलानी इस इलाके में आते हैं। तो ये तस्वीरें आप देखिए, मंत्रमुग्ध कर देने वाला, सैलानियों के चेहरे पर खुशी ले आने वाला ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। दूर दूर से इसे देखने के लिए, इस नज़ारे का लुत्फ उठाने के लिए सैलानी पहुंचते हैं और वाकई बेहद खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। पूर्वी चीन की ये दृश्य ये हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर लकड़ी के रास्तों के आसपास तैरते बादलों ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मैं

0: खबरें तो आराम।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: आज भारतीय वायुसेना मना रही है अपना 94वां स्थापना दिवस। गाजियाबाद के हिंजन एयरबेस पर वायु वीरों का शौर्य और पराक्रम दिखा, आसमान में दिखी सेना की ताकत। राजस्थान की धरती पर वायु वीरों का तरंग शक्ति युद्धाभ्यास जारी, सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने खास विमानों के साथ भरी उड़ान, आसमान में दिखाए दिए हैरतअंगेज करतब। नवरात्र से पहले भक्ति के रंग में रंगी झांसी नगरी, ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी से मां दुर्गा का भव्य स्वागत, मां के आगमन पर श्रद्धालुओं ने लगाई जयकारे।

0: में रामलीला से पहले निकली भव्य शिव बारात, विभिन्न देवी देवताओं की मनमोहक झांकियों का लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। भक्ति गीतों पर झूमे श्रद्धालु। छत्तीसगढ़ की भिलाई में छात्रों की अनोखी पहल, चित्रों के जरिए वन्य जीव और पर्यावरण को बचाने का संदेश दिया। 700 बच्चों ने चिड़ियाघर में जानवरों को करीब से समझा। सवाईमाधोपुर के रणथंभौर में तेंदुए के हमले को रोकने के लिए हाईटेक प्लान, लेपर्ड की मॉनिटरिंग के लिए लगाए जाएंगे साइलेंट डिवाइस और हाई ट्रैक सेंसर, जानवर आते ही बजेगा अलार्म। गोवा में दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में निधन हुआ। बॉलीवुड समेत पूरा देश गमगीन हुआ। पीएम ने कहा उन्हें पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
2: देश देख रहा है अच्छी।
3: हेलो दोस्तों, मनोरंजन का पिटारा लेकर मैं हाजिर हूँ। टेलीविजन की दुनिया के ड्रामे से लेकर ओटीटी और रियलिटी शोज की हर हलचल पर रहेगी हमारी नजर, लेकिन उससे पहले शुरुआत करते हैं आज की खास हेडलाइंस के साथ।
4: सास बहू और बेटिया की एंटरटेनमेंट से भरी गुड न्यूज में आज देखिए सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में घर लौट कर आएगी मायरा, खुश होंगे अरमान और अभीरा। सूरज और ईशा के डांडिये का टशन, माता रानी देंगी संकेत।

टीवी के नए शो सोहनी की सोहनी यानी कि इंद्राक्षी से करेंगे खास मुलाकात। होगा इंद्राक्षी का मेकओवर सिर्फ और सिर्फ सास बहू और बेटियां में। छोटी

0: सीरियल पति ब्रह्मचारी में चल रहा है नवरात्र सेलिब्रेशन। ऐसे में ईशा और सूरज के बीच देखने को मिला डांडिया टशन। लेकिन इस बीच दोनों को मिल रहे हैं माता रानी के संकेत। देखते हैं कि क्या माता रानी की कृपा से सुधरेंगे सूरज, ईशा के रिश्ते।
1: सूरज और ईशा का टशने डांडिया।

रिश्ते को मिला माता रानी का आशीर्वाद। किस्मत ने जोड़ा डांडिया कनेक्शन।

दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में आज सूरज के मोहल्ले में नवरात्रि के मौके पर हो रहा है डांडिया रास। ऐसे में सूरज ने तो ईशा के साथ डांडिया खेलने से मना कर दिया है। बस फिर क्या, ईशा रिया को ले आती है डांडिया खेलने के लिए, लेकिन वो मौका नहीं छोड़ती सूरज संग डांडिया खेलने का। तभी तो देखिए, जैसे ही वो उसके पास जाती है तो सूरज उसे मुँह फेर कर किसी और के साथ डांडिया खेलने लगता है। बस फिर क्या, ईशा को आता है गुस्सा और वो चुप

0: इतना ही नहीं, वो तो बंटी को भी ले आती है डांडिया खेलने के लिए। और उसी वक्त आता है कहानी में ट्विस्ट, बंटी और रिया दोनों के डांडिया टकरा जाते हैं। बस फिर क्या, ऐसे में ईशा हो जाती है खुश, क्योंकि उसे लगता है कि माता रानी ने दे दिया है उनके रिश्ते को आशीर्वाद।
1: बिल्कुल सूरज एक्चुअली अभी वो मूड में है ही नहीं। सूरज इसी मूड में है कि आपने जो कहा है वो बिल्कुल गलत है, मतलब बंटी और रिया की शादी नहीं होनी चाहिए, ये गलत है, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, सख्त खिलाफ हूँ। अब सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग यही है, देखने में मजा यही आने वाला है, क्या बंटी काव्या का ही बन के रहेगा सूरज के बोलने पे, या रिया से शादी होगी। बिकॉज क्या है कि इसमें बहुत सारी चीजें हो गई है कि काव्या और बंटी की शादी भी हो गई है, और दूसरी चीज ये रिया और बंटी एक दूसरे से प्यार। अब शादी होने से पहले कोई कांड होने वाला है आकाश की तरफ से, या सूरज ईशा में ही कांड हो जाए, या शादी बहुत ही प्यारा और बखूबी तरीके से हो जाए, ये तो देखने में ही मजा आएगा। और सबसे बड़ी बात, सभी ऑडियंस एंड फैंस से यही कह देना चाहता हूँ, आप लोग जिस ट्रैक का इंतजार कर रहे थे वो ट्रैक बहुत जल्द आ गया है, मतलब शुरू ही हो गया, हम शूट कर रहे हैं, बहुत जल्द आप सबके पास परोसा जाएगा। थैंक यू।
2: हाँ तो मतलब लड़ाई तो दोनों साइड से चल रही है, पर ईशा का इससे पहले ये मुद्दा था कि अगर देवी माँ के रिचुअल्स है, हम हमेशा से करते आए साथ में डांडिया, तो नफरत एक जगह, नाराजगी एक जगह, बट रिचुअल्स ट्रेडिशन तो तुम साथ में करो एटलीस्ट। पर सूरज को वही अकड़ है, तो सूरज कहते नहीं आपने मुझसे सच छुपाया, और ये सारी चीज़ें हमारी बात होती है, तो ईशा वही डांडिया के लिए कह रही है, बट सूरज नहीं मान रहा है, तो ईशा भी गुस्से में अपना अपना खेले जा रही है, दोनों का वही टशन एटीट्यूड, थोड़ा सा नोकझोंक वही चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि अभी ख़त्म तो होगी, बट मेन मुद्दा हमारा यही है कि हमारे घर में जो थोड़ी सी उलझन हो गई है, सेपरेशन हो गया है रिया बंटी काव्या ये चीज़ों को लेके, तो उस चीज़ को हम सॉल्व करें। तो हमने ईशा ने वही 9 दिन का टाइम दिया है कि जो भी देवी माँ का इशारा होगा हमें वो मानना पड़ेगा। तो ये एक इशारा ही देखती है ईशा कि बंटी और रिया का डांडिया टकराया, मतलब देवी माँ ने इन दोनों को एक किया, इशारा है, बट सूरज वो नहीं मानता है।
0: भाई सूरज तो मानने से रहा, वो तो ईशा से नाराज है, ऐसे में वो फिर से ईशा से दूर चला जाता है और दूसरों के साथ डांडिया खेलने लगता है। ये देखकर रिया और बंटी वो भी अलग अलग खड़े हो जाते हैं, और ईशा वो भी चली जाती है दूसरों के साथ डांडिया खेलने के लिए। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत ने जो लिखा है वही होता है, ऐसे में डांडिया खेलते हुए ईशा फिर से सूरज के पास आ जाती है, और वो सूरज के इर्द गिर्द डांडिया खेलने लगती है।

दौड़ वो डांडिया खेलते हुए इतनी मग्न हो जाती है कि भूल ही जाती है कि सूरज उससे नाराज है। ऐसे में माता रानी भी दे देती है संकेत और फंसा देती है ईशा की चुनरी सूरज के कड़े में। बस फिर क्या, जोड़ी में डांडिया खेलने की रस्म भी हो जाती है पूरी सूरज और ईशा की।

0: ईशा जी का ये कहना है कि सूरज प्लीज बात को समझने की कोशिश करो, बिकॉज रिया और बंटी जो हैं एक दूसरे से प्यार करते हैं और उन दोनों को आई थिंक साथ हो जाना चाहिए। काव्या खुद बोल रही है ये सारी चीजें शायद से, मतलब काव्या भी बोल रही है कि मैं ये शादी से खुश नहीं हूँ काइंड ऑफ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सूरज का यही कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है, सारी चीजें ओके हो जाएंगी, तो वो यही रिझाने की कोशिश करी है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और कहीं ना कहीं जोड़ी जो निभानी है, रसम है डांडिया में जोड़ी निभाने की, मतलब जोड़ी क्यों नो कपल डांडिया खेलेंगे तभी जाके ये रसम पूरी होगी। तो सूरज उसके खिलाफ है, लेकिन जाने अनजाने में ईशा जी गरबा खेलने लगती है अकेले ही, डांडिया खेलने लगती है घूम घूम घूम घूम के, एंड अचानक से सूरज का ये जो कड़ा है ये फंस जाता है ईशा जी के चुन्नी में, एंड डांडिया ऊपर हो जाता है और ईशा जी टर्न होती है, डांडिया टकरा जाता है। तो इट्स अ डिवाइन, हम बोल सकते हैं कि ये डिवाइन चीजें होती है, माता रानी पे जाता है, मतलब हमारी जो नजर है कि माता रानी को देखते हैं और शॉक में चले जाते हैं कि ये जाने अनजाने में ये चीजें हुई कैसे। अब ईशा जी को मौका मिल गया तो ईशा जी पूरे अच्छे से खेल रही हैं डांडिया, एंड सूरज को वहीं पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि जाने अनजाने में इन्होंने बंटी और रिया को भी साथ में लाया, सूरज ने वहां पे रिया को पकड़ के साइड में लाया और ये भी कहा कि भले इन दोनों की जो डांडिया की रस्म है पूरी हो गई, लेकिन मैं आपके साथ डांडिया नहीं। तो यही सारे क्रेसेंडो चल रहे हैं, यही सब हौच-पौच चल रहा है, उसी के बीच में सूरज गुस्सा होकर निकल रहा है।
1: हाँ, वो एक देवी माँ का इशारा है कि देखो हमें साथ में डांस करना है, फिर सूरज वो निकाल रहा है पल्लू बार बार, पर निकालने से पहले ईशा डांडिया करने लग जाती है क्योंकि ईशा को करना ही था, एंड डांडिया करते रहते हैं तो सूरज गुस्से में चला जाता है, तो ईशा को भी गुस्सा आ जाता है। हाँ, मैं मुस्कुरा रही थी, मैं हंस हंस के डांस कर रही थी कि देखा भगवान भी चाहते हैं हम साथ में करें, और सूरज एक बार रुकाता भी है, प्रतिमा कहती है जब तक दिया नहीं बुझेगा तब तक तुम्हें करना है, तो ईशा और खुश हो जाती है और करती है करती है करती है, और सूरज गुस्से में निकल जाता है। सूरज ये नहीं समझ रहे कि दोनों ही हम गुस्से में थे, पर ईशा वो रिचुअल्स और सारी चीज़ों में गिरी, नफरत अपनी जगह, अपने ट्रेडिशनल अपने कल्चर वो सारी चीज़ें तो अच्छे से कर ले।
2: ईशा को डांडिया खेलने को मिला है तो भला वो मौका कैसे छोड़ेगी, वो तो डांडिया खेले जा रही है और सूरज को आ रहा है गुस्सा, जरा देखिए कैसे वो झटपट ईशा की चुनरी अपने कड़े से हटाकर अलग कर देता है। ये देखकर ईशा हैरान है, अब देखना होगा कि कैसे सूरज ईशा की बातों को मानेगा और कैसे कहानी आगे बढ़ेगी। मुंबई से कामेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: मन अति सुंदर में चल रही है अंतरा के गर्भ संस्कार की रस्म और संस्कार रस्म के बीच राध्या पर लग गए हैं नए इल्जाम, जिसके बाद राध्या पर भड़का दादी का गुस्सा। अब इस बार किन इल्जामों से घिरी है राध्या, चलिए देखते हैं।
2: गर्भ संस्कार की पूजा में मचा बवाल, दादी ने हटाई चुनरी, पूछ दिया तिलक, बहे राध्या के आंसू, दंगल टीवी के सीरियल मन अति सुंदर में आज राध्या के घर में गुरुमा आई है राध्या और एकता के गर्भ संस्कार की पूजा के लिए, लेकिन राध्या वो उनकी गलतफहमी दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन घंटियों की आवाज के चलते वो उन्हें बता नहीं पाती, ऐसे में राध्या उनके शिष्य को सारी जानकारी दे देती है।
4: मेरे बच्चे के बारे में कुछ बताना
5: था। देवी जी, आप जो भी कहनी चाहती है आप मुझे कह दीजिए, गुरुमा आपके ध्यान में, उनका ध्यान ध्यान हो जाएगा, मैं आपकी बात।
4: दरअसल बात यह है कि बच्चा हमारा प्रथम जी का, लेकिन हमारी कोख में नहीं है, अंतरा जी उन्हें जन्म देंगे, गर्भवती हम नहीं हैं, गर्भवती अंतरा जी हैं।
5: देवी जी ये क्या कह रही
4: हैं? वो इसे सेरोगेसी कहते हैं, हम नहीं चाहते हैं कि कोई भी गलत फहमी है, जो आशीर्वाद अंतरा जी को मिलना है वो उन्हें ही मिलना चाहिए, तो बस थोड़ी देर में आती हूँ।
5: ठीक है।
2: भाई सच बताने के बाद भी शिष्य ने आकर राध्या को ही उस पूजा में बैठने के लिए कह दिया, ऐसे में राध्या चुपचाप गुरु माँ के कहने पर उस पूजा में शामिल हो गई। इसी बीच रजनी भी आकर राध्या से सवाल करती है और राध्या रजनी की सारी गलतफहमी दूर करती है। ऐसे में पूजा शुरू हो जाती है और गुरुमा राध्या को चुनरी उड़ाती है, साथ ही देती है सुहागनों का सारा सामान। हालांकि बीच बीच में राध्या पूरी कोशिश कर रही है गुरुमा को फिर से अपनी तरफ से सारा सच बताने की, लेकिन पूजा के चलते वो कुछ कह नहीं पा रही। भाई ये सब देखकर तो एकता भी हैरान है, क्योंकि इस पूजा में अंतरा को बैठना था। इसी बीच अंतरा भी ये देख लेती है कि राध्या सारी रस्में अदा कर रही है, अंतरा को भी गुस्सा आ रहा है। खैर पूजा संपन्न हो जाती है और गुरुमा राध्या को आशीर्वाद देने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाती है कि तभी आ जाती है दादी, जो आशीर्वाद पर लगा देती है ब्रेक और तो और राधे के सिर पर जो चुनरी उड़ाई है उसे भी हटा देती है।

0: अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, हम किसी गलत इरादे से पूजा में नहीं बैठे थे।
1: ठीका बस करो,
2: बकवास बंद करो अपनी। बच्चे की माँ वो होती है जो बच्चे को जन्म देती है।
1: तो अब ये ऊंची हरकत करके अपनी किस्मत को बदलने की कोशिश मत करो।
3: जी अभी कैसी बातें कर रही है, भले ही अंतरा बच्चे को जन्म देने वाली है लेकिन उस बच्चे में अंश तो राध्या का ही है ना, और राध्या ने गुरु माँ को ये बताया भी था, है ना राध्या?
4: भाई राध्या तो बताने की कोशिश कर रही है लेकिन दादी उन्हें तो विश्वास ही नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो राध्या के माथे पर जो आशीर्वाद के तौर पर जो गुरु माँ ने तिलक लगाया है उसे भी मिटा दिया। बेचारी राध्या वो सिर्फ आंसू बहा रही है। ऐसे में गुरु माँ भी सच से अनजान थी और गुस्से में आकर गुरु माँ भी वहाँ से जाने लगती है। लेकिन राध्या वो इस गर्भ संस्कार की पूजा को यूं अधूरा छोड़ना नहीं चाहती, इसलिए देखिए कैसे पहुँच जाती है गुरु माँ को रोकने के लिए।
0: और एक गलती तो भगवान की माफ कर देते हैं, उसने आपसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगते प्लीज हमें माफ कर दीजिए, लेकिन पूजा को ऐसे अधूरा छोड़कर मत जाइए। गुरु माँ दो दो माए और दो दो बच्चे आपके आशीर्वाद की आस में बैठे हुए हैं। गुरु माँ आपको जो भी सजा देनी है हमें दे दीजिए, लेकिन प्लीज पूजा करके जाइए। आपको जो सजा देनी है आप हमें दे दीजिए, लेकिन पूजा को अधूरा मत छोड़िए।
4: अब राध्या ने तो हाथ जोड़कर गुरु माँ को रोकना चाहा, इतना ही नहीं उसने तो गुरु माँ को ये भी बताया कि उसने उनके शिष्य को सारा सच बता दिया था। ऐसे में रजनी आकर अपनी बहू का साथ देती है और बताती है कि राध्या कभी झूठ नहीं बोलती। बस फिर क्या, राध्या के पूछने पर शिष्य ने भी बता दिया कि घंटियों की आवाज के चलते वो भी ठीक ढंग से सुन नहीं पाया और बातें अधूरी रह गईं। बस फिर क्या, गुरु माँ ने राध्या की माफी को स्वीकार कर लिया।
5: इनकी आवाज में ना मैं इनकी पूरी बात सुन नहीं पाया, मुझे माफ कर दीजिए।
0: गुरु माँ जो कुछ भी हुआ वो बस एक गलत फहमी की वजह से, लेकिन हम भोलेनाथ की स्वागत खाकर कहते हमने कुछ भी आपसे नहीं छुपाया था।
4: अब गुरु माँ रुक तो गई है और फिर से गर्भ संस्कार की पूजा होगी, वो भी एकता और अंतरा की। ऐसे में राध्या ने फिर से तैयारियां कर ली है और वो भी लेकर आई है मीठी मीठी खीर, वो भी सभी के लिए। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वहाँ चली जाती है लाइट, यानी कुछ गड़बड़ होने वाली है वो भी खीर में, जिसका सारा इल्जाम मढ़ दिया जाएगा राध्या के ऊपर। देखना होगा ये ट्विस्ट क्या रंग लाएगा। मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट।
6: धारावाहिक कैसी तेरी दिल्लगी में नवरात्रि के पावन मौके पर हो गया है बड़ा ड्रामा। आरती के दौरान सिद्धार्थ का हाथ जलने पर पूजा की थाल आकाश और कजरी ने मिलकर थाम ली। माता रानी के संजाने इशारे ने दोनों को करीब तो ला दिया, लेकिन ये देख घर में बवाल शुरू हो गया है। अब कहानी में आगे क्या होता है चलिए देखते हैं।
7: कजरी, आकाश और सिद्धार्थ के घर नवरात्रि की धूम

0: मंगल टीवी के सीरियल कैसी तेरी दिल लगी में मनाया जा रहा है नवरात्रि का त्योहार और ऐसे में सिद्धार्थ आज काफी खुश है क्योंकि आज वो माता रानी की पूजा कजरी संजो करने वाला है। ऐसे में आज सिद्धार्थ अपने दोस्त आकाश को भी पूजा के लिए इनवाइट कर रहा है।
1: ऐसे सरप्राइज होंगे क्यों देख, हम दोनों ने नवरात्रि पे कितना धमाल मचाया। एक बार फिर सारे खिले शिकवे तोड़ दिए,
2: जो बीत गया उसे याद करने की कोई जरूरत नहीं। सदा वक्त बदल चुका है, मेरी लाइफ की सबसे अच्छी मेमोरीज में से एक है। आज सब फ्रेंडशिप पर तेरी मेरी यारी दोस्ती मुझे बहुत याद है।
0: भाई यहाँ दोनों के बीच की टशनेबाजी साफ देखने को जाहिर है। खैर सिद्धार्थ और कजरी आ गए हैं माता रानी की पूजा करने के लिए और आज सिद्धार्थ काफी एक्साइटेड भी है क्योंकि कजरी संग इस पूजा में वो शामिल हो रहा है और अपने नए रिश्ते की शुरुआत कर रहा है।
1: कहते हैं नवरात्रि के पहले दिन किया फर्क शुक्र, क्योंकि हम अपने रिश्ते की एक नई शुरुआत कर रहे हैं। इसी मैं माता रानी का आशीर्वाद भी तुम्हारे साथ लेना चाहता हूँ। पंडित जी प्लीज आकाश को भी तिलक कर दीजिए। माँ के मंदिर में आने से पहले दुश्मनी और चपलें दोनों दरवाजे के बाहर होनी चाहिए।

0: वही सिद्धार्थ और कजरी दोनों माता रानी की पूजा करते हैं। तभी अचानक सिद्धार्थ का हाथ जल जाता है और पूजा की थाली गिरने ही वाली होती है कि आकाश आकर थाली को पकड़ता है और फिर आकाश और कजरी साथ मिलकर माता रानी की पूजा करते हैं और ये नजारा सभी लोग देखकर अचंभित हो जाते हैं। पर यहाँ तो माता रानी ने ही आकाश और कजरी की जोड़ी बना दी है, लेकिन ताने मारने वालों की कमी नहीं है। देखिए कैसे बाकी के घर वाले कजरी और आकाश के रिश्ते पर इल्जाम लगा रहे हैं।
1: एक सेठ है जो अपने चीटर दोस्त की दोस्ती को याद कर रहे हैं। एक उसी का दोस्त है जो अपनी दोस्त की बीवी के साथ।
2: अब ताली एक हाथ से तो नहीं बजती ना जगदीप जी। अगर आकाश गलती कर भी रहा था तो कजरी को रोक देना चाहिए था।
3: हाँ बात तो सही है, गलती करने वाला, मेरा मतलब है गलती करने वाली ही सबसे बड़ी गलत इंसान है।
0: भाई कहीं ना कहीं सिद्धार्थ को भी कजरी और आकाश के रिश्ते पर शक हो रहा है। ऐसे में अब असली बवाल तो शुरू होने वाला है, जहां पर सिद्धार्थ कजरी से सवाल करेगा।
4: चाहती थी ना फेरे खत्म होने से पहले भैया तुम्हें यहां से ले जाए।
5: सिद्धार्थ जी,
6: कजरी मैं तुमसे सुनना चाहता हूं, अधीरा ने जो कुछ भी कहा क्या वो सच है?
4: सिद्धार्थ जी,
5: हाँ या ना?
4: ये सच है।
0: तो भाई इन सब के बाद अब देखना होगा कि इनके रिश्तों में क्या क्या बदलाव आएंगे। खैर बात करें त्योहार की तो आज कजरी सजी धजी है, उन्होंने किए हैं 16 श्रृंगार और धूमधाम से मनाया जा रहा है ये त्योहार। लेकिन अभी इस त्योहार में अपशगुन के ट्विस्ट आने बाकी है।

0: KBS의 뷰러를 보드.
1: ट्विस्ट और टर्न्स से भरी होती है टीवी सीरियल्स की दुनिया, जहां हर मोड पर एक नया ड्रामा दर्शकों को हैरान करता है। किस सीरियल में आया है कौन सा ट्विस्ट, देखना काफी मजेदार होगा। तो चलिए चलते हैं सीरियल्स की इस दिलचस्प दुनिया में।
2: महादेव एंड सन्स।
3: टीवी के सीरियल महादेव एंड सन्स में फिर शुरू हो गई है सपना की दादागिरी, और देखिए कैसे उसने दे दी है पुलिस को ऑर्डर महादेव और परिवार को पीटने के लिए, और देखिए कैसे भाई पुलिस वाले भी महादेव के परिवार को बेरहमी से मार रहे हैं।

0: लेकिन इतनी पिटाई होने के बाद भी महादेव ने अपनी हिम्मत नहीं छोड़ी और देखिए कैसे पुलिस वालों को डटकर जवाब दिया। वही इतना ही नहीं, उसने तो उन्हें वार्निंग भी दे दी है कि अगर किसी और ने फिर एक बार उनके परिवार पर आंख उठाकर भी देखा तो वो उनका अंजाम बहुत बुरा करेंगे।
1: सच बता, सच बता।
2: तुम हमारी हड्डी तोड़ सकते हो लेकिन हमारी हिम्मत नहीं बशीर सिंह। सच सच सुनना है तो सुनो। तुम सब लोग पुलिस की पर्दी में घूमने वाले गुंडे हो, गुंडे। सपना राजवंश के पाले हुए गुंडे। लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारी ये गुंडाई हमारे साथ नहीं चलेगी, क्योंकि तुमसे और तुम्हारी गुंडाई से हमें अच्छी तरह से निपटना आता है।
0: ऐसे में सपना के हाथों कई सारे सबूत लग गए हैं, जिसके बाद उसने भी फैसला कर लिया है कि वो धीरज को जेल तक पहुंचाकर ही रहेगी और ये ऐलान उसने महादेव के पूरे परिवार को कर दिया है।
3: लेकिन पीछे सबूत तो छोड़ गए, लेकिन अब मैं तुम लोग को नहीं छोड़ूंगी। नर्क के दरवाजे तक पहुंचाऊंगी मैं तुम्हें। मेरी बेटी की बॉडी मिल जाए। तुमने मारा है ना मेरे बेटी को, तुम्हारा तो मैं वो हाल करूंगी कि तुम्हारी पूरी फैमिली देखेगी और खून के आंसू रोएगी।
4: अनुपमा,
5: कम पढ़ी लिखी हूं, अंग्रेजी पट पट पट पट नहीं बोल सकती, लेकिन ये मूव ऑन से तुम्हारा क्या मतलब है ये अच्छी तरह से समझती हूँ।
0: स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में मैं आज अनुपमा और आरवी के बीच बहसबाजी शुरू हो गई, जहाँ पर आरवी ने अनुपमा पर कई इल्जाम लगाए। ऐसे में अनुपमा ने भी उनके इल्जामों को पलटकर जवाब दिया।
5: अपने बच्चे की मौत से मूव ऑन नहीं कर सकते, और दूसरी बात, उन्होंने अपना घर, अपना कैफे अपनी मर्जी से नहीं छोड़ा था। तुमने वसुंधरा कोठारी और गौतम गांधी के साथ मिलकर उनसे उनका घर छीना था, वो घर जो उन्होंने खुद बनाया था अपनी बेटी के नाम से, सावी विला, जिस घर के हर कोने में उनकी याद बसी थी वो तुमने छीना। रणविजय, तुमने तो उनसे उनके जीने का मकसद तक छीन लिया।
6: और आप उन्हें अपने साथ ले आईं।
5: तो क्या जिस आदमी ने मुझे, मुझ जैसी अकेली औरत को और मेरे साथ 7 साल की बच्ची को अपने छत के नीचे सर छुपाने की जगह दी, उस इंसान को मैं दर दर की ठोकरें खाने छोड़ देती, उनका ये एहसान भूल जाती।
6: तो आपने सोचा एहसान के बदले और बड़ा एहसान किया जाए।
5: कुछ एहसान ऐसे होते हैं जिनका बदला नहीं चुकाया जा सकता, तो मैंने भी दिग्विजय सर पर कोई एहसान नहीं किया।
6: Yes! फाइनली आपने सच तो बोला। मिस्टर सूद को यहाँ लाना एहसान नहीं, आपकी सोची समझी चाल थी। आप जिस कैफे में गोवा में काम करती थी, आपको उसी कैफे का को ओनर बनना था। मेरी बहन के नाम उसकी मौत का तमाशा बनाकर उसके कैफे पर कब्जा करना था।
5: कब्जा? ए, जरा जो आइया, जो जो जरा देखो, ये जगह भले ही मेरे बापूजी की है, भले ही यहाँ पर पहले अन्नू की रसोई फेमस थी, लेकिन अब लव यू जिंदगी कैफे के नाम से ही जाना जाता है। लव यू जिंदगी कैफे, जो सावी का था, है और हमेशा रहेगा।
6: कोई हक नहीं है मेरी बहन के नाम, उसकी यादों पर, उसके कैफे पर, उसके फादर पर। आपका कोई हक नहीं है।
4: सयोनी, ये पकड़ो पैसे।
0: स्टार प्लस की सीरियल सयोनी में बेयाज माया सानवी पर भड़क उठी और देखिए कैसे उसने पूरे घर वालों के सामने उसे खरी खोटी सुनाई। पर असल में सानवी ने मिंटी की पैसों के लिए मदद की थी और ये बात माया को बर्दाश्त नहीं हुई।
3: इसलिए मेरे मामले में इंटरफेयर कभी मत करना। तुम होती कौन हो माया ब्रार को ये बताने वाली कि मुझे क्या करना है?
7: मैम, बस मैं इतना चाहती हूँ कि मेरी वजह से मिलती दीदी की जॉब ना जाए, और अगर आप चाहते हो तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ।
0: ऐसे में इस तमाशे के बाद सानवी ने इस घर को छोड़कर जाने का फैसला किया, लेकिन भाई माया ने उसे वो तक करने नहीं दिया। उसने तो इस घर में उसे कैद कर लिया है और देखिए कैसे उसकी राय सानवी के बारे में दिन ब दिन गलत होती ही जा रही है।
3: हाथ दो।
7: सब सिखा रही है जो एक माँ अपने बच्चे को सिखाती है। अब ना मैं उनके साथ एक पल भी मिस नहीं करना चाहती।
8: बहुत रो चुकी हूँ,
7: अब नहीं रोऊंगी।
3: What's her name, that Ashray girl? सानवी, ऐसी औरत कभी मत बनना जो अपनी ही इमोशंस को ताकत बनाकर दूसरों को कंट्रोल करने की कोशिश करे। अपने दम पर अपनी जिंदगी बनाने के बजाय आसान रास्ता ढूंढती है वो। लोगों को नचाना ऐसे जानती है ऐसी लड़कियाँ।
9: चलिए अब चलते हैं दंगल टीवी का हाल ही में शुरू हुए सीरियल सोहनी और नहीं कोई होनी के सेट पर, जहां आज हमने सीरियल में सोहनी का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस इंद्राक्षी संकिया, एक मेकओवर डे आउट और जाना सोहनी के किरदार में ढलने के लिए उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है।

0: सोने का अनोखा अंदाज, टीवी की नई बहुरानी, होगा इंद्राक्षी का मेकओवर। दंगल टीवी पर शुरू हो चुका है नया सीरियल जिसका नाम है सोनी और नहीं कोई होनी, जिसमें इंद्राक्षी निभा रही है सोनी का किरदार। वही सोनी को देखकर जस्सी की याद आ जाती है, वही चश्मा, वही लुक। खैर, जस्सी और सोनी में काफी डिफरेंसेस हैं और आज हम करेंगे सोनी से खास मुलाकात। देखेंगे कैसे इंद्राक्षी सोनी के किरदार में ढलती है, कैसे होता है सोनी का मेकअप, उन्हें रेडी होने में कितना टाइम लगता है, कैसे सोनी का पूरा लुक रेडी होता है, ये सब आज जानने वाले हैं, जिसके लिए हम सोनी के सेट पर जाएंगे, इंद्राक्षी से मुलाकात करेंगे। तो चलिए झटपट से शुरू करते हैं इस मेकओवर वाले डे आउट की शुरुआत, सीधा चलकर सोनी के सेट पर।
1: इंद्राक्षी कांजीलाल एंड वेलकम टू सास बहू और बेटियां। अभी हम पहुंच चुके हैं सेट और ये रहा हमारा सेट, ये साइड आता है। इस अंदर से बड़ा ज्यादा प्रिटी है, बाहर से आपको उतना समझ में नहीं आएगा बट अंदर से है। और आज हमारा आउटडोर शूट है, मतलब सेट के अंदर नहीं, सेट के बाहर शूट है। और यहाँ पे है मेरा कंटेनर बोल सकते, रूम बोल सकते, मेरा मेकअप रूम है। और अभी मैं हूँ इंद्राक्षी और इंद्राक्षी से मेरी सोनी वाली जर्नी अभी आप देखने वाले। अभी सोनी कौन सा अवतार लेगी ये तो मुझे नहीं पता, क्योंकि उसमें हर रोज मुझे कुछ ना कुछ नया करना ही पड़ता है। बट लेट्स सी आज कौन सा अवतार लेती है आपकी प्यारी सोनी। सोनी बनने में ज्यादा टाइम नहीं जाता क्योंकि मुझे ज्यादा रेडी नहीं होना पड़ता, बट हाँ आधा घंटा तो चला जाएगा, आई थिंक आधा घंटा 15 मिनट पकड़ के चलते हैं। सो लेट्स सी। इंद्राक्षी का रिएक्शन था कि चलो भाई अभी कुछ नया कैरेक्टर करने को मिल रहा है जो मेरे पिछले कैरेक्टर से बिल्कुल ही अलग है, तो देखते हैं कि क्या कर पाती हूँ मैं इस कैरेक्टर के साथ, क्या नया दे पाती हूँ, कितना मज़ा आता है इसको प्ले करने में, बिकॉज दैट इज़ वन ऑफ द थिंग्स जो एक्टर्स को करने में मज़ा आता है, अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करना। सो ये वाला बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही प्यारा कैरेक्टर है, सोनी बहुत ही प्यारी लड़की है। सो लेट्स सी कि उसको दर्शक कितना प्यार दे पाते हैं। जी, बचपन में मैंने जस्सी जैसी कोई नहीं बहुत देखी है। एंड जस्सी, ये रहा सोनी का प्यारा सा कंटेनर, ये देख सकते आप सोनी, और मैं हूँ इंद्राक्षी, ये है सोनी का रूम। और अभी हम लोग यहाँ पे तैयार होंगे। और आपने पूछा था जस्सी, तो जस्सी मैंने बचपन में बहुत देखी है, जस्सी जैसी कोई नहीं। मैं मम्मी को भी बोलती थी बचपन में कि जस्सी जस्सी कोई नहीं देखनी है, तो वो एक मेमोरी है, कोर मेमोरी, नॉस्टैल्जिया। अभी मुझे जस्सी का कुछ याद नहीं है, बट आई रिमेंबर चाइल्डहुड में आई यूज टू लव इट। सो अभी ऐसा है कि आई न्यू दैट सम हाउ बचपन में इतना पसंद था तो कुछ डेस्टिनी काम कर गई और मुझे उसका लुक मिल गया। बट ये कहानी बहुत ही निराली है, अलग है। सोनी अलग लड़की है, जस्सी अलग लड़की थी, और ये सोनी की कहानी है। और मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को सोनी की कहानी भी उतनी ही अच्छी लगेगी जितनी जस्सी की कहानी अच्छी लगी थी।
0: भाई बिल्कुल, इंद्राक्षी को भी उतना ही प्यार मिले ऐसी हम उम्मीद करते हैं। अब चलते हैं इनके मेकअप रूम में, जहाँ इंद्राक्षी की मम्मी भी उनके साथ है। तो चलिए देखते हैं कैसा है इंद्राक्षी का मेकअप रूम।
1: ये है मेरी मम्मी। व्हेनेवर आई एम ऑन सेट, मतलब अभी स्टार्टिंग में शी ऑलवेज कम्स विथ मी फॉर मोरल सपोर्ट, बिकॉज यू नो जरूरत पड़ती है बहुत, एंड शी इज वेरी हेल्पफुल मोस्ट ऑफ द टाइम। कुछ बोलोगे?
2: क्या बोले, अच्छा शो है, नया शो है, बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करो, खुश होकर रहो।
1: खुश होकर रहो। और यहाँ पे हमने, क्योंकि अभी अभी मुझे कंटेनर मिला है, इसके पहले नहीं मिला था, सो व्हाट आई एम डूइंग इज एक भगवान का छोटा सा कॉर्नर है मेरा, जो आप देख सकते हो, बहुत प्यारा सा छोटू सा कॉर्नर है। यहाँ पे मैं पूजा करती हूँ एवरी डे मॉर्निंग, बस ये जलानी है और थोड़ा सा ये करना है, क्योंकि रूम में पॉजिटिव वाइब्स की बहुत जरूरत पड़ती है। सो ये है मेरी पॉजिटिव वाइब।

0: भगवान जी को थोड़ा बहुत हमने आरती कर ली है सुबह की, अभी पॉजिटिव वाइब्स रहेंगे क्योंकि हम बंगाली से तो हम धूप देना बोलते हैं इसको, तो हमने धूप दे दी है भगवान जी को और अभी थोड़ी पॉजिटिव वाइब्स भी आ रही है बिकॉज इसका स्मेल भी जो है ना ये अपने आप में एक पॉजिटिविटी लाती है. एंड अभी जस्ट सब कुछ शुरू हो रहा है तो फिर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये देख लीजिए आप, ये टाइम टू टाइम हर 5 मिनट्स में खुशबू फैलाती है, जस्ट इन केस रूम में कुछ भी स्मेल आ जाए यहाँ पे खुशबू रहती है. सोनी को ऐसे तो दिखाई नहीं देता है बट इंद्राक्षी भी थोड़ी सी अंधी है तो इंद्राक्षी को कॉन्टैक्ट लेंसेस पहन के सेट पे जाना पड़ता है, सो वो एक अलग चीज है. और यहाँ पे देखिए हमारी बेडशीट बिछ चुकी है, ये बहुत ही जरूरी है, ये मेरी बेडशीट है, ये मेरी मम्मी ने स्पेशल मेरे लिए बिछा दिया है बिकॉज बेडशीट कभी अगर, वैसे तो सोने का लेटने का मौका नहीं मिलता, वैसे तो सोने का और लेटने का मौका नहीं मिलता है, लेकिन अगर अगर बाई चांस थोड़ा सा ब्रेक मिल जाए और लेटने का मौका मिल गया तो अपनी बेड एकदम रेडी है. तो आई लाइक चाइल्डिश थिंग्स, ये पसंद है मुझे, बारबी बहुत पसंद है मुझे, कार्टून्स बहुत पसंद है मुझे, डोरेमोन बहुत पसंद है, शिनचैन पसंद है मुझे, हर चीज पसंद है जो भी थोड़ा सा बच्चों जैसा है, बिकॉज ए वन नॉस्टैल्जिया, टू आई रियली लाइक देम, मतलब आई रियली एंजॉय देम स्टिल. सो
1: तो भाई बातें तो बहुत हो गई, अब मेकअप की शुरुआत करते हैं. वैसे आज सोनी का लुक थोड़ा अलग है, आज वो बनने वाली है पंजाबी कुड़ी यानी कि पंजाबी ब्राइड, और वो किस लिए है ये तो सीरियल में आगे पता चलेगा ही, लेकिन फिलहाल देखते हैं कैसे इंद्राक्षी अब सोनी के किरदार में ढलती है. तो भाई मेकअप की शुरुआत हो रही है लेकिन सबसे पहले इंद्राक्षी लेंसेज लगाती है और फिर शुरू हो गया है इनका हेयर स्टाइलिंग. सोनी के बाल काफी लंबे हैं इसीलिए इंद्राक्षी विग का इस्तेमाल करती है.
0: सो जैसे कि आप देख सकते हैं पहले मेरा हेयर शुरू हो चुका है, हेयर शुरू होता है पहले, फिर मेकअप होता है, फिर मेकअप के बाद ड्रेस पहनती हूँ, फिर आती है आपकी प्यारी सोनी. सो मिलिए हमारी प्यारी हेयर दीदी से जिनका नाम है नैना.
2: हाय
0: हाय, बहुत शर्मा रही है, इतनी शर्मीली है नहीं, बहुत बातें करती है, अभी थोड़ी चुप चुप है, कैमरा के सामने शर्मा गई. वैसे ये मैं समझ सकती हूँ, मेरे साथ भी कभी कभी होता है, मानो या ना मानो. सो अभी विग लगेगा क्योंकि सोनी के बहुत बाल है लेकिन इंद्राक्षी के ज़्यादातर बाल झड़ चुके हैं क्योंकि इतने सालों से काम किया और इतना प्रोडक्ट यूज़ हुआ है कि अब क्या ही बोले. सो कोशिश रहती है कि बाल रहे पर नहीं रहता. उम्मीद करती हूँ कि आगे बाल और उगे, कभी मौका मिले मेरे बालों को उगने का. सो अभी विग लगेगी और विग के बाद आपकी सोनी के बहुत सारे बाल आ जाएंगे, आप चिंता मत करो.

0: भाई हेयर स्टाइलिंग तो चल ही रही है, साथ ही साथ मेकअप की शुरुआत भी हो चुकी है और शुरुआत हुई है स्किन प्रेप से। भाई आज आउटडोर शूट है, ऐसे में स्किन का ध्यान रखना काफी जरूरी है।
1: देखो बाल तो ऑलमोस्ट बन गए हैं, अभी बाकी है हमारा मेकअप, और मेकअप भी अभी पोती जाएगी, चिंता मत कीजिए। मेकअप दादा आएंगे जब रोशनी आएगी रूम में। हेलो गाइस, तो फाइनली हमारे रूम में लाइट आ गई है, और लाइट के बाद आ गए हमारे उमेश दादा जो हमारा मेकअप करने वाले हैं। आज बाहर शूट है और बाहर बहुत गर्मी है, सो इसलिए सेफ्टी मेजर्स, ढेर सारा सनस्क्रीन और मॉइस्चराइजर जो मैं साथ में मिक्स करके लगाने वाली हूँ। बस उम्मीद है कि सन का इफेक्ट मेरे फेस पे ना हो, तो लेट्स मिक्स इट अप। वजह से इतने सारे बाहर के आउटडोर शूट किया ना, ये मेरा एक्चुअल टोन भी नहीं है, ये तो आग हुआ है। इतना ज्यादा टैन हुई हूँ मैं, ये सारा मेरे हाथ भी काले पड़ चुके हैं, लुक एट माय हैंड्स, इट्स ऑल काला काला। ऐसा नहीं है कि मुझे डार्क शेड पसंद नहीं है, बट ये मेरा नेचुरल शेड ही नहीं है, तो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा नेचुरल शेड थोड़ा सा तो बरकरार रहे। अब मेकअप स्टार्ट करते हैं।
0: तो भाई स्किन प्रेप भी हुआ पूरा और अब मेकअप की शुरुआत बेस लगाने से शुरू हो चुकी है। वैसे तो सोहनी का लुक सीरियल में काफी सिंपल है, लेकिन आज वो पंजाबी लुक में ढलने वाली है, इसीलिए परांदा भी लगेगा और थोड़ा सा ब्राइट मेकअप भी होगा, यानी कि ब्लश, लिपस्टिक और आई मेकअप। तो चलिए करते हैं इस मेकओवर की शुरुआत।
1: ज्यादा नहीं लगाती है सोनी, तो लिपस्टिक में बच गए, लगाई कि मुँह पे लिपस्टिक वो थोड़ा सा बच गए हम लोग, पर बाकी आज थोड़ा फुल लुक है। वरना सोनी जो है बड़ी सिंपल लड़की है, वो इतना नहीं करती कुछ, मतलब इसका मेकअप कुछ रहता नहीं है, बस बेस, कभी कभी थोड़ा सा बस मस्कारा, एंड दैट्स इट। लिप बाम भी नहीं लगाती मैं तो, क्योंकि उनको चैप्ड लिप्स ही चाहिए। सो आज थोड़ा आपको बढ़ के देखने को मिलेगा कि क्या और क्या हो सकता है सोनी के साथ।

आंखें ऑलमोस्ट बन चुकी है हमारी, अभी आंखों से बढ़ के और क्या बाकी है, ब्लश, थोड़ा काजल बाकी है, थोड़ा ब्लश बाकी है. ब्लश तो मेरा सबसे फेवरेट पार्ट ऑफ मेकअप है बिकॉज आई लव ब्लश, बट सोनी ज्यादा नहीं पहनती, दुख की बात है, वरना मुझे ब्लश बहुत पसंद है. इंद्राक्षी को ब्लश

क्योंकि लुक चेंजेस बहुत है तो बहुत हल्का सा ही करना पड़ेगा, वरना फिर से लुक चेंज करने में 12 बज जाएंगे हमारे। अभी थोड़ा सा मस्कारा, बस थोड़ा सा दिल की शांति के लिए।

ये मेरे खुद का मेकअप पाउच है, ये देखिए कितना प्यारा डिजाइन है। ये मैं कोरिया से लाई थी खास सिर्फ शूट पर्पस के लिए। लुक एट दिस, इज सो प्रिटी ना। मेकअप दादा ने थोड़ा सा गंदा कर दिया इसको, इसका पॉइंट दूंगी मैं मेकअप दादा को, लेकिन ये बहुत साफ सुथरा और प्यारा हुआ करता था एक टाइम पे। मैं कोरिया से खास लाई हूँ कोरियन डिजाइन। देखो कितना क्यूट है, ये देखो फ्लावर्स भी है इसमें, ये सब है। ये मेरा फेवरेट पाउच है, और लाऊंगी कोरिया से मैं। चलो अब ब्लश भी हो चुका है, अब बस लिपस्टिक बाकी है। तो कितना टाइम लगा हमारे मेकअप को? ज्यादा नहीं लगा, 10-15 मिनट। देखो मैंने बोल दिया, मैंने भविष्यवाणी कर दी, मतलब वो चीज हो जाएगी। हम बंगालीज की यही खासियत है।

0: स्टिक भी डन, एवरीथिंग इज डन. अब बस चेंज करना बाकी है. ओ हाँ, और हमारा स्पेशल दांत और चश्मा आएगा, फिर तो और मजा आ जाएगा सोनी को.
1: तो सोनी का मेकअप हुआ पूरा, लेकिन लुक अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि सोनी के लुक में सबसे खास है उनके दांत और चश्मा. लेकिन उससे पहले होगा सोनी का आउटफिट चेंज, और उससे भी पहले डांस का टशन दिखाएंगी इंद्राक्षी.
0: As you can see, मेरा मेकअप और हेयर डन हो चुका है, और हेयर में आप देख सकते हो प्यारा सा परांदा लग चुका है, जो पंजाबी वेडिंग्स में बहुत ज्यादा वो है, इसकी चलन है. बहुत प्यारा सा परांदा है, मुझे बड़ा प्यारा लगता है, बट मेरे हेयर के लिए थोड़ा सा बड़ा हो जाता है. सो इसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी मेरा कॉस्ट्यूम, जो है ये थोड़ा अलग है, और ये एक्चुअली पंजाबी वेडिंग के लिए है. बट आई कैन नॉट टेल यू वाई, बिकॉज वो आपको देख के फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो देखते रहिए सोनी और नहीं कोई होनी, मंडे टू सैटरडे रात 9 बजे दंगल टीवी पर, और फिर आपको पता चलेगा कि क्यों मैं ये पहन रही हूँ, उसका क्या राज है.

0: थक गए हैं हम और आज बहुत सारा शूट है, बहुत सारी मेहनत है, एवरीडे ही होता है लेकिन आज थोड़ा ज्यादा है क्योंकि आज आउटडोर है और आउटडोर में थोड़ी ज्यादा थकान होती है बिकॉज धूप, पॉल्यूशन, आवाज, पता नहीं क्या क्या. सो आज मैं थोड़ा एनर्जी सेविंग मोड पे हूँ. सो चल रही है, जल्दी से रेडी हो जाते हैं हमारे कॉस्ट्यूम में.
1: तो भाई इंद्राक्षी का आउटफिट चेंज भी हो गया है और अब वो 90% सोहनी के किरदार में ढल चुकी है और अब बारी ढेर सारे गहने पहनने की. रब

ज्वेलरी पहन रही हो, क्यों पहन रही हो, क्या सीक्वेंस है, ये आपको देखने में पता चलेगा। जबरदस्ती पूछने की कोशिश मत करना, पीठ में कोनी घुसा दूंगी। सोनी ऐसी नहीं है पर इंद्राक्षी ऐसी ही है।

0: केसरिया तेरा।
1: बाकी हमारी ज्वेलरी एज यू कैन सी ऑल डन, ये मेरे कलीरे हैं जो गिरते रहते हैं विदाउट एनी रीजन। इसका बहुत तंग करते हैं ये लोग मेरे को। इसका तो कलीरे इतना गिर गया है कि एक पार्टी नहीं है इस कलीरे का, इतना गिर चुका है ये, गिरा हुआ कलीरा है ये। और ये नहीं गिरा हुआ कलीरा है जो अभी भी सही सलामत है, वरना कलीरे तो भाई बहुत तंग करते हैं, तंग ही तंग ही। ये मेरा प्यारा सा सुंदर सा दुपट्टा है जैसे कि आप देख सकते हैं,
2: ऐसी ले लो अभी।
1: ये देखो कलीरे तंग कर रहे। ये देखो दुपट्टा एक्चुअली जाना तो ऐसे चाहिए, दुपट्टा जाएगा ऐसे ऐसे जाएगा दुपट्टा, एंड सर के ऊपर से आ सकता है, बट मैं कोशिश करूंगी कि ना आए। जैसे कि आप देख सकते हैं पूरा ज्वेलरी वोलरी मैंने पहन लिया है, ज्वेलरी एंड दुपट्टा, प्यारा प्यारा, जूते अलग हो जाएंगे डोंट वरी। ये मेरे खुद के पंप्स हैं जो मैं अपने कंफर्ट के लिए पहनती हूँ। बाकी आप देख सकते हैं सब तैयार हैं, बस ये देखिए मेरे प्यारे प्यारे कलीरे जो मुझे तंग करते रहते हैं, बहुत तंग करते कलीरे। ये देखो अटक गया दुपट्टे में, हर वक्त तंग करते मुझे कलीरे। ये देखो कलीरे, और ये रहा मेरा प्यारा सा वो मांग टीका जो ठीक करने वाले हैं, और दुपट्टा वगैरह एवरीथिंग इज देयर। परांदे देख लो आप, मतलब पूरा फुल ऑन लुक में हूँ मैं, देख लो मुझे अच्छे से। सो एक चीज के बिना मेरा लुक अधूरा है, और वो अधूरी चीज है मेरे दांत और मेरा चश्मा, वो मैं पहन के दिखाती हूँ आपको।
3: तो भाई मेकअप, ज्वेलरी और आउटफिट रेडी है, लेकिन अब भी सोहनी का लुक पूरा नहीं हुआ है। और अब सोहनी के लुक की सबसे खास बात, उनके ये बनी टीथ और ये चश्मा, जिसके बाद इंद्राक्षी पूरी तरह से सोहनी के किरदार में ढलने वाली है।
1: आ गई आपकी प्यारी बनी सोहनी विद हर बनी टीथ, जिसके साथ बात करने में थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन हम एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे बात करने का ढंग बदल चुका है ऑलरेडी, बिकॉज दांत आ चुके हैं, चश्मा आ चुका है, और थोड़ी थोड़ी अंदर सोनी भी आ रही है। शी कम्स एंड पोजेसेस मी सीन करके फिर चली जाती है वो। तो

0: मिलिए आपकी सोनी से, जो कि है काफी क्यूट और दिल की बेहद साफ।
1: जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैं रेडी हो चुकी हूँ, और ये लोग देख के थोड़ा बहुत कंगना रनावत फ्रॉम तनुवेज मनु की याद आ जाती होगी। आई नो, मुझे भी याद आ रही है, वो मूवी बहुत आइकॉनिक थी उसके टाइम के लिए और आज भी है। एंड अभी तो आई एम सो एक्साइटेड क्योंकि सीन्स इतने सारे होने वाले हैं। माय गुडनेस, यू कैन नॉट बिलीव कितने सारे सीन्स होने वाले हैं। आज मेहनत करनी है, आज बहुत सारी, एवरीडे करनी पड़ती है, पर आज बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सो विश मी ऑल द लक गाइस, आई लव यू गाइस सो मच। सोनी आपके साथ अपने सारे दुख, अपने सारी तकलीफें बांटने के लिए आ रही है मंडे टू सैटरडे 9 बजे ऑन दंगल टीवी, और बहुत बहुत सारे आपको अच्छे अच्छे ट्रैक्स देखने को मिलेंगे, कहानियां देखने को मिलेंगी, इतना सारा मसाला है, इतनी सारी प्यारी प्यारी कहानियां, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आई होप कि आपको हमारी कहानी अच्छी लगे, हम सब बहुत मेहनत करें इसके लिए।
0: आपने कुछ ऐसा है सोनी का लुक, और अब सोनी पहुंच गई है शूटिंग करने के लिए। भाई सोनी से तो आप मिल लिए, लेकिन अब बारी मिलने की इनकी होने वाली सासू माँ से। तो चलिए करते हैं एकता से खास मुलाकात और जानते हैं उनके किरदार और उनके लुक के बारे में कुछ खास।
2: मिली है मल्लिका धवन से, जो फैशनेबल है, इनका अपना फैशनेबल लेबल है, और इन्हें बदसूरत लोगों से नफरत है। भाई ये एक किरदार है जो निभा रही है अभिनेत्री एकता सरैया, जिन्हें आपने देखा है अनुपमा में बतौर डॉली शाह। मल्लिका धवन की सोच को जल्दी बदलेगी उनकी होने वाली बहू सोनी, जो उनके बेटे कबीर की बहू बनेगी। भाई ये तो है नए सीरियल सोनी की स्टोरी, जहाँ पर एकता सरैया का एक फैशनेबल अंदाज देखने को मिलेगा। तो आइए मिलते हैं एकता सरैया से और जानते हैं कि एकता कैसे बनी मल्लिका धवन।
3: जिसकी सूरत अच्छी नहीं वो बहुत बुरे होते हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपकी एकता सरैया, और इस बार आप मुझे देखने वाले हैं एक बहुत नए और मजेदार किरदार में, और मेरे कैरेक्टर का नाम होगा मल्लिका धवन।
2: दंगल के नए शो सोनी में दिख रही हैं मल्लिका, और एकता का यह कैरेक्टर बहुत फैशनेबल है, फिर चाहे वो उनके नेम प्लेटेड नेकलेस हो, उनके नेल्स हो, या फिर हो उनकी ड्रेसेस। और इस फैशनेबल लेकिन थोड़े से ग्रे किरदार को निभाने में काफी मजा आ रहा है एकता को। तो चलिए जानते हैं क्या है उनका स्टाइल क्वेश्चन।
3: तो आई हैव बीन टचवुड बहुत फॉर्चुनेट, मुझे हर किरदार एक बहुत ही अलग हटके और मजेदार प्ले करने मिलता है। तो ये शो में भी वन रीजन फॉर मी बींग अ पार्ट ऑफ द शो इज मल्लिका धवन का कैरेक्टर बहुत कमाल का है। वो एक सिंगल मदर है, बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी है। चंडीगढ़ में, चंडीगढ़ का आप कह सकते हो वन ऑफ द नोन पीपल, एंड उसका खुद का एक फैशन हाउस है। जैसे आप देख सकते हो मेरा लुक। खुद ऐसे है और उनका कलेक्शन तो मतलब फिर क्या ही होगा। अपने नाम का हमेशा इनिशियल साथ में लेके चलती है, एम फॉर मल्लिका धवन। सो मेरा एक बहुत बड़ा फैशन हाउस है, सल्तनत बाय मल्लिका धवन, जिसकी मैं ओनर हूँ। सेल्फ मेड हूँ, सिंगल मदर हूँ, घर में सास है, बेटा है, जो मल्लिका की लिटरली जान है। उसकी स्टोरी बेसिकली ये है कि बेटे का और माँ का एक रिलेशन जो अलग एक चल रहा है। बेटा ऑफ कोर्स इवेंचुअली मतलब सोनी के प्यार में जब पड़ेगा, जब उसका हृदय परिवर्तन होगा, बट मल्लिका की एक सोच है कि उसे लगता है कि अगर किसी इंसान की सूरत अच्छी नहीं तो वो इंसान भी बहुत बुरा है, वो इंसान भी अच्छा नहीं।
2: सोनी और कोई ना होने के लॉन्च में एकता नजर आई सीरियल के अपने बाकी कलाकारों के साथ। वैसे उनकी होने वाली बहू सोनी यानी इंदाक्षी के साथ उनका एक काफी अच्छे मोमेंट आने वाले हैं, यानी सास बहू का तड़का भी शो में लगेगा, और एकता इस बात को लेकर बहुत एक्साइटेड है।
3: कबीर ये शायद पता नहीं मानता है या नहीं मानता है, मैंने तो बहुत कोशिश की है, पर मेरी सास जो है ना वो अलग पट्टियां पढ़ाती है। बट यस, मल्लिका का यही एक एम है कि वो अपने बेटे को ये बार बार समझाए, और उसके पास भी एक कारण है, एक बहुत स्ट्रांग रीजन है जिसकी वजह से वो ये सोच बना बैठी है कि जो लोग अच्छे नहीं दिखते ना वो अच्छे होते ही नहीं है। तो हमेशा अपने बेटे को सिखाती रहती है, बोलती रहती है देख दूर रहना, गंदे लोगों से दूर रहना, बदसूरत लोगों से दूर रहना, वो लोग कभी अच्छे नहीं होते, हमेशा धोखा देते हैं। एंड इसका रीजन आप जब शो देखेंगे आपको पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों सोचती हूँ। बट इवेंचुअली

0: हर बच्चे की अपनी एक जर्नी होती है. माँ बाप जो भी सिखाए, जो भी बताए, वो अपनी लाइफ में जो एक्सपीरियंस करते हैं तो उनके थॉट्स और उनकी जो नेचर होती है उससे इन्फ्लुएंस काफ़ी होती है. तो कबीर शायद माँ की बात सुने इनिशियली, पर फिर उसकी लाइफ जर्नी क्या रहती है, उसका सोनी के साथ क्या एक्सपीरियंसेस होते हैं, उस हिसाब से आगे वो अपनी चॉइसेस बनाएगा और फिर मज़ा आएगा क्योंकि उसके बाद व्हाट विल बी माय रिएक्शन, तो वो भी एक बहुत अमेजिंग ट्रैक होने वाला है. बेसिकली हमारी लाइफ में हम कहते हैं कि हम ऑफकोर्स फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ ऑलवेज द अपियरेंस. तो हम लोगों को देखते हैं, फिर हम सोचते हैं कि अच्छा बात करें नहीं करें, फ्रेंड्स बनाएं नहीं बनाएं. बट विथ टाइम, विथ एज, विथ एक्सपीरियंस हमें पता चलता है कि नहीं यार, ये सब मैटर नहीं करता है. इंसान मैटर करता है, चाहे वो जीवन साथी भी क्यों ना हो आपका या आपके कोई भी रिलेशंस हो. आप लॉन्ग रन में आपको एक अच्छा इंसान, एक अच्छा कंपेनियन चाहिए होता है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, आपके पति के रूप में हो, बेटे के रूप में हो, फ्रेंड के रूप में हो. बट मल्लिका धवन भी ऐसी ही थी, पर क्या चीज़ें हुई उसके पास्ट में, उसकी लाइफ में, जो जिसने उसकी ये सोच ही बदल दी. रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ऑनेस्टली हर शो में होती ही है कंधों पर, बिकॉज नॉट जस्ट वन पर्टिक्यूलर कैरेक्टर, सारे ही जितने कैरेक्टर्स हैं शो के, इट्स एन ऑनसेंबल कास्ट. ऑफकोर्स लीड्स है, हीरो हीरोइन है, बट आई थिंक एक अच्छी टीम होना, एक सारे कैरेक्टर्स का एक बहुत यूनिक ये है ट्रैक चल रहा है. तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डेफिनेटली है, बहुत अलग कैरेक्टर भी है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है, तो करने में भी बहुत मज़ा आ रहा है. तो ये सिचुएशनल है, मैं ये नहीं बोलूँगी. मल्लिका धवन बुरी औरत नहीं है, वो एक बहुत अच्छी औरत है, बहुत अच्छी माँ है, पर लाइफ में उसके सिचुएशंस ने उसे थोड़ा सा बिटर और हार्श बना दिया है.
1: तो उम्मीद है कि टीवी की नई फैशनेबल सास अपनी नई नवेली बहू सोनी के साथ एक नया सास बहू का रिश्ता दिखाए. मुंबई से रूपा वंची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट.

आजकल ये रिश्ता क्या कहलाता है में कबीर संग रह रही मायारा अपने घर वापस लौट चुकी है। मायारा की वापसी से जहां अरमान और अभिरा काफी खुश हैं, तो वहीं देखने को मिली मायारा कबीर के प्यार की कसक। अब कहानी आगे क्या मोड़ लेती है, देखना दिलचस्प होगा।

0: मायरा की घर वापसी। अरमान अभीरा की खुशी।
1: मेरी सांसों में तू है समा।
0: क्या अरमान समझ पाएगा अपनी बेटी का दर्द?
1: तो है तेरा साया, तेरी पूजा करूं।
0: स्टार प्लस के सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में जैसे ही मायरा को अपनी गलती का एहसास हुआ, वो लौट आई है अपने मम्मी पापा के पास। और देखिए कैसे आते के साथ ही उसने न सिर्फ अपने मम्मी पापा से माफी मांगी बल्कि अरमान अभीरा दोनों ने वापस अपना भी लिया है। इतना ही नहीं, वो तो बहुत खुश है कि उनकी बेटी घर वापस आ गई है, वो भी इतने शुभ मौके पर। ऐसे में अरमान अभीरा ने मायरा के साथ माता रानी की आरती उतारी और आरती उतारने के बाद मायरा ने अपने पापा की हथेली पर लगे घाव पर मरहम लगाना शुरू कर दिया।

0: अपने रूम में मैं कार कैसे पिचका लिए, कुछ खाया नहीं होगा, जाओ जल्दी जाओ मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लेके आती हूँ। फैमिली अब से रोज एक महीने तक मायरू की फेवरेट डिशेस ही घर में बनेंगी।
1: एक महीना नहीं पूरे 6 महीने। मैं मुफ्ती को भी फोन करके बता देता हूँ कि मायरा आ गई, वो भी बहुत परेशान हो गई थी।
2: तो फाइनली घर आ गई है मायरा। उसने बहुत ज़्यादा बहुत बहुत एक्सट्रीम लेवल पे मिस किया है पेरेंट्स एंड फैमिली को, और बहुत ज़्यादा गिल्टी भी है। मायरा को रियलाइज़ होता है कि उसने जो जो गलती की, पेरेंट्स को ये सब बोला एंड घर से भाग गई वगैरह वगैरह जो भी किया, मायरा को बहुत बड़ा रियलाइजेशन हिट होता है एंड बहुत मिस तो वो कर ही रही है डे वन से जब से गई है। तो सब एक साथ ओवर जो है मायरा का ब्रेकडाउन होता है, कबीर का भी, दोनों को रियलाइज़ होता है कि दोनों ने बहुत बड़ी गलती कर दी एंड दोनों डिसाइड करते हैं वापस आने का। तो फिर दोनों वापस आ जाते हैं एंड पहला तो यही है कि घर वाले एक्सेप्ट करेंगे या नहीं, बट वो मायरा कहती है कि जो भी होगा, बट एक वो मायरा और कबीर को पता है कि वो अगर घर वापस जाएंगे तो वो दोनों साथ नहीं रह पाएंगे एटलीस्ट फॉर सम टाइम या कुछ, तो मतलब क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से अब फाइनली वो लोग घर जा रहे हैं, दोनों सैक्रिफाइस कर ही देते हैं ऑलमोस्ट। ब्रेकअप नहीं हुआ है, मतलब ऐसा मुंह बोला ब्रेकअप वाला ब्रेकअप कि मैं तेरे से रिश्ता तोड़ रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बट दोनों को पता है कि नहीं रहने वाला है रिश्ता। तो फिर भी दोनों आ जाते हैं घर पेरेंट्स के पास एंड वो सब वही बहुत एक दूसरे को दोनों बहुत मिस कर रहे हैं, बट पेरेंट्स को दिखा भी नहीं रहे हैं, घर आके खुश हैं बट बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं।
3: अब मायरा के वापस आने से अरमान और अभीरा दोनों घर में खुशियां ही खुशियां बांटेंगे, लेकिन मायरा उसके दिल में कितना दर्द है वो तो सिर्फ अकेले वही जानती है। तभी तो देखिए कैसे वो अकेले कमरे में अपना बैग अनपैक कर रही है और तो और अपना मोबाइल निकालकर कबीर को याद भी कर रही है। इतना ही नहीं, मायरा का दर्द कोई और समझे न समझे, कहीं न कहीं अब अरमान भी समझने लगा है।
2: मतलब अभी मायरा घर तो वापस आ गई है, बट मायरा पहले जैसे मायरा नहीं है, क्योंकि गिल्ट के मारे मायरा डूबी जा रही है। तो वो पेरेंट्स के साथ जैसे वो पहले थी वैसी नहीं रह पा रही है, वैसे बिहेव नहीं कर पा रही है, उनसे नज़रें नहीं मिला पा रही है, बहुत ज़्यादा गिल्ट में है मायरा। तो वो मतलब होता है ना कि एक छोटी सी दरार आ गई थी, ऐसा वो टुकड़ा टूट गया था, जुड़ रहा है बट फिर भी वो एक निशान अब तक है। तो रिलेशनशिप धीरे धीरे हो रहा है, मायरा को ये भी बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग लग रहा है कि उसके पेरेंट्स ने उसे माफ़ भी कर दिया, बट मायरा नज़र नहीं मिला पा रही है पेरेंट्स से। तो वो एक हिचकिचाहट तो है, चीज़ें सही हो रही है, सॉर्ट आउट हो रही है, बट जैसी मायरा पहले थी वैसी वापस नहीं आई है, टाइम लगेगा।
3: फिलहाल तो मायरा अपने मम्मी पापा की याद में वापस आ तो गई है, लेकिन क्या वो कबीर को भुला पाएगी और क्या उसके प्यार को अरमान अभीरा समझ पाएंगे, देखना होगा आगे आने वाले एपिसोड्स में।
1: कुछ भी मत बोलो प्लीज, मैं सॉरी अपने पास रखो, हमें जो चाहिए था हमें मिल गया।
4: अपनी गलती मानने वाले तो माता रानी के स्पेशल फेवरेट्स होते हैं।
3: मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
5: सीरियल तुम देना साथ मेरा में घर से निकाले गए अपराजिता और रक्षित अपराजिता के मायके में रह रहे हैं, ससुराल में एक तरफ जहां अपने साले संग रक्षित की नोकझोंक चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ फट जाती है रक्षित की शर्ट, और ऐसे में हंसी मजाक के साथ देखने को मिली हैप्पी फैमिली की झलक।
6: जीजू ये लीजिए,
7: रक्षित और अविनाश की शर्ट को लेकर बहस। रक्षित ने पहनी शर्ट, हुआ हादसा।
8: हाँ?
7: दिखा हैप्पी फैमिली मोमेंट। स्टार प्लस के सीरियल ओ हम नवा तुम देना साथ मेरा में रक्षित और अपराजिता अब अपराजिता के घर में ही रहेंगे। असल में रक्षित और अपराजिता को घर से बेघर कर दिया गया है, लेकिन अपराजिता का परिवार देखिए उनका साथ दे रहा है। ऐसे में जीजा साले के बीच ये खट्टी मीठी नोक झोंक देखने को मिली, जहां पर अविनाश रक्षित के लिए ये शर्ट लेकर आया है। हालांकि रक्षित कहता भी है कि ये शर्ट छोटी है, लेकिन जबरदस्ती अविनाश रक्षित को ये शर्ट पहनने को मजबूर करता है। शर्ट पहनते ही हो गया गोलमाल, क्योंकि ये शर्ट फट गई। और ऐसे में अपराजिता और बाकी घर वाले देखे कैसे हंसने लगे भाई, यहाँ तो फन मोमेंट बन गया और हैप्पी फैमिली मोमेंट भी।
8: ये बस आ गया, अरे अटक गया है,
9: अरे नहीं अटका, चढ़ाओ सही,
8: अरे मैं

0: वाला छोटा था जीतू को फिट नहीं आया, फट गया।
1: मीडियम को लाश में डालेगा तो फटेगा। कब से कह रहा हूँ नहीं फिटूंगा नहीं फिटूंगा, लेकिन इसे मैं मसल देखने की नहीं किए मसल ट्राइसेप्स बाइसेप्स
2: आराध्या भी घर पे आई थी और लफड़ा करके चली जा चुकी है लाइक आराध्या करती है। और अभी हमारा बहुत हैप्पी मोमेंट्स चल रहा है कि वी हैप्पी कि जीजू और अप्पू दी और जीजू साथ में रह रहे हैं और हैप्पी मोमेंट्स चल रहा है फैमिली का, जैसे नॉर्मल फैमिली का चलता है। एंड अभी जो हमारा और मेरा और शब्बीर भाई का, रक्षित का और अविनाश का सीन गया है, जो मैं उन्हें कुर्ता ट्राई करवा रहा हूँ जो मेरा कुर्ता है जो उनको फिट नहीं आ रहा है। सो वी हैव दैट जीजू और साला वाला मोमेंट और बहुत मस्ती वाला मोमेंट है और ऑडियंस को भी अच्छा लगेगा। और जब बाहर हमारी फैमिली देख लेती है कि ये दोनों कर क्या रहे हैं तो फिर पता चलता है कि मैंने अपना छोटा कुर्ता उन्हें फंसाया हुआ है बॉडी में उनकी। ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा ही कॉमिक सीन था और स्पेशली एक्चुअली ये जो सीन लिखा भी गया था ना, तो मैंने मोस्टली शब्बीर भाई ने इसको थोड़ा चेंज करके और कॉमिक बना दिया, सो ये और अच्छा बन गया। और इवन अपराजिता हमारी माँ और रश्मि बाहर खड़े हैं, वो भी देख रहे हैं कि ना जब सुन रहे हैं कि अंदर हो क्या रहा है, ये मतलब चल क्या रहा है। तो ओवरऑल सीन फनी था और इसको फनी बना दिया और थैंक्स टू शब्बीर भाई।
3: हालांकि अपराजिता और बाकी घर वाले रक्षित और अविनाश की सारी बातें बाहर खड़े सुन रहे और मजे ले रहे थे और जैसे ही अंदर आए हंसी के ठहाके लग गए। असल में हुआ यूं था कि अपराजिता और रक्षित को उनके घर से निकाल दिया गया है। ऐसे में अपराजिता के पापा ने रक्षित को फोर्स किया कि वो यहीं रहे और ऐसे में इन सभी का हैप्पी फैमिली मोमेंट भी देखने को मिला जहां एक सुखी परिवार नजर आ रहा है।
4: नहीं, नहीं। एक ससुर के नाते मुझे अपने दामाद को घर रखने का भी हक नहीं है ना, तो चाहिए क्या जाना है चाहिए। और इसके बाद मुझे कभी पापा मत करिए, मत करिएगा पापा।

0: हमें तो बहुत एज अ फैमिली अच्छा ही लगेगा कि रक्षित सर हमारे घर पे रुकेंगे, और वो रुकना नहीं चाहते थे, ये आगे सीन आएगा, रुकना नहीं चाहते थे, और क्योंकि क्यों ना चाहिए कि बेटी का घर है तो बेटी घर पे रह जाए और हम वो निकल जाए और वो कुछ करके अपना काम करके फिर लेके जाएंगे प्रजिता को। बट एज अ फैमिली वी वॉन्ट कि हमारे साथ रहें वो और हमारे साथ वक्त बिताएं, और जब हमारा उनका घर ही है तो वो बाहर क्यों जाएंगे। तो एज अ फैमिली हमने उनको रोक लिया और वो मान गए और अभी हमारे साथ रहेंगे।
1: खैर, रक्षित और अपराजिता की इस मुश्किल घड़ी में अपराजिता का परिवार रक्षित और अपराजिता दोनों के ही साथ खड़ा है। अब हर मुश्किल होगी आसान। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
2: सीरियल तू ही रे दिल में आने वाला है एक बड़ा ट्विस्ट, जहां वृंदा को लेकर संजोग का शक अब गहराने लगा है। ऐसे में क्या संजोग के सामने आ जाएगा संजय और वृंदा की शादी का सबसे बड़ा राज? चलते हैं सीरियल के सेट पर और देखते हैं।
1: संजय के पापा के श्राद्ध की पूजा। जाने अनजाने वृंदा ने निभाई बहुरानी की रस्में। संजोग को हुआ वृंदा पर डाउट। सीरियल तू ही रे दिल में आज संजय के पापा की श्राद्ध की पूजा है, जहां पर सभी घर वाले मौजूद हैं, और तो और नीरव की भी घर वापसी हो गई है। ऐसे में संजोग की माँ चाहती है कि इस श्राद्ध में जो भी भोजन चढ़े वो बहुरानी के हाथों का बना हुआ होना चाहिए।

0: बस फिर क्या, बहुरानी का कर्तव्य निभाने के लिए स्वाति पहुंच गई है रसोई में और देखिए कैसे वो वृंदा के साथ मिलकर सारे पकवानों की तैयारी कर रही है। पर उसे ये नहीं पता कि जाने अनजाने ये रस्में वो नहीं बल्कि वृंदा निभा रही है, क्योंकि वो ही है जो सारा भोजन बना रही है। और स्वाति वो तो वृंदा से बनाना सीख रही है और घरवाले इस बात से अनजान है।
1: सो बेसिकली संजू के पापा का श्राद्ध है जहाँ पे माँ चाहती कि मैं खाना बनाऊँ और मुझे खाना बनाना आता नहीं है तो मैं अम्मू की हेल्प लेती हूँ। अम्मू मुझे बताती है दीदी ऐसे करो ऐसे करो, तो मैं खाना बना रही होती हूँ। सो अम्मू की हेल्प से मैं खाना बना पाती हूँ। आई डोंट नो अबाउट फेयर, मुझे तो बस इतना ही पता था कि खाना बनाना है। मुझे ये नहीं पता था कि मैं बिल्कुल हेल्प नहीं ले सकती। अम्मू मुझे बता रही है, कहीं कहीं हेल्प कर रही है। सो बेसिकली हमने मिल के खाना बनाया है एंड आई हैव नो क्लू कि ये फेयर है या नहीं है, बट जितना मुझे पता है मैं उस हिसाब से कर ही रही हूँ बेस्ट।
0: अम्मू ने ना सिर्फ स्वाति की मदद की है खाना बनाने में बल्कि उसने तो अपने हाथों से ही श्राद्ध की थाली भी लगाई है। सारा पकवान उस थाली में खुद अपने हाथों से परोसा है। खैर सच से अनजान स्वाति वो थाली लेकर पहुंच जाती है रसोई के बाहर संजय और अपनी होने वाली सासू माँ को देने के लिए, ताकि वो श्राद्ध की पूजा में वो खाना चढ़ा सके। और तो और पूजा का सारा विधि विधान भी हो जाता है, लेकिन दूर खड़ी अम्मू छुप छुप कर सब देख रही है। जाने अनजाने ही सही वृंदा ने ये सारी रस्में निभा तो ली है और वो रसोई में काम करने में जुट भी गई है, लेकिन स्वाति पहुंच गई है रसोई में अम्मू का धन्यवाद करने के लिए।
2: अम्मू थैंक यू
3: एक सेकंड, अम्मू जी ने सिखाया सब कुछ तभी मैं सोचूं। तो स्वाति तो चाकू है कि वो काटना पीटना ब्लड सब कुछ।
2: डॉक्टर हूँ मैं।
3: हाँ पता है डॉक्टर है। चल जा।
2: हाँ जा रही हूँ, ख्याल
3: रख लूंगा
2: अपने, मैं समझूंगा।

0: मुझे, मैं ना बचपन से जासूस बनना चाहता था लेकिन कभी बन नहीं पाया। एक दिन पापा ने इतना पीटा ना मुझे, फिर मैंने वो प्लान ड्रॉप कर दिया। लेकिन जो जासूसी का कीड़ा है ना, वो अंदर से अभी तक गया। माने देख लिया, मेरा फूफा को आप ही मनाने गई थी ना।
1: संजोग कर रहा है बट स्वाति को कुछ नहीं पता। आई हैव नो क्लू व्हाट्स हैपनिंग, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इस घर में, उसे क्या ही पता भाई, उसको बस हॉस्पिटल का ही खबर रहता है। संजोग को पता लगता है शायद से नीरा फुआ को अम्मू ने बोला था कि आप मान जाना प्लीज, जो भी मनाती है वो जाके नीरा फुआ को। अम्मू भी चाहती है कि फैमिली में पीस रहे, सब लोग साथ में रहे, तो हाँ अम्मू जाके भी अपना पार्ट कर रही है सब कुछ।
2: खैर एक पल के लिए तो वृंदा डर जाती है ये सोचकर कि कहीं संजोग को उसके और संजय के रिश्ते के बारे में पता तो नहीं चल गया, लेकिन असल में संजोग अभी भी अनजान है। फिलहाल तो संजोग का दिल वृंदा के लिए धीरे धीरे धड़कने लगा है और वृंदा इस बात से अनजान है। देखना होगा कि रिश्तों की ये उलझने कहानी में क्या ट्विस्ट लाएंगी। मुंबई से रोशनी विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
3: ग्लैमर गॉसिप और हाई वोल्टेज ड्रामा मनोरंजन की दुनिया से हम लेकर आए हैं कुछ ऐसी रॉकिंग और शॉकिंग खबरें जो आपके चेहरे पर ले आएंगी एक प्यारी सी मुस्कान। आइए आपको ले चलते हैं आज की रॉकिंग खबरों की ओर।
4: पेश है बॉलीवुड ओटीटी और टीवी की रॉकिंग और शॉकिंग खबरें। नजर डाल लीजिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा के इस वीडियो पर, जहां पर हो रहा है गणपति सेलिब्रेशन गोकुलधाम सोसाइटी में और गोकुलधाम वासी कर रहे हैं फैंसी ड्रेस कंपटीशन। तो आइए देखते हैं इसमें क्या धमाल होने वाला है।
5: इस बार गणपति के लिए तैयार है गोकुलधाम, दिखाने अपने शानदार अवतार।
6: मैं जो बना हूँ उसके लिए अलग कॉस्ट्यूम की जरूरत ही नहीं है।
5: अब फैसला होगा सबसे दमदार कौन।
7: सुबह शनिवार सुबह 8 बजे से मैं और मेरी फैमिली पंची में,
4: क्योंकि सास भी कभी बहू थी की कास्ट एंजॉय कर रही है मूवी नाइट, ऐसे में सामने आया है ये वीडियो।
8: जा रहे थे तभी हमारे बस के कंडक्टर थे।
9: अरे हाँ, 2 तारीख को सत्संग के बाद 3 तारीख को जिस बस में हम वापस गए थे आप उसके कंडक्टर थे।
10: 2 तारीख को जब हम तुम्हारी बस में सत्संग के लिए पंजी गए थे तुमने हमसे पैसे नहीं लिए थे। हम
4: रही है कि सीरियल मन्नत में जल्दी होने वाली है किशोरी शाहने और सुप्रिया शुक्ला की एंट्री, जो कहानी में अहम रोल निभाती नजर आएंगी।

बीती शाम हुई दृश्यम 3 की सक्सेस पार्टी, जिसमें कई सारे सितारे हुए शामिल, जैसे कि अजय देवगन, वत्सल इशिता, अनिल कपूर, मृणाल, श्रेया सरन, रमेश तौरानी, जयदीप अलावत और बाकी की कास्ट एंड क्रू भी हुई शामिल। भाई ये सभी मिलकर कर रहे हैं सक्सेस पार्टी। ऐसे में सामने आए हैं पार्टी के ये इनसाइड नजारे भी, जहां फुल ऑन एंटरटेनमेंट और एंजॉयमेंट चल रहा है।

0: बनेगा करोड़पति में खास मेहमान बनकर माधुरी दीक्षित आई हैं। ऐसे में देखिए कैसे माधुरी बिग बी को सुना रही है अपने किस्से।
1: हमने एक शो किया था बहुत पहले अनफॉरगेटेबल्स, और तभी मेरे बच्चे इतने थे। जब मैंने वो शो किया, आपसे मिले, आपसे बहुत सारी बातें हुई, अब मेरे बच्चे इतने बड़े हो गए। उसके बाद हम अब मिल रहे हैं। ऐसे
2: वो शो में था, अरे हाँ, याद आया। और शायद वो बच्चे जानते नहीं थे कि आप कौन है, मतलब माँ तो है लेकिन माधुरी दीक्षित कौन है ये नहीं जानते थे वो।
1: मेरा बेटा एक दिन घर आया और कहता है कि मॉम यू आर अ मॉम ना, आप तो मेरी माँ है। मैंने कहा हाँ। तो बोले नहीं, पता नहीं, वो जो लड़का है ना मेरे स्कूल में, मेरा फ्रेंड, कहता है तुम कितने लकी हो, तुम्हारी माँ माधुरी दीक्षित है।
0: में फिलहाल नजर आ रही हैं कनिका मान। ऐसे में कनिका के लिए एकता कपूर ने ये स्पेशल पोस्ट डाला है। इसी के साथ माही विज का इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट हो गया है। ऐसे में फैंस स्पेकुलेट कर रहे हैं कि ये सब यंग डीएसए के फैंडम ने किया होगा। ऋषिकेश पहुंच गए हैं संजय कपूर, और वहां पहुंचे वो लक्ष्मण झूला टेंपल में, और देखिए कैसे वो महादेव की पूजा करते नजर आए। एक्टर नाना पाटेकर अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। 75 की उम्र में उनका निधन हो गया है। ऐसे में उनके सभी को एक्टर्स और फिल्म इंडस्ट्री के सभी कलाकारों ने सोशल मीडिया के जरिए लेट वेटरन एक्टर नाना पाटेकर को भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी है।

0: आज सुबह पहली खबर आई, मेरे बहुत करीब दोस्त नाना पाटेकर गोवा में उनको कार्डियक अरेस्ट आया और वो बच नहीं पाए। उसी गोवा में उन्होंने अपने हाथ से मुझे भोजन करवाया था, मेरे अच्छे मित्र।
1: वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त थे, मुझे बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ, बहुत दुख, क्योंकि वो दोनों माय क्लोजेस्ट। एक नॉर्मल आदमी की तरह चिकित्सा कपड़े पकड़े से आपको मालूम पड़ेगा, और अपने बहुत लोगों की मदद करते थे वो, जहाँ भी चाहे वो किसान हो कोई भी हो। बाकी उनके बारे में कहा गया बहुत गुस्से में होता है, करता है, गुस्सा तभी आता है जब आप ऑर्गेनाइज नहीं।
2: वो एक बहुत संवेदनशील इस प्रकार के व्यक्ति थे, समाज के अलग अलग घटकों के लिए उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया, और आज अचानक उनका जाना ये हम सभी के लिए एक बहुत ही बड़ा आघात है। व्यक्तिगत रूप से मेरे बहुत करीबी संबंध उनसे रहे, मेरे लिए वो भाई जैसे, मार्गदर्शक जैसे, मित्र जैसे थे।
3: जल्द आने वाली है नई फिल्म गुरु, जिसमें नजर आएंगे जॉन अब्राहम। ऐसे में इस फिल्म की शूटिंग शुरू हो चुकी है। ऐसे में इस फिल्म में नजर आएंगे दानिश पंदौर भी,

बीती शाम हुई हसल 5 की रैप अप पार्टी, जिस पार्टी में शामिल हुए कई सारे सितारे जैसे कि सुयश राय, अंकिता और विक्की, सृष्टि रोड़े, समर जुरैल, नायरा बैनर्जी, चिंकी मिंकी, श्रेया कालरा और कई और सितारे जो इस पार्टी में हुए शामिल।

टेलीविजन की दुनिया की चटपटी खबरों और सीरियल्स के ड्रामे के साथ सास बहू और बेटियां मैं आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल और दीजिए हमको इजाजत। नमस्कार।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मार इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
3: भारतीय वायुसेना मना रही अपना 94वां स्थापना दिवस, गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर वायुवीरों का शौर्य और पराक्रम, आसमान में दिखी सेना की ताकत। नवरात्र से पहले भक्ति के रंग में रंगी झांसी नगरी, ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी से माँ दुर्गा का हुआ भव्य स्वागत, माँ के आगमन पर श्रद्धालुओं ने लगाए जयकारे। गुलजार हुई पीर की गली, देश भर से बड़ी संख्या में पुंज पहुंच रहे पर्यटक, ठंडी हवाएं, बर्फीली वादियां और खूबसूरत नजारे का उठा रहे लुत्फ। छत्तीसगढ़ के भिलाई में छात्रों की अनोखी पहल, चित्रों के जरिए वन्य जीव और पर्यावरण बचाने का दिया संदेश, 700 बच्चों ने चिड़ियाघर में जानवरों को करीब से समझा। सवाई माधोपुर के रणथंबोर में तेंदुए के हमले रोकने का हाईटेक प्लान, लेपर्ड की मॉनिटरिंग के लिए लगाए जाएंगे साइलेंट डिवाइस और हाईटेक सेंसर, जानवर आते ही बजेगा अलार्म। ब्रिटेन में दो पैरों वाले डिलीवरी रोबोट पहुंचाएंगे पार्सल, सड़कों पे किया गया इसका ट्रायल, 15 किलो उठा सकता है वजन। गोवा में दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में हुआ निधन, बॉलीवुड समेत पूरा देश गमगीन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा उन्हें पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों गुंडी चुड़ी
3: व्यवस्था
0: गुंडी चुड़ी
3: एयरफोर्स स्टेशन पे मुख्य समारोह का हुआ आयोजन। वायुसेना दिवस परेड में इंडियन एयरफोर्स की ऑपरेशनल क्षमता, अनुशासन और शानदार विरासत का प्रदर्शन, जवानों को किया गया सम्मानित। इंडियन एयरबेस पे भव्य ऐशो, आसमान में वायुसेना के विमानों का दिखा पराक्रम। वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने दिखाई जाबाजी, फ्लाई पास्ट में हेलीकॉप्टर भी हुए शामिल। वायुसेना दिवस के इस साल की थीम है भारतीय वायुसेना अचूक अभेद्य सटीक, साल 1932 में आज ही के दिन हुई थी वायुसेना की स्थापना। राजस्थान की धरती पर वायुवीरों का अभ्यास जारी, तरंग शक्ति 2026 के दूसरे चरण का दिखा रोमांच। जोधपुर एयरबेस पे भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम ने भरी उड़ान, आसमान में दिखाए हैरतअंगेज करतब। उत्तर प्रदेश के भदोही में संपन्न हुआ 4 दिवसीय कारपेट एक्सपो, सस्ते कालीन की हो रही है करोड़ रुपए की। कालीनों के महाकुंभ में 65 देशों के 447 फॉरेन बायर्स और उनके प्रतिनिधि हुए शामिल, निर्यात के कई ऑर्डर्स मिले। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन, 10 अक्टूबर तक नई दिल्ली के यशोभूमि में चलेगा ये सम्मेलन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा मोबाइल फोन ने भारत में कंटेंट क्रिएशन में क्रांति ला दी है, लेकिन फोन और नेटवर्क की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। दुनिया भर के बड़ी टेक और टेलीकॉम कंपनियां, स्टार्टअप और इंडस्ट्री के बड़े नाम ले रहे इसमें हिस्सा, इवेंट में टेलीकॉम को 5G से 6G तक कैसे लेकर जाया जाए इस पर चर्चा होगी। IMC की थीम स्केल विदाउट बाउंड्रीज है, 5G 6G AI IoT सैटेलाइट कम्युनिकेशन और दूसरी नई टेक्नोलॉजी का किया जा रहा है प्रदर्शन। IMC 2026 के इवेंट में जाकर नई टेक्नोलॉजी को समझने और डेमोन्स्ट्रेशन देखने के लिए लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, स्टूडेंट्स और विजिटर्स के लिए फ्री एंट्री। झांसी में शारदीय नवरात्रि के पावन पर्व की दिख रही रौनक, आस्था और भक्ति के रंग में रंगे नजर आए श्रद्धालु। नवदुर्गा उत्सव समिति झोकनबाग शहीद पार्क की ओर से मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा का जयकारों से स्वागत, बजाए गए ढोल नगाड़े, आतिशबाजी भी की गई। 42 सालों से चली आ रही अनोखी परंपरा, नवरात्र से पहले ही होता है मां दुर्गा का आगमन, माता के दर्शन के लिए दूर दूर से आ रहे श्रद्धालु। औरैया में रामलीला से पहले निकली भव्य शिव बारात, देवी देवताओं की मनमोहक झांकियों का लोगों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया, शिवमय हुआ पूरा शहर। भक्ति गीतों में झूमकर झूमे श्रद्धालु शिव बारात में ब्रह्म विष्णु और महेश के साथ नौ देवियों की झांकियों ने मोहा सभी का मन, रावण की झांकी ने लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा।
0: गुन्नी चुड़ी
3: तैयारियों में
0: गुन्नी चुड़ी
3: लेके प्रैक्टिस करते हुए नजर आए। अंगारा रास गरबा और रास उत्सवों में किए जाने वाला साहसिक नृत्य है, कलाकार हाथों में जलते हुए अंगारे या फिर जलते हुए अंगारों से भरे पात्र लेकर नृत्य करते हैं। गुजरात में वडोदरा नगर निगम ने नवरात्र से पहले किया विकसित भारत संकल्प गरबा का आयोजन, बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हुए। पारंपरिक गरबा की धुन पर झूमते कदमों के बीच मां शक्ति की आराधना हुई, विकसित भारत के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने का दिया गया संदेश। ओडिशा के धर्मगढ़ में दुर्गा पूजा की तैयारियां, कोलकाता से आए कारीगर पारंपरिक बंगाली शिल्प कौशल का उपयोग करके बना रहे हैं मूर्तियां। कोलकाता में दुर्गा पूजा को लेकर उत्साह, सैकड़ों सालों में पहली बार क्रिसमस के लिए मशहूर पार्क स्ट्रीट कोलकाता के सबसे बड़े दुर्गा पूजा समारोह की मेजबानी करेगी। केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा को और सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने की तैयारी, यात्रा मार्ग पर संचालित होने वाले घोड़े खच्चर और उनके संचालकों की ओर जांच। श्रद्धालुओं से अभद्रता करने वाले संचालकों के खिलाफ लिया जा रहा है एक्शन, बिना लाइसेंस और अनफिट पशुओं पर भी कार्रवाई। तैयारी सीजन में रेलवे ने गुड न्यूज दी, यात्रियों की ज्यादा भीड़ को देखते हुए चलाई जा रही हैं कई स्पेशल ट्रेनें। पुणे मुंबई अहमदाबाद वलसाड अजमेर जोधपुर और कोटा से स्पेशल ट्रेनों का परिचालन, लोगों को त्योहार में अपने घर पहुंचने में होगी इससे काफी आसानी। अमरावती का अंबा माता मंदिर शारदीय नवरात्रि के लिए रंग बिरंगी रोशनी से सज गया है, रात में रोशनी से नहाया मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। नवरात्र से पहले मंदिर में माता के सोने चांदी के आभूषणों को चमकाया गया, घट स्थापना से पहले सुबह 5 बजे माता का सहस्त्रधार अभिषेक होगा। नवरात्र में बड़ी भीड़ को देखते हुए मंदिर परिसर में विशेष व्यवस्था की गई है, महिला और पुरुष श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग कतारें और पंडाल बनाए गए हैं। अम्बा माता की ओटी भरने वाली महिलाओं के लिए भी किए गए हैं विशेष इंतजाम, भीड़ को नियंत्रित करने के लिए मंदिर परिसर में की गई है बैरिकेडिंग। अम्बा माता के दरबार में अब आस्था और भक्ति का रंग नजर आने वाला है, नवरात्रि तक मंदिर में धार्मिक कार्यक्रमों के साथ श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है। नैनीताल के विश्व प्रसिद्ध कैंची धाम में लगातार बढ़ रही है श्रद्धालुओं की भीड़, एक दिन में पहुंच रहे हैं 50,000 से ज्यादा लोग। भीड़ को संभालने के लिए प्रशासन ने की है खास तैयारियां, कैंची धाम में बाबा नीम करौली महाराज के दर्शन के लिए देश भर से आते हैं श्रद्धालु। कैप्टन स्मिथ मछार की सेहत में हो रहा है सुधार, विदेश मंत्रालय ने दी इसके बारे में जानकारी। फ्लाई दुबई के एक विमान में अपने ही को पायलट के हमले में घायल हुए थे पायलट कैप्टन स्मिथ मछार, अबू धाबी के अस्पताल में चल रहा है उनका इलाज। एशियन गेम्स 2026 में गोल्ड मेडल जीतने वाली बॉक्सर लवलीना बोरगोहेन का गुवाहाटी में अभिनंदन, असम सरकार, असम ओलंपिक संघ और बॉक्सिंग संघ ने किया उन्हें सम्मानित। गुजरात के अमरेली में शेरनियों के कुएं में गिरने की दो अलग अलग घटनाएं, जाफराबाद और धारी में वन विभाग ने रेस्क्यू कर दोनों शेरनियों को बचाया। लेपर्ड के मॉनिटरिंग के लिए रणथंबोर टाइगर रिजर्व में लगाए जाएंगे साइलेंट डिवाइस और हाईट्रेक सेंसर, बाघ के साथ लेपर्ड की भी की जाएगी मॉनिटरिंग। रणथंबोर टाइगर रिजर्व में 170 से ज्यादा लेपर्ड हैं, आए दिन तेंदुए रिजर्व से निकल के आबादी वाले इलाकों में देखे जाते हैं। यूपी के मुरादाबाद में 26वां तेंदुआ पिंजरे में कैद, 46 पिंजरों से रेस्क्यू अभियान जारी, 3 अगस्त से चलाया जा रहा है रेस्क्यू अभियान। छत्तीसगढ़ में भिलाई के मैत्री बाग में मनाया जा रहा है वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह, स्कूली बच्चों के लिए चिड़ियाघर भ्रमण और पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन।
0: गुन्नी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
10: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाती, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को

भाई और बहनों नमस्कार। मैं बाबा रवि गिरी आज जो कार्यक्रम लेके आया हूं वो आपकी आंखें खोल देगा। क्या आप जानते हैं कि मैं 78वें वर्ष में चल रहा हूं, लेकिन आपको शायद ये जानकर विश्वास ना हो कि मैं आज भी रोज कई किलोमीटर आराम से चलना ही नहीं बल्कि दौड़ भी लगा सकता हूं। इस उम्र में जहां लोग दर्द से, खासकर जोड़ों के दर्द से परेशान रहते हैं, मैं इस उम्र में भी पूरी तरह फिट हूं। न मुझे जोड़ों का कोई भी दर्द है और ना मेरी एनर्जी कम है। आप जानते हैं कि ऐसा कैसे संभव हो पाया? तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बनाए नुस्खों की वजह से, जो इस उम्र में भी मुझे हाथ पैर कंधे घुटने के दर्द से दूर रखते हैं। और आज के कार्यक्रम से ये आपके साथ भी मैं साझा कर रहा हूं, आप भी अगर जोड़ों के दर्द से जूझ रहे हैं, दवाएं खाते खाते परेशान हो गए हैं, तो एक बार मेरे नुस्खों को आजमा कर देखें, आपको 100% लाभ मिलेगा, ये मेरा आपसे वादा है। और ये नुस्खे कितने कारगर हैं इसका जीता जागता सबूत मैं आपके सामने बैठा हूं। इस उम्र में भी मेरे शरीर के सारे जोड़ चुस्त हैं, दुरुस्त हैं। मैंने ये नुस्खे अपने 50 वर्षों से भी अधिक के आयुर्वेदिक अनुभवों के ज्ञान और लंबे शोध के बाद तैयार किए हैं और हजारों लोगों को मैंने ठीक भी किया है। अगर आपको कई सालों से जोड़ों के दर्द की समस्या है, कोई चोट की वजह से दर्द है, बढ़ती उम्र के साथ दर्द बढ़ रहा है, या फिर कम उम्र में ही जोड़ों में, खासकर घुटनों में दर्द रहने लगा है, जोड़ों में ग्रीस कम हो गया है, गैप आ गया है, या फिर पानी भर गया है, समस्या चाहे जो भी हो और आपकी उम्र भी चाहे जो भी हो, आपको मेरे बनाए नुस्खे जरूर फायदा देंगे, ये मेरा आपसे वादा है। आपको बता दूं कि पुरुषों के मुकाबले जोड़ों के दर्द की समस्या महिलाओं को जल्दी और ज्यादा होती है, जिसका कारण हार्मोनल असंतुलन की वजह से, यानी मेनोपॉज भी आपको हो सकता है। लेकिन मैं बाबा रवि गिरी आपको विश्वास दिलाता हूं कि आपकी ये सभी समस्याएं मेरे नुस्खों से बिल्कुल ठीक हो सकती है और जोड़ों के दर्द से छुटकारा पाकर आप बिना दर्द के चलना फिरना ही नहीं दौड़ना भी शुरू कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए ये जो नंबर हैं इन पे कॉल करना है, आपको आपकी सभी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। तो भाइयों और बहनों, अगर आपको लगता है कि बढ़ती उम्र में जोड़ों का दर्द होता ही होता है, तो मैं आपको बता दूं कि उम्र सिर्फ एक संख्या है। अगर आप ध्यान देंगे, सही दिनचर्या अपनाएंगे और अपने जोड़ों का ध्यान रखेंगे, तो आपके जोड़ आपको कभी परेशान नहीं करेंगे, बल्कि उम्र भर आपके शरीर का अच्छे से बोझ उठाएंगे और आपको चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। और ऐसा करने में आपको मेरे नुस्खे हर तरह से मदद करेंगे। इन नुस्खों को मैंने इन्हीं सभी बातों को और समस्याओं को ध्यान में रखकर बनाया है। यदि हिम्मत और दृढ़ निश्चय हो तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। आपकी सोच और आपके प्रयास ही आपको आगे बढ़ाते हैं। जब मैं इस उम्र में भी आराम से कई किलोमीटर तक दौड़ सकता हूं, तो आप क्यों नहीं दौड़ सकते? तो आप अभी ये नीचे जो नंबर दिए गए हैं इन पे कॉल करके मेरे नुस्खों का फायदा उठाएं और अपनी दवा बुक करें। अगर आप
सुबह उठते ही अपने घुटनों या पीठ में दर्द महसूस करते हैं तो आपको ध्यान देने की जरूरत है। क्या आपको वो दिन याद है जब आप बच्चों के साथ पार्क में दौड़ा करते थे या बिना थके सीढ़ियां चढ़ लेते थे और अब थोड़ा सा चलना भी भारी लगने लगता है। जोड़ों का दर्द ना सिर्फ हमारे शरीर को तकलीफ देता है बल्कि हमारी जिंदगी के कई खूबसूरत पलों को भी हमसे छीन लेता है। न रोज के काम अच्छे से कर पाते हैं और न ही हर दिन की भागदौड़ में वो आत्मविश्वास रह जाता है। जरा सी सीढ़ियां चढ़ने पर घुटनों में दर्द होने लगता है, जमीन पर बैठना मुश्किल हो गया है और चलने में भी डर लगता है कि कहीं दर्द और ना बढ़ जाए। सच तो ये है कि जोड़ों का दर्द सिर्फ शारीरिक तकलीफ नहीं देता, ये हमारे अंदर की हिम्मत को भी गिरी पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये दर्द होता क्यों है? इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। सबसे आम कारण है गठिया यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सबसे आम प्रकार है जो उम्र बढ़ने के साथ साथ जोड़ों की घिसावट की वजह से होता है। इसमें कार्टिलेज जो हड्डियों को आपस में रगड़ने से बचाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है जिससे जोड़ों में दर्द और अकड़न होती है। क्या आप जानते हैं कि गठिया के 100 से ज्यादा प्रकार हैं जिनमें हल्के से लेकर गंभीर दर्द का सामना करना पड़ सकता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जोड़ों के दर्द की ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर की इम्यून सिस्टम खुद ही जोड़ों पर हमला करने लगती है। इससे जोड़ों में सूजन, दर्द और समय के साथ हड्डियों की बनावट तक बदल सकती है। तो भाइयों और बहनों, मेरे नुस्खे इन सारी समस्याओं में असरकारक है क्योंकि इनमें ढेरों शक्तिशाली जड़ी बूटियों को मैंने अपने 50 साल से ज्यादा के अनुभव से अलग अलग फॉर्मुलेशन में मिलाया है जो आपको

होता हो, जोड़ों से कटकट की आवाज आती हो, इन सभी समस्याओं पर गहन चिंतन और शोध के बाद ही ये नुस्खे तैयार किए हैं, जिनका असर अचूक है। चलती रहनी चाहिए जिंदगी बिना दर्द के और बिना रुकावट के। मैं बाबा रविगिरी आपको कुछ ऐसे नुस्खे और जड़ी बूटियां बताऊंगा जिससे आप अपने जोड़ों का समाधान तुरंत पा सकते हैं। जोड़ों के दर्द में प्रयोग की जाने वाली आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां जो मैं बताने जा रहा हूं, उनमें सबसे पहला है तेलपर्ण। इसको तेलपर्ण क्यों कहा जाता है कि इसके पत्तों में तेल होता है, इसलिए इसको तेलपर्ण कहते हैं। वैसे आम भाषा में इसको नीलगिरी के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो है ये है सती तेल। यह सूजन को घटाता है, अंदर तक समाकर यह सूजन बढ़ाने वाले इंटरल्यूकिन स्तर को कम करता है और सूजन को घटाता है। इसके बाद में है ये तेजोवती। इसमें मौजूद लिनालूल और लिमोनेन कफ दोष शमन करके और सूजन को घटाता है। ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर यानी TNF और इंटरल्यूकिन 6 के बढ़े हुए लेवल्स को घटाता है ये। इसके बाद में है ये तेज पत्ता यानी त्वक पत्तर। ये जोड़ों में जकड़न से निजात दिलाता है, जोड़ों में गतिशीलता देता है। इसके बाद में ये है ज्योतिषमती। ये वात और कफ को संतुलित करके जोड़ों के दर्द में आराम दिलाता है। ये है गंध पत्र। ये गंधपुरा पत्र में 85 से 99% तक मिथाइल सिलिसिलेट होता है जो दर्द निवारक है। तो इससे मांसपेशियों, जोड़ों, हड्डियों के दर्द में आराम मिलता है। इसके बाद में ये है लवंग। इसमें प्रस्तुत यूजेनॉल दर्द को और सूजन को कम करता है और अंदर के इन्फेक्शंस को खत्म कर देता है। इसके बाद में यह है तिल का तेल। बहुत अच्छी चीज है ये। तिल के तेल में एंटी इंफ्लामेटरी गुण पाया जाता है जो घुटनों में होने वाली सूजन और दर्द को कम करने में प्रभावी होता है। इसके बाद में ये तेल है ये मेजनकरी तेल। इस पौधे में औषधीय गुण होते हैं और इसका उपयोग पारंपरिक रूप से विभिन्न बीमारियों जैसे पेट दर्द और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के साथ साथ मधुमेह, एडिमा, सर्दी, गठिया, अस्थमा और दर्दनाक चोट के इलाज के लिए किया जाता है। उसके बाद में यह है सुरंजन कटु। ये सूजन रोधी एवं दर्द निवारक प्रभावों के लिए जाना जाता है। यह एक प्रोपेरिएटरी मेडिसिन है जिसका उपयोग विभिन्न प्रकार के गठिया में मसल्स और हड्डियों के समर्थन के लिए किया जाता है। इसके बाद में यह है चित्रक मूल। ये गठिया के लक्षणों को कम करने के लिए यानी चित्रक की जड़ अत्यंत फायदेमंद मानी जाती है। यह एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर है। यह दर्द निवारक, सूजन को कम करने वाली, एक बैक्टीरिया और फंगस का नाश करने वाली भी है। ये है ट्रिक टू। इसमें मौजूद बायो एक्टिव कंपाउंड जोड़ों के दर्द, सूजन, लालिमा एवं जोड़ों की कठोरता को कम करने में मदद करता है। यह है अजवाइन। अजवाइन पाचन को दुरुस्त करता है, टॉक्सिन को बाहर निकालता है, प्रोटीन, फैट, फाइटोकेमिकल, फाइबर, कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन जैसे पोषक तत्व इसमें प्रचुर मात्रा में भरे हुए हैं। आखिर में है अबरक भस्म। यह कफ को संतुलित करके
आरए फैक्टर को कंट्रोल करता।

0: और सर्दियों में जो जोड़ों का दर्द ठंड की वजह से बढ़ जाता है उसको नियंत्रित करता है। साइटिका से आजकल बहुत लोग परेशान है। साइटिका आप सभी जानते हैं कि एक टांग में होने वाला दर्द है जिसका उद्गम रीढ़ की हड्डी से शुरू होता है क्योंकि वहां की नस हिल जाती है। मेरे पास ऐसी अभिमंत्रित ताबीज भी है जो इस दर्द को दूर कर देगी। जोड़ों का दर्द एक असहनीय रोग है, यह एक व्यक्ति से उसकी आत्मनिर्भरता छीन लेता है। तो मेरी एक ही सलाह है, अब गोलियों से नहीं इलाज सिर्फ नुस्खों से करें क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और असर 100% मिलेगा। ये मेरा यानी बाबा रविगिरी का वादा है। इसके लिए आपको अभी नीचे दिए गए नंबरों पर कॉल करना है और अपने लिए मेरे नुस्खे मंगवाने हैं। फिर देखिए दर्द कैसे खुद ब खुद भागता है, ये मेरा वादा है। तो अब मुझे आज्ञा दीजिए और तब तक आप खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो राम राम भाई और बहनों, नमस्कार।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
10: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: चरण स्पर्श करने के नियम क्या हैं? क्या महिलाओं को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए? क्या लेटे हुए सोए हुए व्यक्ति के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए? क्या है चरण स्पर्श की महिमा और क्या है इसके नियम और सावधानियां, जानिए मेरे साथ।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
3: भारतीय वायुसेना मना रही अपना 94वां स्थापना दिवस। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पे वायु वीरों का शौर्य और पराक्रम, आसमान में दिखी सेना की ताकत। नवरात्र से पहले भक्ति के रंग में रंगी झांसी नगरी, ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी से माँ दुर्गा का हुआ भव्य स्वागत। माँ के आगमन पर श्रद्धालुओं ने लगाए जयकारे। सैलानियों से गुलजार हुई पीर की गली, देश भर से बड़ी संख्या में पुंज पहुंच रहे पर्यटक, ठंडी हवाएं, बर्फीली वादियां और खूबसूरत नजारे का उठा रहे लुत्फ। छत्तीसगढ़ के भिलाई में छात्रों की अनोखी पहल, चित्रों के जरिए वन्य जीव और पर्यावरण बचाने का दिया संदेश। 700 बच्चों ने चिड़ियाघर में जानवरों को करीब से समझा। सवाई माधोपुर के रणथंबोर में तेंदुए के हमले रोकने का हाईटेक प्लान, लेपर्ड की मॉनिटरिंग के लिए लगाए जाएंगे साइलेंट डिवाइस और हाई ट्रैक सेंसर, जानवर आते ही बजेगा अलार्म। ब्रिटेन में दो पैरों वाले डिलीवरी रोबोट पहुंचाएंगे पार्सल, सड़कों पे किया गया इसका सफल ट्रायल, 15 किलो उठा सकता है वजन। गोवा में दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का 75 साल की उम्र में हुआ निधन, बॉलीवुड समेत पूरा देश गमगीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा उन्हें पीढ़ियों तक याद रखा जाएगा।

आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आज प्रार्थना हो स्वीकार में बात करेंगे भगवान वेंकटेश्वर की, जिन्हें भक्त कई नामों से पुकारते हैं। कोई उन्हें वेंकटेश्वर कहता है तो कोई श्रीनिवास, तो कोई प्यार से उन्हें कहता है गोविंदा। देखिए, जिसमें भक्तों की अटूट आस्था है। भारत के कोने कोने से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से भक्त यहाँ पर खिंचे चले आते हैं। तिरुमाला की पहाड़ियों पर विराजते हैं तिरुपति बालाजी। कहते हैं कि यहाँ पूरी भव्यता के साथ भगवान विष्णु वेंकटेश के रूप में विराजमान है, जो अनादि काल से यहाँ आने वाले भक्तों की सारी कामनाएं पूर्ण कर रहे हैं।

0: तिरुपति बालाजी का अद्भुत दरबार। माँ पद्मावती संग विराजे हैं वेंकटेश सरकार। वो हैं कलयुग के साक्षात ईश्वर। तिरुमला पर्वत पर विराजमान है भगवान वेंकटेश्वर। भगवान वेंकटेश्वर को माना जाता है श्री हरि का अवतार। मनोकामना पूर्ण करता है तिरुपति बालाजी का दिव्य दरबार।
1: कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते।
0: कोई उन्हें वेंकटेश्वर कहता है तो कोई श्रीनिवास, तो कोई प्यार से गोविंदा।
1: कौसल्या सुप्रजा राम पूर्वा संध्या प्रवर्तते।
0: दक्षिण भारत के मंदिरों में भगवान विष्णु का अद्भुत स्वरूप है तिरुपति बालाजी।
1: उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज।
0: मान्यता ये है कि भगवान तिरुपति बालाजी का चमत्कारिक और रहस्यमय मंदिर देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है।
1: उत्तिष्ठ गरुड़ध्वज उत्तिष्ठ कमलाकांता त्रैलोक्यम मंगल।
0: भगवान विष्णु को समर्पित इस मंदिर की वास्तुकला और शिल्पकला देखने लायक है। ये खूबसूरत मंदिर आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला पर्वत पर मौजूद है। मान्यता यह है कि यहाँ भगवान श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला में रहते हैं। माना यह जाता है कि भारत का सबसे अमीर मंदिर है।
2: भारत का सबसे समृद्ध और सबसे प्रसिद्ध, जहाँ करोड़ों श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, जिस मंदिर को कलयुग का बैकुंठ धाम बोला जाता है, वो है भगवान वेंकटेश्वर का तिरुमला पहाड़ियों में स्थित भगवान तिरुपति बालाजी का मंदिर। कलयुग में ऐसी मान्यता है कि भगवान विष्णु का जो साक्षात स्वरूप है, जो जीवांत स्वरूप है, जो जागृत स्वरूप है, वो भगवान श्री वेंकटेश्वर के रूप में यहाँ उपस्थित है।
0: चलिए आपको बताते हैं कि कैसे भगवान का नाम वेंकटेश्वर पड़ा। माना जाता है कि तिरुमला में जिस पर्वत पर ये मंदिर बना है उसकी 7 चोटियां हैं, शेषाद्री, नीलाद्री, गरुड़ाद्री, अंजनाद्री, वृष्टाद्री, नारायणाद्री और वेंकटाद्री। इसमें से वेंकटाद्री नाम की चोटी पर भगवान विष्णु विराजमान है। यही कारण है कि यहाँ विष्णु जी को वेंकटेश्वर स्वामी के नाम से भी जाना जाता है। ये 7 चोटियां आदिशेष के 7 सिरों का प्रतिनिधित्व करती हैं। इसीलिए मंदिर को 7 पहाड़ियों का मंदिर भी कहा जाता है। माना जाता है कि जो भी भक्त सच्चे दिल से भगवान वेंकटेश्वर के सामने मनोकामना मांगता है उसकी हर इच्छा पूर्ण होती है। इस मंदिर के संचालन का जिम्मा तिरुमला तिरुपति देवस्थानम संभाल रहा है। आगे हम आपको तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़े रहस्य बताएंगे, साथ ही इस मंदिर से जुड़ी पौराणिक कथा भी आपको सुनाएंगे।
3: मान्यता है कि यहाँ मंदिर में स्थापित काले रंग की दिव्य मूर्ति किसी ने बनाई नहीं बल्कि वो खुद ही जमीन से प्रकट हुई थी। तिरुपति बालाजी से जुड़े कई ऐसी मान्यताएं हैं और कई अद्भुत रहस्य भी हैं। विज्ञान इन रहस्यों पर कुछ भी कहे लेकिन भक्त इसे भगवान का चमत्कार ही मानते हैं।

0: इसे कहते हैं कलयुग का बैकुंठ धाम। वेंकटेश रूप में अपने भक्तों का कर रहे हैं कल्याण। माना जाता है कि रानी पद्मावती के साथ तिरुमला की इन्हीं पहाड़ियों पर सदा सदा के लिए बस गए हैं भगवान विष्णु। तिरुमला भगवान के इस मंदिर को संसार के सबसे धनी मंदिरों में से एक माना जाता है। माना जाता है कि इस रहस्यमय मूर्ति की आभा ऐसी है कि आम से लेकर खास हर कोई इनके दर्शन के लिए दूर दूर से खिंचा चला आता है।
1: लाखों करोड़ों श्रद्धालु दुनिया भर से यहाँ उनके आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए आते हैं। धन, वैभव, संतान, स्वास्थ्य या फिर आध्यात्मिक चेतना के लिए अगर आपको आशीर्वाद चाहिए और अपने सारे कष्टों से मुक्ति चाहिए तो भगवान श्री वेंकटेश्वर का ये मंदिर आपके लिए एक दिव्य स्थान है।
0: दुनिया के सबसे दौलतमंद भगवान कहे जाने वाले तिरुपति बालाजी मंदिर को हर महीने सिर्फ चढ़ावे से ही करोड़ों से भी ज्यादा की आमदनी होती है और हर साल भक्तों की ये श्रद्धा निरंतर बढ़ती जा रही है। हर साल लाखों लोग तिरुमला की पहाड़ियों पर स्थित इस मंदिर में भगवान का आशीर्वाद लेने के लिए एकत्र होते हैं। इस मंदिर के साथ जुड़े हैं कई रहस्य, तो चलिए आपको वो भी बताते हैं। मानो या ना मानो, ये सच है, ये लोगों की अगाध आस्था है, मान्यताएं हैं, अविश्वसनीय विश्वास है जो कहता है कि ये मूर्ति नहीं साक्षात स्वयं विष्णु भगवान है। तिरुपति की इस दिव्य कही जा रही मूर्ति का स्वरूप ऐसा है कि आप इन्हें बस देखते ही रह जाएंगे और रहस्य ऐसा है कि जो भी यहाँ आया दंग रह गया। तो आइए एक एक रहस्य से अब हम पर्दा उठाते हैं और आपको बताते हैं इस अलौकिक मंदिर की महिमा। इस मंदिर से एक अनोखी परंपरा जुड़ी है। भक्त अपनी श्रद्धा के अनुसार यहाँ अपने बाल दान करते हैं। कहा जाता है कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर लगे बाल असली हैं। ये कभी उलझते नहीं है और हमेशा मुलायम रहते हैं।
1: ऐसी मान्यता है कि भगवान वेंकटेश्वर की चोट लगने से एक बार बाल झड़ गए थे। उनके बालों को देख के और उनकी चोट को देख के गंधर्व कन्या नीला देवी ने अपने केश, अपने बाल भगवान वेंकटेश्वर को काट के दे दिए, भगवान वेंकटेश्वर को दान दिए। तो भगवान वेंकटेश्वर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने ऐसा आशीर्वाद दिया कि जो मेरे मंदिर के प्रांगण में अपने केश या अपने बाल दान करेगा, मुंडन करवाएगा, उसकी मैं समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा।
0: दावा किया जाता है कि भगवान बालाजी की मूर्ति एक विशेष प्रकार के चिकने पत्थर से बनी है जो पूरी तरह से जीवंत लगती है। यहाँ हमेशा ही मंदिर के वातावरण को ठंडा रखा जाता है, लेकिन मान्यता ये भी है कि बालाजी को गर्मी लगती है। उनके शरीर पर पसीने की बूंद देखी जा सकती है और उनकी पीठ भी नम रहती है। सबसे हैरान करने वाला दावा तो यहाँ ये मिलता है कि मंदिर में बालाजी की मूर्ति पर अगर कान लगाया जाए तो उसके अंदर से समुद्र की लहरों की आवाजें सुनाई देती हैं। कहते हैं कि इसी कारण से बालाजी की मूर्ति नम रहती है।
1: भगवान विष्णु यानी कि श्री वेंकटेश्वर की मूर्ति बिल्कुल जीवांत प्रतीत होती है। एक अजब सी सुगंध, एक महक उस मंदिर के प्रांगण में फैली रहती है। अखंड दीपक जो हजार वर्षों से जल रहा है आज तक और कलयुग के अंतिम चरण तक जलेगा, ऐसी वहां पे मान्यता है। साथ साथ मंदिर के प्रांगण से मूर्ति के अंदर से समुद्र की लहरों की ध्वनि सुनाई देती है, जबकि समुद्र उस मूर्ति के और उस देवालय के प्रांगण से बहुत दूर है।
0: इस मंदिर में एक परंपरा का निर्वहन सदियों से किया जा रहा है। मान्यता यह है कि भगवान बालाजी को ठोड़ी पर चंदन लगाने की परंपरा है और इसका संबंध मंदिर की दाई ओर रखी छड़ी से है। छड़ी के बारे में कहा जाता है कि बालाजी के बाल रूप में इस छड़ी से उनकी पिटाई की गई थी और उनकी ठोड़ी पर चोट लग गई थी। मंदिर के सेवक उनकी चोट जल्दी ठीक हो जाए इसीलिए चंदन का लेप लगाते हैं। मान्यता है कि प्रत्येक गुरुवार के दिन तिरुपति बालाजी पर चंदन का लेप लगाया जाता है। लेप को जब मूर्ति से हटाते हैं तो उनके अंदर माता लक्ष्मी की प्रतिमा उभर आती है। माना यह भी जाता है कि इस चमत्कार के दर्शन सिर्फ सच्ची आस्था के साथ ही महसूस हो सकते हैं। माना यह भी जाता है कि इस मंदिर में एक दिया बिना तेल के सदियों से जल रहा है। बिना तेल के जलने वाला दिया। मंदिर में एक दिया है जिसमें कभी भी तेल नहीं डाला जाता, लेकिन तब भी दिया हमेशा जलता रहता है। दावा यह भी किया जाता है कि दीपक कभी बुझता नहीं है। इस दीपक में नहीं तेल होता है, नहीं घी। ये दीपक पहली बार कैसे जला, कब जलाए गए, किसने जलाए, इसके बारे में प्रमाणिकता के साथ कुछ भी कहा नहीं जा सकता। तमिल में तिरु का अर्थ श्री होता है, यानी लक्ष्मी, और धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के नाथ हैं। शायद इसी वजह से यहाँ का नाम तिरुपति पड़ा। लेकिन आखिर श्री हरि विष्णु यहाँ आए क्यों, कैसे यहाँ पर विराज गए भगवान विष्णु, ये हम आपको बताएंगे आगे। आप बने रहिए हमारे साथ।
2: संसार के सबसे धनी मंदिरों में से एक है तिरुपति बालाजी का धाम। तिरुमाला की सात पहाड़ियां जहां वेंकटेश के रूप में अपने भक्तों का कल्याण कर रहे हैं भगवान विष्णु। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान विष्णु यहां आए क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ कि लक्ष्मी जी रूठ कर पृथ्वी पर चले आई और भगवान उन्हें मनाने उनके पीछे पीछे चले आए? आइए आपको बताते हैं।
0: माना जाता है कि मंदिर जितना अद्भुत है उतना ही रहस्यमय। जितनी अलौकिक यहाँ की आभा है उतना ही अविश्वसनीय है यहाँ की आस्था, जो आपकी कल्पना से भी परे है। आस्था कहती है कि यहाँ माँ लक्ष्मी के साथ विराजे हैं विष्णु भगवान, जिसके साथ जुड़ी है जन जन की जुबान पर मिलने वाली कथा। कहते हैं कि देवी पद्मावती से विवाह के लिए श्री हरि ने भी कर्ज लिया था, जो कर्ज आज तक चुका रहे हैं श्री विष्णु। कथा कहती है कि भगवान विष्णु ने कुबेर से लिया था कर्ज। यहाँ भगवान वेंकटेश की श्याम वर्ण की प्रतिमा है, हाथों में शंख, पद्म, चक्र और गदा। कहते हैं कि लक्ष्मी जी को खोजते खोजते भगवान वैकुंठ लोक से पृथ्वी पर यहीं आए थे और कई वर्षों तक यही रहे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि भगवान विष्णु से दूर हो गई माँ लक्ष्मी?
1: पुराणिक कथाओं के अनुसार ऋषि भृगु ने एक बार अपना पैर भगवान विष्णु के वक्षस्थल पर मार दिया। उससे रूठित होकर माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर बैकुंठ छोड़कर आ गई। वहाँ पे बैकुंठ में भगवान विष्णु व्याकुल अवस्था में माता लक्ष्मी को ढूंढते हुए पृथ्वी लोक कर आए और श्रीनिवास के नाम से वो तिरुमला की पहाड़ियों पर वास करने लगे। माता लक्ष्मी के ही अवतार देवी पद्मावती से श्रीनिवास का विवाह हुआ। विवाह हेतु उनको धन की आवश्यकता थी, जो उन्होंने भगवान कुबेर से ऋण के रूप में लिया। आज भी मान्यता है कि तिरुपति बालाजी में श्रद्धालु ढेर सारा धन और आभूषण दान करके भगवान श्रीनिवास का ऋण चुकाते हैं।
0: कहा जाता है कि एक बार धरती पर संसार के कल्याण के लिए यज्ञ हुआ, लेकिन यज्ञ का फल किसे दिया जाए ये तय करने का काम भृगु ऋषि को सौंपा गया। भृगु ऋषि ब्रह्म और महेश के पास गए। जब विष्णु जी के पास पहुंचे तो वो विश्राम कर रहे थे। विष्णु जी ने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। अपने अपमान से आहत होकर भृगु ऋषि ने विष्णु जी के हृदय पर पैर से ठोकर मार दी। विष्णु जी क्रोधित नहीं हुए, बल्कि उन्होंने ही भृगु ऋषि से पूछा कि कहीं उनके पैर में चोट तो नहीं लगी, क्योंकि विष्णु जी के हृदय में लक्ष्मी जी रहती हैं। इसीलिए अपमान से दुखी होकर वो पृथ्वी पर चली आई। कथा कहती है कि भगवान विष्णु ने श्रीनिवास के रूप में धरती पर जन्म लिया और लक्ष्मी जी ने पद्मावती के रूप में। बाद में इसी वेंकटेश पर्वत पर श्रीनिवास और रानी पद्मावती का विवाह हुआ। कथा है कि पद्मावती जी से विवाह के लिए भगवान विष्णु ने कोषाध्यक्ष कुबेर से कर्ज लिया था। वो कर्ज इतना ज्यादा था कि भगवान विष्णु के भक्त उसे आज भी दान दक्षिणा के जरिए चुका रहे हैं। इसीलिए भगवान बालाजी के भक्त केवल अपनी मनोकामना के लिए ही नहीं, बल्कि बालाजी का कर्ज चुकाने के लिए आज भी सोने चांदी और अन्य जेवर चढ़ाते हैं। इसके अलावा भगवान वेंकटेश के मंदिर से जुड़ी दो कथाएं और भी हैं। मान्यता ये है कि कलयुग के प्रारंभ में श्री हरि ने अपने भक्तों के बीच निवास करने और उनकी रक्षा करने का संकल्प लिया। अपने निवास के उपयुक्त स्थान के लिए उन्होंने नारद जी से परामर्श किया। कथा ये कहती है कि नारद जी ने दक्षिण भारत में स्वर्णमुखी नदी के तट पर श्री हरि को एक स्थान सुझाया। कथा है कि सर्पशेष ने शेषाचलन नामक पहाड़ियों में रूपांतरित होकर श्री हरि को वेंकटेश्वर के रूप में विलीन कर दिया और वो पहाड़ी की चोटी पर स्थित उस मंदिर में निवास करने लगे जो अब तिरुपति के नाम से प्रसिद्ध है। इसके अलावा एक और कथा स्थान को श्री हरि के वराह अवतार से जोड़ती है। कथा ये है कि वराह ने पृथ्वी को बचाने के लिए आदम सागर में छलांग लगाई और उसे शेष द्वारा निर्मित पर्वत श्रृंखला पर स्थापित किया गया। वराह वही निवास करने लगे और वो स्थान वराह क्षेत्र के नाम से जाना जाने लगा। वराह का रूप भयानक था। तब ब्रह्मा जी ने वराह से सौम्य रूप धारण करने का अनुरोध किया, जिसके परिणाम स्वरूप वो वेंकटेश्वर के रूप में प्रकट हुए। तब से श्रीहरि वेंकटेश्वर के रूप में तिरुमला पर्वत पर विराजमान है। तो आप भी भगवान वेंकटेश के इस चमत्कारिक कहे जा रहे धाम के दर्शन अवश्य कीजिए, जिससे आपको भी मिल सके श्रीहरि का आशीर्वाद। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: तो प्रार्थना हूँ स्वीकार में आज के लिए बस इतना ही। अच्छी और सच्ची खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
6: उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने के साथ पहाड़ों पर सर्दी ने दस्तक तेज कर दी है। चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट महसूस की जा रही है। बद्रीनाथ धाम में भी ठंड के बीच श्रद्धालुओं की आवाजाही लगातार जारी है। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है। देखिए पहाड़ों पर बदलते मौसम और बर्फ की खूबसूरत तस्वीरें।
7: मौसम ने करवट ली तो चमोली की ऊंची चोटियों का रंग भी बदल गया। हल्की बर्फबारी के बाद पहाड़ों पर सफेदी की खूबसूरत परत नजर आने लगी। हेमकुंड साहिब में बर्फबारी ने पूरे इलाके की तस्वीर बदल दी। छत से लेकर आसपास के रास्तों तक बर्फ की सफेदी नजर आ रही है। शांत पहाड़ों के बीच ये नजारा बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है।
8: चमोली में मौसम ने करवट बदल दी है। लगातार जोरदार बारिश इस समय पूरे जनपद में देखने को मिल रही है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, जोशीमठ और चमोली के तमाम जगहों पर इस समय बारिश और ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी का दौर देखने को मिल रहा है। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में बर्फबारी तो निचली जगहों पर बारिश के साथ ही ठंड हो रही है।
7: चमोली में मौसम के इस बदले मिजाज का असर अभी आगे भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि मौसम विभाग पहले ही वीकेंड पर बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर चुका है, यानी वीकेंड पर पहाड़ों में ठंड का असर और बढ़ सकता है। बद्रीनाथ धाम में भी बारिश के बाद ठंड का असर और बढ़ गया है। पहाड़ों पर बदलते मौसम का ये रंग श्रद्धालुओं को भी अलग एहसास दे रहा है।
8: इस समय जो बद्रीनाथ धाम की यात्रा है वो लगातार चरम पर चल रही है। गाड़ियों की कतार हर तरफ देखने को मिल रही है। ऐसे में यात्रा भी चल रही है, मौसम भी बदल रहा है, ठंड के बीच भी लगातार उत्साह जो है श्रद्धालुओं का बना हुआ है। ऐसे में मौसम विभाग का पूर्वानुमान जो है 10 अक्टूबर तक लगातार बारिश और बर्फबारी का दौर पहाड़ी ऊंची चोटियों पे देखने को मिलेगा।
7: वहीं हवाओं के बीच बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। दर्शन के लिए करीब 2 से 3 किलोमीटर लंबी कतार लग रही है, लेकिन ठंड भी भक्तों का उत्साह कम नहीं कर पा रही। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: देखिए, बद्रीनाथ के पास है देवताल। मान्यता है कि यहाँ पे देवता स्नान करते हैं। देवताल इन दिनों बर्फ से ढका एक ऐसा नजारा पेश कर रहा है जिसे देखकर हर कोई ठहर जाए। करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इस जगह को देखने के लिए सैलानी भी लगातार पहुंच रहे हैं। हर कोई बर्फ, पहाड़ और आसमान के इस अद्भुत मेल को देखकर काफी ज्यादा हैरान नजर आ रहा है। देखिए देवताल की खूबसूरत तस्वीरें।
7: ये वो जगह है जहाँ देवता स्नान के लिए आते हैं। दुनिया इसे देवताल के नाम से जानती है। इन दिनों ये बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ है।
9: जैसा कि आप देख सकते हैं, देवताल 17,950 फीट की ऊंचाई पर देवताल, जहाँ देवता स्नान करने आते हैं, पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है।
7: ऊपर नीला आसमान और नीचे कुदरत का ये खूबसूरत करिश्मा, मानो पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली हो।
9: देवताओं का स्थान है यहाँ पे। हम देवताओं की कृपा से यहाँ पहुंचे हैं। 17,950 फीट की ऊंचाई पे ये भारत का चाइना का बॉर्डर क्षेत्र एरिया है। वो है मानापास एरिया, जो इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया है।
7: सर्दियों में जमी बर्फ के बीच शांत देवताल और आसपास की ऊंची चोटियां इस जगह की खूबसूरती को और खास बना रही हैं।
10: यहाँ पर लोगों को आना चाहिए और आके देखना चाहिए। जो आदमी बोलती है ना कि आर्मी क्या कर रही है, आर्मी ये कर रही है कि यहाँ पे -25 डिग्री में, -50 डिग्री में वो खड़े हैं क्योंकि हम घर पे, ताकि हम घर पे सो पाए।
7: बर्फ की सफेद चादर में लिपटा देवताल आसमान से जमीन तक कुदरत की खूबसूरती बयां कर रहा है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: देखिए, हिमाचल में भी मौसम ने करवट ले ली है। धर्मशाला और मैकलोडगंज में हुई बारिश के बाद ठंड काफी ज्यादा बढ़ गई है। असल में धौलाधार की ऊंची चोटियों पर ताजा हिमपात ने पहाड़ों को सफेद कर दिया है। देखिए तस्वीरें कितनी खूबसूरत यहां पर नजर आ रही हैं, पहाड़ की चोटियां। बदले मौसम में पर्यटक धौलाधार के खूबसूरत नजारों का आनंद ले रहे हैं। मौसम विभाग ने ये वीकेंड मौसम ऐसा ही कूल रहने का अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो चलिए इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं चीन का एक खूबसूरत नजारा। पूर्वी चीन के अनहुई प्रांत में शियांगयू पहाड़ पर बादलों की एक मोटी परत के बीच प्रकृति की सुंदरता का शानदार झलक जो है अभी हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखने में ये AI जनरेटेड लगता है, लेकिन आपको बता दें कि एकदम रियल नजारा है। पेड़ों से ढके ढलानों और लकड़ी के रास्तों के आसपास तैरते बादलों ने सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया है। सैलानी इस धुंध भरे नजारे को कैमरे में कैद करते हुए नजर आए। ऐसा लग रहा था कि बादलों की नदी के बीच से घुमावदार पहाड़ी रास्ते और सीढ़ीदार खेत निकल रहे हैं। बादलों से ढके इस पर्वत श्रृंखला को देखने के लिए हर साल लाखों सैलानी इस इलाके में आते हैं।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर। गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: शरण स्पर्श करने के नियम क्या हैं? क्या महिलाओं को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए? क्या लेटे हुए सोए हुए व्यक्ति के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए? क्या है चरण स्पर्श की महिमा और क्या हैं इसके नियम और सावधानियां, जानिए मेरे साथ।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
12: एवरेस्ट दिखा लाल, सही दिखा सही लाल।
13: नवरात्र से पहले भक्ति के रंग में रंगी झांसी नगरी ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी से मां दुर्गा का भव्य स्वागत, मां के आगमन पर श्रद्धालुओं ने लगाए जयकारे। सैलानियों से गुलजार हुई पीर की गली, देश भर से बड़ी संख्या में पहुंच चुके हैं पर्यटक। ठंडी हवाएं, बर्फीली वादियां और खूबसूरत नजारे का उठा रहे लुत्फ। छत्तीसगढ़ के भिलाई में छात्रों की अनोखी पहल, चित्रों के जरिए वन्य जीव और पर्यावरण बचाने का दिया संदेश। 700 बच्चों ने चिड़ियाघर में जानवरों को करीब से समझा। रणथंभौर में तेंदुए के हमले रोकने का हाईटेक प्लान, लेपर्ड की मॉनिटरिंग के लिए लगाए जाएंगे साइलेंट डिवाइस और हाईट्रैक सेंसर, जानवर आते ही बजेगा अलार्म। ब्रिटेन में दोपहरों वाले डिलीवरी रोबोट पहुंचाएगा पार्सल, सड़कों पर किया गया ट्रायल, 15 किलो उठा सकता है वजन।

देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। नवरात्र का संयोग 100 साल बाद तीन दुर्लभ योग, जी हाँ, इसी पर आज हम करेंगे बातचीत, क्योंकि देश में शक्ति उत्सव का शुभारंभ हो रहा है। श्रद्धा और आस्था के महापर्व नवरात्र को लेकर मैया रानी का पावन दरबार सज चुका है और इस बार माँ दुर्गा गज पर सवार होकर भक्तों के बीच पधार रही है। धर्म के जानकारों के अनुसार ये बेहद शुभ संकेत है। माँ अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करेंगी और देश में सुख समृद्धि का संचार करेंगी। तो आया नवरात्र का त्योहार, सजा माँ का दरबार, गज पर सवार माँ पूरी करेंगी सब कामना। तो अगले एक घंटे इसी पर होगी हमारी बात। हमारे साथ देश के बड़े ज्योतिष आचार्य और कथावाचक भी रहेंगे मौजूद। तो नवरात्र, जैसा कि हम सभी जानते हैं, माँ दुर्गा का पावन पर्व है, आस्था और श्रद्धा का महापर्व। शारदीय नवरात्र 11 से 20 अक्टूबर तक पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाएगा। इसकी शुरुआत हर बार की तरह आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से होगी और इस बार जगत जननी माँ दुर्गा का आगमन हाथी पर हो रहा है, जो कि सुख समृद्धि का बेहद शुभ संकेत है। नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा अर्चना की परंपरा है। इस बार के पंचांग के मुताबिक 18 अक्टूबर को महाअष्टमी का व्रत रखा जाएगा, जबकि 19 अक्टूबर को महानवमी का पावन पर्व मनाया जाएगा। वही आगामी 20 अक्टूबर को सुबह 9:35 तक नवमी तिथि रहेगी, जिसके बाद इसी दिन अधर्म पर धर्म की जीत का प्रतीक दशहरा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। इस वर्ष की नवरात्रि धार्मिक दृष्टि से बेहद खास मानी जा रही है, क्योंकि इस दौरान बुधादित्य योग, गज केसरी राजयोग और लक्ष्मी नारायण राजयोग जैसे कई दुर्लभ और शुभ महासंयोग एक साथ बन रहे हैं। यानी खुशियों की अनूठी सौगात लेकर आया है त्योहार, हर घर को मंगलमय करेगा। मान्यता है कि इन महासंयोगों के बीच माँ दुर्गा अपने भक्तों को सुख, वैभव और अटूट सफलता का बड़ा उपहार देंगे। ये पर्व अपने आप में काफी खास होता है, इसमें माँ दुर्गा का आशीर्वाद मिलता है। तो माँ दुर्गा के 9 रूप, जिन्हें नव दुर्गा कहा जाता है, नवरात्र में इन 9 रूपों की पूजा की जाती है और उनके हर रूप का अपना विशेष महत्व है, जो जीवन में विभिन्न प्रकार के सकारात्मक प्रभाव और आध्यात्मिक लाभ प्रदान करता है। ऐसे में माँ के दरबार भी सज चुके हैं। दिल्ली से लेकर वैष्णो धाम तक माँ का दरबार सजा हुआ है। अमरावती में माँ अम्बा के दरबार को भव्य रूप से सजाया गया है। यहाँ नवरात्रि के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। वहीं गुजरात के अंबाजी में 68 भक्तों की अनोखी यात्रा ने आस्था और भक्ति का संदेश दिया, तो प्रयागराज में रामलीला मंचन को लेकर विधि विधान के साथ पूजा हुई। नवरात्र को लेकर

0: बाजार भी पारंपरिक परिधानों से सजे हैं। खास बात यह है कि सुख समृद्धि का उपहार देने इस बार माँ अम्बे गज पर सवार होकर आ रही हैं।
1: हर वार का अपना एक अलग महत्ता है। जिस वार को आती है उस वार का सुनिश्चित जो है वाहन है, तो रविवार का जो वाहन होता है वाहन है वो गज है, हाथी है। तो निश्चित रूप से हाथी पर जो है इस बार माता का आगमन हो रहा है, जो बेहद ही शुभ रहने वाला है। इसका फल सुवृष्टि, अच्छी दृष्टि, चारों तरफ सुखमय वातावरण, सुख समृद्धि की वृद्धि जब माता गज पे आती है तो ऐसा फल देश समाज को मिलता है।
0: चलिए, हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय करा दें आपसे। नंदिता पांडे जी, ज्योतिषाचार्य हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नंदिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही वान्या आर्या जी, ज्योतिषाचार्य, वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। नंदिता जी, आपका भी बहुत स्वागत है। साथ ही डॉक्टर हरलीन कौर भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर हरलीन, आपका भी स्वागत है। ज्योतिषाचार्य हैं ये, और कथावाचक आचार्य चंद्रांशु जी महाराज भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंद्रांशु जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले नंदिता जी, आपके पास आते हुए, कहते हैं कि हर बार इंतजार होता है सबसे पहले, क्योंकि दुर्गोत्सव की अब शुरुआत होने वाली है, तो सबसे पहले इंतजार होता है, लोगों में ये जिज्ञासा होती है कि इस बार माँ किस पर सवारी कर रही हैं, इस बार माँ की सवारी कौन होने वाला है। तो आगमन इस बार बताया जा रहा है कि माता गज पर आगमन उनका हो रहा है, गज से पर वो सवार होकर के आ रही है, हाथी पर सवार होकर के आ रही है। तो एक तो आपसे जानना चाहेंगे कि गज पर सवार होकर आना, उसको हम कैसे समझे, वो क्या शुभ संकेत देता है, और साथ ही साथ ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो तय होता है कि इस बार मां की सवारी क्या होगी, क्या इसका कोई शास्त्रीय आधार है या फिर ये कैसे तय होता है।
2: जी श्वेता जी, थैंक यू सो मच, और जीएनटी के सभी दर्शकों को आने वाली नवरात्रि की अनंत शुभकामनाएं। बिकॉज ये जो शारदीय नवरात्रि होती है बहुत पावरफुल होती है, इसमें जो एनर्जीज होती है उसको अगर हम अच्छे से अपने अंदर अगर उसको एक्युमुलेट करते हैं तो बहुत सारी चीजें जो ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं लाइफ में वो होते हैं। सर मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो नमस्तुते। तो इस मंत्र के साथ ही इस अपनी शुरुआत करती हूँ आज आपके एपिसोड से। और आपने बहुत सही कहा कि देखिए, शास्त्रीय आधार तो होता है कि किस दिन, जिस दिन में माँ आती है उस दिन के हिसाब से ही उनका वाहन तय होता है। और गज भी जब आ रही है हाथी में, ऐश्वर्य का प्रतीक होता है हाथी, माता लक्ष्मी का वाहन बोलते हैं ना, गज लक्ष्मी, यानी कि सारा ऐश्वर्य आपको प्राप्त होता है, अच्छी वर्षा होती है, सुख समृद्धि आती है, एक अच्छी पॉजिटिव वाइब्स पूरे चारों तरफ फैलना शुरू हो जाती है। तो जब भी माँ आती है, जब संडे या फिर मंडे को, मतलब रविवार या सोमवार को जब माँ आती है या नवरात्रि शुरू होती है, प्रतिपदा तिथि होती है, तो उस समय माँ गज पर आती है। जब मंगलवार होता है और शनिवार होता है तो अश्व पे, यानी कि घोड़े पे बैठ करके माँ आती है। तो ये कोई बहुत अच्छा हम नहीं मानते, क्योंकि घोड़ा जो होता है ना बहुत तीव्र गति से आता है, तो वो बहुत ज्यादा तीव्रता लेकर के आता है अपने साथ। और उसी तरह से बुधवार हो गया तो उसमें नाव में बैठ के आती है, नौका में बैठ के जब भी माँ आती है तब भी फल होता है। और अगर गुरुवार और शुक्रवार हो और उस समय माँ पालकी पे बैठ के आती हैं, और पालकी में बैठ के आने में भी थोड़ा पालकी डोलती है ना, अगर देखे तो इचकोले खाते हुए आती है, तो इस वजह से उसको भी बहुत शुभ नहीं माना जाता। उसी तरह से माता के आगमन के साथ साथ माता के जाने का भी शास्त्रीय विधान है कि किस वाहन पे बैठ के जा रही है। और इस वर्ष में ये शारदीय नवरात्रि में माता का जो जाने का दिन है वो मंगलवार पड़ रहा है, यानी कि वो मुर्गे पे बैठ के जाएंगी ना। मुर्गे पे बैठ के जाने का मतलब होता है कि वो थोड़ा सा नाखुश होकर के भी जाएंगी किसी ना किसी चीज के लिए। तो इसी में फिर चर्चा करेंगे श्वेता जी अभी आगे एपिसोड में, कि इस जाने वाले वाहन को किस तरह से आने वाले वाहन के साथ, और ये पूरी 9 दिन की नवरात्रि में हम कैसे कंट्रोल करें, कैसे उसका बेटर मैनिफेस्टेशन लेके आए लाइफ में, कि वो जाने वाले वाहन में भी जाते जाते माँ पे,
0: बिल्कुल उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल नंदिता जी, लेकिन चलते हैं वानिया जी के पास। वानिया जी, ये बताइए कि ऐसे में अब लोगों की जिज्ञासा ये भी बढ़ जाती है, लोग जानना चाहते हैं कि गज पर सवार होकर माता तो आ रही है, लेकिन साथ ही साथ क्या इसका असर आम व्यक्ति पर भी पड़ेगा, किसी तरह से धन हो गया, नौकरी, व्यापार, तमाम चीजों पर, या फिर स्वास्थ्य पर।
3: जी, थैंक यू श्वेता जी. सो जैसे कि नंदिता जी भी बता रही हैं कि वो बहुत ही ज्यादा सुख सौभाग्य का जो जो टाइम होता है जब भी माता जो है वो गज पर आती हैं, तो ये जो टाइम होता है वो बहुत ऑस्पिशियस होता है. तो ये आम जनमानस के लिए भी ये जो टाइम होता है ये उतना ही ज्यादा ऑस्पिशियस होता है. जो नवरात्रि की 9 नाइट्स होती हैं जिसको हम नवरात्रि बोलते हैं, यानी कि 9 नाइट्स ऑफ मैनिफेस्टेशन, तो ये जो टाइम होता है इस टाइम पर एनवायरमेंट की ऑरा की जो एनर्जीज होती हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होती है. ये टाइम होता है हमें उन एनर्जीज के साथ जुड़ने का, ये टाइम होता है हमें देवी के साथ जो है कनेक्शन बनाने का, ये टाइम होता है जब आप माँ से जो है अपने आने वाले टाइम के लिए प्रोटेक्शन मांगते हैं, क्योंकि इस टाइम पर ऋतु परिवर्तन का भी टाइम होता है. तभी इस टाइम पर फास्टिंग होती है ताकि बॉडी जो है वो डिटॉक्स हो जाए, हमारे अंदर पेशेंस बढ़े. और ये जो टाइम होता है आप इस टाइम पर माँ से सच्चे मन से कुछ भी मांगते हैं तो वो आपको आपके जीवन में मिलता है, स्पेशली जब वो गज पे आ रही है
0: जी
3: का प्रतीक होता है, कहीं ना कहीं वो धन का प्रतीक होता है, धन के आगमन का प्रतीक होता है. इस टाइम पर जितना आप दुर्गा कवच करते हैं, जितना आप दुर्गा सप्शती करते हैं, आप देवी की टीचिंग्स को पढ़िए, देवी की लर्निंग्स को पढ़िए कि इवन अगर उनके एक एक ब्लड और स्वेट की ड्रॉप अगर जमीन पर गिर के अगर जो है वो कहीं ना कहीं इतने सारे डेविल्स उत्पन्न हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं है कि डीएनए जो है वो चेंज होता है. और माँ ये कहती है कि माँ का हर स्वरूप, आपने स्वामी रूप देखा वो दुर्गा का रूप था, शक्ति का रूप देखा, जब माँ बहुत ज्यादा जब उग्र होती हैं तो वो काली का रूप जो है वो धारण करती हैं. तो सिचुएशन वाइज जो है हमें उन सभी रूपों को जो है धारण करना चाहिए. इस टाइम पर आप दिल से उनका जो उनका भोग है, जो उनका प्रसाद है, जो उनका श्रृंगार है, ये सारी चीजें जो है आप करिए. इस पर बहुत ही ज्यादा स्पेशल जो है ये नवरात्र हैं, बहुत ही पावन नवरात्र हैं. इस टाइम पर जितनी आप अपनी फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस कीजिए, चक्रा बैलेंसिंग के लिए बड़ा अच्छा टाइम है, मैनिफेस्टेशन के लिए टाइम है, पंच तत्व को बैलेंस करने के लिए टाइम है. आपके जीवन में अगर कुछ चल रहा है जिसका आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा है तो उसके लिए भी जब आप देवी की एनर्जी से कनेक्ट करते हैं, आप एक पेपर पर लिख कर जो है वो भी अपने लेटर को अपने देवी के आगे जो है आप समर्पित कर सकते हैं. उनका जो है उनको आप नारियल चढ़ाइए, लौंग, कपूर, मिश्री, मखाने की खीर जो है वो आप अपने हाथों से बनाइए. और नवरात्रि को थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिए कि कैसे नवरात्रि की टीचिंग्स को हम अपनी लाइफ में डाल के अपनी
0: यानी पूरे 9 दिन, और खासकर अभी आगे हम चर्चा करेंगे भी कि इस बार जो महासंयोग बन रहा है उससे भी आप किस तरह से लाभ उठा सकते हैं. पूरे 9 दिन तो आप पूजा कर ही सकते हैं. आचार्य चंद्रांशु जी महाराज, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर धार्मिक दृष्टिकोण से हम समझना चाहें आचार्य जी, तो क्या माता रानी और हाथी इसका किसी तरह का संबंध, या फिर माता का जो स्वरूप है उसमें किसी तरह से हाथी का कोई उल्लेख या कथाओं में कोई उल्लेख या वर्णन मिलता है क्या?
4: आप जानते हैं कि हमारे वैदिक सनातन धर्म में, हमारे मंदिर के पूजा पद्धति में या मंदिरों में जो मीनारे बनती हैं, जो शोभा बनते हैं, उसमें हाथी प्रतीक के रूप में रखा ही जाता है, क्योंकि गणेश भगवान द्विमुख हैं, उन्होंने उनके मुख पर हस्ती का मुख लगा हुआ है, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोहे मूस की सवारी. हाथी का संबंध सनातन परंपरा में एरावत को सभी लोग जानते हैं, देवराज इंद्र का वाहन है. इस तरह से जगह जगह पर गज का वर्णन धार्मिक अनुष्ठानों में अन्य में हमेशा मिलता ही रहता है. पर जहां तक इस समय की बात है, आप जानती हैं, पूरा देश जानता है इस बात को कि शक्ति के उपासना का पावन पर्व है, और इस उपासना के पावन पर्व में शिव बिना शक्ति, शक्ति शक्ति बिना शिव अधूरे हैं और शिव बिना शक्ति अधूरी है. एक बड़ा सुंदर चित्रपट देखने को मिलता है अर्धनारीश्वर भगवान का, जिसमें आधे में माता जगत जननी है और दूसरे में भगवान शिव है. और आगे देखने में आपको जब देखते होंगे तो आपको मिलता होगा, आप देख पाते होंगे, जब देखते होंगे आपको देखने में मिलता होगा इन चीजों को, इस चीजों को आप देखते होंगे तो आपको दिखाई पड़ता होगा, समझ में आता होगा कि गणेश भगवान साथ में इस बार प्रथमम शैलपुत्री चा द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, प्रथम शैलपुत्री के रूप में है, दूसरी दूसरी जो है तो ब्रह्मचारिणी के रूप में है. तो ये शैलपुत्री कैसे बनी, इस बात को जानना चाहिए. पूर्व जन्म में जब सती के रूप में थी, सती के तन में थी, तो सती के तन में उनसे एक अपराध हो गया. अपराध यह उनसे हुआ, अपराध उनसे यह हो गया कि उन्होंने भगवान भोलेनाथ की बात नहीं मानी, भगवान राम पर प्रभु होने पर उन्होंने शक कर लिया, और बाद में यज्ञ में जाकर के अपने भोलेनाथ के द्वारा परित्यक्त होकर के उनके मन में एक क्षोभ पैदा हो गया कि मुझसे अपराध हो गया, अग्नि में जल गई, अग्नि में जाकर के। और जैसे अग्नि में जाकर के जली, तो जलने के बाद में पुनः उन्होंने जब अगला तन भगवान भोलेनाथ के लिए प्राप्त करना हुआ, तब उन्होंने अगले तन को जब प्राप्त किया तो शैलजा बनकर के आई। शैलजा बनकर के क्यों आई? क्योंकि हिमालय अडिग रहते हैं, चाहे बरसा हो, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे युद्ध हो, जैसे शैल कभी भी हिमालय राज परिवर्तित नहीं होते, इधर उधर नहीं विचलित नहीं होते हैं, ऐसे ही ये संदेश देना चाहती है, वरम संभुत न तरहूं कुमारी, या तो शिव का वरण करूंगी या जीवन भर कुमारी रह जाऊंगी। एक तो यह संदेश है, और दूसरा प्रेम में अहंकार नहीं चलता। अगर अहंकार मैं बना हुआ है, अहंकार बना हुआ तो प्रेम नहीं किया। तो दूसरा, उन्होंने जो माँ बनाया, मैना को माँ बना करके आई। मैना, मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ भी है वो आप ही हैं। और प्रेम का सबसे बड़ा सूत्र तत्सुख सुखित्वम है, कि आपसे बढ़कर के, आपके समर्पण से बढ़कर के मेरे जीवन में कुछ नहीं है। और यही तो बोलते हैं ना, दस्तूर मोहब्बत का है यही, हस्ती को मिटाना पड़ता है, जिस गम को फरिश्ते सह न सके उस गम को भी सहना पड़ता है।
0: क्या बात
4: तो
0: है?
4: एक बात संदेश दिया कि हम सब कुछ समर्पण करेंगे भोलेनाथ के लिए। तो जो भक्त हैं, श्रद्धा बनत है, जिनको पूजा करना है, अनुष्ठान करना है, तो शैल पुत्री माँ से यह चीज सीखना चाहिए, अपने आराध्य के प्रति, इष्ट माता जी के प्रति उनके दृढ़ विश्वास हो, सच्ची श्रद्धा हो, और इसके साथ में अपने अहंकार को मान करके, मार करके, मैं को हटा करके फिर पूजा करें, उनका मनोवांछित फल अवश्य प्राप्त होगा।
0: यानी कि पूरी तरह से आपका सरेंडर करना भगवान के सामने जरूरी है। जब आप पूरी तरह से सरेंडर्ड हो जाते हैं, तब जाहिर सी बात है कि आपको उसका फल जरूर मिलता है। डॉक्टर हरलीन, आपसे ये समझना चाहेंगे, अब इस माँ के आगमन को लेकर यहाँ पर ये आखिरी सवाल, क्योंकि उसके बाद फिर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि खास करके ये जो इस बार दुर्लभ योग बन रहे हैं वो किस तरह से लाभकारी होने वाले हैं और लोग उसका कितना लाभ उठा सकते हैं इन 9 दिनों में। तो आपसे ये समझना चाहेंगे कि गज पर माँ का आगमन जो ये हो रहा है, लोगों के लिए तो हमने जाना, लेकिन समाज और देश के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, क्योंकि हम देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड किस तरह से एक तरफ वॉर का भी सीन बना हुआ है, लेकिन अब वो अशांति ना रहे, या फिर आगे किस तरह से आपको ये संकेत दे रहा है?
5: जी जरूर, देखिए श्वेता जी, जैसे कि सबने बताया, ये जो आगमन है माता का गज पर, बहुत बहुत पॉजिटिव है, बहुत लाभकारी है सबके लिए। तो जब सबके लिए वो एनर्जीज पॉजिटिव हैं, तो 100% समाज के लिए और आसपास हमारी जो भी ऐसे अभी थोड़ा सा नेगेटिव एनर्जीज चल रही हैं, उनके लिए बहुत पॉजिटिव होने वाला है। मगर पॉजिटिव भी तभी होता है जब हम उसका लाभ लेना चाहते हैं। एनर्जीज हमारे आसपास सभी हैं, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, बट क्या हम उन एनर्जीज को रिसीव करने के लिए रेडी हैं? तो ये जो टाइम है, ये टाइम रहता है, पूरा साल सब बिजी होते हैं, बट ये टाइम 9 दिन ऐसे होते हैं जब हम मन से, दिल से, तन से रेडी होते हैं कि अब हम एनर्जीज को, अच्छी एनर्जीज को रिसीव करेंगे। तो ब्रह्मांड में जब ये पॉजिटिव योग बनते हैं, कुछ अच्छी चीजें आती हैं, तो इनको रिसीव करना भी बहुत जरूरी है। तो रिसीव कैसे करना है? इस वक्त सारे एलिमेंट्स का बैलेंस होगा। जो कहीं पर जो बहुत दिख रहा है कि कहीं फायर रिलेटेड बहुत हाई है, कहीं आग लग रही है, कहीं पर प्रलय आ रही है, कहीं पर पानी का ज्यादा है, लाइक एनर्जीज को बैलेंस किया जाता है। वाटर एनर्जीज, एयर एनर्जीज, फायर एनर्जीज, और इन्हीं से रिलेटेड होते हैं इमोशंस। तो जैसे कि इमोशनली जो है भी डिसबैलेंस है, रिश्ते खराब हो रहे हैं, आसपास नेबरिंग कंट्रीज में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो सारी चीजें बैलेंस करने का बहुत अच्छा टाइम है ये 9 दिन। मगर वो कैसे रिसीव किया जाए, कैसे किया जाए, उसके भी तरीके हैं। सबका अपना अपना मेथड है, पूजा करने का, श्रृंगार करने का। कुछ लोग ऑफिस जाते हैं, कुछ लोग बाहर रहते हैं, फॉरेन कंट्रीज में रहते हैं, वो उतना नहीं कर पाते, मगर एनर्जीज तो सब ले सकते हैं। तो क्या करना है इन 9 दिन? बिल्कुल शांत रहना है। एनर्जीज को रिसीव करने के लिए अलग अलग कलर्स यूज कीजिए। कलर्स जैसे हमारे पूरे अर्थ में आप देखेंगे हर चीज का एक कलर है। अगर हम पेड़ पौधों की बात करते हैं तो हमें ग्रीनरी से हम पहचानते हैं कि वो हरा है, तो ऐसे ही हर चीज का कलर है। सूर्य का हम येलो ऑरेंज से पहचानते हैं। तो ऐसे ही 9 दिन 9 कलर्स को अपनी लाइफ में लेकर आइए, खान पान में, पहनने में, अपने आस पास, अपने।
0: और जैसा कि हम जानते हैं कि हर दिन जो है माता के 9 दिन जो है वो 9 अलग अलग उनके स्वरूप के साथ साथ जिस कलर की आप बात कर रही हैं उस कलर का भी अपना महत्व होता है। इसलिए खास करके अगर नवरात्रों में आप गुजरात चले जाएं तो जितने दिन वो 9 दिन जो डांडिया रास होते हैं, हर दिन अलग अलग कलर के हिसाब से ही लोग ड्रेस कोड रखते हैं और वही पहनकर जाते हैं क्योंकि उसका अपना महत्व होता है। नंदिता जी, आपके पास आते हुए अब हम बात करेंगे इस बार के दुर्लभ संयोगों की, उसके बारे में भी काफी चर्चा हो रही है और बताया जा रहा है कि लगभग 100 साल बाद ऐसे संयोग बन रहे हैं। राजकेसरी योग, खास करके इस योग के बारे में बताया जा रहा है कि ये बेहद शुभ होने वाला है। किस तरह से ये शुभ होगा और इस योग के बारे में बताएं।
2: जी श्वेता जी, बहुत ही सुंदर प्रश्न है, लेकिन इट इज गज केसरी योग। गज केसरी, देखिए माता भी गज पे आ रही है और योग भी गज केसरी बन रहा है। तो गज केसरी योग तब होता है जब बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा का कोई संबंध बने, चाहे युति से बने, चाहे दृष्टि से बने, या केंद्र में होकर के बने, या त्रिकोण में आकर के बने। तो जब ये संबंध बनता है, अभी इस समय जब नवरात्रियां शुरू हो रही हैं, वैसे तो चित्रा नक्षत्र पे शुरू हो रही है और चित्रा नक्षत्र में मैं बहुत

0: नहीं होती है। तो
1: हाँ
0: उसका तोड़ केवल ये होता है कि अगर आप अभिजीत मुहूर्त में कर लें तो अच्छा रहता है। तो लगभग आपका 11:30 से लेकर 12:30 के बीच का जो समय है, उस समय आप घट स्थापना करें। अब गजकेशरी योग कैसे बन रहा है? जब चित्रा नक्षत्र है तो उसका मतलब चंद्रमा तुला राशि में, लेकिन चंद्रमा जैसे ही 1-2 दिन में वृश्चिक राशि में आएंगे तो गुरु पूर्ण रूप से पंचम दृष्टि से चंद्रमा को देखेंगे, गजकेशरी योग हो जाएगा। अब गजकेशरी योग होता है, कहते कि अगर ये किसी के कुंडली में बना या किसी भी मुहूर्त में बना तो आप ये मान लीजिए कि लाखों नेगेटिव जो योग होते हैं या सिंस होते हैं वो ये योग काट देता है। मतलब कि कितनी ही चीजों में अगर विघ्न आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, और उस समय लेकिन अगर गजकेशरी योग है और आप अगर कोई भी प्रक्रिया उस समय कर रहे हैं या कोई भी आप ऑस्पिशियस एक्टिविटी कर रहे हैं, यकीन मानिए कि वो बहुत लंबे अरसे तक आपको अच्छा शुभ फल देगी। गज की तरह स्टेबल रहेगी, गज की तरह विद्वान भी रहेगी। एलिफेंट को बहुत इंटेलिजेंट बींग माना जाता है और साथ ही साथ माता लक्ष्मी का वाहन है, तो प्रोस्पेरिटी भी आपके आते हैं। गुरु और चंद्रमा जो की जो युति होती है वो आपस में परस्पर अति मित्र समझे जाते हैं, जिस वजह से भी वो आपस में एक दूसरे को बहुत सहयोग देते हैं। तो गजकेशी योग इज अ वेरी वेरी पावरफुल योग। इसके अलावा सर्वार्थ सिद्ध योग भी पढ़ रहे हैं, बीच में दो सर्वार्थ सिद्ध योग आ रहे हैं, आपके रवि योग पढ़ रहे हैं दो, आपके एक अमृत सिद्धि योग भी पढ़ा है। तो ये पूरे नवरात्रियों में बहुत अच्छे अच्छे योग पढ़े, तो मतलब आपको कोई माला सिद्ध करनी, कोई मंत्र सिद्ध करना है, माँ को सरेंडर करना है। हमारी जो भी प्रॉब्लम्स आती है हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपनी माता के पास ही तो जाते हैं। कुछ
1: बिल्कुल
0: भी पेन होता, परेशानी होती है, सबसे पहले मम्मी याद आती है। तो वही चीज है यहाँ पे भी, हम हमारी माँ तो परम ब्रह्म पराशक्ति माँ ही है। तो हमें अगर कोई भी समस्या इस समय है और इतने सुंदर सुंदर योग जब बन रहे हैं, दुर्लभ योग बन रहे हैं, आप प्लीज सरेंडर करिए। क्योंकि इस समय गुरु उच्च के भी हैं, हंस नामक राजपुरुष योग भी बना रहे हैं। तो गुरु जब उच्च के हो जाते हैं, और आप देखिए मंगल अभी समय नीच के, लेकिन नीच भंग योग गुरु की वजह से बन जा रहा है।
1: जी
0: 17 तारीख को सूर्य नीच के हो जाएंगे लेकिन नीच भंग योग में चले जाएंगे क्योंकि शुक्र के साथ युति करेंगे। तो आप देखिए कि जो नेगेटिव भी एस्पेक्ट आएगा उसमें भी तोड़ माँ लेकर के आ रही है समय कि मैं अपने भक्तों को पूरी एनर्जीज दे रही हूँ कि भाई खुल
1: बिल्कुल,
0: के पूजा
1: यानी
0: करो,
1: कि
0: कुछ
1: पूरा पूरा
0: दो,
1: लाभ उठाने का
0: ध्यान
1: मौका
0: लगाओ।
1: माँ खुद ही दे रही है। बस
0: एब्सोल्युटली
1: ये है कि आप लोगों को सुनना है और समय वगैरह जो आप लोग बताते हैं उसको जरा फॉलो कर लेना है, सही समय पे पूजा अर्चना करनी है, तो ताकि पूरा पूरा लाभ 100% आप उठा सके। वाना जी, आपके पास आते हुए यहाँ पर गज केसरी योग की बात कर रही थी नंदिता जी, जो कि बेहद शुभ बता रही है कि वो माना जाता है हर मायने में। ऐसे में अगर मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल जानना चाहूं, क्या ये योग हर राशि वाले पर लगभग सेम सा प्रभाव, एक जैसा समान प्रभाव डालेगा, या फिर कुछ खास राशि वालों के लिए विशेष होने वाला है?
2: जी, आपने बहुत लॉजिकल क्वेश्चन पूछा है। देखिए, गज केसरी योग अगर ट्रांजिट में बन रहा है और वही सेम योग अगर आपकी कुंडली में बन रहा है, या फिर जो है आपकी उस पर्टिकुलर ग्रह की महादशा चल रही है या फिर अंतरदशा चल रही है, या फिर कुंडली में भी MD AD में आ रहा है, कहीं ना कहीं वो जो आपका योग है वो आपके नवमांश में आ रहा है, तब उसका इम्पैक्ट ज्यादा होता है। कि अगर प्लैनेट में ट्रांजिट में कुछ चल रहा है और वही सेम चीज में हमारी दशाएं महादशाएं चल रही है, तो उसका इम्पैक्ट काफी गुना राइज हो जाता है। बट ओवरऑल ऑन एन एवरेज अगर ओवरऑल ये योग बन रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट सभी जनमानस पे जो है वो पड़ता ही पड़ता है, और कहीं ना कहीं वो ऑस्पिशियसनेस जो है सबकी लाइफ में जो है वो स्प्रेड होती है। ये जो टाइम होता है ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। इस टाइम पर आप जितना मौन रहते हैं, जितना आप अपनी कुल देवी की आराधना करते हैं, जितना इस टाइम पर आप अपने कुल देवता की आराधना करते हैं, इस टाइम पर जो है आप अपने हाथों से जब आप भोग बनाते हैं, इस टाइम पर आप लिखिए, मैं कहती हूँ कि जर्नलिंग में इतनी पावर है, जब आप जर्नल करते हैं तो आपकी केतु प्लैनेट से जो भी इंस्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आती है वो कम हो जाती है। आपका मर्क्यूरी अच्छा होता है, आपका मून अच्छा होता है, आपको देवी से जो भी चाहिए उसको आप डेली लिखिए। आप ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप जो है वो भी आप जो है लिख सकते हैं। इसके अलावा जब आप माँ से कनेक्ट करते हैं तो इस टाइम पर आप मंदिर बहुत जरूर जाइए, क्योंकि मंदिर का जो ऑरा होता है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। जब आप माँ को नमन करते हैं तो वहां पर जो है आपकी लाइफ में आपका क्राउन चक्र जो होता है, जो हमारे यहाँ पर होता है, आपका क्राउन चक्र जो होता है वो भी आपकी लाइफ में ओपन होता है। चक्रों को साधने का, चक्र की बैलेंसिंग का, पंच तत्व बैलेंसिंग, आप मंदिर में बैठकर जो जाप करते हैं और जो आप घर में करते हैं उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है, क्योंकि मंदिर का ऑरा बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावरफुल ऑरा होता है. आप घर में कर रहे हैं तो नवरात्रि, 9 nights, आप रात में अगर थोड़ा सा जाग सकते हैं तो ये 9 रातों में आप मैनिफेस्ट कीजिए. उस टाइम पर आप दिया जो है वो आप जरूर जलाइए, आप देवी का ध्यान कीजिए, आप देवी के रूप, आप माइथोलॉजी को स्टडी कीजिए कि क्या क्या क्वालिटीज

0: है वो देवी में थी, और वो सारी कौन सी क्वालिटीज जो है उसको मैं अपनी लाइफ में अपने जीवन में लेके आ सकता हूँ, क्योंकि उनकी एक एक क्वालिटी, अगर उनका सौम्य रूप है तो वो हमें लाइफ में बहुत ज्यादा पोलाइट बनाता है, हमारे अंदर कामनेस लेके आता है, या वही अगर उनका उग्र रूप है तो वो हमें सिखा रहा है कि लाइफ में कुछ गलत होगा तो हम उस पर कैसे एक्ट रिएक्ट करेंगे। आप देवी की कथाएं पढ़िए, आप जो है दुर्गा सप्शती में एक एक चीज इतना ज्यादा क्लियर दी है देवी के बारे में, कैसे उन्होंने उन राक्षसों के साथ जो है सामना किया, कैसे ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो हमें लाइफ में गिराता है, इसका क्लियर वर्णन जो है वो दुर्गा सप्शती में है, जिस हिसाब से महिषासुर का जो ओवर कॉन्फिडेंस था उसके लाइफ में, कैसे देवी ने उसको वो करा। तो जब बहुत ज्यादा ईगो होता है तो उतनी ज्यादा डाउनफॉल भी आती है। तो मैं ऐसा मानती हूँ कि हर चीज को प्रैक्टिकली आप अपनी लाइफ में
1: बिल्कुल
0: इम्प्लीमेंट कीजिए, तो जब आप ये करेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव जो है ट्रांजिशन भी आएगी, ट्रांसफॉर्मेशन भी आएगी, और आपके जीवन में जो भी सिचुएशंस आएंगी उनसे आप जो है लड़ना
1: बिल्कुल
0: सीख जाएंगे
1: बिल्कुल, वो
0: ओवरऑल
1: हिम्मत वो
0: एनवायरमेंट।
1: शक्ति भी माता इसी दौरान देती है। आचार्य जी, आपसे समझना चाहूंगी, नवरात्र के दौरान माँ दुर्गा की आराधना, ये सिर्फ उनकी पूजा करना है नवरात्र के दौरान कि भाई माता की आराधना का समय है हम पूजा कर रहे हैं, या फिर अपने भीतर की जो शक्ति है उसे जागृत करने का सबसे बेहतर मौका, सबसे बेहतर समय है?
2: दोनों बात एक साथ में है नवजोत जी, ये दोनों क्षति एक साथ में, मतलब इसलिए है कि शक्ति को उपासना का पावन पर्व है, और पावन पर्व होने के नाते एक तो पहले सबसे बड़ी बात यह है कि शक्ति का दिन है, उपासना का पर्व है, तो इस समय जो भी साधक लोग हैं वो थोड़े मन से साधना करते हैं और आज सुशीघ्र माता जी प्रसन्न होकर के उनको आशीर्वाद वरदान भी, उन पर कृपा भी अपना करती हैं। पर दूसरी बात और भी है इसमें, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भावनात्मक अटैचमेंट, लगाव, ममता जिसको बोलते हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। अभी बहुत विदुषी तीन तीन एक साथ में हमारे साथ जो सचर बैठी हैं, बहुत अच्छी बातें सब कर रही हैं, और ये जितने नियम बता रही हैं जिसका जो भी मन पड़े उसको करना ही चाहिए। पर एक बात, मूलभूत स्वरूप को हम सबको याद रखना चाहिए। मूल स्वरूप क्या है कि माँ का स्वरूप कैसा है, तो सभी को इस श्लोक याद है, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। जगत जननी परम अम्बा है, और हमको लगता है कि दुनिया में माँ से बड़ा दयालु, माँ से बड़ी करुणामयी, ममतामयी दुनिया को कोई हो भी नहीं सकता है। बेटा लायक हो तो माता का इतना स्नेह बढ़ना तो स्वाभाविक है, पर कहते हैं अगर किसी माँ के गर्भ सर्प बिच्छू भी अगर जन्म दे देती है उसको भी अच्छे प्रेम करती है, उससे के बिना अलग नहीं रह सकती। तो माँ तो सर्वथा प्रेम ही करती हर रूप में, तो चाहिए यह है कि जितने अनुष्ठान है, जितने भी नियम है, कठोरता पूर्वक जितना कर सकते हैं उतना उसको करना चाहिए, करते रहना चाहिए। पर यदि कदाचित कुछ त्रुटि भी हो जाए, कुछ गलती हो जाए, तो माँ से क्षमा प्रार्थना स्त्रोत्र के द्वारा उनका क्षमा याचना कर लेना चाहिए, और उनसे उनको यह भयभीत नहीं होना चाहिए माँ रुष्ट हो जाएगी, क्रोध कर लेंगी या त्रुटि होगी, इस बात को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि माँ क्षमा की मूर्ति है, करुणा की मूर्ति है, दया की मूर्ति है। और हमको लगता है कि जिनको संस्कृत आता है उनको माता के उन नामों का उच्चारण करना चाहिए, पर हमारे यहाँ देखते हैं जो नवाह पारायण, नवरात्रि में भी नवाह पारायण पाठ होता है और उसमें भी एक संपुट बड़ा प्रचलित है, इसलिए कह रहे हैं कि इससे ज्यादा मंगल करने वाला और कुछ दिखाई नहीं पड़ता, उन सबको इस संपुट पाठ को करना चाहिए। देव पूज पद कमल तुम्हारे, सूर्य नर मुनि सब हो ही तुम्हारे, इस तरह इस चौपाई को स्मरण करते हुए फिर पूजा करें, पाठ करें, आराधना करें, तो हमको लगता है कि माँ करुणामयी हैं, दयालु हैं, सभी के मनोवांछित फल को अवश्य पूर्ण करेंगी, उसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। ऐसा मन में भाव रख करके माता की उपासना करना
1: और
2: चाहिए।
1: पूजा विधि कैसी हो, किस तरह से उपासना माँ की करनी चाहिए, और खास करके जब 100 साल बाद इस तरह के दुर्लभ संयोग बन रहे हैं तो उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ आप कैसे उठाएं, ये भी हम जानेंगे तमाम हमारे मेहमानों से। लेकिन यहाँ पर हमें रुकना होगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: नवरात्र का संयोग 100 साल बाद दुर्लभ योग, इसी पर आज हमारी चर्चा हो रही है क्योंकि नवरात्र बस आने को है और ऐसे में तमाम ज्योतिषाचार्य कथावाचक हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो आपको बता रहे हैं कि किस तरह से इस बार माँ दुर्गा की आराधना की जाए। डॉक्टर हरलीन आपके पास आते हुए यहाँ पर, चलिए अब हम पूजा की बात कर लेते हैं क्योंकि हमने दुर्लभ योगों की तो बात कर ली, कई दुर्लभ संयोग इस बार बन रहे हैं और उसका लाभ अब कैसे उठाया जाए ये जरा हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको बता दीजिए कि वो कौन सा एक आप उपाय कह लीजिए या तरीका कह लीजिए कि इस बार लोगों को वो चीज करनी ही करनी है इन 9 दिनों में ताकि ज्यादा से ज्यादा वो बेनिफिट वो लाभ इन संयोगों का उठा सके।
1: जी जरूर। सबसे पहला बहुत सिंपल बहुत इजी चीजें कीजिए। जितना ज्यादा टफ चीजें करने की तरफ बढ़ेंगे वो हम नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा होता है कभी कभी बहुत मुश्किल चीजें हम कहीं देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं या कुछ ऐसे ट्रेडिशन भी चलते हैं किसी के घर पे और वो नहीं कर पाते कि बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है, हमें जॉब पे जाना है, हम नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सिंपल, सबसे पहले पहले दिन आप एक कलश लीजिए, उसके अंदर पानी भर के, गंगा जल भर के रखिए, जिसको हम बोलेंगे कि ये आपका एक मंत्रित हो जाएगा जो वॉटर है, जो चार्ज हो जाएगा 9 दिन के लिए। आप इसको कॉपर में रख सकते हैं, आपके पास अगर कॉपर नहीं है, तांबे का, मेटल का नहीं है, अष्ट धातु का नहीं है तो आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और इसको ढक के रखिए, इसमें आप गंगा जल डालिए। और अगर इनकेस गंगा जल भी नहीं है तो आप नॉर्मल पानी, साफ पानी, स्वच्छ पानी भी उसमें डाल के रख सकते हैं और इसको आप अपने घर पे, अपने मंदिर में, जहां पर भी आप पूजा पाठ करते हैं, आप मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, जो भी आपके घर पे एक साफ स्वच्छ जगह है वहां पर रखिए। और इसके साथ साथ आप अपने आस पास कुछ ऐसी चीजें जो आप पहनते हैं, अगर आप कोई आपने मंत्र, कोई ऐसा मंत्र धारण किया है या आपने कोई क्रिस्टल पहना है, कोई ऐसी नग आपने पहना है, तो देखिए इस टाइम पे बहुत अच्छे से वो एनर्जाइज हो जाता है, वो चार्ज हो जाता है। तो ये उपाय तो पूरे साल के लिए हो जाएगा। अगर आपने जो पास में धारण किया है, जो आपके पास रहता है हमेशा, वो चार्ज हो जाए 9 दिनों में, तो आप जब भी पूजा करते हैं, आप थोड़ी देर के लिए भी ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो आप उस चीज को एनर्जाइज कीजिए अपने हाथ से, अपने सीधे हाथ से उस चीज को पकड़िए और आपने ये उसमें इन्वोक करना है कि इसके अंदर आज सारी एनर्जीज मैं आज इसके अंदर ले पा रही हूँ। तो आप देखिए 9 दिन में वो चीज आपकी मंत्रित हो जाएगी। और आप एक मैनिफेस्टेशन लेटर जरूर लिखिए, पहले दिन आप लिखिए, दूसरे दिन लिखिए, ऐसे 9 दिन आप अपनी जो भी आपकी मन्नत है, आप कुछ चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कोई ऐसी चीज है जो आपके अंदर अच्छी नहीं है, आप उसको हटाना चाहते हैं अपनी लाइफ से, तो उसको लिखिए। और उसको लिखने के बाद 9 दिन के बाद आप उस पर्ची को आप बर्न कर सकते हैं, आप उसको फाड़ सकते हैं, आप मैनिफेस्ट करेंगे। तो इन 9 दिन, क्योंकि गोल बहुत जरूरी है, आप किस चीज, हर चीज के करने के पीछे इंसान का हमेशा अपना स्वार्थ होता ही है, चाहे वो अपने लिए मांगे, अपने परिवार के लिए मांगे, किसी के लिए भी। तो आपकी गोल सेट होना बहुत जरूरी है कि आप किस चीज के लिए बैठे हैं। आप अगर मेडिटेशन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, आप आरती कर रहे हैं, तो आपके मन में क्या चल रहा है उस वक्त। तो पहली बात तो नेगेटिव नहीं सोचना है उस वक्त की, बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, घर पे ये भी बीमार है, पैसा भी नहीं है, प्रॉपर्टी भी जा रही है हाथ से, तो उस वक्त आपको ये सब चीजें नहीं सोचनी है। उस वक्त वो सोचना है जो आपका, जो आप चाहते हो, जो आपका गोल है। तो एक गोल सेट करना बहुत जरूरी है, तो मैनिफेस्ट कीजिए, खूब मैनिफेस्ट कीजिए 9 दिनों।
0: डॉक्टर हरलीन, जो बात आप कह रही हैं, आप भी कह रही हैं कि आप जरूर लिखिए, आप लिख करके माता जहां पर आप पूजा कर रहे हैं वहां पर आप रखिए जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप मैनिफेस्ट करते हैं। यहाँ पर वान्या जी, आपसे जब भी बात होती है, जब भी टेलीविजन पर आप इस तरह के कार्यक्रम में आप बताती हैं, आप खुद भी जर्नलिंग को बहुत इंपॉर्टेंस देती हैं, आप खुद भी कहती हैं हमेशा लिखने के लिए जो भी आपके प्रॉब्लम्स है। अभी एक हालिया वाकया आपको से बताऊं, किसी आचार्य जी से मुलाकात हुई थी और मेरा पर्सनली ये मानना हमेशा से रहा कि भाई किसी भी देवी देवता के सामने जब आप जाते हैं तो मैं क्या ही मांगूं, उनको तो सब कुछ पता है। तो मेरी सोच हमेशा ऐसी रही है कि मैं कुछ नहीं मांगती, बस उनके सामने जाके खड़ी हो जाती हूं और मुझे ऐसा लगता है कि वो तो माँ है, उनको तो सब पता है, तो मुझे कुछ कहना नहीं। इसी में आचार्य जी ने मुझे ये बात कही थी कि ऐसा नहीं है, आप अपनी भी माँ से अगर आपको कुछ चाहिए होता है तो आप घर पर भी जाके आप जब तक मांगती नहीं हो तब तक उन्होंने दिया नहीं होगा आपको। तो इसी तरह से ईश्वर से भी मांगना जरूरी है। इस बात को आप कैसे समझा सकती हैं, एक बार मुझे भी समझाइए और तमाम दर्शकों को भी।
2: जी, थैंक यू सो मच श्वेता जी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। देखिए, जब एक बच्चा बच्चे को कुछ मदर से चाहिए होता है तो बच्चा मांगता है। काफी चीजें बच्चे को पता होती हैं, लेकिन अगर सपोज बच्चे के स्कूल में कोई रिक्वायरमेंट है, उसको कुछ पर्टिकुलर चीज को खाना है, तो वो अपनी मदर को बताता है कि आप मुझे ये बना के दो। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक हम भगवान से कनेक्शन जब हम बना लेते हैं, लेकिन हमें भगवान को बताना तो पड़ेगा ना कि हमारी गोल्स क्या है, एस्पिरेशंस क्या है। आपको भगवान को उसमें एडवांस ग्रेटिट्यूड तो देना पड़ेगा ना, एडवांस में थैंक यू बोलना पड़ेगा कि थैंक यू ईश्वर, मेरी ये पर्टिकुलर विश जो है पूरी करने के लिए थैंक यू। और लिखने का कनेक्शन अगर मैं साइंटिफिकली बताऊं तो जब भी हम कुछ भी चीज लिखते हैं तो उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन हमारे सबकॉन्शियस ब्रेन में जाता है, सबकॉन्शियस में भी जाता है, और हमारे ब्रेन को एक रिकन्फर्मेशन जो है वो भी हमेशा जो है लाइफ में मिलती है कि कहीं ना कहीं वो चीज जो है कन्फर्म होती है, वो चीज हमारे माइंड के अंदर बैठ जाती है। जब भी आपको कुछ लिखना होता है, कुछ ग्रोथ हो रही है तो आप ग्रीन कलर यूज करते हैं, जब आपको लाइफ से कुछ निकालना होता है तो आप रेड कलर को यूज करते हैं। तो इसमें कलर्स की बहुत इंपॉर्टेंस है। जब आप मैनिफेस्टेशन की जर्नी लिखते हो तो आपको एक एक मैनिफेस्टेशन में एक एक लाइन को छोड़ के लिखना चाहिए, लास्ट में अपने साइन जरूर करने चाहिए, अब डेट जरूर डालनी चाहिए, प्लेस, ताकि आप ब्रह्मांड को साक्षी मानकर जो है वो उन चीजों को आप डॉक्यूमेंट कर रहे हैं। लास्ट में आपको 8 हॉरिजॉन्टल इंफिनिटी सिंबल्स जरूर बनाने चाहिए। चीजें मैनिफेस्ट होती हैं हमेशा, आप कुबेर मुद्रा में बैठ के अगर मैनिफेस्टेशन करते हैं, आप अपने राइट हैंड से लिखते हैं, आप कभी भी देखिए जो हीलिंग कोड्स होते हैं, स्विच वर्ड्स होते हैं, वो हमेशा लेफ्ट साइड जो है वो लेफ्ट साइड पे लिखे जाते हैं, क्योंकि उसका कनेक्शन सबकॉन्शियस से होता है। तो मुझे ऐसा लगता है माँ के आगे आप मांगिए, एडवांस में उसको थैंक यू बोलिए, और जो भी आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसको हमेशा प्रेजेंट टेंस में जब आप करते हैं, आप देखिए कितनी जल्दी आपकी विशेस पूरी होती हैं। और आपके गोल्स में डेट जरूर होनी चाहिए, अदरवाइज यूनिवर्स को समझ ही नहीं आएगा कि वो चीज कब पूरी होगी, तो वो वेग गोल्स कहलाते हैं। तो इस टाइम पर इसीलिए मैनिफेस्टेशन इतनी इंपॉर्टेंट होती है, एंड ट्रस्ट मी बहुत अच्छा काम करती है लाइफ में, बहुत जल्दी जल्दी चीजें मैनिफेस्ट होती हैं।
0: नंदिता जी, चूंकि नवरात्र की शुरुआत होने वाली है, ऐसे में लोगों के लिए ये जानना भी बहुत जरूरी है कि भाई इस बार जो हम पूजा करें, माँ का आह्वान करें, तो वो किस तरीके से करें। पहला सवाल तो ये कि भाई आह्वान करते समय क्या हमारे मन में बात रहनी चाहिए, किस तरह से हम पूजा करें, और दूसरी बात आपसे वो सरल उपाय जानना चाहेंगे, क्योंकि आमतौर पर लोग अपने जीवन में पारिवारिक सुख या फिर धन, स्वास्थ्य और प्रोफेशनल लाइफ में भी वो समृद्धि चाहते हैं, तो इन चार चीजों के लिए क्या कोई ऐसे सरल उपाय हैं जो इन नवरात्रों के दौरान लोग कर सके।
3: बहुत ही सुंदर और बहुत ही मतलब एक तरह से चरिता प्रश्न है अभी इस समय, क्योंकि आने वाले 9 दिन इतने पावरफुल दिन है कि इस समय आप जो भी चीजें करेंगे तो उसका किस तरह से आपको फल मिलेगा वो तो माता रानी की कृपा पे है। फर्स्ट थिंग इज कि आपने आवाहन कैसे किया, संकल्प लिया कि नहीं लिया, तो हाथ में थोड़ा सा जल लेके नवरात्रि के पहले दिन शुद्ध होकर के, और उसके बाद जब आप कलश स्थापना करते हैं तो कलश स्थापना के टाइम पे आपने जल लेना है, संकल्प लेना है, थोड़ा सा उसमें फूल रखिए या फिर अक्षत रखिए या फिर सिक्का रख करके, और ये बोलिए कि मैं, जैसे मैं नंदिता पांडे, मेरा गोत्र जो है वो बोला, और उसके बाद कि मैं ये 9 दिन के लिए व्रत का संकल्प ले रही हूँ, आपका आवाहन कर रही हूँ कि आप आए, वरुण आदि सभी समस्त देवी देवता जो उस कलश में उपस्थित होते हैं वो सारे आए और इस घर पे आपकी सकारात्मक ऊर्जा बसे और मेरे अंदर भी वो सकारात्मक ऊर्जा का एक कोऑर्डिनेशन हो, एक उसको मेरे को एहसास हो कि ऐसा हो, तो ये बहुत अच्छा होता है। अब नवरात्रि क्या होता है ना, बहुत सारे गूढ़ रहस्य होते हैं नवरात्रि के। पहला 3 दिन जो नवरात्रि का होता है वो माँ काली को समर्पित होता है, बीच के 3 दिन जो होते हैं वो माता लक्ष्मी जी के लिए होते हैं, और अंतिम 3 दिन जो होते हैं वो माँ सरस्वती को समर्पित होते हैं। अब इसका भी तात्पर्य ये होता है कि अगर मान लीजिए हमको नजर दोष, हमारे घर में बहुत ज्यादा क्लेश होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं, करियर में ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो फर्स्ट 3 डेज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, हेल्थ ठीक नहीं है तो आपने माँ काली का आवाहन करना है। माँ काली के लिए आवाहन करेंगे, उनका बीज मंत्र होता है कृम। आपने एक पेपर लेना है, सफेद कलर का पेपर, आप ब्लैक पेन से या ब्लू पेन से आप उसमें कृम लिखेंगे, क्रिम लिख करके अपनी तरफ फोल्ड करके माँ के चरणों में समर्पित करके ओम क्रिम कालिकाय नमः, इस मंत्र का 108 बार जब आपने करना है। कमल गट्टे का अगर आप अग्नि में आह्वान, छोटा सा एक अग्नि गोबर का कंडा जला करके आप कर सकते हैं कपूर और घी के साथ, 108 आपने आह्वान देना, आप देखेंगे आपके ये सारे जो प्रॉब्लम्स है, करियर रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, वो खत्म हो जाएंगे। धन धान्य है, कर्जों में डूबे हुए हैं, परेशानियां हैं, फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं हो रही है, और इस समय जिस तरह से शेयर मार्केट गिर रहा है, कभी उठ रहा है, दिस इज द टाइम जब बीच के 3 दिन में आप माता लक्ष्मी का पूजन करते हैं। इस समय आपने क्या करना है, अगेन व्हाइट पेपर लेना है, आपने अनार की कलम अगर आपको मिल जाती है तो बहुत अच्छा है, नहीं तो अनार ऐसे मिल जाता है, अनार का फल आप लेंगे उसका रस निकाल करके आप लिखेंगे, आप श्रीम लिखेंगे, तुलसी की एक डंडी लेकर के आप उसको श्रीम आप लिखें या कुमकुम से श्रीम लिखें, और माँ का ओम श्रीम महालक्ष्मी नमः का जाप करें अगेन कमलगट्टे, केवल सिंपल एक ही उपाय बता रही हूँ कमलगट्टे से ताकि कंफ्यूजन नहीं हो, उसकी आहुति देते हुए आप 108 बार रात्रि के वक्त में करना, ये सारे नियम रात्रि के हैं क्योंकि नव
0: जी
3: रात्रियां होती हैं, तो जितना आप रात्रि को करेंगे उतना बेटर होता है, और अंतिम ये इसमें आपका धन धान्य कर्जे और ये सारी रिलेशनशिप इश्यूज भी यहाँ पे रिजोल्व होते हैं माता लक्ष्मी की कृपा से। उसके बाद अंत में आता है जैसे आपने नकारात्मक हटी, फिर उसके बाद हम अपने धन धान्य में आते हैं और अंतिम आता है इस धन धान्य को यूज कैसे करें, वो विजडम देती है माता सरस्वती। तो लास्ट 3 डेज ऑफ नवरात्रि जो होते हैं वो माता सरस्वती को, तो आपको नॉलेज चाहिए, डिवाइन विजडम चाहिए, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ना है, आपने अपनी पढ़ाई लिखाई में आगे ग्रोथ करनी है, नीट के एग्जाम्स हैं, जेई के एग्जाम्स हैं, 12th के बोर्ड हैं, कुछ भी चीजें, ये जो 3 डेज हैं फॉर स्टूडेंट स्पेशली एंड जेंजी स्पेशली बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय आपने अष्टगंधा लेना है या हल्दी लेना है या चंदन लेना है, उससे आपने श्रीम की जगह एम लिखना है, ए और उसके ऊपर बिंदु एंग लिखना है, और इस ओम एंग महासरस्वती नमः इसका जाप करेंगे, कमलगट्टे की ही आहुति आप देंगे 108, आप देखेंगे कि आपके जो भी क्लॉग्ड क्या चक्र है वो खुल जाएगा, आपको डिवाइन विजडम आनी शुरू हो जाएगी, डिवाइन इंटेलिजेंस का इंटेलेक्ट का आपके ऊपर बरसना शुरू हो जाता है, माता सरस्वती आपके कंठ में आपकी जीवा में वास करने लगती है, वाक सिद्धि आपको हो जाती है, और जो भी डिवाइन नॉलेज है किसी भी तरह के क्रिएटिविटी या क्रिएटिव फील्ड से आप जुड़े हुए हैं, मीडिया लाइन से आप जुड़े हुए हैं, ये लास्ट 3 डेज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस समय अगर आप माता का पूजन करते हैं आप देखेंगे कि आपके सारे जो भी समस्त प्रॉब्लम्स है सब हट जाएंगे। सिंपल सा उपाय है, सिंपल सी चीजें हैं, लेकिन अगर आप इसको करें और बिल्कुल एक श्रद्धा के साथ करें आप देखें अवश्य आपके
0: बिल्कुल ये मतलब इससे सिंपलेस्ट मुझे लगता नहीं है कि और कोई उपाय हो सकते हैं, और ये सच्ची श्रद्धा और भावना से लोग अगर करें तो निश्चित तौर पर उनकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। आचार्य जी, खास करके नवरात्र के दिनों में हम देखते हैं कि कन्या पूजन का विशेष महत्व हमेशा माना गया है हमारे घरों में, जिन किसी के भी घर में 9 दिनों तक पाठ होता है, दुर्गा पाठ हम करते हैं तो हम कन्या पूजन करते हैं, कई लोग अष्टमी के दिन करते हैं, कई लोग नवमी के दिन करते हैं, ऐसे में आपसे जाना चाहेंगे, अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं, ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि कन्या पूजन की जो परंपरा है उसका दरअसल धार्मिक महत्व और अर्थ क्या है, अगर आप समझा पाए हमें।
4: श्वेता जी, आज आपने एक तो देवी पूजन की बात आपने, कन्या पूजन की बात आपने कही, हमारी सृष्टि के आधार कोई है तो वह कहीं ना कहीं हमारी माताएं बहने हैं, उत्पत्ति का क्रम सृजन का क्रम माताओं के पास में है, उनके बिना हो नहीं सकती, तो जो आराध्य स्वरूप है हमारे यहाँ देवी को, औरतों को देवी का समांतर में रखा गया है। हमारे यहाँ की कहावत है नारे यत्र पूजन्ति रमन्ते तत्र देवता, जहाँ बेटियों का बहनों का माताओं का सम्मान होता है वहां पर देवताओं का सर्वथा निवास होता है, ऐसी युक्ति हम सब लोगों ने सुना है। इसके साथ में एक बहुत महत्वपूर्ण आपने प्रश्न किया था कि उपासना कैसे करें, पूजा कैसे करें, हमको लगता है ये दर्शकों को बहुत महत्वपूर्ण विषय है और लोगों को जानना चाहिए। जो भी माता जी की उपासना में लगे सबसे पहले माता रानी का ध्यान करना चाहिए, अलग अलग दिनों का अलग अलग माताओं का ध्यान है, शैलपुत्री का, ब्रह्मचारिणी का, कात्यायनी, सबके अलग अलग ध्यान है, तो उसके अनुसार उनको ध्यान करना चाहिए। और ध्यान में करते समय सबसे पहले संचिंतयेत भगवत चरण अरविंदम, माता रानी के चरणों में बने जो 4 चिन्ह है, ध्वज है, अंकुश है, वज्र है और कमल है, इनका ध्यान करना चाहिए। इनका जब ध्यान करें उसके साथ में उनका भाव होना चाहिए। भाव कैसा हो, जब वज्र का ध्यान करें तब निवेदन करें कि पाप समूह का जो पहाड़ है वज्र से नष्ट कर दें। जब अंकुश का ध्यान करें, अंकुश का काम है मतवाले हाथी को बस में करना, तो मन रूपी मतवाला हाथी को बस करने के लिए अंकुश का ध्यान करें। उसके बाद में सरोरों का ध्यान करें, कमल का ध्यान करें कि हमारे हृदय में अपना अपने चरण का जो कमल है उसको विराजमान करवा दें, मेरे हृदय से जो दुर्गंध वासना की आती है वह सुगंध में परिणित हो जाए। और इसके बाद पुनः ध्वज का ध्यान करें, ध्वज का ध्यान करते हुए इस बात का ध्यान रखना चाहिए, प्रार्थना करें प्रभु जीवन दिया है तो कीड़े मच्छर की तरह जन्म लेकर के मर नहीं गए, जन्म दिया है तो सुयश कीर्ति भी ध्वज पताका के समान फहराए। इस तरह ध्यान करते हुए वज्र का, अंकुश का, ध्वजा का और कमल का ध्यान करना चाहिए। चरण से ध्यान प्रारंभ करते हुए फिर एक एक अंगों का ध्यान करते हुए माता रानी के मुखमंडल का ध्यान करना चाहिए। और जब माता रानी के मुखमंडल का ध्यान करे तो ऐसा नहीं कि क्रोधमय स्वरूप का दर्शन कर ले या ध्यान कर ले, ऐसा नहीं। हासम हरे रमणता खिल लोक तीव्र सो कास्त्र शोषण विशोषण मृत्युदारम, मुस्कुराते हुए सुंदर प्रसन्न चित्त माता का दर्शन करना चाहिए कि माता खुश है प्रसन्न है और भाव जगत में जाकर के ऐसा लगे कि माँ अपने कृपा कटाक्ष मुझ पर बरसा रही है, मुझसे लड़ लड़ा रही है। ऐसी भावना के साथ में माता रानी का दर्शन करना चाहिए और ऐसा निवेदन करके साथ में फिर पाद्य अर्घ पूजन की अन्य वस्तु समर्पित करता है इतना तन्मय होकर के, तो आसु माता जी शीघ्र प्रसन्न होती।
0: बिल्कुल। एक आखिरी सवाल डॉक्टर हरलीन आपसे करना चाहूंगी क्योंकि समय की भी कमी है। अच्छा डॉक्टर हरलीन हमारे साथ नहीं है। वान्या जी आपसे एक आखिरी सवाल, जो दर्शक अभी हमें सुन रहे हैं देख रहे हैं उनके लिए ये बता दीजिए, 9 दिनों में जो लोग पूजा करेंगे अगर अपने जीवन में एक सकारात्मक बदलाव वो लाने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगी, क्या करें वो?
2: जी थैंक यू श्वेता जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। तो मैं ये मानती हूँ कि इन 9 दिनों में आप जितना हो सकता है मौन धारण करें, जो भी आप देवी का मंत्र करना चाहते हैं तो वो आप जो है ओम दुम दुर्गाय नमः का जाप कर सकते हैं। 9 दिन जो है हर देवी का जो है आप उनका मंत्र जो है वो कर सकते हैं। आप जो है इस टाइम पर मैनिफेस्ट करें, मौन रखें, अपनी चक्र साधना करें, अपना गुरु मंत्र करें और जितना हो सकता है साइलेंट मेडिटेशन जो है वो अगर आप करते हैं और अपने चक्रास को बैलेंस करें
0: और पूरी भावना के साथ माता को कहते हैं कि एक तरह से आप सरेंडर कर दें तो जो भी आपके मनोकामना है, जो भी आपकी मुराद है वो माता जरूर पूरी करेगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ हम रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गुड न्यूज़।

0: चरण स्पर्श करने के नियम क्या हैं? क्या महिलाओं को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए? क्या लेटे हुए सोए हुए व्यक्ति के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए? क्या है चरण स्पर्श की महिमा और क्या हैं इसके नियम और सावधानियां, जानिए मेरे साथ।
1: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
2: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
6: नवरात्र का इंतजार अब खत्म होने वाला है, शहर शहर माँ का दरबार सजने वाला है। अमरावती में अम्बा माता के दरबार को इस खास पर्व के लिए भव्य तरीके से तैयार किया गया है। 9 दिनों तक यहाँ पर धार्मिक अनुष्ठानों के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। मंदिर परिसर से लेकर आसपास के बाजार तक नवरात्रि की रौनक यहाँ दिखाई देने लगी है।

0: रंग बिरंगी रोशनी से माता का भवन जगमगा रहा है। मंदिर का कोना कोना फूलों की खुशबू से महक उठा है। पूरा दरबार शारदीय नवरात्रि के रंग में रंग चुका है। अमरावती में ये विदर्भ की कुल स्वामिनी अंबा माता का दरबार है, जहां शारदीय नवरात्र को लेकर तैयारियां अब अंतिम दौर में हैं। मंदिर को खास तौर से सजाया गया है और माता के दर्शन के लिए भक्तों के स्वागत की तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं।
1: शारदीय नवरात्र उत्सव के चलते जो है हर देवी के मंदिर में जो है अब तैयारियां शुरू हुई है। हम फिलहाल है विदर्भ की कुल स्वामिनी अमरावती की माँ अम्बे के इस मंदिर में, जहाँ पर आप देख सकते हो कि मंदिर को जो है पूरी तरीके से लाइटिंग से सजाया है। यहाँ पर पूरी तरीके से रोशनाई शुरू कर दी है।
0: मंदिर की साफ सफाई और रंग रोगन के साथ माता के सोने चांदी के आभूषणों को भी चमकाया गया है। माता के श्रृंगार और आरती की तैयारियों के साथ मंदिर के बाहर भी नवरात्रि का रंग नजर आने लगा है। प्रसाद और पूजा सामग्री की दुकानें सज गई हैं। नवरात्र के पहले दिन सुबह होते ही माता के दरबार में अनुष्ठान का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सबसे पहले विधि विधान से माता का भव्य अभिषेक होगा। इसके बाद सोने चांदी के आभूषणों से माता का दिव्य श्रृंगार किया जाएगा और फिर आरती के साथ माँ के जयकारों के साथ पूरा मंदिर गूंज उठेगा।
2: 11 तारीख रविवार सुबह 4:30 बजे से श्री अम्बा देवी का सहस्त्र धारा महाअभिषेक प्रारंभ होगा। धर्म ध्वजारोहण जो साल में दो बार होता है, दोनों प्रतिपदाओं को होता है, वो उस दिन होगा।
0: विदर्भ ही नहीं, महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु अमरावती पहुंचते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में यहां भक्तों की भीड़ बढ़ती है और माता का दरबार जयकारों से गूंज उठता है।
2: भक्तों के लिए दर्शन के लिए मंदिर रोज सुबह 6 बजे से तो रात को 11:30 तक खुला रहेगा। पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए एक विस्तीर्ण मंडप का हमने प्रावधान किया, मंडप वहां पर हमने खड़ा किया है और सभी भक्तों को, महिला एवं पुरुष भक्तों को, मंदिर की जो पूर्व दिशा है उस तरफ से प्रवेश मिलने वाला है।
0: 9 दिनों तक अम्बा माता का ये दरबार भक्ति और आस्था का केंद्र बना रहेगा। हर तरफ एक ही आस होगी, माँ के दर्शन हो, आशीर्वाद मिले और घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। अमरावती से धनंजय सावले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
4: चरण स्पर्श करने के नियम क्या हैं? क्या महिलाओं को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए? क्या लेटे हुए सोए हुए व्यक्ति के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए? क्या है चरण स्पर्श की महिमा और क्या हैं इसके नियम और सावधानियां, जानिए मेरे साथ।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
6: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है
5: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
8: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
9: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चल।
7: नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। चाय पर चर्चा में आपका स्वागत है। देखिए, आसमान की ऊंचाइयों को छूने का हौसला, देश की रक्षा का जज्बा और हर चुनौती के सामने अडिग रहने का नाम है भारतीय वायुसेना। तो आज इंडियन एयरफोर्स के 94वें स्थापना दिवस पर आसमान से जमीन तक वायु वीरों का पराक्रम और हिंद की शक्ति हम आपको दिखाएंगे।
5: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंच श्रीवास्तव। तो देखिए, नवरात्रि का शुभारंभ होने वाला है, ऐसे में देश भर में दुर्गा पूजा और रामलीला की तैयारियां जो हैं वो इस बार कितनी खास हो रही हैं, इसके बारे में आपको बताएंगे। साथ ही रंग बिरंगी पोशाकें, थिरकते कदमों और ढोल के धमाकेदार ताल के साथ गरबा डांडिया का शुरू हो गया है उत्साह, उसके बारे में भी विस्तार से आपके सामने बात होगी।
7: नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। उत्तराखंड से हिमाचल तक ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी के साथ सर्दी के मौसम का आगाज भी हो चुका है। तो मौसम विभाग ने क्या दी है लोकल्स और बाहरी लोगों के लिए चेतावनी, पूरी जानकारी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं अभी तक की बड़ी खबरें।
8: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
7: चारधाम यात्रा के दूसरे चरण में बन रहे हर दिन नए रिकॉर्ड। बद्रीनाथ में अब तक 19,13,000 से अधिक श्रद्धालु का बना नया रिकॉर्ड। नवरात्र से पहले भक्ति के रंग में रंगी झांसी नगरी, ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी से मां दुर्गा का भव्य स्वागत। मां के आगमन पर श्रद्धालुओं ने लगाए जयकारे। सैलानियों से गुलजार हुई पीर की गली, देश भर से बड़ी संख्या में पुंछ पहुंच रहे पर्यटक। ठंडी हवाएं, बर्फीली वादियां और खूबसूरत नजारे का उठा रहे लुत्फ। दुनिया के 50 सबसे बेहतरीन डीप फ्राई व्यंजनों में शामिल मलाई कोफ्ता, टेस्ट एटलस की लिस्ट में मिला 10वां स्थान। चिकन 65 को 32वां और पापड़ी चाट को 40वां स्थान। रणथंभौर में तेंदुए के हमले रोकने का हाईटेक प्लान, लेपर्ड की मॉनिटरिंग के लिए लगाए जाएंगे साइलेंट डिवाइस और हाईट्रैक सेंसर, जानवर आते ही बजेगा अलार्म। ब्रिटेन में दो पैरों वाले डिलीवरी रोबोट पहुंचाएगा पार्सल, सड़कों पर किया गया ट्रायल, 15 किलो उठा सकता है वजन।

0: तो आज हम सलाम करते हैं उन हिंद के वीरों को जो दिन रात देश की सीमाओं की हिफाजत कर हमको महफूज और महसूस कराते हैं कि हम सेफ हैं और अपने शौर्य से तिरंगे का मान बढ़ाते हैं। आज भारतीय वायुसेना अपना 94वां स्थापना दिवस मना रही है और आज के दिन साल 1932 में इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी। ऐसे में आज सुबह गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर उत्सवी माहौल जो है वो देखने को मिला।
1: और देखिये, इस खास अवसर पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह वहां पर मौजूद रहे, जिनकी मौजूदगी में जवानों ने बैंड की धुन पर जब कदम ताल की तो मानो शौर्य गाथा के गान ने लोगों में जोश भर दिया। तो चलिए, आज भारतीय वायुसेना दिवस के 94वें स्थापना दिवस को पूरे गर्व और सम्मान के साथ मनाते हैं, उन वीर जवानों के साथ जिनके हौसले से हमारा आसमान पूरी तरह से सुरक्षित है।
2: आसमान से जमीन तक वायु वीरों का पराक्रम।
3: All are requested to rise as the president's colors are marched.
2: गाजियाबाद से जोधपुर तक हिंद के शक्ति का उत्सव। भारतीय वायुसेना का 94वां स्थापना दिवस पर गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। शौर्य और शक्ति के इस उत्सव की शुरुआत परेड से हुई। वायुसेना के जवानों ने बैंड की जोशीली धुन पर जब कदम ताल किया तो मानो शौर्य गाथा के गान ने लोगों में जोश भर दिया। इस खास अवसर पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह समारोह में शामिल हुए। वायुसेना प्रमुख ने परेड की सलामी ली और जवानों के पराक्रम और अनुशासन की सराहना की।
4: याद कीजिए अपने पूर्वजों को जिनके कारण वायुसेना आज इतनी सुदृढ़ है, और याद कीजिए उन सब वीरों और वीरांगनाओं को जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। ये स्मृतियां हमें राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को सही तरह से निर्वहन करने की प्रेरणा देंगे।
2: इस बार एयरफोर्स डे की थीम है भारतीय वायुसेना, अचूक, अभेद्य, सटीक। परेड से लेकर विमानों की प्रदर्शनी और कर्तव्य शामिल हैं। एयरफोर्स के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब महिला कमांडिंग ऑफिसर के नेतृत्व में महिला सैनिकों ने 303 राइफल के साथ हैरतअंगेज कर्तव्य दिखाए। इसके जरिए भारतीय वायुसेना में नारी शक्ति और महिला सशक्तिकरण का बेहतरीन संदेश दिया गया। इस मौके पर भारतीय वायुसेना की ड्रमर्स टीम ने अपने अनोखे म्यूजिकल कौशल का प्रदर्शन किया। इस विशेष ड्रमर्स टीम में 33 युवा पुरुष और महिला एयर वॉरियर शामिल थे। ये ड्रिल बिना किसी वॉइस कमांड के सिर्फ ड्रम की थाप और उसके लय पर किया गया। बड़ी बात यह है कि पहली बार इस ड्रमर्स ड्रिल का नेतृत्व एक महिला वायु सैनिक कर्मी ने किया। फाइटर जेट्स और मेक इन इंडिया हथियारों ने भी वायुसेना की ताकत की नजीर पेश की। पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल को डिस्प्ले में रखा गया। ब्रह्मोस के साथ ही आकाश डिफेंस सिस्टम, तेजस, सुखोई और प्रचंड भी प्रदर्शनी में शामिल किए गए। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर समारोह का आकर्षण वायु वीरों की परेड और ड्रिल रही तो जोधपुर का आसमान वायु वीरों के हैरतअंगेज प्रदर्शन का गवाह बना। जोधपुर में वायुसेना दिवस पर एयर शो का आयोजन किया गया। भारतीय वायुसेना का नया योद्धा राफेल, वायुसेना की रीढ़ स्वदेशी सुखोई, जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों ने हवा में जांबाजी का प्रदर्शन किया। स्वदेशी फाइटर जेट तेजस का कोबरा मैन्यूवर और राफेल और सुखोई 30 एमकीआई की सोलो उड़ान भी आकर्षण का केंद्र रही। जोधपुर में इन दिनों मल्टीनेशनल मेगा एक्सरसाइज तरंग शक्ति चल रहा है। भारत समेत 8 देशों की वायुसेनाएं इसमें हिस्सा ले रही हैं। इसी तरंग शक्ति युद्धाभ्यास के दौरान वायुसेना दिवस पर जोधपुर में सारंग टीम और सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने भी आसमान में जांबाजी का प्रदर्शन किया। सूर्य किरण एरोबिक टीम के 9 हॉक MK-132 विमानों ने एक साथ उड़ान भरी। आसमान में अलग अलग फॉर्मेशन बनाते हुए वायुवीरों ने हैरत अंगेज करतब दिखाए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: तो चलिए वायु शक्ति के उत्सव के बाद अब बात शक्ति की उपासना यानी कि दुर्गा पूजा की।

0: देखिए बैठी यहाँ हूँ, लेकिन ये विजुअल जैसे चले ना, मैंने कहा कि ये मेरे ही विजुअल है। लास्ट ईयर वडोदरा में हम थे और वहां पर लक्ष्मी विलास पैलेस है और वहां पर ये हेरिटेज गरबा होता है जो आप देख रहे थे, और जो आरती की तस्वीरें देख रही थी, दरअसल जो राजमाता है वो आरती वहां पर करती हैं।
1: अच्छा।
0: और वो भी जितने भी वडोदरा के लोग हैं वो आते हैं तो राज परिवार के साथ ये आरती है,
1: मतलब
0: होती
1: वो
0: है।
1: पहले का कल्चर अभी तक फॉलो करते हैं, ये सबसे खास बात है और सबसे इंटरेस्टिंग होती है जब आप पुराना कल्चर उसे फॉलो करते हैं। ये नहीं कि बस नवरात्रि है तो डांस कर लिया, एंजॉय कर लिया, आप चीजों को फॉलो करते हैं, आगे तक पीढ़ियों को भी बताते हैं कि भाई इस तरीके से पूजा होती थी।
0: बिल्कुल।
2: अच्छा, तो एक सवाल मैं पूछ लूं फिर आप दोनों
0: बताइए।
2: देखो नवरात्रि है तो कितने सारे ऑप्शंस हैं, रामलीला आप देख सकते हो, चलो दशहरा तो आएगा ही, आप डांडिया गरबा खेल सकते हो और आप माँ दुर्गा के पंडाल में पंडाल हॉपिंग कर सकते हो। आपका पर्सनल फेवरेट क्या है, पर्सनल फेवरेट बताओ पहले।
1: गरबा नाइट, गरबा नाइट ऑल टाइम फेवरेट।
2: आपका?
0: मैं तो आंख बंद करके गरबा मैं तो मतलब इससे पहले जब तक मैं वहां नहीं जाती थी गुजरात, तब तक मैं चूंकि दुर्गा पूजा पंडाल मैंने बहुत देखे हैं, जैसे मैंने आपको बताया अभी बचपन से, लेकिन जब से गुजरात जाना मैंने शुरू किया है मुझे ये लगता है कि वहां की वाइब देख करके हाउ कैन यू मिस, मतलब नवरात्रि एंड डांडिया, और आप इसमें ना जाएं एक बार भी। आप तो ऐसे भी सोशल मीडिया पे आ रहे हैं कि अपने लाइफ टाइम में एक बार आप जरूर गुजरात इस समय में आप जाइए तो आपको फील आया कि नवरात्रि होती क्या है। तो दरअसल देखिए शक्ति की आराधना का पर्व, माँ दुर्गा के स्वागत का इंतजार अब खत्म होने वाला है। देश भर में शारदीय नवरात्रि की तैयारियां जोर पकड़ चुकी है, कहीं माँ की प्रतिमा को अंतिम रूप दिया जा रहा है तो कहीं भव्य पंडाल आकार ले रहे हैं।
2: जैसे मैंने आपको कहा बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास इस नवरात्रि, रायपुर से लेके भरतपुर, ओडिशा, कोलकाता, दिल्ली और झांसी तक हर जगह माँ के स्वागत की तैयारियों में आस्था और उत्साह का रंग दिखाई देने लगा है।

0: नौ दिनों तक चलने वाले नवरात्र शक्ति उपासना के वो दिन हैं, जब चारों तरफ माँ का जयकारा सुनाई देता है। माँ की स्तुति के गीत गूंजते हैं और भक्ति की अलख देखते ही बनती है। लेकिन माँ दुर्गा की भक्ति का उत्सव इन मूर्तिकारों की तपस्या के बिना अधूरा है, क्योंकि यही हाथ माँ की मूर्ति को साकार करते हैं। नवरात्रि शुरू होने में अब बस कुछ ही दिन बाकी हैं और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में माँ दुर्गा के स्वागत की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। रायपुर के माना इलाके में महिला कलाकारों से लेकर बुजुर्ग मूर्तिकार तक दिन रात माँ की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। कहीं रंगों की बारीकियां उकेरी जा रही हैं, तो कहीं माँ के चेहरे पर भाव और आंखों में दिव्यता भरने की कोशिश हो रही है। इन कलाकारों के लिए मूर्ति निर्माण सिर्फ एक काम नहीं, बल्कि आस्था, साधना और तपस्या है।
1: या मूर्ति का काम करता हूँ और मूर्ति का काम करते करते हमारा 65 साल हो गया यही काम में। छोटा उम्र से ही काम शुरू किया और प्रभार यहाँ पर 50 साल है। और मूर्ति काम में मेरा सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट और क्या है, ये पैसा अपन ज़्यादा कमाया नहीं इसमें, हमारा रोजी रोटी चल गया, लेकिन मन को बहुत शांति मिला।
0: इस बार 17 अक्टूबर से लेकर 21 अक्टूबर तक दुर्गा पूजा के प्रमुख दिन होंगे। यहाँ ज्यादातर मूर्तियों में माँ दुर्गा को 10 भुजाओं में सिंह पर सवार दिखाया गया है और उनके साथ माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय की प्रतिमाएं भी बनाई गई हैं। क्योंकि चक्षुदान से लेकर बोधन तक पूजा की हर परम्परा खुद में खास होती है, लिहाजा मूर्तियों को बनाने वाले इन कलाकारों के लिए भी हर पल खास है।
2: इस बार खास ये है कि कस्टमर के चॉइस के हिसाब से बना है, कुछ कुछ हम लोग भी अपना क्रिएटिविटी दिखा रहे हैं, कुछ कुछ अपना भी डाल रहे हैं और कस्टमर भी लेके आ रहे हैं मूर्ति, इस टाइप का बनाओ, इस टाइप का वो करो।
3: 12 महीना मूर्ति तो हम बनाते हैं, मिनिमम 10 महीना 11 महीना मूर्ति बनाते हैं, लेकिन एक जैसे एक बच्चा 10 महीना 10 दिन लगता है, मेरे हिसाब से अभी तक के जो मेरा एक्सपीरियंस है 10 महीना 10 दिन ही लगता है, जाके फिर जाके एक मूर्ति कम्प्लीट होता है।
0: अब जरा ये तस्वीरें भी देख लीजिए। राजस्थान के भरतपुर में माँ के स्वागत की तैयारियां जोरों पर हैं। शारदीय नवरात्रि को लेकर मूर्तिकार यहाँ दिन रात मेहनत कर रहे हैं। माँ की प्रतिमाओं को आकार देने के बाद अब उन्हें रंगों से सजाया जा रहा है। ओडिशा के धर्मगढ़ में भी माँ दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। माँ के चेहरे की भाव भंगिमा से लेकर मुकुट और आभूषणों तक हर छोटी से छोटी बारीकी पर खास ध्यान दिया जा रहा है। कुछ ही दिनों बाद यही प्रतिमाएं पंडालों में विराजेंगी और भक्तों की आस्था को जीवंत दर्शन देंगी। पश्चिम बंगाल और खासकर कोलकाता उन जगहों में से एक है जहां दुर्गा पूजा महज उपासना नहीं बल्कि एक महा उत्सव की तरह मनाई जाती है। और इस बार अपनी नाइट लाइफ के लिए मशहूर कोलकाता का पॉश इलाका पार्क स्ट्रीट भी माँ दुर्गा की भक्ति में रंगा नजर आ रहा है। एलन पार्क में दुर्गा पूजा के लिए खास पंडाल तैयार किया जा रहा है, जिसकी थीम भी बेहद खास रहने वाली है।
4: शंकर भगवान का विराट स्वरूप है, शिव तांडव का स्वरूप इसमें देखिए। एक तरफ आप भगवान के जटा में देखिए, जिस समय माँ जब आग में कूद गई थी उसके बाद का दृश्य है, और रुद्र रूप इनका यहाँ पर है और बगल में तांडव करते हुए है। घर में आप यहाँ पर उनके अभिषेक करते हुए रहेगा। सामने आपका आदि शिव का है, यहाँ पांच तरह की एक सगम नंदी पे शिव जी बैठे हैं, पांच तरफ भगवान शिव का ही पूरा तांडव लीला इसमें है।
0: कोलकाता के बाद अब रुख करते हैं देश की राजधानी दिल्ली का। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में माँ दुर्गा के स्वागत के लिए भव्य पूजा पंडाल तैयार किए जा रहे हैं। इनमें चितरंजन पार्क की दुर्गा पूजा की अपनी खास पहचान है। दिल्ली का मिनी बंगाल कही जाने वाले चितरंजन पार्क में हर साल अलग अलग थीम पर भव्य पंडाल सजाए जाते हैं। इस बार भी तैयारियां खूब की जा रही हैं और आयोजन को खास बनाने के लिए आयोजक दिन रात जुटे हैं।
5: अभी हम दिल्ली के चितरंजन पार्क के मेला ग्राउंड में मौजूद हैं, जहां पर बड़ा पंडाल बनाया जाता है और भव्य उत्सव नवरात्रों के दौरान मनाया जाता है। भव्य माता की प्रतिमा स्थापित की जाती है और इसको लेकर के यहां पर तैयारियां शुरू है। आप देख सकते हैं दुर्गा पूजा समिति सीआर पार्क मेला ग्राउंड है, और इसी के तौर पे कई वर्षों से यहाँ मनाया जाता है। 50 साल इस पूजा का हो चुका है और इस बार 51वां मनाया जाएगा। और देख सकते हैं किस तरीके से भव्य जो पंडाल है वो यहाँ पर बनाने का कार्य आपको शुरू हो गया है।
0: अब तस्वीरें झांसी की। यहाँ माँ दुर्गा की प्रतिमा के आगमन पर ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत हुआ। सड़कों पर उमड़ा उत्साह और भक्तों की आस्था बता रही थी कि माँ के आगमन का इंतजार कितना खास है। रायपुर में मूर्तिकारों की मेहनत हो, भरतपुर और धर्मगढ़ में प्रतिमाओं को मिलता अंतिम रूप, कोलकाता में पंडाल और सुरक्षा की तैयारियां, दिल्ली में भव्य पूजा पंडाल या फिर झांसी में माँ के आगमन पर ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत। तस्वीरें अलग हैं, शहर अलग हैं, लेकिन भाव एक है और वो है माँ दुर्गा के स्वागत का उत्साह। दिल्ली से आशुतोष के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: देखिए, नवरात्र का इंतजार अब खत्म होने वाला है। शहर शहर माँ का दरबार सजने वाला है। अमरावती में माँ अंबा माता के दरबार को इस खास पर्व के लिए भव्य तरीके से तैयार किया गया है।
7: और देखिए, 9 दिनों तक यहाँ धार्मिक अनुष्ठानों के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीदें हैं। मंदिर परिसर से लेकर आसपास के बाजार तक नवरात्रि की रौनक बिखरना शुरू हो चुकी है।

0: रंग बिरंगी रोशनी से माता का भवन जगमगा रहा है। मंदिर का कोना कोना फूलों की खुशबू से महक उठा है। पूरा दरबार शारदीय नवरात्रि के रंग में रंग चुका है। अमरावती में ये विदर्भ की कुल स्वामिनी अंबा माता का दरबार है, जहां शारदीय नवरात्र को लेकर तैयारियां अब अंतिम दौर में हैं। मंदिर को खास तौर से सजाया गया है और माता के दर्शन के लिए भक्तों के स्वागत की तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी हैं।
1: शारदीय नवरात्र उत्सव के चलते जो है हर देवी के मंदिर में जो है अब तैयारियां शुरू हुई है। हम फिलहाल है विदर्भ की कुल स्वामिनी अमरावती की माँ अम्बे के इस मंदिर में, जहाँ पर आप देख सकते हो कि मंदिर को जो है पूरी तरीके से लाइटिंग से सजाया है। यहाँ पर पूरी तरीके से रोशनाई शुरू कर दी है।
0: मंदिर की साफ सफाई और रंग रोगन के साथ माता के सोने चांदी के आभूषणों को भी चमकाया गया है। माता के श्रृंगार और आरती की तैयारियों के साथ मंदिर के बाहर भी नवरात्रि का रंग नजर आने लगा है। प्रसाद और पूजा सामग्री की दुकानें सज गई हैं। नवरात्र के पहले दिन सुबह होते ही माता के दरबार में अनुष्ठान का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सबसे पहले विधि विधान से माता का भव्य अभिषेक होगा। इसके बाद सोने चांदी के आभूषणों से माता का दिव्य श्रृंगार किया जाएगा और फिर आरती के साथ माँ के जयकारों के साथ पूरा मंदिर गूंज उठेगा।
2: 11 तारीख रविवार सुबह 4:30 बजे से श्री अम्बा देवी का सहस्त्र धारा महाअभिषेक प्रारंभ होगा। धर्म ध्वजारोहण जो साल में 2 बार होता है, दोनों प्रतिपदाओं को होता है, वो उस दिन होगा।
0: विदर्भ ही नहीं, महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से श्रद्धालु अमरावती पहुंचते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में यहां भक्तों की भीड़ बढ़ती है और माता का दरबार जयकारों से गूंज उठता है।
2: भक्तों के लिए दर्शन के लिए मंदिर रोज सुबह 6 बजे से तो रात को 11:30 तक खुला रहेगा। पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए एक विस्तीर्ण मंडप का हमने प्रावधान किया है, मंडप वहां पर हमने खड़ा किया है और सभी भक्तों को, महिला एवं पुरुष भक्तों को, मंदिर की जो पूर्व दिशा है उस तरफ से प्रवेश मिलने वाला है।
0: 9 दिनों तक अम्बा माता का ये दरबार भक्ति और आस्था का केंद्र बना रहेगा। हर तरफ एक ही आस होगी, माँ के दर्शन हो, आशीर्वाद मिले और घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहे। अमरावती से धनंजय सावले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: गुजरात के वडोदरा में नवरात्रि शुरू होने से पहले ही गरबा शुरू हो गया है। अभी उसके बारे में हम बात भी कर रहे थे। देखिए, विकसित भारत संकल्प गरबा के लिए यहाँ हजारों लोग पहुंचे, जिन्होंने विकसित वडोदरा से विकसित गुजरात के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। खबरों के अनुसार यूनाइटेड वे गरबा मैदान में 46,818 लोगों ने एक साथ गरबा खेल के गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी दर्ज कराया।
4: दरअसल ये भव्य प्री गरबा इवेंट वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और यूनाइटेड वे का साझा कार्यक्रम था, जिसके जरिए स्वच्छ वडोदरा के जनसंकल्प के साथ स्वच्छ और विकसित भारत, नारी शक्ति जैसे मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने का संदेश भी दिया गया।

तालियों की गूंज हो, कदमों में जोश हो और चारों तरफ उत्सवी रंग बरस रहे हों, तो समझ जाइए कि गरबा की शाम सज चुकी है। हर साल की तरह इस बार भी बस शुरू होने को है शक्ति आराधना, माँ दुर्गा की भक्ति का पर्व नवरात्रि। ऐसे में गुजरात में शक्ति की भक्ति का रंग गरबा और डांडिया में खूब बरसता है, जहाँ गरबा के हर कदम में माँ की आराधना है और हर ताल में शक्ति की उपासना। ऐसे में विकसित भारत संकल्प गरबा की थीम पर भव्य प्री गरबा इवेंट जब वडोदरा में हुआ, तो पारंपरिक गरबा की धुन पर घूमते कदमों के बीच माँ शक्ति की आराधना का एक अलग ही रंग दिखा। गरबा की सुरीली तान, पारंपरिक परिधान और उत्साह से भरे कदमों के बीच आस्था, संस्कृति और राष्ट्र निर्माण। इस प्री गरबा इवेंट के माध्यम से विकसित

0: नगर पालिका का ये भव्य सांस्कृतिक जश्न है जिसमें गुजरात के इस शहर की विरासत, स्वच्छता, नारी शक्ति और विकसित भारत 2047 के विजन को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया गया और इसमें लोगों की निशुल्क एंट्री रखी गई। चमचमाती और रंग बिरंगी चनिया चोली और पारंपरिक केड़िया कुर्ता पहने लोग गरबा के संगीत की धुन पर झूमने ही आए थे और जब एक ताल एक लय पर गरबा प्रेमी फिरके तो परंपरा की वो सतरंगी छटा भी देखते ही बन रही थी।
1: सच्चे मन से हम लोग माता जी की श्रद्धा से गरबे खेलने आए हैं और विकसित भारत थीम पे हमें बहुत ही गर्व है।
2: आज फ्री एंट्री था तो सभी दूसरे प्लेयर्स भी ज्वाइंट हुए, तो बस इसी तरह माता जी की आराधना करेंगे हम 9 दिन।
3: जैसे आप सुन सकते हो बैकग्राउंड में किस हिसाब से चल रहा है, पीछे सब स्टूडेंट्स और वो सब विकसित भारत पे डांस और गरबा परफॉर्म कर रहे हैं। माहौल बहुत ही अच्छा हो चुका है, अभी सब लोग एनर्जेटिक है, एवरीवन इज रेडी और मेन तो वही चीज है कि हम लोग यहाँ पे विकसित भारत पे कर रहे हैं।
0: वाकई में हर साल जब गरबा उत्सव का शुभारंभ होता है तो गुजरात की रौनक अलहदा ही रहती है। जाहिर है गरबा गुजराती उत्सवों की खास पहचान है, यही वजह रही कि इस प्री गरबा इवेंट में पहुँचे गरबा प्रेमी नवरात्रि उत्सव के लिए पूरी तरह तैयार है। वहीं गुजरात के जामनगर में भी नवरात्रि से पहले पटेल गरबी युवक मंडल पारंपरिक अंगारा रास की खूब तैयारियां कर रहा है। अंगारा रास की यह अनोखी परंपरा यहां पिछले 70 साल से निभाई जा रही है जिसमें युवा जलते अंगारों के बीच रास करते हैं। इन युवाओं के लिए अंगारा रास माँ का आशीर्वाद समान है।
4: हमारा यहाँ का फेमस रास है वो है मसाल रास है और हम मसाल रास खेलते खेलते जो हमारा स्वस्तिक है वो बनाते हैं और माता जी का शस्त्र बोलते त्रिशूल वो भी बनाते हैं और गरबा के अंत में हम अंगारों पे खेलते हैं और वो भी खुले पैर खेलते हैं, कोई लोशन या कुछ अप्लाई भी नहीं करते हैं और ये हमारे ऊपर माता जी का आशीर्वाद है।
0: जाहिर है गरबा का कोई भी रूप हो, इस परंपरागत नृत्य के हर कदम में भक्ति है, हर ताल में उमंग है और हर घूमते घेरे में गुजरात की संस्कृति की खूबसूरती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
5: और नवरात्र के शुभारंभ के साथ ही रामलीला का उत्साह भी खूब रहता है। हर रामलीला अपने आप में खास होती है। छोटे बड़े शहरों में रामलीला कमेटियां रामलीला मंचन की तैयारियां कर रही हैं। ऐसे में प्रयागराज की रामलीला के साथ जुड़ी ऐतिहासिक विरासत इसे और खास बना रही है।
6: दरअसल ये खासियत यहाँ के प्राचीन राम जानकी मंदिर में श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और माता सीता के मुकुट और आभूषणों से जुड़ी हुई है। तो चलिए ऐसे में आपको इन मुकुटों और आभूषणों की ही खासियत से रूबरू करा देते हैं।

0: शारदीय नवरात्र के शुभारंभ में अब चंद दिन ही बाकी है और पूरे देश में उत्सव के रंग गहराने लगे हैं। एक तरफ माँ की पूजा पंडाल सज रहे हैं तो दूसरी तरफ रामलीला और दशहरे की तैयारियां जोरों पर है। नवरात्र की शुरुआत के साथ ही रामलीला का उत्साह भी बढ़ने लगता है। हर रामलीला अपने आप में खास होती है, लेकिन प्रयागराज की रामलीला के साथ जुड़ी ऐतिहासिक विरासत इसे और खास बना रही है। महंत बाबा हाथीराम पजावा रामलीला के साथ जुड़ी परंपराएं इस रामलीला के गौरवशाली इतिहास की गवाही दे रही हैं। रामलीला से पहले प्रयागराज के प्राचीन राम जानकी मंदिर में श्री राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और माता सीता के मुकुट और आभूषणों की पूरे विधि विधान से पूजा की गई। ये वो आभूषण है जिन्हें रामलीला के किरदार रामलीला के दौरान धारण करते हैं। रामलीला कमेटी के मुताबिक ये मुकुट 100 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। कई दशक पहले इन्हें लाहौर से आए कारीगरों ने तैयार किया था। इन मुकुट को सोने और चांदी के मिश्रण से तैयार किया गया था। बहुमूल्य मुकुटों को बेहद सुरक्षित जगह रखा जाता है। रामलीला शुरू होने से पहले इनकी बकायदा साफ सफाई की जाती है।
1: खास बात है, सर्वप्रथम आपको बता दें कि सोने एवं चांदी से निर्मित मुकुट है, जो कि लगभग 5-6 किलो का मुकुट होता है, जिसको प्रभु श्री राम जो भी स्वरूप बनते हैं उसको अपने सर पर धारण करते हैं और 10 दिनों तक प्रभु श्री राम बनकर वो धारण करते हैं, जो कि मतलब आसान भाषाओं में कहें कि ये आसान नहीं है, क्योंकि 6 किलो का

0: डर करना एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता है। और ये लगभग 200 वर्षों पुराना इतिहास है जो हमारी कमेटी का इतिहास रहा है, बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है। और प्रयागराज के दशहरा में बहुत ही अभूतपूर्व अतुल्य सहयोग भी रहा है हमारे श्री महान बाबा हाथीराम पर्यावरण रामलीला कमेटी का।
1: ये मुकुट बेशकीमती तो है ही, साथ ही इनका धार्मिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। इन मुकुटों को रखने वाले परिवार ने कई पीढ़ियों से इन्हें बड़े जतन से संभाला है। इन आभूषणों की अहमियत सिर्फ सोने चांदी से कीमतों तक की सीमित नहीं है। बरसों तक रामलीला के मंच पर सजने के कारण इन मुकुटों के साथ श्रद्धालुओं की बहुमूल्य आस्था भी जुड़ गई है। प्रयागराज से आनंद राज, गुड न्यूज टुडे।
2: तो चलिए फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे पहाड़ों पर कुछ ही दिनों में बदला मौसम का मिजाज।
3: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
6: और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है चाय पर चर्चा में। आगे बढ़े उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
8: चारधाम यात्रा के दूसरे चरण में बन रहे हर दिन नए रिकॉर्ड, बद्रीनाथ में अब तक 19,13,000 से अधिक श्रद्धालुओं का बना नया रिकॉर्ड। देश भर में नवरात्रि की तैयारियां तेज, कहीं मां की प्रतिमाओं को दिया जा रहा अंतिम रूप, तो गरबा की ड्रेस और साज सज्जा के सामान से सजे बाजार, कारोबारी दिख रहे खुश। सैलानियों से गुलजार हुई पीर की गली, देश भर से बड़ी संख्या में पुंज पहुंच रहे पर्यटक, ठंडी हवाएं, बर्फीली वादियां और खूबसूरत नजारे का उठा रहे लुत्फ। दुनिया के 50 सबसे बेहतरीन डीप फ्राइड व्यंजनों में शामिल मलाई कोफ्ता, टेस्ट एटलस की लिस्ट में मिला 10वां स्थान, चिकन पेसेट को 32वां और पापड़ी चाट को 40वां स्थान। रणथंभौर में तेंदुए के हमले रोकने का हाईटेक प्लान, लेपर्ड की मॉनिटरिंग के लिए लगाए जाएंगे साइलेंट डिवाइस और हाई ट्रैक सेंसर, जानवर आते ही बजेगा अलार्म। तो देखिए पहाड़ों पर मौसम ने अचानक करवट ले ली है, पीछे आप देख सकते हैं किस तरीके से अब बर्फबारी की शुरुआत हो गई है, मैदानी इलाकों में भी आने वाले दिनों में मौसम जो है वो करवट लेगा। और अभी हम बात ही कर रहे थे कि लोगों के पास मतलब बहुत टाइम है, बहुत अच्छी बात है कि सैटरडे संडे हुआ नहीं कि चलो पहाड़ों पे चलते हैं।
6: सैटरडे संडे नहीं, हम तो देख रहे हैं मौसम के हिसाब से वो निकल जाते हैं, बैकपैक करते हैं, आखिर वो कौन सी जॉब कर रहे हैं, हम ये जानना चाह रहे हैं, हमारा इंटरेस्ट
8: भी वही करनी है। मैं भी अभी यही कह रही
6: थी, आराम से वीकेंड आया, लॉन्ग वीकेंड आया, पहाड़ों पर पहुंच गए, लैपटॉप भी ले गए, डोंगल लगा लिया जैसा कि आपने कहा, और वहां से काम कर लिया और बर्फबारी के मजे, उसके बाद बस फोटोग्राफ्स आते हैं, पहाड़ों वाली मैगी, पहाड़ों वाली चाय, और हम यहाँ पर बैठे बैठे आपको दिखाते रहते हैं। तो हमें भी जानना है कि आखिर वो कौन से लोग हैं जो ऐसे वो जाते हैं। लेकिन हाँ, मौसम वाकई बदल रहा है, और एकदम से आपको नहीं लगता है कि थोड़ी जल्दी बर्फबारी भी पहाड़ों पे होने लगी? इतनी जल्दी खबर नहीं आती थी,
9: बहुत जल्दी बर्फबारी हो रही है। और आप देखिए जैसे सुबह उठते हैं, जब जल्दी उठते हैं तो हवा ठंडी लगने लगती है, वहां से एहसास होता है कि हाँ भाई अब ठंड आने लगी।
6: एसी बंद हुआ?
8: एसी बंद हुआ, लेकिन रात को थोड़ी गर्मी भी लगती है, लेकिन जैसे बोला ना कि सुबह अर्ली मॉर्निंग में वो सर्द हवाएं फील होने लगी हैं अब, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा दिल्ली एनसीआर वासियों को पूरी तरीके से एसी बंद करने के लिए, और मेरे जैसे लोगों को जिनको गर्मी बहुत ज्यादा लगती है। तो आपको बता दें कि जो मौसम है वो बदल गया है, और उत्तराखंड से हिमाचल तक ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी ने खूबसूरत नजारा पेश कर दिया है। बद्रीनाथ के पास 18,000 फीट की ऊंचाई पे देवताल बर्फ से पूरी तरीके से ढक चुका है और नजारा बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है।
4: बिल्कुल, आपको बता दें तो वहीं पर चंबा का साच पास भी सफेद चादर में नजर आ रहा है, लेकिन इन मनमोहक तस्वीरों के बीच मौसम विभाग ने बारिश, तेज हवाओं और बर्फबारी की चेतावनी भी जारी की है।
10: चोटियों पर मौसम अपना रंग बदल रहा है, कहीं आसमान से गिरती बर्फ तो कहीं बारिश की फुहार, और इस बदलते मिजाज के साथ पहाड़ों पर सर्दी ने भी दस्तक दे दी है। उत्तराखंड से हिमाचल तक ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, चंबा और हिमाचल के कई पहाड़ी इलाकों में सफेदी छा गई है। ताजा हिमपात के बाद तापमान तेजी से नीचे गया है और ठिठुरन बढ़ गई है। बद्रीनाथ धाम से करीब 52 किलोमीटर दूर देवताल से भारत चीन सीमा के करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद देवताल 4 से 5 फीट बर्फ में ढक गया है। चोटियां हो, रास्ते हो या आसपास का इलाका, नजर जहां तक जाती है सिर्फ सफेद रंग दिखाई देता है। बद्रीनाथ ही नहीं बल्कि हिमाचल के चंबा में 14,500 फीट की ऊंचाई वाला साच पास भी बर्फ से ढक गया है। मंगलवार शाम शुरू हुआ हिमपात देर रात तक जारी रहा, जिसके बाद पूरा इलाका सफेद नजर आया। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में 6 से 8 अक्टूबर जबकि हिमाचल और उत्तराखंड में 5 से 10 अक्टूबर तक बारिश, गरम चमक और तेज हवाओं का अलर्ट दिया है। ऊंची चोटियों पर हिमपात की भी संभावना है, ऐसे में लोग पहाड़ों की खूबसूरती देखने निकल रहे हैं, तो सिर्फ नजारे ही नहीं तैयारियां भी साथ रखें। रवाना होने से पहले मौसम का हाल जानें, प्रशासन की गाइडलाइन देखें और रास्तों की स्थिति जरूर जांच लें, क्योंकि पहाड़ों पर बदलता मौसम खूबसूरत जरूर है लेकिन उतनी ही वहाँ सतर्कता भी जरूरी है। चमोली से कमल एलसलोडे, चंबा से विशाल आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: तो देखिए, उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने के साथ साथ पहाड़ों पर सर्दी ने दस्तक तेज कर दी है। चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट अब महसूस की जा सकती है।
8: बिल्कुल, देखिए बद्रीनाथ धाम में भी ठंड के बीच श्रद्धालुओं की आवाजाही लगातार जारी है। वहीं मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है। देखिए पहाड़ों पर बदलते मौसम और बर्फ की खूबसूरत तस्वीरें।
11: मौसम ने करवट ली तो चमोली की ऊंची चोटियों का रंग भी बदल गया। हल्की बर्फबारी के बाद पहाड़ों पर सफेदी की खूबसूरत परत नजर आने लगी। हेमकुंड साहिब में बर्फबारी ने पूरे इलाके की तस्वीर बदल दी। छत से लेकर आसपास के रास्तों तक बर्फ की सफेदी नजर आ रही है। शांत पहाड़ों के बीच ये नजारा बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है।
12: चमोली में मौसम ने करवट बदल दी है। लगातार जोरदार बारिश इस समय पूरे जनपद में देखने को मिल रही है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, जोशीमठ और चमोली के तमाम जगहों पर इस समय बारिश और ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी का दौर देखने को मिल रहा है। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में बर्फबारी तो निचली जगहों पर बारिश के साथ ही ठंड हो रही है।
11: चमोली में मौसम के इस बदले मिजाज का असर अभी आगे भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि मौसम विभाग पहले ही वीकेंड पर बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर चुका है, यानी वीकेंड पर पहाड़ों में ठंड का असर और बढ़ सकता है। बद्रीनाथ धाम में भी बारिश के बाद ठंड का असर और बढ़ गया है। पहाड़ों पर बदलते मौसम का ये रंग श्रद्धालुओं को भी अलग एहसास दे रहा है।
12: इस समय जो बद्रीनाथ धाम की यात्रा है वो लगातार चरम पर चल रही है। गाड़ियों की कतार हर तरफ देखने को मिल रही है। ऐसे में यात्रा भी चल रही है, मौसम भी बदल रहा है, ठंड के बीच भी लगातार उत्साह जो है श्रद्धालुओं का बना हुआ है। ऐसे में मौसम विभाग का पूर्वानुमान जो है 10 अक्टूबर तक लगातार बारिश और बर्फबारी का दौर पहाड़ी ऊंची चोटियों पे देखने को मिलेगा।
11: वहीं हवाओं के बीच बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। दर्शन के लिए करीब 2 से 3 किलोमीटर लंबी कतार लग रही है, लेकिन ठंड भी भक्तों का उत्साह कम नहीं कर पा रही। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: चलिए हम रुक
13: रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए दुनिया की टॉप 10 डीप फ्राइड डिशेस में शुमार हुआ मलाई कोफ्ता।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
14: बीच सड़क महिला पुलिसकर्मी से भिड़ी महिला, प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने छात्रों से की बदसलूकी, क्लासरूम से सड़क तक फ्रांस में भड़के जेन ज़ी, मां के जज्बे ने जीता दिल, वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए वैभव राव शुक्ला के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
15: चरण स्पर्श करने के नियम क्या हैं? क्या महिलाओं को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए? क्या लेटे हुए सोए हुए व्यक्ति के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए? क्या है चरण स्पर्श की महिमा और क्या है इसके नियम और सावधानियां, जानिए मेरे साथ।
5: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
16: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
13: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
17: गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से
1: देखिए। हमारा बैकड्रॉप देख के आप समझ गए होंगे खाने पीने की बात होने वाली है। दरअसल खबर आपको पहले बता दें कि मशहूर फूड ट्रैवल गाइड है, उसका नाम है टेस्ट एटलस। इसकी लिस्ट में भारत के मलाई कोफ्ता का नाम शामिल हो गया है। टेस्ट एटलस ने दुनिया की 50 बेहतरीन डीप फ्राइड डिशेस की लिस्ट जारी की है। इसमें भारत की लोकप्रिय वेजिटेरियन डिश मलाई कोफ्ता ने 10वां स्थान हासिल किया है। ये इस लिस्ट में वेज और नॉन वेज दोनों डिशेस को शामिल किया गया है। भारत में समारोह, शादी का हो या फिर कोई और मौका हो, जश्न हो, मलाई कोफ्ता हर पार्टी में, हर मेन्यू में आपको मिल ही जाएगा। तो चलिए पहले आप लोगों से पूछ रहे, दीपिका आप पहले बताइए, आप जो कि आप दोनों आई थिंक वेजिटेरियन है,
2: राइट जी,
1: तो आपका फेवरेट डिश कौन सा है?
2: मेरा फेवरेट आता है जहां पर भी पनीर शामिल हो जाता है, चाहे वो कढ़ाई पनीर हो या फिर पनीर को शिमला मिर्च के साथ आप फ्राई कर दीजिए तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। लेकिन मलाई कोफ्ता भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, जैसा पिक्चर्स में नजर आ रहा है ना, सेम वैसा ही बनता है, बहुत ही ज्यादा टेस्टी लगता है, क्योंकि अगर वो बॉल सॉफ्ट है तो ही उसमें मजा
1: आएगा। ये बहुत जरूरी है,
2: बिल्कुल
1: ये बहुत जरूरी है, बनाना बहुत जरूरी है कि अच्छा बना हो, वो बहुत सॉफ्ट हो, बहुत सभी अच्छे लगते हैं, नहीं तो
2: पानी आ गया।
1: आपका फेवरेट?
3: अच्छा, मैं एक ऐसे घर में पैदा हुई जहाँ मेरी मम्मी पंजाबी हैं, और पंजाबी जब भी कभी रेस्टोरेंट में जाते हैं ना तो कहते हैं शाही पनीर दाल मखनी ले आओ, तो वो मेरा ना वो स्टेपल डाइट जैसा हो गया।
1: अच्छा,
3: लेकिन क्योंकि मेरे पापा पहाड़ से हैं तो वहाँ पे होता है, जो दर्शक हमारे उत्तराखंड से, चुड़कानी भात, तो जो ब्लैक सोयाबीन होता है उसका एक डिश बनाया जाता है।
1: अच्छा।
3: एक विशेष तरीके का व्यंजन होता है, तो वो मुझे बहुत पसंद है, मेरी दादी बनाया करती थी उसे, तो डीप फ्राइड भी नहीं होता है, हाई ऑन प्रोटीन भी होता है, तो इट इज माय फेवरेट।
1: क्या बात है, लेकिन ये खबर हमारे लिए और खास करके भारतीयों के लिए ही ओवरऑल ये खबर काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और उसमें भी जो वेजिटेरियंस है उनके लिए बड़ा अच्छा है। देखिए इस डिश को मलाई कोफ्ता को शामिल किया गया है। दीपिका और क्या क्या है?
2: देखिए टॉप 10 में मलाई कोफ्ते को शामिल कर दिया गया है। हालांकि देश के अलग अलग इलाकों में इसकी रेसिपी में थोड़ा बहुत फर्क जरूर होता है, लेकिन आज भी ये सभी का पसंदीदा फूड आइटम है। अब मलाई कोफ्ता की पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक हो गई है। टेस्ट एटलस की लिस्ट में शामिल वेजिटेरियन डिशेज में तो मलाई कोफ्ता अव्वल साबित हुआ है।
4: बिल्कुल सही है, क्योंकि मलाई कोफ्ता एज इंडिया इज इनरिच्ड इन ड्राई फ्रूट्स एंड अरोमास, तो उसमें जो अपन डालते हैं ड्राई फ्रूट्स और उसकी जो ग्रेवी होती है वो उसको बाईपास कर जाती है, फ्राइड तो लगता ही नहीं है, बट इट गिव्स अ रिच अरोमा, और उसमें जो मलाई डलती है वो पता ही नहीं लगता है, तो वो टेस्ट बर्ड्स को, अपन इंडियंस के टेस्ट बर्ड्स को बहुत अच्छा वो करता है।
5: मलाई कोफ्ता एक ऐसी डिश है जो कि हमारे रेस्टोरेंट की लोगों को बहुत पसंद आती है, हर दूसरी टेबल के ऑर्डर पे एक मलाई कोफ्ता होता ही होता है, और मलाई कोफ्ता की कोफ्ते की इतनी जो चाहत है लोगों के अंदर, उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि वो व्हाइट ग्रेवी में होता है एंड इट इज नॉट दैट स्पाइसी, लोगों को पसंद आता है और हर एज ग्रुप के साथ वो चल जाता है और लोग बहुत अच्छे तरीके से उसको खाते हैं।
6: मलाई कोफ्ता ऐसा है कि क्योंकि व्हाइट ग्रेवी के अंदर बहुत ज्यादा लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, तो जब भी क्योंकि मेरे को व्हाइट ग्रेवी, मेरे को पर्सनली मेरे रिकमेंडेशन, मेरे को अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो व्हाइट ग्रेवी में मेरे को मलाई कोफ्ता बहुत पसंद है। कोफ्ता अगर सॉफ्ट हो और उसके अंदर हम लोग की सर्चिंग में रहते हैं कि काजू हमको मिल जाए उसके अंदर, और मतलब उस ये है कि अभी लंच टाइम है, अभी मेरे को लग रहा है कि आपने मतलब मलाई कोफ्ता याद दिला के मेरे को लग रहा है कि आज एक मलाई कोफ्ता हो ही जाए।
3: रोबोट अब सिर्फ इंसानों की तरह चलते नहीं, रिंग में उतरकर मुक्के भी बरसा रहे हैं, और देखिए जो ह्यूमनॉइड रोबोट्स है उसकी खबरें जो हैं आजकल लगातार आ रही हैं, और मैं ये देख रही हूँ कि अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर था, अब तो मुझे लगता है मुझसे आगे बढ़ गया ह्यूमनॉइड रोबोट्स, अब आप देखिए कहाँ पहुँच गए हैं हम, और ऐसा लगता है आने वाले टाइम में जो कि मैक्सिमम काम इंसान करते हैं या फिर करते थे मैं कहूंगी, उसकी जगह रोबोट्स लेने वाले हैं।
2: बिल्कुल, देखिए अलग अलग देशों में ये काफी ज्यादा चल रहा है कि किस तरीके से हम आगे निकल जाए टेक्नोलॉजी में, तो वो अपने अपने स्तर पर रोबोट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं, टेक्नोलॉजीज को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। रोबोट्स आपने देखा होगा एग्जीबिशंस जब होती है तो एग्जीबिशन के दौरान ही रोबोट्स गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, बड़ा दुख लगता है उस कंट्री को या जिसने वो टेक्नोलॉजी बनाई है, तो कोशिशें लगातार यही चल रही है कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जाए, रोबोट्स को उतारा जाए जिसके चलते उनके देश का भी नाम हो और एआई या ह्यूमनॉइड रोबोट्स का भी नाम आगे बढ़े।
3: बिल्कुल, तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से ह्यूमनॉइड रोबोट्स जो है अब काफी ज्यादा सक्षम हो गए हैं, दरअसल सिंगापुर में पहली बार इंसानों ने अपने ह्यूमनॉइड रोबोट्स को आमने सामने उतारा, जहां मशीनों की ताकत और इंसानी कंट्रोल दोनों की ही परीक्षा हुई। तो देखिए, रिंग में उतरे इन रोबो फाइटर्स के हर पंच के पीछे एक इंसानी दिमाग और एक इंसानी फाइटर था। कहीं छोटे कद के यूनिटरी G1 तो कहीं भारी भरकम इंजन AI T-800 और इन रोबोट्स को दूर बैठकर पंच, किक और डिफेंस की कमांड दे रहे थे पायलट। तो देखिए आप भी मेटल और मसल्स की ये इंटरेस्टिंग टक्कर।
2: देखिए, रोबोट्स की दुनिया में लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं जहां पे रोबोट्स फाइट करते हैं, रेसलिंग करते हैं, लोगों का मनोरंजन करते हैं। लेकिन अब ये रोबोट्स केवल फाइट ही नहीं करते बल्कि डिलीवरी करते हुए भी नजर आ रहे हैं। यानी कि एक डिलीवरी बॉय की जगह अब डिलीवरी रोबोट आ गया है। ये देखिए तस्वीरों में आपको नजर आ रही रोबोट इंग्लैंड की सड़कों पर दो पैरों वाला रोबोट घर घर जाकर पार्सल भी पहुंचाने निकला है।
1: बिल्कुल, देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने ये देखा कि किस तरह से गेमिंग में रोबोट्स जो है उनकी एंट्री हो गई है, ह्यूमनॉइड रोबोट्स की, क्योंकि अभी तक जो है हम सिर्फ ये सुन रहे थे और ड्रोन, खास करके हम ड्रोन को देख रहे थे कि मेडिसिन वो डिलीवर करा रहा है ड्रोन, और बाकी जगहों पे सामान की डिलीवरी, खास करके जो डिफिकल्ट टेरियन है वहां पर सामान की डिलीवरी हो रही है। लेकिन ये हैरानी की बात है कि अब इंसान को भी रिप्लेस करता हुआ कुछ आ गया है। दैट इज कुछ इस तरह के दो पैरों वाले रोबोट देखे इसमें, जिसको हम देख रहे हैं, और सीढ़ियों से भी ये चल सकता है, तो काफी इक्विप्ड भी इसको बनाया गया।
2: देखिए आने वाले टाइम में ये होना तो है कि रोबोट्स चीजों को रिप्लेस करेंगे, लोगों को रिप्लेस करेंगे। हालांकि कुछ ऐसी चीज होगी जिस सेक्टर्स में रोबोट्स काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसी जगहों पर रोबोट्स काम कर सकते हैं जहां पर वो डिलीवरी घर पर पहुंचा रहे हैं, या फिर रेस्टोरेंट्स में भी वो काम करते हुए नजर आते हैं, चाहे सीढ़ियां चढ़ना हो, रेस्टोरेंट में खाना लेकर सर्व करना हो।
3: रेस्टोरेंट में खाना सर्व करने वाली वीडियोस मैंने देखी है। हाँ। और अब मुझे लगता है कि क्या एंकरिंग भी करेंगे आने वाले समय में रोबोट्स?
1: नहीं, मुझे नहीं लगता है कि वो
3: रिप्लेसमेंट होने वाला है।
1: नहीं, वो बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसमें देखिए इंसानी जज्बात जो है और अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस,
2: बिल्कुल
1: आई एम श्योर वो कभी शेयर नहीं कर सकते।
3: आई होप ये इस पे काम ना कर रहे हो, स्पेशली चीन इस पे काम ना करे। और आपको बता दें कि अगर इस रोबोट की हम बात करें जो डिलीवरी कर रहा है, सीढ़ियां हो, बड़खाबड़ रास्ता हो, या फिर तंग गलियां जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे थे, ऐसी जगह जहां इंसान ना जाना चाहे या अच्छी तरीके से काम ना कर पाए, तो ये रोबोट हर जगह पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो चलिए आप भी देखिए आयरिस की ये रोबोटिक डिलीवरी।
2: तो चलिए, हमारे लिए वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जा रही है।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।

0: बीच सड़क महिला पुलिसकर्मी से भिड़ी महिला। प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने छात्रों से की बदसलूकी। क्लासरूम से सड़क तक फ्रांस में भड़के जेन ज़ी। मां के जज्बे ने जीता दिल। वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए वैभव राज शुक्ला के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
4: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
4: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
8: देखिए भारतीय टीवी न्यूज मीडिया का एक दौर था जब खबरों की विश्वसनीयता का एहसास न्यूज प्रेजेंटर्स की आवाज से ही हो जाता था। इनमें शमी नारंग की खबरें पढ़ने का जो अंदाज था वो उस वक्त काफी जुदा था। डीडी न्यूज के एंकर रह चुके शमी नारंग इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब देखे जा रहे हैं।
9: बिल्कुल, मुझे तो हमेशा ये सुनाई देता है अगला स्टेशन विकासपुरी है, यानी उनकी आवाज मेट्रो में अक्सर हमें सुनाई देती है। दरअसल बीते रविवार को वो अपने पोते रुशान को पहली बार मेट्रो में सफर कराने के लिए पहुंचे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ट्रेन में जैसे ही उनकी आवाज में रिकॉर्ड किया गया, दरवाजों से हटकर खड़े हों वाला अनाउंसमेंट शुरू हुआ तो नन्ना रुशान काफी ज्यादा हैरान रह गया, क्योंकि उस आवाज को शायद रुशान पहचानता था। उसने ये आवाज पहले कभी सुनी थी, लेकिन ऐसी जगह पर उसने इसे पहले कभी नहीं सुना। इसीलिए थोड़ी देर की हैरानी के बाद वो मुस्कुराते हुए दादू की आवाज कहते हुए इशारा करने लगा, जिसे देखकर सभी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं ये प्यारा सा वीडियो जो कि वायरल है।
8: अब आखिर में उस आवाज का जिक्र करेंगे जिसकी गूंज हमेशा हमारे दिलों में रहेगी। दरअसल कुछ आवाजें वक्त के साथ खामोश जरूर हो जाती हैं, लेकिन उनकी गूंज सदा हमारे साथ रहती है। हम बात कर रहे हैं नाना पाटेकर की, जो कि अब हमारे बीच नहीं रहे। बाकी मतलब
5: आज सोशल मीडिया का दौर है, सुबह सुबह देखा और अभी अम्मी बात कर रहे थे, खबरें हमने देखी, विश्वास नहीं हुआ कि मतलब ऐसा वाकई हो गया है, वो नहीं है हमारे बीच।
9: आपको पता है मैं सुबह आई, मेकअप रूम में थी और दो एंकर्स बात कर रहे थे कि नाना पाटेकर नहीं रहे, तो मुझे लगा कि शायद कुछ और बात कर रहे हैं, कोई फिल्म की बात हो रही है। मैंने तुरंत गूगल पे टाइप किया और मैंने देखा यार, क्योंकि वो कभी बीमार भी नहीं लगे, ही वाज कॉन्स्टेंटली वॉकिंग। तो बड़ा ही मुझे लगता है कि हैरान करने वाली ये खबर है, और वाकई से बॉलीवुड ही नहीं, हर कोई जो है वो दुख में डूब गया है, गमगीन।
5: बिल्कुल, हाल ही में वो पिक्चर्स के प्रमोशंस करते भी नजर आ रहे थे, अक्षय कुमार के साथ भी नजर आ रहे थे, कई ऐसी पिक्चर्स थी उनकी जिन्हें जब आज सुबह खबर मिलती है तो याद किया जाता है उस किरदार के लिए, कि वेलकम में वो नजर आ रहे थे, उदय भाई नजर आ रहे थे, तिरंगा मूवी में नजर आ रहे थे, तो वो सारी चीजें सुबह सुबह याद आ रही।
10: मुझे इनका आई थिंक शायद मूवी का नाम दामिनी था या क्या, जिसमें उन्होंने वो कहा था ना कि हिंदू का खून बताओ और मुस्लिम का क्रांतिवीर, वो मूवी थी जिसमें उन्होंने वो बताया कि बताओ इसमें से खून किसका है, ये हिंदू का खून है, ये मुस्लिम का खून है, वो बहुत एक डायलॉग था वो, जो कि बहुत फेमस हुआ था। तो इनके ना जाने एक से एक इतने किरदार रहे हैं, अगर नाना पाटेकर की हम बात करें, जब से ये मूवीज कर रहे हैं, 5 दशक में हिंदी मराठी में 60 से ज्यादा ये फिल्में कर चुके हैं, तो हैरानी है, सदमे में है पूरा बॉलीवुड इस वक्त, सदमे में है। हमारे बीच वो भले ही नहीं है लेकिन जो विरासत वो पीछे छोड़ गए हैं, अभिनय की दुनिया हमेशा रोशन होती रहेगी उससे।

0: इसी के साथ चाय पर चर्चा में फिलहाल इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी आपसे ठीक शाम 5 बजे चाय और ढेर सारी खबरों के साथ।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए।
2: बीच सड़क महिला पुलिसकर्मी से भिड़ी महिला, प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने छात्रों से की बदसलूकी, क्लासरूम से सड़क तक फ्रांस में भड़के जेन ज़ी, मां के जज्बे ने जीता दिल, वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए वैभव राज शुक्ला के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
3: शरण स्पर्श करने के नियम क्या हैं? क्या महिलाओं को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए? क्या लेटे हुए सोए हुए व्यक्ति के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए? क्या है चरण स्पर्श की महिमा और क्या है इसके नियम और सावधानियां, जानिए मेरे साथ।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
5: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
6: चारधाम यात्रा के दूसरे चरण में बन रहे हर दिन नए रिकॉर्ड्स, बद्रीनाथ में अब तक 19,13,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं का बना नया रिकॉर्ड। देशभर में नवरात्र की तैयारियां तेज, कहीं मां की प्रतिमाओं को दिया जा रहा है अंतिम रूप, तो गरबा की ड्रेस और साज सज्जा के सामान से सजे बाजार, कारोबारी खुश। सैलानियों से गुलजार हुई पीर की गली, देश भर से बड़ी संख्या में पुंछ पहुंच रहे पर्यटक, ठंडी हवाएं, बर्फीली वादियां और खूबसूरत नजारे का उठा रहे लुत्फ।

दुनिया के 50 सबसे बेहतरीन डीप फ्राई व्यंजनों में शामिल मलाई कोफ्ता। टेस्ट एटलस की लिस्ट में मिला 10वां स्थान। चिकन 65 को 32वां और पापड़ी चाट को 40वां। रणथंभौर में तेंदुए के हमले को रोकने का हाईटेक प्लान। लेपर्ड की मॉनिटरिंग के लिए लगाए जाएंगे साइलेंट डिवाइस और हाईटेक सेंसर। जानवर आते ही बजेगा अलार्म।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। आप देख रहे हैं जेएनटी स्पेशल। जेएनटी स्पेशल में आज हम बात कर रहे हैं भारतीय वायुसेना की। इंडियन एयरफोर्स आज अपना 94वां स्थापना दिवस मना रही है। इस खास मौके पर गाजियाबाद के इंडियन एयरबेस में शानदार आयोजन हुआ, जहां हमारे वायुवीरों ने अपना दमखम दिखाया। गाजियाबाद में हिंडन की जमीन पर शानदार सेरेमोनियल परेड हुई, तो वहां से कोई 500 किलोमीटर दूर जोधपुर के आसमान में वायुवीरों ने अपने पराक्रम का शानदार प्रदर्शन दिखाया। जोधपुर में मेहरानगढ़ किले के ऊपर से जब भारतीय वायुसेना के जाबाज गुजरे तो वो नजारा अद्भुत था। तो चलिए आपको दिखाते हैं कि भारत के वायुवीरों ने इस खास दिन को दो अलग अलग शहरों में कितने शानदार अंदाज में मनाया।

ये ताकत है हमारे आसमान के निगहबानों की। ये शक्ति है भारत के भाल पर अपने शौर्य से तिलक लगाने वाले वायु वीरों की। ये उड़ान है 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के सीने में धड़कते दिलों की, जो आज एक स्वर में कह रहे हैं नभः स्पृशं दीप्तम्। गीता के 11वें अध्याय का ये श्लोक भारतीय वायु सेना का आदर्श वाक्य है, जिसका अर्थ है गौरव के साथ आसमान को छूना। पिछले 94 सालों से यही तो करती आ रही है इंडियन एयरफोर्स। भारतीय वायु सेना पिछले 9 दशकों से देश के आसमान में एक ताकतवर प्रहरी की भूमिका निभाती आई है। हिंदुस्तान ये जानता है कि जब तक उसके आसमान पर इन वायु वीरों की नजरें टिकी हैं, तब तक देश की धरती को कोई बुरी नजर छू भी नहीं सकती। एयरफोर्स के इसी जज्बे को सलाम करते हुए हर 8 अक्टूबर को भारतीय वायु सेना दिवस मनाया जाता है। आज गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर वायुसेना के 94वें स्थापना दिवस का भव्य समारोह हुआ। हिंडन एयरबेस पर आज ये गौरवशाली राष्ट्रीय उत्सव बेहद धूमधाम से मनाया गया।

0: मौके पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने खुली जीप में सवार होकर भव्य सेरेमोनियल परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ और नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन भी मौजूद रहे। इसके साथ ही वायुसेना के कई पूर्व और वर्तमान प्रमुख और वरिष्ठ सैन्य कमांडर्स ने भी इस गौरवशाली समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम का आगाज ध्वज फ्लाईपास्ट से हुआ, जिसमें MI-17 1V हेलीकॉप्टर्स ने आसमान में तिरंगा और वायुसेना के ध्वज के साथ फ्लाईपास्ट किया। कार्यक्रम की शुरुआत में एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने देश की सेवा में अदम्य साहस दिखाने और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए वायु योद्धाओं को वीरता पुरस्कार और विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किए। इस मौके पर उन्होंने वायुसेना के स्वर्णिम इतिहास और देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले महावीरों को याद किया।
1: मैं आज इस दिन को स्मरण और आत्मचिंतन के करने के अवसर के रूप में देखता हूं। आज हमें याद करना होगा वो कसम जो हमने एयरफोर्स की वर्दी पहनते समय खाई थी। याद करें इस गौरवशाली सेना का सफर, हमने कहां से शुरुआत की और आज हम कहां खड़े हैं। याद कीजिए अपने पूर्वजों को जिनके कारण वायुसेना आज इतनी सुदृढ़ है, और याद कीजिए उन सब वीरों और वीरांगनाओं को जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। ये स्मृतियां हमें राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को सही तरह से निर्वहन करने की प्रेरणा देंगी।
0: इसके साथ ही आगाज हुआ वायुसेना दिवस की शानदार सेरेमोनियल परेड का, जिसका शुभारंभ इस बार नारी शक्ति के शंखनाद से हुआ। परेड का मुख्य आकर्षण था एयर वॉरियर ड्रिल टीम की टीम शक्ति का शानदार राइफल ड्रिल प्रदर्शन। इसका नेतृत्व पहली बार महिला वायुसेना कर्मियों ने किया। जवानों ने बिना किसी कमांड के 303 राइफल्स के साथ बेहद कठिन और सटीक मूव्स दिखाए। इसी तरह वायुसेना दिवस के इतिहास में पहली बार ड्रमर्स ड्रिल टीम की प्रस्तुति को भी शामिल किया गया था, जिन्होंने अपनी थाप से पूरे एयरबेस को देशभक्ति के जोश से भर दिया।

0: इसके बाद हिंडन के आसमान पर आधुनिकता और इतिहास का संगम नजर आया। टाइगर मॉथ एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरकर वायुसेना के गौरवशाली अतीत की याद दिलाई। आपको बता दें, इस बार वायुसेना दिवस की परेड अचूक, अभेद्य और सटीक थीम पर आधारित थी। लगातार दूसरे साल हिंडन में हुए इस आयोजन में ट्रेडिशन, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी और फ्यूचर की प्लानिंग का बेजोड़ संगम देखने को मिला। हिंडन की जमीन पर स्टैटिक डिस्प्ले में मौजूद आकाश, ब्रह्मोस, तेजस और रफाल ने आज की वायुसेना के पराक्रम और सामर्थ्य की नजीर पेश की। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना ने अपने 94वें स्थापना दिवस को केवल गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे राजस्थान के जोधपुर में चल रहे मल्टी कंट्री हवाई युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2026 की दहलीज तक पहुंचा दिया। इन दिनों जोधपुर के आसमान पर तरंग शक्ति 2026 युद्धाभ्यास में भारत की हवाई ताकत के साथ साथ दुनिया के चुनिंदा मित्र देशों का तालमेल खूब नजर आ रहा है। यहाँ वायुसेना दिवस के मौके पर इंडियन एयरफोर्स की प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबेटिक टीम स्कैट ने आसमान में केसरिया, सफेद और हरे रंग के धुएं के साथ तिरंगा फॉर्मेशन बनाया। इसके अलावा उन्होंने हवा में डायमंड, तेजस और वाई जैसे सिग्नेचर फॉर्मेशंस बनाकर अपनी अचूक और अद्भुत सटीकता का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही स्वदेशी एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स से सजी सारंग टीम के 5 हेलीकॉप्टर्स ने हवा में एक साथ क्रॉसओवर और बेहद करीबी साहसिक पैंतरे दिखाकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। इस तरह जहां हिंडन में पारंपरिक परेड और स्वदेशी सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन हुआ, वहीं जोधपुर में भारतीय वायुसेना ने तरंग शक्ति युद्धाभ्यास के दौरान आई इस वर्षगांठ को इस एयर शो के जरिए और खास बना दिया। 94वें वायुसेना दिवस के मौके पर इंडियन एयरफोर्स ने इस समारोह, परेड और एयर शो के जरिए अपनी ताकत, अनुशासन, आत्मनिर्भरता और स्वर्णिम इतिहास के रंगों से हिंडन की जमीन और जोधपुर के आसमान को सजा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गाजियाबाद में आज वायुसेना दिवस का एयर शो नहीं हुआ और जोधपुर में तरंग शक्ति युद्धाभ्यास के बीच ही इस दिन को खास बनाया गया। लेकिन वायुसेना दिवस का समारोह अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अब बारी है वायुसेना दिवस के वाराणसी चैप्टर की। गाजियाबाद में परेड और ग्राउंड डिस्प्ले के बाद अब एयरफोर्स जनता के लिए बड़ा और मुख्य एयर शो वाराणसी में करने वाली है। इतिहास में यह पहली बार होगा जब वायुसेना दिवस का मेगा एयर शो वाराणसी में गंगा नदी के ऊपर किया जाएगा। देखिए, 24 से 26 अक्टूबर के बीच वाराणसी में एयर शो और फ्लाईपास का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 25 अक्टूबर को मुख्य एयर शो का आयोजन होगा। बताया जा रहा है कि एयर शो के दौरान वाराणसी में 80 घाट से लेकर नमो घाट तक गंगा नदी के ऊपर एयरफोर्स के विमान करतब दिखाते हुए नजर आएंगे। मेगा एयर शो में 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर शामिल होंगे। राफेल, तेजस और सूर्यकिरण एरोबेटिक्स टीम आसमान में जांबाजी का अद्भुत प्रदर्शन करेगी। काशी के आध्यात्मिक पहचान को दर्शाने के लिए आसमान में विशेष त्रिशूल फॉर्मेशन की भी फॉर्मेशन बनाया जाएगा। सुखोई, राफेल और तेजस जैसे आधुनिक फाइटर जेट्स मिलकर इस डिस्प्ले को आकार देंगे। बताया जा रहा है कि ये एयर शो जो है लगभग 90 मिनट का होगा और 24 से 26 अक्टूबर के बीच रोजाना 12 बजे के करीब इसे आयोजित किया जाएगा। नमो घाट से लेकर 80 घाट के बीच गंगा किनारे लाखों लोग इस नजारे को लाइव देख सकेंगे। शानदार भविष्य और उजले वर्तमान के झलक के बाद अब चलते हैं स्वर्णिम इतिहास की ओर। भले ही ऑपरेशन सिंदूर हमारी वायुसेना के पराक्रम का सबसे ताजा उदाहरण है, लेकिन यह भी सच है कि आजाद भारत के पहले युद्ध से लेकर अब तक लड़े गए सभी युद्धों में इंडियन एयरफोर्स ने अहम भूमिका निभाई है। खासतौर पर 1971 और फिर 1999 के करगिल वॉर में हमारी वायुसेना ने आर्मी के साथ मिलकर पाकिस्तान को युद्ध में घुटनों पर ला दिया था। आइए आपको दिखाते हैं स्वर्णम इतिहास की वही यादें जिन्हें देखकर आप गर्व से भर उठेंगे।

0: आसमानों के रक्षक हैं, राष्ट्र के अरमानों के संरक्षक हैं। चाहे वो आसमान की अनंत ऊंचाइयां हो या फिर चुनौतियों की असीम गहराइयां, भारत के वायु वीरों के शौर्य के सामने दुनिया का कोई दुश्मन टिक नहीं सकता। जब जब शत्रु के कपट ने मातृभूमि को मैला करने का दुस्साहस किया, भारतीय वायुसेना ने तब तब अपने शौर्य और साहस से दुश्मन के इरादों को राख में बदल दिया। आजाद भारत के पहले युद्ध से लेकर कारगिल की लड़ाई और ऑपरेशन सिंदूर तक भारत के वायु वीरों ने हर मोर्चे पर अहम भूमिका निभाई है।
1: आजादी के तुरंत बाद पाकिस्तान ने अपने कबाइलियों को और रजाकारों को पाकिस्तान आर्मी के प्रोटेक्शन में कश्मीर में घुसाने की कोशिश की। ऐसे में इंडियन एयरफोर्स को तुरंत एक्टिव होना पड़ा। हमारी एयरफोर्स के जो डकोटा विमान थे, उन्होंने बखूबी दिल्ली से और जम्मू से इंडियन आर्मी के ट्रूप्स को एयरलिफ्ट करके श्रीनगर तक पहुंचाया। इसी तरह से इंडियन एयरफोर्स के जो फाइटर विमान थे उस वक्त, वापिती, लाइसेंडर, इन्होंने लगातार जो कबेली थे या जो रजाकार थे उनके पोस्ट पर हमला किया और उनको मजबूर किया कि वह भारत की भूमि छोड़कर पीर पंजाल के उस तरफ पाकिस्तान लौट जाएं।
0: भारतीय वायुसेना के पराक्रम की पहली परख तब हुई जब आजाद हिंदुस्तान ने अपना पहला युद्ध लड़ा 78 साल पहले 1947 के अक्टूबर महीने में, जब पाकिस्तान के कबायली लड़ाकों ने जम्मू और कश्मीर राज्य की सीमा को पार करने का दुस्साहस किया था। तब भारतीय वायुसेना की नंबर 12 स्क्वाड्रन ने पालम से पहली सिख रेजिमेंट की बटालियन को एयरलिफ्ट करके श्रीनगर की कठोर और धूल मिट्टी भरी हवाई पट्टी पर उतारने का चुनौती भरा काम किया था। इसके एक सप्ताह के भीतर ही वायुसेना के नंबर 7 स्क्वाड्रन के टेम्पेस्ट वायुयान शेरतांग की लड़ाई में निर्णायक भूमिका में आ गए और वहां घुसपैठियों को आगे बढ़ने से रोक दिया गया।
1: वायुसेना का गठन आज ही के दिन यानी 8 अक्टूबर को 1932 के दिन हुआ था। तब से लेके अब तक वायुसेना काफी सारे युद्धों में भाग ले चुकी है, जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध। उसके बाद जैसे ही देश आजाद हुआ तो 1947-48 का जम्मू एंड कश्मीर ऑपरेशन, जिसमें हमारी वायुसेना ने पाकिस्तान के विरुद्ध एक्टिव रोल अदा किया। 1962 का युद्ध चीन के साथ, 1962 के युद्ध के दौरान पॉलिटिकल रीजन से यह डिसाइड किया गया कि वायुसेना की फाइटर और बॉम्बर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन वायुसेना की ट्रांसपोर्ट और हेलीकॉप्टर विंग्स ने बखूबी इंडियन आर्मी का साथ दिया। 1965 के जंग में इंडियन एयरफोर्स ने आगे बढ़ते हुए पश्चिम में पूरे बॉर्डर पर इंडियन आर्मी को क्लोज एयर सपोर्ट दिया।
0: के बाद पाकिस्तानी सेना ने 1965 में जम्मू कश्मीर पर कब्जे के लिए दूसरी बार हमला करने की हिमाकत की थी, लेकिन इस बार फिर उसे मुंह की खानी पड़ी। 1965 में भारतीय वायुसेना ने न केवल उसके लड़ाकू विमानों को मार गिराया बल्कि कई सैन्य बेसों को ध्वस्त कर दिया। हालांकि इस युद्ध में भारतीय वायुसेना को भी काफी नुकसान हुआ, लेकिन हमारे वीर जवानों ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाकर रख दी। इसके बाद तीसरा मौका 1971 में आया जब पाकिस्तान के दुस्साहस ने एक बार फिर अपना सर उठाया। 3 दिसंबर 1971 को युद्ध की शुरुआत हुई और पाकिस्तानी वायुसेना ने पूरी प्लानिंग के साथ इंडियन एयरफोर्स के श्रीनगर, अमृतसर और पठानकोट एयरबेसों पर हमला बोल दिया। उस वक्त पाकिस्तान को यह एहसास नहीं था, लेकिन आने वाले 2 हफ्ते उसकी कुंडली पर बेहद भारी पड़ने वाले थे, क्योंकि उसके बाद भारतीय वायुसेना अपने पूरे दमखम के साथ पाकिस्तानी बेसों को नेस्त नाबूद करने में जुट गई। उन्नीस सौ 1971 के युद्ध में भारतीय वायुसेना के विमानों ने बांग्लादेश के ऊपर 12,000 से ज्यादा उड़ानें भरी थी। भारतीय वायुसेना ने इस लड़ाई में पाकिस्तान के 94 विमानों को मार गिराया था। चाहे लोंगेवाला की लड़ाई हो या पूर्वी पाकिस्तान में गवर्नर हाउस पर बमबारी, बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराने में भारतीय वायुसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो वहीं भारतीय वायुसेना की मदद से भारत की थल सेना ने 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। दुनिया के सबसे दुर्गम युद्ध क्षेत्र में चलाए गए इस ऑपरेशन के जरिए भारत के जांबाजों ने पाकिस्तान के जबड़े से सियाचिन को छीन लिया था। इस ऑपरेशन के बाद भारत के कब्जे में पूरा का पूरा सियाचिन ग्लेशियर आ गया था। तब से लेकर आज तक सियाचिन की चोटियों पर भारत का परचम लहरा रहा है।

0: 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर कोड नेम के साथ पाकिस्तानी सेना के खिलाफ ऐसा विध्वंसक अभियान चलाया था जिसके जख्म आज तक पाकिस्तान भुला नहीं पाया है।
1: ९९ में जब कारगिल का युद्ध हुआ तो उस वक्त हमारी एयरफोर्स को यह रोल दिया गया कि हम तुरंत आगे बढ़कर पाकिस्तान की जो ट्रुप्स हैं, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जो डगआउट पोजीशन है, गन पोजीशन है, उन पर बमबारी करें। इसके लिए MiG-21 ने बेहतरीन हाई ऑल्टीट्यूड बॉम्बिंग की। सबसे बड़ी बात है कि हमारे दूसरे विमान जैसे कि MiG-27 और Mirage-2000 ने बहुत ही एक्यूरेसी के साथ लेजर गाइडेड बॉम्ब गिराए जो महज प्लस माइनस 10 मीटर की एक्यूरेसी से पाकिस्तान आर्मी के जो कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट थे, अंडरग्राउंड बंकर्स थे, उसके अंदर घुसकर फटे। कुल मिलाकर नतीजा ऐसा हुआ कि इंडियन एयरफोर्स के हमलों की वजह से कई जगह पर NLI यानी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के यहां से लगातार पाकिस्तान में फोन हो रहे थे उनके GHQ में कि इंडियन एयरफोर्स के जहाज लगातार उन पर हमला कर रहे हैं।
0: भारत की आर्मी और एयरफोर्स के पराक्रम ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया और आखिरकार 26 जुलाई को भारत की जीत हुई। इसके बाद भी जब जब मौका आया भारतीय वायुसेना ने देश के दुश्मनों पर अपने पराक्रम से ऐसी करारी चोट की कि आतंक के सपोले अपने बिलों समेत जमीन के कई गज नीचे दफन हो गए और भारत के शत्रु बिलबिला के रह गए। बालाकोट के जरिए भारतीय वायुसेना ने पुलवामा के 40 सपूतों की शहादत का बदला लिया था। 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 विमान रात के अंधेरे में नियंत्रण रेखा को पार कर पाकिस्तान के पूर्वोत्तर इलाके में खैबर पख्तूनख्वा पहुंचे और बालाकोट में जैश ए मोहम्मद की ट्रेनिंग कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। बालाकोट स्ट्राइक में बड़ी संख्या में जैश ए मोहम्मद के आतंकी, उनको ट्रेनिंग देने वाले संगठन के बड़े कमांडर और फिदायीन हमलों के लिए तैयार हो रहे आतंकी मारे गए थे। और भारतीय वायुसेना के साहस की महागाथा का सबसे ताजा अध्याय सिंदूरी शौर्य की स्याही से लिखा गया। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारतीय वायुसेना के पराक्रम की वो तस्वीर देखी जिसकी कल्पना भारत के शत्रुओं ने अपने दुस्साहस भरे सपनों में भी नहीं की थी।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन एयरफोर्स को दो काम दिए गए थे। एक,

0: हैंगर्स थे और सबसे बड़ी बात उनके जो रेडार्स थे उस पर हमला करना। इन दोनों कार्रवाइयों को इंडियन एयरफोर्स ने बखूबी अंजाम दिया। सिंदूर के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने लॉन्ग रेंज S-400 जमीन से हवा पे मार करने वाली मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए 300 किलोमीटर की दूरी से पाकिस्तान एयरफोर्स के एक अवाक यानी एयरबॉर्न कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भी नेस्तनाबूद किया।
1: समझिए कि चाहे देश के लिए शत्रु से लोहा लेना हो या फिर आपदा के समय राहत का फरिश्ता बनकर मदद पहुंचानी हो, हर मौके पर भारत के वायुवीर देश के लिए अपने फर्ज को शिद्दत से निभाते आए हैं। राष्ट्र रक्षा और राष्ट्र सेवा के मोर्चे पर हमारी वायु सेना के योगदान से जुड़े उन्हीं स्वर्णिम पलों को देश आज फिर याद कर रहा है। वायु सेना दिवस के मौके पर हिंदुस्तान के वायु योद्धाओं को गुड न्यूज़ टुडे का सलाम।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आ

0: नहीं चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर, सच्ची खबर।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
1: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: चारधाम यात्रा के दूसरे चरण में बन रहे हैं हर दिन नए रिकॉर्ड्स। बद्रीनाथ में अब तक 19,13,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं का बना नया रिकॉर्ड। देशभर में नवरात्र की तैयारियां तेज, कहीं मां की प्रतिमाओं को दिया जा रहा है अंतिम रूप, तो गरबा की ड्रेस और साज सज्जा के सामान से सजे बाजार, कारोबारी खुश। सैलानियों से गुलजार हुई पीर की गली, देश भर में बड़ी संख्या में पुंछ पहुंच रहे पर्यटक, ठंडी हवाएं, बर्फीली वादियां और खूबसूरत नजारे को उठा रहे हैं लुत्फ। दुनिया के 50 सबसे बेहतरीन डीप फ्राई व्यंजनों में शामिल मलाई कोफ्ता, टेस्ट एटलस की लिस्ट में मिला 10वां स्थान, चिकन 65 को 32वां और पापड़ी चाट को 40वां। रणथंभौर में तेंदुए के हमले रोकने को हाईटेक प्लान, लेपर्ड की मॉनिटरिंग के लिए लगाए जाएंगे साइलेंट डिवाइस और हाईट्रैक सेंसर, जानवर आते ही बजेगा अलार्म।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम।
2: आज भारतीय वायुसेना का 94वां स्थापना दिवस, गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर मुख्य समारोह का आयोजन। वायुसेना दिवस परेड में IAF की ऑपरेशन क्षमता, अनुशासन और शानदार विरासत का प्रदर्शन। हिंडन एयरबेस पर भव्य एयर शो, आसमान वायुसेना के विमानों का दमखम। वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने दिखाई जाबाजी, फ्लाईपास में हेलीकॉप्टर भी शामिल। वायुसेना दिवस के इस साल की थीम है भारतीय वायुसेना, अचूक, अभेद, सटीक। राजस्थान की धरती पर वायुवीरों का अभ्यास जारी, तरंग शक्ति 2026 के दूसरे चरण का रोमांच। जोधपुर एयरबेस पर भारतीय वायुसेना की सूर्यकिरण एरोबैटिक का टीम ने भरी उड़ान, आसमान में हैरतअंगेज करतब। एयरफोर्स में लड़ाकू विमानों का भी शौर्य प्रदर्शन, सारंग हेलीकॉप्टर ने अभ्यास में हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश के भदोही में संपन्न हुआ 4 दिवसीय कारपेट एक्सपो, सस्ते कालीन की रही डिमांड, 500 करोड़ का कारोबार। कालीनों में महाकुंभ में 65 देशों के 447 फॉरेन बायर्स और उनके प्रतिनिधि शामिल हुए। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 का प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन, 10 अक्टूबर तक नई दिल्ली के यशोभूमि में चलेगा सम्मेलन। प्रधानमंत्री ने कहा मोबाइल फोन ने भारत के कंटेंट क्रिएशन में क्रांति ला दी है, लेकिन फोन और नेटवर्क की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता। दुनिया भर की बड़ी टेक और टेलीकॉम कंपनियां, स्टार्टअप और इंडस्ट्री के बड़े नाम ले रहे हैं हिस्सा। IMC की थीम स्किल विदाउट बाउंड्रीज है, 5G, 6G, AI, LOT और सैटेलाइट कम्युनिकेशन और दूसरी नई टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन। IMC 2026 के इवेंट में जाकर नई टेक्नोलॉजी को समझने और डेमोंस्ट्रेशन देखने के लिए लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। झांसी में शारदीय नवरात्र के पावन पर्व की रौनक, आस्था और भक्ति के रंग में रंगे श्रद्धालु। अब दुर्गा उत्सव समिति झोकन बाग का शहीद पार्क की ओर से मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा का जयकारों से स्वागत। 42 सालों से चली आ रही अनोखी परंपरा, नवरात्र से पहले ही होती है मां दुर्गा की आगमन, माता के दर्शन करने के लिए दूर दूर से पहुंचते श्रद्धालु। गोरैया में रामलीला से पहले निकली शिव बारात, देवी देवताओं की मनमोहक झांकियां, लोगों ने पुष्प वर्षा की। भक्ति गीतों पर जमकर झूमे श्रद्धालु, शिव बारात में ब्रह्मा, विष्णु और महेश नजर आए। नवरात्र से पहले गुजरात में जामनगर में नौजवान अंगारा रास की तैयारी में जुटे हुए हैं। हाथों में जलते हुए अंगारे लेकर प्रैक्टिस। अंगारा रास गरबा और रास उत्सव में किया जाने वाला साहसिक नृत्य माना जाता है। कलाकार हाथों में जलते हुए अंगारे पकड़ते हैं। गुजरात में वडोदरा नगर निगम ने नवरात्र से पहले किया विकसित भारत संकल्प गरबा के आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने शिरकत की। पारंपरिक गरबा की धुन पर घूमते कदमों के बीच शक्ति आराधना हुई। ओडिशा के धर्मगढ़ में दुर्गा पूजा की तैयारियां। कोलकाता से आए कारीगर पारंपरिक बंगाली शिल्प कौशल का आयोजन करके मूर्तियां बना रहे हैं। कोलकाता में दुर्गा पूजा को लेकर उत्साह जबरदस्त। सैकड़ों लोग क्रिसमस के लिए मशहूर पार्क स्ट्रीट कोलकाता के सबसे बड़े दुर्गा पूजा समारोह में मेजबानी करेगी। केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा की ओर सुरक्षित व्यवस्था बनाने की तैयारी में जुटा प्रशासन। श्रद्धालुओं से अभद्रता करने वाले संचालकों के खिलाफ लिया जा रहा है एक्शन। बिना लाइसेंस और अनफिट पशुओं पर कार्रवाई। त्योहारी सीजन में रेलवे ने गुड न्यूज दी है। यात्रियों की ज्यादा भीड़ को देखते हुए चलाई जा रही है कई स्पेशल ट्रेन। पुणे मुंबई अहमदाबाद वलसाड अजमेर जोधपुर और कोटा से स्पेशल ट्रेन का परिचालन। नवरात्रि से पहले गरबा ड्रेस की मांग बढ़ी। बाजार में महिलाओं में नजर आ रही है उत्साह। महिलाएं खुद गरबा ड्रेस डिजाइन करके सप्लाई और बिक्री करने में जुटी हुई हैं। कॉटन के साथ गुजराती और कठियावाड़ी पैटर्न को मिलाकर नए लुक तैयार किए जा रहे हैं। युवतियां ड्रेस पहनकर घूमकर लहंगे का घेर और लुक भी चेक करती हुई नजर आई। 9 दिन के गरबा के लिए खर्च बचाने की कई युवतियां ड्रेस किराए पर ले रही हैं, जिससे बाजार में रौनक बढ़ी। बद्रीनाथ धाम में अब तक 19,13,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंच चुके हैं। यात्रा अभी भी जारी है। कड़ाके की ठंड और मौसम अलर्ट के बावजूद बद्रीनाथ में भक्तों का उत्साह जबरदस्त। पितृपक्ष के चलते देशभर में श्रद्धालु बद्रीनाथ के ब्रह्म कपाल में पिंड तर्पण करने के लिए पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि बद्रीनाथ के ब्रह्म कपाल में पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। आमतौर पर बारिश के बाद यात्रा धीमी पड़ जाती है, लेकिन इस बार रिकॉर्ड भीड़ देखने को मिल रही है। बॉलीवुड फिल्म अभिनेत्री रानी मुखर्जी ने आज बद्रीनाथ धाम पहुंचकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन पूजन किए। रानी मुखर्जी ने भगवान बद्री विशाल की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की, प्रसाद ग्रहण किया। पितृपक्ष में मॉरिशस इटली इंग्लैंड समेत कई देशों के श्रद्धालु नजर आए। मॉरिशस के करीब 250, इटली से 50 और इंग्लैंड से 20 श्रद्धालु ऑनलाइन शामिल भी हुए। विदेशों में बैठे श्रद्धालुओं ने अपना नाम गोत्र और पितरों के नाम लेकर संकल्प किया। गुजरात के अमरेली में शेरनियों के कुएं में गिरने की 2 अलग अलग घटनाएं निकलकर सामने आई। जाफराबाद और धारी में वन विभाग ने रेस्क्यू करके दोनों को बाहर निकाला। लेपर्ड की मॉनिटरिंग करने के लिए रणथंभौर और टाइगर रिजर्व में लगाए जाएंगे साइलेंट डिवाइस और हाई टेक सेंसर। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में 170 से ज्यादा लेपर्ड मौजूद हैं। आए दिन तेंदुआ रिजर्व से निकलकर आबादी वाले इलाकों में पहुंच जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में 26वां तेंदुआ पिंजरे में कैद 40 पिंजरों से रेस्क्यू अभियान जारी। छत्तीसगढ़ में भिलाई के मैत्री बाग में मनाया जा रहा है वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह। आज हिंडन एयरबेस पर देखिए 1960 के दशक की क्रीम रंग की लेफ्ट हैंड ड्राइव फोर्ड सैलून। नागपुर में चलती स्कूल बस में लगी अचानक आग। स्कूली बच्चों को लोगों ने बचाया। बस में थे करीब 40 बच्चे। उधम सिंह नगर में बारिश ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। मंडी में बिकने आया धान बारिश में बहा। 18,000 फीट की ऊंचाई पर देवताल 4 से 5 फीट बर्फ से ढका हुआ है। सीमा दर्शन योजना के तहत परमिट लेकर लोग देवताल पहुंच रहे हैं। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा में गुरुवार को भारी ओलावृष्टि हुई। अचानक मौसम बिगड़ने के चलते इलाके में तेज ठंड। बांदीपुरा में मौसम ने करवट ले ली। तेज ओलों ने लोगों को घरों में रहने को मजबूर किया। भारी ओलावृष्टि के चलते बांदीपुरा में सामान्य गतिविधियां प्रभावित हुई हैं। लोग बदले मौसम का आनंद ले रहे हैं। बांदीपुरा में अचानक आसमान में बड़े बड़े ओले गिरने लगे। कुछ ही देर में मौसम का मिजाज पूरी तरीके से चेंज हो गया। बांदीपुरा में गुरुवार को तेज ओलावृष्टि ने दस्तक दी। खराब मौसम के चलते इलाकों में लोगों की दिनचर्या प्रभावित। 5 नवंबर को रिलीज से पहले फिल्म रामायण का 4 नवंबर को पेड प्रीव्यू रखा जाएगा। दर्शकों को फिल्म रिलीज के एक दिन पहले ही बड़े पर्दे पर देखने का मिलेगा मौका। अजय देवगन की दृश्यम 3 ने बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाई। फिल्म ने 6 दिनों में 232 करोड़ और दुनिया भर में 350 करोड़ का आंकड़ा पार किया। आलिया भट्ट स्पेन में कर रही है वेकेशन, एंजॉय, खूबसूरत तस्वीरें शेयर की। सिनेमाघरों में शानदार प्रदर्शन के बाद भंडारी अब ओटीटी पर दे चुकी है दस्तक। हाइप का वेवर्स कॉन फेस्टिवल पहली बार होने जा रहा है भारत में। नहीं रहे दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर, 75 साल की उम्र में निधन। गोवा में ली अंतिम सांस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया शोक, कहा पीढ़ियों तक नाना पाटेकर की एक्टिंग याद रखी जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा साफगोई और निडरता नाना पाटेकर की पहचान थी। दूसरों की मदद करने में वो हमेशा आगे रहते थे। अक्षय कुमार ने एक्स पर लिखा नाना पाटेकर बेमिसाल थे, उनकी याद में हमेशा संजो कर रखूंगा। रवि किशन ने शोक जताते हुए लिखा नाना पाटेकर भारतीय सिनेमा के महान कलाकार थे, इस स्टारडम से वो कोसों दूर रहे। दो पैरों वाला रोबोट घर घर पार्सल पहुंचा रहा है। यूरोप में ऐसा पहला ट्रायल शुरू हुआ। आयरिस रोबोट सीढ़ियों और उबड़ खाबड़ रास्तों पर चल सकता है। ये 15 किलो तक का पार्सल ले जा सकता है। रोबोट 6 किलोमीटर प्रति घंटे की तक का चल सकता है। जरूरत पड़ने पर इसे दूर से भी मॉनिटर किया जा सकता है। कंपनी का कहना है कि रोबोट इंसानों की नौकरी खत्म करने के लिए नहीं है, ये डिलीवरी के आखिरी हिस्से में मदद करेगा। कंपनी भविष्य में रोबोट लॉकर और ड्रोन को एक साथ इस्तेमाल करने की योजना दिखा रही है। पेरू में लीमा के सैन मार्कोस स्टेडियम के बाहर बीटीएस फैंस की लाइन 1 किलोमीटर से भी ज्यादा लगी हुई है। दक्षिण कोरियाई सुपर ग्रुप बीटीएस पहली बार पेरू में लाइव कॉन्सर्ट कर रहा है। बीटीएस को लाइव देखने के लिए बोलीविया से भी फैंस पेरू पहुंच गए। स्टेडियम के बाहर भारी भीड़। लीमा में बीटीएस के शो 9 और 10 अक्टूबर को भी होने जा रहे हैं। इन कॉन्सर्ट के लिए अलग अलग देशों से हजारों फैंस पहुंच रहे हैं। कॉन्सर्ट शुरू होने के कई घंटे पहले सैन मार्कोस स्टेडियम के बाहर लंबी कतारें। सिंगापुर में इंसानों ने रिमोट से ह्यूमनॉइड रोबोट लड़ाए। रोबोट्स ने मुख्य और दांव पेच दिखाए। टूर्नामेंट में हल्के और भारी वजन वाले रोबोट उतरे। यूनिट्री जीवन और इंजन एआई T800 ने रिंग में दमखम दिखाया। इन रोबोट्स को पायलट रिमोट कंट्रोल से चला रहे थे। वो लाइव मुकाबले में पंच किक और डिफेंस का निर्देश दे रहे थे। आयोजकों के मुताबिक एसी फाइट रोबोट की क्षमता पर रखने का तरीका है। तेज मूवमेंट और ताकत को भविष्य के कामों में इस्तेमाल किया जा सकता है। सिंगापुर में हुआ ये टूर्नामेंट ह्यूमनॉइड रोबोट मुकाबलों की नई शुरुआत है। चीन के चोंगकिंग में नया टूरिज्म कॉम्प्लेक्स खुला, पुरानी फैक्ट्री को पर्यटन स्थल में बदला गया। चार दिन में करीब 4 लाख विजिटर्स नेशनल डे हॉलीडे के दौरान रोजाना करीब 1 लाख लोग कॉम्प्लेक्स पहुंच रहे हैं। फैक्ट्री बनी घूमने की नई जगह, पुराने वर्कशॉप अब शॉपिंग और एंटरटेनमेंट स्पेस में बदल गए। फैक्ट्री थीम पर हॉटपॉट का मजा, यहां पर लोग प्रदर्शनी देखने के साथ साथ इमर्सिव फैक्ट्री थीम वाले हॉटपॉट का भी उठा रहे हैं लुत्फ। चोंगकिंग में पर्यटन का नया मॉडल, यहां पर इंडस्ट्री और टूरिज्म को साथ लाकर लोगों के लिए नया मनोरंजन अनुभव तैयार करना है। हेलोंग जियांग में खेतों में बिना ड्राइवर के स्मार्ट हार्वेस्ट मशीनें धान काट रही हैं। चीन में स्मार्ट हार्वेस्टर फसल काटने के साथ साथ पैदावार और नमी का डेटा भी इकट्ठा करता है। जिया मुसी कृषि क्षेत्र में खेतों में मशीनें बिना इंसान के काम कर रही हैं, ये चीन में ऑटोनॉमस खेती की नई तस्वीर है। मौसम में बिना ड्राइवर रोपाई और अब शरद ऋतु में बिना ड्राइवर कटाई हो रही है। सुनहरे धान के खेतों में कई हार्वेस्टर एक साथ फसल काटते हुए नजर आए। चीन के शानयू माउंटेन पर पहाड़ बादलों से पूरी तरीके से ढके हुए नजर आए। नजारा देखने और तस्वीरें लेने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे। जंगल, पगडंडियां और पहाड़ी रास्ते धुंध के बीच बहुत खूबसूरत नजर आए। हवाई तस्वीरों में सड़कें और खेत भी नजर आए। बादलों से घिरे पहाड़ों का नजारा कैमरे में कैद करने के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं लोग। सोशल मीडिया पर कर रहे हैं अपलोड। शियांशू माउंटेन पर तांगकाल का एक प्राचीन रास्ता भी आज मौजूद है। ये जगह इतिहास और प्रकृति दोनों के लिहाज से मशहूर। दर्शनीय क्षेत्र का दशान गांव अक्सर राकोरी और बादलों से ढका रहता है, इसी वजह से यहां का नजारा और भी खास है।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
1: बीच सड़क महिला पुलिसकर्मी से भिड़ी महिला, प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने छात्रों से की बदसलूकी। क्लासरूम से सड़क तक फ्रांस में भड़के जेन ज़ी, मां के जज्बे ने जीता दिल। वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए वैभव राज शुक्ला के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए। इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे। मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: 11 अक्टूबर से नवरात्र का आरंभ हो रहा है, इसलिए दुर्गा पूजा को लेकर पूरे देश में जोर शोर से तैयारियां तमाम चल रही हैं। मूर्ति बनाने वाले कलाकार मां की भव्य प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। अपने सधे हुए हाथों से कारीगर दुर्गा प्रतिमाओं को उत्सव के लिए तैयार कर रहे हैं।

0: देश भर में शक्ति उत्सव की तैयारियां जोरों पर है। मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा गढ़ी जा रही है। मां की कोई मूर्ति तैयार होने के बेहद करीब है तो किसी को अभी आकार दिया जा रहा है। कुछ मूर्तियों में रंग भरे जा रहे हैं। मूर्तिकार छोटी बड़ी हजारों मूर्तियों को गढ़ने और तराशने में व्यस्त हैं, ताकि वक्त पर मूर्तियों की डिलीवरी की जा सके। देश के अलग अलग हिस्सों में मूर्तिकार दिन रात लगकर प्रतिमाओं को तैयार करने में जुटे हुए हैं। कुछ परिवार और मूर्तिकार ऐसे भी हैं जो सालों से माँ दुर्गा की प्रतिमाएं तैयार कर रहे हैं। इन प्रतिमाओं का पारंपरिक स्वरूप ही इनकी खास पहचान है। शुरुआती दौर में बड़ी संख्या में कारीगर प्रतिमाओं का ढांचा बनाने और मिट्टी लगाने का काम करते हैं। इसके बाद प्रतिमाओं की फिनिशिंग, रंगाई और श्रृंगार का काम शुरू होता है। रायपुर की इस कार्यशाला में माँ की हर प्रतिमा में कला, पारंपरिक शैली की एक अनूठी और गहरी छाप दिखती है। ऑर्डर के हिसाब से ही माँ का स्वरूप तैयार किया जा रहा है, जिसमें मूर्तिकार की कल्पना और कार्यकुशलता की छाप भी देखने को मिल रही है। दुर्गा पूजा के आरंभ होने में अब बहुत कम समय रह गया है, इसीलिए कारीगर तेजी से काम पूरा करने में जुटे हुए हैं। मूर्ति निर्माण के पीछे की उनकी महीनों की मेहनत बस इस बात पर टिकी है कि भक्तों को उनकी बनाई मूर्ति पसंद आए। कलाकारों और मूर्तिकारों की इस अथक मेहनत ने उत्सव के माहौल को और भी खास बना दिया है। यही कारण है कि देश के कोने कोने में दुर्गा पूजा का उत्सव चरम पर पहुंच चुका है। आने वाले दिनों में इसमें और इजाफा होने की उम्मीद है। महेंद्रगढ़ से धीरेन्द्र विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
2: बीच सड़क, महिला पुलिसकर्मी से भिड़ी महिला। प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने छात्रों से की बदसलूकी। क्लासरूम से सड़क तक फ्रांस में भड़के जेन ज़ी। मां के जज्बे ने जीता दिल। वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए वैभव राज शुक्ला के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
3: शरण स्पर्श करने के नियम क्या हैं? क्या महिलाओं को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए? क्या लेटे हुए सोए हुए व्यक्ति के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए? क्या है चरण स्पर्श की महिमा और क्या हैं इसके नियम और सावधानियां, जानिए मेरे साथ।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
5: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
6: और दुर्भाग्य कहता है
7: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
2: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
8: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
9: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
10: चारधाम यात्रा के दूसरे चरण में बन रहे हर दिन नए रिकॉर्ड, बद्रीनाथ में अब तक 19,13,000 से अधिक श्रद्धालु का बना नया रिकॉर्ड। देशभर में नवरात्र की तैयारियां तेज, कहीं मां की प्रतिमाओं को दिया जा रहा अंतिम रूप, तो गरबा की ड्रेस और साज सज्जा के सामान से सजे बाजार, कारोबारी खुश। सैलानियों से गुलजार हुई पीर की गली, देश भर से बड़ी संख्या में पुंछ पहुंच रहे पर्यटक, ठंडी हवाएं, बर्फीली वादियां और खूबसूरत नजारे का उठा रहे लुत्फ। दुनिया के 50 सबसे बेहतरीन डीप फ्राई व्यंजनों में शामिल मलाई कोफ्ता, टेस्ट एटलस की लिस्ट में मिला 10वां स्थान, चिकन 65 को 32वां और पापड़ी चाट को 40वां स्थान। रणथंभौर में तेंदुए के हमले रोकने का हाईटेक प्लान, लिपर्ड की मॉनिटरिंग के लिए लगाए जाएंगे साइलेंट डिवाइस और हाईटेक सेंसर, जानवर आते ही बजेगा लाभ।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ श्वेता झा। शाम के 7 बज चुके हैं और 7 गुड न्यूज के साथ हम हाजिर हैं। हम आपको आज की 7 गुड न्यूज के बारे में बताएंगे और सबसे पहले बात आज की सबसे बड़ी गुड न्यूज की, माँ दुर्गा की आराधना के महापर्व नवरात्रि में अब बस 2 दिन बाकी है, मंदिरों से लेकर घरों तक तैयारियां तेज हो गई हैं, कहीं माता रानी के दरबार सजाए जा रहे हैं तो कहीं माँ का भव्य स्वागत हो रहा है। ऐसे में आज की जो हमारी पहली गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है। शुरू हुआ माता का आगमन, जी हाँ, दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक मां के स्वागत की जोरदार तैयारी चल रही है। झांसी में नवरात्र से पहले मां का भव्य स्वागत किया गया, तो वहीं मुंबई से लेकर प्रयागराज तक बाजारों में भी नवरात्र की रौनक नजर आने लगी है।

0: शारदीय नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की आराधना होगी। हर दिन शक्ति के अलग स्वरूप की पूजा होगी। हर मंदिर में माँ का जयकारा गूंजेगा और हर पंडाल में भक्तों के शीश झुकेंगे। नवरात्र पर्व में अब बस 2 दिन बचे हैं और देश भर में तैयारियां जोरों पर हैं। माँ दुर्गा की आराधना के इस महापर्व को लेकर मंदिरों से लेकर पंडालों तक भव्य तैयारियां चल रही हैं। झांसी नगरी पूरी तरह भक्ति और आस्था के रंग में रंगने लगी है। शहर में जगह जगह दुर्गा पंडालों में तैयारियां जोर पकड़ रही हैं और इसी बीच झोकन बाग स्थित शहीद पार्क में माँ दुर्गा की प्रतिमा के प्रथम आगमन ने नवरात्रि के उत्साह को और बढ़ा दिया है। नव दुर्गा उत्सव समिति झोकन बाग शहीद पार्क की ओर से माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमा का ढोल नगाड़ों आतिशबाजी और जयकारों के बीच जोरदार स्वागत किया गया। वैष्णो धाम से लेकर महाराष्ट्र के अमरावती तक माँ के भव्य दिव्य मंदिरों को भी सजाया जा रहा है। अमरावती में रंग बिरंगी रोशनी से माँ का भवन जगमगा रहा है। मंदिर का कोना कोना फूलों की खुशबू से महक उठा है। पूरा दरबार ही शारदीय नवरात्रि के रंग में रंग चुका है। अमरावती में ये विदर्भ की कुलस्वामिनी अम्बा माता का दरबार है, जहाँ शारदीय नवरात्रि को लेकर तैयारियां आखिरी दौर में हैं। मंदिर को खास तौर पर सजाया गया है और माता के दर्शन के लिए भक्तों के स्वागत की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं।
1: शारदीय नवरात्र उत्सव के चलते जो है हर देवी के मंदिर में जो है अब तैयारियां शुरू हुई है। हम फिलहाल है विदर्भ की कुलस्वामिनी अमरावती की माँ अम्बे के इस मंदिर में, जहाँ पर आप देख सकते हो कि मंदिर को जो है पूरी तरीके से लाइटिंग से सजाया है। यहाँ पर पूरी तरीके से रोशनाई शुरू कर दी है।
0: नवरात्र के पहले दिन से यहाँ अनुष्ठानों का सिलसिला शुरू हो जाएगा। सबसे पहले विधि विधान से माँ का भव्य अभिषेक होगा और इसके बाद सोने चांदी के आभूषणों से माता का दिव्य श्रृंगार किया जाएगा। देश की राजधानी दिल्ली में भी माँ का भव्य दरबार सज रहा है। अलग अलग इलाकों में माँ दुर्गा के स्वागत के लिए भव्य पूजा पंडाल तैयार हो रहे हैं। इनमें चितरंजन पार्क की दुर्गा पूजा की खास पहचान है। दिल्ली का मिनी बंगाल कही जाने वाले चितरंजन पार्क में हर साल अलग अलग थीम पर भव्य पंडाल सजाए जाते हैं। इस बार भी तैयारियां यहां काफी हो रही हैं।
2: अभी हम दिल्ली के चितरंजन पार्क के मेला ग्राउंड में मौजूद हैं, जहां पर बड़ा पंडाल बनाया जाता है और भव्य उत्सव नवरात्रों के दौरान मनाया जाता है। भव्य माता की प्रतिमा स्थापित की जाती है और इसको लेकर के यहाँ पर तैयारियां शुरू है। आप देख सकते हैं दुर्गा पूजा समिति सीआर पार्क मेला ग्राउंड है और इसी के तौर पे कई वर्षों से यहाँ मनाया जाता है।
0: आस्था और भक्ति के इन खूबसूरत रंगों की ये तो अभी शुरुआत है। आने वाले दिनों में पूरा देश माँ की भक्ति में लीन नजर आएगा। हर तरफ माँ के जयकारे गूंजेंगे। झांसी से अजय झा, दिल्ली से आशुतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: उपवास करके माँ को प्रसन्न करता है तो कोई गरबा रास करके, तो कोई अंगारा रास करके, जिसके लिए शहर शहर तैयारी जोरों पर है। गुजरात के जामनगर में नवरात्रि से पहले पारंपरिक अंगारा रास की तैयारी की जा रही है। ऐसे में हमारी अगली यानी कि दूसरी गुड न्यूज है जलते अंगारों पर गरबा का अभ्यास। जी हाँ, आपको बता दें कि जामनगर में नवरात्रि की तैयारियों में शानदार गरबा रास के अलावा वडोदरा में भी भव्य गरबा का आयोजन किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प गरबा की थीम पर प्री गरबा इवेंट पर जब वडोदरा में हुआ तो पारंपरिक गरबा की धुन पर घूमते कदमों के बीच मां शक्ति की आराधना का एक अलग ही रंग नजर आया।

0: तालियों की गूंज हो, कदमों में जोश हो और चारों तरफ उत्सवी रंग बरस रहे हों, तो समझ जाइए कि गरबा की शाम सज चुकी है। हर साल की तरह इस बार भी बस शुरू होने को है शक्ति आराधना, माँ दुर्गा की भक्ति का पर्व नवरात्रि। ऐसे में गुजरात में शक्ति की भक्ति का रंग गरबा और डांडिया में खूब बरसता है, जहाँ गरबा के हर कदम में माँ की आराधना है और हर ताल में शक्ति की उपासना। ऐसे में विकसित भारत संकल्प गरबा की थीम पर भव्य प्री गरबा इवेंट जब वडोदरा में हुआ, तो पारंपरिक गरबा की धुन पर घूमते कदमों के बीच मां शक्ति की आराधना का एक अलग ही रंग दिखा। गरबा की सुरीली तान, पारंपरिक परिधान और उत्साह से भरे कदमों के बीच आस्था, संस्कृति और राष्ट्र निर्माण, इस प्री गरबा इवेंट के माध्यम से विकसित भारत के संकल्प को लोगों तक पहुँचाने का संदेश भी खास गया। यानी एक ओर माँ की भक्ति में रचा बसा गरबा रास, तो दूसरी तरफ देश के विकास का संकल्प। वाकई वडोदरा का ये आयोजन नवरात्रि के उल्लास के साथ शक्ति आराधना और विकसित भारत के संकल्प का खूबसूरत संगम बना। वडोदरा महानगर पालिका का ये भव्य सांस्कृतिक जश्न है, जिसमें गुजरात के इस शहर की विरासत, स्वच्छता, नारी शक्ति और विकसित भारत 2047 के विजन को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया गया और इसमें लोगों की निशुल्क एंट्री रखी गई। चमचमाती और रंग बिरंगी चनिया चोली और पारंपरिक केड़िया कुर्ता पहने लोग गरबा के संगीत की धुन पर झूम नहीं आए थे, और जब एक ताल एक लय पर गरबा प्रेमी फिरके तो परंपरा की वो सतरंगी छटा भी देखते ही बन रही थी। जाहिर है गरबा गुजराती उत्सवों की खास पहचान है, यही वजह रही कि इस प्री गरबा इवेंट में पहुंचे गरबा प्रेमी नवरात्रि उत्सव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। वहीं गुजरात के जामनगर में भी नवरात्रि से पहले पटेल गरबी युवक मंडल पारंपरिक अंगारा रास की खूब तैयारियां कर रहा है। अंगारा रास की यह अनोखी परंपरा यहां पिछले 70 साल से निभाई जा रही है, जिसमें युवा जलते अंगारों के बीच रास करते हैं। इन युवाओं के लिए अंगारा रास माँ का आशीर्वाद समान है।
1: हमारा यहाँ का फेमस रास है वो है मसाल रास है, और हम मसाल रास खेलते खेलते जो हमारा स्वस्तिक है वो बनाते हैं, और माता जी का शस्त्र बोलते त्रिशूल वो भी बनाते हैं, और गरबा के अंत में हम अंगारों पे खेलते हैं और वो भी खुले पैर खेलते हैं, कोई लोशन या कुछ अप्लाई भी नहीं करते हैं, और ये हमारे ऊपर माता जी का आशीर्वाद है।
0: जाहिर है गरबा का कोई भी रूप हो, इस परंपरागत नृत्य के हर कदम में भक्ति है, हर ताल में उमंग है और हर घूमते घेरे में गुजरात की संस्कृति की खूबसूरती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: नवरात्र शुरू होने में अब केवल चंद दिन बाकी है, ऐसे में संगम नगरी प्रयागराज की ऐतिहासिक रामलीला कमेटियों में भव्य मंचन की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। तैयारियों के बीच रामलीला में इस्तेमाल होने वाले अस्त्र शस्त्र का निर्माण किया जा रहा है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो तीसरी गुड न्यूज है वो है रामलीला के लिए बन रहे दिव्य अस्त्र शस्त्र। जी हाँ, आपको बता दें कि प्रयागराज के श्री पत्थर चट्टी रामलीला कमेटी सालों से शहर में रामलीला का आयोजन करती आ रही है। इस कमेटी के लिए निसार अहमद वर्षों से भगवान राम के लिए लीला में इस्तेमाल होने वाले पारंपरिक अस्त्र शस्त्र रथ और अन्य सामान तैयार करते आ रहे हैं। धनुष, बाण, गदा, तलवार, त्रिशूल और चापर जैसे अस्त्र शस्त्रों को आकर्षक और वास्तविक रूप देने में उनका खास योगदान रहता है। इस साल भी निसार इस अस्त्र शस्त्रों का निर्माण कर रहे हैं। निसार के मुताबिक उन्हें यह काम करने में बेहद खुशी और सुकून मिलता है और भगवान राम उन्हें बेहद पसंद है। निसार एक ऐसे मुस्लिम परिवार से ताल्लुक रखते हैं जो मुहर्रम के दौरान खूबसूरत ताजिया बनाने के लिए भी जाना जाता है, लेकिन दशहरा आते ही यही परिवार पूरी श्रद्धा और शिद्दत के साथ रामलीला के लिए सामान तैयार करता है। श्री पत्थर चट्टी रामलीला कमेटी अपनी भव्यता और हाईटेक लाइट एंड साउंड इफेक्ट्स के लिए प्रयागराज ही नहीं बल्कि देश भर में अपनी पहचान रखता है। इस भव्य मंचन में इस्तेमाल होने वाले अस्त्र शस्त्र और रथों को आकर्षक रूप देने में निसार अहमद जैसे कारीगरों की कला अहम भूमिका निभाती है।
3: प्रयागराज में कई रामलीला कमेटी अपने मंचों पर रामलीला आयोजित करती है, और हम जहां पर खड़े हैं यहां पर देखेंगे तो चारों तरफ सामान ही सामान नजर आएगा। ये वो सामान है जो नाट्य मंचन जब भी रामलीला यानी राम और रावण और भगवान के लोगों के पात्र होंगे, वो पात्र ये सारे सामान उठाकर मंचन करते नजर आएंगे। लेकिन इस बनाने वाले सामान को वो कारीगर बना रहे हैं निसार साहब, जो पिछले कई सालों कह सकते हैं कि इनके दादा परदादा अब विरासत में ये बना रहे, इनके पिताजी ने किया, उनके पिताजी के पिताजी ने किया, तो इस तरह विरासत में ये काम चला रहा है। और निसार साहब कहते हैं कि इस काम से हमें कोई गुरहेज नहीं, क्योंकि ये काम हमारे लिए एक इबादत की तरह है। तो निसार भाई
4: जी,
3: बना रहे हैं आप, कितने सालों से कर रहे हैं आप?
4: 24 वर्षों से।
3: जी कैसे, कितनी पीढ़ियों से?
4: तीसरी पीढ़ी हमारी, हमारे दादा थे, पिताजी थे, हम।
2: और भारतीय सेना वायुसेना आज अपना 54वां स्थापना दिवस मना रही है। इंडियन एयरफोर्स के स्थापना दिवस आज ही के दिन साल 1932 में हुई थी, और इस दिन को बेहद खास बनाने के लिए भारतीय वायुसेना ने आज हिंद के आसमान में अपनी ताकत को दुनिया के सामने रखा। ऐसे में हमारी आज की अगली यानी कि जो चौथी गुड न्यूज है वो है एयरफोर्स डे पर भारतीय वायुसेना का दम। आपको बता दें कि इस बार भारतीय वायुसेना दिवस की थीम थी भारतीय वायुसेना अचूक अभेद्य सटीक। इस समारोह के दौरान भारतीय वायुसेना के फाइटर प्लेन और दूसरे सैन्य हथियारों को प्रदर्शित किया गया।
5: आसमान में गरजते लड़ाकू विमान, हवा को चीरते हेलीकॉप्टर, आसमान में हैरतअंगेज करतब दिखाते जाबाज, ये सिर्फ एयर शो नहीं, ये हिंदुस्तान की बढ़ती हवाई ताकत की तस्वीर है। ये उस सामर्थ्य का प्रदर्शन है जो दुश्मन की हर चुनौती का जवाब देने के लिए तैयार है। ये तस्वीर है भारतीय वायुसेना के 54वें स्थापना दिवस की। भारतीय वायुसेना की स्थापना आज ही के दिन यानी 8 अक्टूबर साल 1932 में हुई थी। गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर आज सुबह से ही उत्सव का माहौल देखने के लिए मिला। हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर भारतीय वायुसेना के स्थापना दिवस के अवसर पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। समारोह की शुरुआत मुख्य परेड से हुई, जिसमें वायुसेना के जवानों ने बैंड की धुन पर जब कदम ताल किया तो मानो शौर्य गाथा के गान ने लोगों में जोश भर दिया हो। परेड के दौरान दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाई और देश की रक्षा करने वाले जवानों के प्रति सम्मान का इजहार किया। इस खास मौके पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह समारोह में शामिल हुए। वायुसेना प्रमुख ने परेड की सलामी ली और जवानों के पराक्रम और अनुशासन की सराहना की।
6: भारतीय वायुसेना ने शौर्य की यात्रा के 54 वर्ष पूरे कर लिए हैं, और इस मौके पर हिंडन एयरबेस गाजियाबाद में एक भव्य समारोह हुआ। इस मौके पर एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने खास परेड की सलामी ली, और साथ ही यहां वायुसेना ने अपना दमखन भी दिखाया। स्टैटिक डिस्प्ले में ब्रह्मोस की ताकत दिखाई दी, और वहीं तेजस, Su-30 MKI, रफाल और आकाश एयर डिफेंस सिस्टम भी दिखाई दिया। इसके साथ ही शक्ति ब्रिगेड ने अपनी खास तरह की ड्रिल दिखाई, और महिलाओं का भारतीय वायुसेना में बढ़ता योगदान भी यहां पर साफ दिखा।
5: इस बार भारतीय वायुसेना की थीम है भारतीय वायुसेना अचूक अभेद सटीक। परेड से लेकर विमानों की प्रदर्शनी और करतब शामिल हैं। एयरफोर्स के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब महिला कमांडिंग ऑफिसर के नेतृत्व में महिला सैनिकों ने 303 राइफल के साथ हैरतअंगेज करतब दिखाए। वायुसेना दिवस के इतिहास में पहली बार ड्रमर्स ड्रिल का अनोखा प्रदर्शन मुख्य परेड समारोह का हिस्सा बना। टीम ने अपनी शानदार ड्रमर्स ड्रिल और थाप से परेड मैदान में दर्शकों के बीच जबरदस्त जोश भरा। इसके अलावा फाइटर जेट्स और मेक इन इंडिया हथियारों ने भी वायुसेना की ताकत की नजीर पेश की। पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल को डिस्प्ले में रखा गया। ब्रह्मोस के साथ ही तेजस, सुखोई और प्रचंड भी प्रदर्शनी में शामिल किए गए।
7: बताते हुए खुशी है कि हमारी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी और रेडीनेस सही दिशा में बढ़ रही है। ओनरशिप और अकाउंटेबिलिटी की संस्कृति पूरी सेना में मजबूत हो रही है। उपकरण, टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म तो मात्र एक जरिया है, असल में हमारी कामयाबी का स्रोत हमारे वायु योद्धा हैं। मुझे खुशी है कि हम डिफेंस सर्विसेज के कोर वैल्यूज का पालन कर रहे हैं, टेन्योर बेस्ड विचारों को त्याग रहे हैं और राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहे हैं।
5: जोधपुर में इन दिनों मल्टीनेशनल मेगा एक्सरसाइज तरंग शक्ति चल रहा है। भारत समेत 8 देशों की वायुसेना इसमें हिस्सा ले रही है। इसी तरंग शक्ति युद्धाभ्यास के दौरान वायुसेना दिवस पर जोधपुर में सारंग टीम और सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने भी आसमान में जाबाजी का प्रदर्शन किया। सूर्य किरण एरोबेटिक टीम के 9 हॉक MK-132 विमानों ने एक साथ उड़ान भरी। आसमान में अलग अलग फॉर्मेशन बनाते हुए वायुवीरों ने हैरतअंगेज करतब दिखाए। करीब 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भरते हुए विमानों ने केसरिया, सफेद और हरे रंग के धुएं से तिरंगा फॉर्मेशन बनाई, त्रिशूल और दिल फॉर्मेशन बनाते हुए अपने उड़ान कौशल का प्रदर्शन किया। दिल्ली से शिवानी शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: और भदोही में आयोजित चार दिवसीय इंडिया कार्पेट एक्सपो का बुधवार की शाम समापन हो गया। इस एक्सपो में 400 से ज्यादा फॉरेन बायर्स और उनके प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया, जिससे कि कार्पेट निर्यातकों को अच्छा बिजनेस मिलने की उम्मीद है। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो पांचवी गुड न्यूज है वो है कार्पेट एक्सपो में 500 करोड़ का कारोबार। जी हाँ, आपको बता दें कि इस एक्सपो में फॉरेन बायर्स की जिस तरह से इंक्वायरी आई है, उससे आयोजकों का मानना है कि इससे भविष्य में कार्पेट का निर्यात 500 करोड़ रुपए का हो सकता है। इस एक्सपो में सस्ते कालीनों की डिमांड अधिक रही।

0: भदोही के एक्सपो मार्ट में चल रहा कालीनों का महाकुंभ संपन्न हो गया है। बुधवार को 4 दिवसीय मेले का समापन हो गया। इस मेले में 65 देशों के 447 विदेशी खरीदार और उनके प्रतिनिधि शामिल हुए। मेले से भविष्य में करीब 500 करोड़ रुपए के निर्यात ऑर्डर के मिलने का अनुमान है।
1: भदोही में आयोजित 4 दिवसीय इंडिया कार्पेट एक्सपो का बुधवार को समापन हो गया। बड़ी संख्या में आए फॉरेन बायर्स ने यहाँ की हस्तनिर्मित कालीनों के प्रति अपनी रुचि दिखाई है। आयोजकों का मानना है कि जिस तरीके से फॉरेन बायर्स ने इंक्वायरी की है, इससे आने वाले समय में 500 करोड़ से अधिक का व्यापार सृजित होगा।
0: इस मेले में कश्मीर, जयपुर, बीकानेर, आगरा, कोलकाता, पानीपत, वाराणसी, मिर्जापुर और भदोही के 223 कालीन निर्यातकों ने अपने स्टॉल लगाए थे। इनके स्टॉल्स पर विदेशी खरीदारों ने कालीनों के ऑर्डर दिए या फिर कालीनों के लिए इंक्वायरी की। स्टॉल लगाने वाले कालीन कारोबारियों को उम्मीद है कि ये इंक्वायरी भविष्य के ऑर्डर में तब्दील होगी।
2: ओवरऑल मैंने जिन लोगों से बात करी, बहुत लोगों से बात करी, और 4 दिन से मैं भी फेयर में घूम रहा हूं और देख रहा हूं कि तमाम एग्जीबिटर्स बहुत खुश थे कि ये एक तो फेयर बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ, प्रेजेंटेबल था, अच्छी प्रेजेंटेशन थी और बायर रिप्रेजेंटेशन भी अच्छी थी।
0: अभी दुनिया में अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है जिससे कालीन कारोबार भी अछूता नहीं रहा है। अमेरिका ईरान के बीच तनाव से पूरी दुनिया में ईंधन के मूल्यों में इजाफा हुआ है, लिहाजा दुनिया में बढ़ते इकोनॉमिक क्राइसिस के बीच महंगाई बढ़ी है जिससे सस्ते कालीनों की डिमांड बढ़ रही है। इस एक्सपो में पहुंचे खरीदारों ने महंगे प्रोडक्ट में कटौती करते हुए सस्ते और यूज एंड थ्रो प्रोडक्ट में अपनी रुचि दिखाई है। हालांकि एक्सपो में पहुंचे बायर्स की संख्या से कालीन निर्यातक बेहद उत्साहित हैं। उनका मानना है कि वैश्विक हालात ठीक न होने के बाद भी भदोही एक्सपो में ज्यादा संख्या में बायर्स का आना ये बताता है कि इकोनॉमिक क्राइसिस के बीच भी भारतीय कालीन के निर्यात का दबदबा बना हुआ है।
3: जनरल चीजों के जो आम जिंदगी में हमेशा इस्तेमाल होने वाली चीजों जब महंगी होती तो लग्जरी प्रोडक्ट जो है उसकी रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। तो रिक्वायरमेंट जब कम होती है तो उसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि सस्ते चीजें उनको बेचा जाए। तो सस्ते कालीनों का जो की तरफ इस बार बायरों का काफी रुझान।
0: इस कार्पेट एक्सपो में 80 महिला उद्यमियों की भागीदारी भी रही जो नौकरी छोड़कर कालीन के व्यवसाय में हाथ आजमा रही हैं। इन महिला उद्यमियों का परिवार कभी कालीन व्यवसाय में नहीं रहा लेकिन ये अपनी पहचान खुद बनाने के लिए निकली हैं। भदोही की रहने वाली नेहा और श्रद्धा ऐसी ही उद्यमी हैं जिन्होंने अपना स्टॉल एक्सपो में लगाया और मेले में मिले रिस्पॉन्स से ये खुश हैं। इस मेले में विदेशी खरीदारों के पहुंचने से कालीन निर्यातकों के चेहरे जरूर खिले लेकिन उन्हें वास्तविक खुशी तब मिलेगी जब उन्हें उन खरीदारों से बंपर ऑर्डर मिलेंगे। भदोही से महेश जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: बद्रीनाथ के पास है देवताल। मान्यता है कि यहां पर देवता स्नान करते हैं। देवताल इन दिनों बर्फ से ढका एक ऐसा नजारा पेश कर रहा है जिसे देखकर हर कोई ठहर जाए। करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद इस खूबसूरत जगह को देखने के लिए सैलानी भी पहुंच रहे हैं। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि जो छठी गुड न्यूज है वो इसी से जुड़ी है और वो है मखमली बर्फ से लकदक बद्रीनाथ का देवताल। जी हाँ, आपको बता दें कि देवताल में हर कोई बर्फ, पहाड़ और आसमान के इस खूबसूरत और अद्भुत मेल को देखकर हैरान है। खास बात यह है कि यहाँ की रौनक को देखने के लिए पर्यटक भी पहुंच रहे हैं।
5: ये वो जगह है जहाँ देवता स्नान के लिए आते हैं। दुनिया इसे देवताल के नाम से जानती है। इन दिनों ये बर्फ की सफेद चादर में लिपटा हुआ है।
6: जैसा कि आप देख सकते हैं देवताल 17,950 फीट की ऊंचाई पर देवताल जहाँ देवता स्नान करने आते हैं, पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है।
5: ऊपर नीला आसमान और नीचे कुदरत का ये खूबसूरत करिश्मा मानो पहाड़ों ने सफेद चादर ओढ़ ली हो।
7: देवताओं का स्थान है यहाँ पे, हम देवताओं की कृपा से यहाँ पहुंचे हैं। 17,950 फीट की ऊंचाई पे ये भारत का चाइना का बॉर्डर क्षेत्र एरिया है। वो है माना पास एरिया जो इंटरनेशनल बॉर्डर एरिया है।
5: सर्दियों में जमी बर्फ के बीच शांत देवताल और आसपास की ऊंची चोटियां इस जगह की खूबसूरती को और खास बना रही हैं।
8: यहाँ पर लोगों को आना चाहिए और आके देखना चाहिए। जो आदमी बोलती है ना कि आर्मी क्या कर रही है, आर्मी ये कर रही है कि यहाँ पे -25 डिग्री में -50 डिग्री में वो खड़े हैं क्योंकि हम घर ताकि हम घर पे सो पाए।
5: बर्फ की सफेद चादर में लिपटा देवताल आसमान से जमीन तक कुदरत की खूबसूरती बयां कर रहा है। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट गुड न्यूज टुडे।
4: गुजरात के अमरेली जिले में एक ही दिन दो शेरनियों के कुएं में गिरने की दो अलग अलग घटनाएं सामने आई, लेकिन वन विभाग के अधिकारियों की तत्परता के कारण दोनों शेरनियों की जान बच गई। जाफराबाद के बाबरकोट और धारी के वीरपुर गांव में वन विभाग ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर दोनों शेरनियों की जान बचाई। ऐसे में आज की हमारी अगली यानी कि सातवीं और आखिरी गुड न्यूज इसी से जुड़ी है। अमरेली में एक दिन में दो शेरनियों का रेस्क्यू। जी हां, अमरेली जिले में एक ही दिन में दो शेरनियों के कुएं में गिरने की दो अलग अलग घटनाएं सामने आई। पहली घटना जाफराबाद तालुका के बाबरकोट गांव में हुई, जहां रात के अंधेरे में पानी की आपूर्ति के लिए बनाए गए कुएं में एक शेरनी गिर गई। घटना की जानकारी मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और शेरनी को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया, जिसके बाद वन विभाग ने एक पिंजरा कुएं में उतारा और कर्मचारी को भी अंदर भेजकर शेरनी को सुरक्षित बाहर निकालने की कोशिश की। करीब 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शेरनी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। वहीं दूसरी घटना धारी तालुका के वीरपुर गांव की हुई, जहां एक शेरनी जंगली सुअर के बच्चे का शिकार करने के लिए उसके पीछे दौड़ रही थी। इसी दौरान शेरनी और जंगली सुअर का बच्चा दोनों कुएं में गिर गए। हादसे में जंगली सुअर के बच्चे की मौत हो गई, जबकि शेरनी पानी से भरे कुएं में अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष करती रही। यहां भी वन विभाग ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए शेरनी को बचा लिया।
9: शेर को कुएं में गिरने की वारदात दो हुई है। पहली घटना जो घटी है वो जाफराबाद के बाबरकोट में गिरी थी। वहां एक वाटर सप्लाईमेंट का जो कुआ था उसमें एक शेरनी गिर गई थी और उसको बचाने के लिए 6 घंटे तक वन विभाग ने मशक्कत की और उसके बाद उस शेरनी को निकाला गया और बाबरकोट एनिमल केयर सेंटर में भेजा गया। दूसरी जो वारदात थी वो धारी गिरपुर में घटी थी और वहां धारी के वीरपुर गांव में एक शेरनी है जो सुअर के बच्चे का शिकार करने के लिए दौड़ी थी और वो कुएं में गिरी थी। सुअर का बच्चा और शेरनी दोनों कुएं में गिर गए थे, लेकिन 1.5-2 घंटे की मशक्कत के बाद वन विभाग ने उस शेरनी

0: बीच सड़क महिला पुलिसकर्मी से भिड़ी महिला। प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस ने छात्रों से की बदसलूकी। क्लासरूम से सड़क तक फ्रांस में भड़के जेन ज़ी। मां के जज्बे ने जीता दिल। वायरल खबरों की पूरी और पक्की पड़ताल देखिए वैभव राज शुक्ला के साथ फैक्ट चेक शाम 7:34 पर।
1: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
1: अविश्वास में विश्वास बसता है
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
5: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
1: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
2: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
0: अविश्वास में विश्वास बसता है,
1: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
1: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
4: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
1: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे

0: गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे,
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
7: चारधाम यात्रा के दूसरे चरण में बन रहे हर दिन नए रिकॉर्ड्स। बद्रीनाथ में अब तक 19,13,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं का बना नया रिकॉर्ड। देश भर में नवरात्र की तैयारियां तेज, कहीं मां की प्रतिमाओं को दिया जा रहा है अंतिम रूप, तो गरबा की ड्रेस और साज सज्जा के सामान से सजे बाजार। सैलानियों से गुलजार हुई पीर की गली, देश भर से बड़ी संख्या में पुंछ पहुंच रहे हैं पर्यटक। ठंडी हवाएं, बर्फीली वादियां और खूबसूरत नजारे का उठा रहे हैं लुत्फ। दुनिया की 50 सबसे बेहतरीन डीप फ्राई व्यंजनों में शामिल मलाई कोफ्ता, टेस्ट एटलस की लिस्ट में मिला 10वां स्थान। चिकन 65 को 32वां और पापड़ी चाट को 40वां। रणथंभौर में तेंदुए के हमले को रोकने का हाईटेक प्लान, लेपर्ड की मॉनिटरिंग के लिए लगाए जाएंगे साइलेंट डिवाइस और हाईट्रैक सेंसर, जानवर आते ही बजेगा अलार्म।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।
7: नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। सोशल मीडिया की इस दुनिया में अब सिर्फ खबरें नहीं बल्कि आधी अधूरी सच्चाइयां और झूठे दावे भी बिजली की रफ्तार की तरह फैल जाते हैं। कभी कभी किसी वीडियो के पीछे की कहानी बदल दी जाती है, तो कभी पुरानी तस्वीरों को नए साजिशी रंग में रंग कर पेश किया जाता है और लोग बिना जांचे परखे इन्हें सच मान लेते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के इस दौर में खबरें अब अखबार के पन्नों या टेलीविजन की स्क्रीन तक सिर्फ सीमित नहीं है। यहां हर किसी के हाथ में कैमरा है और हर घटना, हर तस्वीर, हर वीडियो कुछ ही सेकंड्स में पूरी दुनिया में वायरल हो जाता है। लेकिन यही तेजी कई बार सच और झूठ की रेखा को धुंधला कर देती है। कोई पुरानी घटना नहीं बताकर परोसी जाती है, कोई वीडियो तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और कभी कभी तो तस्वीरों में ऐसी कहानी गढ़ दी जाती है जिसका सच्चाई से कुछ दूर तक कोई तो लेना देना नहीं होता। नतीजा ये होता है कि लोग बिना सोचे समझे, बिना परखे इन्हें सच मानकर शेयर कर देते हैं और यहीं से शुरू होती है अफवाहों की आंधी। ऐसे में हम सच और झूठ के बीच की धुंध को साफ करते हैं, या वायरल दावों की होती है सटीक जांच, अफवाहों की होती है पड़ताल और झूठ के हर नकाब को करते हैं बेनकाब। तो चलिए आज की खबरों पर अगर हम नजर डालें तो देखिए फैक्ट चेक में आज सबसे पहले हम बात करेंगे सोशल मीडिया पर छाए उस वायरल वीडियो की जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि महिला और पुलिस कर्मियों के बीच झड़प का यह वीडियो सीजेपी के हालिया प्रदर्शन के दौरान का है। क्या है वायरल दावे की सच्चाई, आगे आपको बताएंगे। हमारी अगली खबर होगी उस वायरल वीडियो की जिसमें दावा यह किया जा रहा है कि सड़क पर उत्पात और आगजनी का यह वीडियो फ्रांस का है। क्या है वायरल वीडियो और दावे की सच्चाई, आगे आपको बताते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं फैक्ट चेक की।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली।
7: सबसे पहले हम उस वीडियो की पड़ताल करेंगे जिसमें बीच सड़क पर महिला पुलिसकर्मी और महिलाओं के बीच जोर आजमाइश देखने को मिल रही है। इस खबर के जरिए यह दावा किया जा रहा है कि कॉकरोच जनता पार्टी के हालिया प्रदर्शन का वीडियो है जिसमें दिल्ली पुलिस ने छात्राओं को पीटा। इस खबर की हमने पड़ताल की, क्या सच निकला देखिए।
8: सड़क पर ये हाथापाई देखकर लोग हैरान हो गए। पुलिस वालों से भिड़ने की नौबत क्यों आ गई, ये सवाल गूंजने लगा। सरेराह हो रहे इस तमाशे को देखने के लिए भीड़ इकट्ठा हो गई। कई महिला पुलिसकर्मी काले कपड़े पहने हुई एक महिला के बाल खींचती नजर आ रही हैं, जिसके बाद ये महिला पुलिसकर्मी के बाल खींचने लगी। इस दौरान कुछ महिलाएं उसे पुलिसकर्मियों के शिकंजे से छुड़ाने की कोशिश कर रही हैं। इस वीडियो के जरिए दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो दिल्ली के जंतर मंतर का है, जहां दिल्ली पुलिस छात्रों के साथ बदसलूकी कर रही है। एक फेसबुक यूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, दिल्ली पुलिस को देख लो, छात्रों के साथ कैसी मारपीट कर रही है। #CJP। वहीं कुछ लोग पुलिसकर्मी के बाल खींच रही महिला पर निशाना साधते हुए पुलिस का पक्ष ले रहे हैं। एक एक्सयूजर ने वीडियो को शेयर करते हुए लिखा, पुलिस पर हाथ उठा रही बाल खींच रही है, इस बिगड़ैल की अच्छे से खातिरदारी करनी चाहिए, मजाक बना रखा है। वीडियो पर लिखा है, पुलिस के बाल खींच रही है, हिम्मत तो देखो कॉकरोच की। सोशल मीडिया पर ये वीडियो धड़ल्ले से शेयर किया जा रहा है। इसके जरिए दिल्ली पुलिस को निशाने पर लिया जा रहा है, एक खास नैरेटिव फैलाया जा रहा है, लोग सच झूठ जाने बगैर इस खबर में कूद गए हैं, लिहाजा ये वीडियो इस वक्त खूब सुर्खियों में है।
7: वीडियो में दो बातें गौर करने वाली नजर आई। पहला ये कि कई पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी जो है काले कपड़े पहने हुए नजर आ रही हैं, एक महिला के बाल खींचते हुए भी नजर आ रही है, जिसके जवाब में काले कपड़े वाली महिला भी एक पुलिसकर्मी के बाल खींच रही है। दूसरा ये कि इस दौरान कुछ महिलाएं उसे पुलिसकर्मियों के शिकंजे से छुड़ाने की कोशिश कर रही हैं। सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ये वीडियो इसी मिलते जुलते दावे के साथ शेयर किया जा रहा है, सुर्खियां बटोर रहा है, दावा किया जा रहा है कि ये CJP के प्रदर्शन में हिस्सा लेने वाली महिलाओं के साथ पुलिस की बदसलूकी का सबूत है। जब ये वीडियो हमारे सामने भी आया तो हमने इसकी जांच की और सड़क पर महिलाओं और पुलिसकर्मियों के बीच और हमने जो तस्वीरें देखी, जोर आशमाइश हो रही है और वहां से लोग गुजर भी रहे हैं। अब अगर वीडियो जो है CJP के प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है तो इस दौरान यहां पर पुलिस की बैरिकेडिंग क्यों नजर नहीं आ रही, क्योंकि अमूमन ये होता है कि प्रदर्शन में आए लोगों की भीड़ को संभालने के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग की जाती है ताकि हालात सामान्य रहें, लेकिन यहां पर ऐसा कुछ भी देखने को हमें नहीं मिला। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि किसी विवाद के दौरान पुलिस वालों से महिलाएं भिड़ गईं, इसके बाद हमारा ध्यान पुलिस वालों के कंधे के बैच पर गया। जब हमने इसे जूम करके देखा तो इस पर दिल्ली पुलिस लिखा हुआ नजर आया। इससे तो ये साफ हो गया कि वायरल हो रहा वीडियो जो है दिल्ली का ही है। वीडियो में एक और बात गौर करने वाली हमें नजर आई, जहां पर महिलाओं और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हो रही है, वहां पर बैकग्राउंड में मधवास मेडिसोस नाम की दुकान का बोर्ड हमको नजर आया। जब हमने इस नाम को गूगल मैप्स में सर्च किया तो पुष्टि हुई कि यह मेडिकल स्टोर दिल्ली के रोहिणी स्थित बोध विहार में है। हाल फिलहाल में CJP ने दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया था, रोहिणी में CJP का कोई प्रदर्शन नहीं हुआ था। ऐसे में हमारा पहला सवाल जाहिर तौर पर यही उठता है कि क्या किसी विवाद में हुए झड़प के वीडियो को CJP प्रदर्शन के नाम पर वायरल किया जा रहा है, वीडियो को प्रदर्शन का बताया जा रहा है, लेकिन यहां कहीं पर भी कोई झंडा, पोस्टर या फिर तख्तियां देखने को हमको नहीं मिली। ऐसे में दूसरा सवाल हमारा जाहिर तौर पर यही है कि दिल्ली पुलिस को बदनाम करने के लिए कहीं मारपीट के पुराने वायरल वीडियो को जानबूझकर वायरल तो नहीं किया जा रहा, क्या कुछ सच निकलकर सामने आया? ये खबर सब सोशल मीडिया पर ही वायरल हो रही है। ऐसे में हमारा तीसरा सवाल ये भी निकल कर आता है कि अगर दावा सच है तो खबर मुख्यालय की मीडिया में क्यों देखने को मिली, क्या सच निकला? रिपोर्ट देखिए।
8: वायरल वीडियो चौंका रहा था, पुलिसकर्मी से खुलेआम भिड़ने को लेकर तरह तरह के दावे किए जा रहे थे, लिहाजा सच झूठ जानने के लिए हमने इस खबर की पड़ताल की। सबसे पहले हमने वीडियो के कुछ की फ्रेम्स को निकाला और सर्च किया। इस दौरान हमें 1 अगस्त 2026 को एक पत्रकार के इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपलोड किया गया यही वीडियो मिला। पोस्ट के कैप्शन में बताया गया था कि वीडियो वाली घटना रोहिणी के बुद्ध विहार की है, जहां एक हिंदू युवक की मौत के बाद मृतक के परिजन और पुलिसकर्मी आपस में भिड़ गए थे। इस जानकारी के आधार पर हमने अपनी पड़ताल को आगे बढ़ाया। इस दौरान हमें कई सोशल मीडिया पोस्ट मिले जिनमें वायरल वीडियो को दिल्ली के रोहिणी स्थित बुद्ध विहार की घटना का ही बताया गया है। एक पोस्ट में बताया गया है कि ये घटना दिल्ली के रोहिणी में मौजूद बुद्ध बाजार की है। वहाँ उस समय हड़कंप मचा जब गणेश नामक युवक का शव किराए के मकान से मिला। इस घटना के सामने आने के बाद मृतक के परिजनों ने सड़क पर जमकर प्रदर्शन किया और मकान मालिक पर गंभीर आरोप लगाए। इसके अलावा सर्च के दौरान कई YouTube चैनलों पर भी इस घटना से जुड़ी रिपोर्ट्स मिली। रिपोर्ट्स के अनुसार रोहिणी के बुद्ध विहार में गणेश नामक युवक का शव मिलने के बाद इलाके में तनाव फैल गया था और विरोध प्रदर्शन के दौरान परिजनों की पुलिस के साथ हाथापाई भी हुई थी। इन रिपोर्ट्स में बताया गया है कि युवक की मौत के बाद परिजनों ने मकान मालिक और स्थानीय पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए थे। हमारी जांच में मिले साक्ष्यों से स्पष्ट है कि वीडियो के साथ किया जा रहा दावा गलत है। ये वीडियो जंतर मंतर पर पुलिस कार्रवाई का नहीं बल्कि रोहिणी का है, जहां एक युवक की संदिग्ध मौत के बाद मृतक के परिजनों और पुलिसकर्मियों के बीच झड़प हो गई थी। ज्योति द्विवेदी के साथ टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज़ टुडे।
7: अब वायरल हो रही दूसरी खबर पर हम नजर डालेंगे। फ्रांस में शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर शुरू हुआ छात्र आंदोलन अब कई हिस्सों में फैल चुका है। जेंजी छात्र स्कूलों में बढ़ती भीड़, जर्जर इमारतों और शिक्षकों की कमी जैसे मुद्दों को लेकर सड़कों पर हैं। आंदोलन के दौरान कुछ जगहों पर छात्रों और पुलिस के बीच झड़पें भी देखने को मिली। इसी प्रदर्शन से जोड़ते हुए एक वीडियो खूब चर्चा में बना हुआ। दावा है कि सड़क पर आगजनी करते उत्पात मचाते लोगों का यह वीडियो फ्रांस का है और यह हालिया प्रदर्शन के दौरान का यह वीडियो है। हमने पड़ताल की, देखिए।
4: फ्रांस में शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर छात्र सड़कों पर उतर गए हैं। सितंबर में शुरू हुआ ये आंदोलन अब पूरे देश में फैल गया है। इस दौरान छात्रों ने कई स्कूलों को भी बंद कराया और कई जगह पर छात्रों और पुलिस की झड़पें भी हुई। प्रदर्शन के दौरान कई स्कूलों में तोड़फोड़ की भी खबरें आई। इसी से जोड़कर सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें भीड़ एक गाड़ी नुमा ढांचे को पलटती हुई दिखाई दे रही है और मौके पर आग लगी हुई भी दिखाई दे रही है। वीडियो को फ्रांस में हो रहे छात्रों के हालिया प्रदर्शन का बताकर शेयर किया जा रहा है। एक एक्स यूजर ने इस वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि फ्रांस के हालात दिन प्रतिदिन खराब होते जा रहे हैं। इसका कारण अवैध घुसपैठिए है। पहले यहाँ भी तमाम फ्रांसीसियों ने इन घुसपैठियों की मदद की, मानवीय आधार पर बसने में सहायता की, आज वही फ्रांस को चला रहे हैं। कई लोग इस वीडियो को लगातार शेयर कर रहे हैं।
7: बता दें कि फ्रांस में पढ़ाई लिखाई छोड़कर सड़कों पर उतरी जेंजी पीढ़ी ने इमैनुअल मैक्रों सरकार के खिलाफ आर पार का मोर्चा खोल दिया है। टपकती छतें, क्लासरूम में रेंगते कॉकरोच, जर्जर इमारतें और शिक्षकों की भारी किल्लत से जैसे बुनियादी मुद्दों ने छात्रों के सब्र का बांध पूरी तरीके से तोड़ दिया है। सैकड़ों हाई स्कूलों पर ताले जड़कर और मुख्य रास्तों पर कचरे के डिब्बों से बैरिकेटिंग कर किशोरों ने सरकार के खिलाफ खुली बगावत का ऐलान कर दिया है। इन सबके बीच ये वीडियो सामने आया। दावा यह किया जा रहा है कि फ्रांस में हो रहे हालिया प्रदर्शनों के दौरान की ये तस्वीरें हैं। हमने इस खबर की तहकीकात की। वीडियो में लोग एक कंस्ट्रक्शन हट को पलटते हुए दिख रहे हैं। एक जगह आग भी देखने को मिल रही है और इस दौरान हमें जो सबसे अटपटा देखने को मिला वो ये कि लोग खुलेआम सड़क पर उत्पात मचा रहे हैं। कुछ फोटोग्राफर इस दृश्य को अपने कैमरे में कैद भी कर रहे हैं, लेकिन यहां पर एक भी पुलिस के जवान नजर क्यों नहीं आ रहे? ये कैसे हो सकता है? भीड़ को खुलेआम मनमानी करने की छूट कैसे दी जा सकती है? इसके अलावा फ्रांस में छात्रों के प्रदर्शन को अंतर्राष्ट्रीय मीडिया लगातार कवरेज कर रहा है। इस आंदोलन की कई वीडियोस और तस्वीरें भी सामने निकल कर आई हैं। हाल फिलहाल में इस तरह का वीडियो सामने नहीं आया जो दावे की सत्यता पर संदेह हमको जरूर खड़ा कर रहा था। वीडियो में एक चीज और गौर करने वाली नजर आई कि एक फ्रेम में सामने एक इमारत पर कुछ शब्द लिखे नजर आए। जब हमने भाषा एक्सपर्ट से इसके बारे में पूछा तो ये सामने निकल कर आया कि ये फ्रेंच है, यानी ये वीडियो फ्रांस का हो सकता है। ऐसे में हमारा पहला सवाल जाहिर तौर पर यही उठता है कि अगर ये वीडियो फ्रांस का है तो ये सिर्फ सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर ही क्यों देखने को मिल रहा है? हमारा दूसरा सवाल ये कि कहीं आगजनी और प्रदर्शन की पुरानी वीडियो को जानबूझकर फ्रांस से जोड़कर भ्रम तो नहीं फैलाया जा रहा? क्या कुछ सच निकलकर सामने आया? रिपोर्ट देखिए।
4: इन सवालों का जवाब जानने के लिए फैक्ट चेक टीम वीडियो की जांच में जुटी। सर्च के दौरान हमें एक YouTube अकाउंट से 28 नवंबर 2020 को अपलोड किया गया वीडियो मिला। इस वीडियो के साथ मौजूद डिस्क्रिप्शन और टाइटल में इसे फ्रांस के पेरिस में पुलिस हिंसा और सिक्योरिटी बिल के खिलाफ प्रदर्शन बताया गया था। इसी दौरान हमें इससे जुड़ी तस्वीर एक और वेबसाइट पर भी प्रकाशित मिली, जिसमें बताया गया था कि 28 नवंबर 2020 को फ्रांस में हुए प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने एक कंस्ट्रक्शन हट को पलट दिया था। इस तस्वीर का क्रेडिट समाचार एजेंसी एपी को दिया गया था। वायरल वीडियो से जुड़ी तस्वीर हमें एक आधिकारिक वेबसाइट पर 28 नवंबर 2020 को प्रकाशित मिली। इस रिपोर्ट में भी इसे फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुए सिक्योरिटी कानून और पुलिस हिंसा के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान का ही बताया गया। हमारी जांच में मिले साक्ष्य ये स्पष्ट करते हैं कि फ्रांस में हो रहे हालिया प्रदर्शनों को बताकर वायरल हो रहा ये वीडियो असल में करीब 6 साल पहले पेरिस में हुए प्रदर्शन के दौरान का है। टीम फैक्ट चेक, गुड न्यूज़ टुडे।
7: फिलहाल लेना है छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के उस पार वायरल वर्ल्ड की हलचल।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
9: गुड न्यूज टुडे।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला।
1: वक्त तो चला फैक्ट चेक के सफर के आखिरी दौर का। आप देखिए कुछ ऐसे वीडियोस जिन्हें देखने के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आना लाजमी है।
2: कहते हैं कि एक माँ अपने बच्चों के बेहतर भविष्य और उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जब बात जिम्मेदारी और संघर्ष की आती है तो वो हर मुश्किल चुनौती को मुस्कुराकर पार कर लेती है। लद्दाख से आई इस दिल छू लेने वाले वीडियो को देखकर हर किसी का दिल पसीज रहा है और वो लोग इस माँ के जज्बे को सलाम कर रहे हैं। महिला पेट्रोल पंप पर मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी निभा रही है। वो एक बाइक में पेट्रोल भर रही है, लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात यह है कि उसकी पीठ पर कपड़े के सहारे एक नन्हा बच्चा बंधा हुआ है। टोपी पहने ये मासूम बच्चा अपनी माँ की पीठ से बार बार बाहर झांकता नजर आता है, जबकि माँ बिना किसी शिकायत के अपने काम में जुटी हुई है।

वार पलटवार, आत्मरक्षा सब है इस कर्तव्य में। और सबसे दिलचस्प है लाठियों पर इन नन्हे खिलाड़ियों का संतुलन। नन्हे नन्हे हाथों में लाठियां ऐसे घूम रही हैं मानो खास संगीत पर थिरक रही हो। छोटी हैं पर आत्मविश्वास देखिए इनका। खेल चाहे कितना भी आक्रामक नजर आए, इनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है, मानो जीत पर पूरा भरोसा है।

इस नन्हे बच्चे के करतब को देखकर लोग हैरान हैं। बिना किसी सहारे के सीधी दीवार पर सबको चौंका दिया है। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन बोलते हुए ये बच्चा ऐसे दीवार पर चढ़ रहा है मानो ये इसके लिए रोज की बात है। हालांकि ऊपर एक जगह इसकी पकड़ थोड़ी ढीली पड़ती है और वो नीचे गद्दे पर गिरता है, लेकिन ये फिर भी रुकता नहीं है, फिर दीवार पर चढ़ने लगता है। सैनिकों का जीवन बहुत कठिन होता है, लेकिन जब वे घर लौटकर अपने बच्चों से मिलते हैं तो वो खुशी दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होती है। ये वीडियो इसी बात की तस्दीक कर रहा है। भारतीय सेना के एक जवान 45 दिनों की ड्यूटी के बाद जब घर वापस लौटे तो उनकी नन्ही बेटी की खुशी का ठिकाना ना रहा।

पापा पापा चिल्लाते हुए दौड़कर गले मिलने का ये पल देख लोग इमोशनल हो रहे हैं। गोद में आने के बाद बच्ची की मासूम बातें शुरू होती हैं, जिसे सुनकर पिता हंस पड़ते हैं और उसे चूम लेते हैं।

0: कभी कभी रास्ते में मिलने वाला कोई अनजान इंसान ऐसी मदद कर जाता है जिसे हम लंबे समय तक याद रखते हैं। मदद हमेशा बड़ी हो यह जरूरी नहीं, किसी मुश्किल वक्त में छोटी सी कोशिश भी सामने वाले के लिए बहुत मायने रखती है, खासकर तब जब रास्ता सुनसान हो, चारों तरफ अंधेरा हो और घर अभी काफी दूर हो। वायरल हो रहा ये वीडियो इसी छोटी लेकिन दिल छू लेने वाली मदद की कहानी बता रहा है। दरअसल रात के वक्त एक शख्स अपनी साइकिल से घर की ओर जाते हुए दिखाई दे रहा है। साइकिल पर उसके पीछे स्कूल ड्रेस में एक बच्ची भी बैठी है। रास्ता जंगल के बीच से गुजरता नजर आ रहा है और आसपास काफी अंधेरा है। इसी दौरान पीछे से एक कार आती है। कार में बैठे शख्स की नजर साइकिल पर जा रहे चाचा और उनके साथ बैठी बच्ची पर पड़ती है। इसके बाद ड्राइवर ने कार के हेडलाइट से उनका रास्ता रोशन कर दिया। इससे साइकिल से जा रहे चाचा को अंधेरे रास्ते पर आगे देखने में आसानी हो रही थी। कार ड्राइवर कुछ दूरी तक उनके पीछे चलता रहा ताकि उन्हें अकेले अंधेरे में सफर ना करना पड़े। मदद का ये अंदाज लोगों का दिल जीत रहा है। बात तो सही है, उम्र का स्वभाव से क्या लेना देना, जिम्मेदारियों और परिस्थितियों के हिसाब से थोड़ा बदला बदला जरूर नजर आता है, लेकिन मौका मिले तो फिर अपनी रो में आते देर नहीं लगती। इन बुजुर्ग महिलाओं को ही देखिए, जिम्मेदारियों से मुक्त हो गई हैं, तो कैसे अपने पुराने रंग में लौट आई हैं। दोस्त, बेफिक्री और दुनिया जहां की बातें, हंसती मुस्कुराती दोस्ती निभाती इन बुजुर्ग महिलाओं का वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है। परछाइयां भी बोल सकती हैं, पर इसके लिए भी हुनर चाहिए जैसा इनके पास है। देखिए कैसे उंगलियों के हरकतों से दीवार पर एक कहानी कह रही है, एक नन्ही डांसर की कहानी। पर्दे पर किरदार भले ही उंगलियों के परछाइयों से उकेरे गए हों, पर इनकी कहानी लिखने और उसे दीवार पर सजीव करने के लिए भी तो खास हुनर चाहिए। वीडियो लोगों को पसंद आ रहा है।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
5: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें, किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
3: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: अच्छी खबर में किंतु की गुंजाइश ना रह जाए, बुरी खबर से परंतु सच्चाई ढूंढ लाए, ऐसी अच्छी खबर सच्ची खबर के साथ मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। एक ऐसा शो जहां दिन की बड़ी खबर आपको आसान शब्दों में पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे, यानी बड़ी खबर का सच्चा और अच्छा विश्लेषण। तो आपको बता दें कि सजने लगे माँ के भव्य और दिव्य दरबार, शक्ति उपासना के पर्व के लिए होने लगा माँ का आगमन, साथ ही ढोल नगाड़ों की थाप के बीच मां की भव्य आराधना की तैयारी, भक्ति आस्था और उत्साह का गरबा देखिए। बिना जमीन खोदे खेती का रास्ता, जी हां, 10 रुपए में गाय के गोबर से सीड बॉल में मिलेगी मनचाही हरियाली। ये तमाम खबरें होंगी, लेकिन पहले हेडलाइंस।
5: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
2: कनाडा लेखिका एन कार्लसन को मिला 2026 का साहित्य नोबेल पुरस्कार, चर्चित किताबों में द ब्यूटी ऑफ द हस्बैंड शामिल।

में अब तक 19,13,000 से अधिक श्रद्धालु का बना नया रिकॉर्ड। देश भर में नवरात्र की तैयारियां तेज, कई मां की प्रतिमाओं को दिया जा रहा अंतिम रूप, तो गरबा की ड्रेस और साज सज्जा के सामान से सजे बाजार, कारोबारी खुश। दुनिया के 50 सबसे बेहतरीन डीप फ्राई व्यंजनों में शामिल मलाई कोफ्ता, टेस्ट एटलस की लिस्ट में मिला 10वां स्थान, चिकन 65 को 32वां और पापड़ी चाट को 40वां स्थान। रणथंभौर में तेंदुए के हमले रोकने का हाईटेक प्लान, लेपर्ड की मॉनिटरिंग के लिए लगाए जाएंगे साइलेंट डिवाइस और हाई ट्रैक सेंसर, जानवर आते ही बजे गाला। अच्छी और सच्ची खबर में सबसे पहले बात दुर्गोत्सव की, जी हाँ, जिसकी शुरुआत 2 दिन बाद होने जा रही है। ऐसे में देश के तमाम शक्तिपीठों और देवी मंदिरों में शारदीय नवरात्र को लेकर तैयारी करीब करीब पूरी कर ली गई है। वहीं दुर्गा पूजा पंडालों में देवी की प्रतिमाओं का आगमन भी शुरू हो चुका है। शक्ति उपासना के इस पर्व से जुड़ी तैयारियों पर देखिए ये रिपोर्ट।

0: शारदीय नवरात्र का पर्व नजदीक आया तो सज गए माँ के दरबार। देवी दुर्गा की प्रतिमाओं का होने लगा है आगमन। राज्य कोई भी हो, शहर कोई भी हो, शक्ति उपासना के इस पर्व को लेकर रौनक हर तरफ अब नजर आने लगी है। ये तस्वीर महाराष्ट्र के अमरावती की है, जहां विदर्भ की कुलस्वामिनी के रूप में प्रसिद्ध अम्बा माता का मंदिर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा है। मंदिर की साफ सफाई और रंग रोगन के साथ माता के सोने चांदी के आभूषणों को भी चमकाया जाने लगा है।
1: हम फिलहाल है विदर्भ की कुलस्वामिनी अमरावती की माँ अम्बे के इस मंदिर में, जहाँ पर आप देख सकते हो कि मंदिर को जो है पूरी तरीके से लाइटिंग से सजाया है। यहाँ पर पूरी तरीके से रोशनाई शुरू कर दी है और अब नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि उत्सव को बस कुछ ही दिन बचे हैं। उससे पहले जो है हर देवी का जो मंदिर है वो अब सजना शुरू हुआ है और विदर्भ की कुलस्वामिनी माँ अम्बे जगदम्बा और एकवीरा माता के मंदिर में आप देख सकते हो कि यहाँ पर लाइटिंग पूरी तरीके से यहाँ पर लग चुकी है, तैयारियां सब हुई है।
0: नवरात्रि के दौरान देवी माँ की इस दिव्य धाम में विदर्भ ही नहीं महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु माँ के दर्शन के लिए आते हैं, जिसे देखते हुए श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मंदिर परिसर में विशेष व्यवस्था की गई है। दर्शन के लिए अलग अलग पंडाल बनाए गए हैं। महिला और पुरुष श्रद्धालुओं के लिए अलग अलग कतारों की व्यवस्था की गई है।
2: भक्तों के लिए दर्शन के लिए मंदिर रोज सुबह 6 बजे से तो रात को 11:30 तक खुला रहेगा। तो मंदिर की तैयारी, भाविक भक्तों की गर्दी बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, उसके अनुसार हमने उसके पर्याप्त व्यवस्था हम लोगों ने करी है। उसमें आपने जो जैसा अभी बताया आपने कि पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए एक विस्तीर्ण मंडप का हमने प्रावधान किया, मंडप वहाँ पर हमने खड़ा किया है और सभी भक्तों को, महिला एवं पुरुष भक्तों को, मंदिर की जो पूर्व दिशा है उस तरफ से प्रवेश मिलने वाला है।
0: देवी दुर्गा के स्वागत के लिए माँ के धाम ही नहीं बल्कि पूजा पंडालों में भी तैयारी पूरी कर ली गई है और अब इन पंडालों में माँ की मूर्तियों का आगमन भी शुरू हो चुका है। यूपी के झांसी से आई इस तस्वीर में माँ के स्वागत में भक्तों का जोश और उत्साह देखते ही बना। नव दुर्गा उत्सव समिति की ओर से देवी की ये सुंदर प्रतिमा झोकनबाग शहीद पार्क में स्थापित की जाएगी। बताया गया है कि समिति पिछले 42 वर्षों से लगातार माँ दुर्गा की स्थापना और नवरात्रि उत्सव का आयोजन करती आ रही है। समय बदला, पीढ़ियां बदली, लेकिन देवी दुर्गा की आराधना और झोकनबाग शहीद पार्क की ये परंपरा आज भी उसी उत्साह के साथ जारी है।
3: नवदुर्गा उत्सव समिति झोकनबाग शहीद पार्क सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। इधर पे शहीद पार्क पे हम लोग माता रानी को विराजमान करते हैं पिछले 42 साल से और हमारी मूर्ति जो है वो सागर से आई है, विश्वकर्मा आर्ट से। जोश तो आप देख ही सकते हैं, आज झांसी नगर में प्रथम दुर्गा आगमन हुआ है और आप उत्साह, हर्षोल्लास सब देख ही रहे होंगे।
0: देश की राजधानी दिल्ली के सीआर पार्क में भी माँ दुर्गा से जुड़ी सभी तैयारियां करीब करीब पूरी कर ली गई है। चितरंजन पार्क के बड़े पंडालों में एक बेला ग्राउंड का ये पंडाल भी है, जहां पर हर साल के ही जैसे इस साल भी भव्य और खूबसूरत पंडाल बनाया जा रहा है, जहां 15 अक्टूबर से पूजा शुरू होगी जो विजयदशमी तक चलेगी।
4: अभी हम दिल्ली के चितरंजन पार्क के मेला ग्राउंड में मौजूद हैं, जहां पर बड़ा पंडाल बनाया जाता है और भव्य उत्सव नवरात्रों के दौरान मनाया जाता है, भव्य माता की प्रतिमा स्थापित की जाती है और इसको लेकर के यहां पर तैयारियां शुरू है। आप देख सकते हैं दुर्गा पूजा समिति सीआर पार्क मेला ग्राउंड है और इसी के तौर पे कई वर्षों से यहाँ मनाया जाता है। 50 साल इस पूजा का हो चुका है और इस बार 51वां मनाया जाएगा और देख सकते हैं किस तरीके से भव्य जो पंडाल है वो यहाँ पर बनाने का कार्य आपको शुरू हो गया है। बता दें जो पूजा है चितरंजन पार्क में वो पंचमी के दिन से शुरू होता है और पंचमी इस बार 15 अक्टूबर को पड़ रही है, तो उसको लेकर के तमाम तैयारियां जो है वो की जा रही है। देख सकते हैं वाटर प्रूफ जो टेंट है वो बनाया जा रहा है और जो कर्मचारी हैं वो इसके कार्य में लगे हुए हैं।
0: उधर देश और दुनिया भर में अपनी दुर्गा पूजा के लिए मशहूर बंगाल में देवी दुर्गा के स्वागत के लिए एक से बढ़कर एक पूजा पंडाल बनाए गए हैं। इन्हीं में से एक कोलकाता के पार्क स्ट्रीट का ये पूजा पंडाल भी है, जिसे शिव तांडव थीम पर बनाया जा रहा है। अलेन पार्क में कोलकाता सनातनी संघ कमेटी दुर्गा पूजा करा रही है, जिसने ये भव्य पंडाल बनवाया है।
5: पूजा का ये शंकर भगवान का विराट स्वरूप है, शिव तांडव का स्वरूप इसमें देखिए। एक तरफ आप भगवान के जटा में देखिए, जिस समय माँ जब आग में कूद गई थी उसके बाद का दृश्य है, और रुद्र रूप इनका यहाँ पर है और बगल में तांडव करते हुए है। इधर में आपके यहाँ पर उनकी अभिषेक करते हुए रहेगा। सामने आपका आदि शिव का है। यहाँ पांच तरह की एक तरह नंदी पे शिव जी बैठे हैं, पांच तरफ भगवान शिव का ही पूरा तांडव लीला इसमें है।
6: अभी आधा हुआ है, कब तक ये बनकर तैयार हो जाएगा?
5: हम लोग का टारगेट है 11 तारीख को यहाँ पर हम लोग का उद्घाटन का प्रोग्राम है, हम लोग देवी पक्ष में करेंगे।
0: शारदीय नवरात्र का ये पावन पर्व केवल एक धार्मिक अनुष्ठान या पूजा पाठ नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक एकता, सामाजिक सद्भाव और भारत की विविधता का जीवंत उत्सव है, जिसकी शुरुआत 2 दिन बाद होने जा रही है। अमरावती से धनंजय साबले, झांसी से अजय झा और दिल्ली से आशुतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।
7: तो देश में त्योहारों का सीजन शुरू हो चुका है। 2 दिन बाद नवरात्र शुरू हो रही है और इसी के साथ कई राज्यों में गरबा और डांडिया नाइट्स से जुड़े आयोजन भी शुरू हो जाएंगे। लेकिन इससे पहले गुजरात के वडोदरा में गरबा का विश्व रिकॉर्ड बनाया गया। वहां विकसित भारत संकल्प गरबा कार्यक्रम में 46,818 लोगों ने एक साथ गरबा खेलकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जबकि जामनगर में अंगारा रास की तैयारी कलाकारों ने शुरू कर दी है।

रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाता ग्राउंड और उस ग्राउंड में गरबा करते हजारों लोग, जिनका ये उत्साह और ये उमंग देखने को मिला गुजरात के वडोदरा में, जहां एक दिन पहले वडोदरा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की ओर से ये शानदार और भव्य आयोजन किया गया। दावा है कि गरबा के इस कार्यक्रम में करीब 50,000 लोगों ने भाग लिया। इतनी बड़ी संख्या में जब लोगों ने गरबा के गीत संगीत पर एक साथ थिरकना शुरू किया तो लोगों का उत्साह देखते ही बना।

0: वडोदरा म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा गरबा का आयोजन किया जा रहा है और यहाँ पे खूब ही अच्छे और सच्चे मन से हम लोग माता जी की श्रद्धा से गरबे खेलने आए हैं और विकसित भारत थीम पे हमें बहुत ही गर्व है।
1: विकसित भारत पे आज यहाँ पे देख सकते हो काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पे यूनाइटेड वे ऑफ वडोदरा जो वर्ल्ड प्रसिद्ध है गरबा जो आज यहाँ पर काफी जनसंख्या में लोग आए हुए हैं। सो आप देख सकते हो इतना अच्छा मैनेजमेंट है, बहुत अच्छा। और अतुल दादा तो हमारे सबके फेवरेट है जो इतना वर्षों से सिंगिंग कर रहे थे।
2: अतुल पुरोहित के साथ विकसित भारत की थीम पे यहाँ पे यूनाइटेड वे के ग्राउंड पे आज खेलने आए थे। आज का हमारा ये जो एनर्जेटिक एक्सपीरियंस है, जैसे आप सुन सकते हो बैकग्राउंड में किस हिसाब से चल रहा है, पीछे सब स्टूडेंट्स और वो सब विकसित भारत पे डांस और गरबा परफॉर्म कर रहे हैं।
3: नगर निगम आयुक्त अरुण महेश बाबू के अनुसार विकसित भारत संकल्प गरबा कार्यक्रम विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत आयोजित किया गया था, जिसकी शुरुआत मां अम्बे की आरती से हुई। कार्यक्रम में चार विषय स्वच्छ भारत, विकसित भारत, नारी शक्ति और कला नगरी पर आधारित एक विशेष गरबा भी आयोजित हुआ, जिसमें अलग अलग समूहों ने इन चार विषयों पर खास संदेश दिए और हाथों में बैनर और प्ले कार्ड लेकर गरबा किया। वहीं इस कार्यक्रम में युवाओं के पसंदीदा गरबा गायक और मशहूर लोक कलाकार अतुल पुरोहित ने भी अपनी परफॉर्मेंस से समा बांध दिया।
4: हमारा गुजरात का जो कल्चर है, बड़ौदा की जो सुगंध है, जो ग्लोबल है, उसको और आगे बढ़ाने के लिए ये प्रयास है और इसमें हम लोग गुजराती परंपरागत कल्चरल गरबा ही गाते हैं। बस गरबा किसको बोलते हैं ये आज बड़ौदा से आप इसके माध्यम से आप देख सकेंगे।
3: हालांकि अभी शारदीय नवरात्रि के शुभ दिनों की शुरुआत हुई नहीं है, लेकिन पूरे गुजरात में अभी से गरबा, डांडिया और अंगारा रास को लेकर लोगों में गजब की एनर्जी देखने को मिल रही है। ऐसी ही एक तस्वीर जामनगर से सामने आई, जहां नवरात्रि के मौके पर पारंपरिक अंगारा रास की तैयारी कलाकारों ने शुरू कर दी है। नवरात्रि के दौरान किया जाने वाला यह अंगारा रास एक बेहद रोमांचक, साहसिक और पारंपरिक लोक नृत्य है। इस अनूठे रास में पुरुष कलाकार कुछ यूं हाथों में जलती हुई मशाले लेकर धधकते हुए अंगारों के बीच नंगे पैर नृत्य करते हैं।
5: हम अंगारों पे खेलते हैं और वो भी खुले पैर खेलते हैं, कोई लोशन या कुछ अप्लाई भी नहीं करते हैं और ये हमारे ऊपर माता जी का आशीर्वाद है जो हमारे पैर में कुछ होता नहीं है, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और ये मसाला रस हम पिछले 25 सालों से खेल रहे हैं और ये गरबा हमारा गरबा मंडल है जो ये पिछले 70 सालों से यहाँ पे कार्यरत है। आज तक ऐसा कुछ बना हो, ऐसा कुछ अकस्मात नहीं हुआ है कि जो किसी का पैर जला हो या कुछ हुआ हो, ऐसा आज तक नहीं हुआ है। जो हमारे ऊपर वो माता जी का आशीर्वाद और माता जी की कृपा बनी रही है और हम माता जी का आशीर्वाद समझ के हम ये मसाला रस खेल रहे हैं।
3: अंगारा रास, गरबा और डांडिया गुजरात की समृद्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक पहचान के सबसे महत्वपूर्ण और जीवंत लोक नृत्य हैं, जो वर्षों से खासतौर पर नवरात्रि के दौरान किए जाते हैं, लेकिन अब ये गुजराती लोक नृत्य इतने लोकप्रिय हो चुके हैं कि इसे नवरात्रि के दौरान देश के दूसरे राज्यों में भी बड़े उत्साह के साथ लोग करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: और अब बात जमीनों को हरा भरा करने वाली ऐसी सरल तकनीक की, जिसके लिए सिर्फ 10 रुपए की एक गोली ही काफी है। गाय के गोबर से तैयार इस गोली में पर्यावरण संरक्षण का संदेश छिपा है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की एक गौशाला में गायों के गोबर से सीट बॉल तैयार की जा रही है, जिसका मकसद बिना जमीन खोदे ही खाली जमीनों पर हरियाली बढ़ाना और खेती करना है। इस सीट बॉल में गोबर, मिट्टी और बीजों का मिश्रण है, जिसे बारिश से पहले बंजर या फिर खाली जमीन में फेंक दिया जाता है, जो जमीन की मिट्टी में जाते ही बारिश की वजह से नमी पाकर खुद ही अंकुरित हो जाते हैं। इन सीड बॉल्स में गेंदे के फूलों के अलावा इलायची, लौंग, हरी मिर्च, लौकी, तोरई, भिंडी और बैंगन जैसी सब्जियों के बीजों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है।
7: भारतीय संस्कृति में गाय को गौमाता का दर्जा हासिल है। उसको पूजने की परंपरा है। सनातन धर्म में गौ को मातृत्व, पोषण और दिव्यता के प्रतीक के तौर पर देखते हैं। विश्व की सबसे प्राचीन और पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों में एक आयुर्वेद में असाधारण गुणों की वजह से गाय के दूध को अमृत माना जाता है। गाय के दूध से हमारे शरीर को पोषण मिलता है, जिसकी वजह से सेहत अच्छी रहती है। उसी तरह गाय के गोबर को मिट्टी के लिए सबसे बेहतर पोषक माना जाता है। फर्टिलाइजर यानी रासायनिक खादों की तुलना में खेती के लिए बेहतर वरदान के तौर पर देखा जाता है। पहले से ही खेती में गोबर का इस्तेमाल मिट्टी को उपजाऊ बनाने, पौधों को पोषण देने और खेतों में पानी रोकने की क्षमता बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ताकि फसल की पैदावार में कई गुना का इजाफा हो सके। अब इस गोबर का महत्व और बढ़ गया है, जब से सहारनपुर के कान्हा उपवन नाम की इस गौशाला में गाय के गोबर से सीड बॉल तैयार होने लगी है। आमतौर पर सीड बॉल में मिट्टी, जैविक खाद और बीजों का मिश्रण होता है, जिसका इस्तेमाल बंजर या मुश्किल जगहों पर आसानी से पौधे उगाने के लिए किया जाता है। जब बारिश का मौसम आता है तो नमी पाकर सीड बॉल पर लगी मिट्टी की परत घुल जाती है और अंदर का बीज अंकुरित होकर पौधा बन जाता है। सीड बॉल को अर्थ बॉल या सीड बम भी कहते हैं। कान्हा उपवन गौशाला में पर्यावरण को हरा भरा बनाने के लिए नए तरीके से सीड बॉल तैयार की जा रही है। बंजर या कठिन जगहों पर हरियाली बढ़ाने के लिए यहाँ गाय के गोबर में गेंदे जैसे फूलों और कई सब्जियों के बीज डाले जा रहे हैं, जो जमीन की मिट्टी में जाते ही खाद और नमी पाकर खुद ही अंकुरित हो जाते हैं। विशेष तौर से तैयार किए जा रहे इन सीड बॉल का इस्तेमाल सहारनपुर नगर निगम की तरफ से जिले में हरियाली बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। खासकर ढमोला और पांव धोई नदी के किनारों के अलावा बंजर और दुर्गम स्थानों को भी हरा भरा करने के लिए इनका इस्तेमाल हो रहा है, जहां आमतौर पर नगर निगम के लिए जुताई या नियमित देखभाल मुश्किल होती है।
8: हमेशा गाय के गोबर से तैयार करेंगे, जो इसका फायदा जो उसमें गेंदे का फूल डालते हैं, इसे जैसे सीड बॉल हम जहाँ भी डाल लेंगे तो उसमें काफी बीज डाल रखेंगे, जो उसका बीज होगा उगेगा पौधा, उससे जो आगे और जड़ेंगे जैसे बीज तो और काफी तैयार होंगे, इससे भी पौधे तैयार हो जाते हैं तो काफी तैयार होंगे पौधे से।
7: गौशाला में हर दिन करीब 100 से 150 सीड बॉल तैयार की जा रही है। इनकी मांग सहारनपुर के अलावा उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों में भी बढ़ रही है। हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, मध्य प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों से भी इसकी डिमांड आने लगी है। गोबर से तैयार किए गए सीड बॉल की ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन भी बिक्री हो रही है। 10 रुपए की सीड बॉल के जरिए लोगों को फूलों और सब्जियों के पौधे उगाने का विकल्प मिल रहा है।
8: यहाँ पर गाय 550 के करीब हो रही है फिलहाल। ये नवादा में गौशाला है, यहाँ हमारा जो पशु फिरते हैं सहारनपुर में जो आते हैं सारे, ये 100-150 के करीब बॉल बनाते हैं रोज डेली। ये जैसे कहीं जा रहे टूर पर जा रहे, जैसे बॉल ले रहे हम साथ में, कहीं डाल दी उसका जो बीज अंदर जमेगा उससे काफी पौधे तैयार होंगे, इसके गंदगी वाली जगह इसकी काफी डिमांड है हमारे पास, जैसे पंजाब से आ रही, हरियाणा से आ रही, उत्तर प्रदेश में काफी आ रही, दिल्ली से आ रही, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, सहारनपुर से भी काफी आ रही।
7: नगर निगम की तरफ से इस गौशाला में सड़कों पर आवारा घूमने वाले गौवंश को संरक्षण दिया जाता है, जिसकी वजह से गौशाला को आत्मनिर्भर बनाने के लिए गोबर और गौमूत्र से कई तरह के उत्पाद तैयार किए जाते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस गौशाला का निरीक्षण कर चुके हैं और यहाँ बनने वाले उत्पादों की तारीफ कर चुके हैं। अब इसी कड़ी में गौशाला ने गोबर से सीड बॉल बनाने की शुरुआत की है। गौशाला की तरफ से ये प्रयोग गोबर के बेहतर इस्तेमाल, आत्मनिर्भरता और पर्यावरण संरक्षण को एक साथ जोड़ने की दिशा में एक अनोखी पहल है। सहारनपुर से संवाददाता राहुल कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: इसी के साथ अच्छी खबर सच्ची खबर में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही, लेकिन रात 9 बजे मेरे साथ देखना ना भूले न्यूज पथ।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
10: चरण स्पर्श करने के नियम क्या हैं, क्या महिलाओं को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए, क्या लेटे हुए सोए हुए व्यक्ति के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए, क्या है चरण स्पर्श की महिमा और क्या हैं इसके नियम और सावधानियां, जानिए मेरे साथ।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें, किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
11: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
12: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
13: और दुर्भाग्य कहता है
12: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
11: अविश्वास में विश्वास बसता है,
12: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
14: गुड न्यूज टुडे।
12: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
9: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
14: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
12: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं

0: और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। दिनांक 9 अक्टूबर 2026, दिन शुक्रवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, रात के 9:35 तक। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, रात के 9:19 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। हम आज आपको बता रहे हैं कि केवल चरण स्पर्श करने से, केवल झुकने से आपका भाग्य कैसे चमक सकता है। चरण स्पर्श से आपके जीवन में सफलता कैसे आ सकती है। चरण स्पर्श करने का महत्व क्या है? देखिए, हिंदू संस्कारों में अभिवादन की परंपरा पाई जाती है। छोटों को भी और बड़ों को भी अभिवादन किया जाता है। अभिवादन के कई तरीके हैं, हाथ जोड़कर प्रणाम करना और चरण स्पर्श करना एक अभिवादन ही है। लेकिन चरण स्पर्श करना एक विशेष आध्यात्मिक और एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया भी है। सही तरीके से चरण स्पर्श करके अद्भुत लाभ हो सकते हैं। अगर आप सही तरीके से सही व्यक्ति के चरण स्पर्श करते हैं तो इससे आपका भाग्य बेहतर हो सकता है, संकट मिट सकते हैं और ईश्वर की अनुभूति हो सकती है। शास्त्र कहता है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धो पसेविना चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। नियमित रूप से अभिवादन करने से आयु, विद्या, यश और बल बढ़ जाता है। मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, करियर में सुधार होगा, परिवार में खुशहाली आएगी, छोटी यात्रा हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, करियर में जोखिम ना लें। सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि,
करियर में कुछ बदलाव होता दिख रहा है, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, धन लाभ के योग बने हुए हैं। माता लक्ष्मी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। तो चरण स्पर्श आपके भाग्य को बदलने की ताकत रखता है। चरण स्पर्श से लाभ क्यों होते हैं, क्यों किसी का पैर छूने से फायदा होता है? देखिए, हर व्यक्ति के अंदर एक विशेष तरह की ऊर्जा होती है और ये ऊर्जा हाथ और पैर की अंगुलियों में प्रवाहित होती है, हाथ और पैर की अंगुलियों में बहती है। ये ऊर्जा स्पर्श से एक दूसरे तक पहुंच जाती है। जब आप अपने हाथों से किसी व्यक्ति के पैरों को छूते हैं तो आप उसकी ऊर्जा को खींच लेते हैं। इसी प्रकार से जब आप किसी के सर पर हाथ रखते हैं तो आप अपनी ऊर्जा उस व्यक्ति को दे देते हैं। अगर ऊर्जा शुभ है तो पैर छूने पर या व्यक्ति के सर पर हाथ रखने पर तत्काल फायदा होता है। कोई संत महात्मा है, कोई विद्वत पुरुष है, कोई विद्वान है, कोई पवित्र व्यक्ति है, अगर आपके सर पर हाथ रख देता है तो आपके अंदर शुभता प्रवेश कर जाती है। और किसी संत महात्मा के पैर अगर आप छूते हैं, किसी पवित्र व्यक्ति के पैर छूते हैं, तो उसकी पवित्र ऊर्जा आपके शरीर में आ जाती है। सिंह राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, काम का बोझ बढ़ा रहेगा, चोट चपेट से बचाव करें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, करियर में बदलाव के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग हैं। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, वाद विवाद से बचाव करें, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, स्थान परिवर्तन के योग हैं। सफेद मिठाई का दान करें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब जानते हैं कि चरण स्पर्श कैसे कैसे किया जाता है, चरण स्पर्श के तरीके क्या हैं। देखिए, चरण स्पर्श के तीन तरीके हैं। झुक करके अपने हाथों से पैरों को छूना, झुक कर चरण स्पर्श करना, घुटनों के बल बैठकर अपने हाथों से चरण छूना या अपना सर चरणों में रख देना और साष्टांग प्रणाम करना, लेट करके प्रणाम करना।
इन तीनों ही तरीकों से आप किसी भी तरीके से चरण स्पर्श करें, आपका शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम होगा, शरीर लचीला और मजबूत होगा, और चूंकि झुकने की आदत पैदा होगी तो मन में विनम्रता आएगी, मन शुद्ध होगा और अहंकार का नाश होगा। यानी अगर आपके अंदर झुकने की आदत है, विनम्रता की आदत है, तो बहुत सारा भाग्य आपका वैसे भी बेहतर होना शुरू हो जाता है। चरण स्पर्श अगर आप किसी का करते हैं, किसी महिला का, पुरुष का, गुरुजन का, तो उसका नियम क्या है? चरण उसी के स्पर्श करिएगा जिसके प्रति आपके मन में श्रद्धा हो, और जो श्रद्धा के योग्य हो। हर व्यक्ति के पैर मत छूइए, हाथ जोड़कर नमस्कार कर लें, लेकिन पैर उसी के छुएं जिसके प्रति मन में श्रद्धा हो और जो श्रद्धा के योग्य हो। अगर झुक कर चरण स्पर्श कर रहे हैं तो हाथों की अंगुलियों से दूसरे व्यक्ति के पैर का अंगूठा छूइए। अगर घुटने के बल बैठ करके अभिवादन कर रहे हैं तो अपना सर दूसरे व्यक्ति के चरणों में रखिए। साष्टांग प्रणाम केवल अपने गुरु को या अपने इष्ट देव को ही करिएगा। केवल गुरु या इष्ट देव या देवी के अलावा अन्य किसी को साष्टांग प्रणाम नहीं करेंगे। महिलाओं को साष्टांग प्रणाम करना मना है, वो अर्ध साष्टांग करेंगी, घुटने के बल बैठकर अपना सर ईश्वर के सामने या गुरु के सामने झुकाएंगी। जब भी कोई आपका चरण स्पर्श करे तो उसके सर पर हाथ रख करके उसको आशीर्वाद दीजिएगा। माता पिता को या वरिष्ठ जनों को अपनी पुत्रियों से चरण स्पर्श नहीं करवाने चाहिए, और ज्यादातर लोग अपने जवाई से, अपने दामाद से भी चरण स्पर्श नहीं करवाते, क्योंकि पुत्री को और दामाद को पूज्य माना जाता है, विवाह के समय उनकी पैरों की पूजा की जाती है, इसलिए उनसे चरण स्पर्श करवाना उचित नहीं है। धनु राशि, करियर में कुछ बदलाव के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, रिश्तों की समस्या हल होगी। माता लक्ष्मी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, करियर में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है, करियर का हाल ठीक होगा, धन का लाभ होगा, लेकिन दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, परिवार में तनाव हो सकता है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, वाहन सावधानी से चलाएं,
सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर की समस्या हल होगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। चरण स्पर्श करके आप अपने ग्रहों को भी अनुकूल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अगर आप नियमित रूप से अपने पिता के चरण स्पर्श करें तो सूर्य की पीड़ा समाप्त होगी, सूर्य संबंधी दिक्कतें जीवन से दूर हो जाएंगी। अगर माता के रोज चरण स्पर्श करें तो चंद्रमा अनुकूल होगा, चंद्रमा की दिक्कतें दूर होंगी। किसी पवित्र महिला के श्रद्धानुकूल स्त्री के चरण स्पर्श करेंगे तो बुध और शुक्र मजबूत होंगे। भाई और बहन अगर बड़े हैं और इनका चरण स्पर्श नियमित रूप से किया जाए तो मंगल की समस्याएं दूर होंगी। अगर आप नियमित रूप से किसी वृद्ध व्यक्ति के चरण स्पर्श करते हैं तो बृहस्पति मजबूत होगा, बृहस्पति की दिक्कतें दूर होंगी। अगर सात्विक, सदाचारी और ईमानदार व्यक्ति के चरण स्पर्श करें तो शनि, राहु और केतु आपके नियंत्रित होंगे। संतों के, महात्माओं के, आध्यात्मिक व्यक्तियों के अगर आप चरण स्पर्श करें तो हर तरह की बाधा आपकी दूर होगी। हर तरह के ग्रह की कितनी भी बड़ी पीड़ा हो वो पीड़ा समाप्त हो जाएगी। देखिए, कोई व्यक्ति लेटा हो या सोया हो तो सामान्यतः ऐसा मानते हैं कि वो शव आसन है या मृतक की स्थिति है। इसीलिए अगर किसी लेटे हुए व्यक्ति के आप चरण छूते हैं तो आप उसको मृत मान कर ऐसा करते हैं, ऐसी भावना की जाती है। मृत्यु हो जाने के बाद जब व्यक्ति के शरीर को लिटा दिया जाता है तो श्रद्धांजलि देने के लिए उस समय उनके चरण छुए जाते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति लेटा हुआ है या सो रहा है तो सोने के दौरान या लेटे होने के दौरान पैर छूने को बहुत ही अशुभ मानते हैं। कहते हैं कि जिसका पैर छूते हैं उसकी आयु कम होती है। इसका कोई शास्त्रीय आधार नहीं है, ये कोई तार्किक या लॉजिकल बात नहीं है। आप मृत्यु के डर से मृत्यु के चीजों को टालते रहेंगे, किसी का पैर लेटे हुए पे छूने से उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो संभव नहीं है। मृत्यु तो वैसे भी होनी है, आप पैर छुएं या ना छुएं। इसका कोई तार्किक वैज्ञानिक आधार बिल्कुल नहीं है, इसलिए ऐसा सोचना ही सही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए बहुत बीमार है, आपका वृद्ध है, आपका बड़ा है, बुजुर्ग है, नहीं उठ सकता पलंग से, तो आप के मन में कोई भाव आया, कोई श्रद्धा आई तो आप उसका पैर छू सकते हैं भले ही वो लेटा हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि अगर कोई व्यक्ति सो रहा है आप उसके चरण छुएंगे तो हो सकता है वो नींद में डिस्टर्ब हो जाए, चौंक करके उठ जाए। इस हिसाब से तो आप इसको ना करें, लेकिन सामान्यतः किसी लेटे हुए या सोए हुए व्यक्ति के पैर छूने से उसकी आयु कम हो जाएगी, ऐसा करना अशुभ है, ऐसा बिल्कुल भी किसी तर्क के आधार पर सही नहीं है। बृहस्पतिवार को दीक्षा लेना और धर्म संबंधी काम करना हमेशा शुभ होता है, इसके परिणाम हमेशा बेहतर होते हैं।
और बृहस्पतिवार को अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है कि जीवन में कभी कभी ऐसा मौका आता है कि छोटी छोटी बातों पर लोगों से झगड़े होने लगते हैं, ऑफिस में, घर में, पड़ोस में, छोटी छोटी बातों पर लोगों से विवाद हो रहे हैं, क्या करेंगे? रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर। सुबह और शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और हर मंगलवार को निर्धनों को गुड़ और चने का दान करें। ऐसा करने से बेवजह के छोटे छोटे जो विवाद हो रहे हैं वो बंद हो जाएंगे।

0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
0: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती है तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
0: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
1: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
0: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
4: गुड न्यूज टुडे।
0: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
6: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है इसके अंदर।
7: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता झा। स्वागत है आपका न्यूज पत में। राह जिंदगी की हो या खबरों की, उसमें कई मोड़ होते हैं, कई रफ्तार होती है, कई पड़ाव होते हैं। देश और दुनिया से जुड़ी पॉजिटिव खबरों के साथ आपको लिए चलेंगे न्यूज पत पर, लेकिन सबसे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।
8: एवरेस्ट दिखा ला, सही दिखा सही लाल।
7: कनाडाई लेखिका एन कार्लसन को मिला 2026 का साहित्य नोबेल पुरस्कार। चर्चित किताबों में द ब्यूटी ऑफ द हस्बैंड शामिल। चारधाम यात्रा के दूसरे चरण में बन रहे हर दिन नए रिकॉर्ड। बद्रीनाथ में अब तक 19,13,000 से अधिक श्रद्धालु का बना नया रिकॉर्ड। देश भर में नवरात्र की तैयारियां तेज। कई मां की प्रतिमाओं को दिया जा रहा अंतिम रूप, तो गरबा की ड्रेस और साज सज्जा के सामान से सजे बाजार, कारोबारी खुश। दुनिया के 50 सबसे बेहतरीन डीप फ्राई व्यंजनों में शामिल मलाई कोफ्ता। टेस्ट एटलस की लिस्ट में मिला 10वां स्थान। चिकन 65 को 32वां और पापड़ी चाट को 40वां स्थान। रणथंभौर में तेंदुए के हमले रोकने का हाईटेक प्लान। लेपर्ड की मॉनिटरिंग के लिए लगाए जाएंगे साइलेंट डिवाइस और हाई ट्रैक सेंसर। जानवर आते ही बजेगा अलार्म। पर सफर, और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है, क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है, और चर्चा सबसे ज्यादा अभी नवरात्र की तैयारियों की हो रही है।
9: नवरात्र को लेकर देश भर में तेजी से तैयारी चल रही है। मूर्तिकार माँ दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में माता रानी की कई अलग तरह के आकर्षक मूर्तियां देखने को मिल रही हैं। यहां वर्कशॉप में बड़े स्तर पर मूर्तियां बनाई जा रही हैं। कई मूर्तियां तैयार हो चुकी हैं, तो कई पर मूर्तिकार तेजी से काम कर रहे हैं। रंग रोगन करने के साथ ही मूर्तियों को वो फाइनल टच देते नजर आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ के ही MCB जिला मुख्यालय मनेन्द्रगढ़ में भी मूर्तिकार माँ दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। यहां भी अलग अलग आकर्षक मूर्तियों को आकार दिया जा रहा है। ये मनोरम तस्वीरें उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम से करीब 52 किलोमीटर दूर देवताल की हैं, जो इन दिनों बर्फ की चादर से ढका हुआ नजर आ रहा है। भारत चीन सीमा से लगे 18,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित देवताल में हुई ताजा बर्फबारी के बाद यहां का नजारा और खूबसूरत हो गया है। ऐसा लग रहा है जैसे कुदरत ने पूरे इलाके का श्रृंगार कर दिया है। बर्फबारी के बाद देवताल पहुंचने वाले पर्यटक यहां के प्राकृतिक छटा को देखकर मंत्रमुग्ध नजर आए। यहां 4 से 5 फीट तक बर्फ की मोटी सफेद चादर बिछी हुई है। यहां तक कि पवित्र सरोवर भी पूरी तरह जम चुका है। देवताल ही नहीं बल्कि चमोली जिले में भी एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। जिले के निचले इलाकों में मूसलाधार बारिश हो रही है, जबकि ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी देखने को मिल रही है। करीब 15,210 फीट की ऊंचाई पर स्थित सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में भी हर तरफ बर्फ बिछी नजर आ रही है। आसमान से बरसती बर्फ की ये फुहारें यहाँ से गुजरने वालों को एक अलग ही आनंद का अनुभव करा रही हैं। ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले के साच पास की हैं। यहाँ ताजा बर्फबारी ने समुद्र तल से करीब 14,500 फीट की ऊंचाई वाले इस इलाके को अपने आगोश में ले लिया है। साच पास में करीब 5 से 6 इंच तक ताजा बर्फबारी दर्ज की गई है, जिससे पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर में ढका नजर आ रहा है। ताजा बर्फबारी के बाद साच पास का प्राकृतिक सौंदर्य और भी निखर गया है। चारों ओर बर्फ की सफेद चादर बिछने से ऊंची पर्वत चोटियां बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। गुजरात के अमरेली जिले में कुएं में गिरी दो शेरनियों को बचाने के लिए वन विभाग की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। दो अलग अलग जगहों पर श्रेणियों के गिरने की घटना हुई। एक श्रेणी रात के अंधेरे में जाफराबाद के बाबरकोट गांव में पानी सप्लाई के लिए बनाए गए कुएं में जा गिरी। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर करीब 6 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शेरनी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं एक और शेरनी शिकार का पीछा करते हुए वीरपुर गांव के कुएं में जा गिरी और जान बचाने के लिए पानी में संघर्ष करती नजर आई। मामले की जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर उसे सुरक्षित कुएं से बाहर निकाल लिया। सुरक्षित बचाई गई दोनों ही शेरनियों को इलाज के लिए एनिमल केयर सेंटर में भेज दिया गया। यूपी के मुरादाबाद में एक और तेंदुआ को पकड़ने में वन विभाग को कामयाबी हासिल हुई है। यहां अगस्त महीने से ही वन विभाग ने तेंदुओं को पकड़ने का अभियान चला रखा है, जिसमें अब तक 26 तेंदुए को पकड़ा जा चुका है। पिंजरे में कैद ये 26वां तेंदुआ है, जिसे ठाकुर द्वारा इलाके के बलिया गांव से पकड़ा गया। मुरादाबाद में तेंदुओं की दहशत को लेकर वन विभाग ने संवेदनशील इलाकों में 46 पिंजरे लगाए हैं। साथ ही ड्रोन कैमरा और दूसरी तकनीकों से तेंदुए पर निगरानी रखी जा रही है और अभियान के तहत ये 26वें तेंदुए को पिंजरे में कैद करने में वन विभाग को सफलता मिली।
7: और अब बात करते हैं भारतीय वायुसेना की। आज भारतीय वायुसेना अपना 54वां स्थापना दिवस मना रही है। ऐसे में आज गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर उत्सवी माहौल बना। इस खास अवसर पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह शामिल हुए, जिनकी मौजूदगी में जवानों ने बैंड की धुन पर जब कदम ताल की तो मानो शौर्य गाथा के गान ने लोगों में जोश भर दिया। परेड के दौरान दर्शकों ने खड़े होकर तालियां बजाई और देश की रक्षा करने वाले जवानों के प्रति सम्मान का इजहार किया। बता दें कि आज ही के दिन साल 1932 में इंडियन एयरफोर्स की स्थापना हुई थी।

0: बार चाहूंगा कि आप सब मिलकर मेरे साथ जय हिंद में सहयोग दें। जय हिंद।
1: भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य नभः स्पृशं दीप्तम् है। ये भगवद गीता के 11वें अध्याय से लिया गया है, जिसका भाव है कि ऊंचाई को छूते हुए गौरव के साथ आगे बढ़ना। और भारतीय वायुसेना आज आधुनिकता, स्वदेशी तकनीक और रणनीतिक शक्ति के साथ लगातार ऊंचाइयों को छू रही। भारतीय वायुसेना के 94वें स्थापना दिवस पर गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। शौर्य और शक्ति के इस उत्सव की शुरुआत परेड से हुई। प्रोग्राम की शुरुआत सुबह करीब 8 बजे राष्ट्रगान से हुई। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने खुली जीप से परेड की सलामी ली। इस दौरान हेलीकॉप्टर से तिरंगा लहराया गया। इस कार्यक्रम में आर्मी चीफ धीरज सेठ और नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन भी मौजूद रहे। एयरफोर्स की परेड और करतब देखने के लिए महिलाएं और बच्चे भी बड़ी तादाद में पहुंचे थे। वायुसेना के जवानों ने बैंड की जोशीली धुन पर जब कदम ताल किया तो मानो शौर्य गाथा के गान ने लोगों में जोश भर दिया। वायुसेना प्रमुख ने परेड की सलामी ली और जवानों के पराक्रम और अनुशासन की सराहना की। उन्होंने कहा कि आज के इस दिन को मैं चिंतन के रूप में देखता हूं, हमने कहां से शुरुआत की और कहां खड़े हैं।
0: मैं आज इस दिन को स्मरण और आत्मचिंतन के करने के अवसर के रूप में देखता हूं। आज हमें याद करना होगा वो कसम जो हमने एयरफोर्स की वर्दी पहनते समय खाई थी। याद करें इस गौरवशाली सेना का सफर, हमने कहां से शुरुआत की और आज हम कहां खड़े हैं। याद कीजिए अपने पूर्वजों को जिनके कारण वायुसेना आज इतनी सुदृढ़ है, और याद कीजिए उन सब वीरों और वीरांगनाओं को जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। ये स्मृतियां हमें राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को सही तरह से निर्वहन करने की प्रेरणा देंगी।
1: इस बार भारतीय वायुसेना के स्थापना दिवस की थीम अचूक, अभेद्य और सटीक है। एयरफोर्स के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब महिला कमांडिंग ऑफिसर के नेतृत्व में महिला सैनिकों ने 303 राइफल के साथ हैरतअंगेज करतब दिखाए। इसके जरिए भारतीय वायुसेना में नारी शक्ति और महिला सशक्तिकरण का बेहतरीन संदेश दिया गया।
0: मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हमारी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी और रेडीनेस सही दिशा में बढ़ रही है। ओनरशिप और अकाउंटेबिलिटी की संस्कृति पूरी सेना में मजबूत हो रही है। उपकरण, टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्म तो मात्र एक जरिया है, असल में हमारी कामयाबी का स्रोत हमारे वायु योद्धा हैं। मुझे खुशी है कि हम डिफेंस सर्विसेज के कोर वैल्यूज का पालन कर रहे हैं, टेन्योर बेस्ड विचारों को त्याग रहे हैं और राष्ट्र निर्माण में योगदान दे रहे हैं। हमारे कमांडर्स अपने दायित्वों को अच्छी तरह डेलीगेट करके प्रभावी डिसीजन मेकिंग को बढ़ावा दे रहे हैं और सभी वायु योद्धाओं लीडरशिप क्वालिटीज का विकास कर रहे हैं। हर वायु योद्धा अपने ऑर्गेनाइजेशन की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। हम सबको अपने कर्तव्यों और जिम्मेदारियों पर गर्व महसूस होना चाहिए और हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि चाहे कितनी भी मुश्किल परिस्थितियां क्यों ना हो, मैं वो कमजोर कड़ी नहीं बनूंगा या बनूंगी जिसके कारण वायुसेना रूपी चेन कमजोर हो जाए या टूट जाए।
1: इस मौके पर भारतीय वायुसेना की ड्रमर्स टीम ने अपने अनोखे म्यूजिकल कौशल का प्रदर्शन किया। इस विशेष ड्रमर्स टीम में 33 पुरुष और महिला एयर वॉरियर शामिल थे। ये ड्रिल बिना किसी वॉइस कमांड के सिर्फ ड्रम की थाप और उसके लय पर किया जाता है। बड़ी बात यह है कि पहली बार इस ड्रमर्स ड्रिल का नेतृत्व एक महिला वायु सैनिक कर्मी ने किया। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा कि दुनिया तेजी से बदल रही है, इस वजह से चुनौतियां बढ़ रही हैं। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में नए संघर्ष सामने आ रहे हैं, ऐसे में भारतीय वायुसेना हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार है।
0: आज इस दिवस पर मैं अपने सारे देशवासियों का आह्वान करता हूं। देश की सुरक्षा हमारा धर्म है और नागरिकों का प्रेम और सहयोग हमारी सबसे बड़ी ताकत, जो हर कठिन समय में हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती है। On behalf of the Indian Air Force, I want to thank every Indian for your wholehearted support and good wishes. Thank you for the confidence in our abilities and we will leave no stone unturned to live up to the expectations or rather exceed them.
1: गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर समारोह का आकर्षण वायुवीरों की परेड और ड्रिल रही। वहीं फाइटर जेट्स और मेक इन इंडिया हथियारों ने भी वायुसेना की ताकत की नजीर पेश की। सैन्य उपकरणों और अलग अलग हवाई प्लेटफॉर्म की प्रदर्शनी के जरिए वायुसेना की आधुनिक क्षमता दिखाई जा रही है और पहली बार ब्रह्मोस मिसाइल को डिस्प्ले में रखा गया। ब्रह्मोस के साथ ही आकाश डिफेंस सिस्टम तेजस, सुखोई और प्रचंड भी प्रदर्शनी में शामिल किए गए। इस खास मौके पर एयर चीफ मार्शल ने, जिन्होंने देश के लिए बलिदान दिया, उन्हें याद करते हुए कहा कि मैं ये भरोसा दिलाता हूं कि आने वाली पीढ़ी हमें बहुत आगे लेकर जाएगी।
0: हमें ऐसा वातावरण बनाना है जिसमें आपसी सम्मान हो, कोई बायस या कोई भेदभाव ना हो। मैं चाहता हूं कि हम सब निरंतर आप चिंतन करें ताकि हम सिर्फ आगे बढ़े ही नहीं बल्कि सही दिशा में आगे बढ़ें। और चाहे कुछ भी हो, वायुसेना का हित हमारे निजी हितों से ऊपर रहना चाहिए। सर्विस बिफोर सेल्फ। आज इस गर्व भरे दिन पर हम उन वायु योद्धाओं को भी याद करते हैं जिन्होंने देश की सेवा में अपनी जान दे दी। हम उनके बलिदान को कभी नहीं भूलेंगे और उनके मूल्यों को अपनाकर उन्हें सम्मान देंगे। मैं अपने पूज्य एयर वेटरन्स को भी नमन करता हूं। आपके प्रयासों और समर्पण ने हमारी वायुसेना की पहचान और क्षमताओं को आकार दिया है। आपकी सोच, मेहनत और दूरदर्शिता ही भारतीय वायुसेना की बुनियाद है। मैं आप सबको भरोसा दिलाता हूं कि आगे आने वाली हमारी पीढ़ियां इसे और आगे ले जाएंगी।
1: भारतीय वायुसेना का नया योद्धा राफेल, वायुसेना की रीढ़ स्वदेशी सुखोई, जगुआर जैसे लड़ाकू विमानों ने हवा में जांबाजी का प्रदर्शन किया। स्वदेशी फाइटर जेट तेजस का कोबरा मैन्यूवर और राफेल और सुखोई 30 MKI की सोल उड़ान भी आकर्षण का केंद्र रही। वहीं वायुसेना के ग्लोब मास्टर विमान ने भी आसमान में अपनी ताकत की नुमाइश की। ऑपरेशन सिंदूर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित अगले वायुसेना प्रमुख होंगे। वो 31 अक्टूबर को वर्तमान एयर चीफ मार्शल AP सिंह का स्थान लेंगे। एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने एयरफोर्स डे पर बधाई देते हुए कहा कि इसी महीने वो वायुसेना की कमान अपने उत्तराधिकारी एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को सौंपने जा रहे हैं।
0: इस अवसर पर मैं सभी संगनियों और पारिवारिक सदस्यों का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा। आप सबके त्याग, सहयोग और प्रोत्साहन से ही ये वायुसेना अपना काम बखूबी कर पाती है। जिस तरह अंग्रेजी में कहा गया है, यू आर द विंड बीनीथ आवर विंग्स। आई एम श्योर एवरीवन विल अग्री दैट टुडेज परेड वाज इन कीपिंग विद द बेस्ट ट्रेडिशंस ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। यह मेरे लिए बेहद गर्व का पल है क्योंकि इसी महीने मैं वायुसेना की कमान अपने उत्तराधिकारी को सौंपने जा रहा हूँ।
1: भारतीय वायुसेना के लिए ये दिन सिर्फ स्थापना की याद तक सीमित नहीं है। इस मौके पर वायुसेना अपने विमानों, तकनीक और तैयारियों का प्रदर्शन करती है। एयर शो और परेड के जरिए लोगों को भारतीय वायुसेना की ताकत देखने का मौका मिलता है। यही वजह है कि वायुसेना प्रमुख ने भी इस मौके पर तेजी से बदलती तकनीक के बीच वायुसेना की क्षमताओं को और मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: जीएसटी काउंसिल ने दी छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत। आइए सीधे आपको ले चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
1: जीएसटी काउंसिल की 57वीं बैठक में आज कई बड़े फैसले लिए गए। इनमें सबसे अहम फैसला जीएसटी पर जुर्माने से जुड़ा है, जिसे कम करके छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत दी गई है। जीएसटी जुर्माना 25,000 रूपए से घटाकर 10,000 रूपए कर दिया गया है। साथ ही 10,000 रूपए से कम के डिमांड पर कारण बताओ नोटिस भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा बड़ा बदलाव रिफंड प्रोसेस को लेकर हुआ है। रिफंड क्लेम को स्वीकार करने की समय सीमा 15 दिन से घटाकर 10 दिन कर दी गई है। जीएसटी दरों में भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में आज अचानक मौसम बदल गया। यहां के कुछ हिस्सों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश और जबरदस्त ओलावृष्टि देखने को मिली। इस बिना मौसम की ओलावृष्टि और तेज आंधी के कारण खेतों में खड़ी फसलें और बागवानों के सेब के बगीचे बुरी तरह तबाह हो गए हैं। ओलों की बरसात से सड़कें सफेद नजर आई। इस बीच मौसम विभाग ने घाटी के मैदानी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी की संभावना जताई है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में लेपर्ड की मॉनिटरिंग के लिए साइलेंट डिवाइस और हाई ट्रैक सेंसर लगाए जा रहे हैं। इससे आबादी वाले क्षेत्रों की ओर जाने वाले वन्य जीवों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सकेगी। अगर कोई वन्य जीव या लेपर्ड आबादी क्षेत्र की ओर निकलता है तो ऑटोमेटिक अलार्म बजेगा और ग्रामीणों को अलर्ट किया जा सकेगा। आंध्र प्रदेश के नांदियाल जिले में स्थित चालुक्य काल का ऐतिहासिक और भव्य श्री संगमेश्वर स्वामी मंदिर एक बार फिर पानी से बाहर आ गया है। कृष्णा नदी और श्रीशैलम जलाशय के बैकवाटर का जलस्तर घटने के कारण इस प्राचीन मंदिर की संरचनाएं और शिखर अब साफ दिखाई देने लगे हैं। यह ऐतिहासिक शिव मंदिर साल के लगभग 8 महीने पूरी तरह से पानी में डूबा रहता है। जलस्तर घटने के बाद केवल 4 महीनों के लिए ही श्रद्धालुओं को दर्शन देने के लिए बाहर आता है। इस साल यह मंदिर समय से काफी पहले दिखाई दिया है, ऐसे में लोगों में मंदिर के दर्शन को लेकर उत्साह है। अभिनेत्री रानी मुखर्जी ने आज बद्रीनाथ धाम पहुंचकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन किए और यहां पूजा अर्चना कर भगवान का आशीर्वाद लिया। इस दौरान वो पूरी तरह भक्तिभाव में डूबी दिखी। उन्होंने यहां भगवान बद्री विशाल का जयकारा भी लगाया। उधर बद्रीनाथ धाम में मौसम की मुश्किल परीक्षा के बावजूद श्रद्धालुओं की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक यहां 19 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं, जबकि अभी मंदिर के कपाट बंद होने में 1 महीने से ज्यादा का समय बचा है।
2: और अब बात इंडिया मोबाइल कांग्रेस की। दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण की शुरुआत हो गई है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 6G, AI और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सैटेलाइट टेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी पर फोकस किया जा रहा है। 7 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच चलने वाले इस आयोजन में देश और दुनिया के तमाम टेलीकॉम कंपोनेंट्स बनाने वाली कंपनियां, स्टार्टअप और ऑपरेटर शामिल हुए हैं।

0: बीते वर्षों में ये प्लेटफॉर्म भारत की प्रगति का, भारत के सपनों का मंच बनकर उभरा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के यशोभूमि में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया। यहां केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इनका स्वागत किया। इस दौरान आदित्य बिरला समूह के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला और रिलायंस जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी के बीच मुलाकात की तस्वीरों ने भी लोगों का ध्यान खींचा। भारतीय एयरटेल के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल भी आकाश अंबानी और आदित्य कुमार मंगलम बिरला के साथ इंडिया मोबाइल कांग्रेस में दिखाई दिए। टेलीकॉम मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि भारत ने 10 साल में वो हासिल कर दिखाया है जिसे करने में दूसरे देशों को कहीं ज्यादा समय लग जाता, और उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को कनेक्ट होने का विजन दिया।
2: एंड नॉट ओनली मेक इन इंडिया बट डिजाइन इन इंडिया, डेवलप्ड इन इंडिया, बिल्ट इन इंडिया बट मेड फॉर द वर्ल्ड। सो इट इज विद दैट थॉट इन माइंड एंड द प्राइम मिनिस्टर्स विजन ऑफ डिजिटल इंडिया that the telecommunications ministry in India is moving forward along with all stakeholders to serve every single customer across the length and breadth of our country.
1: कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत की डिजिटल क्रांति का जिक्र करते हुए कहा कि 2022 में 5G सर्विस को इंडिया मोबाइल कांग्रेस के मंच से ही लॉन्च किया गया था और पिछले 4 साल में भारत के हर जिले में 5G नेटवर्क पहुंच गया है। पिछले साल हुए इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2025 के तरह ही इस बार भी 6G मुख्य चर्चा में है। इस बार इंडिया मोबाइल कांग्रेस का AI और 6G पर फोकस रहेगा। भारत में 6G की संभावनाओं को लेकर ग्लोबल लीडर्स चर्चा करेंगे। भारत 6G की रेस में दुनिया के विकसित देशों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। सरकार 6G इंफ्रास्ट्रक्चर और इसकी टेस्टिंग के लिए अनुकूल इकोसिस्टम पर फोकस कर रही है। यही नहीं, इसमें AI और मशीन लर्निंग के इकोसिस्टम को लेकर भी चर्चा की जाएगी। आने वाले कुछ वर्षों में सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी अहम भूमिका निभाएगा, खासकर उन इलाकों में कनेक्टिविटी बढ़ाने वाली टेक्नोलॉजी के मामले में जहां पारंपरिक टेरेस्ट्रियल नेटवर्क की पहुंच नहीं है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस में प्रधानमंत्री मोदी ने ये भी कहा कि आज सरकार की बैंक, अस्पताल, सरकारी दफ्तर जैसी सैकड़ों सर्विसेज मोबाइल पर हैं।
0: पहले ज्यादातर बैंक शहरों में ही होते थे, अस्पताल शहरों में होते थे, सरकारी दफ्तर ब्लॉक या जिला स्तर पर रहते थे। यानी कुछ भी काम करना हो, सरकारी सर्विस लेनी हो, तो लोगों का पैसा और समय दोनों खर्च होता था। डिजिटल गवर्नेंस ने इन परिस्थितियों को बदला है।
1: टेलीकॉम इंडस्ट्री इस समय कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नए मॉडल तलाश रही है और इस दौरान डायरेक्ट टू डिवाइस और नॉन टेरेस्ट्रियल नेटवर्क टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों पर चर्चा हो रही है। बताया जा रहा है कि इंडिया मोबाइल कांग्रेस में साइबर सिक्योरिटी के बढ़ रहे खतरे को लेकर भी चर्चा की जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्लोबल लीडर्स से मुलाकात के दौरान डिजिटल वर्ल्ड के लिए साइबर फ्रॉड को बड़ा खतरा बताया। उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए टेक्नोलॉजी बेस्ड सॉल्यूशन की जरूरत है। फ्रॉड कॉल को लेकर लोगों को जागरूक करना चाहिए। यही नहीं, उन्होंने डीप फेक और AI जनरेटेड फर्जी कंटेंट को फैलने से रोकने के लिए और लोगों को जागरूक करने पर फोकस करने के लिए कहा है। 7 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक हो रहे इस ग्लोबल टेक इवेंट में देश और दुनिया के टेलीकॉम और IT सेक्टर के दिग्गज हिस्सा ले रहे हैं। इस साल इंडिया मोबाइल कांग्रेस में भविष्य की टेक्नोलॉजी से लेकर 6G AI की वजह से हो रही डिजिटल क्रांति से और साइबर सुरक्षा पर फोकस किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
3: न्यूज पथ पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको ले चलते हैं धन बाजार।
1: शेयर बाजार में आज भारी गिरावट रही। गुरुवार 8 अक्टूबर को सेंसेक्स 1045 अंक लड़ककर 71593 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 371 अंक फिसला, ये गिरकर 22232 पर आ गया। त्योहारी सीजन से पहले सोने की कीमतों में तेजी देखने को मिली। गुरुवार को दिल्ली सराफा बाजार में सोना 3600 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही यहां 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 1,52,500 रुपए हो गई। हालांकि चांदी की कीमतों में फिर गिरावट आई। चांदी 3,000 रुपए सस्ती हुई। अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत घटकर 2,24,000 रुपए पर आ गई। गुरुवार को डॉलर के मुकाबले रुपया फिसल गया। इसमें 13 पैसे की गिरावट आई। इस तरह 1 डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत 96.88 रुपए हो गई।
3: दिवाली से पहले रिलीज हो सकती है नितेश तिवारी की फिल्म रामायण। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले फिल्मी मोड़ पर।
4: जो भी लिखा है
1: रणवीर कपूर की मेगा बजट फिल्म रामायण दिवाली से पहले ही रिलीज हो सकती है। नितेश तिवारी निर्देशित ये एपिक फिल्म दिवाली पर रिलीज होने वाली थी लेकिन अब उसमें बदलाव की खबरें सामने आ रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक मेकर्स ने अपनी रणनीति बदल दी है और अब दिवाली से कुछ दिन पहले ही फिल्म को रिलीज करने का प्लान किया है। उस प्लान के मुताबिक भारत में रामायण के स्पेशल पेड प्रीव्यू 4 नवम्बर को होंगे। इसके बाद 5 नवम्बर को देश भर के थिएटर्स में ऑफिशियली रिलीज की जाएगी। हालांकि मेकर्स या प्रोड्यूसर ने अभी तक इस बारे में कुछ साफ नहीं किया है। दिग्गज अभिनेता कमल हासन और निर्देशक एस शंकर की फिल्म इंडियन 3 को लेकर लंबे समय से जो असमंजस की स्थिति थी वो अब दूर हो गई है। मेकर्स ने साफ कर दिया है कि इंडियन 3 पर काम शुरू हो चुका है। दिग्गज एक्टर कमल हासन एक बार फिर इस फिल्म में अपने मशहूर किरदार सेनापति के रूप में नजर आएंगे। इंडियन फ्रेंचाइजी की 1996 में शुरुआत हुई थी। इंडियन में कमल हासन ने 2 भूमिकाएं निभाई थी। इसके लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड भी मिला था लेकिन 2024 में रिलीज हुई इंडियन 2 उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी तो माना जा रहा था कि शायद इंडियन 3 अब नहीं बनेगी लेकिन अब ये साफ हो गया है कि ये फिल्म बन रही है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में अभिनेत्री सारा अली खान चंडीगढ़ में पूरी तरह पंजाबी रंग में नजर आई। वीडियो में पीछे खेत ही खेत है और सारा के पास में ही एक ट्रैक्टर भी खड़ा है। आगे अभिनेता आयुष्मान खुराना की पंजाबी लस्सी वाले गिलास के साथ एंट्री होती है। सारा ही उन्हें इंट्रोड्यूस करती है। इसके बाद दोनों पूरे खुशनुमा मूड में नजर आते हैं। दरअसल दोनों ही बॉलीवुड स्टार अपनी फिल्म उड़ता तीर के प्रचार के लिए हाल ही में चंडीगढ़ गए थे और इस वीडियो को भी उसी का हिस्सा बताया जा रहा है।
3: न्यूज वक्त में खबरों के सफर को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा।
3: कनाडा लेखिका एन कार्लसन को मिला 2026 का साहित्य नोबेल पुरस्कार। चर्चित किताबों में द ब्यूटी ऑफ द हस्बैंड शामिल। चारधाम यात्रा के दूसरे चरण में बन रहे हर दिन नए रिकॉर्ड। बद्रीनाथ में अब तक 19,13,000 से अधिक श्रद्धालु का बना नया रिकॉर्ड। देशभर में नवरात्र की तैयारियां तेज। कहीं मां की प्रतिमाओं को दिया जा रहा अंतिम रूप तो गरबा की ड्रेस और साज सज्जा के सामान से सजे बाजार। कारोबारी खुश। दुनिया के 50 सबसे बेहतरीन डीप फ्राई व्यंजनों में शामिल मलाई कोफ्ता टेस्ट एटलस की लिस्ट में मिला 10वां स्थान। चिकन 65 को 32वां और पापड़ी चाट को 40वां स्थान। रणथंभौर में तेंदुए के हमले रोकने का हाईटेक प्लान। लेपर्ड की मॉनिटरिंग के लिए लगाए जाएंगे साइलेंट डिवाइस और हाई ट्रैक सेंसर। जानवर आते ही बजेगा अलार्म। न्यूज़ पथ में खबरों के सफर को आगे बढ़ाया जाए लेकिन उससे पहले हमें

0: जाने के लिए चुनी ऐसी जगह जिसे देखकर हर कोई मुस्कुरा रहा है। बच्चा बांस की दीवार पर चढ़ा हुआ है और नीचे बैठे बच्चों को बड़े उत्साह से कविता सुना रहा है। चेहरे की मासूमियत और अंदाज की बेफिक्री इस पूरे पल को खास बना रही है। वीडियो देखकर लोग बच्चे की क्यूटनेस पर खूब प्यार लुटा रहे हैं। पंजाब के खेतों की बात हो तो मिट्टी से जुड़ाव की तस्वीरें अक्सर दिल जीत लेती हैं। इस वीडियो में दादाजी अपने पोते पोतियों के साथ खेत में ही कुश्ती लड़ते नजर आ रहे हैं। कभी दांव सिखा रहे हैं तो कभी बच्चों के साथ खुद मुकाबले में उतर रहे हैं। बच्चे भी पूरे जोश के साथ कुश्ती के दांव पे सीख रहे हैं। खेल, मस्ती और परिवार का ये खूबसूरत मेल लोगों को खूब पसंद आ रहा है। माँ का प्यार सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं होता, बेजुबान भी अपने बच्चों की हर हरकत पर नजर रखते हैं। इस वीडियो में एक डॉगी अपने बच्चे के साथ खेलती नजर आ रही है। बच्चा आगे आगे भागता है तो माँ उसे पकड़कर वापस अपनी ओर ले आती है। कभी प्यार से साथ दौड़ती है तो कभी दांतों से पैर थाम कर उसे रोक लेती है। माँ और बच्चे के बीच प्यार भरा ये नजारा देखकर लोग भावुक भी हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं।
1: न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी भारतीय खाने में पसंद की जाने वाली एक खास डिश मलाई कोफ्ता की। जी हां, इस डिश को अब दुनिया भर के डीप फ्राई यानी कि तले हुए व्यंजनों में बड़ा स्थान मिला है। मलाई कोफ्ता को दुनिया के 50 सबसे बेहतरीन डीप फ्राई व्यंजनों में 10वां स्थान मिला है। फूड रेटिंग देने वाली संस्था टेस्ट एटलस की लिस्ट में भारत के चिकन 65 को 32वां और पापड़ी चाट को 40वां स्थान मिला है। टेस्ट एटलस की ग्लोबल रैंकिंग में मलाई कोफ्ता को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शाकाहारी व्यंजनों की सूची में पहला स्थान मिल चुका है। इसके अलावा टेस्ट एटलस की ही दुनिया की 10 सबसे बेहतरीन रेटेड करी की सूची में मलाई कोफ्ता को 6ठा स्थान मिला था। शादियों और पार्टियों में पसंद की जाने वाली वेज डिश मलाई कोफ्ता का इतिहास बहुत दिलचस्प है। जानकारी के मुताबिक कोफ्ता मूल रूप से फारसी और मध्य एशियाई खान पान का हिस्सा था, जहां इसे मीट से बनाया जाता था। लेकिन जब ये व्यंजन भारत आया तो मुगल काल के दौरान इसका भारतीयकरण हो गया। भारतीय रसोइयों ने कोफ्ता में मीट की जगह पनीर, आलू और सब्जियों का इस्तेमाल शुरू किया और इसे मलाईदार ग्रेवी के साथ मिला दिया। ये डिश आज इतनी पसंद की जाती है कि किसी भी रेस्टोरेंट या फिर होटल के मेन्यू में मलाई कोफ्ता को जरूर रखा जाता है। कुल मिलाकर मलाई कोफ्ता सिर्फ डीप फ्राइड के कारण ही नहीं बल्कि अपनी मखमली शाकाहारी ग्रेवी और लाजवाब स्वाद के लिए भी दुनिया भर के व्यंजनों में लगातार टॉप रेटिंग्स में शामिल किया गया है। भारत के मलाई कोफ्ता को मिली इस उपलब्धि को लेकर हमने जयपुर में लोगों से बात की और उनकी राय जानी।
2: इसमें ऑप्शन है रेड एंड व्हाइट ग्रेवी, तो इसलिए पसंद आएगा और इसमें फ्राइड होते हुए फ्राइड नहीं लगता, ग्रेवी भी बहुत अच्छी होती है दोनों की। हमारी जैसे यहाँ टिटी चल रही है और हमने दोनों ग्रेवी का ऑर्डर किया।
3: मुझे लगता है ये बिल्कुल सही है क्योंकि मलाई कोफ्ता एज इंडिया इज इनरिच्ड इन ड्राई फ्रूट्स एंड अरोमास, तो उसमें जो अपन डालते हैं ड्राई फ्रूट्स और उसकी जो ग्रेवी होती है वो उसको बाईपास कर जाती है। फ्राइड तो लगता ही नहीं है बट इट गिव्स अ रिच अरोमा और उसमें जो मलाई डलती है पता ही नहीं लगता है, तो वो टेस्ट बड्स को अपन इंडियंस के टेस्ट बड्स को बहुत अच्छा करता है।
4: आई एम अ रेस्टोरेंट ओनर। रिसेंटली हमने क्लोव नाम से एक फाइन डाइन एरिया स्टार्ट किया जिसमें मलाई कोफ्ता की अगर मैं बात करूं, मलाई कोफ्ता एक ऐसी डिश है जो कि हमारे रेस्टोरेंट की लोगों को बहुत पसंद आती है। हर दूसरी टेबल के ऑर्डर पे एक मलाई कोफ्ता होता ही होता है और मलाई कोफ्ते की इतनी जो चाहत है लोगों के अंदर, उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये है कि वो व्हाइट ग्रेवी में होता है एंड इट इज नॉट दैट स्पाइसी, लोगों को पसंद आता है और हर एज ग्रुप के साथ वो चल जाता है और लोग बहुत अच्छे तरीके से उसको खाते हैं। अदरवाइज रेड ग्रेवी में ऑप्शंस बहुत ज्यादा है और मलाई कोफ्ता व्हाइट ग्रेवी में होने की वजह से उसकी एक जो पसंद करने वाली चीज है वो थोड़ी ज्यादा है।
5: मलाई कोफ्ता ऐसा है कि क्योंकि व्हाइट ग्रेवी के अंदर बहुत ज्यादा लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं, तो जब भी क्योंकि मेरे को व्हाइट ग्रेवी, मेरे को पर्सनली मेरे ही रिकमेंडेशन, मेरे को अपना टेस्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं तो व्हाइट ग्रेवी में मेरे को मलाई कोफ्ता बहुत पसंद है। कोफ्ता अगर सॉफ्ट हो और उसके अंदर हम लोग की सर्चिंग में रहते हैं कि काजू हमको मिल जाए उसके अंदर और मतलब ये है कि अभी लंच टाइम है, अभी मेरे को लग रहा है कि आपने मतलब मलाई कोफ्ता याद दिला के मेरे को लग रहा है कि आज एक मलाई कोफ्ता हो ही जाए।
1: माँ दुर्गा की आराधना का विशेष अवसर अब आने ही वाला है। 11 अक्टूबर से

नवरात्र उत्सव शुरू हो जाएगा। इसको लेकर देश भर में अब तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। यहां तक कि मां की प्रतिमाओं का आगमन भी शुरू हो गया है। जगह जगह भव्य पंडाल तैयार हो रहे हैं तो माता के मंदिर भी रोशनी से सराबोर होने लगे हैं।

0: कहीं मूर्तिकार माँ दुर्गा की प्रतिमाओं को फाइनल टच देने में है व्यस्त, कहीं माता रानी की आराधना के लिए सज रहे हैं भव्य पंडाल। रामलीला की तैयारी के साथ ही गरबा की प्रैक्टिस भी है जोरों पर। देश भर में नवरात्र के अलग अलग रंग अभी से नजर आने लगे हैं। अधिकतर जगह जहां अभी मूर्तिकार प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं, वहीं यूपी के झांसी में धूमधाम के साथ माता रानी का आगमन भी शुरू हो गया। माँ दुर्गा की ये भव्य प्रतिमा नव दुर्गा उत्सव समिति की है। जोकनबाग स्थित शहीद पार्क में नवरात्र के लिए ये मूर्ति मध्य प्रदेश के सागर से लाई गई, जिसका भव्य स्वागत किया गया।
1: शहीद पार्क पे हम लोग माता रानी को विराजमान करते हैं पिछले 42 साल से, और हमारी मूर्ति जो है वो सागर से आई है, विश्वकर्मा आर्ट से। जोश तो आप देख ही सकते हैं, आज झांसी नगर में प्रथम दुर्गा आगमन हुआ है।
0: माता की आराधना के लिए कोलकाता से लेकर दिल्ली तक में भव्य पंडालों का निर्माण हो रहा है। पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा का त्योहार बड़े स्तर पर मनाया जाता है, कोलकाता में भी इसकी तैयारी जोर शोर से चल रही है। पार्क स्ट्रीट में पहली बार दुर्गा पूजा का ये शानदार पंडाल सजने जा रहा है, जिसकी थीम शिवतांडव है। यहाँ दिन रात पंडाल को थीम के अनुसार आकार दिया जा रहा है, जिसकी झलक साफ साफ दिख भी रही है।
2: पूजा का ये शंकर भगवान का विराट स्वरूप है, शिव तांडव का स्वरूप इसमें देखिए। एक तरफ आप भगवान के जटा में देखिए, जिस समय माँ जब आग में कूद गई थी उसके बाद का दृश्य है, और रुद्र रूप इनका यहाँ पर है, और बगल में तांडव करते हुए है। इधर में आपके यहाँ पर उनके अभिषेक करते हुए रहेगा। सामने आपका आदि शिव का है। यहाँ पांच तरह की, एक तरह नंदी पे शिव जी बैठे हैं, पांच तरह भगवान शिव का ही पूरा तांडव लीला इसमें है।
0: देश की राजधानी दिल्ली में भी नवरात्र उत्सव की तैयारी तेजी से आगे बढ़ रही है। ये वो मेला ग्राउंड है जहां चितरंजन पार्क का सबसे बड़ा पंडाल बनाया जाता है। कारीगर इस भव्य पंडाल को तेजी से तैयार करने में जुटे हुए हैं। इस पंडाल में पंचमी के दिन माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित होगी और फिर उसके बाद उत्सव शुरू होगा।
3: पंचमी के बाद से यहाँ पर सेलिब्रेशन शुरू होता है, उत्सव शुरू होता है, और दशमी तक चलता है, और फिर विसर्जन होता है। तो उसको लेकर के तमाम तैयारियाँ मेला ग्राउंड में भी शुरू हो गई है।
0: नवरात्र को लेकर पंडाल के साथ ही माता के मंदिरों में भी विशेष तैयारी चल रही है। महाराष्ट्र के अमरावती का प्रसिद्ध अंबा माता मंदिर भी नवरात्र को लेकर जगमगा रहा है। विदर्भ की कुलस्वामिनी के रूप में प्रसिद्ध अंबा माता के दरबार को रंग बिरंगी रोशनी से सजाया गया है। मंदिर की साफ सफाई और रंग रोगन के साथ माता के सोने चांदी के आभूषणों को भी चमकाया गया है।
4: हम फिलहाल है विदर्भ की कुलस्वामिनी अमरावती की माँ अंबे के इस मंदिर में, जहाँ पर आप देख सकते हो कि मंदिर को जो है पूरी तरीके से लाइटिंग से सजाया है। यहाँ पर ओटी भरने का काम एक विशेष महिलाओं के लिए होता है, महिला भक्तों के लिए होता है, उसके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। तो महिला और पुरुष इनकी दोनों ही दर्शन की जो कतारें है वो अलग अलग कर दी है। पंडाल जो है सज चुके हैं, घट स्थापना होकर इस माँ अम्बे जगदम्बे के मंदिर को जो है सुबह 9 बजे से जो है हर भक्त के लिए, दर्शन के लिए खुला किया जाएगा।
0: नवरात्र में रामलीला का मंच भी जगह जगह सजता है। इस बार चंडीगढ़ में रामलीला के मंच पर दिखेगी नारी शक्ति। यहाँ दुनिया की पहली डिजिटल महिला रामलीला मंचन की तैयारी है, जिसमें महिलाओं के अभिनय और तकनीक का अनूठा संगम देखने को मिलेगा। मंच पर बच्ची से लेकर बुजुर्ग महिला तक ही रामायण के पात्रों को जीवंत करती नजर आएंगी। पीर मुछल्ला स्थित चिनार होम्स में 11 से 20 अक्टूबर तक दर्शक इस रामलीला का आनंद ले पाएंगे।
5: सबसे खास बात तो ये है कि भारत की पहली, इनफैक्ट विश्व की पहली महिलाओं द्वारा मंचित डिजिटल और लाइट एंड साउंड शो वाली रामलीला है। उसके बाद इसकी खास बात यह है कि ये आज की जेंजीज को इन्वॉल्व करने के लिए ये AI इफेक्ट्स के साथ हमारे भारत की पहली रामलीला है।
0: नवरात्र में गरबा का आनंद भी लोग खूब उठाते हैं, इसलिए उसकी तैयारी भी जोरों पर है। गुजरात के जामनगर की ये तस्वीर देखिए, जिसमें एक खास तरह के गरबा का लोग अभ्यास करते नजर आ रहे हैं। यहाँ पारंपरिक अंगारा रास गरबा की प्रैक्टिस चल रही है, जिसमें मशाल के साथ ही अंगारों के बीच भी गरबा खेला जाता है।
6: हम हमारा यहाँ का फेमस रास है वो है मसाल रास है, और हम मसाल रास खेलते खेलते जो हमारा स्वस्तिक है वो बनाते हैं, और माता जी का शस्त्र बोलते त्रिशूल वो भी बनाते हैं, और गरबा के अंत में हम अंगारों पे खेलते हैं और वो भी खुले पैर खेलते हैं, कोई लोशन या कुछ अप्लाई भी नहीं करते हैं, और ये हमारे ऊपर माता जी का आशीर्वाद है जो हमारे पैर में कुछ होता नहीं है।
0: नवरात्र को लेकर पूरे देश में जिस तरह से तैयारी चल रही है वो साफ साफ बता रही है कि आस्था और उत्सव का रंग बहुत ही भव्य और दिव्य होगा। झांसी से अजय झा, दिल्ली से आशुतोष कुमार, अमरावती से धनंजय सावले के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
7: अब डिलीवरी बॉय का काम भी करेंगे रोबोट। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस वे पर, जहां दुनिया भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार।
0: अब रोबोट कुरियर बॉय का काम भी करेंगे, वो भी दो पैरों वाले रोबोट। ये इंसानों की तरह डिलीवरी वैन में आएंगे, अपने साथ आए शख्स से आपका पता लेंगे और वैन से उतरकर फुटपाथ हो, उबड़ खाबड़ रास्ते हो या फिर सीढ़ियां चढ़नी हो, चलकर आपके घर तक पहुंचेंगे और आपका पार्सल आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल कुरियर कंपनी एवरी ये प्रयोग कर रही है, लंदन और इंग्लैंड में इसका ट्रायल चल रहा है। देखा जा रहा है कि दो पैरों वाला ये रोबोट इंसानों की तरह हर काम सही तरीके से कर पा रहा है या नहीं। यूरोप में अपनी तरह का ये पहला ट्रायल है कुरियर कंपनी एवरी। ये ट्रायल जापान की रोबोट बनाने वाली कंपनी रिफाइंड रोबोटिक्स के साथ मिलकर कर रही है। इस दो पैर वाले रोबोट का नाम आयरिस रखा गया है, जो 15 किलोग्राम तक के पार्सल ले जा सकता है और 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है। कंपनी के मुताबिक इससे डिलीवरी बॉय का काम आसान होगा। पेरू की राजधानी लीमा की सड़कों पर ये दीवानगी बीटीएस की एक झलक पाने के लिए है। असल में यहाँ पहली बार बीटीएस का कॉन्सर्ट होने जा रहा है, जिसे लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह है। ये भीड़ देखिए, लीमा के सैन मार्कोस स्टेडियम के बाहर बीटीएस के हजारों फैंस की 1 किलोमीटर से भी लंबी लाइन दिखाई दे रही है। इस बीच कोई स्टेडियम की ओर आगे बढ़ रहा है तो कोई इंतजार में खड़ा है, कोई बीटीएस मेंबर्स के नामों के नारे लगा रहा है तो कोई उनकी तस्वीर हाथ में लिए खड़ा है, कुछ लोग अनूठे कॉस्ट्यूम पहनकर खुशी से डांस कर रहे हैं तो कोई बीटीएस के गाने गा रहा है, कोई ऐसा भी है जो बीटीएस सदस्य का फेस मास्क पहनकर यादगार चीजें बांट रहा है। लीमा में ये कॉन्सर्ट बीटीएस के अरिरंग वर्ल्ड टूर का हिस्सा है। 9 और 10 अक्टूबर को उनके और शोज होने हैं। चीन में इन दिनों नेशनल डे की छुट्टियां चल रही हैं, ऐसे में यहां के चोंकिंग में खुला नया इंडस्ट्री प्लस टूरिज्म कॉम्प्लेक्स लोगों को खूब आकर्षित कर रहा है। इसकी खासियत यह है कि इसे एक पुरानी फैक्ट्री को नए अंदाज में ढालकर तैयार किया गया है, जिसमें लोगों को खाने पीने की चीजों के साथ साथ फैक्ट्री में होने वाले कामकाज और मशीनों को भी देखने का मौका मिल रहा है। इसके अलावा यहाँ अम्यूजमेंट पार्क, टॉयलेट थीम पार्क और रोपवे का अनुभव लेने की भी व्यवस्था है। इसे देखने और यहाँ घूमने के लिए लोग बड़ी तादाद में पहुँच रहे हैं। आंकड़ों के मुताबिक खुलने के शुरुआती 4 दिनों में ही यहाँ हर दिन लगभग 1 लाख लोग आए। स्विस फ्रेंच लैंड आर्टिस्ट सेपे ने अपने मशहूर आर्टवर्क बियॉन्ड वॉल्स को सैन फ्रांसिस्को के येरबा बुएना गार्डन्स में भी घास पर उतारा। ये सेपे का मशहूर आर्ट प्रोजेक्ट है, जिसे वो दुनिया के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शित करते रहे हैं। इसमें दो हाथों की विशाल आकृति एक दूसरे का साथ निभाने के अंदाज में जुड़े नजर आते हैं। सेपे की ये कलाकारी दुनिया भर के लोगों को आपस में जोड़ने और उनके बीच एकता, सहिष्णुता और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने का संदेश देती है। इस विशाल पेंटिंग की खासियत ये भी है कि इसे बनाने के लिए पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल रंगों का इस्तेमाल किया जाता है और ये लंबे समय तक टिकता भी नहीं है। जैसे जैसे घास बढ़ेगी और मौसम बदलेगा, ये पेंटिंग लगभग 10 दिनों के भीतर प्राकृतिक रूप से गायब हो जाएगी।
7: ब्रेक प्लाजा पर हमारे लिए वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मजा आएगा। ब्रेक के बाद लिए चलेंगे खेल चक्कर।
8: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ। एक
9: चरण स्पर्श करने के नियम क्या हैं? क्या महिलाओं को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए? क्या लेटे हुए सोए हुए व्यक् ति के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए? क्या है चरण स्पर्श की महिमा और क्या है इसके नियम और सावधानियां, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
8: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच।
7: वेस्ट इंडीज के ड्वेन ब्रावो ने वनडे क्रिकेट में रन के टारगेट को लेकर गेंदबाजों को जिताया। खेल जगत से जुड़ी ऐसी ही कुछ और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे चले खेल चक्कर।
13: वनडे क्रिकेट में 500 रन भी बन सकते हैं, ये मानना है वेस्टइंडीज के पूर्व ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो का। उन्होंने कहा कि भविष्य में वनडे मैचों में 500 रन का स्कोर भी एक हासिल करने लायक लक्ष्य बन सकता है। वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के दौरान अपनी टीम के ही पूर्व साथी और दिग्गज बल्लेबाज क्रिस गेल के साथ बातचीत में ब्रावो ने कहा, साथ ही उन्होंने गेंदबाजों से प्रासंगिक बने रहने के लिए अपने स्किल्स में काफी सुधार करने और नई तकनीकें अपनाने पर भी जोर दिया। ब्रावो के मुताबिक आक्रामक बल्लेबाजी के बढ़ते दबदबे ने खेल का स्वरूप बदल दिया है और गेंदबाजों पर अधिक दबाव डाला है। पांच मैचों की टी20 सीरीज के दूसरे मुकाबले के लिए भारत और वेस्टइंडीज की टीमें कमर कस चुकी हैं। दूसरे टी20 मैच के लिए दोनों ही टीम 7 अक्टूबर को रांची पहुंच चुकी है। रांची के JSCS स्टेडियम में 9 अक्टूबर को दोनों टीमों के बीच दूसरा मुकाबला होना है। लखनऊ में सीरीज का पहला मैच खेला गया था जिसमें जीत दर्ज कर भारतीय टीम सीरीज में 1-0 से बढ़त बना चुकी है। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने अंडर 19 एशिया कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है। 5 नवंबर को इस टूर्नामेंट का ओमान में आगाज होगा जबकि फाइनल मैच 14 नवंबर को होगा। 50 ओवर के फॉर्मेट में इस टूर्नामेंट के सभी मैच मस्कट के ओमान क्रिकेट अकादमी के ग्राउंड 1 और ग्राउंड 2 पर खेले जाएंगे। टूर्नामेंट में 8 टीमें शामिल हैं जिसमें भारत, पाकिस्तान, यूएई और नेपाल को ग्रुप ए में, जबकि बांग्लादेश, अफगानिस्तान, श्रीलंका और मलेशिया को ग्रुप बी में रखा गया है।
7: इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया के तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी।
9: चरण स्पर्श करने के नियम क्या है? क्या महिलाओं को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए? क्या लेटे हुए सोए हुए व्यक्ति के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए? क्या है चरण स्पर्श की महिमा और क्या है इसके नियम और सावधानियां, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
14: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
14: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
14: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है
12: और दुर्भाग्य कहता है
14: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है
14: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
14: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
14: खबरों को
11: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
7: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
11: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
12: और दुर्भाग्य कहता है
13: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
7: अविश्वास में विश्वास बसता है,
11: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
10: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
11: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: शरण स्पर्श करने के नियम क्या हैं? क्या महिलाओं को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए? क्या लेटे हुए सोए हुए व्यक्ति के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए? क्या है चरण स्पर्श की महिमा और क्या है इसके नियम और सावधानियां, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोर इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
1: देश देख रहा है अच्छी खबरें।
2: एवरेस्ट दिखा लाल, सही दिखा सही लाल।
3: ओडिशा के पारादीप में इंडियन नेशनल कोस्ट गार्ड ने की 12वीं नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज। 30 देशों के 32 ऑब्जर्वर ने अभ्यास में लिया हिस्सा। कनाडाई लेखिका एन कार्सन को मिला 2026 का साहित्य नोबेल पुरस्कार। चर्चित किताबों में द ब्यूटी ऑफ द हस्बैंड शब्द। अक्टूबर को दलित प्रेरणा स्थल पर काशी राम के परिनिर्माण दिवस पर नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन, एडवाइजरी जारी। चारधाम यात्रा के दूसरे चरण में बन रहे हर दिन नए रिकॉर्ड्स। बद्रीनाथ में अब तक 19,13,000 से ज्यादा श्रद्धालु का बना नया रिकॉर्ड। देश भर में नवरात्र की तैयारियां तेज, कहीं मां की प्रतिमाओं को दिया जा रहा है अंतिम रूप, तो करवा की प्रेस और साज सज्जा के सामान से सजे बाजार, कारोबारी खुश।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं दुर्गा पूजा की। बस अब थोड़ा सा इंतजार है, 11 अक्टूबर से देश में शक्ति पूजा का आरंभ होने जा रहा है और उसके लिए भव्य पंडालों और दिव्य प्रतिमाओं का निर्माण तेजी से चल रहा है। आज आपको लिए चलेंगे कोलकाता, जहां पर मशहूर पार्क स्ट्रीट इलाके में 300 साल बाद पहली बार दुर्गा पूजा होने जा रही है और इसके लिए भव्य पंडाल बनाए जा रहे हैं। दुर्गा पूजा में इस बार सरकार ने क्या नए नियम बनाए हैं, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही आपको लिए चलेंगे मिनी बंगाल कहे जाने वाले चितरंजन पार्क में और वहां बन रहे भव्य पंडाल की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही गुजरात में गरबा की तैयारियां तमाम हैं, वो दिखाएंगे। मशहूर अंगारा रास के लिए टीमें अभी से रिहर्सल करने में जुटी हुई हैं। शोलों के दरमियान कैसे होता है ये डांस आपको दिखाएंगे और आखिर में दिल्ली में मंचित होने जा रहे डांस ड्रामा श्री राम की टीम से भी मिलाने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं मां दुर्गा के स्वागत की तैयारियों से। दिल्ली से अमरावती तक और चंडीगढ़ से लेकर कोलकाता तक भव्य पंडाल आकार ले रहे हैं और देवी की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। लेकिन इसके बीच सबसे ज्यादा चर्चा कोलकाता के पार्क स्ट्रीट की है, जो मशहूर तो क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए है, लेकिन 370 साल बाद वहां अब महाशक्ति की आराधना होने जा रही है और उसके लिए भव्य पंडाल बनाया जा रहा है। इसी तरह दिल्ली के चितरंजन पार्क में पंडालों को सजाने का काम तेजी से चल रहा है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक पूरे देश में मां के आगमन का इंतजार है। रिपोर्ट देखिए।

0: सर्वेश्वरी जगदीश्वरी मात्र रूप महेश्वरी ममतामयी करुणामयी जगजीवनी संजीवनी तमहारिणी शुभकारिणी मनमोहिनी विश्वेश्वरी। उस पल की प्रतीक्षा है जब पंडाल में माँ विराजेंगी, इसलिए धूमधाम से भक्तिभाव से दिन रात जुटकर पंडाल सजाए जा रहे हैं। चाहे बंगाल हो या मिनी बंगाल, कोलकाता का पार्क स्ट्रीट हो या दिल्ली का चितरंजन पार्क, भावना तो एक ही है। हाँ, पर भव्यता में बाजी मारने की होड़ है। सबसे पहले देखिए कोलकाता के पार्क स्ट्रीट इलाके को, जहाँ नया इतिहास रचा जा रहा है। जिस इलाके की पहचान रेस्टोरेंट, पब, कैफे, जगबगाती सड़क और पाश्चात्य संगीत के तौर पर रही है, और जो अपनी नाइट लाइफ के लिए मशहूर है, वहाँ 370 साल बाद महाशक्ति की आराधना होने जा रही है।
1: सब के सनातन संस्था के द्वारा यहाँ पर हम लोग एलन पार्क, जो आप पार्क से देख रहे हैं, यहाँ पर 300 वर्षों तक कभी आसन कोई, यहाँ बहुत बंगाली परिवार के लोग रहे, अच्छे धनाढ्य लोग रहे, लेकिन बहुत प्रयास किया गया, लेकिन आज तक कभी यहाँ पर कोई पूजा नहीं हो पाया दुर्गा पूजा। ये हम लोगों ने पहली बार सनातनी सरकार बनने के बाद में हम लोगों ने प्रयास किया। हमारे संस्था के महामंत्री नवीन मिश्रा जी और संस्था के अध्यक्ष हमारे स्वयंप्रदेव पांडा जी ने, दोनों ने मिलकर प्रयास करके और सरकार के साथ सहयोग करके, और इस जगह को, पार्क को, हम लोग आज सनातनी पार्क के नाम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि नामकरण किया जाए, और इस सनातनियों के लिए और पूरे पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए अपना सवार आप सभी का पूजा है, अकेले हमारी पूजा नहीं है, ये सनातनियों की पूजा है।
0: शक्ति पूजा के केंद्र कोलकाता में ये बदलाव यकीनन ऐतिहासिक है, क्योंकि अभी तक पार्क स्ट्रीट के एलन पार्क में क्रिसमस और न्यू ईयर ही सेलिब्रेट किया जाता था, पर इस बार भव्य रूप दुर्गा पूजा महोत्सव की तैयारी है आरंभ है, इसलिए पंडाल भी अद्भुत होना चाहिए। इसलिए कोलकाता सनातनी संघ ने शिव तांडव की थीम चुनी है।
1: पूजा का ये शंकर भगवान का विराट स्वरूप है, शिव तांडव का स्वरूप इसमें देखिए। एक तरफ आप भगवान की जटा में देखिए, जिस समय माँ जब आग में कूद गई थी, उसके बाद का दृश्य है, वो रुद्र रूप इनका यहाँ पर है, और बगल में तांडव करते हुए है। इधर में आपके यहाँ वरुण की अभिषेक करते हुए रहेगा, सामने आपका आदि शिव का है। यहाँ पांच तरह की, एक तरफ नंदी पे शिव जी बैठे हैं, पांच तरफ भगवान शिव का ही पूरा तांडव लीला इसमें है।
0: यूं तो 2007 से एलन पार्क में पार्क स्ट्रीट कार्निवल होता आ रहा है, जिसे 2011 से क्रिसमस फेस्टिवल का नाम दिया गया, लेकिन दशकों से दिसंबर में जगमगाने वाला ये पार्क अब अक्टूबर में यानी नवरात्रि के दौरान भी आकर्षण का केंद्र रहेगा। पार्क स्ट्रीट में शक्ति पूजा के लिए बनारस से करीब 100 पुरोहितों की टीम आ रही है। चतुर्थी से दशमी तक रोज बनारस के दशाश्वमेध घाट की तर्ज पर यहाँ महाआरती होगी। अष्टमी पर 5,000 महिलाओं के साथ जागरण और अष्टमी को कन्या पूजन होगा। पंडाल में पश्चिम बंगाल की लोक संस्कृति और लोक संगीत पर फोकस रहेगा, साथ ही राज्य की कला और परंपराओं की झलक भी रहेगी। एलन पार्क इलाके में दुर्गा पूजा होगी तो जाहिर है भारी जन सैलाब उमड़ेगा। ये इलाका पहले से ही भीड़ भाड़ वाला है, इसलिए क्राउड मैनेजमेंट पर आयोजक और प्रशासन दोनों की नजर है। दावा है कि एलन पार्क की दुर्गा पूजा कोलकाता की सबसे बड़ी पूजा होगी, और इसी दावे के अनुसार पंडाल भी बनाया जा रहा है। मुख्य द्वार पर बिखरी हुई जटाओं के साथ शिव की विशाल प्रतिमा, पंडाल के अंदर विशाल मंदिर की प्रतिकृति जिसमें माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की मूर्तियाँ। वैसे तो कोलकाता में एक से बढ़कर एक पंडाल बन रहे हैं, लेकिन एलन पार्क के पंडाल को अद्वितीय बनाने की कोशिश है।
2: यहाँ से लाखों लाखों, कम से कम डेली हमको लगता है कि 8-10 लाख लोग आएंगे ही आएंगे।
0: बताया जा रहा है कि इस ऐतिहासिक दुर्गोत्सव का उद्घाटन 11 अक्टूबर को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी करेंगे। भव्य महाआरती, पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम और विशाल महाप्रसाद वितरण की वजह से माना जा रहा है कि एलन पार्क की पूजा भव्य होगी। इस साल पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के लिए कई बदलाव भी किए गए हैं, जैसे महाअष्टमी के पावन अवसर पर राज्य भर में शराब की सभी दुकानें और बार पूरी तरह बंद रहेंगे। पूजा पंडालों और विसर्जन यात्रा के दौरान डीजे बजाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। राज्य भर की सभी पंजीकृत पूजा समितियों के लिए बिजली बिल में 100% छूट देने की घोषणा भी राज्य सरकार द्वारा की गई है। और हाँ, महालया से पहले पंडाल का उद्घाटन नहीं किया जाएगा। ये तो हुई बंगाल की बात, अब चलिए आपको मिनी बंगाल यानी दिल्ली के चितरंजन पार्क लेकर चलते हैं, जहां भव्य पंडालों को आखिरी रूप दिया जा रहा है। चितरंजन पार्क के बड़े पंडालों में एक मेला ग्राउंड का ये पंडाल भी है, जहां पर हर साल के ही जैसा इस साल भी भव्य और खूबसूरत पंडाल बनाया जा रहा है।
1: दिल्ली के चितरंजन पार्क के मेला ग्राउंड में मौजूद है, जहां पर बड़ा पंडाल बनाया जाता है और भव्य उत्सव नवरात्रों के दौरान मनाया जाता है। भव्य माता की प्रतिमा स्थापित की जाती है और इसको लेकर के यहां पर तैयारियां शुरू है। आप देख सकते हैं दुर्गा पूजा समिति सीआर पार्क मेला ग्राउंड है और इसी के तौर पे कई वर्षों से यहां मनाया जाता है। 50 साल इस पूजा का हो चुका है और इस बार 51वां मनाया जाएगा। और देख सकते हैं किस तरीके से भव्य जो पंडाल है वो यहाँ पर बनाने का कार्य आपको शुरू हो गया है।
0: एक तरफ पंडाल सजाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ माँ की प्रतिमा भी तैयार हो रही है, तो कहीं देवी दुर्गा की प्रतिमाओं का आगमन भी होने लगा है। झांसी में नवदुर्गा उत्सव समिति की ओर से देवी की ये सुंदर प्रतिमा झोकनबाग शहीद पार्क में स्थापित होगी। बताया गया कि समिति पिछले 42 वर्षों से लगातार माँ दुर्गा की स्थापना और नवरात्रि उत्सव का आयोजन करती आ रही है। समय बदला, पीढ़ियां बदली, लेकिन देवी दुर्गा की आराधना और झोकनबाग शहीद पार्क की ये परंपरा आज भी उसी उत्साह के साथ जारी है।
3: नवदुर्गा उत्सव समिति झोकनबाग शहीद पार्क सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। इधर पे शहीद पार्क पे हम लोग माता रानी को विराजमान करते हैं पिछले 42 साल से और हमारी मूर्ति जो है वो सागर से आई है, विश्वकर्मा आर्ट से।
0: शक्ति उपासना के इस पर्व को लेकर रौनक हर तरफ है। ये तस्वीर महाराष्ट्र के अमरावती की है, जहां विदर्भ की कुलस्वामिनी के रूप में प्रसिद्ध अम्बा माता का मंदिर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा है। मंदिर की साफ सफाई और रंग रोगन के साथ माता के सोने चांदी के आभूषणों को भी चमकाया गया है।

0: विदर्भ की कुलस्वामिनी अमरावती की माँ अंबे के इस मंदिर में, जहाँ पर आप देख सकते हो कि मंदिर को जो है पूरी तरीके से लाइटिंग से सजाया है, यहाँ पर पूरी तरीके से रोशनाई शुरू कर दी है और अब नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि उत्सव को बस कुछ ही दिन बचे हैं, उससे पहले जो है हर देवी का जो मंदिर है वो अब सजना शुरू हुआ है। और
1: पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, देश के हर हिस्से में शक्ति पूजा की तैयारी है, दुर्गा पूजा की धूम है और श्रद्धालु माँ की आगमन की प्रतीक्षा में हैं। दिल्ली से आशुतोष कुमार और अमरावती से धनंजय साबली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: नवरात्रि आने में अब कुछ ही वक्त शेष रह गया और गुजरात में गरबा की धूम शुरू हो चुकी है। कहीं जलती मशालों के बीच अंगारा रास की तैयारियां हैं तो कहीं पर रंग बिरंगे परिधानों में गरबा प्रेमी कदमताल का अभ्यास कर रहे हैं। जामनगर में 70 साल से ज्यादा पुरानी अंगारा रास की परंपरा आज भी कायम है, जहां आग के बीच कलाकार अपनी आस्था और साहस दिखाते हैं। वहीं वडोदरा और राजस्थान के पाली में गरबा की नई पीढ़ी को अपने रंग में रंग रहे हैं। रिपोर्ट देखिए।

अंगारों के बीच थिरकते कदम, हाथों में सुलगती मशालें, चेहरे पर आस्था और दिल में माँ अम्बे का नाम। ये नजारा है गुजरात के जामनगर का, जहाँ नवरात्रि से पहले ही भक्ति का रंग गहरा होने लगा है। जामनगर के रणजीत नगर में पटेल युवक गरबा मंडल पिछले 70 साल से ज्यादा वक्त से अंगारा रास की इस अनोखी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। आधुनिक गरबा के दौर में भी यहाँ सदियों पुरानी साहसिक कला का जुनून बरकरार है। महीनों पहले से युवा कलाकार इसकी तैयारी में जुट जाते हैं, कदमों की लय साधते हैं और आग के बीच संतुलन का कठिन अभ्यास करते हैं।

0: हमारा यहाँ का फेमस रास है वो है मसाल रास है, और हम मसाल रास खेलते खेलते जो हमारा स्वस्तिक है वो बनाते हैं, और माता जी का शस्त्र बोलते त्रिशूल वो भी बनाते हैं, और गरबा के अंत में हम अंगारों पे खेलते हैं, और वो भी खुले पैर खेलते हैं, कोई लोशन या कुछ अप्लाई भी नहीं करते हैं, और ये हमारे ऊपर माता जी का आशीर्वाद है जो हमारे पैर में कुछ होता नहीं है, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और ये मसाल रास हम पिछले 25 सालों से खेल रहे हैं, और ये गरबा हमारा गरबा मंडल है जो ये पिछले 70 सालों से यहाँ पे कार्यरत है।
1: हाथों में जलती मशाले, चारों तरफ आग की लपटे, लेकिन चेहरों पर जरा भी डर नहीं। भक्ति में डूबे कलाकार जब रास की लय पर घूमते हैं तो लगता है जैसे आस्था ने आग पर भी जीत हासिल कर ली हो। जामनगर में अंगारा रास का एक और खास रूप भी देखने को मिलता है। श्री रंदल अंबिका कुमारिका गरबा मंडल स्वास्तिक के आकार में सुलगती लकीरों के बीच स्वास्तिक अंगारा रास की प्रस्तुति करता है। आग की तपिश के बीच गुजरते कलाकार अपनी श्रद्धा और साहस का अद्भुत मेल दिखाते हैं। और अब बात उस रंग की जिसके बिना गुजरात की नवरात्रि अधूरी मानी जाती है, गरबा। वडोदरा में विकसित भारत संकल्प गरबा की थीम पर भव्य प्री गरबा आयोजन हुआ। पारंपरिक परिधानों में सजे लोग संगीत की धुन पर घूमते घेरे और मां शक्ति की आराधना के साथ विकसित भारत 2047 का संदेश पूरे माहौल को खास बना गया।
2: वडोदरा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा गरबा का आयोजन किया जा रहा है, और यहाँ पे खूब ही अच्छे और सच्चे मन से हम लोग माता जी की श्रद्धा से गरबे के लिए आए हैं, और विकसित भारत थीम पे हमें बहुत ही गर्व है।
3: विकसित भारत पे आज यहाँ पे देख सकते हो काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पे यूनाइटेड वे ऑफ वडोदरा जो वर्ल्ड प्रसिद्ध है गरबा, जो आज यहाँ पर काफी जनसंख्या में लोग आए हुए हैं। सो आप देख सकते हो इतना अच्छा मैनेजमेंट है, बहुत अच्छा, और अतुल दादा तो हमारे सबके फेवरेट है जो इतना वर्षों से सिंगिंग कर रहे, तो आप सब देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत है।
4: हम लोग रात्रि बिफोर नवरात्रि अतुल पुरोहित के साथ विकसित भारत की थीम पे यहाँ पे यूनाइटेड वे के ग्राउंड पे आज खेलने आए थे। आज का हमारा ये जो एनर्जेटिक एक्सपीरियंस है, जैसे आप सुन सकते हो बैकग्राउंड में किस हिसाब से चल रहा है, पीछे सब स्टूडेंट्स और वो सब विकसित भारत पे डांस और गरबा परफॉर्म कर रहे हैं।
1: रंग बिरंगी चनिया चोली, पारंपरिक केडिया कुर्ता, तालियों की गूंज और एक साथ पढ़ते कदम, वडोदरा महानगर पालिका के इस आयोजन में स्वच्छता, नारी शक्ति, सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्र निर्माण का संदेश भी जुड़ा रहा। लोगों के लिए प्रवेश निःशुल्क रखा गया जिससे उत्सव में हर उम्र के लोगों की भागीदारी दिखी। गुजरात से निकलकर गरबा देश भर की धड़कन बन चुका है। इसका असर राजस्थान के पाली में भी साफ दिखाई दे रहा है। बच्चों से लेकर महिलाओं और जेंजी युवतियों तक हर कोई गरबा सीखने को लेकर उत्साहित है। मोबाइल और डीजे पर बजते संगीत के साथ कोरियोग्राफर नए स्टेप सिखा रहे हैं। इस बार बॉलीवुड अंदाज के मूव्स भी युवा पीढ़ी को खासा आकर्षित कर रहे हैं।
5: सिकली तो दो ताली, तीन ताली, हीच, डोडिया, ये सारे स्टेप्स किए जाता है, बट आज के जमाने के हिसाब से, आज की जेन ज़ी के हिसाब से अगर हम लोग उसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफाई करके, थोड़ा सा बॉलीवुड स्टेप्स को मॉडिफाई करके डालते तो उनको करने में भी मजा आता है, और उस तरीके से करते तो सब लोग एंजॉय भी करते हैं।
1: लेकिन गरबा सिर्फ नृत्य नहीं, ये माँ अम्बे से जुड़ने का एक जरिया भी है। बीच में जलता दीपक, चारों तरफ घूमते भक्त और हर ताल के साथ बढ़ती श्रद्धा, 9 दिनों के उपवास और साधना के बीच गरबा का हर कदम शक्ति को समर्पित होता है। बदलते दौर में इसके अंदाज जरूर बदले हैं, लेकिन भाव वही है, माँ के प्रति समर्पण का, शक्ति की आराधना, संस्कृति की पहचान और उत्सव की उमंग गुजरात में साफ दिखाई दे रही है। राजस्थान से भरत भूषण जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: दिल्ली में इस दिवाली एक बार फिर से मंच पर भगवान राम की गाथा जीवंत होने जा रही है। करीब 7 दशक पुरानी परंपरा के तहत श्रीराम भारतीय कला केंद्र का मशहूर डांस ड्रामा श्रीराम इस साल अपने पारंपरिक स्वरूप में लौट रहा है। खास बात इसमें यह है कि करीब 25 साल बाद इसकी प्रस्तुति में पुराने अंदाज, पारंपरिक वेशभूषा और मंच सज्जा को फिर से जगह दी गई है। चलिए इस लोकप्रिय डांस ड्रामा की टीम से आपको मिलवाते हैं।

0: श्रीराम भारती कला केंद्र के ड्रेस रिहर्सल में हैं हम, और फिलहाल हम बैक द स्टेज हैं। सीता जी तैयार हो रही हैं और किस तरह से वो खुद को सवार रही हैं ये हम देख पा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सारे आर्टिस्ट अपना मेकअप अपने आप करते हैं, उन्हें उनका रोल बताया जाता है, उस रोल की क्या डिमांड है, कैसा उन्हें दिखना है स्टेज पर, उसके हिसाब से वो खुद अपना मेकअप चूज करती हैं और ऐसा चुनती हैं कि हर बार बिल्कुल परफेक्ट दिखाई पड़ती हैं। अनुसुआ जी मेरे साथ में हैं, पेशे से टीचर हैं लेकिन सिर्फ रामलीला के लिए ब्रेक लिया है और यहाँ पर फिलहाल वो तैयार होती हुई दिखाई पड़ रही हैं।
1: जब भी माता सीता का नाम लिया जाता है सबसे पहली बात तो शक्ति का एक अनुभूति होती है अपने अंदर, और हम जैसे कि सर ने अभी बताया कि हम लोग मेकअप के द्वारा इसका हम लोग दर्शाते हैं, जैसे कि हम लोग आईब्रोज जो है, जो हमें शोभा जी ने सिखाया है कि आईब्रो को हम लोग किस तरीके से बनाते हैं ताकि जो पॉजिटिव रोल है वो कितना दूर दर्शकों तक समझ में आए कि दैट इज अ पॉजिटिव रोल।
0: राजकुमार जी मेरे साथ हैं, राम के गेटअप में हैं, पिछले 40 साल से श्री राम भारती कला केंद्र के साथ जुड़े हुए हैं और पिछले 30 साल से लगातार राम का रोल वो प्ले कर रहे हैं रामलीला में।
2: इसमें कोई शक नहीं, वाकई राम समा गए हैं, बट ये कि राम बनने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है। बट हमारे डायरेक्टर हैं शोभा दीपक सिंह पद्मश्री, उन्होंने काफ़ी हमें तुलसीदास रामायण और अपना वाल्मीकि रामायण बहुत रटाया है, क्योंकि हमारा जो बेस है वाल्मीकि और तुलसीदास रामायण के ऊपर है। तो कुछ वर्कशॉप हुई हमारी थिएटर की और कुछ संवाद की हुई कि कैसे आपको अभिनय करना है, क्योंकि हम लोग बोल नहीं रहे, ये हमारा अभिनय प्रधान है। तो अभिनय के थ्रू हमें मुद्रा एक्सप्रेशन इस पर काफ़ी काम करना पड़ा, जिसके लिए हमें वर्कशॉप देने पड़े। हमारे गुरु जी, हमारे जितने सीनियर हैं उन लोगों ने काफ़ी हमारा हेल्प किया।
0: रामलीला का सबसे शानदार करैक्टर आप किसे मानते हैं, किसे देखने के लिए आप घर से निकलकर स्टेज के पास तक जाते हैं, तो वो है रावण। बिना रावण रामलीला कुछ भी नहीं है, बिना रावण शायद राम का भी इतना चर्चा नहीं होती। और मेरे साथ साक्षात रावण मौजूद हैं, स्वपन मजूमदार सर इनका नाम है। सर जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है आपने बहुत ही कमाल की थी, कितने साल से आप कर?
3: मैं 2014 से कर रहा हूँ रावण। मैं बेसिकली 1994 से भारतीय कला केंद्र में हूँ। आई केम एज अ स्टूडेंट एंड देन मैंने कई साल लक्ष्मण का रोल किया और रावण का रोल मैंने 2014 से स्टार्ट किया।
0: ये 12वां साल है आपका रावण का रोल प्ले करते करते, अभी भी स्टेज पर जाने से पहले कुछ अंदर बटरफ्लाई होती है क्या?
3: सी, कलाकार जो होता है ना वो स्टेज के अंदर जाने के बाद राजा होता है, स्टेज के जब वो बाहर होता है वो एक नॉर्मल इंसान होता है। डर हर एक इंसान को होता है और दिन जो होता है ना वो हमेशा एक दिन जैसा नहीं होता है। तो जैसे दिन चेंज होता है ऐसे कलाकार भी अपने हिसाब से कुछ इम्प्लीमेंट करता है और कुछ छूट जाता है, तो डर तो होता ही और बहुत ज़रूरी भी है ये डर होना।
4: खास कार्यक्रम में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़ रही वो न्यूज टुडे के साथ हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।
5: चरण स्पर्श करने के नियम क्या हैं? क्या महिलाओं को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए? क्या लेटे हुए सोए हुए व्यक्ति के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए? क्या है चरण स्पर्श की महिमा और क्या है इसके नियम और सावधानियां, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
8: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
9: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती है, तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
8: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
10: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
9: अविश्वास में विश्वास बसता है,
8: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
8: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
6: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को
1: शरण स्पर्श करने के नियम क्या हैं? क्या महिलाओं को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए? क्या लेटे हुए सोए हुए व्यक्ति के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए? क्या है चरण स्पर्श की महिमा और क्या है इसके नियम और सावधानियां, जानिए मेरे साथ।
2: तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर। तो कुछ दिखाती है विकास की तस्वीर, खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है, खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
3: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
2: अविश्वास में विश्वास बसता है,
3: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
3: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे में।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
3: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: ओडिशा के पारादीप में इंडियन नेशनल कोस्ट गार्ड ने की 12वीं नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज, 30 देशों के 32 ऑब्जर्वर ने अभ्यास में भाग लिया। कैनेडियाई लेखिका एन कार्सन को मिला 2026 का साहित्य नोबेल पुरस्कार, चर्चित किताबों में द ब्यूटी ऑफ द हस्बैंड शामिल। अक्टूबर को दलित प्रेरणा स्थल पर कांचीराम के परिनिर्माण दिवस पर नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन एडवाइजरी जारी। चारधाम यात्रा के दूसरे चरण में बन रहे हर दिन नए रिकॉर्ड्स, बद्रीनाथ में अब तक 19,13,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने बनाया नया रिकॉर्ड। देशभर में नवरात्र की तैयारियां तेज, कहीं मां की प्रतिमाओं को दिया जा रहा है अंतिम रूप तो गरबा की ड्रेस और साज सज्जा के सामान से सजे बाजार, कारोबारी खुश।
0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है कम से कम लोगों को।
2: नवरात्रि से पहले प्रयागराज में जगह जगह पूजा पंडाल लेने लगे हैं आकार, देवी मां की प्रतिमाओं को

0: grup din emëzhurim urtikar. प्रयागराज के कई इलाकों में सड़क किनारे मूर्तियां तैयार की जा रही हैं। इनकी बिक्री से पूरे परिवार का खर्चा चल रहा है। कई परिवारों में बुजुर्गों से लेकर महिलाएं और बच्चे तक मूर्ति बनाने के कार्य में जुटे हुए हैं। बड़े पंडालों के साथ छोटे पंडालों और आम परिवार भी प्रतिमाएं खरीद रहे हैं। कई मूर्तिकार हल्की और पारंपरिक मिट्टी से देवी प्रतिमा बना रहे हैं। इनका विसर्जन भी आसान होता है। नवरात्रि से पहले अकोला में डांडिया की जगह तलवार के साथ गरबा की हो रही है प्रैक्टिस। महिलाओं और युवतियों को गरबा के साथ तलवारबाजी का हुनर सिखाना है। विश्व हिंदू परिषद की दुर्गा वाहिनी की ओर से तलवार गरबा का दिया जा रहा है प्रशिक्षण। प्रैक्टिस में गरबा स्टेप्स के साथ तलवार संभालने और संतुलन बनाने की प्रैक्टिस। तलवार के साथ गरबा की इस पहल को महिलाओं और युवतियों को मिल रही है अच्छी प्रतिक्रिया। माँ दुर्गा की आराधना के साथ महिलाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। झांसी में शारदीय नवरात्र के पावन पर्व की रौनक, आस्था और भक्ति के रंग में रंगे श्रद्धालु। नव दुर्गा उत्सव समिति झोकन बाग शहीद पार्क और माँ दुर्गा की भव्य प्रतिमा का जयकारा। 42 सालों से चली आ रही अनोखी परंपरा नवरात्र से पहले ही होती है मां दुर्गा की आगमन। माता के दर्शन के लिए दूर दूर से पहुंचते श्रद्धालु। औरैया में रामलीला से पहले निकली शिव बारात, देवी देवताओं की मनमोहक झांकी प्रस्तुत हुई। भक्ति गीतों पर जमकर झूमे श्रद्धालु। शिव बारात में ब्रह्मा विष्णु और महेश के साथ 9 देवियों की झांकियों ने मन मोह लिया। नवरात्र से पहले गुजरात के जामनगर में नौजवान अंगारा रास की तैयारियों में जुटे हुए हैं। अंगारा रास गरबा और रास उत्सव में किया जाने वाला है। साहसिक नृत्य कलाकार हाथों में जलते हुए अंगारे पकड़ते हैं। गुजरात में वडोदरा नगर निगम ने नवरात्र से पहले किया विकसित भारत संकल्प का गरबा आयोजन। पारंपरिक गरबा की धुन पर घूमते कदमों के बीच मां शक्ति की आराधना। उड़ीसा के धर्मगढ़ में दुर्गा पूजा की तैयारियां। कोलकाता से आए कारीगर पारंपरिक बंगाली शिल्प कौशल का हुनर दिखा रहे हैं। कोलकाता में दुर्गा पूजा को लेकर उत्साह जबरदस्त। सैकड़ों सालों में पहली बार क्रिसमस के लिए मशहूर पार्क स्ट्रीट कोलकाता के सबसे बड़े दुर्गा पूजा समारोह की मेजबानी करेगी। केदारनाथ धाम की पैदल यात्रा को लेकर और सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने में जुटा प्रशासन। श्रद्धालुओं से अभद्रता करने वाले संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। त्योहारी सीजन में रेलवे ने गुड न्यूज दे दी। यात्रियों की ज्यादा भीड़ को देखते हुए चलाई जा रही है स्पेशल ट्रेन्स। पुणे, मुंबई, अहमदाबाद, वलसाड, अजमेर, जोधपुर और कोटा से स्पेशल ट्रेन्स। नवरात्रि से पहले गरबा ड्रेस की मांग बढ़ी। बाजार में महिलाओं में नजर आया क्रेज। महिलाएं खुद गरबा ड्रेस डिजाइन कर रही और सिलाई और बिक्री में जुटी हुई। बाजार में छा रहे हैं नए डिजाइन। कॉटन के साथ गुजराती और कठियावाड़ी पैटर्न को मिलाकर नए लुक्स। युवतियां ड्रेस पहनकर घूमकर लहंगे का घेर और लुक्स चेक कर रही हैं। 9 दिन के गरबा के लिए खर्च बचाने के लिए कई युवतियां ड्रेस किराए पर ले रही हैं। बद्रीनाथ धाम में अब 19 लाख अब तक 13,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे। कड़ाके की ठंड और मौसम अलर्ट के बावजूद बद्रीनाथ में भक्तों का उत्साह जबरदस्त। रोजाना 14,000 से 18,000 श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पितृपक्ष चलते देश भर में श्रद्धालु बद्रीनाथ के ब्रह्म कपाल में पिंड तर्पण करने के लिए पहुंच रहे हैं। मान्यता है कि बद्रीनाथ के ब्रह्म कपाल में पिंडदान करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। आमतौर पर बारिश के बाद यात्रा धीमी पड़ जाती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। रानी मुखर्जी ने आज बद्रीनाथ धाम पहुंचकर भगवान बद्री विशाल के दर्शन पूजन किए। इस दौरान उन्होंने मंदिर में लक्ष्मी के दर्शन किए। रानी मुखर्जी ने भगवान बद्री विशाल की विधिवत पूजा अर्चना की। पितृपक्ष में मॉरिशस, इटली, इंग्लैंड समेत कई देशों के श्रद्धालु जूम से काशी से जुड़े। मॉरिशस के करीब 250, इटली से 50 और इंग्लैंड से 20 श्रद्धालु जुड़े। विदेशों में बैठे श्रद्धालुओं ने अपना नाम गोत्र और पितरों के नाम पर लेकर संकल्प किया। आज भारतीय वायुसेना का 94वां स्थापना दिवस, गाजियाबाद के हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर मुख्य समारोह। वायुसेना दिवस परेड में IAF की ऑपरेशन क्षमता, अनुशासन और शानदार विरासत। हिंडन एयरबेस पर भव्य एयर शो, आसमान में वायुवीरों का कौशल। वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने दिखाई जांबाजी, फ्लाईपास्ट में हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हुए। वायुसेना दिवस के इस साल की थीम है भारतीय वायुसेना आशुक अभेद सटीक। राजस्थान की धरती पर वायुवीरों का अभ्यास लगातार जारी, तरंग शक्ति 2026 के दूसरे चरण का आगाज। जोधपुर एयरबेस पर भारतीय वायुसेना की सूर्यग्रहण एरोबेटिक्स टीम ने भरी उड़ान। एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों का भी शौर्य प्रदर्शन, सारंग हेलीकॉप्टर ने अभ्यास दिखाया। उत्तर प्रदेश के भदोही में संपन्न हुआ 4 दिवसीय कारपेट एक्सपो। कालीनों के महाकुंभ में 65 देशों के 447 फॉरेन बायर्स और उनके प्रतिनिधि शामिल हुए। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2026 का प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन किया। 10 अक्टूबर तक नई दिल्ली के यशोभूमि में चलेगा सम्मेलन। प्रधानमंत्री ने कहा मोबाइल फोन ने भारत में कंटेंट क्रिएशन में क्रांति लाई है। दुनिया भर की बड़ी टेक और टेलीकॉम कंपनियां, स्टार्टअप्स और इंडस्ट्री के बड़े नाम शामिल। IMC की थीम स्केल विदाउट बाउंड्रीज। IMC 2026 के इवेंट में जाकर नई टेक्नोलॉजी को समझने और डेमोंस्ट्रेशन देखने के लिए पहुंचे। गुजरात के अमरेली में शेरनियों के कुएं में गिरने के 2 अलग अलग मामले सामने आए। जाफराबाद और धारी में वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। लेपर्ड की मॉनिटरिंग के लिए रणथंभौर टाइगर रिजर्व में लगाए जाएंगे साइलेंट डिवाइस। रणथंभौर टाइगर रिजर्व में 170 से ज्यादा लेपर्ड है, आए दिन तेंदुए रिजर्व से निकलकर आबादी वाले इलाकों में पहुंचाते हैं। उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद में 26वां तेंदुआ पिंजरे में कैद, 40 पिंजरों से रेस्क्यू अभियान जारी। छत्तीसगढ़ में भिलाई में मैत्री बाग में मनाया जा रहा है वन्य प्राणी संरक्षण सप्ताह। उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा में गुरुवार को भारी ओलावृष्टि हुई, अचानक मौसम बिगड़ने से इलाकों में तेज ठंडक। बांदीपुरा में मौसम ने करवट ली, तेज ओलों ने लोगों के घरों में रहने को लोगों को मजबूर कर दिया। भारी ओलावृष्टि के चलते बांदीपुरा में सामान्य गतिविधियां प्रभावित हुई हैं, लोग बदले मौसम से परेशान। बांदीपुरा में अचानक आसमान से बड़े बड़े ओले गिरने लग गए, कुछ ही देर में मौसम का मिजाज पूरी तरीके से बदल गया। बांदीपुरा में गुरुवार को तेज ओलावृष्टि ने दस्तक दी, खराब मौसम के चलते इलाके में लोगों की दिनचर्या प्रभावित। कनेडियाई कवियत्री और लेखिका एनी कार्सन को 2026 का साहित्य नोबेल। एनी कार्सन कविता, गद्य, संवाद और अनुवाद को मिलाकर लिखती हैं। 1998 की उनकी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ रैट काफी मशहूर। कार्सन अब एलिस मुनरो और अर्नेस्ट जैसे नामों पर शामिल हो गई हैं। साहित्य नोबेल के साथ कार्सन को 12 मिलियन स्वीडिश क्रोनर मिलेंगे। दो पैरों वाला रोबोट घर घर पार्सल पहुंचा रहा, यूरोप में ऐसा पहला ट्रायल। एरिस रोबोट सीढ़ियों और ऊबड़ खाबड़ वाले रास्तों में चलने में माहिर। रोबोट 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है, जरूरत पड़ने पर इसे दूर भी पहुंचाया जा सकता है। कंपनी का कहना है कि रोबोट इंसानों की नौकरी नहीं छीनेगा। कंपनी भविष्य में रोबोट, लॉकर और ड्रोन को एक साथ इस्तेमाल करेगी। पेरू में लीमा के सैन मार्कोस स्टेडियम के बाहर BTS फैंस का जमावड़ा, 1 किलोमीटर तक लाइन। दक्षिण कोरियाई सुपर ग्रुप BTS पहली बार पेरू में लाइव कॉन्सर्ट कर रहा है। BTS को लाइव देखने के लिए बोलीविया से भी फैंस पेरू पहुंच रहे हैं, स्टेडियम के बाहर जमावड़ा। लीमा में बीटीएस के शो 9 और 10 अक्टूबर को। कॉन्सर्ट शुरू होने से कई घंटे पहले ही सैन मार्कोस स्टेडियम के बाहर लंबी लंबी कतारें। सिंगापुर में इंसानों ने रिमोट से ह्यूमनॉइड रोबोट लड़ाए। टूर्नामेंट में हल्के और भारी वजन वाले रोबोट उतरे। यूनिटरी जीवन और इंजन एआई T800 रिंग में पहुंचे। इन रोबोट्स को पायलट रिमोट कंट्रोल से चला रहे थे। आयोजकों के मुताबिक एसिफाइड रोबोट की क्षमता परखने की तरकीब। सिंगापुर में हुआ ये टूर्नामेंट ह्यूमनॉइड रोबोट मुकाबलों की नई शुरुआत। चीन की 1.5 किलोमीटर लंबी ग्रेट वॉल ऑफ खास मार्बल पत्थरों का इस्तेमाल हुआ है। शरद ऋतु में पहाड़ों के बीच इसका नजारा अद्भुत। बेयांग यू की ये दीवार मिंग राजवंश के दौर की है। चीन के क्यान्यान में ग्रेट वॉल के 45.3 किलोमीटर अवशेष मौजूद हैं। नेशनल डे की छुट्टियों में पर्यटकों ने व्यू प्लेटफॉर्म्स धुंध में लिपटी दीवार के नजारे दिखाए। स्थानीय प्रशासन ग्रेट वॉल ऑफ को गांव और ग्रामीण इलाकों से जोड़कर नए टूरिस्ट हब बनाने की कोशिश कर रहा है। चीन के चोंगकिंग में नया टूरिज्म कॉम्प्लेक्स खुला। पुरानी फैक्ट्री को पर्यटन स्थल में बदला। 4 दिन में करीब 4 लाख विजिटर्स। नेशनल डे हॉलीडे के दौरान रोजाना करीब 1 लाख लोग पहुंच रहे हैं। फैक्ट्री बनी घूमने की नई वजह। पुराने वर्कशॉप अब शॉपिंग और एंटरटेनमेंट स्पेस में बदल चुके। फैक्ट्री थीम पर हॉटपॉट का मजा। यहां पर लोग प्रदर्शनी देखने के साथ साथ इमर्सिव फैक्ट्री थीम वाले हॉटपॉट पर पहुंच रहे हैं। चोंगकिंग में पर्यटन का नया मॉडल। हेलोंग जियांग में खेतों में बिना ड्राइवर के स्मार्ट हार्वेस्टर मशीनें धान काट रही हैं। चीन में स्मार्ट हार्वेस्टर फसल काटने के साथ साथ पैदावार और नमी का डेटा भी इकट्ठा करती है। जियामूसी कृषि क्षेत्र में खेतों में मशीनें बिना इंसान के काम कर रही हैं। वसंत में बिना ड्राइवर रोपाई और अब शरद ऋतु में बिना ड्राइवर कटाई। सुनहरे धान के खेतों में कई हार्वेस्टर एक साथ फसल काटने में सक्षम।
1: गुड न्यूज चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को
2: शरण स्पर्श करने के नियम क्या हैं? क्या महिलाओं को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए? क्या लेटे हुए सोए हुए व्यक्ति के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए? क्या है चरण स्पर्श की महिमा और क्या है इसके नियम और सावधानियां, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
3: कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती हैं। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते। खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे। देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
4: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
4: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
5: और दुर्भाग्य कहता है
6: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
4: जो हम में अच्छाई जगाता है हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे।
4: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
7: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: पहाड़ों पर मौसम ने अचानक करवट लिया। उत्तराखंड से हिमाचल तक ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी ने खूबसूरत नजारा पेश किया है। बद्रीनाथ के पास 18,000 फीट की ऊंचाई पर देवताल बर्फ से पूरी तरीके से ढक चुका है, तो चंबा का साच पास भी सफेद चादर में नजर आ रहा है। लेकिन इन मनमोहक तस्वीरों के बीच मौसम विभाग ने बारिश, तेज हवाओं और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है।
2: चोटियों पर मौसम अपना रंग बदल रहा है, कहीं आसमान से गिरती बर्फ तो कहीं बारिश की फुहार, और इस बदलते मिजाज के साथ पहाड़ों पर सर्दी ने भी दस्तक दे दी है। उत्तराखंड से हिमाचल तक ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, चंबा और हिमाचल के कई पहाड़ी इलाकों में सफेदी छा गई है। ताजा हिमपात के बाद तापमान तेजी से नीचे गया है और ठिठुरन बढ़ गई है। बद्रीनाथ धाम से करीब 52 किलोमीटर दूर देवताल से भारत चीन सीमा के करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद देवताल 4 से 5 फीट बर्फ में ढक गया है। चोटियां हो, रास्ते हो या आसपास का इलाका, नजर जहां तक जाती है सिर्फ सफेद रंग दिखाई देता है। बद्रीनाथ ही नहीं बल्कि हिमाचल के चंबा में 14,500 फीट की ऊंचाई वाला साच पास भी बर्फ से ढक गया है। मंगलवार शाम शुरू हुआ हिमपात देर रात तक जारी रहा, जिसके बाद पूरा इलाका सफेद नजर आया। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में 6 से 8 अक्टूबर, जबकि हिमाचल और उत्तराखंड में 5 से 10 अक्टूबर तक बारिश, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट दिया है। ऊंची चोटियों पर हिमपात की भी संभावना है। ऐसे में लोग पहाड़ों की खूबसूरती देखने निकल रहे हैं, तो सिर्फ नजारे ही नहीं तैयारियां भी साथ रखें। रवाना होने से पहले मौसम का हाल जानें, प्रशासन की गाइडलाइन देखें और रास्तों की स्थिति जरूर जांच लें, क्योंकि पहाड़ों पर बदलता मौसम खूबसूरत जरूर है, लेकिन उतनी ही वहाँ सतर्कता भी जरूरी है। चमोली से कमल एल सिलोडे, चंबा से विशाल आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज़ टुडे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: शरण स्पर्श करने के नियम क्या हैं? क्या महिलाओं को साष्टांग प्रणाम नहीं करना चाहिए? क्या लेटे हुए सोए हुए व्यक्ति के चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए? क्या है चरण स्पर्श की महिमा और क्या है इसके नियम और सावधानियां, जानिए मेरे साथ सिर्फ गुड लक टुडे में।
2: खबरों को परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है, इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
3: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
3: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
6: गुड न्यूज टुडे।
0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
7: देश देख रहा है।
8: एवरेस्ट तीखा लाल, सही तीखा सही लाल।
9: ओडिशा के पारादीप में इंडियन नेशनल कोस्ट गार्ड ने की 12वीं नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज, 30 देशों के 32 ऑब्जर्वर ने अभ्यास में लिया हिस्सा। अक्टूबर को दलित प्रेरणा स्थल पर कांशी राम के परिनिर्माण दिवस पर नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन, एडवाइजरी जारी। गया जी में मनाई गई पितृ दीपावली, पिंडदान करने आए लोगों ने अपने पितरों के नाम से दीप जलाकर देवघाट को किया रोशन। कैनेडियाई लेखिका एन कार्सन को मिला 2026 का साहित्य नोबेल पुरस्कार, चर्चित किताबों में द ब्यूटी ऑफ द हस्बैंड शामिल। चारधाम यात्रा के दूसरे चरण में बन रहे हर दिन नए रिकॉर्ड्स, बद्रीनाथ में अब तक 19,13,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं का बना नया रिकॉर्ड।

0: नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सरगम पंत श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में।
1: नमस्कार।
0: देखिए, हमारी भारतीय संस्कृति में, भारतीय परंपरा में चरण स्पर्श को काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। आपने अक्सर अपने घर पे सुना होगा कि कहते हैं कि बड़े बुजुर्गों का चरण स्पर्श करो या फिर अपने टीचर्स का चरण स्पर्श करो। तो चरण स्पर्श करने के आखिरकार क्या कुछ चमत्कार होते हैं, इनके क्या कुछ लाभ होते हैं, इनके बारे में आज के कार्यक्रम में हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले पंडित जी से जान लेते हैं आज का गुड लक मंत्र क्या है।
1: बृहस्पतिवार को दीक्षा लेना और धर्म संबंधी काम करना हमेशा शुभ होता है, इसके परिणाम हमेशा बेहतर होते हैं। और बृहस्पतिवार को अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी बनी रहती है।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं 9 अक्टूबर 2026 यानी कि शुक्रवार का पंचांग क्या है।
1: दिनांक 9 अक्टूबर 2026 दिन शुक्रवार, तिथि है आश्विन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, रात के 9:35 तक। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, रात के 9:19 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं, राहु काल का समय प्रातः 10:30 से दोपहर के 12 तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे।
0: तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले पंडित जी से ये समझने की कोशिश करते हैं कि चरण स्पर्श करने का महत्व आखिर क्या है।
1: हम आज आपको बता रहे हैं कि केवल चरण स्पर्श करने से, केवल झुकने से आपका भाग्य कैसे चमक सकता है। चरण स्पर्श से आपके जीवन में सफलता कैसे आ सकती है। चरण स्पर्श करने का महत्व क्या है? देखिए, हिंदू संस्कारों में अभिवादन की परंपरा पाई जाती है। छोटों को भी और बड़ों को भी अभिवादन किया जाता है। अभिवादन के कई तरीके हैं, हाथ जोड़कर प्रणाम करना और चरण स्पर्श करना एक अभिवादन ही है। लेकिन चरण स्पर्श करना एक विशेष आध्यात्मिक और एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया भी है। सही तरीके से चरण स्पर्श करके अद्भुत लाभ हो सकते हैं। अगर आप सही तरीके से सही व्यक्ति के चरण स्पर्श करते हैं तो इससे आपका भाग्य बेहतर हो सकता है, संकट मिट सकते हैं और ईश्वर की अनुभूति हो सकती है। शास्त्र कहता है, अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविना चत्वारितस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। नियमित रूप से अभिवादन करने से आयु, विद्या, यश और बल बढ़ जाता है।
0: तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं मेष ऋषभ और मिथुन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
1: मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं, करियर में सफलता मिलेगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, करियर में सुधार होगा, परिवार में खुशहाली आएगी, छोटी यात्रा हो सकती है, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, परिवार में विवादों से बचाव करें, करियर में जोखिम ना लें, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा।
0: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब पंडित जी से जानते हैं चरण स्पर्श से क्या लाभ होते हैं।
1: तो चरण स्पर्श आपके भाग्य को बदलने की ताकत रखता है। चरण स्पर्श से लाभ क्यों होते हैं, क्यों किसी का पैर छूने से फायदा होता है? देखिए, हर व्यक्ति के अंदर एक विशेष तरह की ऊर्जा होती है और ये ऊर्जा हाथ और पैर की अंगुलियों में प्रवाहित होती है, हाथ और पैर की अंगुलियों में बहती है। ये ऊर्जा स्पर्श से एक दूसरे तक पहुंच जाती है। जब आप अपने हाथों से किसी व्यक्ति के पैरों को छूते हैं तो आप उसकी ऊर्जा को खींच लेते हैं। इसी प्रकार से जब आप किसी के सर पर हाथ रखते हैं तो आप अपनी ऊर्जा उस व्यक्ति को दे देते हैं। अगर ऊर्जा शुभ है तो पैर छूने पर या व्यक्ति के सर पर हाथ रखने पर तत्काल फायदा होता है। कोई संत महात्मा है, कोई विद्वत पुरुष है, कोई विद्वान है, कोई पवित्र व्यक्ति है, अगर आपके सर पर हाथ रख देता है तो आपके अंदर शुभता प्रवेश कर जाती है। और किसी संत महात्मा के पैर अगर आप छूते हैं, किसी पवित्र व्यक्ति के पैर छूते हैं, तो उसकी पवित्र ऊर्जा आपके शरीर में आ जाती है।
0: तो चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जान लेते हैं कर्क सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
1: कर्क राशि, करियर में कुछ बदलाव होता दिख रहा है, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा, धन लाभ के योग बने हुए हैं। माता लक्ष्मी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, स्वास्थ्य में सुधार होगा, काम का बोझ बढ़ा रहेगा, चोट चपेट से बचाव करें, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।

0: काम पूरे होंगे, करियर में बदलाव के योग बन रहे हैं, धन लाभ के योग हैं, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए, कार्यक्रम में समय हो गया है आपके सवाल का, तो बिना देर किए पंडित जी से ही जान लेते हैं कि आज का पहला सवाल वो किसका ले रहे हैं।
0: जी, आज का पहला प्रश्न सच्चिदानंद जी ने हमें लिखा है और सच्चिदानंद जी वाराणसी से मेल लिखते हैं। अपनी पुत्री के बारे में जानना चाहते हैं। 21 जुलाई 1992 का जन्म है, रात में 8:22, जन्म स्थान है वाराणसी। ये कह रहे हैं कि मेरी पुत्री विवाह करने को तैयार नहीं है, क्या उसका विवाह होगा और भविष्य कैसा रहेगा? सच्चिदानंद जी, आपकी पुत्री का विवाह जरूर होगा। साल 2027 के सेकेंड हाफ में, जून से दिसंबर वाले पार्ट में इनका विवाह होगा। इनकी अपनी इच्छा से जाने पहचाने लड़के के साथ, थोड़ा सा इंतजार करिए, आने वाले समय में इनकी शादी जरूर होगी। आपकी पुत्री कोई गलत विवाह ना कर ले, कोई ऊंट पटांग शादी ना कर ले, इसके लिए आप रोज सुबह शाम 108 बार अपनी बेटी के लिए ओम नमः शिवाय का जप करिएगा और हर बृहस्पतिवार को केले का दान करिएगा तो काफी अच्छा रहेगा।
1: तो चलिए, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की ओर। और आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप भी पंडित जी से कुछ पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। तो पंडित जी, आज का दूसरा सवाल आप किसका ले रहे हैं उसके बारे में बताएं।
0: जी, अगला प्रश्न शीतल ने हमें लिखा है और शीतल हमें बेंगलोर से मेल लिखती हैं। इनकी जन्म की तारीख है 18 सितंबर 1982, जन्म का समय रात में 9:35, जन्म का स्थान है जौनपुर, उत्तर प्रदेश। ये कह रही हैं कि मेरी नौकरी छूटने वाली है, आगे मेरा करियर कैसा रहेगा, क्या आगे इससे बेहतर नौकरी मिल सकेगी? शीतल, आपकी कुंडली के हिसाब से आपको नई नौकरी दिसंबर या जनवरी के महीने में मिलेगी। नवंबर के बाद आपको नई और बेहतर नौकरी मिलने की संभावना दिख रही है और ये नौकरी पहले से बेहतर होगी, आगे आपका करियर भी बेहतर होगा। थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य का ध्यान दीजिए, डाइजेशन को लेकर, हड्डियों और नसों को लेकर लापरवाही मत करिएगा। एक माणिक्य बनवा के पहनिए, 6 से 8 रत्ती का माणिक्य, तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, रविवार को प्रातः माणिक्य धारण करें और सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ होगा।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं, चरण स्पर्श के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। चरण स्पर्श करने के, पैर छूने के क्या कुछ तरीके होते हैं, आइए पंडित जी से इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं।
0: अब जानते हैं कि चरण स्पर्श कैसे कैसे किया जाता है, चरण स्पर्श के तरीके क्या हैं। देखिए, चरण स्पर्श के 3 तरीके हैं। झुक करके अपने हाथों से पैरों को छूना, झुक कर चरण स्पर्श करना, घुटनों के बल बैठकर अपने हाथों से चरण छूना या अपना सर चरणों में रख देना और साष्टांग प्रणाम करना, लेट करके प्रणाम करना। इन तीनों ही तरीकों से आप किसी भी तरीके से चरण स्पर्श करें, आपका शारीरिक स्वास्थ्य उत्तम होगा, शरीर लचीला और मजबूत होगा, और चूंकि झुकने की आदत पैदा होगी तो मन में विनम्रता आएगी, मन शुद्ध होगा और अहंकार का नाश होगा। यानी अगर आपके अंदर झुकने की आदत है, विनम्रता की आदत है, तो बहुत सारा भाग्य आपका वैसे भी बेहतर होना शुरू हो जाता है।
1: तो चलिए, चरण स्पर्श के बारे में आज हम बात कर रहे हैं, क्या इसके कुछ नियम भी होते हैं? आइए पंडित जी से इसके बारे में जानते हैं।
0: चरण स्पर्श अगर आप किसी का करते हैं, किसी महिला का, पुरुष का, गुरुजन का, तो उसका नियम क्या है? चरण उसी के स्पर्श करिएगा जिसके प्रति आपके मन में श्रद्धा हो और जो श्रद्धा के योग्य हो। हर व्यक्ति के पैर मत छूइए, हाथ जोड़कर नमस्कार कर लें, लेकिन पैर उसी के छुएं जिसके प्रति मन में श्रद्धा हो और जो श्रद्धा के योग्य हो। अगर झुक कर चरण स्पर्श कर रहे हैं तो हाथों की अंगुलियों से दूसरे व्यक्ति के पैर का अंगूठा छूइए। अगर घुटने के बल बैठ करके अभिवादन कर रहे हैं तो अपना सर दूसरे व्यक्ति के चरणों में रखिए। साष्टांग प्रणाम केवल अपने गुरु को या अपने इष्ट देव को ही करिएगा। केवल गुरु या इष्ट देव या देवी के अलावा अन्य किसी को साष्टांग प्रणाम नहीं करेंगे। महिलाओं को साष्टांग प्रणाम करना मना है, वो अर्ध साष्टांग करेंगी, घुटने के बल बैठकर अपना सर ईश्वर के सामने या गुरु के सामने झुकाएंगी। जब भी कोई आपका चरण स्पर्श करे तो उसके सर पर हाथ रख करके उसको आशीर्वाद दीजिएगा। माता पिता को या वरिष्ठ जनों को अपनी पुत्रियों से चरण स्पर्श नहीं करवाने चाहिए, और ज्यादातर लोग अपने जवाई से, अपने दामाद से भी चरण स्पर्श नहीं करवाते, क्योंकि पुत्री को और दामाद को पूज्य माना जाता है, विवाह के समय उनकी पैरों की पूजा की जाती है, इसलिए उनसे चरण स्पर्श करवाना उचित नहीं है।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जानते हैं तुला वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
0: तुला राशि, वाद विवाद से बचाव करें, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, स्थान परिवर्तन के योग हैं, सफेद मिठाई का दान करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, पारिवारिक समस्या हल होगी, अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85% बेहतरीन भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, करियर में कुछ बदलाव के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे, रिश्तों की समस्या हल होगी, माता लक्ष्मी की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो देखिए, चरण स्पर्श करके कैसे ग्रहों को अनुकूल कर सकते हैं, आइए इसके बारे में पंडित जी से समझते हैं।
0: चरण स्पर्श करके आप अपने ग्रहों को भी अनुकूल कर सकते हैं। कैसे करेंगे? अगर आप नियमित रूप से अपने पिता के चरण स्पर्श करें तो सूर्य की पीड़ा समाप्त होगी, सूर्य संबंधी दिक्कतें जीवन से दूर हो जाएंगी। अगर माता के रोज चरण स्पर्श करें तो चंद्रमा अनुकूल होगा, चंद्रमा की दिक्कतें दूर होंगी। किसी पवित्र महिला के श्रद्धानुकूल स्त्री के चरण स्पर्श करेंगे तो बुध और शुक्र मजबूत होंगे। भाई और बहन अगर बड़े हैं और इनका चरण स्पर्श नियमित रूप से किया जाए तो मंगल की समस्याएं दूर होंगी। अगर आप नियमित रूप से किसी वृद्ध व्यक्ति के चरण स्पर्श करते हैं तो बृहस्पति मजबूत होगा, बृहस्पति की दिक्कतें दूर होंगी। अगर सात्विक, सदाचारी और ईमानदार व्यक्ति के चरण स्पर्श करें तो शनि, राहु और केतु आपके नियंत्रित होंगे। संतों के, महात्माओं के, आध्यात्मिक व्यक्तियों के अगर आप चरण स्पर्श करें तो हर तरह की बाधा आपकी दूर होगी, हर तरह के ग्रह की कितनी भी बड़ी पीड़ा हो वो पीड़ा समाप्त हो जाएगी।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं मकर कुंभ और मीन राशि का राशिफल क्या कुछ कहता है।
0: मकर राशि, करियर में आपके सुधार होता दिखाई दे रहा है, करियर का हाल ठीक होगा, धन का लाभ होगा, लेकिन दौड़ भाग आपकी बढ़ी रहेगी। अनाज का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा, शुभ रंग होगा आपके लिए सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, परिवार में तनाव हो सकता है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, वाहन सावधानी से चलाएं, सफेद मिठाई का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा।

0: सुधार होगा, करियर की समस्या हल होगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी। माता लक्ष्मी की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
1: तो चलिए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आज का तीसरा सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं उसके बारे में जान लेते हैं।
0: जी अगला प्रश्न अजय कुमार जी ने हमें लिखा है और अजय कुमार जी गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से मेल लिखते हैं। इनकी जन्म की तारीख है 22 जुलाई 1973। जन्म का समय शाम के 5:52। जन्म स्थान है दिल्ली। ये कह रहे हैं कि मेरी एक दुकान है, मैं काफी समय से बेचना चाहता हूं ताकि मैं अपने कर्जे चुका सकूं। मेरी दुकान नहीं बिक पा रही है तो मुझे क्या उपाय करना चाहिए? अजय जी, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी इस साल के आखिरी में बिक जाएगी। नवंबर दिसंबर तक उसके बिकने का समय दिखाई दे रहा है और अगले साल तक आप अपने कर्जे उतार पाएंगे। अगले साल मार्च के बाद स्थान परिवर्तन भी दिख रहा है, हो सकता है गाजियाबाद से निकलकर कहीं और आप शिफ्ट कर जाएं। आने वाले समय में पैसे रुपए की ज्यादा मुश्किलें आपकी कुंडली में नहीं हैं, जीवन आराम से चलता रहेगा। सुबह शाम दोनों समय एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करिए और मंगलवार को गुड़ का या मिठाई का दान करिए, आपको लाभ होगा।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का अंतिम सवाल पंडित जी किसका ले रहे हैं उसके बारे में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को याद दिला दूं कि अगर आप भी कोई सवाल अपने मन में रखे हैं जो कि आप पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हमारी ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है। इस ईमेल आईडी पर आप अपने प्रश्न लिख करके हमें भेज सकते हैं। तो पंडित जी, आज का चौथा सवाल आप किसका ले रहे हैं उसके बारे में बताएं।
0: जी, आज का अंतिम प्रश्न नितिन जी ने हमें लिखा है और नितिन जी हमें मेल लिखते हैं गुड़गांव से। इनकी जन्म की तारीख है 16 नवंबर 1999। जन्म का समय शाम के 7:00। जन्म का स्थान है गुड़गांव। नितिन कह रहे हैं कि मैंने अभी एक बड़ी छोटी सी नौकरी शुरू की है,

0: नितिन, आपकी कुंडली के हिसाब से नौकरी की संभावनाएं आपकी कुंडली में कुछ खास नहीं है, तो अगर आप व्यापार करें लोहे का, मशीनरी का, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का, प्रॉपर्टी का, कंस्ट्रक्शन का, तो ऐसा काम करना बेहतर होगा फरवरी 2027 के बाद। जो क्षेत्र आपको बताए, इन क्षेत्रों में आप व्यापार के लिए जा सकते हैं। बुद्धि आपकी स्थिर रहे, एक तरीके से काम कर सकें, इसके लिए एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपको लाभ होगा।
1: पंडित जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, और ये निजी जिंदगी में मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि जब मैं शादी करके अपने ससुराल गई तो मुझे बताया गया कि जब कोई सो रहा होता है या जब कोई लेटा होता है तो उसके चरण स्पर्श नहीं किए जाते, ये अशुभ होता है। क्या इसके मायने हैं, ऐसा क्यों कहा जाता है?
0: जी देखिए, कोई व्यक्ति लेटा हो या सोया हो तो सामान्यता ऐसा मानते हैं कि वो शव आसन है या मृतक की स्थिति है। इसीलिए अगर किसी लेटे हुए व्यक्ति के आप चरण छूते हैं तो आप उसको मृत मानकर ऐसा करते हैं, ऐसी भावना की जाती है। मृत्यु हो जाने के बाद जब व्यक्ति के शरीर को लिटा दिया जाता है तो श्रद्धांजलि देने के लिए उस समय उनके चरण छुए जाते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति लेटा हुआ है या सो रहा है तो सोने के दौरान या लेटे होने के दौरान पैर छूने को बहुत ही अशुभ मानते हैं। कहते हैं कि जिसका पैर छूते हैं उसकी आयु कम होती है। इसका कोई शास्त्रीय आधार नहीं है, ये कोई तार्किक या लॉजिकल बात नहीं है। आप मृत्यु के डर से मृत्यु के चीजों को टालते रहेंगे, किसी का पैर लेटे हुए पे छूने से उसकी मृत्यु हो जाएगी, वो संभव नहीं है। मृत्यु तो वैसे भी होनी है, आप पैर छूए या ना छूए। इसका कोई तार्किक वैज्ञानिक आधार बिल्कुल नहीं है, इसलिए ऐसा सोचना ही सही नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए बहुत बीमार है, आपका वृद्ध है, आपका बड़ा है, बुजुर्ग है, नहीं उठ सकता पलंग से, तो आपके मन में कोई भाव आया, कोई श्रद्धा आई, तो आप उसका पैर छू सकते हैं भले ही वो लेटा हुआ है। हाँ, ये जरूर है कि अगर कोई व्यक्ति सो रहा है आप उसके चरण छुएंगे तो हो सकता है वो नींद में डिस्टर्ब हो जाए, चौंक करके उठ जाए। इस हिसाब से तो आप इसको ना करें, लेकिन सामान्यतः किसी लेटे हुए या सोए हुए व्यक्ति के पैर छूने से उसकी आयु कम हो जाएगी, ऐसा करना अशुभ है, ऐसा बिल्कुल भी किसी तर्क के आधार पर सही नहीं है।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जिनका जन्मदिन 9 अक्टूबर को है, पहले तो आप सभी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो, हैप्पी बर्थडे आप सभी को। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं कि आप सभी का आने वाला साल कैसा रहने वाला है।
0: जिन लोगों का जन्मदिन 9 अक्टूबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में स्वास्थ्य में सुधार होगा, करियर और स्थान में परिवर्तन होगा, धन और कर्ज की स्थिति में भी सुधार होगा, विवाह के मामलों में अभी विलंब होता दिखाई दे रहा है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर हनुमान जी की उपासना करें तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा।
1: तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जानते हैं कि आखिरकार आज की जिज्ञासा क्या है और उस जिज्ञासा का समाधान क्या है।
0: आज की जिज्ञासा है कि क्या ईश्वर की साधना उपासना प्रौढ़ हो जाने के बाद करनी चाहिए? 50 साल उम्र हो गई, 60 साल उम्र हो गई, वृद्ध हो गए तब करना चाहिए? देखिए, ईश्वर की साधना जितना जल्दी शुरू करें उतना ही अच्छा होगा। कोई जरूरी नहीं है कि आपके जीवन में वृद्धावस्था आए ही या प्रौढ़ हो ही, उम्र कम होगी तो पहले ही कर लेंगे। इसलिए ईश्वर की साधना जितना जल्दी करें उतना अच्छा है, क्योंकि एक बात और भी है कि प्रौढ़ हो जाए

0: आने के बाद 50 साल क्रॉस करने के बाद उसके बाद मन को ईश्वर की तरफ लगा पाना बड़ा कठिन होता है। मन सांसारिकता से भर जाता है। वृद्धावस्था में ईश्वर का साधना करना, ईश्वर की उपासना करना बिल्कुल लाभकारी नहीं होता। देखिए, वैसे तो परमात्मा को याद करेंगे हमेशा ही अच्छा है, लेकिन होता क्या है कि प्रौढ़ अवस्था में, वृद्धावस्था में मन में इतना ज़्यादा मोह और इतनी ज़्यादा माया का आवरण आ जाता है कि उससे निकल करके ईश्वर को याद कर पाना इतना आसान नहीं होता।
1: तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पंडित जी से जानते हैं 9 अक्टूबर 2026 यानी दिन शुक्रवार का शुभ पहर यानी कि अच्छा पहर कौन सा है।
0: दिनांक 9 अक्टूबर 2026 दिन शुक्रवार, शुभ पहर का समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में माता लक्ष्मी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से धन संबंधी समस्या आपकी समाप्त होगी, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 9 अक्टूबर शुक्रवार शाम को 6 बजे से 7:30 के बीच में।
1: तो चलिए अब पंडित जी से जानते हैं कि आज की गुड लक राशि कौन सी है।
0: हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोगों की शिक्षा के हालात कैसे रहते हैं। आज की गुड लक राशि है कन्या। इनकी शिक्षा धीरे धीरे उत्तम होती चली जाती है और धीरे धीरे मेहनत करके काफी पढ़ाई कर लेते हैं। शिक्षा में अगर आप सफलता चाहते हैं, आपकी राशि कन्या है, तो नियमित रूप से शनि मंत्र का जप करिए, आपको लाभ होगा।
1: तो चलिए कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर हम यहाँ पहुंच चुके हैं जहाँ हम पंडित जी से जानेंगे कि आज का महा उपाय क्या है।
0: जी, आज के महा उपाय में बताते हैं कि जीवन में कभी कभी ऐसा मौका आता है कि छोटी छोटी बातों पर लोगों से झगड़े होने लगते हैं। ऑफिस में, घर में, पड़ोस में छोटी छोटी बातों पर लोगों से विवाद हो रहे हैं, क्या करेंगे। रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल अर्पित करिए, सादा जल, प्लेन वाटर। सुबह और शाम एक एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें और हर मंगलवार को निर्धनों को गुड़ और चने का दान करें। ऐसा करने से बेवजह के छोटे छोटे जो विवाद हो रहे हैं वो बंद हो जाएंगे।
1: पंडित जी, हमेशा की तरह हमें तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
2: धन्यवाद।
1: तो चलिए इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए गुड न्यूज़ टुडे के साथ।

मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज़ टुडे में।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय वायुसेना की। इंडियन एयरफोर्स आज अपना 94वां स्थापना दिवस मना रही है। इस खास मौके पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में शानदार आयोजन हुआ, जहां पर हमारे वायु वीरों ने अपना दमखम दिखाया। गाजियाबाद में हिंडन की जमीन पर शानदार सेरेमोनियल परेड हुई, तो वहां से कोई 500 किलोमीटर दूर जोधपुर के आसमान में वायु वीरों ने अपने पराक्रम का प्रदर्शन दिखाया। जोधपुर में मेहरानगढ़ किले के ऊपर से जब भारतीय वायुसेना के जांबाज गुजरे तो वो नजारा अद्भुत था। तो चलिए आपको दिखाते हैं भारत के वायु वीरों ने इस खास दिन को दो अलग अलग शहरों में कितने शानदार अंदाज में मनाया।

ये ताकत है हमारे आसमान के निगहबानों की। ये शक्ति है भारत के भाल पर अपने शौर्य से तिलक लगाने वाले वायु वीरों की। ये उड़ान है 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के सीने में धड़कते दिलों की, जो आज एक स्वर में कह रहे हैं नभः स्पृशं दीप्तम्। गीता के 11वें अध्याय का ये श्लोक भारतीय वायु सेना का आदर्श वाक्य है, जिसका अर्थ है गौरव के साथ आसमान को छूना। पिछले 94 सालों से यही तो करती आ रही है इंडियन एयरफोर्स। भारतीय वायु सेना पिछले 9 दशकों से देश के आसमान में एक ताकतवर प्रहरी की भूमिका निभाती आई है। हिंदुस्तान ये जानता है कि जब तक उसके आसमान पर इन वायु वीरों की नजरें टिकी हैं, तब तक देश की धरती को कोई बुरी नजर छू भी नहीं सकती। एयरफोर्स के इसी जज्बे को सलाम करते हुए हर 8 अक्टूबर को भारतीय वायु सेना दिवस मनाया जाता है। आज गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर वायुसेना के 94वें स्थापना दिवस का भव्य समारोह हुआ। हिंडन एयरबेस पर आज ये गौरवशाली राष्ट्रीय उत्सव बेहद धूमधाम से मनाया गया।

0: मौके पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने खुली जीप में सवार होकर भव्य सेरेमोनियल परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ और नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन भी मौजूद रहे। इसके साथ ही वायुसेना के कई पूर्व और वर्तमान प्रमुख और वरिष्ठ सैन्य कमांडर्स ने भी इस गौरवशाली समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम का आगाज ध्वज फ्लाईपास्ट से हुआ, जिसमें MI-17 1V हेलीकॉप्टर्स ने आसमान में तिरंगा और वायुसेना के ध्वज के साथ फ्लाईपास्ट किया। कार्यक्रम की शुरुआत में एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने देश की सेवा में अदम्य साहस दिखाने और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए वायु योद्धाओं को वीरता पुरस्कार और विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किए। इस मौके पर उन्होंने वायुसेना के स्वर्णिम इतिहास और देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले महावीरों को याद किया।
1: मैं आज इस दिन को स्मरण और आत्मचिंतन के करने के अवसर के रूप में देखता हूं। आज हमें याद करना होगा वो कसम जो हमने एयरफोर्स की वर्दी पहनते समय खाई थी। याद करें इस गौरवशाली सेना का सफर, हमने कहां से शुरुआत की और आज हम कहां खड़े हैं। याद कीजिए अपने पूर्वजों को जिनके कारण वायुसेना आज इतनी सुदृढ़ है, और याद कीजिए उन सब वीरों और वीरांगनाओं को जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। ये स्मृतियां हमें राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को सही तरह से निर्वहन करने की प्रेरणा देंगी।
0: इसके साथ ही आगाज हुआ वायुसेना दिवस की शानदार सेरेमोनियल परेड का, जिसका शुभारंभ इस बार नारी शक्ति के शंखनाद से हुआ। परेड का मुख्य आकर्षण था एयर वॉरियर ड्रिल टीम की टीम शक्ति का शानदार राइफल ड्रिल प्रदर्शन। इसका नेतृत्व पहली बार महिला वायुसेना कर्मियों ने किया। जवानों ने बिना किसी कमांड के 303 राइफल्स के साथ बेहद कठिन और सटीक मूव्स दिखाए। इसी तरह वायुसेना दिवस के इतिहास में पहली बार ड्रमर्स ड्रिल टीम की प्रस्तुति को भी शामिल किया गया था, जिन्होंने अपनी थाप से पूरे एयरबेस को देशभक्ति के जोश से भर दिया।

0: इसके बाद हिंडन के आसमान पर आधुनिकता और इतिहास का संगम नजर आया। टाइगर मॉथ एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरकर वायुसेना के गौरवशाली अतीत की याद दिलाई। आपको बता दें, इस बार वायुसेना दिवस की परेड अचूक, अभेद्य और सटीक थीम पर आधारित थी। लगातार दूसरे साल हिंडन में हुए इस आयोजन में ट्रेडिशन, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी और फ्यूचर की प्लानिंग का बेजोड़ संगम देखने को मिला। हिंडन की जमीन पर स्टैटिक डिस्प्ले में मौजूद आकाश, ब्रह्मोस, तेजस और रफाल ने आज की वायुसेना के पराक्रम और सामर्थ्य की नजीर पेश की। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना ने अपने 94वें स्थापना दिवस को केवल गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे राजस्थान के जोधपुर में चल रहे मल्टी कंट्री हवाई युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2026 की दहलीज तक पहुंचा दिया। इन दिनों जोधपुर के आसमान पर तरंग शक्ति 2026 युद्धाभ्यास में भारत की हवाई ताकत के साथ साथ दुनिया के चुनिंदा मित्र देशों का तालमेल खूब नजर आ रहा है। यहाँ वायुसेना दिवस के मौके पर इंडियन एयरफोर्स की प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबेटिक टीम स्कैट ने आसमान में केसरिया, सफेद और हरे रंग के धुएं के साथ तिरंगा फॉर्मेशन बनाया। इसके अलावा उन्होंने हवा में डायमंड, तेजस और वाई जैसे सिग्नेचर फॉर्मेशंस बनाकर अपनी अचूक और अद्भुत सटीकता का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही स्वदेशी एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स से सजी सारंग टीम के 5 हेलीकॉप्टर्स ने हवा में एक साथ क्रॉसओवर और बेहद करीबी साहसिक पैंतरे दिखाकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। इस तरह जहां हिंडन में पारंपरिक परेड और स्वदेशी सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन हुआ, वहीं जोधपुर में भारतीय वायुसेना ने तरंग शक्ति युद्धाभ्यास के दौरान आई इस वर्षगांठ को इस एयर शो के जरिए और खास बना दिया। 94वें वायुसेना दिवस के मौके पर इंडियन एयरफोर्स ने इस समारोह, परेड और एयर शो के जरिए अपनी ताकत, अनुशासन, आत्मनिर्भरता और स्वर्णिम इतिहास के रंगों से हिंडन की जमीन और जोधपुर के आसमान को सजा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गाजियाबाद में आज वायुसेना दिवस का एयर शो नहीं हुआ और जोधपुर में तरंग शक्ति युद्धाभ्यास के बीच ही इस दिन को खास बनाया गया। लेकिन वायुसेना दिवस का समारोह अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अब बारी है वायुसेना दिवस के वाराणसी चैप्टर की। गाजियाबाद में परेड और ग्राउंड डिस्प्ले के बाद अब एयरफोर्स जनता के लिए बड़ा और मुख्य एयर शो वाराणसी में करने वाली है। इतिहास में यह पहली बार होगा जब वायुसेना दिवस का मेगा एयर शो वाराणसी में गंगा नदी के ऊपर किया जाएगा। देखिए, 24 से 26 अक्टूबर के बीच वाराणसी में एयर शो और फ्लाईपास का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 25 अक्टूबर को मुख्य एयर शो का आयोजन होगा। बताया जा रहा है कि एयर शो के दौरान वाराणसी में 80 घाट से लेकर नमो घाट तक गंगा नदी के ऊपर एयरफोर्स के विमान करतब दिखाते हुए नजर आएंगे। मेगा एयर शो में 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर शामिल होंगे। राफेल, तेजस और सूर्यकिरण एरोबेटिक्स टीम आसमान में जांबाजी का अद्भुत प्रदर्शन करेंगी। काशी के आध्यात्मिक पहचान को दर्शाने के लिए आसमान में विशेष त्रिशूल फॉर्मेशन की भी फॉर्मेशन बनाया जाएगा। सुखोई, राफेल और तेजस जैसे आधुनिक फाइटर जेट्स मिलकर इस डिस्प्ले को आकार देंगे। बताया जा रहा है कि ये एयर शो जो है लगभग 90 मिनट का होगा और 24 से 26 अक्टूबर के बीच रोजाना 12 बजे के करीब इसे आयोजित किया जाएगा। नमो घाट से लेकर 80 घाट के बीच गंगा किनारे लाखों लोग इस नजारे को लाइव देख सकेंगे। शानदार भविष्य और उजले वर्तमान के झलक के बाद अब चलते हैं स्वर्णिम इतिहास की ओर। भले ही ऑपरेशन सिंदूर हमारी वायुसेना के पराक्रम का सबसे ताजा उदाहरण है, लेकिन यह भी सच है कि आजाद भारत के पहले युद्ध से लेकर अब तक लड़े गए सभी युद्धों में इंडियन एयरफोर्स ने अहम भूमिका निभाई है। खासतौर पर 1971 और फिर 1999 के करगिल वॉर में हमारी वायुसेना ने आर्मी के साथ मिलकर पाकिस्तान को युद्ध में घुटनों पर ला दिया था। आइए आपको दिखाते हैं स्वर्णम इतिहास की वही यादें जिन्हें देखकर आप गर्व से भर उठेंगे।

0: प्राणों के रक्षक हैं, राष्ट्र के अरमानों के संरक्षक हैं। चाहे वो आसमान की अनंत ऊंचाइयां हों या फिर चुनौतियों की असीम गहराइयां, भारत के वायु वीरों के शौर्य के सामने दुनिया का कोई दुश्मन टिक नहीं सकता। जब जब शत्रु के कपट ने मातृभूमि को मैला करने का दुस्साहस किया, भारतीय वायुसेना ने तब तब अपने शौर्य और साहस से दुश्मन के इरादों को राख में बदल दिया। आजाद भारत के पहले युद्ध से लेकर कारगिल की लड़ाई और ऑपरेशन सिंदूर तक भारत के वायु वीरों ने हर मोर्चे पर अहम भूमिका निभाई है।
1: आजादी के तुरंत बाद पाकिस्तान ने अपने कबाइलियों को और रजाकारों को पाकिस्तान आर्मी के प्रोटेक्शन में कश्मीर में घुसाने की कोशिश की। ऐसे में इंडियन एयरफोर्स को तुरंत एक्टिव होना पड़ा। हमारी एयरफोर्स के जो डकोटा विमान थे, उन्होंने बखूबी दिल्ली से और जम्मू से इंडियन आर्मी के ट्रूप्स को एयरलिफ्ट करके श्रीनगर तक पहुंचाया। इसी तरह से इंडियन एयरफोर्स के जो फाइटर विमान थे उस वक्त, वापिती, लाइसेंडर, इन्होंने लगातार जो कबेली थे या जो रजाकार थे उनके पोस्ट पर हमला किया और उनको मजबूर किया कि वह भारत की भूमि छोड़कर पीर पंजाल के उस तरफ पाकिस्तान लौट जाएं।
0: भारतीय वायुसेना के पराक्रम की पहली परख तब हुई जब आजाद हिंदुस्तान ने अपना पहला युद्ध लड़ा 78 साल पहले 1947 के अक्टूबर महीने में, जब पाकिस्तान के कबायली लड़ाकों ने जम्मू और कश्मीर राज्य की सीमा को पार करने का दुस्साहस किया था। तब भारतीय वायुसेना की नंबर 12 स्क्वाड्रन ने पालम से पहली सिख रेजिमेंट की बटालियन को एयरलिफ्ट करके श्रीनगर की कठोर और धूल मिट्टी भरी हवाई पट्टी पर उतारने का चुनौती भरा काम किया था। इसके एक सप्ताह के भीतर ही वायुसेना के नंबर 7 स्क्वाड्रन के टेम्पेस्ट वायुयान शिल्टांग की लड़ाई में निर्णायक भूमिका में आ गए और वहां घुसपैठियों को आगे बढ़ने से रोक दिया गया।
1: वायुसेना का गठन आज ही के दिन यानी 8 अक्टूबर को 1932 के दिन हुआ था। तब से लेके अब तक वायुसेना काफी सारे युद्धों में भाग ले चुकी है, जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध। उसके बाद जैसे ही देश आजाद हुआ तो 1947-48 का जम्मू एंड कश्मीर ऑपरेशन, जिसमें हमारी वायुसेना ने पाकिस्तान के विरुद्ध एक्टिव रोल अदा किया। 1962 का युद्ध चीन के साथ, 1962 के युद्ध के दौरान पॉलिटिकल रीजन से यह डिसाइड किया गया कि वायुसेना की फाइटर और बॉम्बर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन वायुसेना की ट्रांसपोर्ट और हेलीकॉप्टर विंग्स ने बखूबी इंडियन आर्मी का साथ दिया। 1965 के जंग में इंडियन एयरफोर्स ने आगे बढ़ते हुए पश्चिम में पूरे बॉर्डर पर इंडियन आर्मी को क्लोज एयर सपोर्ट दिया।
0: के बाद पाकिस्तानी सेना ने 1965 में जम्मू कश्मीर पर कब्जे के लिए दूसरी बार हमला करने की हिमाकत की थी, लेकिन इस बार फिर उसे मुंह की खानी पड़ी। 1965 में भारतीय वायुसेना ने न केवल उसके लड़ाकू विमानों को मार गिराया बल्कि कई सैन्य बेसों को ध्वस्त कर दिया। हालांकि इस युद्ध में भारतीय वायुसेना को भी काफी नुकसान हुआ, लेकिन हमारे वीर जवानों ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाकर रख दी। इसके बाद तीसरा मौका 1971 में आया जब पाकिस्तान के दुस्साहस ने एक बार फिर अपना सर उठाया। 3 दिसंबर 1971 को युद्ध की शुरुआत हुई और पाकिस्तानी वायुसेना ने पूरी प्लानिंग के साथ इंडियन एयरफोर्स के श्रीनगर, अमृतसर और पठानकोट एयरबेसों पर हमला बोल दिया। उस वक्त पाकिस्तान को यह एहसास नहीं था, लेकिन आने वाले 2 हफ्ते उसकी कुंडली पर बेहद भारी पड़ने वाले थे, क्योंकि उसके बाद भारतीय वायुसेना अपने पूरे दमखम के साथ पाकिस्तानी बेसों को नेस्त नाबूद करने में जुट गई। उन्नीस सौ 71 के युद्ध में भारतीय वायुसेना के विमानों ने बांग्लादेश के ऊपर 12,000 से ज्यादा उड़ानें भरी थी। भारतीय वायुसेना ने इस लड़ाई में पाकिस्तान के 94 विमानों को मार गिराया था। चाहे लोंगेवाला की लड़ाई हो या पूर्वी पाकिस्तान में गवर्नर हाउस पर बमबारी, बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराने में भारतीय वायुसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो वहीं भारतीय वायुसेना की मदद से भारत की थल सेना ने 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। दुनिया के सबसे दुर्गम युद्ध क्षेत्र में चलाए गए इस ऑपरेशन के जरिए भारत के जांबाजों ने पाकिस्तान के जबड़े से सियाचिन को छीन लिया था। इस ऑपरेशन के बाद भारत के कब्जे में पूरा का पूरा सियाचिन ग्लेशियर आ गया था। तब से लेकर आज तक सियाचिन की चोटियों पर भारत का परचम लहरा रहा है।

0: 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर कोड नेम के साथ पाकिस्तानी सेना के खिलाफ ऐसा विध्वंसक अभियान चलाया था जिसके जख्म आज तक पाकिस्तान भुला नहीं पाया है।
1: ...1999 में जब कारगिल का युद्ध हुआ तो उस वक्त हमारी एयरफोर्स को यह रोल दिया गया कि हम तुरंत आगे बढ़कर पाकिस्तान के जो ट्रुप्स हैं, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जो डगआउट पोजीशन है, गन पोजीशन है, उन पर बमबारी करें। इसके लिए MiG-21 ने बेहतरीन हाई ऑल्टीट्यूड बॉम्बिंग की। सबसे बड़ी बात है कि हमारे दूसरे विमान जैसे कि MiG-27 और Mirage-2000 ने बहुत ही एक्यूरेसी के साथ लेजर गाइडेड बॉम्ब गिराए जो महज प्लस माइनस 10 मीटर की एक्यूरेसी से पाकिस्तान आर्मी के जो कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट थे, अंडरग्राउंड बंकर्स थे, उसके अंदर घुसकर फटे। कुल मिलाकर नतीजा ऐसा हुआ कि इंडियन एयरफोर्स के हमलों की वजह से कई जगह पर NLI यानी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के यहां से लगातार पाकिस्तान में फोन हो रहे थे उनके GHQ में कि इंडियन एयरफोर्स के जहाज लगातार उन पर हमला कर रहे हैं।
0: भारत की आर्मी और एयरफोर्स के पराक्रम ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया और आखिरकार 26 जुलाई को भारत की जीत हुई। इसके बाद भी जब जब मौका आया भारतीय वायुसेना ने देश के दुश्मनों पर अपने पराक्रम से ऐसी करारी चोट की कि आतंक के सपोले अपने बिलों समेत जमीन के कई गज नीचे दफन हो गए और भारत के शत्रु बिलबिला के रह गए। बालाकोट के जरिए भारतीय वायुसेना ने पुलवामा के 40 सपूतों की शहादत का बदला लिया था। 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 विमान रात के अंधेरे में नियंत्रण रेखा को पार कर पाकिस्तान के पूर्वोत्तर इलाके में खैबर पख्तूनख्वा पहुंचे और बालाकोट में जैश ए मोहम्मद की ट्रेनिंग कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। बालाकोट स्ट्राइक में बड़ी संख्या में जैश ए मोहम्मद के आतंकी, उनको ट्रेनिंग देने वाले संगठन के बड़े कमांडर और फिदायीन हमलों के लिए तैयार हो रहे आतंकी मारे गए थे। और भारतीय वायुसेना के साहस की महागाथा का सबसे ताजा अध्याय सिंदूरी शौर्य की स्याही से लिखा गया। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारतीय वायुसेना के पराक्रम की वो तस्वीर देखी जिसकी कल्पना भारत के शत्रुओं ने अपने दुस्साहस भरे सपनों में भी नहीं की थी।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन एयरफोर्स को दो काम दिए गए थे। एक, पाकिस्तान में घुसकर वहां जो आतंकवादियों के टेरर कैंप्स हैं उस पर हमला करना। दूसरा, पाकिस्तान एयरफोर्स के 11 चिन्हित यानी आइडेंटिफाइड रनवेज, उनके जो एयर बेसिस में हैंगर्स थे और सबसे बड़ी बात उनके जो रेडार्स थे उस पर हमला करना। इन दोनों कार्रवाइयों को इंडियन एयरफोर्स ने बखूबी अंजाम दिया। सिंदूर के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने लॉन्ग रेंज S-400 जमीन से हवा पे मार करने वाली मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए 300 किलोमीटर की दूरी से पाकिस्तान एयरफोर्स के एक अवाक यानी एयरबॉर्न कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भी नेस्तनाबूद किया।
0: समझिए कि चाहे देश के लिए शत्रु से लोहा लेना हो या फिर आपदा के समय राहत का फरिश्ता बनकर मदद पहुंचानी हो, हर मौके पर भारत के वायुवीर देश के लिए अपने फर्ज को शिद्दत से निभाते आए हैं। राष्ट्र रक्षा और राष्ट्र सेवा के मोर्चे पर हमारी वायु सेना के योगदान से जुड़े उन्हीं स्वर्णिम पलों को देश आज फिर याद कर रहा है। वायु सेना दिवस के मौके पर हिंदुस्तान के वायु योद्धाओं को गुड न्यूज़ टुडे का सलाम।

0: परख कर परोसना हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए खबर के किंतु परंतु को हम सच्चाई की कसौटी पर कसते हैं, तब लेकर आते हैं वो सच्ची खबर जो आपको अच्छी लगे। तो अच्छी और सच्ची खबरों का वक्त रात 8 बजे गुड न्यूज टुडे पर।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से
2: 11 अक्टूबर से नवरात्र का आरंभ हो रहा है, इसलिए दुर्गा पूजा को लेकर पूरे देश में जोर शोर से तैयारियां तमाम चल रही हैं। मूर्ति बनाने वाले कलाकार मां की भव्य प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। अपने सधे हुए हाथों से कारीगर दुर्गा प्रतिमाओं को उत्सव के लिए तैयार कर रहे हैं।

0: देश भर में शक्ति उत्सव की तैयारियां जोरों पर है। मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा गढ़ी जा रही है। मां की कोई मूर्ति तैयार होने के बेहद करीब है तो किसी को अभी आकार दिया जा रहा है। कुछ मूर्तियों में रंग भरे जा रहे हैं। मूर्तिकार छोटी बड़ी हजारों मूर्तियों को गढ़ने और तराशने में व्यस्त हैं, ताकि वक्त पर मूर्तियों की डिलीवरी की जा सके। देश के अलग अलग हिस्सों में मूर्तिकार दिन रात लगकर प्रतिमाओं को तैयार करने में जुटे हुए हैं। कुछ परिवार और मूर्तिकार ऐसे भी हैं जो सालों से माँ दुर्गा की प्रतिमाएं तैयार कर रहे हैं। इन प्रतिमाओं का पारंपरिक स्वरूप ही इनकी खास पहचान है। शुरुआती दौर में बड़ी संख्या में कारीगर प्रतिमाओं का ढांचा बनाने और मिट्टी लगाने का काम करते हैं। इसके बाद प्रतिमाओं की फिनिशिंग, रंगाई और श्रृंगार का काम शुरू होता है। रायपुर की इस कार्यशाला में माँ की हर प्रतिमा में कला, पारंपरिक शैली की एक अनूठी और गहरी छाप दिखती है। ऑर्डर के हिसाब से ही माँ का स्वरूप तैयार किया जा रहा है, जिसमें मूर्तिकार की कल्पना और कार्यकुशलता की छाप भी देखने को मिल रही है। दुर्गा पूजा के आरंभ होने में अब बहुत कम समय रह गया है, इसीलिए कारीगर तेजी से काम पूरा करने में जुटे हुए हैं। मूर्ति निर्माण के पीछे की उनकी महीनों की मेहनत बस इस बात पर टिकी है कि भक्तों को उनकी बनाई मूर्ति पसंद आए। कलाकारों और मूर्तिकारों की इस अथक मेहनत ने उत्सव के माहौल को और भी खास बना दिया है। यही कारण है कि देश के कोने कोने में दुर्गा पूजा का उत्सव चरम पर पहुंच चुका है। आने वाले दिनों में इसमें और इजाफा होने की उम्मीद है। महेंद्रगढ़ से धीरेंद्र विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज चुड़े।
1: गुड न्यूज चुड़े इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
3: और दुर्भाग्य कहता है
4: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
6: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
7: गुड न्यूज टुडे,
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को।
8: ओडिशा के पारादीप में इंडियन नेशनल कोस्ट गार्ड ने की 12वीं नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज। 30 देशों के 32 ऑब्जर्वर ने अभ्यास में लिया हिस्सा। अक्टूबर को दलित प्रेरणा स्थल पर कांशी राम के परिनिर्माण दिवस पर नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन, एडवाइजरी जारी। गया जी में मनाई गई पितृ दीपावली, पिंडदान करने आए लोगों ने अपने पितरों के नाम से दीप जलाकर देवघाट को किया रोशन। कैनेडियाई लेखिका एन कार्सन को मिला 2026 का साहित्य नोबेल पुरस्कार, चर्चित किताबों में द ब्यूटी ऑफ द हस्बैंड शामिल। चारधाम यात्रा के दूसरे चरण में बन रहे हर दिन नए रिकॉर्ड्स, बद्रीनाथ में अब तक 19,13,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं का बना नया रिकॉर्ड।

निर्माण तेजी से चल रहा है। आज आपको लिए चलेंगे कोलकाता, जहां पर मशहूर पार्क स्ट्रीट इलाके में 300 साल बाद पहली बार दुर्गा पूजा होने जा रही है और इसके लिए भव्य पंडाल बनाए जा रहे हैं। दुर्गा पूजा में इस बार सरकार ने क्या नए नियम बनाए हैं, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही आपको लिए चलेंगे मिनी बंगाल कहे जाने वाले चितरंजन पार्क में और वहां बन रहे भव्य पंडाल की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही गुजरात में गरबा की तैयारियां तमाम हैं, वो दिखाएंगे। मशहूर अंगारा रास के लिए टीमें अभी से रिहर्सल करने में जुटी हुई हैं। शोलों के दरमियान कैसे होता है ये डांस आपको दिखाएंगे और आखिर में दिल्ली में मंचित होने जा रहे डांस ड्रामा श्रीराम की टीम से भी मिलाने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं मां दुर्गा के स्वागत की तैयारियों से। दिल्ली से अमरावती तक और चंडीगढ़ से लेकर कोलकाता तक भव्य पंडाल आकार ले रहे हैं और देवी की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। लेकिन इसके बीच सबसे ज्यादा चर्चा कोलकाता के पार्क स्ट्रीट की है, जो मशहूर तो क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए है, लेकिन 370 साल बाद वहां अब महाशक्ति की आराधना होने जा रही है और उसके लिए भव्य पंडाल बनाया जा रहा है। इसी तरह दिल्ली के चितरंजन पार्क में पंडालों को सजाने का काम तेजी से चल रहा है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक पूरे देश में मां के आगमन का इंतजार है। रिपोर्ट देखिए।

0: सर्वेश्वरी जगदीश्वरी मातृ रूप महेश्वरी ममतामयी करुणामयी जगजीवनी संजीवनी तमहारिणी शुभकारिणी मनमोहिनी विश्वेश्वरी। उस पल की प्रतीक्षा है जब पंडाल में माँ विराजेंगी, इसलिए धूमधाम से भक्तिभाव से दिन रात जुटकर पंडाल सजाए जा रहे हैं। चाहे बंगाल हो या मिनी बंगाल, कोलकाता का पार्क स्ट्रीट हो या दिल्ली का चितरंजन पार्क, भावना तो एक ही है, हाँ पर भव्यता में बाजी मारने की होड़ है। सबसे पहले देखिए कोलकाता के पार्क स्ट्रीट इलाके को, जहाँ नया इतिहास रचा जा रहा है। जिस इलाके की पहचान रेस्टोरेंट, पब, कैफे, जगबगाती सड़क और पाश्चात्य संगीत के तौर पर रही है, और जो अपनी नाइट लाइफ के लिए मशहूर है, वहाँ 370 साल बाद महाशक्ति की आराधना होने जा रही है।
1: सर के सनातनी संस्था के द्वारा यहाँ पर हम लोग एलन पार्क, जो आप पार्क से देख रहे हैं, यहाँ पर 300 वर्षों तक कभी आसन कोई, यहाँ बहुत बंगाली परिवार के लोग रहे, अच्छे धनाढ्य लोग रहे, लेकिन बहुत प्रयास किया गया, लेकिन आज तक कभी यहाँ पर कोई पूजा नहीं हो पाया दुर्गा पूजा। ये हम लोगों ने पहली बार सनातनी सरकार बनने के बाद में हम लोगों ने प्रयास किया। हमारे संस्था के महामंत्री नवीन मिश्रा जी और संस्था के अध्यक्ष हमारे स्वयंप्रदेव पांडा जी ने, दोनों ने मिलकर प्रयास करके और सरकार के साथ सहयोग करके और इस जगह को, पार्क को, हम लोग आज सनातनी पार्क के नाम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि नामकरण किया जाए और इस सनातनियों के लिए और पूरे पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए अपना सवार आप सभी का पूजा है, अकेले हमारी पूजा नहीं, ये सनातनियों की पूजा है।
0: शक्ति पूजा के केंद्र कोलकाता में ये बदलाव यकीनन ऐतिहासिक है, क्योंकि अभी तक पार्क स्ट्रीट के एलन पार्क में क्रिसमस और न्यू ईयर ही सेलिब्रेट किया जाता था, पर इस बार भव्य रूप दुर्गा पूजा महोत्सव की तैयारी है आरंभ है, इसलिए पंडाल भी अद्भुत होना चाहिए। इसलिए कोलकाता सनातनी संघ ने शिव तांडव की थीम चुनी है।
1: पूजा का ये शंकर भगवान का विराट स्वरूप है, शिव तांडव का स्वरूप इसमें देखिए। एक तरफ आप भगवान की जटा में देखिए, जिस समय माँ जब आग में कूद गई थी उसके बाद का दृश्य है, और रुद्र रूप इनका यहाँ पर है और बगल में तांडव करते हुए है। इधर में आप यहाँ वरुण के अभिषेक करते हुए रहेगा, सामने आपका आदि शिव का है। यहाँ पांच तरह की, एक तरफ नंदी पे शिव जी बैठे हैं, पांच तरफ भगवान शिव का ही पूरा तांडव लीला इसमें है।
0: यूं तो 2007 से एलन पार्क में पार्क स्ट्रीट कार्निवाल होता आ रहा है, जिसे 2000

0: 2011 से क्रिसमस फेस्टिवल का नाम दिया गया, लेकिन दशकों से दिसंबर में जगमगाने वाला ये पार्क अब अक्टूबर में यानी नवरात्रि के दौरान भी आकर्षण का केंद्र रहेगा। पार्क स्ट्रीट में शक्ति पूजा के लिए बनारस से करीब 100 पुरोहितों की टीम आ रही है। चतुर्थी से दशमी तक रोज बनारस के दशाश्वमेध घाट की तर्ज पर यहां महाआरती होगी। अष्टमी पर 5,000 महिलाओं के साथ जागरण और अष्टमी को कन्या पूजन होगा। पंडाल में पश्चिम बंगाल की लोक संस्कृति और लोक संगीत पर फोकस रहेगा, साथ ही राज्य की कला और परंपराओं की झलक भी रहेगी। एलन पार्क इलाके में दुर्गा पूजा होगी तो जाहिर है भारी जन सैलाब उमड़ेगा। ये इलाका पहले से ही भीड़भाड़ वाला है, इसलिए क्राउड मैनेजमेंट पर आयोजक और प्रशासन दोनों की नजर है। दावा है कि एलन पार्क की दुर्गा पूजा कोलकाता की सबसे बड़ी पूजा होगी और इसी दावे के अनुसार पंडाल भी बनाया जा रहा है। मुख्य द्वार पर बिखरी हुई जटाओं के साथ शिव की विशाल प्रतिमा, पंडाल के अंदर विशाल मंदिर की प्रतिकृति जिसमें माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की मूर्तियाँ। वैसे तो कोलकाता में एक से बढ़कर एक पंडाल बन रहे हैं, लेकिन एलन पार्क के पंडाल को अद्वितीय बनाने की कोशिश है।
1: यहाँ पे लाखों लाखों कम से कम डेली हमको लगता है कि 8-10 लाख लोग आएंगे ही आएंगे।
0: बताया जा रहा है कि इस ऐतिहासिक दुर्गोत्सव का उद्घाटन 11 अक्टूबर को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी करेंगे। भव्य महा आरती, पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम और विशाल महाप्रसाद वितरण की वजह से माना जा रहा है कि एलन पार्क की पूजा भव्य होगी। इस साल पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के लिए कई बदलाव भी किए गए हैं, जैसे महाअष्टमी के पावन अवसर पर राज्य भर में शराब की सभी दुकानें और बार पूरी तरह बंद रहेंगे। पूजा पंडालों और विसर्जन यात्रा के दौरान डीजे बजाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। राज्य भर की सभी पंजीकृत पूजा समितियों के लिए बिजली बिल में 100% छूट देने की घोषणा भी राज्य सरकार द्वारा की गई है। और हाँ, महालया से पहले पंडाल का उद्घाटन नहीं किया जाएगा। ये तो हुई बंगाल की बात, अब चलिए आपको मिनी बंगाल यानी दिल्ली के चितरंजन पार्क लेकर चलते हैं, जहां भव्य पंडालों को आखिरी रूप दिया जा रहा है। चितरंजन पार्क के बड़े पंडालों में एक मेला ग्राउंड का ये पंडाल भी है, जहां पर हर साल के ही जैसा इस साल भी भव्य और खूबसूरत पंडाल बनाया जा रहा है।
2: दिल्ली के चितरंजन पार्क के मेला ग्राउंड में मौजूद है, जहां पर बड़ा पंडाल बनाया जाता है और भव्य उत्सव नवरात्रों के दौरान मनाया जाता है। भव्य माता की प्रतिमा स्थापित की जाती है और इसको लेकर के यहां पर तैयारियां शुरू है। आप देख सकते हैं दुर्गा पूजा समिति सीआर पार्क मेला ग्राउंड है और इसी के तौर पे कई वर्षों से यहाँ मनाया जाता है। 50 साल इस पूजा का हो चुका है और इस बार 51वां मनाया जाएगा। और देख सकते हैं किस तरीके से भव्य जो पंडाल है वो यहाँ पर बनाने का कार्य आपको शुरू हो गया है।
0: एक तरफ पंडाल सजाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ माँ की प्रतिमा भी तैयार हो रही है, तो कहीं देवी दुर्गा की प्रतिमाओं का आगमन भी होने लगा है। झांसी में नवदुर्गा उत्सव समिति की ओर से देवी की ये सुंदर प्रतिमा झोकन बाग शहीद पार्क में स्थापित होगी। बताया गया कि समिति पिछले 42 वर्षों से लगातार माँ दुर्गा की स्थापना और नवरात्रि उत्सव का आयोजन करती आ रही है। समय बदला, पीढ़ियां बदली, लेकिन देवी दुर्गा की आराधना और झोकन बाग शहीद पार्क की ये परंपरा आज भी उसी उत्साह के साथ जारी है।
3: नवदुर्गा उत्सव समिति झोकन बाग शहीद पार्क सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। इधर पे शहीद पार्क पे हम लोग माता रानी को विराजमान करते हैं पिछले 42 साल से और हमारी मूर्ति जो है वो सागर से आई है, विश्वकर्मा आर्ट से।
0: शक्ति उपासना के इस पर्व को लेकर रौनक हर तरफ है। ये तस्वीर महाराष्ट्र के अमरावती की है, जहां विदर्भ की कुलस्वामिनी के रूप में प्रसिद्ध अम्बा माता का मंदिर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा है। मंदिर की साफ सफाई और रंग रोगन के साथ माता के सोने चांदी के आभूषणों को भी चमकाया गया है।

0: विदर्भ की कुलस्वामिनी अमरावती की माँ अंबे के इस मंदिर में, जहाँ पर आप देख सकते हो कि मंदिर को जो है पूरी तरीके से लाइटिंग से सजाया है, यहाँ पर पूरी तरीके से रोशनाई शुरू कर दी है और अब नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि उत्सव को बस कुछ ही दिन बचे हैं, उससे पहले जो है हर देवी का जो मंदिर है वो अब सजना शुरू हुआ है। और
1: पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, देश के हर हिस्से में शक्ति पूजा की तैयारी है, दुर्गा पूजा की धूम है और श्रद्धालु माँ की आगमन की प्रतीक्षा में हैं। दिल्ली से आशुतोष कुमार और अमरावती से धनंजय साबली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: नवरात्रि आने में अब कुछ ही वक्त शेष रह गया और गुजरात में गरबा की धूम शुरू हो चुकी है। कहीं जलती मशालों के बीच अंगारा रास की तैयारियां हैं तो कहीं पर रंग बिरंगे परिधानों में गरबा प्रेमी कदमताल का अभ्यास कर रहे हैं। जामनगर में 70 साल से ज्यादा पुरानी अंगारा रास की परंपरा आज भी कायम है, जहां आग के बीच कलाकार अपनी आस्था और साहस दिखाते हैं। वहीं वडोदरा और राजस्थान के पाली में गरबा की नई पीढ़ी को अपने रंग में रंग रहे हैं। रिपोर्ट देखिए।

अंगारों के बीच थिरकते कदम, हाथों में सुलगती मशालें, चेहरे पर आस्था और दिल में माँ अम्बे का नाम। ये नजारा है गुजरात के जामनगर का, जहाँ नवरात्रि से पहले ही भक्ति का रंग गहरा होने लगा है। जामनगर के रणजीत नगर में पटेल युवक गरबा मंडल पिछले 70 साल से ज्यादा वक्त से अंगारा रास की इस अनोखी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। आधुनिक गरबा के दौर में भी यहाँ सदियों पुरानी साहसिक कला का जुनून बरकरार है। महीनों पहले से युवा कलाकार इसकी तैयारी में जुट जाते हैं, कदमों की लय साधते हैं और आग के बीच संतुलन का कठिन अभ्यास करते हैं।

0: हमारा यहाँ का फेमस रास है वो है मसाल रास है, और हम मसाल रास खेलते खेलते जो हमारा स्वस्तिक है वो बनाते हैं, और माता जी का शस्त्र बोलते त्रिशूल वो भी बनाते हैं, और गरबा के अंत में हम अंगारों पे खेलते हैं, और वो भी खुले पैर खेलते हैं, कोई लोशन या कुछ अप्लाई भी नहीं करते हैं, और ये हमारे ऊपर माता जी का आशीर्वाद है जो हमारे पैर में कुछ होता नहीं है, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और ये मसाला हम पिछले 25 सालों से खेल रहे हैं, और ये गरबा हमारा गरबा मंडल है जो ये पिछले 70 सालों से यहाँ पे कार्यरत है।
1: हाथों में जलती मशाले, चारों तरफ आग की लपटे, लेकिन चेहरों पर जरा भी डर नहीं। भक्ति में डूबे कलाकार जब रास की लय पर घूमते हैं तो लगता है जैसे आस्था ने आग पर भी जीत हासिल कर ली हो। जामनगर में अंगारा रास का एक और खास रूप भी देखने को मिलता है। श्री रंदल अंबिका कुमारिका गरबा मंडल स्वस्तिक के आकार में सुलगती लकीरों के बीच स्वस्तिक अंगारा रास की प्रस्तुति करता है। आग की तपिश के बीच गुजरते कलाकार अपनी श्रद्धा और साहस का अद्भुत मेल दिखाते हैं। और अब बात उस रंग की जिसके बिना गुजरात की नवरात्रि अधूरी मानी जाती है, गरबा। वडोदरा में विकसित भारत संकल्प गरबा की थीम पर भव्य प्री गरबा आयोजन हुआ। पारंपरिक परिधानों में सजे लोग संगीत की धुन पर घूमते घेरे और मां शक्ति की आराधना के साथ विकसित भारत 2047 का संदेश पूरे माहौल को खास बना गया।
2: वडोदरा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा गरबा का आयोजन किया जा रहा है, और यहाँ पे खूब ही अच्छे और सच्चे मन से हम लोग माता जी की श्रद्धा से गरबे के लिए आए हैं, और विकसित भारत थीम पे हमें बहुत ही गर्व है।
3: विकसित भारत पे आज यहाँ पे देख सकते हो काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पे यूनाइटेड वे ऑफ वडोदरा जो वर्ल्ड प्रसिद्ध है गरबा, जो आज यहाँ पर काफी जनसंख्या में लोग आए हुए हैं। सो आप देख सकते हो इतना अच्छा मैनेजमेंट है, बहुत अच्छा। और अतुल दादा तो हमारे सबके फेवरेट है, जो इतना वर्षों से सिंगिंग कर रहे, तो आप सब देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत है।
4: हम लोग रात्रि बिफोर नवरात्रि अतुल पुरोहित के साथ विकसित भारत की थीम पे यहाँ पे यूनाइटेड वे के ग्राउंड पे आज खेलने आए थे। आज का हमारा ये जो एनर्जेटिक एक्सपीरियंस है, जैसे आप सुन सकते हो बैकग्राउंड में किस हिसाब से चल रहा है, पीछे सब स्टूडेंट्स और वो सब विकसित भारत पे डांस और गरबा परफॉर्म कर रहे हैं।
1: रंग बिरंगी चनिया चोली, पारंपरिक केडिया कुर्ता, तालियों की गूंज और एक साथ पढ़ते कदम, वडोदरा महानगर पालिका के इस आयोजन में स्वच्छता, नारी शक्ति, सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्र निर्माण का संदेश भी जुड़ा रहा। लोगों के लिए प्रवेश निःशुल्क रखा गया, जिससे उत्सव में हर उम्र के लोगों की भागीदारी दिखी। गुजरात से निकलकर गरबा देश भर की धड़कन बन चुका है। इसका असर राजस्थान के पाली में भी साफ दिखाई दे रहा है। बच्चों से लेकर महिलाओं और जेंजी युवतियों तक हर कोई गरबा सीखने को लेकर उत्साहित है। मोबाइल और डीजे पर बजते संगीत के साथ कोरियोग्राफर नए स्टेप सिखा रहे हैं। इस बार बॉलीवुड अंदाज के मूव्स भी युवा पीढ़ी को खासा आकर्षित कर रहे हैं।
5: सिकली तो दो ताली, तीन ताली, हीच, डोडिया, ये सारे स्टेप्स किए जाते हैं। बट आज के जमाने के हिसाब से, आज की जेन ज़ी के हिसाब से, अगर हम लोग उसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफाई करके, थोड़ा सा बॉलीवुड स्टेप्स को मॉडिफाई करके डालते तो उनको करने में भी मजा आता है, और उस तरीके से करते तो सब लोग एंजॉय भी करते हैं।
1: लेकिन गरबा सिर्फ नृत्य नहीं, ये माँ अम्बे से जुड़ने का एक जरिया भी है। बीच में जलता दीपक, चारों तरफ घूमते भक्त और हर ताल के साथ बढ़ती श्रद्धा, 9 दिनों के उपवास और साधना के बीच गरबा का हर कदम शक्ति को समर्पित होता है। बदलते दौर में इसके अंदाज जरूर बदले हैं, लेकिन भाव वही है, माँ के प्रति समर्पण का, शक्ति की आराधना, संस्कृति की पहचान और उत्सव की उमंग गुजरात में साफ दिखाई दे रही है। राजस्थान से भरत भूषण जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: दिल्ली में इस दिवाली एक बार फिर से मंच पर भगवान राम की गाथा जीवंत होने जा रही है। करीब 7 दशक पुरानी परंपरा के तहत श्रीराम भारतीय कला केंद्र का मशहूर डांस ड्रामा श्रीराम इस साल अपने पारंपरिक स्वरूप में लौट रहा है। खास बात इसमें यह है कि करीब 25 साल बाद इसकी प्रस्तुति में पुराने अंदाज, पारंपरिक वेशभूषा और मंच सज्जा को फिर से जगह दी गई है। चलिए इस लोकप्रिय डांस ड्रामा की टीम से आपको मिलवाते हैं।

0: श्री राम भारती कला केंद्र के ड्रेस रिहर्सल में हैं हम, और फिलहाल हम बैक द स्टेज हैं। सीता जी तैयार हो रही हैं और किस तरह से वो खुद को सवार रही हैं ये हम देख पा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सारे आर्टिस्ट अपना मेकअप अपने आप करते हैं, उन्हें उनका रोल बताया जाता है, उस रोल की क्या डिमांड है, कैसा उन्हें दिखना है स्टेज पर, उसके हिसाब से वो खुद अपना मेकअप चूज करती हैं और ऐसा चुनती हैं कि हर बार बिल्कुल परफेक्ट दिखाई पड़ती हैं। अनुसुआ जी मेरे साथ में हैं, पेशे से टीचर हैं लेकिन सिर्फ रामलीला के लिए ब्रेक लिया है और यहाँ पर फिलहाल वो तैयार होती हुई दिखाई पड़ रही हैं।
1: जब भी माता सीता का नाम लिया जाता है, सबसे पहली बात तो शक्ति का एक अनुभूति होती है अपने अंदर। और हम, जैसे कि सर ने अभी बताया कि हम लोग मेकअप के द्वारा इसका हम लोग दर्शाते हैं, जैसे कि हम लोग आईब्रोज जो है, जो हमें शोभा जी ने सिखाया है कि आईब्रो को हम लोग किस तरीके से बनाते हैं ताकि जो पॉजिटिव रोल है वो कितना दूर दर्शकों तक समझ में आए कि दैट इज अ पॉजिटिव रोल।
0: राजकुमार जी मेरे साथ हैं, राम के गेटअप में हैं, पिछले 40 साल से श्री राम भारती कला केंद्र के साथ जुड़े हुए हैं और पिछले 30 साल से लगातार राम का रोल वो प्ले कर रहे हैं रामलीला में।
2: इसमें कोई शक नहीं, वाकई राम समा गए हैं, बट ये कि राम बनने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है। बट हमारे डायरेक्टर हैं शोभा दीपक सिंह पद्मश्री, उन्होंने काफ़ी हमें तुलसीदास रामायण और अपना वाल्मीकि रामायण बहुत रटाया है, क्योंकि हमारा जो बेस है वाल्मीकि और तुलसीदास रामायण के ऊपर है। तो कुछ वर्कशॉप हुई हमारी थिएटर की और कुछ संवाद की हुई कि कैसे आपको अभिनय करना है, क्योंकि हम लोग बोल नहीं रहे, ये हमारा अभिनय प्रधान है। तो अभिनय के थ्रू हमें मुद्रा एक्सप्रेशन इस पर काफ़ी काम करना पड़ा, जिसके लिए हमें वर्कशॉप देने पड़े। हमारे गुरु जी, हमारे जितने सीनियर हैं, उन लोगों ने काफ़ी हमारा हेल्प किया।
0: रामलीला का सबसे शानदार करेक्टर आप किसे मानते हैं, किसे देखने के लिए आप घर से निकलकर स्टेज के पास तक जाते हैं, तो वो है रावण। बिना रावण रामलीला कुछ भी नहीं है, बिना रावण शायद राम का भी इतना चर्चा नहीं होती। और मेरे साथ साक्षात रावण मौजूद हैं, स्वपन मजूमदार सर इनका नाम है। सर, जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है आपने, बहुत ही कमाल की थी। कितने साल से आप कर रहे हैं?
3: मैं 2014 से कर रहा हूँ रावण। मैं बेसिकली 1994 से भारतीय कला केंद्र में हूँ। आई केम एज अ स्टूडेंट एंड देन मैंने कई साल लक्ष्मण का रोल किया और रावण का रोल मैंने 2014 से स्टार्ट किया।
0: ये 12वां साल है आपका रावण का रोल प्ले करते करते, अभी भी स्टेज पर जाने से पहले कुछ अंदर बटरफ्लाई होती है क्या?
3: सी, कलाकार जो होता है ना, वो स्टेज के अंदर जाने के बाद राजा होता है। स्टेज के जब वो बाहर होता है, वो एक नॉर्मल इंसान होता है। डर हर एक इंसान को होता है और दिन जो होता है ना, वो हमेशा एक दिन जैसा नहीं होता है। तो जैसे दिन चेंज होता है, ऐसे कलाकार भी अपने हिसाब से कुछ इम्प्लीमेंट करता है और कुछ छूट जाता है। तो डर तो होता ही और बहुत ज़रूरी भी है ये डर होना।
4: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़ रही वो न्यूज टुडे के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। पहाड़ों पर मौसम ने अचानक करवट लिया। उत्तराखंड से हिमाचल तक ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी ने खूबसूरत नजारा पेश किया है। बद्रीनाथ के पास 18,000 फीट की ऊंचाई पर देवताल बर्फ से पूरी तरीके से ढक चुका है, तो चंबा का साच पास भी सफेद चादर में नजर आ रहा है। लेकिन इन मनमोहक तस्वीरों के बीच मौसम विभाग ने बारिश, तेज हवाओं और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है।
5: चोटियों पर मौसम अपना रंग बदल रहा है, कहीं आसमान से गिरती बर्फ तो कहीं बारिश की फुहार, और इस बदलते मिजाज के साथ पहाड़ों पर सर्दी ने भी दस्तक दे दी है। उत्तराखंड से हिमाचल तक ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, चंबा और हिमाचल के कई पहाड़ी इलाकों में सफेदी छा गई है। ताजा हिमपात के बाद तापमान तेजी से नीचे गया है और ठिठुरन बढ़ गई है। बद्रीनाथ धाम से करीब 52 किलोमीटर दूर देवताल से भारत चीन सीमा के करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद देवताल 4 से 5 फीट बर्फ में ढक गया है। चोटियां हो, रास्ते हो या आसपास का इलाका, नजर जहाँ तक जाती है सिर्फ सफेद रंग दिखाई देता है। बद्रीनाथ ही नहीं बल्कि हिमाचल के चंबा में 14,500 फीट की ऊंचाई वाला साचपास भी बर्फ से ढक गया है। मंगलवार शाम शुरू हुआ हिमपात देर रात तक जारी रहा, जिसके बाद पूरा इलाका सफेद नजर आया। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में 6 से 8 अक्टूबर जबकि हिमाचल और उत्तराखंड में 5 से 10 अक्टूबर तक बारिश, गरम चमक और तेज हवाओं का अलर्ट दिया है। ऊंची चोटियों पर हिमपात की भी संभावना है। ऐसे में लोग पहाड़ों की खूबसूरती देखने निकल रहे हैं, तो सिर्फ नज़ारे ही नहीं तैयारियां भी साथ रखें। रवाना होने से पहले मौसम का हाल जानें, प्रशासन की गाइडलाइन देखें और रास्तों की स्थिति जरूर जांच लें, क्योंकि पहाड़ों पर बदलता मौसम खूबसूरत जरूर है लेकिन उतनी ही वहाँ सतर्कता भी जरूरी है। चमोली से कमल एलसलोडे, चंबा से विशाल आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने के साथ पहाड़ों पर सर्दी भी बढ़ गई है। चमोली की ऊंचाई वाले इलाकों में तो बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट महसूस की गई है। बद्रीनाथ धाम में भी ठंड के बीच श्रद्धालुओं की आवाजाही लगातार जारी है। वहीं पर मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया। देखिए पहाड़ों पर बदलते मौसम और बर्फ की खूबसूरत तस्वीरें।
6: मौसम ने करवट ली तो चमोली की ऊंची चोटियों का रंग भी बदल गया। हल्की बर्फबारी के बाद पहाड़ों पर सफेदी की खूबसूरत परत नजर आने लगी। हेमकुंड साहिब में बर्फबारी ने पूरे इलाके की तस्वीर बदल दी। छत से लेकर आसपास के रास्तों तक बर्फ की सफेदी नजर आ रही है। शांत पहाड़ों के बीच ये नजारा बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है।
7: चमोली में मौसम ने करवट बदल दी है। लगातार जोरदार बारिश इस समय पूरे जनपद में देखने को मिल रही है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, जोशीमठ और चमोली के तमाम जगहों पर इस समय बारिश और ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी का दौर देखने को मिल रहा है। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में बर्फबारी तो निचली जगहों पर बारिश के साथ ही ठंड हो रही है।
6: चमोली में मौसम के इस बदले मिजाज का असर अभी आगे भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि मौसम विभाग पहले ही वीकेंड पर बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर चुका है। यानी वीकेंड पर पहाड़ों में ठंड का असर और बढ़ सकता है। बद्रीनाथ धाम में भी बारिश के बाद ठंड का असर और बढ़ गया है। पहाड़ों पर बदलते मौसम का ये रंग श्रद्धालुओं को भी अलग एहसास दे रहा है।
7: इस समय जो बद्रीनाथ धाम की यात्रा है वो लगातार चरम पर चल रही है। गाड़ियों की कतार हर तरफ देखने को मिल रही है। ऐसे में यात्रा भी चल रही है, मौसम भी बदल रहा है, ठंड के बीच भी लगातार उत्साह जो है श्रद्धालुओं का बना हुआ है। ऐसे में मौसम विभाग का पूर्वानुमान जो है 10 अक्टूबर तक लगातार बारिश और बर्फबारी का दौर पहाड़ी ऊंची चोटियों पर देखने को मिलेगा।
6: वहीं हवाओं के बीच बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। दर्शन के लिए करीब 2 से 3 किलोमीटर लंबी कतार लग रही है, लेकिन ठंड भी भक्तों का उत्साह कम नहीं कर पा रही। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, मोड़ इसके ऊपर उसके ऊपर, ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
12: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
10: अविश्वास में विश्वास बसता है,
5: जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें
11: गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: ओडिशा के पारादीप में इंडियन नेशनल कोस्ट गार्ड ने की 12वीं नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज, 30 देशों के 32 ऑब्जर्वर ने अभ्यास में लिया हिस्सा। अक्टूबर को दलित प्रेरणा स्थल पर कांशी राम के परिनिर्माण दिवस पर नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन, एडवाइजरी जारी। गया जी में मनाई गई पितृ दीपावली, पिंडदान करने आए लोगों ने अपने पितरों के नाम से दीप जलाकर देवघाट को किया रोशन। कनेडियाई लेखिका एन कार्सन को मिला 2026 का साहित्य नोबेल पुरस्कार, चर्चित किताबों में द ब्यूटी ऑफ द हस्बैंड शामिल। चारधाम यात्रा के दूसरे चरण में बन रहे हर दिन नए रिकॉर्ड्स, बद्रीनाथ में अब तक 19,13,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं का बना नया रिकॉर्ड।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय वायुसेना की। इंडियन एयरफोर्स आज अपना 94वां स्थापना दिवस मना रही है। इस खास मौके पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में शानदार आयोजन हुआ, जहां पर हमारे वायुवीरों ने अपना दमखम दिखाया। गाजियाबाद में हिंडन की जमीन पर शानदार सेरेमोनियल परेड हुई, तो वहां से कोई 500 किलोमीटर दूर जोधपुर के आसमान में वायुवीरों ने अपने पराक्रम का प्रदर्शन दिखाया। जोधपुर में मेहरानगढ़ किले के ऊपर से जब भारतीय वायुसेना के जांबाज गुजरे तो वो नजारा अद्भुत था। तो चलिए आपको दिखाते हैं भारत के वायुवीरों ने इस खास दिन को दो अलग अलग शहरों में कितने शानदार अंदाज में मनाया।

ये ताकत है हमारे आसमान के निगहबानों की। ये शक्ति है भारत के भाल पर अपने शौर्य से तिलक लगाने वाले वायु वीरों की। ये उड़ान है 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के सीने में धड़कते दिलों की, जो आज एक स्वर में कह रहे हैं नभः स्पृशं दीप्तम्। गीता के 11वें अध्याय का ये श्लोक भारतीय वायु सेना का आदर्श वाक्य है, जिसका अर्थ है गौरव के साथ आसमान को छूना। पिछले 94 सालों से यही तो करती आ रही है इंडियन एयरफोर्स। भारतीय वायु सेना पिछले 9 दशकों से देश के आसमान में एक ताकतवर प्रहरी की भूमिका निभाती आई है। हिंदुस्तान ये जानता है कि जब तक उसके आसमान पर इन वायु वीरों की नजरें टिकी हैं, तब तक देश की धरती को कोई बुरी नजर छू भी नहीं सकती। एयरफोर्स के इसी जज्बे को सलाम करते हुए हर 8 अक्टूबर को भारतीय वायु सेना दिवस मनाया जाता है। आज गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर वायुसेना के 94वें स्थापना दिवस का भव्य समारोह हुआ। हिंडन एयरबेस पर आज ये गौरवशाली राष्ट्रीय उत्सव बेहद धूमधाम से मनाया गया।

0: मौके पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने खुली जीप में सवार होकर भव्य सेरेमोनियल परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ और नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन भी मौजूद रहे। इसके साथ ही वायुसेना के कई पूर्व और वर्तमान प्रमुख और वरिष्ठ सैन्य कमांडर्स ने भी इस गौरवशाली समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम का आगाज ध्वज फ्लाईपास्ट से हुआ, जिसमें MI-17 1B हेलीकॉप्टर्स ने आसमान में तिरंगा और वायुसेना के ध्वज के साथ फ्लाईपास्ट किया। कार्यक्रम की शुरुआत में एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने देश की सेवा में अदम्य साहस दिखाने और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए वायु योद्धाओं को वीरता पुरस्कार और विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किए। इस मौके पर उन्होंने वायुसेना के स्वर्णिम इतिहास और देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले महावीरों को याद किया।
1: मैं आज इस दिन को स्मरण और आत्मचिंतन के करने के अवसर के रूप में देखता हूं। आज हमें याद करना होगा वो कसम जो हमने एयरफोर्स की वर्दी पहनते समय खाई थी। याद करें इस गौरवशाली सेना का सफर, हमने कहां से शुरुआत की और आज हम कहां खड़े हैं। याद कीजिए अपने पूर्वजों को जिनके कारण वायुसेना आज इतनी सुदृढ़ है, और याद कीजिए उन सब वीरों और वीरांगनाओं को जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। ये स्मृतियां हमें राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को सही तरह से निर्वहन करने की प्रेरणा देंगी।
0: इसके साथ ही आगाज हुआ वायुसेना दिवस की शानदार सेरेमोनियल परेड का, जिसका शुभारंभ इस बार नारी शक्ति के शंखनाद से हुआ। परेड का मुख्य आकर्षण था एयर वॉरियर ड्रिल टीम की टीम शक्ति का शानदार राइफल ड्रिल प्रदर्शन। इसका नेतृत्व पहली बार महिला वायुसेना कर्मियों ने किया। जवानों ने बिना किसी कमांड के 303 राइफल्स के साथ बेहद कठिन और सटीक मूव्स दिखाए। इसी तरह वायुसेना दिवस के इतिहास में पहली बार ड्रमर्स ड्रिल टीम की प्रस्तुति को भी शामिल किया गया था, जिन्होंने अपनी थाप से पूरे एयरबेस को देशभक्ति के जोश से भर दिया।

0: इसके बाद हिंडन के आसमान पर आधुनिकता और इतिहास का संगम नजर आया। टाइगर मॉथ एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरकर वायुसेना के गौरवशाली अतीत की याद दिलाई। आपको बता दें, इस बार वायुसेना दिवस की परेड अचूक, अभेद्य और सटीक थीम पर आधारित थी। लगातार दूसरे साल हिंडन में हुए इस आयोजन में ट्रेडिशन, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी और फ्यूचर की प्लानिंग का बेजोड़ संगम देखने को मिला। हिंडन की जमीन पर स्टैटिक डिस्प्ले में मौजूद आकाश, ब्रह्मोस, तेजस और रफाल ने आज की वायुसेना के पराक्रम और सामर्थ्य की नजीर पेश की। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना ने अपने 94वें स्थापना दिवस को केवल गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे राजस्थान के जोधपुर में चल रहे मल्टी कंट्री हवाई युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2026 की दहलीज तक पहुंचा दिया। इन दिनों जोधपुर के आसमान पर तरंग शक्ति 2026 युद्धाभ्यास में भारत की हवाई ताकत के साथ साथ दुनिया के चुनिंदा मित्र देशों का तालमेल खूब नजर आ रहा है। यहाँ वायुसेना दिवस के मौके पर इंडियन एयरफोर्स की प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबेटिक टीम स्कैट ने आसमान में केसरिया, सफेद और हरे रंग के धुएं के साथ तिरंगा फॉर्मेशन बनाया। इसके अलावा उन्होंने हवा में डायमंड, तेजस और वाई जैसे सिग्नेचर फॉर्मेशंस बनाकर अपनी अचूक और अद्भुत सटीकता का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही स्वदेशी एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर से सजी सारंग टीम के 5 हेलीकॉप्टर्स ने हवा में एक साथ क्रॉसओवर और बेहद करीबी साहसिक पैंतरे दिखाकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। इस तरह जहां हिंडन में पारंपरिक परेड और स्वदेशी सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन हुआ, वहीं जोधपुर में भारतीय वायुसेना ने तरंग शक्ति युद्धाभ्यास के दौरान आई इस वर्षगांठ को इस एयर शो के जरिए और खास बना दिया। 94वें वायुसेना दिवस के मौके पर इंडियन एयरफोर्स ने इस समारोह, परेड और एयर शो के जरिए अपनी ताकत, अनुशासन, आत्मनिर्भरता और स्वर्णिम इतिहास के रंगों से हिंडन की जमीन और जोधपुर के आसमान को सजा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गाजियाबाद में आज वायुसेना दिवस का एयर शो नहीं हुआ और जोधपुर में तरंग शक्ति युद्धाभ्यास के बीच ही इस दिन को खास बनाया गया। लेकिन वायुसेना दिवस का समारोह अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अब बारी है वायुसेना दिवस के वाराणसी चैप्टर की। गाजियाबाद में परेड और ग्राउंड डिस्प्ले के बाद अब एयरफोर्स जनता के लिए बड़ा और मुख्य एयर शो वाराणसी में करने वाली है। इतिहास में यह पहली बार होगा जब वायुसेना दिवस का मेगा एयर शो वाराणसी में गंगा नदी के ऊपर किया जाएगा। देखिए, 24 से 26 अक्टूबर के बीच वाराणसी में एयर शो और फ्लाईपास का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 25 अक्टूबर को मुख्य एयर शो का आयोजन होगा। बताया जा रहा है कि एयर शो के दौरान वाराणसी में 80 घाट से लेकर नमो घाट तक गंगा नदी के ऊपर एयरफोर्स के विमान करतब दिखाते हुए नजर आएंगे। मेगा एयर शो में 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर शामिल होंगे। राफेल, तेजस और सूर्यकिरण एरोबेटिक्स टीम आसमान में जांबाजी का अद्भुत प्रदर्शन करेंगी। काशी के आध्यात्मिक पहचान को दर्शाने के लिए आसमान में विशेष त्रिशूल फॉर्मेशन की भी फॉर्मेशन बनाया जाएगा। सुखोई, राफेल और तेजस जैसे आधुनिक फाइटर जेट्स मिलकर इस डिस्प्ले को आकार देंगे। बताया जा रहा है कि ये एयर शो जो है लगभग 90 मिनट का होगा और 24 से 26 अक्टूबर के बीच रोजाना 12 बजे के करीब इसे आयोजित किया जाएगा। नमो घाट से लेकर 80 घाट के बीच गंगा किनारे लाखों लोग इस नजारे को लाइव देख सकेंगे। शानदार भविष्य और उजले वर्तमान के झलक के बाद अब चलते हैं स्वर्णिम इतिहास की ओर। भले ही ऑपरेशन सिंदूर हमारी वायुसेना के पराक्रम का सबसे ताजा उदाहरण है, लेकिन यह भी सच है कि आजाद भारत के पहले युद्ध से लेकर अब तक लड़े गए सभी युद्धों में इंडियन एयरफोर्स ने अहम भूमिका निभाई है। खासतौर पर 1971 और फिर 1999 के करगिल वॉर में हमारी वायुसेना ने आर्मी के साथ मिलकर पाकिस्तान को युद्ध में घुटनों पर ला दिया था। आइए आपको दिखाते हैं स्वर्णम इतिहास की वही यादें जिन्हें देखकर आप गर्व से भर उठेंगे।

0: आसमानों के रक्षक हैं, राष्ट्र के अरमानों के संरक्षक हैं। चाहे वो आसमान की अनंत ऊंचाइयां हों या फिर चुनौतियों की असीम गहराइयां, भारत के वायु वीरों के शौर्य के सामने दुनिया का कोई दुश्मन टिक नहीं सकता। जब जब शत्रु के कपट ने मातृभूमि को मैला करने का दुस्साहस किया, भारतीय वायुसेना ने तब तब अपने शौर्य और साहस से दुश्मन के इरादों को राख में बदल दिया। आजाद भारत के पहले युद्ध से लेकर कारगिल की लड़ाई और ऑपरेशन सिंदूर तक भारत के वायु वीरों ने हर मोर्चे पर अहम भूमिका निभाई है।
1: आजादी के तुरंत बाद पाकिस्तान ने अपने कबाइलियों को और रजाकारों को पाकिस्तान आर्मी के प्रोटेक्शन में कश्मीर में घुसाने की कोशिश की। ऐसे में इंडियन एयरफोर्स को तुरंत एक्टिव होना पड़ा। हमारी एयरफोर्स के जो डकोटा विमान थे, उन्होंने बखूबी दिल्ली से और जम्मू से इंडियन आर्मी के ट्रूप्स को एयरलिफ्ट करके श्रीनगर तक पहुंचाया। इसी तरह से इंडियन एयरफोर्स के जो फाइटर विमान थे उस वक्त, वापिति, लाइसेंडर, इन्होंने लगातार जो कबेली थे या जो रजाकार थे उनके पोस्ट पर हमला किया और उनको मजबूर किया कि वह भारत की भूमि छोड़कर पीर पंजाल के उस तरफ पाकिस्तान लौट जाएं।
0: भारतीय वायुसेना की पराक्रम की पहली परख तब हुई जब आजाद हिंदुस्तान ने अपना पहला युद्ध लड़ा 78 साल पहले 1947 के अक्टूबर महीने में, जब पाकिस्तान के कबायली लड़ाकों ने जम्मू और कश्मीर राज्य की सीमा को पार करने का दुस्साहस किया था। तब भारतीय वायुसेना की नंबर 12 स्क्वाड्रन ने पालम से पहली सिख रेजिमेंट की बटालियन को एयरलिफ्ट करके श्रीनगर की कठोर और धूल मिट्टी भरी हवाई पट्टी पर उतारने का चुनौती भरा काम किया था। इसके एक सप्ताह के भीतर ही वायुसेना के नंबर 7 स्क्वाड्रन के टेम्पेस्ट वायुयान शिल्टांग की लड़ाई में निर्णायक भूमिका में आ गए और वहां घुसपैठियों को आगे बढ़ने से रोक दिया गया।
1: वायुसेना का गठन आज ही के दिन यानी 8 अक्टूबर को 1932 के दिन हुआ था। तब से लेके अब तक वायुसेना काफी सारे युद्धों में भाग ले चुकी है, जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध। उसके बाद जैसे ही देश आजाद हुआ तो 1947-48 का जम्मू एंड कश्मीर ऑपरेशन, जिसमें हमारी वायुसेना ने पाकिस्तान के विरुद्ध एक्टिव रोल अदा किया। 1962 का युद्ध चीन के साथ, 1962 के युद्ध के दौरान पॉलिटिकल रीजन से यह डिसाइड किया गया कि वायुसेना की फाइटर और बॉम्बर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन वायुसेना की ट्रांसपोर्ट और हेलीकॉप्टर विंग्स ने बखूबी इंडियन आर्मी का साथ दिया। 1965 के जंग में इंडियन एयरफोर्स ने आगे बढ़ते हुए पश्चिम में पूरे बॉर्डर पर इंडियन आर्मी को क्लोज एयर सपोर्ट दिया।
0: के बाद पाकिस्तानी सेना ने 1965 में जम्मू कश्मीर पर कब्जे के लिए दूसरी बार हमला करने की हिमाकत की थी, लेकिन इस बार फिर उसे मुंह की खानी पड़ी। 1965 में भारतीय वायुसेना ने न केवल उसके लड़ाकू विमानों को मार गिराया बल्कि कई सैन्य बेसों को ध्वस्त कर दिया। हालांकि इस युद्ध में भारतीय वायुसेना को भी काफी नुकसान हुआ, लेकिन हमारे वीर जवानों ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाकर रख दी। इसके बाद तीसरा मौका 1971 में आया जब पाकिस्तान के दुस्साहस ने एक बार फिर अपना सर उठाया। 3 दिसंबर 1971 को युद्ध की शुरुआत हुई और पाकिस्तानी वायुसेना ने पूरी प्लानिंग के साथ इंडियन एयरफोर्स के श्रीनगर, अमृतसर और पठानकोट एयरबेसों पर हमला बोल दिया। उस वक्त पाकिस्तान को यह एहसास नहीं था, लेकिन आने वाले 2 हफ्ते उसकी कुंडली पर बेहद भारी पड़ने वाले थे, क्योंकि उसके बाद भारतीय वायुसेना अपने पूरे दमखम के साथ पाकिस्तानी बेसों को नेस्त नाबूद करने में जुट गई। उन्नीस सौ 71 के युद्ध में भारतीय वायुसेना के विमानों ने बांग्लादेश के ऊपर 12,000 से ज्यादा उड़ानें भरी थी। भारतीय वायुसेना ने इस लड़ाई में पाकिस्तान के 94 विमानों को मार गिराया था। चाहे लोंगेवाला की लड़ाई हो या पूर्वी पाकिस्तान में गवर्नर हाउस पर बमबारी, बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराने में भारतीय वायुसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो वहीं भारतीय वायुसेना की मदद से भारत की थल सेना ने 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। दुनिया के सबसे दुर्गम युद्ध क्षेत्र में चलाए गए इस ऑपरेशन के जरिए भारत के जांबाजों ने पाकिस्तान के जबड़े से सियाचिन को छीन लिया था। इस ऑपरेशन के बाद भारत के कब्जे में पूरा का पूरा सियाचिन ग्लेशियर आ गया था। तब से लेकर आज तक सियाचिन की चोटियों पर भारत का परचम लहरा रहा है।

0: 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर कोडनेम के साथ पाकिस्तानी सेना के खिलाफ ऐसा विध्वंसक अभियान चलाया था जिसके जख्म आज तक पाकिस्तान भुला नहीं पाया है।
1: में जब कारगिल का युद्ध हुआ तो उस वक्त हमारी एयरफोर्स को यह रोल दिया गया कि हम तुरंत आगे बढ़कर पाकिस्तान की जो ट्रुप्स हैं नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जो डगआउट पोजीशन है, गन पोजीशन है, उन पर बमबारी करें। इसके लिए MiG-21 ने बेहतरीन हाई ऑल्टीट्यूड बॉम्बिंग की। सबसे बड़ी बात है कि हमारे दूसरे विमान जैसे कि MiG-27 और Mirage-2000 ने बहुत ही एक्यूरेसी के साथ लेजर गाइडेड बॉम्ब गिराए जो महज प्लस माइनस 10 मीटर की एक्यूरेसी से पाकिस्तान आर्मी के जो कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट थे, अंडरग्राउंड बंकर्स थे, उसके अंदर घुसकर फटे। कुल मिलाकर नतीजा ऐसा हुआ कि इंडियन एयरफोर्स के हमलों की वजह से कई जगह पर NLI यानी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के यहां से लगातार पाकिस्तान में फोन हो रहे थे उनके GHQ में कि इंडियन एयरफोर्स के जहाज लगातार उन पर हमला कर रहे हैं।
0: भारत की आर्मी और एयरफोर्स के पराक्रम ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया और आखिरकार 26 जुलाई को भारत की जीत हुई। इसके बाद भी जब जब मौका आया भारतीय वायुसेना ने देश के दुश्मनों पर अपने पराक्रम से ऐसी करारी चोट की कि आतंक के सपोले अपने बिलों समेत जमीन के कई गज नीचे दफन हो गए और भारत के शत्रु बिलबिला के रह गए। बालाकोट के जरिए भारतीय वायुसेना ने पुलवामा के 40 सपूतों की शहादत का बदला लिया था। 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना के Mirage 2000 विमान रात के अंधेरे में नियंत्रण रेखा को पार कर पाकिस्तान के पूर्वोत्तर इलाके में खैबर पख्तूनख्वा पहुंचे और बालाकोट में जैश ए मोहम्मद की ट्रेनिंग कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। बालाकोट स्ट्राइक में बड़ी संख्या में जैश ए मोहम्मद के आतंकी, उनको ट्रेनिंग देने वाले संगठन के बड़े कमांडर और फिदायीन हमलों के लिए तैयार हो रहे आतंकी मारे गए थे। और भारतीय वायुसेना के साहस की महागाथा का सबसे ताजा अध्याय सिंदूरी शौर्य की स्याही से लिखा गया। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारतीय वायुसेना के पराक्रम की वो तस्वीर देखी जिसकी कल्पना भारत के शत्रुओं ने अपने दुस्साहस भरे सपनों में भी नहीं की थी।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन एयरफोर्स को दो काम दिए गए थे। एक, पाकिस्तान में घुसकर वहां जो आतंकवादियों के टेरर कैंप्स हैं उस पर हमला करना। दूसरा, पाकिस्तान एयरफोर्स के 11 चिन्हित यानी आइडेंटिफाइड रनवेज, उनके जो एयर बेसिस में हैंगर्स थे और सबसे बड़ी बात उनके जो रेडार्स थे उस पर हमला करना। इन दोनों कार्रवाइयों को इंडियन एयरफोर्स ने बखूबी अंजाम दिया। सिंदूर के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने लॉन्ग रेंज S-400 जमीन से हवा पे मार करने वाली मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए 300 किलोमीटर की दूरी से पाकिस्तान एयरफोर्स के एक अवाक यानी एयरबॉर्न कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भी नेस्तनाबूद किया।
0: समझिए कि चाहे देश के लिए शत्रु से लोहा लेना हो या फिर आपदा के समय राहत का फरिश्ता बनकर मदद पहुंचानी हो, हर मौके पर भारत के वायुवीर देश के लिए अपने फर्ज को शिद्दत से निभाते आए हैं। राष्ट्र रक्षा और राष्ट्र सेवा के मोर्चे पर हमारी वायु सेना के योगदान से जुड़े उन्हीं स्वर्णिम पलों को देश आज फिर याद कर रहा है। वायु सेना दिवस के मौके पर हिंदुस्तान के वायु योद्धाओं को गुड न्यूज टुडे का सलाम।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों।
1: 11 अक्टूबर से नवरात्र का आरंभ हो रहा है, इसलिए दुर्गा पूजा को लेकर पूरे देश में जोर शोर से तैयारियां तमाम चल रही हैं। मूर्ति बनाने वाले कलाकार मां की भव्य प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। अपने सधे हुए हाथों से कारीगर दुर्गा प्रतिमाओं को उत्सव के लिए तैयार कर रहे हैं।

0: देश भर में शक्ति उत्सव की तैयारियां जोरों पर है। मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा गढ़ी जा रही है। मां की कोई मूर्ति तैयार होने के बेहद करीब है तो किसी को अभी आकार दिया जा रहा है। कुछ मूर्तियों में रंग भरे जा रहे हैं। मूर्तिकार छोटी बड़ी हजारों मूर्तियों को गढ़ने और तराशने में व्यस्त हैं ताकि वक्त पर मूर्तियों की डिलीवरी की जा सके। देश के अलग अलग हिस्सों में मूर्तिकार दिन रात लगकर प्रतिमाओं को तैयार करने में जुटे हुए हैं। कुछ परिवार और मूर्तिकार ऐसे भी हैं जो सालों से माँ दुर्गा की प्रतिमाएं तैयार कर रहे हैं। इन प्रतिमाओं का पारंपरिक स्वरूप ही इनकी खास पहचान है। शुरुआती दौर में बड़ी संख्या में कारीगर प्रतिमाओं का ढांचा बनाने और मिट्टी लगाने का काम करते हैं। इसके बाद प्रतिमाओं की फिनिशिंग, रंगाई और श्रृंगार का काम शुरू होता है। रायपुर की इस कार्यशाला में माँ की हर प्रतिमा में कला, पारंपरिक शैली की एक अनूठी और गहरी छाप दिखती है। ऑर्डर के हिसाब से ही माँ का स्वरूप तैयार किया जा रहा है, जिसमें मूर्तिकार की कल्पना और कार्य कुशलता की छाप भी देखने को मिल रही है। दुर्गा पूजा के आरंभ होने में अब बहुत कम समय रह गया है, इसीलिए कारीगर तेजी से काम पूरा करने में जुटे हुए हैं। मूर्ति निर्माण के पीछे की उनकी महीनों की मेहनत बस इस बात पर टिकी है कि भक्तों को उनकी बनाई मूर्ति पसंद आए। कलाकारों और मूर्तिकारों की इस अथक मेहनत ने उत्सव के माहौल को और भी खास बना दिया है। यही कारण है कि देश के कोने कोने में दुर्गा पूजा का उत्सव चरम पर पहुंच चुका है। आने वाले दिनों में इसमें और इजाफा होने की उम्मीद है। महेंद्रगढ़ से धीरेन्द्र विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से।
2: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज़ पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: ओडिशा के पारादीप में इंडियन नेशनल कोस्ट गार्ड ने की 12वीं नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज, 30 देशों के 32 ऑब्जर्वर ने अभ्यास में लिया हिस्सा। अक्टूबर को दलित प्रेरणा स्थल पर कांशी राम के परिनिर्माण दिवस पर नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन, एडवाइजरी जारी। गया जी में मनाई गई पितृ दीपावली, पिंडदान करने आए लोगों ने अपने पितरों के नाम से दीप जलाकर देवघाट को किया रोशन। कैनेडियाई लेखिका एन कार्सन को मिला 2026 का साहित्य नोबेल पुरस्कार, चर्चित किताबों में द ब्यूटी ऑफ द हस्बैंड शामिल। चारधाम यात्रा के दूसरे चरण में बन रहे हर दिन नए रिकॉर्ड्स, बद्रीनाथ में अब तक 19,13,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं का बना नया रिकॉर्ड।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं दुर्गा पूजा की। बस अब थोड़ा सा इंतजार है, 11 अक्टूबर से देश में शक्ति पूजा का आरंभ होने जा रहा है और उसके लिए भव्य पंडालों और दिव्य प्रतिमाओं का निर्माण तेजी से चल रहा है। आज आपको लिए चलेंगे कोलकाता, जहां पर मशहूर पार्क स्ट्रीट इलाके में 300 साल बाद पहली बार दुर्गा पूजा होने जा रही है और इसके लिए भव्य पंडाल बनाए जा रहे हैं। दुर्गा पूजा में इस बार सरकार ने क्या नए नियम बनाए हैं, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही आपको लिए चलेंगे मिनी बंगाल कहे जाने वाले चितरंजन पार्क में और वहां बन रहे भव्य पंडाल की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही गुजरात में गरबा की तैयारियां तमाम हैं, वो दिखाएंगे। मशहूर अंगारा रास के लिए टीमें अभी से रिहर्सल करने में जुटी हुई हैं। शोलों के दरमियान कैसे होता है ये डांस आपको दिखाएंगे और आखिर में दिल्ली में मंचित होने जा रहे डांस ड्रामा श्री राम की टीम से भी मिलाने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं मां दुर्गा के स्वागत की तैयारियों से। दिल्ली से अमरावती तक और चंडीगढ़ से लेकर कोलकाता तक भव्य पंडाल आकार ले रहे हैं।

पंडाल बनाया जा रहा है। इसी तरह दिल्ली के चितरंजन पार्क में पंडालों को सजाने का काम तेजी से चल रहा है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक पूरे देश में मां के आगमन का इंतजार है। रिपोर्ट देखिए।

0: सर्वेश्वरी जगदीश्वरी मातृ रूप महेश्वरी ममतामयी करुणामयी जगजीवनी संजीवनी तमहारिणी शुभकारिणी मनमोहिनी विश्वेश्वरी। उस पल की प्रतीक्षा है जब पंडाल में माँ विराजेंगी, इसलिए धूमधाम से भक्तिभाव से दिन रात जुटकर पंडाल सजाए जा रहे हैं। चाहे बंगाल हो या मिनी बंगाल, कोलकाता का पार्क स्ट्रीट हो या दिल्ली का चितरंजन पार्क, भावना तो एक ही है, हाँ पर भव्यता में बाजी मारने की होड़ है। सबसे पहले देखिए कोलकाता के पार्क स्ट्रीट इलाके को, जहाँ नया इतिहास रचा जा रहा है। जिस इलाके की पहचान रेस्टोरेंट, पब, कैफे, जगबगाती सड़क और पाश्चात्य संगीत के तौर पर रही है, और जो अपनी नाइट लाइफ के लिए मशहूर है, वहाँ 370 साल बाद महाशक्ति की आराधना होने जा रही है।
1: सर के सनातनी संस्था के द्वारा यहाँ पर हम लोग एलन पार्क, जो आप पार्क से देख रहे हैं, यहाँ पर 300 वर्षों तक कभी आसन कोई, यहाँ बहुत बंगाली परिवार के लोग रहे, अच्छे धनाढ्य लोग रहे, लेकिन बहुत प्रयास किया गया, लेकिन आज तक कभी यहाँ पर कोई पूजा नहीं हो पाया दुर्गा पूजा। ये हम लोगों ने पहली बार सनातनी सरकार बनने के बाद में हम लोगों ने प्रयास किया। हमारे संस्था के महामंत्री नवीन मिश्रा जी और संस्था के अध्यक्ष हमारे शंकरदेव पांडा जी ने, दोनों ने मिलकर प्रयास करके और सरकार के साथ सहयोग करके और इस जगह को, पार्क को, हम लोग आज सनातनी पार्क के नाम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि नामकरण किया जाए और इस सनातनियों के लिए और पूरे पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए अपना सवार आप सभी का पूजा है, अकेले हमारी पूजा नहीं है, ये सनातनियों की पूजा है।
0: शक्ति पूजा के केंद्र कोलकाता में ये बदलाव यकीनन ऐतिहासिक है, क्योंकि अभी तक पार्क स्ट्रीट के एलन पार्क में क्रिसमस और न्यू ईयर ही सेलिब्रेट किया जाता था, पर इस बार भव्य रूप दुर्गा पूजा महोत्सव की तैयारी है आरंभ है, इसलिए पंडाल भी अद्भुत होना चाहिए। इसलिए कोलकाता सनातनी संघ ने शिव तांडव की थीम चुनी है।
1: पूजा का ये शंकर भगवान का विराट स्वरूप है, शिव तांडव का स्वरूप इसमें देखिए। एक तरफ आप भगवान की जटा में देखिए, जिस समय माँ जब आग में कूद गई थी, उसके बाद का दृश्य है, रुद्र रूप इनका यहाँ पर है और बगल में तांडव करते हुए है। इधर में आप यहाँ वरुण की अभिषेक करते हुए रहेगा, सामने आपका आदि शिव का है। यहाँ पांच तरह की, एक तरफ नंदी पे शिव जी बैठे हैं, पांच तरफ भगवान शिव का ही पूरा तांडव लीला इसमें है।
0: यूँ तो 2007 से एलन पार्क में पार्क स्ट्रीट कार्निवाल होता आ रहा है, जिसे 2011 से क्रिसमस फेस्टिवल का नाम दिया गया, लेकिन दशकों से दिसंबर में जगमगाने वाला ये पार्क अब अक्टूबर में यानी नवरात्रि के दौरान भी आकर्षण का केंद्र रहेगा। पार्क स्ट्रीट में शक्ति पूजा के लिए बनारस से करीब 100 पुरोहितों की टीम आ रही है। चतुर्थी से दशमी तक रोज बनारस के दशाश्वमेध घाट की तर्ज पर यहाँ महाआरती होगी। अष्टमी पर 5,000 महिलाओं के साथ जागरण और अष्टमी को कन्या पूजन होगा। पंडाल में पश्चिम बंगाल की लोक संस्कृति और लोक संगीत पर फोकस रहेगा, साथ ही राज्य की कला और परंपराओं की झलक भी रहेगी। एलन पार्क इलाके में दुर्गा पूजा होगी तो जाहिर है भारी जन सैलाब उमड़ेगा। ये इलाका पहले से ही भीड़भाड़ वाला है, इसलिए क्राउड मैनेजमेंट पर आयोजक और प्रशासन दोनों की नजर है। दावा है कि एलन पार्क की दुर्गा पूजा कोलकाता की सबसे बड़ी पूजा होगी और इसी दावे के अनुसार पंडाल भी बनाया जा रहा है। मुख्य द्वार पर बिखरी हुई जटाओं के साथ शिव की विशाल प्रतिमा, पंडाल के अंदर विशाल मंदिर की प्रतिकृति जिसमें माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की मूर्तियाँ। वैसे तो कोलकाता में

0: एक से बढ़कर एक पंडाल बन रहे हैं, लेकिन एलन पार्क के पंडाल को अद्वितीय बनाने की कोशिश है।
1: यहाँ पे लाखों लाखों, कम से कम डेली हमको लगता है कि 8-10 लाख लोग आएंगे ही आएंगे।
0: बताया जा रहा है कि इस ऐतिहासिक दुर्गोत्सव का उद्घाटन 11 अक्टूबर को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी करेंगे। भव्य महा आरती, पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम और विशाल महाप्रसाद वितरण की वजह से माना जा रहा है कि एलन पार्क की पूजा भव्य होगी। इस साल पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के लिए कई बदलाव भी किए गए हैं, जैसे महाअष्टमी के पावन अवसर पर राज्य भर में शराब की सभी दुकानें और बार पूरी तरह बंद रहेंगे। पूजा पंडालों और विसर्जन यात्रा के दौरान डीजे बजाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। राज्य भर की सभी पंजीकृत पूजा समितियों के लिए बिजली बिल में 100% छूट देने की घोषणा भी राज्य सरकार द्वारा की गई है। और हाँ, महालया से पहले पंडाल का उद्घाटन नहीं किया जाएगा। ये तो हुई बंगाल की बात, अब चलिए आपको मिनी बंगाल यानी दिल्ली के चितरंजन पार्क लेकर चलते हैं, जहां भव्य पंडालों को आखिरी रूप दिया जा रहा है। चितरंजन पार्क के बड़े पंडालों में एक मेला ग्राउंड का ये पंडाल भी है, जहां पर हर साल के ही जैसा इस साल भी भव्य और खूबसूरत पंडाल बनाया जा रहा है।
2: दिल्ली के चितरंजन पार्क के मेला ग्राउंड में मौजूद है, जहां पर बड़ा पंडाल बनाया जाता है और भव्य उत्सव नवरात्रों के दौरान मनाया जाता है। भव्य माता की प्रतिमा स्थापित की जाती है और इसको लेकर के यहां पर तैयारियां शुरू है। आप देख सकते हैं दुर्गा पूजा समिति सीआर पार्क मेला ग्राउंड है और इसी के तौर पे कई वर्षों से यहां मनाया जाता है। 50 साल इस पूजा का हो चुका है और इस बार 51वां मनाया जाएगा। और देख सकते हैं किस तरीके से भव्य जो पंडाल है वो यहाँ पर बनाने का कार्य आपको शुरू हो गया है।
0: एक तरफ पंडाल सजाए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ माँ की प्रतिमा भी तैयार हो रही है, तो कहीं देवी दुर्गा की प्रतिमाओं का आगमन भी होने लगा है। झांसी में नवदुर्गा उत्सव समिति की ओर से देवी की ये सुंदर प्रतिमा झोकनबाग शहीद पार्क में स्थापित होगी। बताया गया कि समिति पिछले 42 वर्षों से लगातार माँ दुर्गा की स्थापना और नवरात्रि उत्सव का आयोजन करती आ रही है। समय बदला, पीढ़ियां बदली, लेकिन देवी दुर्गा की आराधना और झोकनबाग शहीद पार्क की ये परंपरा आज भी उसी उत्साह के साथ जारी है।
3: नवदुर्गा उत्सव समिति झोकनबाग शहीद पार्क सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। इधर पे शहीद पार्क पे हम लोग माता रानी को विराजमान करते हैं पिछले 42 साल से और हमारी मूर्ति जो है वो सागर से आई है, विश्वकर्मा आर्ट से।
0: शक्ति उपासना के इस पर्व को लेकर रौनक हर तरफ है। ये तस्वीर महाराष्ट्र के अमरावती की है, जहां विदर्भ की कुलस्वामिनी के रूप में प्रसिद्ध अम्बा माता का मंदिर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा है। मंदिर की साफ सफाई और रंग रोगन के साथ माता के सोने चांदी के आभूषणों को भी चमकाया गया है।

0: विदर्भ की कुलस्वामिनी अमरावती की माँ अम्बे के इस मंदिर में, जहाँ पर आप देख सकते हो कि मंदिर को जो है पूरी तरीके से लाइटिंग से सजाया है, यहाँ पर पूरी तरीके से रोशनाई शुरू कर दी है और अब नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि उत्सव को बस कुछ ही दिन बचे हैं, उससे पहले जो है हर देवी का जो मंदिर है वो अब सजना शुरू हुआ है। और
1: पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, देश के हर हिस्से में शक्ति पूजा की तैयारी है, दुर्गा पूजा की धूम है और श्रद्धालु माँ की आगमन की प्रतीक्षा में हैं। दिल्ली से आशुतोष कुमार और अमरावती से धनंजय साबली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: नवरात्रि आने में अब कुछ ही वक्त शेष रह गया और गुजरात में गरबा की धूम शुरू हो चुकी है। कहीं जलती मशालों के बीच अंगारा रास की तैयारियां हैं तो कहीं पर रंग बिरंगे परिधानों में गरबा प्रेमी कदमताल का अभ्यास कर रहे हैं। जामनगर में 70 साल से ज्यादा पुरानी अंगारा रास की परंपरा आज भी कायम है, जहां आग के बीच कलाकार अपनी आस्था और साहस दिखाते हैं। वहीं वडोदरा और राजस्थान के पाली में गरबा की नई पीढ़ी को अपने रंग में रंग रहे हैं। रिपोर्ट देखिए।

अंगारों के बीच थिरकते कदम, हाथों में सुलगती मशालें, चेहरे पर आस्था और दिल में माँ अम्बे का नाम। ये नजारा है गुजरात के जामनगर का, जहाँ नवरात्रि से पहले ही भक्ति का रंग गहरा होने लगा है। जामनगर के रणजीत नगर में पटेल युवक गरबा मंडल पिछले 70 साल से ज्यादा वक्त से अंगारा रास की इस अनोखी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। आधुनिक गरबा के दौर में भी यहाँ सदियों पुरानी साहसिक कला का जुनून बरकरार है। महीनों पहले से युवा कलाकार इसकी तैयारी में जुट जाते हैं, कदमों की लय साधते हैं और आग के बीच संतुलन का कठिन अभ्यास करते हैं।

0: हमारा यहाँ का फेमस रास है वो है मसाल रास है, और हम मसाल रास खेलते खेलते जो हमारा स्वस्तिक है वो बनाते हैं, और माता जी का शस्त्र बोलते त्रिशूल वो भी बनाते हैं, और गरबा के अंत में हम अंगारों पे खेलते हैं, और वो भी खुले पैर खेलते हैं, कोई लोशन या कुछ अप्लाई भी नहीं करते हैं, और ये हमारे ऊपर माता जी का आशीर्वाद है जो हमारे पैर में कुछ होता नहीं है, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और ये मसाला रस हम पिछले 25 सालों से खेल रहे हैं, और ये गरबा हमारा गरबा मंडल है जो ये पिछले 70 सालों से यहाँ पे कार्यरत है।
1: हाथों में जलती मशाले, चारों तरफ आग की लपटे, लेकिन चेहरों पर जरा भी डर नहीं। भक्ति में डूबे कलाकार जब रास की लय पर घूमते हैं तो लगता है जैसे आस्था ने आग पर भी जीत हासिल कर ली हो। जामनगर में अंगारा रास का एक और खास रूप भी देखने को मिलता है। श्री रंदल अंबिका कुमारिका गरबा मंडल स्वास्तिक के आकार में सुलगती लकीरों के बीच स्वास्तिक अंगारा रास की प्रस्तुति करता है। आग की तपिश के बीच गुजरते कलाकार अपनी श्रद्धा और साहस का अद्भुत मेल दिखाते हैं। और अब बात उस रंग की जिसके बिना गुजरात की नवरात्रि अधूरी मानी जाती है, गरबा। वडोदरा में विकसित भारत संकल्प गरबा की थीम पर भव्य प्री गरबा आयोजन हुआ। पारंपरिक परिधानों में सजे लोग संगीत की धुन पर घूमते घेरे और मां शक्ति की आराधना के साथ विकसित भारत 2047 का संदेश पूरे माहौल को खास बना गया।
2: वडोदरा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा गरबा का आयोजन किया जा रहा है, और यहाँ पे वो भी अच्छे और सच्चे मन से हम लोग माता जी की श्रद्धा से गरबे के लिए आए हैं, और विकसित भारत थीम पे हमें बहुत ही गर्व है।
3: विकसित भारत पे आज यहाँ पे देख सकते हो काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पे यूनाइटेड वे ऑफ वडोदरा जो वर्ल्ड प्रसिद्ध है गरबा, जो आज यहाँ पर काफी जनसंख्या में लोग आए हुए हैं। सो आप देख सकते हो इतना अच्छा मैनेजमेंट है, बहुत अच्छा, और अतुल दादा तो हमारे सबके फेवरेट है जो इतना वर्षों से सिंगिंग कर रहे, तो आप सब देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत है।
4: हम लोग रात्रि बिफोर नवरात्रि अतुल पुरोहित के साथ विकसित भारत की थीम पे यहाँ पे यूनाइटेड वे के ग्राउंड पे आज खेलने आए थे। आज का हमारा ये जो एनर्जेटिक एक्सपीरियंस है, जैसे आप सुन सकते हो बैकग्राउंड में किस हिसाब से चल रहा है, पीछे सब स्टूडेंट्स और वो सब विकसित भारत पे डांस और गरबा परफॉर्म कर रहे हैं।
1: रंग बिरंगी चनिया चोली, पारंपरिक केडिया कुर्ता, तालियों की गूंज और एक साथ पढ़ते कदम, वडोदरा महानगर पालिका के इस आयोजन में स्वच्छता, नारी शक्ति, सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्र निर्माण का संदेश भी जुड़ा रहा। लोगों के लिए प्रवेश निःशुल्क रखा गया जिससे उत्सव में हर उम्र के लोगों की भागीदारी दिखी। गुजरात से निकलकर गरबा देश भर की धड़कन बन चुका है। इसका असर राजस्थान के पाली में भी साफ दिखाई दे रहा है। बच्चों से लेकर महिलाओं और जेंजी युवतियों तक हर कोई गरबा सीखने को लेकर उत्साहित है। मोबाइल और डीजे पर बजते संगीत के साथ कोरियोग्राफर नए स्टेप सिखा रहे हैं। इस बार बॉलीवुड अंदाज के मूव्स भी युवा पीढ़ी को खासा आकर्षित कर रहे हैं।
5: सिकली तो दो ताली, तीन ताली, हीच, डोडिया, ये सारे स्टेप्स किए जाते हैं। बट आज के जमाने के हिसाब से, आज की जेन ज़ी के हिसाब से, अगर हम लोग उसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफाई करके, थोड़ा सा बॉलीवुड स्टेप्स तो मॉडिफाई करके डाल दे, तो उनको करने में भी मजा आता है, और उस तरीके से करते तो सब लोग एंजॉय भी करते हैं।
1: लेकिन गरबा सिर्फ नृत्य नहीं, ये माँ अम्बे से जुड़ने का एक जरिया भी है। बीच में जलता दीपक, चारों तरफ घूमते भक्त और हड़ताल के साथ बढ़ती श्रद्धा, 9 दिनों के उपवास और साधना के बीच गरबा का हर कदम शक्ति को समर्पित होता है। बदलते दौर में इसके अंदाज जरूर बदले हैं, लेकिन भाव वही है, माँ के प्रति समर्पण का, शक्ति की आराधना, संस्कृति की पहचान और उत्सव की उमंग गुजरात में साफ दिखाई दे रही है। राजस्थान से भरत भूषण जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: दिल्ली में इस दिवाली एक बार फिर से मंच पर भगवान राम की गाथा जीवंत होने जा रही है। करीब 7 दशक पुरानी परंपरा के तहत श्री राम भारतीय कला केंद्र का मशहूर डांस ड्रामा श्री राम इस साल अपने पारंपरिक स्वरूप में लौट रहा है। खास बात इसमें यह कि करीब 25 साल बाद इसकी प्रस्तुति में पुराने अंदाज, पारंपरिक वेशभूषा और मंच सज्जा को फिर से जगह दी गई है। चलिए इस लोकप्रिय डांस ड्रामा की टीम से आपको मिलवाते हैं।

0: श्रीराम भारती कला केंद्र के ड्रेस रिहर्सल में हैं हम, और फिलहाल हम बैक द स्टेज हैं। सीता जी तैयार हो रही हैं और किस तरह से वो खुद को सवार रही हैं ये हम देख पा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सारे आर्टिस्ट अपना मेकअप अपने आप करते हैं, उन्हें उनका रोल बताया जाता है, उस रोल की क्या डिमांड है, कैसा उन्हें दिखना है स्टेज पर, उसके हिसाब से वो खुद अपना मेकअप चूज करती हैं और ऐसा चुनती हैं कि हर बार बिल्कुल परफेक्ट दिखाई पड़ती हैं। अनुसुआ जी मेरे साथ में हैं, पेशे से टीचर हैं लेकिन सिर्फ रामलीला के लिए ब्रेक लिया है और यहाँ पर फिलहाल वो तैयार होती हुई दिखाई पड़ रही हैं।
1: जब भी माता सीता का नाम लिया जाता है, सबसे पहली बात तो शक्ति का एक अनुभूति होती है अपने अंदर। और हम, जैसे कि सर ने अभी बताया कि हम लोग मेकअप के द्वारा इसका हम लोग दर्शाते हैं, जैसे कि हम लोग आईब्रोज जो है, जो हमें शोभा जी ने सिखाया है कि आईब्रो को हम लोग किस तरीके से बनाते हैं ताकि जो पॉजिटिव रोल है वो कितना दूर दर्शकों तक समझ में आए कि दैट इज अ पॉजिटिव रोल।
0: राजकुमार जी मेरे साथ हैं, राम के गेटअप में हैं, पिछले 40 साल से श्री राम भारती कला केंद्र के साथ जुड़े हुए हैं और पिछले 30 साल से लगातार राम का रोल वो प्ले कर रहे हैं रामलीला में।
2: इसमें कोई शक नहीं, वाकई राम समा गए हैं, बट ये कि राम बनने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है। बट हमारे डायरेक्टर हैं शोभा दीपक सिंह पद्मश्री, उन्होंने काफ़ी हमें तुलसीदास रामायण और अपना वाल्मीकि रामायण बहुत रटाया है, क्योंकि हमारा जो बेस है वाल्मीकि और तुलसीदास रामायण के ऊपर है। तो कुछ वर्कशॉप हुई हमारे थिएटर की और कुछ संवाद की हुई कि कैसे आपको अभिनय करना है, क्योंकि हम लोग बोल नहीं रहे, ये हमारा अभिनय प्रधान है। तो अभिनय के थ्रू हमें मुद्रा एक्सप्रेशन इस पर काफ़ी काम करना पड़ा, जिसके लिए हमें वर्कशॉप देने पड़े। हमारे गुरु जी, हमारे जितने सीनियर हैं, उन लोगों ने काफ़ी हमारा हेल्प किया।
0: रामलीला का सबसे शानदार करेक्टर आप किसे मानते हैं, किसे देखने के लिए आप घर से निकलकर स्टेज के पास तक जाते हैं, तो वो है रावण। बिना रावण रामलीला कुछ भी नहीं है, बिना रावण शायद राम का भी इतना चर्चा नहीं होती। और मेरे साथ साक्षात रावण मौजूद हैं, स्वपन मजूमदार सर इनका नाम है। सर, जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है आपने, बहुत ही कमाल की थी। कितने साल से आप कर रहे हैं?
3: मैं 2014 से कर रहा हूँ रावण। मैं बेसिकली 1994 से भारतीय कला केंद्र में हूँ। आई केम एज अ स्टूडेंट एंड देन मैंने कई साल लक्ष्मण का रोल किया और रावण का रोल मैंने 2014 से स्टार्ट किया।
0: ये 12वां साल है आपका रावण का रोल प्ले करते करते, अभी भी स्टेज पर जाने से पहले कुछ अंदर बटरफ्लाई होती है क्या?
3: सी, कलाकार जो होता है ना, वो स्टेज के अंदर जाने के बाद राजा होता है। स्टेज के जब वो बाहर होता है, वो एक नॉर्मल इंसान होता है। डर हर एक इंसान को होता है और दिन जो होता है ना, वो हमेशा एक दिन जैसा नहीं होता है। तो जैसे दिन चेंज होता है, ऐसे कलाकार भी अपने हिसाब से कुछ इम्प्लीमेंट करता है और कुछ छूट जाता है। तो डर तो होता ही है और बहुत ज़रूरी भी है ये डर होना।
4: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़ रही है न्यूज़ टुडे के साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। पहाड़ों पर मौसम ने अचानक करवट लिया। उत्तराखंड से हिमाचल तक ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी ने खूबसूरत नजारा पेश किया है। बद्रीनाथ के पास 18,000 फीट की ऊंचाई पर देवताल बर्फ से पूरी तरीके से ढक चुका है, तो चंबा का साच पास भी सफेद चादर में नजर आ रहा है। लेकिन इन मनमोहक तस्वीरों के बीच मौसम विभाग ने बारिश, तेज हवाओं और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है।
5: चोटियों पर मौसम अपना रंग बदल रहा है, कहीं आसमान से गिरती बर्फ तो कहीं बारिश की फुहार, और इस बदलते मिजाज के साथ पहाड़ों पर सर्दी ने भी दस्तक दे दी है। उत्तराखंड से हिमाचल तक ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, चंबा और हिमाचल के कई पहाड़ी इलाकों में सफेदी छा गई है। ताजा हिमपात के बाद तापमान तेजी से नीचे गया है और ठिठुरन बढ़ गई है। बद्रीनाथ धाम से करीब 52 किलोमीटर दूर देवताल से भारत चीन सीमा के करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद देवताल 4 से 5 फीट बर्फ में ढक गया है। चोटियां हो, रास्ते हो या आसपास का इलाका, नजर जहां तक जाती है सिर्फ सफेद रंग दिखाई देता है। बद्रीनाथ ही नहीं बल्कि हिमाचल के चंबा में 14,500 फीट की ऊंचाई वाला साचपास भी बर्फ से ढक गया है। मंगलवार शाम शुरू हुआ हिमपात देर रात तक जारी रहा, जिसके बाद पूरा इलाका सफेद नजर आया। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में 6 से 8 अक्टूबर जबकि हिमाचल और उत्तराखंड में 5 से 10 अक्टूबर तक बारिश, गरम चमक और तेज हवाओं का अलर्ट दिया है। ऊंची चोटियों पर हिमपात की भी संभावना है। ऐसे में लोग पहाड़ों की खूबसूरती देखने निकल रहे हैं, तो सिर्फ नज़ारे ही नहीं तैयारियां भी साथ रखें। रवाना होने से पहले मौसम का हाल जानें, प्रशासन की गाइडलाइन देखें और रास्तों की स्थिति जरूर जांच लें, क्योंकि पहाड़ों पर बदलता मौसम खूबसूरत जरूर है लेकिन उतनी ही वहाँ सतर्कता भी जरूरी है। चमोली से कमल एलसलोडे, चंबा से विशाल आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने के साथ पहाड़ों पर सर्दी भी बढ़ गई है। चमोली की ऊंचाई वाले इलाकों में तो बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट महसूस की गई है। बद्रीनाथ धाम में भी ठंड के बीच श्रद्धालुओं की आवाजाही लगातार जारी है। वहीं पर मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है। देखिए पहाड़ों पर बदलते मौसम और बर्फ की खूबसूरत तस्वीरें।
6: मौसम ने करवट ली तो चमोली की ऊंची चोटियों का रंग भी बदल गया। हल्की बर्फबारी के बाद पहाड़ों पर सफेदी की खूबसूरत परत नजर आने लगी। हेमकुंड साहिब में बर्फबारी ने पूरे इलाके की तस्वीर बदल दी। छत से लेकर आसपास के रास्तों तक बर्फ की सफेदी नजर आ रही है। शांत पहाड़ों के बीच ये नजारा बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है।
7: चमोली में मौसम ने करवट बदल दी है। लगातार जोरदार बारिश इस समय पूरे जनपद में देखने को मिल रही है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, जोशीमठ और चमोली के तमाम जगहों पर इस समय बारिश और ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी का दौर देखने को मिल रहा है। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में बर्फबारी तो निचली जगहों पर बारिश के साथ ही ठंड हो रही है।
6: चमोली में मौसम के इस बदले मिजाज का असर अभी आगे भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि मौसम विभाग पहले ही वीकेंड पर बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर चुका है। यानी वीकेंड पर पहाड़ों में ठंड का असर और बढ़ सकता है। बद्रीनाथ धाम में भी बारिश के बाद ठंड का असर और बढ़ गया है। पहाड़ों पर बदलते मौसम का ये रंग श्रद्धालुओं को भी अलग एहसास दे रहा है।
7: इस समय जो बद्रीनाथ धाम की यात्रा है वो लगातार चरम पर चल रही है। गाड़ियों की कतार हर तरफ देखने को मिल रही है। ऐसे में यात्रा भी चल रही है, मौसम भी बदल रहा है, ठंड के बीच भी लगातार उत्साह जो है श्रद्धालुओं का बना हुआ है। ऐसे में मौसम विभाग का पूर्वानुमान जो है 10 अक्टूबर तक लगातार बारिश और बर्फबारी का दौर पहाड़ी ऊंची चोटियों पे देखने को मिलेगा।
6: वहीं हवाओं के बीच बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। दर्शन के लिए करीब 2 से 3 किलोमीटर लंबी कतार लग रही है, लेकिन ठंड भी भक्तों का उत्साह कम नहीं कर पा रही। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आती हैं।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है, जो हमें अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
10: गुड न्यूज टुडे।
5: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है।
11: देश देख रहा है अच्छी खबरें, गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
5: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
9: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं। अविश्वास में विश्वास बसता है,
10: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
11: गुड न्यूज टुडे।
8: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
4: उड़ीसा के की आर्मी मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज 30 देशों के 32 ऑब्जर्वर ने अभ्यास में लिया हिस्सा। 9 अक्टूबर को दलित प्रेरणा स्थल पर कांशी राम के परिनिर्माण दिवस पर नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन, एडवाइजरी जारी। गया जी में मनाई गई पितृ दीपावली, पिंडदान करने आए लोगों ने अपने पितरों के नाम से दीप जलाकर देवघाट को किया रोशन। कैनेडियाई लेखिका एन कार्सन को मिला 2026 का साहित्य नोबेल पुरस्कार, चर्चित किताबों में द ब्यूटी ऑफ द हस्बैंड शामिल। चारधाम यात्रा के दूसरे चरण में बन रहे हर दिन नए रिकॉर्ड्स, बद्रीनाथ में अब तक 19,13,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं का बना नया रिकॉर्ड।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय वायुसेना की। इंडियन एयरफोर्स आज अपना 94वां स्थापना दिवस मना रही है। इस खास मौके पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में शानदार आयोजन हुआ, जहां पर हमारे वायु वीरों ने अपना दमखम दिखाया। गाजियाबाद में हिंडन की जमीन पर शानदार सेरेमोनियल परेड हुई, तो वहां से कोई 500 किलोमीटर दूर जोधपुर के आसमान में वायु वीरों ने अपने पराक्रम का प्रदर्शन दिखाया। जोधपुर में मेहरानगढ़ किले के ऊपर से जब भारतीय वायुसेना के जांबाज गुजरे तो वो नजारा अद्भुत था। तो चलिए आपको दिखाते हैं भारत के वायु वीरों ने इस खास दिन को दो अलग अलग शहरों में कितने शानदार अंदाज में मनाया।

ये ताकत है हमारे आसमान के निगहबानों की। ये शक्ति है भारत के भाल पर अपने शौर्य से तिलक लगाने वाले वायु वीरों की। ये उड़ान है 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के सीने में धड़कते दिलों की, जो आज एक स्वर में कह रहे हैं नभः स्पृशं दीप्तम्। गीता के 11वें अध्याय का ये श्लोक भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है, जिसका अर्थ है गौरव के साथ आसमान को छूना। पिछले 94 सालों से यही तो करती आ रही है इंडियन एयरफोर्स। भारतीय वायुसेना पिछले 9 दशकों से देश के आसमान में एक ताकतवर प्रहरी की भूमिका निभाती आई है। हिंदुस्तान ये जानता है कि जब तक उसके आसमान पर इन वायु वीरों की नजरें टिकी हैं, तब तक देश की धरती को कोई बुरी नजर छू भी नहीं सकती। एयरफोर्स के इसी जज्बे को सलाम करते हुए हर 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। आज गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर वायुसेना के 94वें स्थापना दिवस का भव्य समारोह हुआ। हिंडन एयरबेस पर आज ये गौरवशाली राष्ट्रीय उत्सव बेहद धूमधाम से मनाया गया।

0: मौके पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने खुली जीप में सवार होकर भव्य सेरेमोनियल परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ और नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन भी मौजूद रहे। इसके साथ ही वायुसेना के कई पूर्व और वर्तमान प्रमुख और वरिष्ठ सैन्य कमांडर्स ने भी इस गौरवशाली समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम का आगाज ध्वज फ्लाईपास्ट से हुआ, जिसमें MI-17 1B हेलीकॉप्टर्स ने आसमान में तिरंगा और वायुसेना के ध्वज के साथ फ्लाईपास्ट किया। कार्यक्रम की शुरुआत में एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने देश की सेवा में अदम्य साहस दिखाने और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए वायु योद्धाओं को वीरता पुरस्कार और विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किए। इस मौके पर उन्होंने वायुसेना के स्वर्णिम इतिहास और देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले महावीरों को याद किया।
1: मैं आज इस दिन को स्मरण और आत्मचिंतन के करने के अवसर के रूप में देखता हूं। आज हमें याद करना होगा वो कसम जो हमने एयरफोर्स की वर्दी पहनते समय खाई थी। याद करें इस गौरवशाली सेना का सफर, हमने कहां से शुरुआत की और आज हम कहां खड़े हैं। याद कीजिए अपने पूर्वजों को जिनके कारण वायुसेना आज इतनी सुदृढ़ है, और याद कीजिए उन सब वीरों और वीरांगनाओं को जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। ये स्मृतियां हमें राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को सही तरह से निर्वहन करने की प्रेरणा देंगी।
0: साथ ही आगाज हुआ वायुसेना दिवस की शानदार सेरेमोनियल परेड का, जिसका शुभारंभ इस बार नारी शक्ति के शंखनाद से हुआ। इस बार परेड का मुख्य आकर्षण था एयर वॉरियर ड्रिल टीम की टीम शक्ति का शानदार राइफल ड्रिल प्रदर्शन। इसका नेतृत्व पहली बार महिला वायुसेना कर्मियों ने किया। जवानों ने बिना किसी कमांड के 303 राइफल्स के साथ बेहद कठिन और सटीक मूव्स दिखाए। इसी तरह वायुसेना दिवस के इतिहास में पहली बार ड्रमर्स ड्रिल टीम की प्रस्तुति को भी शामिल किया गया था, जिन्होंने अपनी थाप से पूरे एयरबेस को देशभक्ति के जोश से भर दिया।

0: इसके बाद हिंडन के आसमान पर आधुनिकता और इतिहास का संगम नजर आया। टाइगर मॉथ एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरकर वायुसेना के गौरवशाली अतीत की याद दिलाई। आपको बता दें, इस बार वायुसेना दिवस की परेड अचूक, अभेद्य और सटीक थीम पर आधारित थी। लगातार दूसरे साल हिंडन में हुए इस आयोजन में ट्रेडिशन, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी और फ्यूचर की प्लानिंग का बेजोड़ संगम देखने को मिला। हिंडन की जमीन पर स्टैटिक डिस्प्ले में मौजूद आकाश, ब्रह्मोस, तेजस और रफाल ने आज की वायुसेना के पराक्रम और सामर्थ्य की नजीर पेश की। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना ने अपने 94वें स्थापना दिवस को केवल गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे राजस्थान के जोधपुर में चल रहे मल्टी कंट्री हवाई युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2026 की दहलीज तक पहुंचा दिया। इन दिनों जोधपुर के आसमान पर तरंग शक्ति 2026 युद्धाभ्यास में भारत की हवाई ताकत के साथ साथ दुनिया के चुनिंदा मित्र देशों का तालमेल खूब नजर आ रहा है। यहाँ वायुसेना दिवस के मौके पर इंडियन एयरफोर्स की प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबेटिक टीम स्कैट ने आसमान में केसरिया, सफेद और हरे रंग के धुएं के साथ तिरंगा फॉर्मेशन बनाया। इसके अलावा उन्होंने हवा में डायमंड, तेजस और वाई जैसे सिग्नेचर फॉर्मेशंस बनाकर अपनी अचूक और अद्भुत सटीकता का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही स्वदेशी एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स से सजी सारंग टीम के 5 हेलीकॉप्टर्स ने हवा में एक साथ क्रॉसओवर और बेहद करीबी साहसिक पैंतरे दिखाकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। इस तरह जहां हिंडन में पारंपरिक परेड और स्वदेशी सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन हुआ, वहीं जोधपुर में भारतीय वायुसेना ने तरंग शक्ति युद्धाभ्यास के दौरान आई इस वर्षगांठ को इस एयर शो के जरिए और खास बना दिया। 94वें वायुसेना दिवस के मौके पर इंडियन एयरफोर्स ने इस समारोह, परेड और एयर शो के जरिए अपनी ताकत, अनुशासन, आत्मनिर्भरता और स्वर्णिम इतिहास के रंगों से हिंडन की जमीन और जोधपुर के आसमान को सजा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गाजियाबाद में आज वायुसेना दिवस का एयर शो नहीं हुआ और जोधपुर में तरंग शक्ति युद्धाभ्यास के बीच ही इस दिन को खास बनाया गया। लेकिन वायुसेना दिवस का समारोह अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अब बारी है वायुसेना दिवस के वाराणसी चैप्टर की। गाजियाबाद में परेड और ग्राउंड डिस्प्ले के बाद अब एयरफोर्स जनता के लिए बड़ा और मुख्य एयर शो वाराणसी में करने वाली है। इतिहास में ये पहली बार होगा जब वायुसेना दिवस का मेगा एयर शो वाराणसी में गंगा नदी के ऊपर किया जाएगा। देखिए, 24 से 26 अक्टूबर के बीच वाराणसी में एयर शो और फ्लाईपास का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 25 अक्टूबर को मुख्य एयर शो का आयोजन होगा। बताया जा रहा है कि एयर शो के दौरान वाराणसी में 80 घाट से लेकर नमो घाट तक गंगा नदी के ऊपर एयरफोर्स के विमान करतब दिखाते हुए नजर आएंगे। मेगा एयर शो में 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर शामिल होंगे। राफेल, तेजस और सूर्यकिरण एरोबेटिक्स टीम आसमान में जांबाजी का अद्भुत प्रदर्शन करेंगी। काशी के आध्यात्मिक पहचान को दर्शाने के लिए आसमान में विशेष त्रिशूल फॉर्मेशन की भी फॉर्मेशन बनाया जाएगा। सुखोई, राफेल और तेजस जैसे आधुनिक फाइटर जेट्स मिलकर इस डिस्प्ले को आकार देंगे। बताया जा रहा है कि ये एयर शो जो है लगभग 90 मिनट का होगा और 24 से 26 अक्टूबर के बीच रोजाना 12 बजे के करीब इसे आयोजित किया जाएगा। नमो घाट से लेकर 80 घाट के बीच गंगा किनारे लाखों लोग इस नजारे को लाइव देख सकेंगे। शानदार भविष्य और उजले वर्तमान के झलक के बाद अब चलते हैं स्वर्णिम इतिहास की ओर। भले ही ऑपरेशन सिंदूर हमारी वायुसेना के पराक्रम का सबसे ताजा उदाहरण है, लेकिन यह भी सच है कि आजाद भारत के पहले युद्ध से लेकर अब तक लड़े गए सभी युद्धों में इंडियन एयरफोर्स ने अहम भूमिका निभाई है। खासतौर पर 1971 और फिर 1999 के करगिल वॉर में हमारी वायुसेना ने आर्मी के साथ मिलकर पाकिस्तान को युद्ध में घुटनों पर ला दिया था। आइए आपको दिखाते हैं स्वर्णम इतिहास की वही यादें जिन्हें देखकर आप गर्व से भर उठेंगे।

0: आसमानों के रक्षक हैं, राष्ट्र के अरमानों के संरक्षक हैं। चाहे वो आसमान की अनंत ऊंचाइयां हों या फिर चुनौतियों की असीम गहराइयां, भारत के वायु वीरों के शौर्य के सामने दुनिया का कोई दुश्मन टिक नहीं सकता। जब जब शत्रु के कपट ने मातृभूमि को मैला करने का दुस्साहस किया, भारतीय वायुसेना ने तब तब अपने शौर्य और साहस से दुश्मन के इरादों को राख में बदल दिया। आजाद भारत के पहले युद्ध से लेकर कारगिल की लड़ाई और ऑपरेशन सिंदूर तक भारत के वायु वीरों ने हर मोर्चे पर अहम भूमिका निभाई है।
1: आजादी के तुरंत बाद पाकिस्तान ने अपने कबाइलियों को और रजाकारों को पाकिस्तान आर्मी के प्रोटेक्शन में कश्मीर में घुसाने की कोशिश की। ऐसे में इंडियन एयरफोर्स को तुरंत एक्टिव होना पड़ा। हमारी एयरफोर्स के जो डकोटा विमान थे, उन्होंने बखूबी दिल्ली से और जम्मू से इंडियन आर्मी के ट्रूप्स को एयरलिफ्ट करके श्रीनगर तक पहुंचाया। इसी तरह से इंडियन एयरफोर्स के जो फाइटर विमान थे उस वक्त, वापिती, लाइसेंडर, इन्होंने लगातार जो कबेली थे या जो रजाकार थे उनके पोस्ट पर हमला किया और उनको मजबूर किया कि वह भारत की भूमि छोड़कर पीर पंजाल के उस तरफ पाकिस्तान लौट जाएं।
0: भारतीय वायुसेना के पराक्रम की पहली परख तब हुई जब आजाद हिंदुस्तान ने अपना पहला युद्ध लड़ा 78 साल पहले 1947 के अक्टूबर महीने में, जब पाकिस्तान के कबायली लड़ाकों ने जम्मू और कश्मीर राज्य की सीमा को पार करने का दुस्साहस किया था। तब भारतीय वायुसेना की नंबर 12 स्क्वाड्रन ने पालम से पहली सिख रेजिमेंट की बटालियन को एयरलिफ्ट करके श्रीनगर की कठोर और धूल मिट्टी भरी हवाई पट्टी पर उतारने का चुनौती भरा काम किया था। इसके एक सप्ताह के भीतर ही वायुसेना के नंबर 7 स्क्वाड्रन के टेम्पेस्ट वायुयान शिरतांग की लड़ाई में निर्णायक भूमिका में आ गए और वहां घुसपैठियों को आगे बढ़ने से रोक दिया गया।
1: वायुसेना का गठन आज ही के दिन यानी 8 अक्टूबर को 1932 के दिन हुआ था। तब से लेके अब तक वायुसेना काफी सारे युद्धों में भाग ले चुकी है, जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध। उसके बाद जैसे ही देश आजाद हुआ तो 1947-48 का जम्मू एंड कश्मीर ऑपरेशन, जिसमें हमारी वायुसेना ने पाकिस्तान के विरुद्ध एक्टिव रोल अदा किया। 1962 का युद्ध चीन के साथ, 1962 के युद्ध के दौरान पॉलिटिकल रीजन से यह डिसाइड किया गया कि वायुसेना की फाइटर और बॉम्बर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन वायुसेना की ट्रांसपोर्ट और हेलीकॉप्टर विंग्स ने बखूबी इंडियन आर्मी का साथ दिया। 1965 के जंग में इंडियन एयरफोर्स ने आगे बढ़ते हुए पश्चिम में पूरे बॉर्डर पर इंडियन आर्मी को क्लोज एयर सपोर्ट दिया।
0: के बाद पाकिस्तानी सेना ने 1965 में जम्मू कश्मीर पर कब्जे के लिए दूसरी बार हमला करने की हिमाकत की थी, लेकिन इस बार फिर उसे मुंह की खानी पड़ी। 1965 में भारतीय वायुसेना ने न केवल उसके लड़ाकू विमानों को मार गिराया बल्कि कई सैन्य बेसों को ध्वस्त कर दिया। हालांकि इस युद्ध में भारतीय वायुसेना को भी काफी नुकसान हुआ, लेकिन हमारे वीर जवानों ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाकर रख दी। इसके बाद तीसरा मौका 1971 में आया, जब पाकिस्तान के दुस्साहस ने एक बार फिर अपना सर उठाया। 3 दिसंबर 1971 को युद्ध की शुरुआत हुई और पाकिस्तानी वायुसेना ने पूरी प्लानिंग के साथ इंडियन एयरफोर्स के श्रीनगर, अमृतसर और पठानकोट एयरबेसों पर हमला बोल दिया। उस वक्त पाकिस्तान को यह एहसास नहीं था, लेकिन आने वाले 2 हफ्ते उसकी कुंडली पर बेहद भारी पड़ने वाले थे, क्योंकि उसके बाद भारतीय वायुसेना अपने पूरे दमखम के साथ पाकिस्तानी बेसों को नेस्त नाबूद करने में जुट गई। उन्नीस 1971 के युद्ध में भारतीय वायुसेना के विमानों ने बांग्लादेश के ऊपर 12,000 से ज्यादा उड़ानें भरी थी। भारतीय वायुसेना ने इस लड़ाई में पाकिस्तान के 94 विमानों को मार गिराया था। चाहे लोंगेवाला की लड़ाई हो या पूर्वी पाकिस्तान में गवर्नर हाउस पर बमबारी, बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराने में भारतीय वायुसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो वहीं भारतीय वायुसेना की मदद से भारत की थल सेना ने 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। दुनिया के सबसे दुर्गम युद्ध क्षेत्र में चलाए गए इस ऑपरेशन के जरिए भारत के जांबाजों ने पाकिस्तान के जबड़े से सियाचिन को छीन लिया था। इस ऑपरेशन के बाद भारत के कब्जे में पूरा का पूरा सियाचिन ग्लेशियर आ गया था। तब से लेकर आज तक सियाचिन की चोटियों पर भारत का परचम लहरा रहा है।

0: 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर कोड नेम के साथ पाकिस्तानी सेना के खिलाफ ऐसा विध्वंसक अभियान चलाया था जिसके जख्म आज तक पाकिस्तान भुला नहीं पाया है।
1: में जब कारगिल का युद्ध हुआ तो उस वक्त हमारी एयरफोर्स को यह रोल दिया गया कि हम तुरंत आगे बढ़कर पाकिस्तान की जो ट्रुप्स हैं, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जो डगआउट पोजीशन है, गन पोजीशन है, उन पर बमबारी करें। इसके लिए MiG-21 ने बेहतरीन हाई ऑल्टीट्यूड बॉम्बिंग की। सबसे बड़ी बात है कि हमारे दूसरे विमान जैसे कि MiG-27 और Mirage-2000 ने बहुत ही एक्यूरेसी के साथ लेजर गाइडेड बॉम्ब गिराए जो महज प्लस माइनस 10 मीटर की एक्यूरेसी से पाकिस्तान आर्मी के जो कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट थे, अंडरग्राउंड बंकर्स थे, उसके अंदर घुसकर फटे। कुल मिलाकर नतीजा ऐसा हुआ कि इंडियन एयरफोर्स के हमलों की वजह से कई जगह पर NLI यानी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के यहां से लगातार पाकिस्तान में फोन हो रहे थे उनके GHQ में कि इंडियन एयरफोर्स के जहाज लगातार उन पर हमला कर रहे हैं।
0: भारत की आर्मी और एयरफोर्स के पराक्रम ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया और आखिरकार 26 जुलाई को भारत की जीत हुई। इसके बाद भी जब जब मौका आया भारतीय वायुसेना ने देश के दुश्मनों पर अपने पराक्रम से ऐसी करारी चोट की कि आतंक के सपोले अपने बिलों समेत जमीन के कई गज नीचे दफन हो गए और भारत के शत्रु बिलबिला के रह गए। बालाकोट के जरिए भारतीय वायुसेना ने पुलवामा के 40 सपूतों की शहादत का बदला लिया था। 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 विमान रात के अंधेरे में नियंत्रण रेखा को पार कर पाकिस्तान के पूर्वोत्तर इलाके में खैबर पख्तूनख्वा पहुंचे और बालाकोट में जैशे मोहम्मद की ट्रेनिंग कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। बालाकोट स्ट्राइक में बड़ी संख्या में जैश ए मोहम्मद के आतंकी, उनको ट्रेनिंग देने वाले संगठन के बड़े कमांडर और फिदायीन हमलों के लिए तैयार हो रहे आतंकी मारे गए थे। और भारतीय वायुसेना के साहस की महागाथा का सबसे ताजा अध्याय सिंदूरी शौर्य की स्याही से लिखा गया। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारतीय वायुसेना के पराक्रम की वो तस्वीर देखी जिसकी कल्पना भारत के शत्रुओं ने अपने दुस्साहस भरे सपनों में भी नहीं की थी।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन एयरफोर्स को दो काम दिए गए थे। एक, पाकिस्तान में घुसकर वहां जो आतंकवादियों के टेरर कैंप्स हैं उस पर हमला करना। दूसरा, पाकिस्तान एयरफोर्स के 11 चिन्हित यानी आइडेंटिफाइड रनवेज, उनके जो एयर बेसिस में हैंगर्स थे और सबसे बड़ी बात उनके जो रेडार्स थे उस पर हमला करना। इन दोनों कार्रवाइयों को इंडियन एयरफोर्स ने बखूबी अंजाम दिया। सिंदूर के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने लॉन्ग रेंज S-400 जमीन से हवा पे मार करने वाली मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए 300 किलोमीटर की दूरी से पाकिस्तान एयरफोर्स के एक अवाक यानी एयरबॉर्न कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भी नेस्तनाबूद किया।
0: समझिए कि चाहे देश के लिए शत्रु से लोहा लेना हो या फिर आपदा के समय राहत का फरिश्ता बनकर मदद पहुंचानी हो, हर मौके पर भारत के वायुवीर देश के लिए अपने फर्ज को शिद्दत से निभाते आए हैं। राष्ट्र रक्षा और राष्ट्र सेवा के मोर्चे पर हमारी वायु सेना के योगदान से जुड़े उन्हीं स्वर्णिम पलों को देश आज फिर याद कर रहा है। वायु सेना दिवस के मौके पर हिंदुस्तान के वायु योद्धाओं को गुड न्यूज़ टुडे का सलाम।

0: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मोड़ धोड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: 11 अक्टूबर से नवरात्र का आरंभ हो रहा है, इसलिए दुर्गा पूजा को लेकर पूरे देश में जोर शोर से तैयारियां तमाम चल रही हैं। मूर्ति बनाने वाले कलाकार मां की भव्य प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। अपने सधे हुए हाथों से कारीगर दुर्गा प्रतिमाओं को उत्सव के लिए तैयार कर रहे हैं।

0: देश भर में शक्ति उत्सव की तैयारियां जोरों पर है। मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा गढ़ी जा रही है। मां की कोई मूर्ति तैयार होने के बेहद करीब है तो किसी को अभी आकार दिया जा रहा है। कुछ मूर्तियों में रंग भरे जा रहे हैं। मूर्तिकार छोटी बड़ी हजारों मूर्तियों को गढ़ने और तराशने में व्यस्त हैं ताकि वक्त पर मूर्तियों की डिलीवरी की जा सके। देश के अलग अलग हिस्सों में मूर्तिकार दिन रात लगकर प्रतिमाओं को तैयार करने में जुटे हुए हैं। कुछ परिवार और मूर्तिकार ऐसे भी हैं जो सालों से माँ दुर्गा की प्रतिमाएं तैयार कर रहे हैं। इन प्रतिमाओं का पारंपरिक स्वरूप ही इनकी खास पहचान है। शुरुआती दौर में बड़ी संख्या में कारीगर प्रतिमाओं का ढांचा बनाने और मिट्टी लगाने का काम करते हैं। इसके बाद प्रतिमाओं की फिनिशिंग, रंगाई और श्रृंगार का काम शुरू होता है। रायपुर की इस कार्यशाला में माँ की हर प्रतिमा में कला, पारंपरिक शैली की एक अनूठी और गहरी छाप दिखती है। ऑर्डर के हिसाब से ही माँ का स्वरूप तैयार किया जा रहा है, जिसमें मूर्तिकार की कल्पना और कार्यकुशलता की छाप भी देखने को मिल रही है। दुर्गा पूजा के आरंभ होने में अब बहुत कम समय रह गया है, इसीलिए कारीगर तेजी से काम पूरा करने में जुटे हुए हैं। मूर्ति निर्माण के पीछे की उनकी महीनों की मेहनत बस इस बात पर टिकी है कि भक्तों को उनकी बनाई मूर्ति पसंद आए। कलाकारों और मूर्तिकारों की इस अथक मेहनत ने उत्सव के माहौल को और भी खास बना दिया है। यही कारण है कि देश के कोने कोने में दुर्गा पूजा का उत्सव चरम पर पहुंच चुका है। आने वाले दिनों में इसमें और इजाफा होने की उम्मीद है। महेंद्रगढ़ से धीरेन्द्र विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
2: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
5: अविश्वास में विश्वास बसता है,
2: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से
6: ओडिशा के पारादीप में इंडियन नेशनल कोस्ट गार्ड ने की 12वीं नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज, 30 देशों के 32 ऑब्जर्वर ने अभ्यास में लिया हिस्सा। अक्टूबर को दलित प्रेरणा स्थल पर कांशी राम के परिनिर्माण दिवस पर नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन, एडवाइजरी जारी। गया जी में मनाई गई पितृ दीपावली, पिंडदान करने आए लोगों ने अपने पितरों के नाम से दीप जलाकर देवघाट को किया रोशन। कैनेडियाई लेखिका एन कार्सन को मिला 2026 का साहित्य नोबेल पुरस्कार, चर्चित किताबों में द ब्यूटी ऑफ द हस्बैंड शामिल। चार धाम यात्रा के दूसरे चरण में बन रहे हर दिन नए रिकॉर्ड्स, बद्रीनाथ में अब तक 19,13,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं का बना नया रिकॉर्ड।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं दुर्गा पूजा की। बस अब थोड़ा सा इंतजार है, 11 अक्टूबर से देश में शक्ति पूजा का आरंभ होने जा रहा है और उसके लिए भव्य पंडालों और दिव्य प्रतिमाओं का निर्माण तेजी से चल रहा है। आज आपको लिए चलेंगे कोलकाता, जहां पर मशहूर पार्क स्ट्रीट इलाके में 300 साल बाद पहली बार दुर्गा पूजा होने जा रही है और इसके लिए भव्य पंडाल बनाए जा रहे हैं। दुर्गा पूजा में इस बार सरकार ने क्या नए नियम बनाए हैं, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही आपको लिए चलेंगे मिनी बंगाल कहे जाने वाले चितरंजन पार्क में और वहां बन रहे भव्य पंडाल की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही गुजरात में गरबा की तैयारियां तमाम हैं, वो दिखाएंगे। मशहूर अंगारा रास के लिए टीमें अभी से रिहर्सल करने में जुटी हुई हैं। शोलों के दरमियान कैसे होता है ये डांस आपको दिखाएंगे और आखिर में दिल्ली में मंचित होने जा रहे डांस ड्रामा श्री राम की टीम से भी मिलाने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं मां दुर्गा के स्वागत की तैयारियों से। दिल्ली से अमरावती तक और चंडीगढ़ से लेकर कोलकाता तक भव्य पंडाल आकार ले रहे हैं और देवी की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। लेकिन इसके बीच सबसे ज्यादा चर्चा कोलकाता के पार्क स्ट्रीट की है, जो मशहूर तो क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए है, लेकिन 370 साल बाद वहां अब महाशक्ति की आराधना होने जा रही है और उसके लिए भव्य पंडाल बनाया जा रहा है। इसी तरह दिल्ली के चितरंजन पार्क में पंडालों को सजाने का काम तेजी से चल रहा है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक पूरे देश में मां के आगमन का इंतजार है। रिपोर्ट देखिए।

0: गया से पहले पंडाल का उद्घाटन नहीं किया जाएगा। ये तो हुई बंगाल की बात, अब चलिए आपको मिनी बंगाल यानी दिल्ली के चितरंजन पार्क लेकर चलते हैं, जहां भव्य पंडालों को आखिरी रूप दिया जा रहा है। चितरंजन पार्क के बड़े पंडालों में एक मेला ग्राउंड का ये पंडाल भी है, जहां पर हर साल के ही जैसा इस साल भी भव्य और खूबसूरत पंडाल बनाया जा रहा है।
1: दिल्ली के चितरंजन पार्क के मेला ग्राउंड में मौजूद है, जहां पर बड़ा पंडाल बनाया जाता है और भव्य उत्सव नवरात्रों के दौरान मनाया जाता है। भव्य माता की प्रतिमा स्थापित की जाती है और इसको लेकर के यहां पर तैयारियां शुरू है। आप देख सकते हैं दुर्गा पूजा समिति सीआर पार्क मेला ग्राउंड है और इसी के तौर पे कई वर्षों से यहाँ मनाया जाता है। 50 साल इस पूजा का हो चुका है और इस बार 51वां मनाया जाएगा। और देख सकते हैं किस तरीके से भव्य जो पंडाल है वो यहाँ पर बनाने का कार्य आपको शुरू हो गया है।
0: एक तरफ पंडाल सजाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ माँ की प्रतिमा भी तैयार हो रही है, तो कहीं देवी दुर्गा की प्रतिमाओं का आगमन भी होने लगा है। झांसी में नवदुर्गा उत्सव समिति की ओर से देवी की ये सुंदर प्रतिमा झोकनबाग शहीद पार्क में स्थापित होगी। बताया गया कि समिति पिछले 42 वर्षों से लगातार माँ दुर्गा की स्थापना और नवरात्रि उत्सव का आयोजन करती आ रही है। समय बदला, पीढ़ियां बदली, लेकिन देवी दुर्गा की आराधना और झोकनबाग शहीद पार्क की ये परंपरा आज भी उसी उत्साह के साथ जारी है।
2: नवदुर्गा उत्सव समिति झोकनबाग शहीद पार्क सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। इधर पे शहीद पार्क पे हम लोग माता रानी को विराजमान करते हैं पिछले 42 साल से और हमारी मूर्ति जो है वो सागर से आई है, विश्वकर्मा आर्ट से।
0: शक्ति उपासना के इस पर्व को लेकर रौनक हर तरफ है। ये तस्वीर महाराष्ट्र के अमरावती की है, जहां विदर्भ की कुलस्वामिनी के रूप में प्रसिद्ध अम्बा माता का मंदिर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा है। मंदिर की साफ सफाई और रंग रोगन के साथ माता के सोने चांदी के आभूषणों को भी चमकाया गया है।

0: विदर्भ की कुलस्वामिनी अमरावती की माँ अम्बे के इस मंदिर में, जहाँ पर आप देख सकते हो कि मंदिर को जो है पूरी तरीके से लाइटिंग से सजाया है, यहाँ पर पूरी तरीके से रोशनाई शुरू कर दी है और अब नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि उत्सव को बस कुछ ही दिन बचे हैं, उससे पहले जो है हर देवी का जो मंदिर है वो अब सजना शुरू हुआ है। और
1: पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, देश के हर हिस्से में शक्ति पूजा की तैयारी है, दुर्गा पूजा की धूम है और श्रद्धालु माँ के आगमन की प्रतीक्षा में हैं। दिल्ली से आशुतोष कुमार और अमरावती से धनंजय साबली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: नवरात्रि आने में अब कुछ ही वक्त शेष रह गया और गुजरात में गरबा की धूम शुरू हो चुकी है। कहीं जलती मशालों के बीच अंगारा रास की तैयारियां हैं, तो कहीं पर रंग बिरंगे परिधानों में गरबा प्रेमी कदमताल का अभ्यास कर रहे हैं। जामनगर में 70 साल से ज्यादा पुरानी अंगारा रास की परंपरा आज भी कायम है, जहां आग के बीच कलाकार अपनी आस्था और साहस दिखाते हैं। वहीं वडोदरा और राजस्थान के पाली में गरबा की नई पीढ़ी को अपने रंग में रंग रहे हैं। रिपोर्ट देखिए।

अंगारों के बीच थिरकते कदम, हाथों में सुलगती मशालें, चेहरे पर आस्था और दिल में माँ अम्बे का नाम। ये नजारा है गुजरात के जामनगर का, जहाँ नवरात्रि से पहले ही भक्ति का रंग गहरा होने लगा है। जामनगर के रणजीत नगर में पटेल युवक गरबा मंडल पिछले 70 साल से ज्यादा वक्त से अंगारा रास की इस अनोखी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। आधुनिक गरबा के दौर में भी यहाँ सदियों पुरानी साहसिक कला का जुनून बरकरार है। महीनों पहले से युवा कलाकार इसकी तैयारी में जुट जाते हैं, कदमों की लय साधते हैं और आग के बीच संतुलन का कठिन अभ्यास करते हैं।

0: हमारा यहाँ का फेमस रास है वो है मसाल रास है, और हम मसाल रास खेलते खेलते जो हमारा स्वस्तिक है वो बनाते हैं, और माता जी का शस्त्र बोलते त्रिशूल वो भी बनाते हैं, और गरबा के अंत में हम अंगारों पे खेलते हैं, और वो भी खुले पैर खेलते हैं, कोई लोशन या कुछ अप्लाई भी नहीं करते हैं, और ये हमारे ऊपर माता जी का आशीर्वाद है जो हमारे पैर में कुछ होता नहीं है, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और ये मसाला हम पिछले 25 सालों से खेल रहे हैं, और ये गरबा हमारा गरबा मंडल है जो ये पिछले 70 सालों से यहाँ पे कार्यरत है।
1: हाथों में जलती मशाले, चारों तरफ आग की लपटे, लेकिन चेहरों पर जरा भी डर नहीं। भक्ति में डूबे कलाकार जब रास की लय पर घूमते हैं तो लगता है जैसे आस्था ने आग पर भी जीत हासिल कर ली हो। जामनगर में अंगारा रास का एक और खास रूप भी देखने को मिलता है। श्री रंदल अंबिका कुमारिका गरबा मंडल स्वास्तिक के आकार में सुलगती लकीरों के बीच स्वास्तिक अंगारा रास की प्रस्तुति करता है। आग की तपिश के बीच गुजरते कलाकार अपनी श्रद्धा और साहस का अद्भुत मेल दिखाते हैं। और अब बात उस रंग की जिसके बिना गुजरात की नवरात्रि अधूरी मानी जाती है, गरबा। वडोदरा में विकसित भारत संकल्प गरबा की थीम पर भव्य प्री गरबा आयोजन हुआ। पारंपरिक परिधानों में सजे लोग संगीत की धुन पर घूमते घेरे और मां शक्ति की आराधना के साथ विकसित भारत 2047 का संदेश पूरे माहौल को खास बना गया।
2: वडोदरा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा गरबा का आयोजन किया जा रहा है, और यहाँ पे खूबी अच्छे और सच्चे मन से हम लोग माता जी की श्रद्धा से गरबे के लिए आए, और विकसित भारत थीम पे हमें बहुत ही गर्व है।
3: विकसित भारत पे आज यहाँ पे देख सकते हो काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पे यूनाइटेड वे ऑफ वडोदरा जो वर्ल्ड प्रसिद्ध है गरबा, जो आज यहाँ पर काफी जनसंख्या में लोग आए हुए हैं। सो आप देख सकते हो इतना अच्छा मैनेजमेंट है, बहुत अच्छा। और अतुल दादा तो हमारे सबके फेवरेट है, जो इतना वर्षों से सिंगिंग कर रहे, तो आप सब देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत है।
4: हम लोग रात्रि बिफोर नवरात्रि अतुल पुरोहित के साथ विकसित भारत की थीम पे यहाँ पे यूनाइटेड वे के ग्राउंड पे आज खेलने आए थे। आज का हमारा ये जो एनर्जेटिक एक्सपीरियंस है, जैसे आप सुन सकते हो बैकग्राउंड में किस हिसाब से चल रहा है, पीछे सब स्टूडेंट्स और वो सब विकसित भारत पे डांस और गरबा परफॉर्म कर रहे हैं।
1: रंग बिरंगी चनिया चोली, पारंपरिक केडिया कुर्ता, तालियों की गूंज और एक साथ पढ़ते कदम, वडोदरा महानगर पालिका के इस आयोजन में स्वच्छता, नारी शक्ति, सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्र निर्माण का संदेश भी जुड़ा रहा। लोगों के लिए प्रवेश निःशुल्क रखा गया, जिससे उत्सव में हर उम्र के लोगों की भागीदारी दिखी। गुजरात से निकलकर गरबा देश भर की धड़कन बन चुका है। इसका असर राजस्थान के पाली में भी साफ दिखाई दे रहा है। बच्चों से लेकर महिलाओं और जेंजी युवतियों तक हर कोई गरबा सीखने को लेकर उत्साहित है। मोबाइल और डीजे पर बजते संगीत के साथ कोरियोग्राफर नए स्टेप सिखा रहे हैं। इस बार बॉलीवुड अंदाज के मूव्स भी युवा पीढ़ी को खासा आकर्षित कर रहे हैं।
5: सिकली तो दो ताली, तीन ताली, हीच, डोडिया, ये सारे स्टेप्स किए जाते हैं। बट आज के जमाने के हिसाब से, आज की जेन ज़ी के हिसाब से, अगर हम लोग उसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफाई करके, थोड़ा सा बॉलीवुड स्टेप्स को मॉडिफाई करके डाल दे, तो उनको करने में भी मजा आता है, और उस तरीके से करते तो सब लोग एंजॉय भी करते हैं।
1: लेकिन गरबा सिर्फ नृत्य नहीं, ये माँ अम्बे से जुड़ने का एक जरिया भी है। बीच में जलता दीपक, चारों तरफ घूमते भक्त और हड़ताल के साथ बढ़ती श्रद्धा, 9 दिनों के उपवास और साधना के बीच गरबा का हर कदम शक्ति को समर्पित होता है। बदलते दौर में इसके अंदाज जरूर बदले हैं, लेकिन भाव वही है, माँ के प्रति समर्पण का, शक्ति की आराधना, संस्कृति की पहचान और उत्सव की उमंग गुजरात में साफ दिखाई दे रही है। राजस्थान से भरत भूषण जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: दिल्ली में इस दिवाली एक बार फिर से मंच पर भगवान राम की गाथा जीवंत होने जा रही है। करीब 7 दशक पुरानी परंपरा के तहत श्रीराम भारतीय कला केंद्र का मशहूर डांस ड्रामा श्रीराम इस साल अपने पारंपरिक स्वरूप में लौट रहा है। खास बात इसमें यह कि करीब 25 साल बाद इसकी प्रस्तुति में पुराने अंदाज, पारंपरिक वेशभूषा और मंच सज्जा को फिर से जगह दी गई है। चलिए इस लोकप्रिय डांस ड्रामा की टीम से आपको मिलवाते हैं।

0: श्रीराम भारती कला केंद्र के ड्रेस रिहर्सल में हैं हम, और फिलहाल हम बैक द स्टेज हैं। सीता जी तैयार हो रही हैं और किस तरह से वो खुद को सवार रही हैं ये हम देख पा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सारे आर्टिस्ट अपना मेकअप अपने आप करते हैं, उन्हें उनका रोल बताया जाता है, उस रोल की क्या डिमांड है, कैसा उन्हें दिखना है स्टेज पर, उसके हिसाब से वो खुद अपना मेकअप चूज करती हैं और ऐसा चुनती हैं कि हर बार बिल्कुल परफेक्ट दिखाई पड़ती हैं। अनुसुआ जी मेरे साथ में हैं, पेशे से टीचर हैं लेकिन सिर्फ रामलीला के लिए ब्रेक लिया है और यहाँ पर फिलहाल वो तैयार होती हुई दिखाई पड़ रही हैं।
1: जब भी माता सीता का नाम लिया जाता है सबसे पहली बात तो शक्ति का एक अनुभूति होती है अपने अंदर, और हम जैसे कि सर ने अभी बताया कि हम लोग मेकअप के द्वारा इसका हम लोग दर्शाते हैं, जैसे कि हम लोग आईब्रोज जो है, जो हमें शोभा जी ने सिखाया है कि आईब्रो को हम लोग किस तरीके से बनाते हैं ताकि जो पॉजिटिव रोल है वो कितना दूर दर्शकों तक समझ में आए कि दैट इज अ पॉजिटिव रोल।
0: राजकुमार जी मेरे साथ हैं, राम के गेटअप में हैं, पिछले 40 साल से श्री राम भारती कला केंद्र के साथ जुड़े हुए हैं और पिछले 30 साल से लगातार राम का रोल वो प्ले कर रहे हैं रामलीला में।
2: इसमें कोई शक नहीं, वाकई राम समा गए हैं, बट ये कि राम बनने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है। बट हमारे डायरेक्टर हैं शोभा दीपक सिंह पद्मश्री, उन्होंने काफ़ी हमें तुलसीदास रामायण और अपना वाल्मीकि रामायण बहुत रटाया है, क्योंकि हमारा जो बेस है वाल्मीकि और तुलसीदास रामायण के ऊपर है। तो कुछ वर्कशॉप हुई हमारे थिएटर की और कुछ संवाद की हुई कि कैसे आपको अभिनय करना है, क्योंकि हम लोग बोल नहीं रहे, ये हमारा अभिनय प्रधान है, तो अभिनय के थ्रू हमें मुद्रा एक्सप्रेशन इस पर काफ़ी काम करना पड़ा, जिसके लिए हमें वर्कशॉप देने पड़े। हमारे गुरु जी, हमारे जितने सीनियर हैं उन लोगों ने काफ़ी हमारा हेल्प किया।
0: रामलीला का सबसे शानदार करेक्टर आप किसे मानते हैं, किसे देखने के लिए आप घर से निकलकर स्टेज के पास तक जाते हैं, तो वो है रावण। बिना रावण रामलीला कुछ भी नहीं है, बिना रावण शायद राम का भी इतना चर्चा नहीं होती, और मेरे साथ साक्षात रावण मौजूद हैं, स्वपन मजूमदार सर इनका नाम है। सर जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है आपने बहुत ही कमाल की थी, कितने साल से आप कर रहे हैं?
3: मैं 2014 से कर रहा हूँ रावण। मैं बेसिकली 1994 से भारतीय कला केंद्र में हूँ। आई केम एज अ स्टूडेंट एंड देन मैंने कई साल लक्ष्मण का रोल किया और रावण का रोल मैंने 2014 से स्टार्ट किया।
0: ये 12वां साल है आपका रावण का रोल प्ले करते करते, अभी भी स्टेज पर जाने से पहले कुछ अंदर बटरफ्लाई होती है क्या?
3: सी, कलाकार जो होता है ना वो स्टेज के अंदर जाने के बाद राजा होता है, स्टेज के जब वो बाहर होता है वो एक नॉर्मल इंसान होता है। डर हर एक इंसान को होता है और दिन जो होता है ना वो हमेशा एक दिन जैसा नहीं होता है, तो जैसे दिन चेंज होता है ऐसे कलाकार भी अपने हिसाब से कुछ इम्प्लीमेंट करता है और कुछ छूट जाता है, तो डर तो होता ही है और बहुत ज़रूरी भी है ये डर होना।
4: खास कार्यक्रम में इतना ही, देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़ रही है न्यूज़ टुडे के साथ, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार। पहाड़ों पर मौसम ने अचानक करवट ली है, उत्तराखंड से हिमाचल तक ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी ने खूबसूरत नजारा पेश किया है। बद्रीनाथ के पास 18,000 फीट की ऊंचाई पर देवताल बर्फ से पूरी तरीके से ढक चुका है, तो चंबा का साच पास भी सफेद चादर में नजर आ रहा है, लेकिन इन मनमोहक तस्वीरों के बीच मौसम विभाग ने बारिश, तेज हवाओं और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है।
5: चोटियों पर मौसम अपना रंग बदल रहा है, कहीं आसमान से गिरती बर्फ तो कहीं बारिश की फुहार, और इस बदलते मिजाज के साथ पहाड़ों पर सर्दी ने भी दस्तक दे दी है। उत्तराखंड से हिमाचल तक ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, चंबा और हिमाचल के कई पहाड़ी इलाकों में सफेदी छा गई है। ताजा हिमपात के बाद तापमान तेजी से नीचे गया है और ठिठुरन बढ़ गई है। बद्रीनाथ धाम से करीब 52 किलोमीटर दूर देवताल से भारत चीन सीमा के करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद देवताल 4 से 5 फीट बर्फ में ढक गया है। चोटियां हो, रास्ते हो या आसपास का इलाका। नजर जहां तक जाती है सिर्फ सफेद रंग दिखाई देता है। बद्रीनाथ ही नहीं बल्कि हिमाचल के चंबा में 14,500 फीट की ऊंचाई वाला साचपास भी बर्फ से ढक गया है। मंगलवार शाम शुरू हुआ हिमपात देर रात तक जारी रहा, जिसके बाद पूरा इलाका सफेद नजर आया। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में 6 से 8 अक्टूबर जबकि हिमाचल और उत्तराखंड में 5 से 10 अक्टूबर तक बारिश, गरम चमक और तेज हवाओं का अलर्ट दिया है। ऊंची चोटियों पर हिमपात की भी संभावना है। ऐसे में लोग पहाड़ों की खूबसूरती देखने निकल रहे हैं, तो सिर्फ नज़ारे ही नहीं तैयारियां भी साथ रखें। रवाना होने से पहले मौसम का हाल जानें, प्रशासन की गाइडलाइन देखें और रास्तों की स्थिति जरूर जांच लें, क्योंकि पहाड़ों पर बदलता मौसम खूबसूरत जरूर है लेकिन उतनी ही वहाँ सतर्कता भी जरूरी है। चमोली से कमल एलसलोडे, चंबा से विशाल आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने के साथ पहाड़ों पर सर्दी भी बढ़ गई है। चमोली की ऊंचाई वाले इलाकों में तो बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट महसूस की गई है। बद्रीनाथ धाम में भी ठंड के बीच श्रद्धालुओं की आवाजाही लगातार जारी है। वहीं पर मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया है। देखिए पहाड़ों पर बदलते मौसम और बर्फ की खूबसूरत तस्वीरें।
6: मौसम ने करवट ली तो चमोली की ऊंची चोटियों का रंग भी बदल गया। हल्की बर्फबारी के बाद पहाड़ों पर सफेदी की खूबसूरत परत नजर आने लगी। हेमकुंड साहिब में बर्फबारी ने पूरे इलाके की तस्वीर बदल दी। छत से लेकर आसपास के रास्तों तक बर्फ की सफेदी नजर आ रही है। शांत पहाड़ों के बीच ये नजारा बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है।
7: चमोली में मौसम ने करवट बदल दी है। लगातार जोरदार बारिश इस समय पूरे जनपद में देखने को मिल रही है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, जोशीमठ और चमोली के तमाम जगहों पर इस समय बारिश और ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी का दौर देखने को मिल रहा है। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में बर्फबारी तो निचली जगहों पर बारिश के साथ ही ठंड हो रही है।
6: चमोली में मौसम के इस बदले मिजाज का असर अभी आगे भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि मौसम विभाग पहले ही वीकेंड पर बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर चुका है। यानी वीकेंड पर पहाड़ों में ठंड का असर और बढ़ सकता है। बद्रीनाथ धाम में भी बारिश के बाद ठंड का असर और बढ़ गया है। पहाड़ों पर बदलते मौसम का ये रंग श्रद्धालुओं को भी अलग एहसास दे रहा है।
7: इस समय जो बद्रीनाथ धाम की यात्रा है वो लगातार चरम पर चल रही है। गाड़ियों की कतार हर तरफ देखने को मिल रही है। ऐसे में यात्रा भी चल रही है, मौसम भी बदल रहा है, ठंड के बीच भी लगातार उत्साह जो है श्रद्धालुओं का बना हुआ है। ऐसे में मौसम विभाग का पूर्वानुमान जो है 10 अक्टूबर तक लगातार बारिश और बर्फबारी का दौर पहाड़ी ऊंची चोटियों पे देखने को मिलेगा।
6: वहीं हवाओं के बीच बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। दर्शन के लिए करीब 2 से 3 किलोमीटर लंबी कतार लग रही है, लेकिन ठंड भी भक्तों का उत्साह कम नहीं कर पा रही। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज टुडे।
13: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है। कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए।
4: ओडिशा के पारादीप में इंडियन नेशनल कोस्ट गार्ड ने की 12वीं नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज। 30 देशों के 32 ऑब्जर्वर ने अभ्यास में लिया हिस्सा। अक्टूबर को दलित प्रेरणा स्थल पर कांशी राम के परिनिर्माण दिवस पर नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन, एडवाइजरी जारी। गया जी में मनाई गई पितृ दीपावली, पिंडदान करने आए लोगों ने अपने पितरों के नाम से दीप जलाकर देवघाट को किया रोशन। कैनेडियाई लेखिका एन कार्सन को मिला 2026 का साहित्य नोबेल पुरस्कार। चर्चित किताबों में द ब्यूटी ऑफ द हस्बैंड शामिल। चारधाम यात्रा के दूसरे चरण में बन रहे हर दिन नए रिकॉर्ड्स। बद्रीनाथ में अब तक 19,13,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं का बना नया रिकॉर्ड।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला और आप देख रहे हैं जीएनटी स्पेशल। आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय वायुसेना की। इंडियन एयरफोर्स आज अपना 94वां स्थापना दिवस मना रही है। इस खास मौके पर गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस में शानदार आयोजन हुआ, जहां पर हमारे वायुवीरों ने अपना दमखम दिखाया। गाजियाबाद में हिंडन की जमीन पर शानदार सेरेमोनियल परेड हुई, तो वहां से कोई 500 किलोमीटर दूर जोधपुर के आसमान में वायुवीरों ने अपने पराक्रम का प्रदर्शन दिखाया। जोधपुर में मेहरानगढ़ किले के ऊपर से जब भारतीय वायुसेना के जांबाज गुजरे तो वो नजारा अद्भुत था। तो चलिए आपको दिखाते हैं भारत के वायुवीरों ने इस खास दिन को दो अलग अलग शहरों में कितने शानदार अंदाज में मनाया।

ये ताकत है हमारे आसमान के निगहबानों की। ये शक्ति है भारत के भाल पर अपने शौर्य से तिलक लगाने वाले वायु वीरों की। ये उड़ान है 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के सीने में धड़कते दिलों की, जो आज एक स्वर में कह रहे हैं नभः स्पृशं दीप्तम्। गीता के 11वें अध्याय का ये श्लोक भारतीय वायु सेना का आदर्श वाक्य है, जिसका अर्थ है गौरव के साथ आसमान को छूना। पिछले 94 सालों से यही तो करती आ रही है इंडियन एयरफोर्स। भारतीय वायुसेना पिछले 9 दशकों से देश के आसमान में एक ताकतवर प्रहरी की भूमिका निभाती आई है। हिंदुस्तान ये जानता है कि जब तक उसके आसमान पर इन वायु वीरों की नजरें टिकी हैं, तब तक देश की धरती को कोई बुरी नजर छू भी नहीं सकती। एयरफोर्स के इसी जज्बे को सलाम करते हुए हर 8 अक्टूबर को भारतीय वायु सेना दिवस मनाया जाता है। आज गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर वायुसेना के 94वें स्थापना दिवस का भव्य समारोह हुआ। हिंडन एयरबेस पर आज ये गौरवशाली राष्ट्रीय उत्सव बेहद धूमधाम से मनाया गया।

0: मौके पर वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने खुली जीप में सवार होकर भव्य सेरेमोनियल परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली। इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए थलसेना प्रमुख जनरल धीरज सेठ और नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन भी मौजूद रहे। इसके साथ ही वायुसेना के कई पूर्व और वर्तमान प्रमुख और वरिष्ठ सैन्य कमांडर्स ने भी इस गौरवशाली समारोह में शिरकत की। कार्यक्रम का आगाज ध्वज फ्लाईपास्ट से हुआ, जिसमें MI-17 1V हेलीकॉप्टर्स ने आसमान में तिरंगा और वायुसेना के ध्वज के साथ फ्लाईपास्ट किया। कार्यक्रम की शुरुआत में एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने देश की सेवा में अदम्य साहस दिखाने और उत्कृष्ट सेवाओं के लिए वायु योद्धाओं को वीरता पुरस्कार और विशिष्ट सेवा मेडल प्रदान किए। इस मौके पर उन्होंने वायुसेना के स्वर्णिम इतिहास और देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले महावीरों को याद किया।
1: मैं आज इस दिन को स्मरण और आत्मचिंतन के करने के अवसर के रूप में देखता हूं। आज हमें याद करना होगा वो कसम जो हमने एयरफोर्स की वर्दी पहनते समय खाई थी। याद करें इस गौरवशाली सेना का सफर, हमने कहां से शुरुआत की और आज हम कहां खड़े हैं। याद कीजिए अपने पूर्वजों को जिनके कारण वायुसेना आज इतनी सुदृढ़ है, और याद कीजिए उन सब वीरों और वीरांगनाओं को जिन्होंने राष्ट्र के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। ये स्मृतियां हमें राष्ट्र के प्रति हमारे कर्तव्यों और जिम्मेदारियों को सही तरह से निर्वहन करने की प्रेरणा देंगी।
0: साथ ही आगाज हुआ वायुसेना दिवस की शानदार सेरेमोनियल परेड का, जिसका शुभारंभ इस बार नारी शक्ति के शंखनाद से हुआ। इस बार परेड का मुख्य आकर्षण था एयर वॉरियर ड्रिल टीम की टीम शक्ति का शानदार राइफल ड्रिल प्रदर्शन। इसका नेतृत्व पहली बार महिला वायुसेना कर्मियों ने किया। जवानों ने बिना किसी कमांड के 303 राइफल्स के साथ बेहद कठिन और सटीक मूव्स दिखाए। इसी तरह वायुसेना दिवस के इतिहास में पहली बार ड्रमर्स ड्रिल टीम की प्रस्तुति को भी शामिल किया गया था, जिन्होंने अपनी थाप से पूरे एयरबेस को देशभक्ति के जोश से भर दिया।

0: इसके बाद हिंडन के आसमान पर आधुनिकता और इतिहास का संगम नजर आया। टाइगर मॉथ एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरकर वायुसेना के गौरवशाली अतीत की याद दिलाई। आपको बता दें, इस बार वायुसेना दिवस की परेड अचूक, अभेद्य और सटीक थीम पर आधारित थी। लगातार दूसरे साल हिंडन में हुए इस आयोजन में ट्रेडिशन, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी और फ्यूचर की प्लानिंग का बेजोड़ संगम देखने को मिला। हिंडन की जमीन पर स्टैटिक डिस्प्ले में मौजूद आकाश, ब्रह्मोस, तेजस और रफाल ने आज की वायुसेना के पराक्रम और सामर्थ्य की नजीर पेश की। आपको बता दें कि भारतीय वायुसेना ने अपने 94वें स्थापना दिवस को केवल गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे राजस्थान के जोधपुर में चल रहे मल्टी कंट्री हवाई युद्धाभ्यास तरंग शक्ति 2026 की दहलीज तक पहुंचा दिया। इन दिनों जोधपुर के आसमान पर तरंग शक्ति 2026 युद्धाभ्यास में भारत की हवाई ताकत के साथ साथ दुनिया के चुनिंदा मित्र देशों का तालमेल खूब नजर आ रहा है। यहाँ वायुसेना दिवस के मौके पर इंडियन एयरफोर्स की प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबेटिक टीम स्कैट ने आसमान में केसरिया, सफेद और हरे रंग के धुएं के साथ तिरंगा फॉर्मेशन बनाया। इसके अलावा उन्होंने हवा में डायमंड, तेजस और वाई जैसे सिग्नेचर फॉर्मेशंस बनाकर अपनी अचूक और अद्भुत सटीकता का प्रदर्शन किया। इसके साथ ही स्वदेशी एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स से सजी सारंग टीम के 5 हेलीकॉप्टर्स ने हवा में एक साथ क्रॉसओवर और बेहद करीबी साहसिक पैंतरे दिखाकर दर्शकों को रोमांचित कर दिया। इस तरह जहां हिंडन में पारंपरिक परेड और स्वदेशी सैन्य उपकरणों का प्रदर्शन हुआ, वहीं जोधपुर में भारतीय वायुसेना ने तरंग शक्ति युद्धाभ्यास के दौरान आई इस वर्षगांठ को इस एयर शो के जरिए और खास बना दिया। 94वें वायुसेना दिवस के मौके पर इंडियन एयरफोर्स ने इस समारोह, परेड और एयर शो के जरिए अपनी ताकत, अनुशासन, आत्मनिर्भरता और स्वर्णिम इतिहास के रंगों से हिंडन की जमीन और जोधपुर के आसमान को सजा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गाजियाबाद में आज वायुसेना दिवस का एयर शो नहीं हुआ और जोधपुर में तरंग शक्ति युद्धाभ्यास के बीच ही इस दिन को खास बनाया गया। लेकिन वायुसेना दिवस का समारोह अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि अब बारी है वायुसेना दिवस के वाराणसी चैप्टर की। गाजियाबाद में परेड और ग्राउंड डिस्प्ले के बाद अब एयरफोर्स जनता के लिए बड़ा और मुख्य एयर शो वाराणसी में करने वाली है। इतिहास में ये पहली बार होगा जब वायुसेना दिवस का मेगा एयर शो वाराणसी में गंगा नदी के ऊपर किया जाएगा। देखिए, 24 से 26 अक्टूबर के बीच वाराणसी में एयर शो और फ्लाईपास का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 25 अक्टूबर को मुख्य एयर शो का आयोजन होगा। बताया जा रहा है कि एयर शो के दौरान वाराणसी में 80 घाट से लेकर नमो घाट तक गंगा नदी के ऊपर एयरफोर्स के विमान करतब दिखाते हुए नजर आएंगे। मेगा एयर शो में 100 से ज्यादा लड़ाकू विमान और हेलीकॉप्टर शामिल होंगे। राफेल, तेजस और सूर्यकिरण एरोबेटिक्स टीम आसमान में जांबाजी का अद्भुत प्रदर्शन करेंगी। काशी के आध्यात्मिक पहचान को दर्शाने के लिए आसमान में विशेष त्रिशूल फॉर्मेशन की भी फॉर्मेशन बनाया जाएगा। सुखोई, राफेल और तेजस जैसे आधुनिक फाइटर जेट्स मिलकर इस डिस्प्ले को आकार देंगे। बताया जा रहा है कि ये एयर शो जो है लगभग 90 मिनट का होगा और 24 से 26 अक्टूबर के बीच रोजाना 12 बजे के करीब इसे आयोजित किया जाएगा। नमो घाट से लेकर 80 घाट के बीच गंगा किनारे लाखों लोग इस नजारे को लाइव देख सकेंगे। शानदार भविष्य और उजले वर्तमान के झलक के बाद अब चलते हैं स्वर्णिम इतिहास की ओर। भले ही ऑपरेशन सिंदूर हमारी वायुसेना के पराक्रम का सबसे ताजा उदाहरण है, लेकिन यह भी सच है कि आजाद भारत के पहले युद्ध से लेकर अब तक लड़े गए सभी युद्धों में इंडियन एयरफोर्स ने अहम भूमिका निभाई है। खासतौर पर 1971 और फिर 1999 के करगिल वॉर में हमारी वायुसेना ने आर्मी के साथ मिलकर पाकिस्तान को युद्ध में घुटनों पर ला दिया था। आइए आपको दिखाते हैं स्वर्णम इतिहास की वही यादें जिन्हें देखकर आप गर्व से भर उठेंगे।

0: आसमानों के रक्षक हैं, राष्ट्र के अरमानों के संरक्षक हैं। चाहे वो आसमान की अनंत ऊंचाइयां हो या फिर चुनौतियों की असीम गहराइयां, भारत के वायु वीरों के शौर्य के सामने दुनिया का कोई दुश्मन टिक नहीं सकता। जब जब शत्रु के कपट ने मातृभूमि को मैला करने का दुस्साहस किया, भारतीय वायुसेना ने तब तब अपने शौर्य और साहस से दुश्मन के इरादों को राख में बदल दिया। आजाद भारत के पहले युद्ध से लेकर कारगिल की लड़ाई और ऑपरेशन सिंदूर तक भारत के वायु वीरों ने हर मोर्चे पर अहम भूमिका निभाई है।
1: आजादी के तुरंत बाद पाकिस्तान ने अपने कबायलियों को और रजाकारों को पाकिस्तान आर्मी के प्रोटेक्शन में कश्मीर में घुसाने की कोशिश की। ऐसे में इंडियन एयरफोर्स को तुरंत एक्टिव होना पड़ा। हमारी एयरफोर्स के जो डकोटा विमान थे, उन्होंने बखूबी दिल्ली से और जम्मू से इंडियन आर्मी के ट्रूप्स को एयरलिफ्ट करके श्रीनगर तक पहुंचाया। इसी तरह से इंडियन एयरफोर्स के जो फाइटर विमान थे उस वक्त, वापिती, लाइसेंडर, इन्होंने लगातार जो कबेली थे या जो रजाकार थे उनके पोस्ट पर हमला किया और उनको मजबूर किया कि वह भारत की भूमि छोड़कर पीर पंजाल के उस तरफ पाकिस्तान लौट जाएं।
0: भारतीय वायुसेना के पराक्रम की पहली परख तब हुई जब आजाद हिंदुस्तान ने अपना पहला युद्ध लड़ा 78 साल पहले 1947 के अक्टूबर महीने में, जब पाकिस्तान के कबायली लड़ाकों ने जम्मू और कश्मीर राज्य की सीमा को पार करने का दुस्साहस किया था। तब भारतीय वायुसेना की नंबर 12 स्क्वाड्रन ने पालम से पहली सिख रेजिमेंट की बटालियन को एयरलिफ्ट करके श्रीनगर की कठोर और धूल मिट्टी भरी हवाई पट्टी पर उतारने का चुनौती भरा काम किया था। इसके एक सप्ताह के भीतर ही वायुसेना के नंबर 7 स्क्वाड्रन के टेम्पेस्ट वायुयान शिल्तांग की लड़ाई में निर्णायक भूमिका में आ गए और वहां घुसपैठियों को आगे बढ़ने से रोक दिया गया।
1: वायुसेना का गठन आज ही के दिन यानी 8 अक्टूबर को 1932 के दिन हुआ था। तब से लेके अब तक वायुसेना काफी सारे युद्धों में भाग ले चुकी है, जैसे कि द्वितीय विश्व युद्ध, उसके बाद जैसे ही देश आजाद हुआ तो 1947-48 का जम्मू एंड कश्मीर ऑपरेशन, जिसमें हमारी वायुसेना ने पाकिस्तान के विरुद्ध एक्टिव रोल अदा किया। 1962 का युद्ध चीन के साथ, 1962 के युद्ध के दौरान पॉलिटिकल रीजन से यह डिसाइड किया गया कि वायुसेना की फाइटर और बॉम्बर्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन वायुसेना की ट्रांसपोर्ट और हेलीकॉप्टर विंग्स ने बखूबी इंडियन आर्मी का साथ दिया। 1965 के जंग में इंडियन एयरफोर्स ने आगे बढ़ते हुए पश्चिम में पूरे बॉर्डर पर इंडियन आर्मी को क्लोज एयर सपोर्ट दिया।
0: के बाद पाकिस्तानी सेना ने 1965 में जम्मू कश्मीर पर कब्जे के लिए दूसरी बार हमला करने की हिमाकत की थी, लेकिन इस बार फिर उसे मुंह की खानी पड़ी। 1965 में भारतीय वायुसेना ने न केवल उसके लड़ाकू विमानों को मार गिराया बल्कि कई सैन्य बेसों को ध्वस्त कर दिया। हालांकि इस युद्ध में भारतीय वायुसेना को भी काफी नुकसान हुआ, लेकिन हमारे वीर जवानों ने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ाकर रख दी। इसके बाद तीसरा मौका 1971 में आया जब पाकिस्तान के दुस्साहस ने एक बार फिर अपना सर उठाया। 3 दिसंबर 1971 को युद्ध की शुरुआत हुई और पाकिस्तानी वायुसेना ने पूरी प्लानिंग के साथ इंडियन एयरफोर्स के श्रीनगर, अमृतसर और पठानकोट एयरबेसों पर हमला बोल दिया। उस वक्त पाकिस्तान को यह एहसास नहीं था, लेकिन आने वाले 2 हफ्ते उसकी कुंडली पर बेहद भारी पड़ने वाले थे, क्योंकि उसके बाद भारतीय वायुसेना अपने पूरे दमखम के साथ पाकिस्तानी बेसों को नेस्त नाबूद करने में जुट गई। उन्नीस 1971 के युद्ध में भारतीय वायुसेना के विमानों ने बांग्लादेश के ऊपर 12,000 से ज्यादा उड़ानें भरी थी। भारतीय वायुसेना ने इस लड़ाई में पाकिस्तान के 94 विमानों को मार गिराया था। 4 की लड़ाई हो या पूर्वी पाकिस्तान में गवर्नर हाउस पर बमबारी, बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराने में भारतीय वायुसेना ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो वहीं भारतीय वायुसेना की मदद से भारत की थल सेना ने 13 अप्रैल 1984 को ऑपरेशन मेघदूत चलाया था। दुनिया के सबसे दुर्गम युद्ध क्षेत्र में चलाए गए इस ऑपरेशन के जरिए भारत के जांबाजों ने पाकिस्तान के जबड़े से सियाचिन को छीन लिया था। इस ऑपरेशन के बाद भारत के कब्जे में पूरा का पूरा सियाचिन ग्लेशियर आ गया था। तब से लेकर आज तक सियाचिन की चोटियों पर भारत का परचम लहरा रहा है।

0: 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन सफेद सागर कोडनेम के साथ पाकिस्तानी सेना के खिलाफ ऐसा विध्वंसक अभियान चलाया था जिसके जख्म आज तक पाकिस्तान भुला नहीं पाया है।
1: ...1999 में जब कारगिल का युद्ध हुआ तो उस वक्त हमारी एयरफोर्स को यह रोल दिया गया कि हम तुरंत आगे बढ़कर पाकिस्तान की जो ट्रुप्स हैं नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के जो डगआउट पोजीशन है, गन पोजीशन है, उन पर बमबारी करें। इसके लिए MiG-21 ने बेहतरीन हाई ऑल्टीट्यूड बॉम्बिंग की। सबसे बड़ी बात है कि हमारे दूसरे विमान जैसे कि MiG-27 और Mirage-2000 ने बहुत ही एक्यूरेसी के साथ लेजर गाइडेड बॉम्ब गिराए जो महज प्लस माइनस 10 मीटर की एक्यूरेसी से पाकिस्तान आर्मी के जो कमांड एंड कंट्रोल पोस्ट थे, अंडरग्राउंड बंकर्स थे, उसके अंदर घुसकर फटे। कुल मिलाकर नतीजा ऐसा हुआ कि इंडियन एयरफोर्स के हमलों की वजह से कई जगह पर NLI यानी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के यहां से लगातार पाकिस्तान में फोन हो रहे थे उनके GHQ में कि इंडियन एयरफोर्स के जहाज लगातार उन पर हमला कर रहे हैं।
0: भारत की आर्मी और एयरफोर्स के पराक्रम ने पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया और आखिरकार 26 जुलाई को भारत की जीत हुई। इसके बाद भी जब जब मौका आया भारतीय वायुसेना ने देश के दुश्मनों पर अपने पराक्रम से ऐसी करारी चोट की कि आतंक के सपोले अपने बिलों समेत जमीन के कई गज नीचे दफन हो गए और भारत के शत्रु बिलबिला के रह गए। बालाकोट के जरिए भारतीय वायुसेना ने पुलवामा के 40 सपूतों की शहादत का बदला लिया था। 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 विमान रात के अंधेरे में नियंत्रण रेखा को पार कर पाकिस्तान के पूर्वोत्तर इलाके में खैबर पख्तूनख्वा पहुंचे और बालाकोट में जैशे मोहम्मद की ट्रेनिंग कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। बालाकोट स्ट्राइक में बड़ी संख्या में जैश ए मोहम्मद के आतंकी, उनको ट्रेनिंग देने वाले संगठन के बड़े कमांडर और फिदायीन हमलों के लिए तैयार हो रहे आतंकी मारे गए थे। और भारतीय वायुसेना के साहस की महागाथा का सबसे ताजा अध्याय सिंदूरी शौर्य की स्याही से लिखा गया। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने भारतीय वायुसेना के पराक्रम की वो तस्वीर देखी जिसकी कल्पना भारत के शत्रुओं ने अपने दुस्साहस भरे सपनों में भी नहीं की थी।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन एयरफोर्स को दो काम दिए गए थे। एक, पाकिस्तान में घुसकर वहां जो आतंकवादियों के टेरर कैंप्स हैं उस पर हमला करना। दूसरा, पाकिस्तान एयरफोर्स के 11 चिन्हित यानी आइडेंटिफाइड रनवेज, उनके जो एयर बेसिस में हैंगर्स थे और सबसे बड़ी बात उनके जो रेडार्स थे उस पर हमला करना। इन दोनों कार्रवाइयों को इंडियन एयरफोर्स ने बखूबी अंजाम दिया। सिंदूर के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने लॉन्ग रेंज S-400 जमीन से हवा पे मार करने वाली मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए 300 किलोमीटर की दूरी से पाकिस्तान एयरफोर्स के एक अवाक यानी एयरबॉर्न कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भी नेस्तनाबूद किया।
0: समझिए कि चाहे देश के लिए शत्रु से लोहा लेना हो या फिर आपदा के समय राहत का फरिश्ता बनकर मदद पहुंचानी हो, हर मौके पर भारत के वायुवीर देश के लिए अपने फर्ज को शिद्दत से निभाते आए हैं। राष्ट्र रक्षा और राष्ट्र सेवा के मोर्चे पर हमारी वायु सेना के योगदान से जुड़े उन्हीं स्वर्णिम पलों को देश आज फिर याद कर रहा है। वायु सेना दिवस के मौके पर हिंदुस्तान के वायु योद्धाओं को गुड न्यूज़ टुडे का सलाम।

0: गुंडी चुड़ी इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
1: 11 अक्टूबर से नवरात्र का आरंभ हो रहा है, इसलिए दुर्गा पूजा को लेकर पूरे देश में जोर शोर से तैयारियां तमाम चल रही हैं। मूर्ति बनाने वाले कलाकार मां की भव्य प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। अपने सधे हुए हाथों से कारीगर दुर्गा प्रतिमाओं को उत्सव के लिए तैयार कर रहे हैं।

0: देश भर में शक्ति उत्सव की तैयारियां जोरों पर है। मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा गढ़ी जा रही है। मां की कोई मूर्ति तैयार होने के बेहद करीब है तो किसी को अभी आकार दिया जा रहा है। कुछ मूर्तियों में रंग भरे जा रहे हैं। मूर्तिकार छोटी बड़ी हजारों मूर्तियों को गढ़ने और तराशने में व्यस्त हैं, ताकि वक्त पर मूर्तियों की डिलीवरी की जा सके। देश के अलग अलग हिस्सों में मूर्तिकार दिन रात लगकर प्रतिमाओं को तैयार करने में जुटे हुए हैं। कुछ परिवार और मूर्तिकार ऐसे भी हैं जो सालों से माँ दुर्गा की प्रतिमाएं तैयार कर रहे हैं। इन प्रतिमाओं का पारंपरिक स्वरूप ही इनकी खास पहचान है। शुरुआती दौर में बड़ी संख्या में कारीगर प्रतिमाओं का ढांचा बनाने और मिट्टी लगाने का काम करते हैं। इसके बाद प्रतिमाओं की फिनिशिंग, रंगाई और श्रृंगार का काम शुरू होता है। रायपुर की इस कार्यशाला में माँ की हर प्रतिमा में कला, पारंपरिक शैली की एक अनूठी और गहरी छाप दिखती है। ऑर्डर के हिसाब से ही माँ का स्वरूप तैयार किया जा रहा है, जिसमें मूर्तिकार की कल्पना और कार्यकुशलता की छाप भी देखने को मिल रही है। दुर्गा पूजा के आरंभ होने में अब बहुत कम समय रह गया है, इसीलिए कारीगर तेजी से काम पूरा करने में जुटे हुए हैं। मूर्ति निर्माण के पीछे की उनकी महीनों की मेहनत बस इस बात पर टिकी है कि भक्तों को उनकी बनाई मूर्ति पसंद आए। कलाकारों और मूर्तिकारों की इस अथक मेहनत ने उत्सव के माहौल को और भी खास बना दिया है। यही कारण है कि देश के कोने कोने में दुर्गा पूजा का उत्सव चरम पर पहुंच चुका है। आने वाले दिनों में इसमें और इजाफा होने की उम्मीद है। महेंद्रगढ़ से धीरेन्द्र विश्वकर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबर।
2: मुझे तकरीबन 21 साल हो गए पत्रकारिता करते, खबरों को समझना और उनको समझाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कुछ ऐसी खबरें समझेंगे और आपको समझाएंगे, देखिए मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को खबरें तो आराम से सुनने को मिल जाए, इसके ऊपर उसके ऊपर ऐसे अच्छी सोच के साथ एक अच्छी शुरुआत की है, इसके परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। वैसे अच्छी चीजों की मार्केट आजकल बढ़ रही है,
3: देश देख रहा है अच्छी खबरें। गुड न्यूज टुडे, अच्छी खबर सच्ची खबर।
2: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
4: और दुर्भाग्य कहता है
5: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
6: अविश्वास में विश्वास बसता है,
7: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज टुडे बनाता है।
3: गुड न्यूज टुडे।
1: गुड न्यूज टुडे इसलिए अच्छा लगता है, इसके अंदर ना वो उस खबरों की मार धाड़ और चिल्ला चिल्ली नहीं है, कम से कम लोगों को।
8: ओडिशा के पारादीप में इंडियन नेशनल कोस्ट गार्ड ने की 12वीं नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज, 30 देशों के 32 ऑब्जर्वर ने अभ्यास में लिया हिस्सा। अक्टूबर को दलित प्रेरणा स्थल पर कांशी राम के परिनिर्माण दिवस पर नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर रहेगा ट्रैफिक डायवर्जन एडवाइजरी जारी। गया जी में मनाई गई पितृ दीपावली, पिंडदान करने आए लोगों ने अपने पितरों के नाम से दीप जलाकर देवघाट को किया रोशन। कैनेडियाई लेखिका एन कार्सन को मिला 2026 का साहित्य नोबेल पुरस्कार, चर्चित किताबों में द ब्यूटी ऑफ द हस्बैंड शामिल। चारधाम यात्रा के दूसरे चरण में बन रहे हर दिन नए रिकॉर्ड्स, बद्रीनाथ में अब तक 19,13,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं का बना नया रिकॉर्ड।

नमस्कार, गुड न्यूज टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैभव राज शुक्ला। स्वागत है आपका हमारे विशेष कार्यक्रम में, जहां हम बात कर रहे हैं दुर्गा पूजा की। बस अब थोड़ा सा इंतजार है, 11 अक्टूबर से देश में शक्ति पूजा का आरंभ होने जा रहा है और उसके लिए भव्य पंडालों और दिव्य प्रतिमाओं का निर्माण तेजी से चल रहा है। आज आपको लिए चलेंगे कोलकाता, जहां पर मशहूर पार्क स्ट्रीट इलाके में 300 साल बाद पहली बार दुर्गा पूजा होने जा रही है और इसके लिए भव्य पंडाल बनाए जा रहे हैं। दुर्गा पूजा में इस बार सरकार ने क्या नए नियम बनाए हैं, इस पर भी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही आपको लिए चलेंगे मिनी बंगाल कहे जाने वाले चितरंजन पार्क में और वहां बन रहे भव्य पंडाल की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही गुजरात में गरबा की तैयारियां तमाम हैं, वो दिखाएंगे। मशहूर अंगारा रास के लिए टीमें अभी से रिहर्सल करने में जुटी हुई हैं। शोलों के दरमियान कैसे होता है ये डांस आपको दिखाएंगे और आखिर में दिल्ली में मंचित होने जा रहे डांस ड्रामा श्री राम की टीम से भी मिलाने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं मां दुर्गा के स्वागत की तैयारियों से। दिल्ली से अमरावती तक और चंडीगढ़ से लेकर कोलकाता तक भव्य पंडाल आकार ले रहे हैं और देवी की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। लेकिन इसके बीच सबसे ज्यादा चर्चा कोलकाता के पार्क स्ट्रीट की है, जो मशहूर तो क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए है, लेकिन 370 साल बाद वहां अब महाशक्ति की आराधना होने जा रही है और उसके लिए भव्य पंडाल बनाया जा रहा है। इसी तरह दिल्ली के चितरंजन पार्क में पंडालों को सजाने का काम तेजी से चल रहा है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण तक पूरे देश में मां के आगमन का इंतजार है। रिपोर्ट देखिए।

0: सर्वेश्वरी जगदीश्वरी मातृरूप महेश्वरी ममतामयी करुणामयी जगजीवनी संजीवनी तमहारिणी शुभकारिणी मनमोहिनी विश्वेश्वरी। उस पल की प्रतीक्षा है जब पंडाल में माँ विराजेंगी, इसलिए धूमधाम से भक्तिभाव से दिन रात जुटकर पंडाल सजाए जा रहे हैं। चाहे बंगाल हो या मिनी बंगाल, कोलकाता का पार्क स्ट्रीट हो या दिल्ली का चितरंजन पार्क, भावना तो एक ही है, हाँ पर भव्यता में बाजी मारने की होड़ है। सबसे पहले देखिए कोलकाता के पार्क स्ट्रीट इलाके को, जहाँ नया इतिहास रचा जा रहा है। जिस इलाके की पहचान रेस्टोरेंट, पब, कैफे, जगबगाती सड़क और पाश्चात्य संगीत के तौर पर रही है, और जो अपनी नाइट लाइफ के लिए मशहूर है, वहाँ 370 साल बाद महाशक्ति की आराधना होने जा रही है।
1: सनातनी संस्था के द्वारा यहाँ पर हम लोग एलन पार्क, जो आप पार्क की जो देख रहे हैं, यहाँ

0: और संस्था के अध्यक्ष हम हमारे संप्रदेव पांडा जी ने दोनों ने मिलकर प्रयास करके और सरकार के साथ सहयोग करके और इस जगह को पार्क को हम लोग आज सनातनी पार्क के नाम से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि नामकरण किया जाए और इस सनातनियों के लिए और पूरे पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए अपना सवार आप सभी का पूजा है, अकेले हमारी पूजा नहीं है, ये सनातनियों की पूजा है।
1: शक्ति पूजा के केंद्र कोलकाता में ये बदलाव यकीनन ऐतिहासिक है क्योंकि अभी तक पार्क स्ट्रीट के एलन पार्क में क्रिसमस और न्यू ईयर ही सेलिब्रेट किया जाता था, पर इस बार भव्य रूप दुर्गा पूजा महोत्सव की तैयारी है आरंभ है, इसलिए पंडाल भी अद्भुत होना चाहिए। इसलिए कोलकाता सनातनी संघ ने शिव तांडव की थीम चुनी है।
0: पूजा का ये शंकर भगवान का विराट स्वरूप है, शिव तांडव का स्वरूप इसमें देखिए। एक तरफ आप भगवान की जटा में देखिए, जिस समय माँ जब आग में कूद गई थी उसके बाद का दृश्य है, वो रुद्र रूप इनका यहाँ पर है और बगल में तांडव करते हुए है। इधर में आपके यहाँ वरुण की अभिषेक करते हुए रहेगा, सामने आपका आदि शिव का है। यहाँ पांच तरह की एक तरह नंदी पे शिव जी बैठे हैं, पांच तरफ भगवान शिव का ही पूरा तांडव लीला इसमें है।
1: यूं तो 2007 से एलन पार्क में पार्क स्ट्रीट कार्निवल होता आ रहा है जिसे 2011 से क्रिसमस फेस्टिवल का नाम दिया गया, लेकिन दशकों से दिसंबर में जगमगाने वाला ये पार्क अब अक्टूबर में यानी नवरात्रि के दौरान भी आकर्षण का केंद्र रहेगा। पार्क स्ट्रीट में शक्ति पूजा के लिए बनारस से करीब 100 पुरोहितों की टीम आ रही है। चतुर्थी से दशमी तक रोज बनारस के दशाश्वमेध घाट की तर्ज पर यहां महाआरती होगी। अष्टमी पर 5,000 महिलाओं के साथ जागरण और अष्टमी को कन्या पूजन होगा। पंडाल में पश्चिम बंगाल की लोक संस्कृति और लोक संगीत पर फोकस रहेगा, साथ ही राज्य की कला और परंपराओं की झलक भी रहेगी। एलन पार्क इलाके में दुर्गा पूजा होगी तो जाहिर है भारी जन सैलाब उमड़ेगा। ये इलाका पहले से ही भीड़ भाड़ वाला है, इसलिए क्राउड मैनेजमेंट पर आयोजक और प्रशासन दोनों की नजर है। दावा है कि एलन पार्क की दुर्गा पूजा कोलकाता की सबसे बड़ी पूजा होगी और इसी दावे के अनुसार पंडाल भी बनाया जा रहा है। मुख्य द्वार पर बिखरी हुई जटाओं के साथ शिव की विशाल प्रतिमा, पंडाल के अंदर विशाल मंदिर की प्रतिकृति जिसमें माँ दुर्गा के विभिन्न रूपों की मूर्तियाँ। वैसे तो कोलकाता में एक से बढ़कर एक पंडाल बन रहे हैं, लेकिन एलन पार्क के पंडाल को अद्वितीय बनाने की कोशिश है।
2: यहाँ पे लाखों कम से कम डेली हमको लगता है कि 8-10 लाख लोग आएंगे ही आएंगे।
1: बताया जा रहा है कि इस ऐतिहासिक दुर्गोत्सव का उद्घाटन 11 अक्टूबर को मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी करेंगे। भव्य महाआरती, पारंपरिक सांस्कृतिक कार्यक्रम और विशाल महाप्रसाद वितरण की वजह से माना जा रहा है कि एलन पार्क की पूजा भव्य होगी। इस साल पश्चिम बंगाल में दुर्गा पूजा के लिए कई बदलाव भी किए गए हैं, जैसे महाअष्टमी के पावन अवसर पर राज्य भर में शराब की सभी दुकानें और बार पूरी तरह बंद रहेंगे। पूजा पंडालों और विसर्जन यात्रा के दौरान डीजे बजाने पर पूरी तरह से रोक रहेगी। राज्य भर की सभी पंजीकृत पूजा समितियों के लिए बिजली बिल में 100% छूट देने की घोषणा भी राज्य सरकार द्वारा की गई है। और हाँ, महालया से पहले पंडाल का उद्घाटन नहीं किया जाएगा। ये तो हुई बंगाल की बात, अब चलिए आपको मिनी बंगाल यानी दिल्ली के चितरंजन पार्क लेकर चलते हैं, जहां भव्य पंडालों को आखिरी रूप दिया जा रहा है। चितरंजन पार्क के बड़े पंडालों में एक मेला ग्राउंड का ये पंडाल भी है, जहां पर हर साल के ही जैसा इस साल भी भव्य और खूबसूरत पंडाल बनाया जा रहा है।
3: दिल्ली के चितरंजन पार्क के मेला ग्राउंड में मौजूद है, जहां पर बड़ा पंडाल बनाया जाता है और भव्य उत्सव नवरात्रों के दौरान मनाया जाता है। भव्य माता की प्रतिमा स्थापित की जाती है और इसको लेकर के यहां पर तैयारियां शुरू है। आप देख सकते हैं दुर्गा पूजा समिति सीआर पार्क मेला ग्राउंड है और इसी के तौर पे कई वर्षों से यहाँ मनाया जाता है। 50 साल इस पूजा का हो चुका है और इस बार 51वां मनाया जाएगा और देख सकते हैं किस तरीके से भव्य जो पंडाल है वो यहाँ पर बनाने का कार्य आपको शुरू हो गया है।
1: एक तरफ पंडाल सजाए जा रहे हैं, दूसरी तरफ माँ की प्रतिमा भी तैयार हो रही है। तो कहीं देवी दुर्गा

0: की प्रतिमाओं का आगमन भी होने लगा है। झांसी में नवदुर्गा उत्सव समिति की ओर से देवी की ये सुंदर प्रतिमा झोकनबाग शहीद पार्क में स्थापित होगी। बताया गया कि समिति पिछले 42 वर्षों से लगातार माँ दुर्गा की स्थापना और नवरात्रि उत्सव का आयोजन करती आ रही है। समय बदला, पीढ़ियां बदली, लेकिन देवी दुर्गा की आराधना और झोकनबाग शहीद पार्क की ये परंपरा आज भी उसी उत्साह के साथ जारी है।
1: नवदुर्गा उत्सव समिति झोकनबाग शहीद पार्क सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती है। इधर पे शहीद पार्क पे हम लोग माता रानी को विराजमान करते हैं पिछले 42 साल से, और हमारी मूर्ति जो है वो सागर से आई है, विश्वकर्मा आर्ट से।
0: शक्ति उपासना के इस पर्व को लेकर रौनक हर तरफ है। ये तस्वीर महाराष्ट्र के अमरावती की है, जहां विदर्भ की कुलस्वामिनी के रूप में प्रसिद्ध अम्बा माता का मंदिर रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा है। मंदिर की साफ सफाई और रंग रोगन के साथ माता के सोने चांदी के आभूषणों को भी चमकाया गया है।

0: विदर्भ की कुलस्वामिनी अमरावती की माँ अंबे के इस मंदिर में, जहाँ पर आप देख सकते हो कि मंदिर को जो है पूरी तरीके से लाइटिंग से सजाया है, यहाँ पर पूरी तरीके से रोशनाई शुरू कर दी है और अब नवरात्रि, शारदीय नवरात्रि उत्सव को बस कुछ ही दिन बचे हैं, उससे पहले जो है हर देवी का जो मंदिर है वो अब सजना शुरू हुआ है। और
1: पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, देश के हर हिस्से में शक्ति पूजा की तैयारी है, दुर्गा पूजा की धूम है और श्रद्धालु माँ की आगमन की प्रतीक्षा में हैं। दिल्ली से आशुतोष कुमार और अमरावती से धनंजय साबली के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
2: नवरात्रि आने में अब कुछ ही वक्त शेष रह गया है और गुजरात में गरबा की धूम शुरू हो चुकी है। कहीं जलती मशालों के बीच अंगारा रास की तैयारियां हैं, तो कहीं पर रंग बिरंगे परिधानों में गरबा प्रेमी कदमताल का अभ्यास कर रहे हैं। जामनगर में 70 साल से ज्यादा पुरानी अंगारा रास की परंपरा आज भी कायम है, जहां आग के बीच कलाकार अपनी आस्था और साहस दिखाते हैं। वहीं वडोदरा और राजस्थान के पाली में गरबा की नई पीढ़ी को अपने रंग में रंग रहे हैं। रिपोर्ट देखिए।

अंगारों के बीच थिरकते कदम, हाथों में सुलगती मशालें, चेहरे पर आस्था और दिल में माँ अम्बे का नाम। ये नजारा है गुजरात के जामनगर का, जहाँ नवरात्रि से पहले ही भक्ति का रंग गहरा होने लगा है। जामनगर के रणजीत नगर में पटेल युवक गरबा मंडल पिछले 70 साल से ज्यादा वक्त से अंगारा रास की इस अनोखी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। आधुनिक गरबा के दौर में भी यहाँ सदियों पुरानी साहसिक कला का जुनून बरकरार है। महीनों पहले से युवा कलाकार इसकी तैयारी में जुट जाते हैं, कदमों की लय साधते हैं और आग के बीच संतुलन का कठिन अभ्यास करते हैं।

0: हमारा यहाँ का फेमस रास है वो है मसाल रास है, और हम मसाल रास खेलते खेलते जो हमारा स्वस्तिक है वो बनाते हैं, और माता जी का शस्त्र बोलते त्रिशूल वो भी बनाते हैं, और गरबा के अंत में हम अंगारों पे खेलते हैं, और वो भी खुले पैर खेलते हैं, कोई लोशन या कुछ अप्लाई भी नहीं करते हैं, और ये हमारे ऊपर माता जी का आशीर्वाद है जो हमारे पैर में कुछ होता नहीं है, अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, और ये मसाला हम पिछले 25 सालों से खेल रहे हैं, और ये गरबा हमारा गरबा मंडल है जो ये पिछले 70 सालों से यहाँ पे कार्यरत।
1: हाथों में जलती मशाले, चारों तरफ आग की लपटे, लेकिन चेहरों पर जरा भी डर नहीं। भक्ति में डूबे कलाकार जब रास की लय पर घूमते हैं तो लगता है जैसे आस्था ने आग पर भी जीत हासिल कर ली हो। जामनगर में अंगारा रास का एक और खास रूप भी देखने को मिलता है। श्री रंदल अंबिका कुमारिका गरबा मंडल स्वास्तिक के आकार में सुलगती लकीरों के बीच स्वास्तिक अंगारा रास की प्रस्तुति करता है। आग की तपिश के बीच गुजरते कलाकार अपनी श्रद्धा और साहस का अद्भुत मेल दिखाते हैं। और अब बात उस रंग की जिसके बिना गुजरात की नवरात्रि अधूरी मानी जाती है, गरबा। वडोदरा में विकसित भारत संकल्प गरबा की थीम पर भव्य प्री गरबा आयोजन हुआ। पारंपरिक परिधानों में सजे लोग संगीत की धुन पर घूमते घेरे और मां शक्ति की आराधना के साथ विकसित भारत 2047 का संदेश पूरे माहौल को खास बना गया।
2: वडोदरा म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा गरबा का आयोजन किया जा रहा है, और यहाँ पे खूब ही अच्छे और सच्चे मन से हम लोग माता जी की श्रद्धा से गरबे के लिए आए हैं, और विकसित भारत थीम पे हमें बहुत ही गर्व है।
3: विकसित भारत पे आज यहाँ पे देख सकते हो काफी बड़ी मात्रा में यहाँ पे यूनाइटेड वे ऑफ वडोदरा जो वर्ल्ड प्रसिद्ध है गरबा, जो आज यहाँ पर काफी जनसंख्या में लोग आए हुए हैं। सो आप देख सकते हो इतना अच्छा मैनेजमेंट है, बहुत अच्छा। और अतुल दादा तो हमारे सबके फेवरेट है, जो इतना वर्षों से सिंगिंग कर रहे, तो आप सब देख सकते हो बहुत ही खूबसूरत है।
4: हम लोग रात्रि बिफोर नवरात्रि अतुल पुरोहित के साथ विकसित भारत की थीम पे यहाँ पे यूनाइटेड वे के ग्राउंड पे आज खेलने आए थे। आज का हमारा ये जो एनर्जेटिक एक्सपीरियंस है, जैसे आप सुन सकते हो बैकग्राउंड में किस हिसाब से चल रहा है, पीछे सब स्टूडेंट्स और वो सब विकसित भारत पे डांस और गरबा परफॉर्म कर रहे हैं।
1: रंग बिरंगी चनिया चोली, पारंपरिक केडिया कुर्ता, तालियों की गूंज और एक साथ पढ़ते कदम, वडोदरा महानगर पालिका के इस आयोजन में स्वच्छता, नारी शक्ति, सांस्कृतिक विरासत और राष्ट्र निर्माण का संदेश भी जुड़ा रहा। लोगों के लिए प्रवेश निःशुल्क रखा गया, जिससे उत्सव में हर उम्र के लोगों की भागीदारी दिखी। गुजरात से निकलकर गरबा देश भर की धड़कन बन चुका है। इसका असर राजस्थान के पाली में भी साफ दिखाई दे रहा है। बच्चों से लेकर महिलाओं और जेंजी युवतियों तक हर कोई गरबा सीखने को लेकर उत्साहित है। मोबाइल और डीजे पर बजते संगीत के साथ कोरियोग्राफर नए स्टेप सिखा रहे हैं। इस बार बॉलीवुड अंदाज के मूव्स भी युवा पीढ़ी को खासा आकर्षित कर रहे हैं।
5: सिकली को दो ताली, तीन ताली, हीच, डोडिया, ये सारे स्टेप्स किए जाता है। बट आज के जमाने के हिसाब से, आज की जेन ज़ी के हिसाब से, अगर हम लोग उसके अंदर थोड़ा सा मॉडिफाई करके, थोड़ा सा बॉलीवुड स्टेप्स को मॉडिफाई करके डालते तो उनको करने में भी मजा आता है, और उस तरीके से करते तो सब लोग एंजॉय भी करते हैं।
1: लेकिन गरबा सिर्फ नृत्य नहीं, ये माँ अम्बे से जुड़ने का एक जरिया भी है। बीच में जलता दीपक, चारों तरफ घूमते भक्त और हर ताल के साथ बढ़ती श्रद्धा, 9 दिनों के उपवास और साधना के बीच गरबा का हर कदम शक्ति को समर्पित होता है। बदलते दौर में इसके अंदाज जरूर बदले हैं, लेकिन भाव वही है, माँ के प्रति समर्पण का, शक्ति की आराधना, संस्कृति की पहचान और उत्सव की उमंग गुजरात में साफ दिखाई दे रही है। राजस्थान से भरत भूषण जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
6: दिल्ली में इस दिवाली एक बार फिर से मंच पर भगवान राम की गाथा जीवंत होने जा रही है। करीब 7 दशक पुरानी परंपरा के तहत श्री राम भारतीय कला केंद्र का मशहूर डांस ड्रामा श्री राम इस साल अपने पारंपरिक स्वरूप में लौट रहा है। खास बात इसमें यह है कि करीब 25 साल बाद इसकी प्रस्तुति में पुराने अंदाज, पारंपरिक वेशभूषा और मंच सज्जा को फिर से जगह दी गई है। चलिए इस लोकप्रिय डांस ड्रामा की टीम से आपको मिलवाते हैं।

0: श्री राम भारती कला केंद्र के ड्रेस रिहर्सल में हैं हम, और फिलहाल हम बैक द स्टेज हैं। सीता जी तैयार हो रही हैं और किस तरह से वो खुद को सवार रही हैं ये हम देख पा रहे हैं। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर सारे आर्टिस्ट अपना मेकअप अपने आप करते हैं, उन्हें उनका रोल बताया जाता है, उस रोल की क्या डिमांड है, कैसा उन्हें दिखना है स्टेज पर, उसके हिसाब से वो खुद अपना मेकअप चूज करती हैं और ऐसा चुनती हैं कि हर बार बिल्कुल परफेक्ट दिखाई पड़ती हैं। अनुसुआ जी मेरे साथ में हैं, पेशे से टीचर हैं लेकिन सिर्फ रामलीला के लिए ब्रेक लिया है और यहाँ पर फिलहाल वो तैयार होती हुई दिखाई पड़ रही हैं।
1: जब भी माता सीता का नाम लिया जाता है, सबसे पहली बात तो शक्ति का एक अनुभूति होती है अपने अंदर। और हम, जैसे कि सर ने अभी बताया कि हम लोग मेकअप के द्वारा इसका हम लोग दर्शाते हैं, जैसे कि हम लोग आईब्रोज जो है, जो हमें शोभा जी ने सिखाया है कि आईब्रो को हम लोग किस तरीके से बनाते हैं ताकि जो पॉजिटिव रोल है वो कितना दूर दर्शकों तक समझ में आए कि दैट इज अ पॉजिटिव रोल।
0: राजकुमार जी मेरे साथ हैं, राम के गेटअप में हैं, पिछले 40 साल से श्री राम भारती कला केंद्र के साथ जुड़े हुए हैं और पिछले 30 साल से लगातार राम का रोल वो प्ले कर रहे हैं रामलीला में।
2: इसमें कोई शक नहीं, वाकई राम समा गए हैं, बट ये कि राम बनने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है। बट हमारे डायरेक्टर हैं शोभा दीपक सिंह पद्मश्री, उन्होंने काफ़ी हमें तुलसीदास रामायण और अपना वाल्मीकि रामायण बहुत रटाया है, क्योंकि हमारा जो बेस है वाल्मीकि और तुलसीदास रामायण के ऊपर है। तो कुछ वर्कशॉप हुई हमारे थिएटर की और कुछ संवाद की हुई कि कैसे आपको अभिनय करना है, क्योंकि हम लोग बोल नहीं रहे, ये हमारा अभिनय प्रधान है। तो अभिनय के थ्रू हमें मुद्रा एक्सप्रेशन इस पर काफ़ी काम करना पड़ा, जिसके लिए हमें वर्कशॉप देने पड़े। हमारे गुरु जी, हमारे जितने सीनियर हैं, उन लोगों ने काफ़ी हमारा हेल्प किया।
0: रामलीला का सबसे शानदार करेक्टर आप किसे मानते हैं, किसे देखने के लिए आप घर से निकलकर स्टेज के पास तक जाते हैं, तो वो है रावण। बिना रावण रामलीला कुछ भी नहीं है, बिना रावण शायद राम का भी इतना चर्चा नहीं होती। और मेरे साथ साक्षात रावण मौजूद हैं, स्वपन मजूमदार सर इनका नाम है। सर, जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है आपने, बहुत ही कमाल की थी। कितने साल से आप कर रहे हैं?
3: मैं 2014 से कर रहा हूँ रावण। मैं बेसिकली 1994 से भारतीय कला केंद्र में हूँ। आई केम एज अ स्टूडेंट एंड देन मैंने कई साल लक्ष्मण का रोल किया और रावण का रोल मैंने 2014 से स्टार्ट किया।
0: ये 12वां साल है आपका रावण का रोल प्ले करते करते, अभी भी स्टेज पर जाने से पहले कुछ अंदर बटरफ्लाई होती है क्या?
3: सी, कलाकार जो होता है ना, वो स्टेज के अंदर जाने के बाद राजा होता है। स्टेज के जब वो बाहर होता है, वो एक नॉर्मल इंसान होता है। डर हर एक इंसान को होता है और दिन जो होता है ना, वो हमेशा एक दिन जैसा नहीं होता है। तो जैसे दिन चेंज होता है, ऐसे कलाकार भी अपने हिसाब से कुछ इम्प्लीमेंट करता है और कुछ छूट जाता है। तो डर तो होता ही और बहुत ज़रूरी भी है ये डर होना।
4: खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए जुड़ रही वो न्यूज टुडे के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। पहाड़ों पर मौसम ने अचानक करवट लिया। उत्तराखंड से हिमाचल तक ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी ने खूबसूरत नजारा पेश किया है। बद्रीनाथ के पास 18,000 फीट की ऊंचाई पर देवताल बर्फ से पूरी तरीके से ढक चुका है, तो चंबा का साच पास भी सफेद चादर में नजर आ रहा है। लेकिन इन मनमोहक तस्वीरों के बीच मौसम विभाग ने बारिश, तेज हवाओं और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है।
5: चोटियों पर मौसम अपना रंग बदल रहा है, कहीं आसमान से गिरती बर्फ तो कहीं बारिश की फुहार, और इस बदलते मिजाज के साथ पहाड़ों पर सर्दी ने भी दस्तक दे दी है। उत्तराखंड से हिमाचल तक ऊंचाई वाले इलाकों में सीजन की पहली बर्फबारी देखने को मिली है। बद्रीनाथ, केदारनाथ, चंबा और हिमाचल के कई पहाड़ी इलाकों में सफेदी छा गई है। ताजा हिमपात के बाद तापमान तेजी से नीचे गया है और ठिठुरन बढ़ गई है। बद्रीनाथ धाम से करीब 52 किलोमीटर दूर देवताल से भारत चीन सीमा के करीब 18,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद देवताल 4 से 5 फीट बर्फ में ढक गया है। चोटियां हो, रास्ते हो या आसपास का इलाका, नजर जहां तक जाती है सिर्फ सफेद रंग दिखाई देता है। बद्रीनाथ ही नहीं बल्कि हिमाचल के चंबा में 14,500 फीट की ऊंचाई वाला साचपास भी बर्फ से ढक गया है। मंगलवार शाम शुरू हुआ हिमपात देर रात तक जारी रहा, जिसके बाद पूरा इलाका सफेद नजर आया। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर में 6 से 8 अक्टूबर जबकि हिमाचल और उत्तराखंड में 5 से 10 अक्टूबर तक बारिश, गरम चमक और तेज हवाओं का अलर्ट दिया है। ऊंची चोटियों पर हिमपात की भी संभावना है। ऐसे में लोग पहाड़ों की खूबसूरती देखने निकल रहे हैं, तो सिर्फ नजारे ही नहीं तैयारियां भी साथ रखें। रवाना होने से पहले मौसम का हाल जानें, प्रशासन की गाइडलाइन देखें और रास्तों की स्थिति जरूर जांच लें, क्योंकि पहाड़ों पर बदलता मौसम खूबसूरत जरूर है लेकिन उतनी ही वहाँ सतर्कता भी जरूरी है। चमोली से कमल एलसलोडे, चंबा से विशाल आनंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
4: उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदलने के साथ पहाड़ों पर सर्दी भी बढ़ गई है। चमोली की ऊंचाई वाले इलाकों में तो बर्फबारी के बाद तापमान में गिरावट महसूस की गई है। बद्रीनाथ धाम में भी ठंड के बीच श्रद्धालुओं की आवाजाही लगातार जारी है। वहीं पर मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश और बर्फबारी का अनुमान जताया। देखिए पहाड़ों पर बदलते मौसम और बर्फ की खूबसूरत तस्वीरें।
6: मौसम ने करवट ली तो चमोली की ऊंची चोटियों का रंग भी बदल गया। हल्की बर्फबारी के बाद पहाड़ों पर सफेदी की खूबसूरत परत नजर आने लगी। हेमकुंड साहिब में बर्फबारी ने पूरे इलाके की तस्वीर बदल दी। छत से लेकर आसपास के रास्तों तक बर्फ की सफेदी नजर आ रही है। शांत पहाड़ों के बीच ये नजारा बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है।
7: चमोली में मौसम ने करवट बदल दी है। लगातार जोरदार बारिश इस समय पूरे जनपद में देखने को मिल रही है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, जोशीमठ और चमोली के तमाम जगहों पर इस समय बारिश और ऊंचाई वाली जगहों पर बर्फबारी का दौर देखने को मिल रहा है। सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में बर्फबारी तो निचली जगहों पर बारिश के साथ ही ठंड हो रही है।
6: चमोली में मौसम के इस बदले मिजाज का असर अभी आगे भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि मौसम विभाग पहले ही वीकेंड पर बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी कर चुका है। यानी वीकेंड पर पहाड़ों में ठंड का असर और बढ़ सकता है। बद्रीनाथ धाम में भी बारिश के बाद ठंड का असर और बढ़ गया है। पहाड़ों पर बदलते मौसम का ये रंग श्रद्धालुओं को भी अलग एहसास दे रहा है।
7: इस समय जो बद्रीनाथ धाम की यात्रा है वो लगातार चरम पर चल रही है। गाड़ियों की कतार हर तरफ देखने को मिल रही है। ऐसे में यात्रा भी चल रही है, मौसम भी बदल रहा है, ठंड के बीच भी लगातार उत्साह जो है श्रद्धालुओं का बना हुआ है। ऐसे में मौसम विभाग का पूर्वानुमान जो है 10 अक्टूबर तक लगातार बारिश और बर्फबारी का दौर पहाड़ी ऊंची चोटियों पर देखने को मिलेगा।
6: वहीं हवाओं के बीच बद्रीनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। दर्शन के लिए करीब 2 से 3 किलोमीटर लंबी कतार लग रही है, लेकिन ठंड भी भक्तों का उत्साह कम नहीं कर पा रही। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
8: खबरें कभी रफ्तार से दौड़ती हैं, तो कभी धीमे धीमे पक रही होती हैं। खबरें कुछ समाज की सोच दिखाती हैं, तो कुछ दिखाती हैं विकास की तस्वीर। खबरें किसी में भविष्य छिपा होता है, तो कुछ आज का आईना होती है। खबरें कुछ जेब पर असर डालती हैं, तो कुछ दिल को छू जाती है। ऐसी हर एक खबर जिसका जिंदगी पर है असर, जानने के लिए देखिए न्यूज पर राह सच्चाई की रात 9 बजे।
9: असंभव खुद बताता है कि संभव मुझ में ही है,
10: और दुर्भाग्य कहता है
11: कि भाग्य कहीं दूर नहीं।
8: अविश्वास में विश्वास बसता है,
9: जो हम में अच्छाई जगाता है, हमें गुड न्यूज़ टुडे बनाता है।
12: गुड न्यूज़ टुडे।